दूसरा दूसरी शिक्षा, जो जैसा कर्म करेगा मेरे भारत के लोगों वैसा ही फल पाओगे। हम अपने खेत में अगर चने का बीज बोएंगे, चने का पेड़ ही उगेगा, आम का बीज बोएंगे, आम का फल ही प्राप्त होगा। इसलिए माई बाप गिरधर की कुंडली कहती, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए, जग में होत हसाए, चित्त में चैन न पावे, खान पान सम्मान राग रंग मन ही न भावे, और कहे गिरधर कबीराए दुख कछु टरत न टारे, और खटकत हैं जिए माह किए जो बिना बिचारे। इसलिए भैया भगवत गीता का दूसरा सूत्र याद करना, जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल पाएगा। हम जैसा करेंगे वैसा ही पाएंगे। एक बार एक सेठ ने बिना बात के नाराज होकर सेठ होने का रुआब अपने मैनेजर पर झाड़ा, मैनेजर पर गुस्सा हुआ। बेचारा मैनेजर अपने सेठ से कुछ नहीं बोला, तो मैनेजर ने अपने स्टाफ को डांटा, गुस्सा तो उसे भी निकाल ली थी। स्टाफ अब किससे क्या बोले, तो स्टाफ के कर्मचारी ने वॉचमैन को डांटा। अब वॉचमैन अपनी गुस्सा कहां निकाले, तो वॉचमैन ने अपनी गुस्सा अपनी लुगाई पत्नी पे निकाली, और उसकी पत्नी ने पति पर तो गुस्सा निकाल नहीं सकती, बिचारी रही होगी हमारे तरफ की, तो पत्नी ने गुस्सा अपने बच्चे पर निकाली, पीट दिया बच्चे को, बच्चे का दिमाग खराब। अब बच्चा किस पे गुस्सा निकाले, तो बच्चे ने एक कुत्ता पे जोर से पत्थर मारा, कुत्ता भागा। अब कुत्ता किस पे गुस्सा निकाले, एक आदमी सामने मिला उसी को काट दिया, और जिसे काटा था वो कोई और नहीं उसी कंपनी का मालिक था। वो सेठ पूरे रात ये सोचता रहा कि आखिर कुत्ता ने हमको क्यों काटा, पर उसे पता ही नहीं चला कि आपने जो कर्म किया उसका परिणाम आपने भोगा। मेरे पागलो, जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल

जैसा कर्म करोगे मेरे प्रियजनों वो फल पाओगे। याद रखना, जो जैसा करता वो भोगता है। हमको लगता है कि हम बुरा कर रहे, कोई देख नहीं रहा। अरे भैया, ठठरी के बरे दुनिया नहीं देख रही, वो बात अलग है, पर देखने वाला तो देख रहा है। हमें लगता हम ऐसा कर रहे कोई नहीं देख रहा। अरे तुम्हारे कहने से, देखने वाले भगवान तो देख रहे। बोलो जय सियाराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो, भगवान तो देख रहे हैं। ऐसे समझो, एक बार एक आदमी चला जा रहा था कुरुक्षेत्र का, रास्ते में दिल्ली जाते समय आम का बाग दिखा। किसका बाग? आम का। उसने सोचा आम का बाग है, बहुत बढ़िया है। तो रास्ते में जब दिल्ली जा रहा था, आम का बाग दिखा, वो आम के बाग में चला गया। लेकिन देखा किसने? आंखों ने। किसने देखा? जोर से बोलो, आम का बाग देखा किसने? आंखों ने देखा तो, पर आंखें चल नहीं सकती। तो देखा आंखों ने, चले पैर। चला कौन? पैर। लेकिन पैर बाग तक तो पहुंच गए, पर आम तोड़ नहीं सकते। देखा आंखों ने, चले पैर, तोड़ा हाथों ने। किसने तोड़ा? हाथों ने। लेकिन हाथ तोड़ तो सकते, पर खा नहीं सकते। तो तोड़ा हाथों ने, खाया मुंह ने। किसने खाया? मुंह ने। अच्छा, मुंह खा तो सकता है पर रख नहीं सकता, रखा पेट ने। इतने में आ गया उस बाग का माली, उसने कहा चोरी कर रहे, सो चार डंडा फटकारी, पिटी बिचारी पीठ। देखा आंखों ने, चले पैर, तोड़ा हाथों ने, खाया मुंह ने, रखा पेट ने, पिटाई पीठ की हुई। बताओ, ऐसा कहीं हो सकता? पीठ का पूरी कहानी में लेना देना नहीं है, पर पिटी पीठ। लेकिन भैया, कर्म का फल महान होता है। पिटी जरूर पीठ, पर जब लाल पड़ गया तो रोई आंखें, क्योंकि देखा आंखों ने था। किसने देखा था? तो जब पिटाई जोरदार हुई तो कौन रोया? आंखें रोई, क्योंकि आंखों ने ही देखा था। इसलिए रामचरितमानस में कलि कुल शेखर श्री तुलसीदास जी महाराज अपनी वाणी में कहते हुए बड़े भाव से कहते हैं।

गीता जी की दूसरी शिक्षा है। मेरी आत्माओं, पहली शिक्षा है कि भीड़ के साथ नहीं, हमें भगवान के साथ होना चाहिए। दूसरी शिक्षा, कर्म के फल से डरना चाहिए, इसलिए बिना विचार करके कर्म नहीं करना चाहिए। श्रीमद् भगवद् गीता जी की तीसरी शिक्षा, सार ले लीजिए पांच बातों में, पूरी गीता जी का सार पांच बातों में बताएंगे। तीसरी शिक्षा क्या है? मृत्यु से नहीं डरो, मौत से मत डरो, मौत के डर से डरो। किससे डरो? मौत से मत डरो, क्योंकि जिसका जन्म हुआ वो मरेगा, जो जन्म लेगा वो मरेगा। आया है

अच्छा, सिंहासन चढ़कर कौन जाएगा? धर्मी सिंहासन चढ़े पापी डंडे खात, दया धर्म करते रहो मानो मेरी बात। इसलिए पागलो, हमें मौत से नहीं डरना, मौत से नहीं डरना, मौत के डर से डरना। मौत का डर मौत से ज्यादा खतरनाक है मेरे पागलो। हम लोगों को ऐसी जिंदगी जीनी चाहिए कि जब कभी मौत आए तो वो भी शर्मा जाए, मैं किस बादशाह को लेने आई। बाबा तुलसीदास कहते, जब तू आया जगत में जग हंसा तू रोए, कुछ करनी ऐसी कर चलो तू हंसे जग रोए। ऐसा काम करके मरना, कौन सा काम? दुनिया वाले रोते रहे, हम हंसते हुए मौत को गले लगाएं। मौत तो शाश्वत सत्य है। एक संत कहते थे, मौत की भी मौत आएगी जब मेरी मौत आएगी, मौत की भी मौत आएगी जब मेरी मौत आएगी। भैया मरना तो तय है। हमारे पास में 80-80 साल के वृद्ध आते हैं, 80-80-90। एक बार कुरुक्षेत्र का आया 95 साल का। हमने कहा और बताओ क्या चाहिए। बोले गुरुजी ऐसी भभूति दे दो कि हम मरे ना। हमने कहा कुछ दिन में ठटरी भरने वाली है और तुम कह रहे मरे ना। अरे ऐसी भभूति हमारे पास होती तो पहले हम ही ना खा लेते, तुम्हें देने के पहले हम ही ना खा लेते। ऐसे ही एक बार हम वहां गए मुंबई, बहुत पहले, पहली बार मुंबई गए। सब मिलने के लिए आए, बागेश्वर बाबा आया। जिनके घर पर हम रुके थे वो एक जड़िया जी हैं, बहुत अच्छे हैं, सज्जन हैं। तो वहां के एक बहुत बड़े फिल्म अभिनेता हमसे मिलने आए, बहुत बड़े एक्टर हैं वो। मिले, लोगों ने परिचय करवाया। हमने कहा बहुत अच्छा, बड़े बड़े लोग आए। हमने कहा बहुत अच्छा, स्वागत। वे बोले हमने सुना बाबा जी आप पर्चा बनाते। हमने कहा हमने भी यही सुना है कि हम पर्चा बनाते। तो बोले बाकी तो सब ठीक है, हम चमत्कारों पर उतना ज्यादा भरोसा नहीं करते, हम तो स्पिरिचुअल आदमी हैं। लेकिन हमने सुना आप पर्चा बनाते हो, हनुमान जी की कृपा है, आप हमारे पर्चे में ऐसा कुछ लिख के दो जो कभी टले ना, कटे ना, शाश्वत सत्य हो। हमने कहा लाओ पेन कागज। हमने पेन कागज लिया और उनके कागज पर लिखा, मरना तय है, तुम्हारे बाप में दम हो तो बच जा। उन्होंने कहा था कि ऐसा लिख कर दो जो कभी कटे ना, जो कभी झूठा ना पड़े। हमने लिख दिया मरना तय है, तेरे बाप में दम हो तो बच जा। उसी दिन से पागल हो गया। बोले गुरुजी हम गई चेले। पर भैया ये बात उदाहरण की है, सत्य तो यह है। गीता जी का ज्ञान, गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण श्रीमद भगवत गीता में श्री कुरुक्षेत्र में खड़े होकर के पार्थ अर्जुन को कहकर सुनाते हैं। नहीं

0: न सोख्यति मारुतः।
1: भगवान श्री कृष्ण कहते अर्जुन, आत्मा को ना कोई मार सकती है, ना कोई जला सकती है, ना कोई काट सकता। आत्मा तो शाश्वत है, मरता क्या है,

0: शरीर मरता, जैसे नए कपड़े पहनने के लिए हम लोग पुराने कपड़े लेते, वैसे ही आत्मा भी नया शरीर लेने के लिए पुराना शरीर छोड़ती है। इससे सत्य है कि हमें मरना नहीं, मरता तो शरीर है लेकिन हम लोग फिर भी हैरान है। देखो कितनी गजब बात, मरना सबको है पर मरना कोई नहीं चाहता, मरना सबको है मरना कोई नहीं चाहता। हम तो भैया एक ही बात कहेंगे, अरे मरना तो है ही है पर काम कुछ ऐसा कर जा, मरने से पहले यार इस जग में अपना नाम रख जा। ये तीसरी शिक्षा श्रीमद् भगवद गीता की, क्या मृत्यु से ना डरे, मौत के डर से डरे। चौथी शिक्षा कौन सी, रोगी नहीं भोगी नहीं कर्मयोगी बनो। क्या बनो, जोर से बोलो, कर्मयोगी। रोगी मत बनो न भोगी बनो, कर्मयोगी बनो। जो कर्म करता है बुरा ना मानना, कर्म करोगे धक्के लगेंगे पर ठोकरें ही इंसान को महान बनाती है। ठोकरें खाने से घबराओ मत, कोई धक्का लगे घबराओ मत। शेर जब लंबी छलांग लगाता है तो शेर की एक आदत होती है, वो कुछ पग पीछे आता है, पहले पीछे आता है फिर लंबी छलांग लगाता है। अगर ठोकर लगे तो यही समझ लेना चाहिए हम कुछ पग पीछे आ गए हैं, मतलब अब लंबी छलांग लगाने वाले। हमारे पूज्य दादा गुरुजी कहते थे, बेटा दुख का झूला जितना पीछे तक जाएगा, सुख का झूला उतना ही आगे आएगा। इसलिए डरो मत, कर्म करो, डरो मत मेरे पागलो। जो कर्म से जीता है, कर्म करता है, वही इस दुनिया में महान होता है। और ठोकरें खाकर अगर तुम डर गए, बुरा ना मानना, राम जी बन को गए, राम जी बन गए सो बन गए, राम जी बन गए सो बन गए, ना राम जी बन जाते न राम जी भगवान बन पाते। राम जी बन गए इसलिए वो बन गए, इससे सिद्ध होता है कि अगर हमें ठोकरें लगे तो घबराना नहीं है। माई बाप एक कथा है बहुत प्यारी। एक बार एक मूर्तिकार से एक व्यक्ति ने कहा, हमें एक पत्थर की मूर्ति चाहिए। उसने कहा मिल जाएगी, डेट दे दी, इस तारीख को आ जाना। मूर्तिकार ने दो पत्थर लिए, पहले पत्थर पर छेनी रखी, हथौड़ा से मारने लगा तो वो पत्थर रोने लगा। क्या बात भैया, हमें बहुत दर्द हो रहा, हथौड़ा मत मारो, छेनी मत मारो, हमें दर्द हो रहा, हमें नहीं बनना भगवान, हमें मूर्ति नहीं बननी, हमें मत बनाओ। जब ज्यादा रोने लगा तो मूर्तिकार ने कहा भाड़ में जाओ, छोड़ दिया उस पत्थर को। दूसरा पत्थर लिया, उस पर छेनी हथौड़ा मारा, वो दर्द सहता रहा। जब वो पत्थर दर्द सहता रहा, सहते सहते वो पत्थर से परमात्मा बन गया। जिसने मूर्ति तय की थी वो दी हुई तारीख पर आया, उसने मूर्ति क्रय की।
1: क्या आपके वैवाहिक जीवन में छोटी छोटी नाराजगियां चलती रहती हैं? क्या आपके वैवाहिक जीवन में बात, वाद, विवाद और झगड़े तक पहुंच गई है? क्या आपका वैवाहिक जीवन टूटने की कगार पर है? कौन सी हैं वैवाहिक जीवन की छोटी बड़ी समस्याएं और क्या है उनका समाधान? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
2: Tune in's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
3: Ready to listen to all your favorite audio? With TuneIn, you can catch your favorite music, news, sports, and more anytime, anywhere, across all your devices. From your smart speakers to smartphone, from your car to your TV. With TuneIn, you can enjoy all your favorite stations wherever you are. Plus, you can fire it up with voice command. Just ask your smart device to play TuneIn and start listening.
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
9: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें

0: shouldn't have to choose between speed, reliability, and value. With Spectrum fiber-powered internet, you get all three for just $40 a month. No contracts, no commitment. Just fast and reliable fiber-powered internet you can count on. Switch today and get it for just $40 a month. Visit spectrum.com/40 for full details. Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply.
1: No ticket, no line, just showtime. Qwello Concerts is the destination for music lovers. With thousands of electrifying concerts and music documentaries. Try Qwello Concerts, that's Q-E-L-L-O, for free on Amazon Prime Video today.
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है. इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर.
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है. इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे. तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर.
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं. खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर. खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है. खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है. ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे.
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं.
5: अविश्वास में विश्वास बसता है.
2: जो हमें अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है.
4: गुड न्यूज टुडे.
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है. इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर.
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को.
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा. ज्वाइन SRM ISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in.
9: आज देश को मिलेगी 20,000 करोड़ से ज्यादा की विकास योजनाओं की सौगात. सूरत में 18,000 करोड़ के विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री मोदी. दमन और लक्षद्वीप को भी मिलेगा विकास का बूस्टर. दमन में हवाई अड्डा, टर्मिनल और अस्पताल का होगा उद्घाटन. लक्षद्वीप में बंदरगाह विकास का शिलान्यास करेंगे पीएम. दिल्ली NCR में बारिश के बाद मौसम हुआ सुहाना. तापमान में गिरावट से लोगों को मिली गर्मी से राहत. मौसम विभाग ने आज भी आधी बारिश का जारी किया येलो अलर्ट. आज मनाया जा रहा है विश्व पर्यावरण दिवस. पर्यावरण को लेकर देशभर में कार्यक्रमों का आयोजन. सूरत में कलाकार ने प्लास्टिक की बोतलों से बनाई पीएम

0: का विशाल पोस्टर। महंगे डीजल पेट्रोल और प्रधानमंत्री मोदी की अपील का असर, मुंबई में बढ़ा कारपुलिंग का ट्रेंड, 30-40% बढ़ा कारपुलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन। रिजर्व बैंक आज नई मौद्रिक नीति का करेगा ऐलान, विशेषज्ञों के मुताबिक मौजूदा हालात में रेपो रेट में कटौती की उम्मीद कम।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
0: आदेश को मिलेगी 20,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात, सूरत में 18,000 करोड़ के विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। सूरत दौरे के बाद केंद्र शासित प्रदेश दमन पहुंचेंगे पीएम, दमन में हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का करेंगे उद्घाटन, दमन में कनेक्टिविटी और पर्यटन को मिलेगी नई उड़ान। दमन के लोग बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं को भी उनको सौगात मिलेगी, नमो अस्पताल का भी उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री, कन्वेंशन सेंटर एनआईएफटी कैंपस का करेंगे शिलान्यास। 8वीं बार दमन दौरे पर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी, पीएम के दौरे को लेकर दमन में जबरदस्त तैयारी, जगह जगह लगाए गए पीएम के बड़े बड़े कटआउट्स। प्रधानमंत्री आज लक्षद्वीप के कल्पेनी द्वीप और कदमत द्वीप के पूर्वी और पश्चिमी किनारों पर बंदरगाह सुविधाओं के विकास का भी करेंगे शिलान्यास, लक्षद्वीप पे विकास और पर्यटन को मिलेगा इससे बढ़ावा। प्रधानमंत्री के दौरे से पहले सूरत से आई क्रिएटिविटी की तस्वीर, एक कलाकार ने प्लास्टिक की 17,000 रिसाइकल बोतलों से बनाई प्रधानमंत्री की विशाल पोस्टर। आज दुनिया भर में मनाया जा रहा है विश्व पर्यावरण दिवस, पर्यावरण संरक्षण और पर्यावरण को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए देश भर में कार्यक्रमों का आयोजन। दिल्ली के श्रम शक्ति भवन में मेरा युवा भारत यूथ एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म से जुड़े कार्यक्रम का आयोजन, केंद्रीय युवा और खेल मंत्री मनसुख मांडविया हुए शामिल। रामलला के दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं का ध्यान खींच रहे हैं भित्ति चित्र, राम चित्र राम मंदिर की दीवारों पर बनाए गए हैं, रामायण के प्रसंगों पर आधारित भित्ति चित्र। राम मंदिर के चबूतरे पर बनाए गए हैं रामायण थीम वाली कलाकृतियां, श्री राम और रामायण के प्रसंगों पर बनी कलाकृतियां श्रद्धालुओं के अनुभव को बना रही हैं समृद्ध। अहमदाबाद में पहली विश्व योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का शुभारंभ, समारोह में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, योग गुरु बाबा रामदेव समेत कई हस्तियां हुई शामिल। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअली किया विश्व योगासन चैंपियनशिप का उद्घाटन, योग को बताया मानवता के लिए सबसे बड़ा तोहफा, विश्व में बढ़ती लोकप्रियता की तारीफ की। प्रतियोगिता में 60 से ज्यादा देशों के 500 से ज्यादा एथलीट ले रहे हिस्सा, ईका एरेना में 8 जून तक चलेगी प्रतियोगिता। प्रतियोगिता में पारंपरिक योगासन के साथ कई तरह की प्रतिस्पर्धाओं का होगा आयोजन, वी द लायन रखा गया है पहली विश्व योगासन खेल प्रतियोगिता का शुभंकर। योगासन को प्रतिस्पर्धी विश्व खेल के रूप में स्थापित करना और 2036 के ओलंपिक में शामिल कराने की दिशा में कदम बढ़ाना प्रतियोगिता का मकसद। उत्तर प्रदेश के झांसी में महिलाओं ने केक काटकर मनाया मुख्यमंत्री योगी का जन्मदिन, बोले 2027 में एक बार फिर यूपी के मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश का एक्सप्रेसवे नेटवर्क प्रदेश में विकास को दे रहा नया आयाम, प्रदेश को तेज कनेक्टिविटी, यात्रा व्यापार और विकास को मिल रही है इससे मजबूती। महंगे डीजल पेट्रोल और प्रधानमंत्री मोदी की अपील के बाद मुंबई में बढ़ा कारपुलिंग का ट्रेंड, कारपुलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन में 30-40% की हुई बढ़ोतरी। असम में आज हिमंता मंत्रिमंडल का होगा विस्तार, 9 नेता ले सकते हैं मंत्रिपद की शपथ। रिजर्व बैंक आज जारी करेगा नई मौद्रिक नीति, रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा दोपहर 12 बजे नई मौद्रिक नीति का करेंगे ऐलान। केरलम पहुंचा मॉनसून, मौसम विभाग ने दक्षिणी पश्चिमी मॉनसून के केरल पहुंचने की पुष्टि की। पूरे केरलम, माहे और लक्षद्वीप के द्वीपों पर मॉनसूनी बारिश, देश के उत्तरी हिस्सों की ओर बढ़ेगा मॉनसून। मौसम विभाग ने देश भर में भारी बारिश की भी दी चेतावनी। भीषण गर्मी झेल रहे इलाकों में लोगों को मिलेगी इससे राहत। आईएमडी के मुताबिक अगले 2 से 3 दिन में आगे बढ़ेगा मानसून। गोवा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के चुनिंदा हिस्सों में, कर्नाटक, तमिलनाडु के साथ कुछ पूर्वोत्तर राज्यों में भी पहुंचेगा मानसून। अगले 2 से 3 दिन में पहाड़ी राज्यों में आधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में जबरदस्त बारिश से गिरा तापमान। तेज आंधी और बारिश से दोपहर में हुआ अंधेरा, बारिश के कारण तापमान गिरने से करोड़ों लोगों को गर्मी से राहत मिली। कुछ ही देर की बारिश से सड़कों पर लगा पानी, कई जगह धीमी हुई ट्रैफिक की रफ्तार। नोएडा में भी तेज आंधी के साथ हुई बारिश, लोगों को जलती चुभती गर्मी से राहत मिली। गाजियाबाद में भी तेज हवाओं के साथ चली धूल भरी आंधी, बारिश ने लोगों को गर्मी से दिलाई राहत। जयपुर में सूरज की तपिश से लोगों को राहत मिली, आसमान से बरसे बादल, मौसम हुआ सुहाना। देहरादून में भी हुई बारिश, उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में भी हल्की ठंडक का एहसास। भोपाल में भी बरसे बादल, बढ़ती गर्मी के बीच लोगों ने ली राहत की सांस। हरियाणा के सोनीपत में भी बदला मौसम, तेज हवाओं के बीच हुई जोरदार बारिश। पहाड़ों पर भी राहत की फुहार, शिमला में झूम के बरसे बादल, मौसम हुआ सुहाना। केदारधाम में इन दिनों पल पल बदल रहा है मौसम, बादलों से घिरा नजर आया मंदिर परिसर। कभी बारिश तो कभी धूप के बीच मौसम की आंख मिचोली जारी। धाम में ठंड में हुई बढ़ोतरी, धाम से दर्शन कर लौटे यात्रियों से फीडबैक ले रहा है प्रशासन। अमरनाथ यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम, अनंतनाग पुलिस ने शुरू किया पहचान ऐप। कांवड़ यात्रा के लिए दिल्ली सरकार बढ़ा सकती है आयोजन समितियों को दी जाने वाली धनराशि, यात्रा के सुचारू संचालन के लिए फैसला। उत्तर प्रदेश बोर्ड के छात्रों के पास सुधार का एक और मौका, इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए 27 जून तक कर सकेंगे आवेदन। लद्दाख में पारंपरिक उत्सव के बीच द्रास समर कार्निवल 2026 का भव्य शुभारंभ, समारोह शुरू होने के साथ ही केंद्र शासित प्रदेश में उत्सव का दौर शुरू। कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में सीरिया की ओर से आयोजित कार्निवल 7 जून तक चलेगा, स्थानीय खेल संस्कृति और परंपरा का दिखेगा संगम। द्रास समर कार्निवल में हॉर्स पोलो, टेंट पैगिंग और तीरंदाजी की होती है प्रतियोगिताएं, खेलों को बढ़ावा देना और सेना जनता के बीच संबंध मजबूत करना मकसद। जम्मू कश्मीर में बेहतर मौकों की तलाश में कारोबार का रुख कर रहे हैं पढ़े लिखे युवा, रोजगार का नया माध्यम बन रहा है प्रदेश का स्टार्टअप इकोसिस्टम। तिरुवनंतपुरम में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दमकल विभाग को मिला हाईटेक उपकरण, प्रदेश के किसी एयरपोर्ट पर पहली बार तैनात किया गया उन्नत क्रैश फायर टेंडर। गुप्तखाल ट्रेकिंग कर लौटा इस साल का पहला दल, बर्फबारी और मौसम की चुनौती के बीच की चढ़ाई। गमशाली से 26 मई को गुप्तखाल के लिए रवाना हुआ था यह दल, समूह में शामिल थे 7 ट्रेकर। 5,807 मीटर की ऊंचाई पर है सबसे दुर्गम ट्रेकिंग रूटों में शुमार गुप्तखाल ट्रेकिंग रूट, 10 जन का था ट्रेकिंग अभियान। इस दल में दिल्ली, पंजाब, कोलकाता और महाराष्ट्र के ट्रेकिंग के शौकीन शामिल, गमशाली से होते हुए जब गुप्तखाल पहुंचा ये दल। सीक्रेट पास के नाम से मशहूर है ये यात्रा, हिमालय के सबसे जोखिम भरे और साहसिक ट्रैकों में नाम शुमार। शिरडी साईं बाबा मंदिर में भक्त ने किया बेशकीमती दान, साईं बाबा मंदिर को अर्पण किया सोने का मुकुट। दोस्तों 37 ग्राम सोने से बना है ये सुंदर मुकुट, करीब 34,70,000 रुपए बताई गई इसकी कीमत। शानदार मुकुट पर की गई है सुंदर नकाशी, सफेद नगों के बीच रंग नगों से लिखा गया है ओम। पंजाब के अजय कुमार गोयल ने साईं को चढ़ाया ये सुंदर मुकुट, कैंसर से पीड़ित पिता के लिए 2 साल की ज्यादा जिंदगी की मुराद पूरी होने पर दान किया। देश दुनिया में है साईं के लाखों भक्त, हर साल अपनी मनोकामना पूरी होने पर साईं के दरबार में अनगिनत चीजें करते हैं भेंट। गुजरात के एक परिवार ने ली राहत की सांस, विदेश में नौकरी के झांसे में फंसी 2 सगी बहनों का सफल रेस्क्यू, आनंद से सांसद के प्रयासों और विदेश मंत्रालय की मुस्तैदी का असर। नौकरी के लालच में गुजरात से पहले थाईलैंड और फिर लाओस पहुंची 2 बहनों का रेस्क्यू किया गया, ऑपरेशन महिसागर 2.0 चलाकर इंटरनेशनल मानव तस्करी गैंग से बचाई गई। बेटियों से संपर्क टूटने के बाद परिवार ने सांसद से लगाई थी गुहार, सांसद मितेश पटेल के प्रयासों और विदेश मंत्रालय की तत्परता से बची बंधक बनाकर रखी गई 2 बहनें। लाओस में भारतीय दूतावास ने एजेंसी की मदद से पहले दोनों का पता लगाया और फिर लाओस की सेना की मदद से छापा मारकर दोनों को सकुशल छुड़ाया। मानव तस्करी गिरोह के चंगुल से छूटने के बाद सुरक्षित हैं दोनों लड़कियां, परिवार ने ली राहत की सांस, कागजी प्रक्रिया पूरी होने के बाद स्वदेश लौटेंगी दोनों बहनें। महाराष्ट्र के जालना का किसान बना दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा, 2 एकड़ जमीन में आम के बाग से 8 लाख रुपए की कमाई की। प्रयोगशील किसान हनुमंत राव काले ने पारंपरिक खेती की जगह जैविक खेती को अपना काम और अलग पहचान बनाया, आम की बागवानी से कमाए लाखों रुपए। डोमे गांव के रहने वाले रिटायर्ड कृषि अधिकारी हनुमंत राव काले ने मिक्स क्रॉपिंग का किया सफल प्रयोग, 2 एकड़ में लगाए 116 तरह के लगभग 500 आम के पेड़। हनुमंत राव काले ने आधुनिक तकनीक, जैविक खेती और पानी के सुनियोजित उपयोग से बदली तस्वीर, सूखा प्रभावित इलाके में खिलाई हरियाली। हनुमंत राव काले के प्रयोग की पूरे इलाके में चर्चा, हनुमंत राव ने अपने बाग में आम के साथ पेरू मतलब अमरूद, चीकू, मौसम्बी, संतरा, नारियल, काजू, आंवला, जामुन के भी पेड़ लगाए।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोर धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
2: क्या आपके वैवाहिक जीवन में छोटी छोटी नाराजगियां चलती रहती हैं? क्या आपके वैवाहिक जीवन में बात, वाद, विवाद और झगड़े तक पहुंच गई है? क्या आपका वैवाहिक जीवन टूटने की कगार पर है? कौन सी हैं वैवाहिक जीवन की छोटी बड़ी समस्याएं और क्या है उनका समाधान? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
3: TuneIn's how-to. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
4: TuneIn is your MVP for everything sports audio. With live sports and a full lineup of podcasts and sports talk shows, you'll get all the sports action you'll ever need. Get updates on your favorite sports teams and alerts when they play. Just follow your favorite teams on TuneIn and you'll receive notifications. Plus, you'll also get recommendations based on your favorite teams. Start following your team and stay in the loop.
5: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज़ टुडे में।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: जैज फैंस रिजॉइस, स्टिंगरे जैज ऑफर्स रिवेटिंग कॉन्सर्ट फिल्म्स एंड डॉक्यूमेंट्रीज फ्रॉम द वर्ल्ड्स मोस्ट प्रेस्टिजियस स्टेजेस। व्हेदर यू आर अ लाइफलॉन्ग कॉनोसूर और जस्ट गेटिंग अप टू टेम्पो, स्टिंगरे जैज नाउ अवेलेबल फॉर फ्री ऑन प्लूटो टीवी। स्ट्रीम नाउ पे नेवर।
0: साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

आपका, आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे बृहस्पति के शुभ योगों के बारे में, और अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति के शुभ योग हैं तो इसका जीवन पर प्रभाव कैसा पड़ता है इसको जानने का प्रयास करेंगे, और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 5 जून 2026 दिन शुक्रवार, तिथि है अधिक ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि, नक्षत्र है श्रवण नक्षत्र, चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय प्रातः 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक, पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 5 जून 2026 दिन शुक्रवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य देव विद्यमान हैं वृषभ राशि में, बुध और शुक्र मिथुन राशि में, बृहस्पति कर्क राशि में, केतु सिंह राशि में, चंद्रमा मकर राशि में, राहु कुंभ राशि में, शनि फिलहाल विद्यमान है मीन राशि में, और मंगल संचरण कर रहे हैं मेष राशि में। आज हम बृहस्पति के शुभ योगों की बात कर रहे हैं, तो बृहस्पति का पहला शुभ योग कौन सा है और इसके प्रभाव क्या हैं? बृहस्पति का पहला और सबसे सशक्त जो राजयोग है, जो शुभ योग है, उसका नाम है हंस योग। हंस योग जो है ये बृहस्पति का पंच महापुरुष योग है। बृहस्पति जब कुंडली में कर्क राशि, धनु राशि या मीन राशि में हो तो हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग बनता है, लेकिन इसके लिए बृहस्पति को लग्न से केंद्र में होना चाहिए। अगर कुंडली में हंस नामक योग है तो इससे व्यक्ति तपस्वी, विद्वान और ज्ञानी होता है, जीवन में धर्म के रास्ते पर, ज्ञान और विद्या के रास्ते पर चलता है। जिनकी कुंडलियों में हंस योग होता है ऐसे लोग बिना प्रयास के जीवन में नाम, यश और सम्मान पा जाते हैं, और जिनकी कुंडलियों में हंस योग होता है ऐसे लोग राजनीति के क्षेत्र में, कानून के क्षेत्र में, शिक्षा में, धर्म के क्षेत्र में, जीवन में बड़ी सफलताएं प्राप्त करते हैं।
ऐसा देखा गया है कि इनके ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा होती है, इनके ऊपर ईश्वर का विशेष वरदान होता है। अगर कुंडली में हंस योग है तो आपके पूर्व संस्कार, ईश्वर की कृपा और जीवन का सहयोग आपको प्राप्त होगा। लेकिन हंस योग वालों को हमेशा अहंकार से बचाव करना चाहिए, अहंकार से बचना चाहिए। इन लोगों को हमेशा खाने की आदत पर भी ध्यान रखना चाहिए। ज्यादा खाने के चक्कर में कभी कभी ये लोग मोटापे के शिकार भी हो जाते हैं। अब जानते हैं बृहस्पति के दूसरे शुभ योग के बारे में और इसके प्रभाव के बारे में। बृहस्पति का जो दूसरा राजयोग है या दूसरा शुभ योग है, उसका नाम है गजकेसरी योग। अगर बृहस्पति और चंद्रमा एक दूसरे से केंद्र में बैठे हों तो गजकेसरी योग जीवन में बन जाता है। गजकेसरी योग सामान्य व्यक्ति को भी विशेष बना देता है, सामान्य व्यक्ति के अंदर भी विशेषता पैदा कर देता है। और अगर आपकी कुंडली कर्क लग्न की हो, वृश्चिक लग्न की हो, मीन लग्न की हो और कुंडली में गजकेसरी योग हो तो ये विशेष प्रभावशाली होता है। जिनकी कुंडलियों में गजकेसरी योग होता है, ऐसे लोग शासन में और राजनीति में विशेष रूप से सफलता पाते हैं। और ऐसे लोग जीवन में जिस भी क्षेत्र में जाते हैं, उस क्षेत्र में खूब सफल होते हैं। छोटे से छोटे क्षेत्र में भी जाएंगे तो वहां पर करियर की ऊंचाइयां हासिल करेंगे, ऐसा गजकेसरी योग से हो जाता है। इस योग के होने पर व्यक्ति को शिव जी की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि शिव जी की उपासना करने से इस योग की शुभता बनी रहती है। और अगर संभव हो तो पीला पुखराज भी धारण करना चाहिए, पीला पुखराज धारण करना अच्छा होता है। बृहस्पति के तीसरे शुभ योग की बात भी करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जानते हैं कि बृहस्पति का तीसरा शुभ योग कौन सा है और इसके प्रभाव क्या हैं। बृहस्पति का तीसरा शुभ योग या तीसरा राजयोग है केंद्रस्थ बृहस्पति। क्या होता है ये? देखिए, बृहस्पति केंद्र में काफी मजबूत माना जाता है। कुंडली के लग्न, चतुर्थ, सप्तम और दशम भाव को केंद्र कहते हैं। अगर इसमें बृहस्पति बैठे हों, विद्यमान हों, तो ये बृहस्पति काफी मजबूत होते हैं। और उसमें भी अगर बृहस्पति लग्न में बैठा हो
तो अत्यंत शक्तिशाली हो जाता है। केंद्र में बैठा हुआ बृहस्पति कुंडली के तमाम दोषों को नष्ट कर देता है और केंद्र में बैठा हुआ बृहस्पति व्यक्ति की आयु लंबी कर देता है और व्यक्ति को ज्ञानी बना देता है। लग्न में अगर बृहस्पति बैठा हो, यानी केंद्र में भी लग्न में अगर बैठा हो, तो बृहस्पति कुंडली के सारे दोषों का अकेले नाश करने में सक्षम होता है। अगर आपकी कुंडली में केंद्र में बृहस्पति बैठा है, तो ऐसा बृहस्पति होने पर धर्म स्थानों पर जरूर जाएं और अगर नियमित रूप से आप तिलक लगा सकें, मंदिरों में दर्शन कर सकें, लोगों का आदर और सम्मान कर सकें, तो आपके लिए और भी ज्यादा उत्तम होगा। तो केंद्र में अगर बृहस्पति बैठा है और उसका फायदा लेना चाहते हैं, तो जीवन में पवित्रता से रहने पर आपको लाभ होगा। तो आज हमने बात की बृहस्पति के शुभ योगों के बारे में। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए एक लकी टिप। अगर संतान की उन्नति को लेकर के तनाव रहता हो, संतान की उन्नति को लेकर के चिंताएं रहती हों, तो हर बृहस्पतिवार को शिव मंदिर जाएं, माता या पिता, और शिवलिंग पर पीले फूल अर्पित करके अपनी संतान के लिए प्रार्थना करें, संतान के जीवन में उन्नति होगी। अब जान लेते हैं दिनांक 5 जून 2026 दिन शुक्रवार का सक्सेस मंत्र क्या है।

लक्ष्मी को गुलाब का फूल अर्पित करिए। घर से निकलते समय उस फूल को अपने पास रख लीजिए। अगर प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। TIT भोपाल, Gen Z's gateway to unbeatable placements.
3: आज देश को मिलेगी 20,000 करोड़ से ज्यादा की विकास योजनाओं की सौगात। सूरत में 18,000 करोड़ के विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। दमन और लक्षद्वीप को भी मिलेगा विकास का बूस्टर। दमन में हवाई अड्डा, टर्मिनल और अस्पताल का होगा उद्घाटन। लक्षद्वीप में बंदरगाह विकास का शिलान्यास करेंगे पीएम। दिल्ली एनसीआर में बारिश के बाद मौसम सुहाना, तापमान में गिरावट से लोगों को मिली गर्मी से राहत। मौसम विभाग ने आज भी आंधी बारिश का जारी किया येलो अलर्ट। आज मनाया जा रहा है विश्व पर्यावरण दिवस, पर्यावरण को लेकर देश भर में कार्यक्रमों का आयोजन। सूरत में कलाकार ने प्लास्टिक की बोतलों से बनाया पीएम का विशाल पोस्टर। महंगे डीजल पेट्रोल और प्रधानमंत्री मोदी की अपील का असर, मुंबई में बढ़ा कार पुलिंग का ट्रेंड। 30-40% बढ़ा कार पुलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन। नई मौद्रिक नीति का करेंगे ऐलान, विशेषज्ञों के मुताबिक मौजूदा हालात में रेपो रेट में कटौती की उम्मीद कम।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबर।

0: नमस्कार, स्वागत है आपका गुड लक टुडे में और मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: नमस्कार।
0: तो आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे वैवाहिक जीवन में छोटी बड़ी समस्याओं के बारे में। जी हाँ, अक्सर ऐसा होता है हमारे जीवन में छोटी बड़ी समस्याएं जो है वो आती रहती हैं, जिससे पति पत्नी के बीच में तनाव पैदा होता है। तो इन समस्याओं को दूर करने के समाधान क्या हैं और क्या होते हैं ये कारण, इस पर विस्तार से करेंगे हम पंडित जी से चर्चा। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज का गुड लक मंत्र।
1: जो कोई भी व्यक्ति चारों समय सुबह, दोपहर, शाम और रात चारों समय ईश्वर से प्रार्थना करता है, कृपा के लिए बार बार कहता है, उसको जीवन के हर क्षेत्र में हमेशा सफलता मिलती ही है। ईश्वर की कृपा उसके ऊपर बनी रहती है।
0: और चलिए अब जान लेते हैं 5 जून 2026 यानी कि शुक्रवार का पंचांग क्या है।
1: दिनांक 5 जून 2026 दिन शुक्रवार, तिथि है अधिक ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि, नक्षत्र है श्रवण नक्षत्र, चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय प्रातः 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
0: और आइए अब जानते हैं पंडित जी से कि अगर पति पत्नी के बीच में छोटी छोटी बातों पर नाराजगी लगातार रहती हो तो इसे दूर करने के उपाय क्या हैं?
1: जी देखिए, आज हम आपको बता रहे हैं कि आपके वैवाहिक जीवन में जो छोटी छोटी समस्याएं आती हैं या कभी बड़ी समस्याएं आती हैं उनका कारण क्या है, और अगर आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आ रही हैं तो इससे बचने के उपाय क्या हैं। सबसे पहले जानते हैं, बात अगर नाराजगी की हो, पति पत्नी में छोटी छोटी बातों पर अगर नाराजगी रहती हो तो क्या करेंगे। देखिए, कभी कभी कुछ पति पत्नियों में रोज नाराजगी रहती है, जिस कारण से वैवाहिक जीवन सुखी नहीं रहता, और इसके पीछे भूमिका होती है ग्रह मैत्री की, और तत्वों की समस्या होती है, दोनों के एलिमेंट बिल्कुल अपोजिट हो जाएं तो दिक्कतें ज्यादा होती हैं। अगर आपकी पत्नी हर छोटी छोटी बात पर बार बार नाराज होती हो तो पति नियमित रूप से सूर्य भगवान को जल दें, और सूर्य भगवान को जल देने के बाद ही अन्न ग्रहण करेंगे, ये नियम पतिदेव बना लेंगे। अगर पति बार बार नाराज होते हों, पति हर छोटी बात पर नाराज होते हों, तो पत्नी सोमवार को शिव जी की आराधना करेंगी, एक लोटा जल ले जाकर शिवलिंग पर चढ़ाएंगी और सफेद वस्तुओं का दान करेंगी। चावल, चीनी, दूध, इसका दान हर सोमवार को करेंगी। यानी अगर पत्नी नियमित रूप से शिव जी की पूजा करें और सोमवार को सफेद वस्तुओं का दान करें तो पति की जो बार बार की नाराजगी है वो नाराजगी दूर हो जाएगी।
0: और चलिए वक्त हो गया आज के राशिफल के बारे में जानने का, तो जानते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का क्या है राशिफल।
1: मेष राशि, धन का लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धार्मिक कार्य में व्यस्त रहेंगे, किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, संतान पक्ष की उन्नति होगी, छोटी छोटी बातों पर परेशान ना हो, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, पारिवारिक समस्या हो सकती है, वाहन सावधानी से चलाएं, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें, सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।
0: और आइए अब जानते हैं कि अगर पति पत्नी के बीच नाराजगी से ऊपर झगड़े तक बात पहुंच जाए तो उसके लिए क्या समाधान करने चाहिए।
1: बहुत बार ऐसा होता है कि छोटी सी नाराजगी होती है और ये नाराजगी बढ़ते बढ़ते झगड़े तक पहुंच जाती है। छोटी सी बात शुरू होती है, झगड़ा भयंकर होने लगता है, पति पत्नी में लगता है कि अब क्या हो जाएगा, कुछ पता नहीं है। तो बात नाराजगी से शुरू होकर झगड़े तक पहुंचे तो कारण क्या है? आम तौर पर इसके पीछे मंगल और सूर्य होते हैं। अगर पति पत्नी के बीच में केवल बहस होती हो, केवल ऊंची आवाज में तेज तेज वाद विवाद करते हों, तो हर शनिवार को पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करें और सरसों के तेल का दीपक जलाएं, फर्क पड़ेगा। अगर बात मार पीट तक पहुंच जाती हो, शारीरिक बल प्रयोग तक पहुंच जाती हो, चाहे पत्नी मारपीट करे चाहे पति करें, केवल पति ही मारपीट करते हैं ये जरूरी नहीं है। तो पति मारपीट करें या पत्नी मारपीट करें तो किसी भी तीन शनिवार को अपने वजन के बराबर, दसवें हिस्से के बराबर काले तिल का या काली उड़द की दाल का दान किसी निर्धन व्यक्ति को या धर्म स्थान में जा करके करिएगा। अगर ये उपाय आप करते हैं तो पति पत्नी के बीच में जो मारपीट है, जो हिंसा है, जो वायलेंस है, वो काफी हद तक समाप्त हो जाएगा।
0: और आइए जानते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का क्या है राशिफल।
1: कर्क राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं, स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर में नए अवसर मिलेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, करियर में सफलता मिलेगी, संतान पक्ष की उन्नति होगी, धन की स्थिति उत्तम बनी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन की स्थिति में सुधार होगा, लेकिन परिवार में बेवजह के विवाद ना हो, बेवजह का तनाव ना हो, इसका ध्यान रखिएगा। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: और चलिए अब गुड लक में वक्त हो गया आज के सवालों का और पंडित जी द्वारा दिए जाने उनके जवाबों का। तो जानते हैं पंडित जी से ही कि आज का पहला सवाल वो किसका ले रहे हैं।
1: जी, आज का पहला प्रश्न आरती अग्रवाल ने हमें लिखा है और आरती हमें मेल लिखती हैं गुड़गांव से। इनकी जन्म की तारीख है 14 जून 1980, जन्म का समय रात में 9:20, जन्म स्थान है आगरा। आरती कह रही हैं कि मैं पहले नौकरी करती थी और अब मैं नौकरी छोड़ चुकी हूं पिछले 2 साल से, और अब मैं अपना कोई व्यापार करना चाहती हूं, तो कौन सा व्यापार करना मेरे लिए बेहतर रहेगा। आरती, आपकी कुंडली के हिसाब से आपकी बोलने की, समझाने की, सलाह देने की क्षमता अच्छी है। अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में जाएं, समझाने या सलाह देने वाले क्षेत्र में जाएं तो इन क्षेत्रों में आप ज्यादा सफल होंगी। एजुकेशन या एजुकेशन काउंसलर जैसा कोई काम करें अपना स्वयं का और इसी समय शुरू करें तो आप सफल रहेंगी। आपका करियर और आपका काम बेहतर हो इसके लिए एक पन्ना बनवा करके पहन लें, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना धारण करें, रोज सुबह सूर्य देव को जल चढ़ा करके प्रार्थना करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
0: और आइए अब जानते हैं कि अगर आपके मन में भी कोई सवाल है और आप चाहते हैं पंडित जी से पूछना तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं और हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। तो चलिए आज का दूसरा सवाल देखते हैं, पंडित जी किसका लेते हैं।
1: जी अगला प्रश्न विनीता जी ने हमें लिखा है और विनीता जी हमें मेल लिखती हैं लखनऊ से। इनकी जन्म की तारीख है 18 सितंबर 1994। जन्म का समय सुबह के 7:35। जन्म स्थान है शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश। विनीता जी कह रही हैं कि मेरा विवाह अब तक नहीं हो पाया है तो मेरा विवाह कब तक होगा और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। विनीता जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके विवाह की संभावना साल 2027 के मध्य में दिखाई दे रही है। साल 2027 के सेकेंड हाफ में जून से लेके दिसंबर तक आपका समय ज्यादा बेहतर है, इस समय में आपका विवाह होना चाहिए। आपको वैवाहिक जीवन में सावधानी रखनी होगी और अगर कुंडली मिला करके विवाह करें तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। एक ओपल बनवा करके पहन लें, लगभग 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल पहने, रोज सुबह और रोज शाम 108 बार ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का अगर जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा।
0: और आइए अब जानते हैं अगर पति पत्नी के बीच में कोई तीसरा आ जाए, मतलब किसी तीसरे की एंट्री हो जाए या दोनों के संबंध जो है वो किसी और से हो जाए तो इसके कारण क्या होते हैं, किस कारण से ऐसा होता है और उससे बचने के उपाय क्या है।
1: देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि जाने अनजाने न चाहते हुए भी पति पत्नी के बीच में कोई तीसरा आ जाता है, पति का कहीं और इन्वॉल्वमेंट हो जाता है या पत्नी कहीं और अट्रैक्ट हो जाती है। तो अगर पति पत्नी के बीच में कोई तीसरा आ गया है तो कारण क्या है, निवारण क्या है। आम तौर पर जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं, पति पत्नी के बीच में कोई तीसरा आता है या आती है तो इस तरह की घटनाओं के लिए राहु जिम्मेदार होता है। अगर शुक्र का भी इन्वॉल्वमेंट हो गया, अगर शुक्र भी निगेटिव हो गया तो ये मामला बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। अगर पति के जीवन में कोई तीसरा व्यक्ति हो, कोई अन्य स्त्री हो, तो पत्नी नियमित रूप से बृहस्पतिवार का उपवास रखें और शनिवार को पक्षियों को कैद से पिंजड़े से मुक्त कराएं। अगर पत्नी के जीवन में कोई तीसरा व्यक्ति आ गया हो तो पति हर शुक्रवार का उपवास रखें और शनिवार को किसी निर्धन व्यक्ति को उड़द की दाल के बने हुए बड़े खिलाएं। अगर ये उपाय निरंतर किया जाए तो पति पत्नी के जीवन से तीसरा चला जाता है, पति पत्नी का विश्वास दोबारा मजबूत होता है और दोबारा से जिंदगी बेहतर होनी

0: वृश्चिक राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, छोटी यात्रा हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, स्थान परिवर्तन हो सकता है, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, परिवार में शांति बनाए रखें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: तो चलिए जानते हैं, अगर पति पत्नी के बीच नाराजगी और लड़ाई झगड़ा इतना ज्यादा हो गया हो कि बात तलाक तक आ गई हो तो उसके कारण क्या है और उसके लिए समाधान क्या है।
0: बहुत बार ऐसा होता है कि पति पत्नी के आपसी संबंधों के खराब होने पर मामला डिवोर्स तक, तलाक तक पहुंच जाता है। देखिए, तलाक के लिए किसी एक ग्रह को जिम्मेदार नहीं कहा जा सकता, फिर भी जो पाप ग्रह हैं, सूर्य, शनि, मंगल, राहु, ये तलाक में बड़ी भूमिका निभाते हैं। अगर तलाक की बात चल रही है पति पत्नी में, मामला न्यायालय तक नहीं पहुंचा है, कोर्ट तक नहीं पहुंचा है, तो जिसको तलाक रोकना है वो सोमवार का उपवास रखें, भगवान शिव को रोज सवेरे 27 बेलपत्र और जल अर्पित करें। अगर मामला कोर्ट तक पहुंच गया है, मुकदमा शुरू हो गया है डिवोर्स का, और आप तलाक रोकना चाहते हैं या चाहती हैं, तो 5 मंगलवार को हनुमान मंदिर जाकर अपनी उम्र के बराबर लड्डू चढ़ाएं, या अगर इतने पैसे नहीं हैं तो 9 लड्डू या 11 लड्डू चढ़ाइएगा। रोज सुबह या शाम जब भी आपको मौका मिले, लगातार 3 महीने तक 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। अगर आप ऐसा करें तो निश्चित रूप से तलाक से बचेंगे, शादी दोबारा से बेहतर रास्ते पर चल पाएगी।
1: और वक्त हो गया है आज की अंतिम राशि के राशिफल को जानने का, तो आइए जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का क्या है राशिफल।
0: मकर राशि, स्वास्थ्य आपका अच्छा होता जाएगा, महत्वपूर्ण काम आपके बन जाएंगे, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी,

आपको नंबर दे रहा है 90% सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, बेवजह की चिंता हो सकती है, वाद विवाद से बचाव करें, करियर में कोई रिस्क कोई जोखिम ना लें। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।

0: की धन की स्थिति में सुधार होगा, परिवार में शुभ कार्य होंगे, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और चलिए अब जानते हैं पंडित जी से ही आज का तीसरा सवाल, उन्हें कहां से और किसने भेजा है।
0: जी अगला प्रश्न सरयू प्रसाद जी ने हमें लिखा है और सरयू प्रसाद जी हमें मेल लिखते हैं कुशीनगर उत्तर प्रदेश से। अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहते हैं। पुत्री की जन्म की तारीख है 3 जनवरी सन 2003। जन्म का समय रात में 9 बजे। जन्म का स्थान है कुशीनगर। ये कह रहे हैं कि मेरी बेटी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही है, क्या मेरी बेटी को गवर्नमेंट जॉब में सफलता मिलेगी। सरयू जी, आपकी पुत्री की कुंडली के हिसाब से अगर वो बैंक में, फाइनेंशियल सेक्टर में, रेलवे में या क्लैरिकल कैडर में कोशिश करें तो इन क्षेत्रों में इनको सरकारी नौकरी मिलेगी। साल 2027 और 28 का समय अच्छा है, इस समय प्रयास करने पर ये सफल होंगी। एक इनको माणिक्य बनवा के पहना दीजिए, 6 से 8 रत्ती का माणिक्य, तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, रविवार को प्रातः माणिक्य धारण करवाइए और इनको बोलिए कि नित्य प्रातः अगर ये सूर्य भगवान को जल अर्पित करें तो इनके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: गुडलक में अब वक्त हो गया आज के अंतिम सवाल का, तो चलिए जानते हैं पंडित जी से आज का अंतिम और चौथा प्रश्न वो किसका लेने वाले हैं।
0: जी आज का अंतिम प्रश्न दीप्ति ने हमें लिखा है और दीप्ति हमें जयपुर राजस्थान से मेल लिखती हैं। दीप्ति की जन्म की तारीख है 28 अप्रैल 1979। जन्म का समय दोपहर में 1:45। जन्म स्थान है बांदीकुई, राजस्थान। दीप्ति कह रही हैं कि पिछले कुछ दिनों से मुझे स्वास्थ्य में समस्याएं चली आ रही हैं और कोई ना कोई समस्या मेरे साथ स्वास्थ्य की लगी रहती है, तो मैं क्या उपाय करूं जिससे आने वाले समय में मेरा स्वास्थ्य बेहतर हो सके। दीप्ति, आपकी स्वास्थ्य में ज्यादा मुश्किलें नहीं हैं। शनि राहु का जो कॉम्बिनेशन है वो आपके मन में चिंताएं और तनाव पैदा कर रहा है और इन चिंताओं और तनाव की वजह से आपकी परेशानी थोड़ी ज्यादा हो गई है। मामला ज्यादातर मेंटल स्ट्रेस का दिखाई दे रहा है। आप ऐसा करें, एक पन्ना बनवा करके पहन लें, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण करें, रोज सुबह 1 बार राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें तो आपके स्वास्थ्य की स्थितियों में सुधार होगा।
1: और आइए जानते हैं जिनका जन्मदिन 5 जून 2026 को आने वाला है, उनका आने वाला वर्ष कैसा रहेगा, और उन सभी को हमारी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे टू यू।

0: जन्मदिन 5 जून को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में करियर की बाधाएं दूर होंगी, धन और कर्ज की समस्या में सुधार होगा, संपत्ति का लाभ और स्थान परिवर्तन हो सकता है। इस साल कुल मिलाकर आपका स्वास्थ्य एवरेज यानी मध्यम रहेगा। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर भगवान गणेश की अगर आप पूजा करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा।
1: और गुड लक में वक्त हो गया आज की जिज्ञासा के बारे में जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की जिज्ञासा क्या है।
0: आज की जिज्ञासा है कि सुहाग की सामग्री जो महिलाएं प्रयोग करती हैं, सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, ये किस दिन खरीदें और किस दिन ना खरीदें। सुहाग की सामग्री शुक्रवार के दिन खरीदना सबसे ज्यादा उत्तम होता है, हालांकि बृहस्पतिवार के दिन भी खरीदा जा सकता है, लेकिन मंगलवार और रविवार को सुहाग की सामग्री न खरीदें तो ज्यादा बेहतर होगा।
1: और आइए जान लेते हैं 5 जून 2026 यानी कि शुक्रवार का शुभ पहर कौन सा है।
0: दिनांक 5 जून 2026 दिन शुक्रवार, शुभ पहर का समय है रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। इस समय में माता लक्ष्मी के मंत्र का जप करिएगा, ओम श्रीं श्रियै नमः। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे धन संबंधी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही 5 जून शुक्रवार रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में।
1: तो चलिए गुडलक में अब वक्त हो गया आज की गुडलक राशि के बारे में जानने का, तो आइए जानते हैं पंडित जी से ही आज की गुडलक राशि क्या है।
0: हम आपको बता रहे हैं कि जीवन को बेहतर बनाने के लिए अलग अलग राशि के लोगों को कौन सा उपाय करना चाहिए। आज की गुड लक राशि है कुंभ राशि। जीवन की बेहतरी के लिए जितना संभव हो शिव जी की उपासना करें और हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं यानी दीप दान करें तो अच्छा रहेगा।
1: गुड लक में हम पहुंच गए आज के अंतिम पड़ाव पर, जहां पंडित जी रोज हमें एक नया महा उपाय बताते हैं, तो चलिए जानते हैं पंडित जी से कि आज का महा उपाय क्या है।
0: जी, देखिए आज आपको महा उपाय में बताते हैं कि अगर आपके वैवाहिक जीवन में युद्ध जैसी स्थिति हो, मारपीट, झगड़ा, लड़ाई भयंकर होता हो तो क्या करेंगे? अपने शयन कक्ष में, अपने बेडरूम में एक कांच की शीशी में या कांच के बोतल में गंगा जल भरकर रखिए। सोते समय अपना सर दक्षिण दिशा की तरफ रखिएगा। अपने शयन कक्ष में बंदूक, तलवार, ऐसे अस्त्र शस्त्र न रखें तो ज्यादा बेहतर होगा।
1: पंडित जी, तमाम जानकारी के लिए और महा उपाय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: तो पंडित जी से महा उपाय तो आपने जान लिया। बाकी देशों दुनिया की तमाम गुड न्यूज के लिए और पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: Listening to your favorite station just got even easier with Google Assistant and TuneIn. Your go-to station is just a voice away. Just tell Google to play your favorite station on TuneIn and you're instantly connected.
2: This is 80s hits exclusively on TuneIn.
1: You're listening to Fox News Radio. Classic rock hits.
3: You're listening to MSNBC.
1: No scrolling, no typing. Just the shows, music, and news you love. Anytime you want. Try it now and thank us later.
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
8: और चलिए अब बात फुटबॉल विश्व कप 2026 की कर लेते हैं, जिसकी शुरुआत 11 जून से होने जा रही है। वैसे तो फीफा विश्व कप फैंस के लिए बेहद खास होता है, लेकिन इस बार विश्व में नए नियमों के साथ पुराने इमोशंस भी हैं। जी हां, एक तरफ मेसी और रोनाल्डो जैसे खिलाड़ी लगातार छठा विश्व कप खेल इतिहास के पन्नों में अमर हो जाएंगे, और फीफा ने विश्व कप के लिए नए नियमों का ऐलान भी किया है।
9: शहर, अत्याधुनिक स्टेडियम और दुनिया के अरबों फैंस की सांसें थाम लेने वाला फुटबॉल का महारोमांच। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का बिगुल बज चुका है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है, तैयारियां मुकम्मल हैं, टीम्स भी तैयार हो चुकी हैं और फैंस के दिलों की धड़कनें भी बढ़ रही हैं। अब बस इंतजार है उस ऐतिहासिक पल का जब दुनिया के इस सबसे बड़े टूर्नामेंट का शंखनाद होगा। लेकिन इस बार का फीफा वर्ल्ड कप पहले से ज्यादा खास होगा, पहले से ज्यादा बड़ा होगा और पहले से ज्यादा इमोशनल भी होगा, क्योंकि अगर चर्चाओं की माने तो मौजूदा वक्त के दो सबसे बड़े फुटबॉल स्टार्स लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो का ये अंतिम विश्व कप हो सकता है। अगर चर्चाओं को सही मान लिया जाए तो अर्जेंटीना के कैप्टन लियोनेल मेसी और पोर्टुगल के कैप्टन क्रिस्टियानो रोनाल्डो आखिरी बार अपने देश की जर्सी में नजर आएंगे। एक तरफ फुटबॉल के सबसे बड़े टूर्नामेंट फीफा वर्ल्ड कप 2026 में मेसी और रोनाल्डो को खेलते हुए देखने का क्रेज फैंस के सिर पर चढ़कर बोल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ 11 जून से शुरू होने जा रहा ये टूर्नामेंट कई मायनों में खास होने वाला है। ये पहला मौका होगा जब फुटबॉल विश्व कप का आयोजन एक साथ तीन देशों में किया जा रहा है। इनमें अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको शामिल हैं। प्रतियोगिता के दायरे को बढ़ाया गया है और इस बार चार नए देशों की टीमें विश्व कप का हिस्सा हैं। पहली बार कैप वर्दे, कुराकाओ, जॉर्डन और उज्बेकिस्तान की टीमें फीफा विश्व कप का हिस्सा बनेंगी, जिसके बाद कुल टीमों की संख्या 48 हो गई है। सभी टीमों को 12 ग्रुप में बांटा गया है, जबकि नॉकआउट एंट्री राउंड ऑफ 16 की जगह इस बार राउंड ऑफ 32 होगा। टीमों की संख्या बढ़ने की वजह से इस बार पूरे टूर्नामेंट के दौरान रिकॉर्ड 104 मुकाबले खेले जाएंगे, जबकि 11 जून 2026 को मेक्सिको के ऐतिहासिक मेक्सिको सिटी स्टेडियम में टूर्नामेंट का पहला मैच खेला जाएगा। ये मैच मेक्सिको और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला जाएगा। मेक्सिको सिटी स्टेडियम में जब पहली फुटबॉल किक की जाएगी तो एक नया इतिहास बनेगा। मेक्सिको दुनिया का पहला ऐसा देश बन जाएगा जो तीसरी बार पुरुष फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी करेगा। फीफा विश्व कप 2026 और भी कई मायनों में खास होने वाला है, क्योंकि इस बार फीफा ने कई सख्त और कड़े नियम खिलाड़ियों के लिए लागू किए हैं। इनमें सबसे पहला और अनोखा नियम है कि अब खिलाड़ी मैदान में अपने मुंह पर हाथ नहीं रख सकेंगे। अगर किसी खिलाड़ी को ऐसा करते हुए देखा गया तो रेफरी रेड कार्ड दिखा सकता है, जिसका मतलब सीधे मैच से बाहर और उनकी टीम को 10 खिलाड़ियों के साथ खेलना पड़ेगा। दूसरा नियम ये है कि अगर रेफरी कोई गलत कॉर्नर किक देता है या किसी प्लेयर को 2 येलो कार्ड मिलते हैं तो उस फैसले को चुनौती दी जा सकती है। साथ ही कॉर्नर किक, पेनल्टी या किसी थ्रो के दौरान ग्राउंड पर आने से पहले खिलाड़ी फाउल करता है तब भी जांच मुमकिन है। अगर कोई टीम प्लेयर सब्स्टिट्यूट करती है तो ये 10 सेकंड के अंदर खिलाड़ी को मैदान में पहुंचना होगा। अगर गोलकीपर या दूसरा प्लेयर 5 सेकंड से ज्यादा समय लेता है तो विरोधी टीम को कॉर्नर किक या थ्रो इन मिलेगी। अगर गोलकीपर को चोट लगने पर मेडिकल टीम जांच कर रही हो तो मैदान पर मौजूद प्लेयर्स डगआउट में कोचिंग स्टाफ से बात नहीं कर सकते। कोई टीम रेफरी के फैसले से नाराज होकर मैदान से बाहर चली जाती है तो पूरी टीम को रेड कार्ड दिया जाएगा। इन नए नियमों का मकसद खिलाड़ियों और खेल के दौरान अनुशासन बनाए रखना है, जिससे खेल की गरिमा को ठेस न पहुंचे। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मुकाबला अमेरिकी शहर न्यू जर्सी के मेटलाइफ स्टेडियम में 19 जुलाई को खेला जाएगा, लेकिन उससे पहले फुटबॉल प्रेमियों में वर्ल्ड कप 2026 का इंतजार बेसब्री से है, क्योंकि जैसे ही स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो मैदान में उतरेंगे एक नया इतिहास रच देंगे। इससे पहले किसी भी पुरुष फुटबॉलर ने फीफा वर्ल्ड कप में हिस्सा नहीं लिया है और यही वजह है कि इस बार का टूर्नामेंट इन दोनों महान खिलाड़ियों के लिए भी बेहद खास माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
8: और आइए अब आपको दो जुड़वा भाइयों की कहानी बताते हैं। दो जुड़वा भाई जिन्होंने कोटा में 3 साल तक मेहनत की, लक्ष्य था IIT बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस में दाखिला। मेहनत के बल पर दोनों भाइयों की अच्छी रैंक आई। एक को तो IIT बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस में दाखिला मिल रहा था, मगर दूसरे की रैंकिंग की वजह से मनचाहा कोर्स नहीं मिल पा रहा था। फिर बड़े भाई ने भी अपने छोटे भाई के लिए IIT बॉम्बे जाने का फैसला ही छोड़ दिया।
10: कोटा शहर का नाम सुनते ही आंखों के सामने एक तस्वीर उभर आती है। देर रात तक चलते कोचिंग सेंटर, हॉस्टल की बालकनीज में किताब लिए बैठे छात्र और चेहरों पर सपनों की चमक। इसी कोटा में पढ़े ओडिशा के जुड़वा भाइयों ने सफलता की एक अलग मिसाल पेश की है। महरूफ और मसरूर ने JEE एडवांस्ड में न सिर्फ शानदार रैंक हासिल की बल्कि भाईचारे की ऐसी कहानी भी लिख दी जिसकी चर्चा हर तरफ है।
11: तो मैंने अपने भाई के साथ ही पढ़ने का डिसीजन लिया क्योंकि बचपन से ही हम दोनों साथ साथ पढ़ते आए, तो अभी हॉस्टल में भी एक साथ ही कंटिन्यू करना चाहते थे पढ़ना, तो हमने IIT मद्रास से कंप्यूटर साइंस करने का डिसीजन लिया।
10: वायुओं की महरूफ की JEE एडवांस्ड में ऑल इंडिया रैंक 32 आई। इस रैंक के साथ IIT बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस ब्रांच उनके हाथ में थी। ये वो चांस था जिसके लिए लाखों बच्चे दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन महरूफ का दिल कुछ और ही कह रहा था। उनके भाई मसरूर की ऑल इंडिया रैंक 169 आई थी जिससे IIT बॉम्बे की अच्छी ब्रांच नहीं मिल रही थी। महरूफ ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने भाई के लिए IIT बॉम्बे की सीट छोड़ी। दोनों ने फैसला लिया कि वो IIT मद्रास में साथ में कंप्यूटर साइंस पढ़ेंगे। इनके परिवार के लिए ये सिर्फ कामयाबी नहीं बल्कि गर्व का पल है। इनके पेरेंट्स का कहना है कि दोनों भाइयों ने रिश्ते को करियर से ऊपर रखा और एक दूसरे की मदद करना हमेशा उनकी सबसे बड़ी ताकत रही है। अब दोनों IIT मद्रास में कंप्यूटर साइंस पढ़ेंगे, एक ही हॉस्टल और एक ही क्लास में रहकर एक ही सपने को जिएंगे। कोटा से चेतन गुर्जर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
8: और आप भी अपने देश में ही सैर सपाटा कीजिए, अपने गांव और शहर में सैलानियों को इनवाइट कीजिए, टूरिज्म को बढ़ावा देने के संकल्प में भागीदार बनिए। बस आपको सिर्फ करना इतना है कि अगर आपके आसपास कोई खूबसूरत जगह है या फिर आपके शहर में आने की कोई खास वजह है तो उठाइए कैमरा और बना डालिए एक व्लॉग। फिर हमें 7303409922 नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, हम उसे गुड न्यूज टुडे पर दिखाएंगे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
12: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
13: Hop on board and settle in for an easygoing cruise with sailing on TuneIn. Let the breeze roll in and the rhythm carry you along. Enjoy yacht rock classics from artists like Hall & Oates, Steely Dan, Huggins and Messina, and much more. Only smooth sailing ahead with songs that help you get away. Just search Sailing. Tell your device to play Sailing on TuneIn.
14: आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। Good news today. अच्छी खबर, सच्ची खबर।
15: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
14: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
14: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
13: गुड न्यूज टुडे।
14: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
14: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
16: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन, टीआईटी भोपाल, जेन ज़ीज़ गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स।
8: दिल्ली एनसीआर में बारिश के बाद मौसम हुआ सुहाना, तापमान में गिरावट से लोगों को मिली गर्मी से राहत, मौसम विभाग ने आज भी आधी बारिश का जारी किया येलो अलर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का असर, मुंबई में बड़ा कारपूलिंग का ट्रेंड, 30-40% बड़ा कारपूलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन। रिजर्व बैंक आज नई मौद्रिक नीति का करेगा ऐलान, विशेषज्ञों के मुताबिक मौजूदा हालात में रेपो रेट में कटौती की उम्मीद कम, सस्ती हो सकती है ईएमआई। एमपी के छतरपुर में हनुमान चालीसा वन में उमड़ा आस्था का सैलाब, बाबा बागेश्वर के साथ लाखों भक्तों ने एक साथ किया हवन, विदेशों से भी ऑनलाइन जुड़े श्रद्धालु। अयोध्या में मनाया सीएम योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन, 11 किलो का काटा गया केक, योगी मंदिर में सीएम की उतारी गई आरती। आज मनाया जा रहा है विश्व पर्यावरण दिवस, देश भर में कार्यक्रमों का हो रहा है आयोजन, सूरत में कलाकार ने प्लास्टिक की बोतलों से बनाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशाल पोस्टर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
8: उम्मीदों पर दोपहर की खुशियों भरी शुरुआत, सुप्रभात, मैं हूँ आपके साथ गीतिका पंत, नई सुबह नई आशा, गुड न्यूज का मॉर्निंग डोज लेकर। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ सरगम पंत श्रीवास्तव। तो बिना रुके बिना थमे अगले एक घंटे में गुड न्यूज की मैराथन दौड़ होने वाली है, लेकिन सबसे पहले नजर आज की उन 5 खबरों पर जिनमें इंडिया के लिए शुभ समाचार।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
8: तो शुभ समाचार की शुभ शुरुआत मौसम वाली गुड न्यूज के साथ। दक्षिण भारत में मॉनसून की एंट्री हो गई है और केवल दक्षिण में ही नहीं देश के अलग अलग हिस्सों में मौसम का मिजाज बदल सा गया है। दिल्ली एनसीआर में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से बारिश और तेज हवाओं ने लोगों को गर्मी से राहत दी है। आज भी कई जगह बारिश होगी, कहां कहां होगी बारिश आगे आपको बताएंगे।
17: बिल्कुल, देखिए कार पूलिंग का जो असर है वो अब देश में दिखने लगा है। मुंबई में भी हाल ही के दिनों में नौकरी पेशा लोग ऑफिस आने जाने के लिए बड़े पैमाने पर कार पूलिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, लिफ्ट ले रहे हैं, जैसे कम्युनिटी प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन कराकर लोग आने जाने के लिए गाड़ी शेयर कर रहे हैं, जिससे ईंधन और पैसे दोनों की ही बचत हो रही है। तो क्या है ये पूरा प्रोसेस, आगे इसके बारे में भी आपको दिखाएंगे।
8: तो बाद दक्षिण भारत में उत्सव के रंग की भी होगी। तमिलनाडु के अलग अलग मंदिरों में इस उत्सव की रौनक देखने को मिल रही है। परिमला रंगनाथर पेरुमल मंदिर में पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ वसंत उत्सव मनाया गया। तो नागा कन्या परमेश्वरी अम्मन मंदिर में पांचवें वार्षिक पाल कुडम उत्सव का भव्य आयोजन किया गया। वहीं थूथुकुड़ी में उत्सव के रंग भी बिखरे हुए हैं, ये भी आगे आपको दिखाएंगे।
17: बिल्कुल, देखिए कितना वो तो होगा ही, और साथ ही में देखिए आज है फिल्मी फ्राइडे। इस दौरान कई फिल्में रिलीज हो रही हैं। बॉबी देओल की फिल्म बंदर भी बड़े पर्दे पर आज जो दस्तक दे रही है, क्या है इसमें खास, आगे इसके बारे में भी आपको बताएंगे।
8: तो वहीं कल से टीम इंडिया और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा। इस मैच में भारत से दो खिलाड़ियों के डेब्यू की संभावना है और क्या है पूरी प्लानिंग, ये भी आगे आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले जरा फटाफट अंदाज में देख लेते हैं सुबह 9 बजे की 9 गुड न्यूज।
17: उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह है, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु चारधाम पहुंच रहे हैं। अब तक चारधाम के दर्शन के लिए पहुंचने वालों की संख्या करीब 31 लाख पहुंच चुके हैं, जिसमें सबसे ज्यादा केदारनाथ में 11 लाख से अधिक भक्तों ने हाजिरी लगाई है।
8: अमरनाथ यात्रा को सुरक्षित और सुचारू बनाने के लिए अनंतनाग पुलिस ने पहचान ऐप लॉन्च किया है। ये एक QR कोड आधारित मोबाइल एप्लीकेशन है, जिसका उपयोग यात्रा मार्गों और पर्यटन स्थलों पर काम करने वाले सेवा प्रदाताओं के त्वरित पंजीकरण और सत्यापन के लिए किया जाएगा।
17: राम मंदिर ट्रस्ट और उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए मंदिर परिसर और उसके आसपास रामायण के प्रसंगों पर आधारित भव्य चित्र लगाए हैं। मंदिर की बाहरी दीवारों और परिक्रमा मार्ग पर ये चित्र बलुआ पत्थरों पर उकेरे गए हैं, जो रामायण के विभिन्न प्रसंगों जैसे कि प्रभु राम के जन्म, बाल लीलाओं, वनवास, सीताहरण, राम रावण युद्ध और लंका विजय को दर्शाते हैं।
8: शिरडी साई बाबा मंदिर में पंजाब के भक्त ने बेशकीमती दान किया। साई बाबा मंदिर को सोने का मुकुट अर्पण किया, जिसका वजन करीब 237 ग्राम है और मुकुट की कीमत लगभग 35 लाख रुपए बताई जा रही है। पंजाब के अजय कुमार गोयल ने कैंसर से पीड़ित पिता के लिए 2 साल की ज्यादा जिंदगी की मुराद पूरी होने पर दान किया साई भगवान को सोने का मुकुट।
17: आज दुनिया भर में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है, जहां लोग पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूकता का संदेश दे रहे हैं। साथ ही कई जगहों पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। वहीं सूरत में कलाकारों ने प्लास्टिक की बोतलों से प्रधानमंत्री का विशाल पोस्टर बनाया है।
8: ये तस्वीरें महाराष्ट्र के अमरावती की हैं, जहां मलखंब के अनोखे करतब देखने को मिले। ग्रीष्मकालीन शिविर के समापन समारोह के दौरान तालाब पर मलखंब के पारंपरिक कौशल की प्रस्तुति दी गई, तो दूसरी ओर छात्रों ने हाथों में जलती मशाल लेकर पानी के भीतर और सतह पर संतुलन बनाते हुए शानदार करतब दिखाए।
17: अहमदाबाद में पहली विश्व योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का शुभारंभ हो गया है। इस प्रतियोगिता में 60 से ज्यादा देशों के 500 से ज्यादा एथलीट्स हिस्सा ले रहे हैं। ये प्रतियोगिता एकता एरिना में 8 जून तक चलेगी। प्रतियोगिता में पारंपरिक योगासन के साथ कई तरह की प्रतिस्पर्धाओं का आयोजन होगा।
8: चीन के सुचुआन प्रांत स्थित चेंगडू रिसर्च बेस ऑफ जॉइंट पांडा बीडिंग से एक बेहद प्यारा वीडियो सामने आया है। वीडियो में एक नन्हा पांडा अपनी मां की पीठ पर खेलता है और मस्ती करता नजर आ रहा है। इस मनमोहक नजारे ने लोगों का दिल जीत लिया। चेंगडू का ये केंद्र वैज्ञानिक अनुसंधान, जन जागरूकता और इको टूरिज्म के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है।
17: विक्रम भट्ट के निर्देशन वाली फिल्म हॉन्टेड 3D गोस्ट ऑफ द पास्ट का स्ट्रीमर रिलीज किया गया है। इस छोटे टीजर वीडियो की शुरुआत एक भूतिया हवेली से होती है, जिसमें फिल्म के मुख्य किरदार निभाने वाली नीमो चक्रवर्ती हवेली में अपने प्यार की तलाश में पहुंचते हैं। इस फिल्म में नीमो के साथ श्रीधरा पांडे मुख्य किरदार निभाते हुए नजर आएंगी। ये फिल्म 12 जून को हिंदी, तमिल और तेलुगु भाषा में सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
18: हिम्मत वाले हैं, हिम्मत वाला होंगे तो पता नहीं, लेकिन

और शुभ समाचार की शुभ शुरुआत मौसम वाली गुड न्यूज के साथ करते हैं। दक्षिण भारत में मॉनसून की एंट्री हो गई है और केवल दक्षिण में ही नहीं देश के अलग अलग हिस्सों में मौसम का मिजाज बदला सा है। एक और दिल्ली एनसीआर में वेस्टर्न डिस्टरबेंस के असर से बारिश और तेज हवाओं ने लोगों को गर्मी से राहत दी है। बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। जो तापमान 42 पार चल रहा था करीब 36 डिग्री के आसपास आ गया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक मौसम में उतार चढ़ाव बना रह सकता है। वहीं दूसरी ओर दक्षिण भारत में दक्षिण पश्चिम मॉनसून की एंट्री हो चुकी है जिससे कई राज्यों में अच्छी खासी बारिश दर्ज की जा रही है। केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के कई हिस्सों में अच्छी बारिश हुई है। मॉनसून आगे बढ़ती हुई रफ्तार से किसानों में भी इससे उत्साह पैदा कर रहा है क्योंकि मॉनसून के आने से खरीफ फसलों की बुआई का रास्ता साफ होने लगा है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में बारिश की वजह वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है। वहीं दक्षिण भारत में बारिश मॉनसून की सक्रियता के वजह से हो रहा है। आने वाले दिनों में मॉनसून और आगे बढ़ने के साथ साथ देश के बाकी हिस्सों में भी बारिश की राहत देखने को मिल सकती है।

0: उधर केरलम में मॉनसून की जोरदार एंट्री हुई। इधर दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में मौसम का मिजाज अचानक बदल गया। प्री मॉनसून की बारिश राहत लेकर आई। तेज आंधी तूफान के साथ आई झमाझम बारिश ने गर्मी और उमस से निजात दिला दी। मौसम में आई इस नरमी के आज भी रहने के आसार हैं। मौसम विभाग ने तेज आंधी और गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। आज दोपहर फिर से गरज के साथ बौछारें पड़ने और तेज हवाएं चलने का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में मौसम में आए इस बदलाव की वजह एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, जिसका असर आज और कल उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों में भी देखने को मिलेगा। इस दौरान तेज आंधी और बारिश के साथ ओले गिरने की संभावना जताई गई है।
1: अभी एक वेस्टर्न डिस्टरबेंस है, वो इस समय नॉर्थ पाकिस्तान पे एक सर्कुलेशन की फॉर्म में है, स्ट्रेंथन में है, और उसके साथ ही जहाँ जैसे WD बना हुआ है, जो हवाई नहीं हुई अरेबियन सी से इस एरिया में आ रही है, जिसके कारण आप थोड़ा ह्यूमिडिटी भी बढ़ जाती है और विच इज़ फेवरेबल फॉर रेनफॉल एक्टिविटी। तो हमारा यही है कि आने वाले 2 से 3 दिन जहाँ पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में एक्टिविटी रहेगा, जिसके लिए हमने जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड के लिए हमने रेनफॉल के साथ हेलस्टॉर्म का वार्निंग भी दिया है। पंजाब हरियाणा हम अनुमान लगा रहे हैं जो हवाओं की गति है वो 50 से 60 किलोमीटर रह सकती है। इसके अलावा एनसीआर दिल्ली की बात करें, वहाँ भी हमारा 2 दिन के लिए येलो अलर्ट है। वहाँ भी हमारा यह है कि 40 से 50 किलोमीटर तक हवाएं रहने का।
0: मॉनसून के केरलम में प्रवेश के बाद इसका इंतजार अब पूरे देश को है। केरलम पहुंचने के बाद मॉनसूनी हवाएं 2 शाखाओं अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में विभाजित होकर आगे बढ़ती हैं और जुलाई के पहले हफ्ते तक पूरे देश को कवर कर लेती हैं।
2: 4 जून को जो मॉनसून है वो केरल में दस्तक दे चुका है और इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको कर्नाटका के हिस्से हुए, कोस्टल कर्नाटका जो हो गया, तमिलनाडु का कुछ हिस्सा जो है कवर करते हुए बे ऑफ बंगाल, और इस साइड पर जो है आपको दिखेगा ये जो ब्लू लाइन आप जो देख रहे हैं, ये इस वक्त हमारा ऑनसेट है। ये आने वाले 6 से 7 दिन अच्छा मौसम जो है वो रहने की उम्मीद है। अच्छी खासी बारिश जो है वो देखी जाएगी। 12 सेंटीमीटर से ज्यादा जो बारिश है वो जो है उसका अनुमान जो है वो लगाया जा रहा है। लेकिन इसके साथ ही मैं ये चीज भी आपको दिखाऊंगी कि जो लगातार जो मॉनसून है वो आगे बढ़ते हुए नजर आएगा। तो इसके साथ ही साउथ से शुरू हुआ है लेकिन धीरे धीरे जो है वो नॉर्थ ईस्ट साइड में भी जो है मॉनसून जो है वो देखा जाएगा। लेकिन अगर मैं बाकी पूरे आपको देश की मैं स्थिति इस वक्त दिखाना चाहूँ कि किस तरीके से मौसम का हाल है वो आप इस मैप में देख सकते हैं। ये पूरा आपको ऑरेंज अलर्ट जो है जगह जगह आपको नजर आने वाला है, ऑरेंज या फिर येलो, लेकिन बारिश का अलर्ट जो है देश के अलग अलग राज्यों में इस वक्त आपको नजर आ जाएगा।
0: केरलम में एंट्री के तुरंत बाद मॉनसूनी हवाएं दक्षिण के बाकी राज्यों और पूर्वोत्तर भारत की तरफ तेजी से बढ़ती है। मौसम विभाग के मुताबिक 5 जून से 10 जून के बीच तमिलनाडु, कर्नाटक और गोवा के ज्यादातर हिस्सों में मॉनसूनी बारिश शुरू हो जाएगी। 5 जून से 8 जून के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों मसलन आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में मॉनसून सक्रिय रूप से आगे बढ़ेगा। 8 जून से 15 जून के बीच मॉनसून मुंबई और कोंकण क्षेत्र समेत महाराष्ट्र के ज्यादातर हिस्सों में पहुंच जाएगा। 10 जून से 15 जून के बीच छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में मॉनसून के आने की उम्मीद है। 18 जून से 25 जून के बीच मॉनसून गुजरात और मध्य प्रदेश में एंट्री करेगा। 15 जून से 20 जून के बीच मॉनसून बिहार और उत्तर प्रदेश पहुँच सकता है। 25 जून से 30 जून के बीच दिल्ली से सटे नोएडा और पश्चिमी यूपी में मॉनसून सक्रिय होगा।
1: वाले दिनों की बात करें तो हमारा अनुमान ये है कि केरला, कोस्टल कर्नाटका, वहाँ पे वेरी हैवी रेनफॉल एक्टिविटी, आल्सो वेरी हैवी मीन 12 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल एक्टिविटी ऑलमोस्ट पूरा वीक होती रहेगी। उसके साथ ही कर्नाटक, कोंकण, गोवा, वहाँ भी रेनफॉल एक्टिविटी, हैवी रेनफॉल होने का अनुमान है। तमिलनाडु, देन इंटीरियर कर्नाटका, जहाँ रेनफॉल एक्टिविटी ऑलमोस्ट हैवी रहने का अनुमान है। इसके अलावा भी जहाँ भी जो मानसूनल विंड फेवरेबल हो रही है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में भी, जैसे अभी आज मानसून थोड़ा नॉर्थ बेओ बंगाल तक टच किया जो नॉर्थ पे की लाइन है, और आने वाले 2-3 दिनों में जहाँ भी रेनफॉल एक्टिविटी बढ़ जाएगी, हैवी वेरी हैवी रेनफॉल होने का अनुमान है। तो हमारा आने वाले दिनों में यही फोरकास्ट है, 2 से 3 दिन जो मानसून है, जो इवन इंटायर गोवा और कोंकण के कुछ हिस्से, महाराष्ट्र के कुछ हिस्से और कवर कर सकता है, कर्नाटक के हिस्से कवर हो सकते हैं, आंध्रा के, तमिलनाडु के जो हिस्से वो और कवर हो जाएंगे, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के कुछ हिस्से कवर होने का।
0: जहां तक दिल्ली की बात है तो राजधानी को अभी इसके लिए इंतजार करना होगा। दिल्ली में आमतौर पर मानसून की पहली बारिश 27 जून के करीब होती है। मौसम विभाग के मुताबिक इस साल भी मानसून अपने तय समय यानी 27 से 30 जून के बीच पहुंच सकता है। मतलब ये कि अगर हालात ठीक रहे तो जुलाई की शुरुआत तक पूरे देश में मानसून की बारिश होनी शुरू हो जाएगी। दिल्ली से मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: वही देखिए, बात अगर शिमला की करें तो शिमला में भी मौसम खुशनुमा बना हुआ है। यहाँ इंसान ही नहीं जानवर भी मौसम का मजा ले रहे हैं। शिमला के रिज मैदान पर घोड़ों को रेनकोट पहनाया गया है ताकि वो बेफिक्र होकर मौसम का मजा ले सके। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से घोड़े के मालिकों ने घोड़े को रेनकोट पहनाया हुआ है, और पर्यटकों ने जैसे ही ये तस्वीर देखी उन्होंने इसको वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला, जिसके बाद से ही घोड़ों के रेनकोट पहने ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हो रहे हैं। आपको बता दें कि देश विदेश से आए सैलानी यहां पर घुड़सवारी का भी मजा लेने पहुंचते हैं। और चलिए अब बात चारधाम यात्रा की कर लेते हैं। देवभूमि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा पूरे शबाब पर है। यात्रा के दूसरे चरण में भी श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर देखने को मिल रहा है। खासकर केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। बाबा केदार और भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए देश विदेश से श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं। अब तक दोनों धामों में करीब 19 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। यात्रा के दूसरे चरण में भी भक्तों का उत्साह कम होने का नाम नहीं ले रहा। सुबह से लेकर देर शाम तक दोनों धामों में दर्शन के लिए लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं। बाबा केदार के जयकारों और बद्री विशाल के भजनों से पूरा क्षेत्र भक्तिमय माहौल में डूबा हुआ है। यात्रा प्रशासन और स्थानीय प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा, स्वास्थ्य, आवास और यातायात व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई भी परेशानी का सामना न करना पड़े।

0: चार धाम यात्रा अपने दूसरे चरण में है और तेजी से आगे बढ़ रही है। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में अब तक करीब 19 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। अकेले बद्रीनाथ धाम में रोजाना करीब 29,000 तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं। बद्रीनाथ यात्रा नए रिकॉर्ड बना रही है। सुबह से शाम तक दर्शनार्थियों की भारी भीड़ रहती है। अब तक करीब 8,61,000 से ज्यादा श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दरबार में हाजिरी लगा चुके हैं। यहाँ शाम की रौनक देखने लायक है। शाम होते ही बाजारों में चहल पहल बढ़ जाती है। श्रद्धालु घूमते अपने घरों के लिए प्रसाद और सामग्री खरीदते दिखाई देते हैं। वहीं हेमकुंड साहिब में अब तक करीब 50,000 श्रद्धालु हाजिरी लगा चुके हैं। हर नए दिन के साथ हेमकुंड यात्रा में बढ़त देखने को मिल रही है। यहाँ रोजाना 4,500 से ज्यादा श्रद्धालु मत्था टेकने पहुँच रहे हैं।
1: बद्रीनाथ धाम की यात्रा इस समय आस्था का सैलाब देखने को मिल रहा है। बद्रीनाथ धाम में अब तक 8,61,000 से अधिक श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शनों को पहुंच चुके हैं। 8.5 लाख की संख्या जो है वो पार हो चुकी है और अब कभी भी 9 लाख की संख्या बद्री विशाल के यात्रियों की पूरी हो सकती है। वहीं सिखों का पवित्र तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब में लगभग 50,000 श्रद्धालु मत्था टेकने पहुँच चुके हैं। बड़ी कठिन ये चढ़ाई होती है। 19 किलोमीटर खड़ी पैदल चढ़ाई और ऑक्सीजन की कमी के बावजूद जो श्रद्धालुओं का उत्साह हेमकुंड साहिब में जबरदस्त देखने को मिल रहा है। लगभग 4,500 श्रद्धालु हेमकुंड साहिब रोजाना पहुंच रहे हैं।
0: इस बीच मानसून की आहट भी सुनाई देने लगी है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक पहाड़ों में बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना जताई है। हालांकि इस समय पहाड़ों का मौसम बेहद सुहावना और खूबसूरत बना हुआ है। जून के महीने में भी गर्मी का एहसास न के बराबर है, जिस वजह से यात्रियों और पर्यटकों की भारी भीड़ लगी हुई है।
1: वही आज से मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है, 3 दिनों तक पहाड़ों में एक बार फिर से बारिश और ऊंचाई वाली जगहों पर बर्फबारी का पूर्वानुमान मौसम विभाग ने जताया है। ऐसे में जो जून का महीना चल रहा है, खासकर गर्मी सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। पर्यटक और जो यात्री हैं उनके लिए बहुत सुहावना मौसम यहाँ पे पहाड़ों में देखने को मिलेगा। बारिश धीरे धीरे आप पहाड़ों में बारिश देखने को मिलेगी। ऐसे में कहीं ना कहीं जो पहाड़ों का मौसम है वो ठंडक और बड़ा ही सुंदर है।
0: मौसम विभाग के अलर्ट के बाद प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद है। सभी मशीनरी तैयार रखने के निर्देश के साथ साथ यात्रा पर भी नजर रखी जा रही है। प्रशासन द्वारा सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा रही है।
2: इस बार विभिन्न दिनों पे अलर्ट जारी होते रहे तो उसी के अनुक्रम में जिलाधिकारी महोदय के द्वारा प्रॉपर उसमें डायरेक्शन हमें दिए जाते हैं। जो हमारी मशीनरी है वो अलर्ट पे है और कहीं रोड अगर बंद होती है तो उसके लिए जो हमारे यात्रियों के ठहरने के लिए और जो ट्रैफिक जो रुक जाता है उसको किस तरीके से सुचारू करना है, जो भी एजेंसियाँ हैं वो बिल्कुल तत्पर हैं और मशीनरी और मैन पावर जो उनकी है वो डिप्लॉयड है।
0: चार धाम यात्रा केवल धार्मिक यात्रा नहीं बल्कि श्रद्धा, धैर्य और आत्मिक शांति का भी प्रतीक है। यही वजह है कि हर साल लाखों श्रद्धालु इस पवित्र यात्रा

0: एक पहल जिसमें श्रद्धालुओं की भागीदारी जरूरी है। हर साल लाखों श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुंचते हैं और बड़ी मात्रा में प्लास्टिक की बोतलें, रैपर और सूखा कचरा वहां छोड़ आते हैं, जिनका निदान संभव नहीं हो पाता। ऐसे में जिला प्रशासन ने एक नई पहल शुरू की है। नगर पंचायत केदारनाथ, हीलिंग हिमालयास फाउंडेशन और सुलभ इंटरनेशनल के सहयोग से धाम में कैरी मी बैग पॉलिसी शुरू की गई है, जिसमें वापसी के दौरान श्रद्धालु खुद सूखे कूड़े को वापस गौरीकुंड तक ला रहे हैं।
1: श्री केदारनाथ धाम में पहली बार वहां पर MRF सेंटर का भी संचालन किया गया है और वहां पर बेलिंग मशीन के द्वारा प्लास्टिक और जो ड्राई वेस्ट है उसको उसकी बेल्स बनाई जा रही हैं और उनको धीरे धीरे करके नीचे खच्चर के माध्यम से उतारा भी जा रहा है। इस प्रकार से श्री केदारनाथ धाम ट्रैक टू सफाई का काम चल रहा है। इसमें सुलभ की संस्था भी काम कर रही है, सभी नगर पालिका, नगर पंचायत और जिला पंचायत भी काम कर रहे हैं और प्रयास ये है कि डेली जो वेस्ट जनरेट हो रहा है उसका साइंटिफिकली डिस्पोजल किया जाए। इस संदर्भ में एक जिला लेवल पर एक मॉनिटरिंग सेल भी बनाई गई है जो हर 15 दिन में इसकी मॉनिटरिंग करके अपडेट करे।
0: कैरी मी बैग पॉलिसी के तहत नगर पंचायत की ओर से 400 से 500 ग्राम क्षमता वाले बैग में सूखा कूड़ा भरकर यात्रियों को दिया जा रहा है। श्रद्धालुओं को केवल इन बैग को अपने साथ गौरीकुंड तक लाना है, जहां स्वजल विभाग समेत सहयोगी संस्थाओं की ओर से कूड़े का संग्रहण किया जा रहा है। इसके बाद सुलभ इंटरनेशनल वैज्ञानिक एवं पर्यावरणीय मानकों के अनुरूप कूड़े का अंतिम निस्तारण किया जाएगा। प्रशासन का मानना है कि अगर अधिक संख्या में यात्री इस अभियान से जुड़ते हैं तो हर रोज कई टन कूड़ा आसानी से धाम से नीचे लाया जा सकेगा। इसके लिए यात्रियों को जागरूक भी किया जा रहा है। यात्रा मार्ग पर अलग अलग जगहों पर सूचना बोर्ड लगाए गए हैं और लोगों से पर्यावरण संरक्षण में सहयोग की अपील की जा रही है। उम्मीद की जानी चाहिए कि श्रद्धालुओं की भागीदारी से ये अभियान सफल होगा और केदारनाथ धाम में स्वच्छता एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों को नई मजबूती मिलेगी। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: आज विश्व पर्यावरण दिवस है और आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सूरत के दौरे पर जाने वाले हैं। इसे ध्यान में रखते हुए सूरत के एक आर्टिस्ट ने प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए 100% इको फ्रेंडली विशाल कटआउट पोस्टर तैयार किया है। इस पोस्टर को तैयार करने में 17,000 वेस्ट प्लास्टिक की बॉटल्स का इस्तेमाल किया गया है, जिससे रिसाइकिल करके पोस्टर तैयार किया गया है। इस पोस्टर की लंबाई 35 मीटर और चौड़ाई 20 मीटर है। 15 से 20 दिनों में करीब 20 लोगों की टीम ने मिलकर इसे तैयार किया है। पोस्टर को पकड़ने के लिए इसके चारों ओर हैंडल्स लगाए गए हैं ताकि 54 लोग इसे एक साथ पकड़ सके।
3: ये जो मोदी जी का आप विशाल का पोस्टर देख रहे हैं, ये 100% GRS सर्टिफाइड प्लास्टिक वेस्ट के कचरे से बनाया हुआ है। प्लास्टिक बोटल्स, इसमें करीब 15,000 प्लास्टिक बोटल का वेस्ट से यूज करके ये झंडा बनाया गया मोदी जी का और ये उनके सम्मान में बनाया गया है।
2: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपको दिखाते हैं दक्षिण भारत में उत्सव के खास रंग। देखिए, तमिलनाडु के अलग अलग मंदिरों में इस उत्सव की रौनक देखने को मिल रही है। परिमला रंगनाथर पेरुमल मंदिर में पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ वसंत उत्सव मनाया गया, तो नागा कन्निका परमेश्वरी अमन मंदिर में 5वें वार्षिक पाल कुंडम उत्सव का भव्य आयोजन किया गया। वहीं थूथुकुड़ी के पेची अम्मन मंदिर में 108 तिरुविल्लकु पूजा का भव्य आयोजन किया गया।
4: आस्था और भक्ति की ये तस्वीरें तमिलनाडु के मियालादुथुरे की हैं, जहां परिमला रंगनाथार पेरुमल मंदिर में भव्य वसंत उत्सव का आयोजन किया गया। 5 दिनों तक चले इस उत्सव को यहां के पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। उत्सव की शुरुआत विशेष धार्मिक अनुष्ठानों के साथ हुई। उसके बाद देवी देवताओं का फल, हल्दी, दूध, चंदन और नारियल पानी जैसे पवित्र द्रव्यों से महाअभिषेक किया गया। परंपरा के मुताबिक मंदिर के प्रवेश द्वार के करीब बने उत्सव मंडप में एक सुंदर कृत्रिम कमाल का तालाब तैयार किया गया, जिसमें भगवान और देवी की उत्सव मूर्तियों को पूरी गरिमा के साथ स्थापित किया गया। वैदिक मंत्रोच्चार और पारंपरिक नाद स्वरम संगीत के बीच भगवान को सुंदर वस्त्रों और सुगंधित फूलों से सजाया गया और फिर भव्य दीप आराधना की गई। मान्यता है कि इस वसंत उत्सव में शामिल होने और भगवान के इस पावन रूप के दर्शन करने से जीवन में सुख, समृद्धि और पवित्रता का संचार होता है।

0: तमिलनाडु के मियालादुथुरे से ही उत्सव की एक दूसरी तस्वीर है। कडलुंगड़ी गांव में नागा कन्निका परमेश्वरी अम्मन मंदिर के पांचवे वार्षिक पाल कुडम उत्सव का भव्य आयोजन किया गया। इस धार्मिक अनुष्ठान में पारंपरिक दक्षिण भारतीय संगीत और नाथ स्वरम की मधुर धनों के बीच भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें श्रद्धालु परंपरा के मुताबिक दूध का कलश लेकर शामिल हुए। शोभा यात्रा के मंदिर पहुंचने के बाद भक्तों द्वारा लाए गए पवित्र दूध से देवी नागा कन्निका परमेश्वरी अम्मन का भव्य महाभिषेक किया गया। पुजारियों के विशेष वैदिक मंत्रोच्चार और महाआरती के साथ उत्सव का समापन हुआ। थुथुकुडी के पेची अम्मन मंदिर का वार्षिक उत्सव परंपरा और रीति रिवाज के साथ मनाया गया। उत्सव का मुख्य आकर्षण दीप पूजा था। मंदिर परिसर में कतारबद्ध बैठी 108 महिलाओं ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच एक साथ पीतल के दीपकों को प्रज्वलित किया। महिलाओं ने माता पेची अम्मन के दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए दीपों को कुमकुम, हल्दी और सुगंधित फूलों से पूजा। इस भव्य धार्मिक अनुष्ठान का समापन देवी पेची अम्मन की महादीप आराधना के साथ हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: बुलेटिन में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए धुरंधर से आगे पेड़ी।

0: Jack FM, now playing what we want, commercial free on TuneIn Premium.
1: What about me, Jack? What about me?
0: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial free.
1: Well played, Jack. Well played.
0: Jack FM, playing what we want.
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
10: दिल्ली NCR में बारिश के बाद मौसम हुआ सुहाना, तापमान में गिरावट से लोगों को मिली गर्मी से राहत। मौसम विभाग ने आज भी आधी बारिश का जारी किया येलो अलर्ट।
11: प्रधानमंत्री मोदी की अपील का असर, मुंबई में बड़ा कारपूलिंग का ट्रेंड, 30-40% बड़ा कारपूलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन। रिजर्व बैंक आज नई मौद्रिक नीति का करेगा ऐलान, विशेषज्ञों के मुताबिक मौजूदा हालात में रेपो रेट में कटौती की उम्मीद कम, सस्ती हो सकती है ईएमआई। एमपी के छतरपुर में हनुमान चालीसा हवन में उमड़ा आस्था का जनसैलाब, बाबा बागेश्वर के साथ लाखों भक्तों ने एक साथ किया हवन, विदेशों से भी ऑनलाइन जुड़े श्रद्धालु।
10: सीएम योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन पर कई कार्यक्रम का आयोजन, वाराणसी के श्री वरद आंजनेय मंदिर में काटा गया 54 किलो लड्डू केक, 54 परियोजनाओं के लिए लगाए गए 54 पौधे।
11: आज मनाया जा रहा है विश्व पर्यावरण दिवस, देश भर में कार्यक्रमों का हो रहा है आयोजन, सूरत में कलाकार ने प्लास्टिक की बोतलों से बनाया प्रधानमंत्री का विशाल पोस्टर।
10: रामचरण की फिल्म पेडी की बम्पर ओपनिंग, बॉक्स ऑफिस पर धुरंधर का तोड़ा रिकॉर्ड, पहले दिन की वर्ल्ड वाइड पर 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई।
7: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम

0: तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए गीतिका, आज फ्राइडे है और फ्राइडे मतलब फिल्मी फ्राइडे। तो देखिए फिल्मी फ्राइडे पर इस बार मनोरंजन का ट्रिपल डोज देखने को मिल रहा है। एक तरफ नई रिलीज जवानी है तो इश्क होना है और बंदर धमाल मचा रही है, तो दूसरी ओर रामचरण की फिल्म पैदी पहले बॉक्स ऑफिस पर अपना दम दिखा रही है। फिल्म की रिकॉर्ड तोड़ शुरुआत ने इंडस्ट्री में नई चर्चा भी छेड़ दी है। देखिए रामचरण की फिल्म ने ओपनिंग कलेक्शन के साथ बॉलीवुड की कई ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्मों के रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। इस लिस्ट में रणवीर सिंह की 30 करोड़ ओपनिंग करने वाली धुरंधर, 40 करोड़ फर्स्ट डे कलेक्शन करने वाली सनी देओल की गदर 2 और 57 करोड़ ओपनिंग करने वाली शाहरुख खान की फिल्म पठान भी शामिल है। देखिए फिल्म ने पहले ही दिन यानी कि पैडी ने नेट कलेक्शन प्री प्रीव्यू शोज के साथ 69.50 करोड़ पहुंच चुका है और वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन 112.49 करोड़ रुपए पहुंच गया है। इन आंकड़ों से ये तो साफ है कि फिल्म का क्रेज न सिर्फ दक्षिण भारत बल्कि हिंदी बेल्ट में भी हर किसी के सर पर चढ़कर बोल रहा है, जिससे सिनेमाघरों में इसकी पकड़ काफी मजबूत बन गई है।
1: तो फिल्म पैरी के पहले दिन के आंकड़े भी सामने आ गए हैं। सिग्नल के लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक रिलीज के पहले ही दिन फिल्में दुनिया भर में 112 करोड़ 49 लाख का ग्रॉस कलेक्शन किया है। इंडिया नेट कलेक्शन 69 करोड़ 50 लाख है। रामचरण और जानवी कपूर की पैरी 5 भाषाओं में सिनेमा घरों में रिलीज हुई है। वहीं सबसे ज्यादा कलेक्शन तेलुगु भाषा में फिल्म ने हासिल किया जो 47.20 करोड़ था।
0: बिल्कुल, इसके बाद हिंदी में 3 करोड़ रुपए की कमाई की है, जबकि तीसरे नंबर पर तमिल भाषा से 45 लाख की कमाई इस फिल्म ने की है। वहीं अगर बात चौथे नंबर की करें तो चौथे नंबर पर कन्नड़ में 25 लाख का कलेक्शन इस फिल्म ने किया है गीतिका, जो वाकई बड़ी बात है। और आखिर में मलयालम भाषा में 10 लाख का कलेक्शन फिल्म ने हासिल किया है।
1: और अपने इस कलेक्शन के साथ पैडी ने पहले दिन ही रणवीर सिंह की धुरंधर और सनी देओल की गदर 2 को पीछे छोड़ दिया है। 30 करोड़ ओपनिंग करने वाली धुरंधर, 40 करोड़ फर्स्ट डे कलेक्शन करने वाली सनी देओल की गदर 2 और 57 करोड़ ओपनिंग अपने नाम करने वाली शाहरुख खान की पठान को फिल्म पैडी ने पछाड़ दिया है।
0: बिल्कुल, देखिए बॉलीवुड एक्ट्रेस जानवी कपूर की फिल्म पैडी की सक्सेस के लिए दुआ मांगने तिरुपति मंदिर पहुंची थी, जहां उन्होंने फिल्म पैडी की कामयाबी के लिए भगवान से मन्नत भी मांगी।
2: एक तरफ साउथ एक्टर रामचरण की फिल्म पैडी सिनेमा घरों में रिलीज हुई तो दूसरी ओर बुची बाबू सना द्वारा मंदिर यात्रा और दर्शन पैडी फिल्म की सक्सेस को लेकर बताई जा रही है। 2024 में आई फिल्म देवरा के बाद पैडी जानवी सिनेमा घरों में रिलीज हुई तो दूसरी ओर बुची बाबू सना द्वारा निर्देशित इस फिल्म में उनकी को एक्टर जानवी कपूर की तिरुपति मंदिर यात्रा और दर्शन पैडी फिल्म की सक्सेस को लेकर बताई जा रही है। 2024 में आई फिल्म देवरा के बाद पैडी जानवी की दूसरी साउथ फिल्म है। ऐसे में रिलीज के बीच वो दोबारा ईश्वर का आशीर्वाद और फिल्म की हिट होने की मन्नत मांगने तिरुमला पहुंची। उनका कैजुअल लुक में बालाजी मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने का ये वीडियो खूब सुर्खियों में है। वैसे बता दें कि जानवी जब भी तिरुपति मंदिर जाती हैं, तो वीआईपी दर्शन करने की बजाय नंगे पैर चलकर अलीपीरी की 3550 सीढ़ियों का इस्तेमाल करती हैं। वहीं तिरुमला मंदिर पहुंची जानवी का पर्पल कलर की कांजीवरम साड़ी और गहनों के साथ ये पारंपरिक लुक भी लोगों को खूब पसंद आ रहा है। उनके बालाजी दर्शन के दौरान कई दूसरी महिलाएं भी उनके साथ दिखी। वहीं जानवी ने भी वहां मौजूद लोगों को हाथ जोड़कर सम्मान भी दिया। जानवी अपनी लाइफ के हर बड़े और खास मौकों पर बालाजी दर्शन करने आती हैं और उनकी ईश्वर भक्ति को देख फैंस के बीच अक्सर उनकी सराहना भी होती है। दरअसल उनकी माँ श्रीदेवी की भी बालाजी में अटूट आस्था थी, इसलिए जानवी भी शायद बालाजी के दर्शन कर सुकून महसूस करती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: तो पैडी की सफलता के लिए जानवी कपूर आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर पहुंची। इस दौरान उनकी सादगी की खूब तारीफ हो रही है। उनका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी है। ये तब की तस्वीर है जब जानवी कपूर भगवान वेंकटेश्वर का आशीर्वाद लेने तिरुपति मंदिर पहुंची थी। उन्होंने नंगे पैर 3550 सीढ़ियां चढ़ी और भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन किए।

0: तो देखिए, रामचरण की फिल्म पेडी बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है, तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ रही है। फिल्म को शानदार रिस्पांस लगातार मिल रहा है और फिल्म को लेकर फैंस में भी भारी उत्साह और एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है। देखिए, फैंस थिएटर्स में और थिएटर्स के बाहर जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार वीडियोज और तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से थिएटर्स के अंदर ही फैंस जश्न मनाते हुए देखे जा सकते हैं। कहीं ढोल नगाड़े के साथ जश्न मनाया गया तो कहीं दर्शक सीटियां और तालियों के साथ काफी ज्यादा उत्साहित नजर आए। फिल्म पेडी की शानदार ओपनिंग और दर्शकों के उत्साह ने यह साफ कर दिया है कि फिल्म को लेकर बना क्रेज अभी तो आने वाले कुछ दिनों तक यूं ही बरकरार रहने वाला है। ऐसे में जानवी कपूर के लिए यह सफलता उनके करियर का अहम पड़ाव साबित हो सकती है।
1: और चलिए अब बात टीम इंडिया की कर लेते हैं। कल से टीम इंडिया और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा। इस मैच से पहले भारतीय खिलाड़ियों ने अभ्यास किया। इस दौरान कैप्टन शुभमन गिल, केएल राहुल और कुलदीप यादव समेत सभी खिलाड़ियों ने अपने हाथ आजमाए। इस मैच के लिए भारत से दो खिलाड़ियों के नाम डेब्यू की संभावना है। नंबर तीन के लिए साई सुदर्शन और देवदत्त पडिक्कल के बीच मुकाबला है। यशस्वी जायसवाल और उपकप्तान केएल राहुल पारी की शुरुआत करेंगे तो नंबर तीन के लिए साई सुदर्शन और देवदत्त पडिक्कल के बीच मुकाबला होगा। हालांकि चर्चा है कि घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन को देखते हुए पडिक्कल का खेलना तय है। दिलचस्प ये है कि टेस्ट सफर की शुरुआत भारत के खिलाफ मैच से की थी। भारत अफगानिस्तान के बीच एक लौता टेस्ट मैच 2018 में हुआ था जिसे भारत ने पारी और 262 रन के भारी अंतर से हराया था। तब से अफगानिस्तान ने 12 टेस्ट मैच खेले हैं जिनमें से उसे 4 में जीत और 7 में हार का सामना करना पड़ा जबकि एक टेस्ट मैच ड्रॉ रहा।
0: तो चलिए अब आपको टीम इंडिया के खिलाड़ियों का अलग अंदाज दिखाते हैं। एक्शन से पहले टीम इंडिया के फोटोशूट की तस्वीरें भी सामने आ गई हैं जिनमें भारतीय टीम के सितारे स्टाइल के साथ पोज देते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी मजेदार वीडियो है ये जो सामने आई है और इस फोटोशूट में शुभमन गिल, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव समेत दूसरे खिलाड़ी शामिल रहे। रेड बॉल क्रिकेट में भारत का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है लिहाजा न्यू चंडीगढ़ में फैंस की निगाहें टीम इंडिया पर टिकी रहने वाली है। खासकर युवा खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर सभी की निगाहें रहने वाली है।

और फुटबॉल की दीवानगी की यहां बात करेंगे। सबसे पहले एक ऐसे शहर की तस्वीर आपको दिखाते हैं जिस पर फुटबॉल का फीवर चढ़ा हुआ है। अमेरिका के बॉस्टन शहर में 2026 फीफा वर्ल्ड कप की तैयारियां जोरों पर है। ये शहर 13 जून को हैती और स्कॉटलैंड के बीच होने वाले मैच की मेजबानी करेगा। बीनटाउन के नाम से मशहूर बॉस्टन में कुल 5 ग्रुप स्टेज मैच, 1 राउंड ऑफ 32 और 1 क्वार्टर फाइनल मैच खेला जाएगा। लेकिन अभी से यहां सॉकर की दीवानगी देखने को मिल रही है। वर्ल्ड कप के लिए की गई आधुनिक सजावट शहर को एक नया रूप दे रही है। हम आपको बता दें कि यह शहर 1776 में ब्रिटेन से अमेरिकी क्रांति का केंद्र रहा था और इसे सदियों पुरानी विरासत संजोने के लिए खास तौर पर जाना जाता है। और अब यह शहर मॉडर्न गेम्स का पावर हाउस बनकर उभरा है। एक तरफ फुटबॉल के सबसे बड़े टूर्नामेंट फीफा वर्ल्ड कप 2026 में मेसी और रोनाल्डो को खेलते हुए देखने का क्रेज फैंस के सर चढ़कर बोल रहा है, तो दूसरी तरफ 11 जून से शुरू होने जा रहा है यह टूर्नामेंट कई मायनों में खास होने वाला है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से देशवासियों से फॉरेन ट्रिप की बजाय स्वदेश घूमने की अपील की है, जीएनटी भी आप लोगों से लगातार अपने आसपास की खूबसूरत, ऐतिहासिक और दूसरी सैर सपाटा करने वाली जगहों की तस्वीरों को शेयर करने की अपील कर रहा है और हम आपके भेजे गए उन वीडियोस को लगातार गुड न्यूज टुडे पर दिखा भी रहे हैं। तो चलिए आज आपको हिमाचल प्रदेश के हिल स्टेशन कसौली लेकर चलते हैं, जहाँ की खूबसूरत वादियां यकीनन आपको भी वहां जाने के लिए मजबूर कर देंगी। ये व्लॉग हमारी एक दर्शक ने ही हमें बनाकर भेजा है।

0: आज हम आपको लेके आए हैं कसौली के सुंदर वादियों में। हिमाचल प्रदेश का ये एक ऐसा क्षेत्र है जो कि हरियाली, देवदार के पेड़ों, ओक के पेड़ों से सुंदर और शांत वातावरण में स्थित है। यहाँ के पर्यटक स्थल जैसे चर्च, सनसेट, मंकी पॉइंट, गिलबर्ट ट्रेल, जो मंकी पॉइंट है यहाँ का, वो इस क्षेत्र की सबसे ऊंचाई वाला क्षेत्र है और वहाँ का जो नज़ारा है, दृश्य है, वो बहुत ही दर्शनीय है। देश विदेश के यात्रियाँ यहाँ पे आते हैं और वहाँ का पूरा दृश्य हम देख सकते हैं। ग्रीनरी, हरियाली, जो कि सबके मन की शांति और विकास, विद्यार्थियों के पढ़ने लिखने के लिए बहुत ही उचित स्थान बताया गया है। और यहाँ पे जो गिलबर्ट ट्रेल है, ये पर्यटक और ट्रैकिंग के लिए बहुत फेमस है। एंड जो सनसेट पॉइंट है, वो सूर्यास्त का एक हसीन दृश्य प्रस्तुत करता है। सभी देशवासियों से अपील करती हूँ कि इस स्थल का, इस स्थल पे आके अपने एंजॉय कीजिए, अपने परिवार के साथ अधिक से अधिक मात्रा में यहाँ पे आए। और देश विदेश से घूमने से अच्छा है कि आप अपने प्रदेश, अपने इंडिया, अपने भारत की स्थल को जाने पहचाने, यहाँ की प्रकृति और संस्कृति से रूबरू हुए। ये जो कसौली है, ये चंडीगढ़ से 35 किलोमीटर की दूरी पर है। जैसे ही आप चंडीगढ़ से शिमला रोड पे आते हो, कसौली चौक पे, वहाँ से एक लेफ्ट टर्न आपको लेना होता है। कसौली चौक से आते आते एक सुंदर और एक बोर्डिंग स्कूल है, कसौली इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, वहाँ से ये थोड़ा सा 7 किलोमीटर की दूरी पर है। आप आए और कसौली के इस सुंदर और शांत वातावरण का इंजॉय लीजिए।
1: तो आप भी अपने देश में सैर सपाटा कीजिए, अपने गांव और शहर में सैलानियों को इनवाइट कीजिए, टूरिज्म को बढ़ावा देने के संकल्प में भागीदार बनिए। बस आपको करना सिर्फ इतना है कि अगर आपके आसपास कोई खूबसूरत जगह है या फिर आपके शहर में आने की कोई खास वजह है, तो उठाइए कैमरा और बना डालिए ब्लॉग। फिर हमें 7303409922 पर व्हाट्सएप कर दीजिए, हम उसे गुड न्यूज टुडे पर दिखाएंगे। मिडिल ईस्ट संकट के बीच ऊर्जा की बढ़ती खपत को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कार पूलिंग की वकालत की थी। पीएम मोदी की अपील का असर मुंबई में देखने लगा। हाल ही के दिनों में नौकरी पेशा मुंबईकर्स ने ऑफिस आने जाने के लिए बड़े पैमाने पर कार पूलिंग का इस्तेमाल करना शुरू किया। लिफ्ट ले लो जैसे कम्युनिटी प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन कराकर लोग आने जाने के लिए गाड़ी शेयर कर रहे हैं, जिससे ईंधन और पैसे दोनों की बचत हो रही है।

0: मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन आवाजाही का बड़ा जरिया है। बावजूद इसके बड़ी संख्या में लोग रोजाना ऑफिस आने जाने के लिए कार का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसमें दो दिक्कतें हैं। एक तो ट्रैफिक जैम, दूसरा मिडिल ईस्ट संकट के बाद पेट्रोल डीजल की किल्लत और बढ़ती जा रही कीमत। लेकिन अब मुंबईकरों ने इस झंझट का एक स्मार्ट और सस्ता तोड़ निकाल लिया है, कार पूलिंग।
1: फ्यूल के प्राइसेस जैसे ही बढ़े, एक चीज नोटिस की गई है, वो है कार पूलिंग, जो एक बहुत पहले से भी एग्जिस्ट करती है, लेकिन कार पूलिंग की तरीके इस बार जो है वो बेहतर हो गए हैं। कार पूलिंग लोग ज्यादा करने लगे हैं।
0: मुंबई में कार पूलिंग अब एक बड़ा ट्रेंड बन चुका है। ठाणे, नवी मुंबई और कांदीवली जैसे इलाकों से बीकेसी या लोअर परेल जाने वाले नौकरी पेशा लोग अब अकेले गाड़ी चलाने के बजाय कार पूलिंग का इस्तेमाल करना पसंद कर रहे हैं।
2: पहले तो मैं जब पेट्रोल प्राइसेस स्टेडी थे फॉर 3-4 ईयर्स, तो मैं कार से ट्रैवल करता था अकेला, तभी इतना एक्टिव नहीं था कारपूल के ग्रुप में। बट अभी रिसेंटली जो 2-3 बार दाम बढ़े हैं पेट्रोल के, उसके बाद इट्स एक्चुअली पिंचिंग। सो 103 रुपये से 108 रुपये, फिर 108 से 111 रुपये हुए, तो इट्स स्टार्टेड पिंचिंग। सो वाया मेरे को लिफ्ट ले लो, वो जो ग्रुप है उसका रेफरेंस मिला, तो वो जो एडमिन है उसने मेरे को ग्रुप में ऐड कर लिया, और अभी धीरे धीरे लोग आ रहे हैं साथ में कारपूल में।
0: कारपूलिंग इको फ्रेंडली के साथ साथ बजट फ्रेंडली भी है। सड़कों पर कार की संख्या कम होने से ईंधन की खपत कम होती है, जिससे पर्यावरण को नुकसान कम होता है, साथ ही पॉकेट पर खर्च का भार भी कम हो जाता है। मकरंद परांजपे के मुताबिक कारपूलिंग से उन्हें 70% बचत हो रही है।
2: तो ट्रैवल टाइम तो थोड़ा बढ़ गया, या तो मोटा मोटी ऑलमोस्ट उतना ही रहा है। अगर मैं खर्चे की बात करूँ तो यू कैन से कि मेरा ऑलमोस्ट 70% खर्चा बच गया।
1: 70%, तो ये फ्यूल प्राइसेस पिंच करने की जगह अब आपकी बचत हो रही है।
2: डेफिनेटली, अगर ये कारपूल ग्रुप के बारे में मालूम नहीं होता, लिफ्ट ले लो के बारे में, तो शायद मैं जहाँ पे मैं 10 रुपये खर्च कर रहा था, आई वुड हैव एंडेड अप पेइंग 12-13 रुपये, बिकॉज 103 से 111 रुपये, तो काफ़ी इट्स ऑलमोस्ट 10% हाइक इन द पेट्रोल फ्यूल प्राइसेस, सो इट्स अ गुड थिंग।
0: मुंबई में कारपूलिंग का ट्रेंड लिफ्ट ले लो के तौर पर पॉपुलर हो रहा है। लिफ्ट ले लो एक ऐप है जिस पर लोग अब तेजी से रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। लिफ्ट लेने वाले भी और लिफ्ट देने वाले भी। खुद महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र मोटर व्हीकल एग्रीगेटर रूल्स के तहत चुनिंदा एप्स को मंजूरी देकर कारपूलिंग को हरी झंडी दी है।
3: कारपूलिंग का जो इंक्रीज है, जो ट्रेंड इंक्रीज अगर देखा जाए तो काफी बड़ा है वो। जब हमारे 10th, मतलब अभी भी याद है कि 10th में था शायद वो स्पीच में, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने वो लाइन सेंटेंस डाला था कि कार पूलिंग यूज़ करें, एंड उसके बाद से जब पेट्रोल के हाइक्स आए प्राइसेस में, तो उसके बाद जितना हमारे रजिस्ट्रेशन है अराउंड 30-40% ऑन डेली बेसिस तो बढ़े हैं।
1: 30-40%
3: बढ़ गया है डेली बेसिस पे रजिस्ट्रेशन, तो लाइक 150-200 रजिस्ट्रेशन ऑन डेली बेसिस होते हैं।
0: मुंबई में कारपूलिंग की पहल 2017 में शुरू हुई थी, लेकिन हाल के दिनों में मिडिल ईस्ट संकट की वजह से इसका चलन तेजी से बढ़ा है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ईंधन बचाने और ट्रैफिक कम करने के लिए कारपूलिंग के इस्तेमाल पर जोर दिया था, जिसका असर भी दिख रहा है। पिछले कुछ समय में अकेले मुंबई में राइड शेयरिंग रजिस्ट्रेशन में करीब 40% तक का उछाल आया है। ये आंकड़ा बताने के लिए काफी है कि कामकाजी प्रोफेशनल्स के बीच कारपूलिंग किस कदर तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। मुंबई से विद्या के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: तो चलिए इंस्टा स्टोरी में अब आपको उन कलाकारों की इंस्टा रील्स दिखाते हैं जो अभिनय की दुनिया में तो कमाल कर ही रहे हैं, साथ ही सोशल मीडिया पर अपने फैंस को हंसाने और गुदगुदाने का भी कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। देखिए रवीना टंडन की ये फनी इंस्टा स्टोरी।
5: अगर कोई लड़का आपको लाइक कर रहा है तो अपने आप को हीरोइन मत समझो, ये सबको लाइक करते हैं, लड़कों में बीमारी होती है।
6: सोच रही हूँ किसी अननोन बंदे की पोस्ट पे जाकर ना 7-8 कमेंट एक साथ ही कर दूं कि तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, 7 रोने वाली इमोजीज लगा दूं, फिर वो जाने और उसकी बंदी जाने, हमें क्या।
4: तो चलिए शुभ समाचार में फिलहाल वक्त हो चला है आप सभी से अलविदा कहने का।
1: बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव और अच्छी खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
8: Take it easy with Soft Hits. Soft Hits brings together relaxing pop favorites from the 70s, 80s, and 90s.
9: Familiar songs, easy melodies, and a sound that lets you slow down. Perfect for stepping back and catching your breath. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Soft Hits to start listening now.
10: हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
11: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
10: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
12: और दुर्भाग्य कहता है
13: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
11: अविश्वास में विश्वास बसता है,
10: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
10: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
11: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
15: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
16: सेज यूनिवर्सिटी ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। टीआईटी भोपाल जेन ज़ीज गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स।
1: दिल्ली एनसीआर में बारिश के बाद मौसम हुआ सुहाना, तापमान में गिरावट से लोगों को मिली गर्मी से राहत। मौसम विभाग ने आज भी आंधी बारिश का जारी किया येलो अलर्ट। प्रधानमंत्री मोदी की अपील का असर, मुंबई में बढ़ा कार पूलिंग का ट्रेंड, 30-40% बढ़ा कार पूलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन। रिजर्व बैंक आज नई मौद्रिक नीति का करेगा ऐलान, विशेषज्ञों के मुताबिक मौजूदा हालात में रेपो रेट में कटौती की उम्मीद कम, सस्ती हो सकती है ईएमआई। मध्य प्रदेश के छतरपुर में हनुमान चालीसा हवन में उमड़ा आस्था का सैलाब, बाबा बागेश्वर के साथ लाखों भक्तों ने एक साथ किए दर्शन, किया हवन, विदेशों से भी ऑनलाइन जुड़े श्रद्धालु।
4: सीएम योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन पर कई कार्यक्रमों का आयोजन वाराणसी के श्री वरद अंजनेय मंदिर में काटा गया। 54 किलो लड्डू के 54 परियोजनाओं के लिए लगाए गए 54 पौधे।

प्लास्टिक की बोतल से बनाया पीएम का विशाल पोस्टर। रामचरण की फिल्म पेडी की बम्पर ओपनिंग, बॉक्स ऑफिस पर धुरंधर का तोड़ा रिकॉर्ड, पहले ही दिन की वर्ल्ड वाइड 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई।

आपका आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे बृहस्पति के शुभ योगों के बारे में और अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति के शुभ योग हैं तो इसका जीवन पर प्रभाव कैसा पड़ता है इसको जानने का प्रयास करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 5 जून 2026 दिन शुक्रवार, तिथि है अधिक ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि, नक्षत्र है श्रवण नक्षत्र, चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय प्रातः 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 5 जून 2026 दिन शुक्रवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य देव विद्यमान हैं वृषभ राशि में, बुध और शुक्र मिथुन राशि में, बृहस्पति कर्क राशि में, केतु सिंह राशि में, चंद्रमा मकर राशि में, राहु कुंभ राशि में, शनि फिलहाल विद्यमान है मीन राशि में और मंगल संचरण कर रहे हैं मेष राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशि फल कैसा रहने वाला है। आज हम बृहस्पति के शुभ योगों की बात कर रहे हैं। तो बृहस्पति का पहला शुभ योग कौन सा है और इसके प्रभाव क्या हैं? बृहस्पति का पहला और सबसे सशक्त जो राजयोग है, जो शुभ योग है, उसका नाम है हंस योग। हंस योग जो है ये बृहस्पति का पंच महापुरुष योग है। बृहस्पति जब कुंडली में कर्क राशि, धनु राशि या मीन राशि में हो तो हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग बनता है, लेकिन इसके लिए बृहस्पति को लग्न से केंद्र में होना चाहिए। अगर कुंडली में हंस नामक योग है तो इससे व्यक्ति तपस्वी, विद्वान और ज्ञानी होता है। जीवन में धर्म के रास्ते पर, ज्ञान और विद्या के रास्ते पर चलता है। जिनकी कुंडलियों में हंस योग होता है ऐसे लोग बिना प्रयास के जीवन में नाम, यश और सम्मान पा जाते हैं।
और जिनकी कुंडलियों में हंस योग होता है ऐसे लोग राजनीति के क्षेत्र में, कानून के क्षेत्र में, शिक्षा में, धर्म के क्षेत्र में, जीवन में बड़ी सफलताएं प्राप्त करते हैं। ऐसा देखा गया है कि इनके ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा होती है, इनके ऊपर ईश्वर का विशेष वरदान होता है। अगर कुंडली में हंस योग है तो आपके पूर्व संस्कार, ईश्वर की कृपा और जीवन का सहयोग आपको प्राप्त होगा। लेकिन हंस योग वालों को हमेशा अहंकार से बचाव करना चाहिए, अहंकार से बचना चाहिए। इन लोगों को हमेशा खाने की आदत पर भी ध्यान रखना चाहिए। ज्यादा खाने के चक्कर में कभी कभी ये लोग मोटापे के शिकार भी हो जाते हैं। बृहस्पति के शुभ योगों पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, धन का लाभ हो सकता है, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धार्मिक कार्य में व्यस्त रहेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, संतान पक्ष की उन्नति होगी, छोटी छोटी बातों पर परेशान ना हो। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, पारिवारिक समस्या हो सकती है, वाहन सावधानी से चलाएं, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर में नए अवसर मिलेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब जानते हैं बृहस्पति के दूसरे शुभ योग के बारे में और इसके प्रभाव के बारे में। बृहस्पति का जो दूसरा राजयोग है या दूसरा शुभ योग है उसका नाम है गजकेसरी योग। अगर बृहस्पति और चंद्रमा एक दूसरे से केंद्र में बैठे हों तो गज केसरी योग जीवन में बन जाता है। गज केसरी योग सामान्य व्यक्ति को भी विशेष बना देता है, सामान्य व्यक्ति के अंदर भी विशेषता पैदा कर देता है।
और अगर आपकी कुंडली कर्क लग्न की हो, वृश्चिक लग्न की हो, मीन लग्न की हो और कुंडली में गज केसरी योग हो तो ये विशेष प्रभावशाली होता है। जिनकी कुंडलियों में गज केसरी योग होता है ऐसे लोग शासन में और राजनीति में विशेष रूप से सफलता पाते हैं और ऐसे लोग जीवन में जिस भी क्षेत्र में जाते हैं उस क्षेत्र में खूब सफल होते हैं। छोटे से छोटे क्षेत्र में भी जाएंगे तो वहां पर करियर की ऊंचाइयां हासिल करेंगे, ऐसा गजकेसरी योग से हो जाता है। इस योग के होने पर व्यक्ति को शिव जी की उपासना करनी चाहिए क्योंकि शिव जी की उपासना करने से इस योग की शुभता बनी रहती है और अगर संभव हो तो पीला पुखराज भी धारण करना चाहिए। पीला पुखराज धारण करना अच्छा होता है। बृहस्पति के तीसरे शुभ योग की बात भी करेंगे लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, करियर में सफलता मिलेगी, संतान पक्ष की उन्नति होगी, धन की स्थिति उत्तम बनी रहेगी, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन की स्थिति में सुधार होगा, परिवार में विवादों से बचाव करें, माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी, धन के खर्चे बढ़े रहेंगे, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृश्चिक राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, छोटी यात्रा हो सकती है, किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब जानते हैं कि बृहस्पति का तीसरा शुभ योग कौन सा है और इसके प्रभाव क्या हैं। बृहस्पति का तीसरा शुभ योग या तीसरा राजयोग है केंद्रस्थ बृहस्पति। क्या होता है ये? देखिए, बृहस्पति केंद्र में काफी मजबूत माना जाता है। कुंडली के लग्न, चतुर्थ, सप्त
सप्तम और दशम भाव को केंद्र कहते हैं। अगर इसमें बृहस्पति बैठे हों, विद्यमान हों, तो ये बृहस्पति काफी मजबूत होते हैं। और उसमें भी अगर बृहस्पति लग्न में बैठा हो तो अत्यंत शक्तिशाली हो जाता है। केंद्र में बैठा हुआ बृहस्पति कुंडली के तमाम दोषों को नष्ट कर देता है। और केंद्र में बैठा हुआ बृहस्पति व्यक्ति की आयु लंबी कर देता है और व्यक्ति को ज्ञानी बना देता है। लग्न में अगर बृहस्पति बैठा हो, यानी केंद्र में भी लग्न में अगर बैठा हो, तो बृहस्पति कुंडली के सारे दोषों का अकेले नाश करने में सक्षम होता है। अगर आपकी कुंडली में केंद्र में बृहस्पति बैठा है तो ऐसा बृहस्पति होने पर धर्म स्थानों पर जरूर जाएं। और अगर नियमित रूप से आप तिलक लगा सकें, मंदिरों में दर्शन कर सकें, लोगों का आदर और सम्मान कर सकें, तो आपके लिए और भी ज्यादा उत्तम होगा। तो केंद्र में अगर बृहस्पति बैठा है और उसका फायदा लेना चाहते हैं तो जीवन में पवित्रता से रहने पर आपको लाभ होगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, स्थान परिवर्तन हो सकता है, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, परिवार में शांति बनाए रखें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा, महत्वपूर्ण काम बन जाएंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा।

चिंता हो सकती है, वाद विवाद से बचाव करें, करियर में कोई जोखिम ना लें, सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मीन राशि, करियर में सफलता मिलेगी, धन की स्थिति में सुधार होगा, परिवार में शुभ कार्य होंगे, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तो आज हमने बात की बृहस्पति के शुभ योगों के बारे में। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए एक लकी टिप। अगर संतान की उन्नति को लेकर के तनाव रहता हो, संतान की उन्नति को लेकर के चिंताएं रहती हों, तो हर बृहस्पतिवार को शिव मंदिर जाएं, माता या पिता और शिवलिंग पर पीले फूल अर्पित करके अपनी संतान के लिए प्रार्थना करें, संतान के जीवन में उन्नति होगी। अब जान लेते हैं दिनांक 5 जून 2026 दिन शुक्रवार का सक्सेस मंत्र क्या है।

लक्ष्मी को गुलाब का फूल अर्पित करिए। घर से निकलते समय उस फूल को अपने पास रख लीजिए। अगर प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो।

0: Bush. Tune into my show, Hot Mics, Monday to Thursday at noon Eastern, 9 a.m. Pacific for the latest in politics, entertainment, tech, sports, pop culture, and much more. Just tell your device to play Hot Mics on TuneIn to listen.
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं
4: अविश्वास में विश्वास बसता है
1: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है
5: गुड न्यूज टुडे
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें गुड न्यूज टुडे अच्छी खबर सच्ची खबर
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में

हमारी दृष्टि में पांच बातें भगवद गीता जी की बहुत ही स्वीकार योग्य हैं। पहली, गीता जी से तो शिक्षा ये लो, भीड़ भले ही किसी के साथ हो ये महत्वपूर्ण नहीं है, भगवान जिसके साथ होगा उसी की विजय होगी। ये गीता जी की पहली शिक्षा है। कौरवों के पास भीड़ थी पर भगवान नहीं थे, पांडवों के पास भीड़ नहीं थी पर भगवान थे, परिणाम कौरव हार गए, पांडवों की विजय हो गई। ये गीता जी की पहली शिक्षा है। श्रीमद् भगवद गीता की दूसरी शिक्षा सुनो जो हमने समझी। दूसरी शिक्षा, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल प्राप्त होगा। रामचरितमानस में श्री तुलसीदास जी भी कहते हैं।

दूसरा दूसरी शिक्षा, जो जैसा कर्म करेगा मेरे भारत के लोगों वैसा ही फल पाओगे। हम अपने खेत में अगर चने का बीज बोएंगे, चने का पेड़ ही उगेगा, आम का बीज बोएंगे, आम का फल ही प्राप्त होगा। इसलिए माई बाप, गिरधर की कुंडली कहती, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए, जग में होत हसाए, चित्त में चैन न पावे, खान पान सम्मान राग रंग मन ही न भावे, और कहे गिरधर कबीराए दुख कछु टरत न टारे, और खटकत हैं जिए माह किए जो बिना बिचारे। इसलिए भैया भगवत गीता का दूसरा सूत्र याद करना, जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल पाएगा। हम जैसा करेंगे वैसा ही पाएंगे। एक बार एक सेठ ने बिना बात के नाराज होकर सेठ होने का रुआब अपने मैनेजर पर झाड़ा, मैनेजर पर गुस्सा हुआ। बेचारा मैनेजर अपने सेठ से कुछ नहीं बोला, तो मैनेजर ने अपने स्टाफ को डांटा, गुस्सा तो उसे भी निकाल ली थी। स्टाफ अब किससे क्या बोले, तो स्टाफ के कर्मचारी ने वॉचमैन को डांटा। अब वॉचमैन अपनी गुस्सा कहां निकाले, तो वॉचमैन ने अपनी गुस्सा अपनी लुगाई पत्नी पे निकाली, और उसकी पत्नी ने पति पर तो गुस्सा निकाल नहीं सकती, बिचारी रही होगी हमारे तरफ की, तो पत्नी ने गुस्सा अपने बच्चे पर निकाली, पीट दिया बच्चे को, बच्चे का दिमाग खराब। अब बच्चा किस पे गुस्सा निकाले, तो बच्चे ने एक कुत्ता पे जोर से पत्थर मारा,

कुत्ता भागा, अब कुत्ता किस पे गुस्सा निकाले। एक आदमी सामने मिला, उसी को काट दिया, और जिसे काटा था वो कोई और नहीं, उसी कंपनी का मालिक था। वो सेठ पूरे रात ये सोचता रहा कि आखिर कुत्ता ने हमको क्यों काटा, पर उसे पता ही नहीं चला कि आपने जो कर्म किया उसका परिणाम आपने भोगा। मेरे पागलो, जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल।

जैसा कर्म करोगे मेरे प्रियजनों वो फल पाओगे। याद रखना, जो जैसा करता वो भोगता है। हमको लगता है कि हम बुरा कर रहे, कोई देख नहीं रहा। अरे भैया, ठठरी के बरे दुनिया नहीं देख रही, वो बात अलग है, पर देखने वाला तो देख रहा है। हमें लगता हम ऐसा कर रहे कोई नहीं देख रहा। अरे तुम्हारे कहने से, देखने वाले भगवान तो देख रहे। बोलो जय सियाराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो, भगवान तो देख रहे हैं। ऐसे समझो, एक बार एक आदमी चला जा रहा था कुरुक्षेत्र का। रास्ते में दिल्ली जाते समय आम का बाग दिखा। किसका बाग? आम का। उसने सोचा आम का बाग है, बहुत बढ़िया है। तो रास्ते में जब दिल्ली जा रहा था, आम का बाग दिखा, वो आम के बाग में चला गया। लेकिन देखा किसने? आंखों ने। किसने देखा? जोर से बोलो, आम का बाग देखा किसने? आंखों ने देखा तो, पर आंखें चल नहीं सकती। तो देखा आंखों ने, चले पैर। चला कौन? पैर। लेकिन पैर बाग तक तो पहुंच गए, पर आम तोड़ नहीं सकते। देखा आंखों ने, चले पैर, तोड़ा हाथों ने। किसने तोड़ा? हाथों ने। लेकिन हाथ तोड़ तो सकते, पर खा नहीं सकते। तो तोड़ा हाथों ने, खाया मुंह ने। किसने खाया? मुंह ने। अच्छा, मुंह खा तो सकता है पर रख नहीं सकता, रखा पेट ने। इतने में आ गया उस बाग का माली। उसने कहा चोरी कर रहे, सो चार डंडा फटकारी, पिटी बिचारी पीठ। देखा आंखों ने, चले पैर, तोड़ा हाथों ने, खाया मुंह ने, रखा पेट ने, पिटाई पीठ की हुई। बताओ, ऐसा कहीं हो सकता? पीठ का पूरी कहानी में लेना देना नहीं है, पर पिटी पीठ। लेकिन भैया, कर्म का फल महान होता है। पिटी जरूर पीठ, पर जब लाल पड़ गया तो रोई आंखें, क्योंकि देखा आंखों ने था। किसने देखा था? तो जब पिटाई जोरदार हुई तो कौन रोया? आंखें रोई, क्योंकि आंखों ने ही देखा था। इसलिए रामचरितमानस में कली कुलशेखर श्री तुलसीदास जी महाराज अपनी वाणी में कहते हुए बड़े भाव से कहते हैं।

यह गीता जी की दूसरी शिक्षा है। मेरी आत्माओं, पहली शिक्षा है कि भीड़ के साथ नहीं, हमें भगवान के साथ होना चाहिए। दूसरी शिक्षा, कर्म के फल से डरना चाहिए, इसलिए बिना विचार करके कर्म नहीं करना चाहिए। श्रीमद् भगवद् गीता जी की तीसरी शिक्षा, सार ले लीजिए पांच बातों में, पूरी गीता जी का सार पांच बातों में बताएंगे। तीसरी शिक्षा क्या है? मृत्यु से नहीं डरो, मौत से मत डरो, मौत के डर से डरो। किससे डरो? मौत से मत डरो, क्योंकि जिसका जन्म हुआ वो मरेगा, जो जन्म लेगा वो मरेगा। आया

0: अच्छा सिंहासन चढ़कर कौन जाएगा?
1: धर्मी सिंहासन चढ़े पापी डंडे खात, दया धर्म करते रहो मानो मेरी बात।
0: इसलिए पागलो हमें मौत से नहीं डरना, मौत से नहीं डरना, मौत के डर से डरना। मौत का डर मौत से ज्यादा खतरनाक है मेरे पागलो। हम लोगों को ऐसी जिंदगी जीनी चाहिए कि जब कभी मौत आए तो वो भी शर्मा जाए, मैं किस बादशाह को लेने आई। बाबा तुलसीदास कहते, जब तू आया जगत में जग हंसा तू रोए, कुछ करनी ऐसी कर चलो तू हंसे जग रोए। ऐसा काम करके मरना, कौन सा काम? दुनिया वाले रोते रहे, हम हंसते हुए मौत को गले लगाएं। मौत तो शाश्वत सत्य है। एक संत कहते थे, मौत की भी मौत आएगी जब मेरी मौत आएगी, मौत की भी मौत आएगी जब मेरी मौत आएगी। भैया मरना तो तय है। हमारे पास में 80-80 साल के वृद्ध आते हैं, 80-80-90। एक बार कुरुक्षेत्र का आया 95 साल का। हमने कहा और बताओ क्या चाहिए? बोले गुरुजी ऐसी भभूति दे दो कि हम मरे ना। हमने कहा कुछ दिन में ठटरी भरने वाली है और तुम कह रहे मरे ना। अरे ऐसी भभूति हमारे पास होती तो पहले हम ही ना खा लेते, तुम्हें देने के पहले हम ही ना खा लेते। ऐसे ही एक बार हम वहां गए मुंबई, बहुत पहले पहली बार मुंबई गए, सब मिलने के लिए आए। बागेश्वर बाबा आया। जिनके घर पर हम रुके थे वो एक जड़िया जी हैं, बहुत अच्छे हैं, सज्जन हैं। तो वहां के एक बहुत बड़े फिल्म अभिनेता हमसे मिलने आए, बहुत बड़े एक्टर हैं वो, मिले, लोगों ने परिचय करवाया। हमने कहा बहुत अच्छा, बड़े बड़े लोग आए। हमने कहा बहुत अच्छा, स्वागत। वे बोले हमने सुना बाबा जी आप पर्चा बनाते। हमने कहा हमने भी यही सुना है कि हम पर्चा बनाते। तो बोले बाकी तो सब ठीक है, हम चमत्कारों पर उतना ज्यादा भरोसा नहीं करते, हम तो स्पिरिचुअल आदमी हैं, लेकिन हमने सुना आप पर्चा बनाते हो, हनुमान जी की कृपा है, आप हमारे पर्चे में ऐसा कुछ लिख के दो जो कभी टले ना, कटे ना, शाश्वत सत्य हो। हमने कहा लाओ पेन कागज। हमने पेन कागज लिया और उनके कागज पर लिखा, मरना तय है, तुम्हारे बाप में दम हो तो बच जा। उन्होंने कहा था कि ऐसा लिख कर दो जो कभी कटे ना, जो कभी झूठा ना पड़े। हमने लिख दिया मरना तय है, तेरे बाप में दम हो तो बच जा। उसी दिन से पागल हो गया, बोले गुरुजी हम गए चेले। पर भैया ये बात उदाहरण की है, सत्य तो यह है। गीता जी का ज्ञान, गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण श्रीमद भगवत गीता में श्री कुरुक्षेत्र में खड़े होकर के पार्थ अर्जुन को कहकर सुनाते हैं। नहीं

0: शरीर मरता, जैसे नए कपड़े पहनने के लिए हम लोग पुराने कपड़े लेते, वैसे ही आत्मा भी नया शरीर लेने के लिए पुराना शरीर छोड़ती है। इससे सत्य है कि हमें मरना नहीं, मरता तो शरीर है लेकिन हम लोग फिर भी हैरान है। देखो कितनी गजब बात, मरना सबको है पर मरना कोई नहीं चाहता, मरना सबको है मरना कोई नहीं चाहता। हम तो भैया एक ही बात कहेंगे, अरे मरना तो है ही है पर काम कुछ ऐसा कर जा, मरने से पहले यार इस जग में अपना नाम रख जा। ये तीसरी शिक्षा श्रीमद् भगवद गीता की, क्या मृत्यु से ना डरे, मौत के डर से डरे। चौथी शिक्षा कौन सी, रोगी नहीं भोगी नहीं कर्मयोगी बनो। क्या बनो, जोर से बोलो, कर्मयोगी। रोगी मत बनो न भोगी बनो, कर्मयोगी बनो। जो कर्म करता है बुरा ना मानना, कर्म करोगे धक्के लगेंगे पर से कर्म, ठोकरे खाने से घबराओ मत, कोई धक्का लगे घबराओ मत, से कर्म करोगे धक्के लगेंगे पर ठोकरें ही इंसान को महान बनाती है। ठोकरे खाने से घबराओ मत, कोई धक्का लगे घबराओ मत। शेर जब लंबी छलांग लगाता है तो शेर की एक आदत होती है, वो कुछ पग पीछे आता है, पहले पीछे आता है फिर लंबी छलांग लगाता है। अगर ठोकर लगे तो यही समझ लेना चाहिए हम कुछ पग पीछे आ गए हैं, मतलब अब लंबी छलांग लगाने वाले। हमारे पूज्य दादा गुरुजी कहते थे, बेटा दुख का झूला जितना पीछे तक जाएगा, सुख का झूला उतना ही आगे आएगा। इसलिए डरो मत, कर्म करो, डरो मत मेरे पागलो। जो कर्म से जीता है, कर्म करता है, वही इस दुनिया में महान होता है। और ठोकरे खाकर अगर तुम डर गए, बुरा ना मानना, राम जी बन को गए, राम जी बन गए सो बन गए, राम जी बन गए सो बन गए, ना राम जी बन जाते न राम जी भगवान बन पाते। राम जी बन गए इसलिए वो बन गए, इससे सिद्ध होता है कि अगर हमें ठोकरें लगे तो घबराना नहीं है।
1: Order for Jennifer C.
2: Is this my double shot, double cream, double froth, double pump, double whip, double sleeve?
1: Yeah. Can you handle that much caffeine?
2: Did you know Discover automatically doubles all the cash back you've earned at the end of your first year?
1: Oh, really? That's great.
2: Seriously, did you know Discover automatically doubles all the cash back you've earned at the end of your first year?
1: Yeah, you just said that.
2: Did you say I just said that?
1: Yeah, I'm cutting you off.
2: I can't have any more? Why not?
3: You earn, we match. Discover cashback match. See terms at discover.com/creditcard.
4: Jazz fans, rejoice. Stingray Jazz offers riveting concert films and documentaries from the world's most prestigious stages. Whether you're a lifelong connoisseur or just getting up to tempo, Stingray Jazz, now available for free on Pluto TV. Stream now, pay never.
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं, अविश्वास में विश्वास बसता है। जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे,
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम
9: सच्ची खबर,
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: गुन्नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
7: अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी जोड़ों का दर्द है, यानी घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे का दर्द, तो ये शो आपकी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जिनकी उम्र 70 साल से 100 साल तक है, और इस उम्र में भी इन लोगों को जरा भी जोड़ों का दर्द नहीं है। यानी ये लोग इस उम्र में भी कहीं जाने के लिए, उठने बैठने के लिए किसी पर भी निर्भर नहीं है। एक लाइन में कहें तो ये लोग इस उम्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर है।
10: मैं पिछले 1 साल से आयुर्वेदिक महाशक्तिशाली फॉर्मूला ले रहा हूँ, फौजी 360 इसका नाम है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में यानी घुटने, कमर, कहीं भी जरा भी दर्द नहीं, और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
8: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
11: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है, मैनू जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है। अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
7: फौजी 360 को अब तक जितने भी लोगों ने इस्तेमाल किया है, उन सभी लोगों को जोड़ों के पुराने से पुराने दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे के दर्द से पूरी तरह आजादी मिली है। और ये दावा हम नहीं, वो लोग खुद कर रहे हैं जो फौजी 360 इस्तेमाल कर चुके हैं।
12: इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं, और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
13: और सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि इसे हर बंदा ले सकता है, डायबिटीज वाला मरीज ले सकता है, ब्लड प्रेशर वाला मरीज ले सकता है, और मेरा खुद का दर्द खत्म हुआ यार। इसीलिए मैं खुल के बताता हूँ कि ये फौजी गजब की चीज है।
7: फौजी 360 के सिर्फ एक कोर्स के बाद 80-90 साल के बुजुर्ग भी जवानों की तरह सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पोते पोतियों को गोदी में लिए घंटों उनके साथ खेल रहे हैं।
14: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने।
7: ये बात सुनने में बड़ी हैरान करने वाली है, पर इन बुजुर्गों ने इंटरनेट पर प्रूफ के साथ वीडियोस भी अपलोड हैं, जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है। और जोड़ों के दर्द के तेल और स्प्रे बेचने वाले दुकानदार परेशान है, क्योंकि फौजी 360 लेने के बाद कोई भी व्यक्ति कभी भी इन जोड़ों के दर्द को ठीक करने वाली दवाएं जैसे तेल, गोली और स्प्रे के चक्कर में दोबारा कभी नहीं फंसेगा।
15: 3 साल से आंटी जी के घुटनों में इतना दर्द था कि इनका घुटना मुड़ता भी नहीं था, जरा भी नहीं मुड़ता था। और आज की स्थिति देखते हैं आप, ये देखिए इनका पूरा घुटना मुड़ रहा है, हॉस्पिटल खुद चल के आई हैं, और ये सब कमाल हुआ है फौजी 360 से। हम रिपोर्ट से समझते हैं, देखिए इनके पुरानी रिपोर्ट है, पूरी घुटने जकड़ चुके थे, जाम हो चुके थे, जिसके कारण घुटनों में पूरी तरीके से मूवमेंट खत्म हो गया था। और आज की डेट है जब से इन्होंने फौजी 360 यूज करना शुरू किया है, उसके बाद उनके घुटनों में एक तरीके से नई जान आई है। और हमें इतना अच्छा लगता है जब हम देखते हैं कि लोगों के पैसे बच रहे हैं और लोगों को फौजी 360 जैसे नेचुरल प्रोडक्ट से आराम मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जिन भी लोगों को जोड़ों से संबंधित कोई भी समस्या है, एक बार फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
7: फौजी 360 के इफेक्ट्स और रिजल्ट्स को जानने के लिए हमने बहुत से एक्सपर्ट से बात करी, और लगभग सभी का यही कहना था कि फौजी 360 जोड़ों के दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे के दर्द के लिए राम बाण की तरह काम करता है।
16: किट में मिलने वाले जो दूसरे प्रोडक्ट होते हैं जैसे तेल, स्प्रे, ये सिर्फ ऊपरी और टेम्परेरी राहत देते हैं, और वहीं फौजी 360 शरीर के अंदर जाकर जोड़ों को, हड्डियों को, मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
17: ये साहिल जी हैं, 2 महीने पहले आए थे, कह रहे थे मेरे दोनों घुटने बदल दो क्योंकि बहुत परेशानी हो रही थी इन्हें चलने फिरने में। मैंने कहा हम पैसे बर्बाद नहीं करेंगे, आप फौजी 360 का एक कोर्स लेके देखिए, फिर मिलते हैं। आज आए हैं, बताइए सर कैसे रिजल्ट मिले आपको, क्या स्थिति है अभी?
16: पहले तो जितना धन्यवाद आपको दूं उतना कम है डॉक्टर साहब, क्योंकि पूरा चल लेता हूं मैं मोटरसाइकिल चलाने लगा हूं वापस से अपनी। अब बिल्कुल भी बुरी स्थिति नहीं है, एकदम बिल्कुल दर्द खत्म हो चुका है। अब तो आप मुझे बोलो 5 किलोमीटर चले जाओ, मैं बिल्कुल चले जाऊंगा, अभी भी सीढ़ी चढ़ के आया हूं हॉस्पिटल में।
18: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं। फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
14: 2 साल से घुटने और कमर के कारण पलंग पकड़ लिया था, सब पलंग पे ही हो रहा था, अगना मुतना भी पलंग पे हो रहा था, जरा भी नहीं चल पाता था। 3 महीने से ये फौजी 360 पाउडर ले रहा हूँ, अब खुद से उठ जाता हूँ, बाथरूम हो जाता हूँ, चल फिर लेता हूँ, बहुत आराम है, बहुत राहत है।
18: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
12: रोज 150 सीढ़ी चढ़कर मैं मेरे भोले बाबा के मंदिर जाती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है मेरे घुटनों में। और ये कमाल किसी तेल या स्प्रे से नहीं हुआ है, क्योंकि उनसे कुछ होता ही नहीं है, मुझे तो फायदा हुआ है फौजी 360 से। अरे कमाल का ट्रीटमेंट है, इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
18: दुनिया के किसी भी तेल या स्प्रे के साथ कभी भी कोई गारंटी नहीं मिलती, यानी दर्द खत्म होगा या नहीं इस बात की कोई गारंटी नहीं, लेकिन फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है। यानी अगर आपने फौजी 360 किसी भी तेल या स्प्रे के साथ कभी भी कोई गारंटी नहीं मिलती, यानी दर्द खत्म होगा या नहीं इस बात की कोई गारंटी नहीं, लेकिन फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है। यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट्स नहीं मिले तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
19: 15 साल पहले चिकनगुनिया हुआ था, तब से शरीर के हर कोने में दर्द बना रहता था। होम्योपैथी, फिजियोथेरेपी, ये तेल, वो स्प्रे, सब ट्राई कर लिया, मगर आराम मिला 3 महीने पहले इस फौजी 360 से। अब कसम खा के बता रहा हूँ, जरा भी दर्द नहीं है शरीर में।
12: घुटने के दर्द के कारण मैं चल भी नहीं पाती थी, पर ये जब से फौजी 360 लिया है ना, बिल्कुल भी दर्द नहीं। अब आप देखो, मैं घर का पूरा काम खुद कर लेती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है।
20: 5 साल से तो मैंने नमाज भी अदा नहीं की थी क्योंकि घुटना मेरा मुड़ता ही नहीं था। अब घुटने बदलवाने के लिए जितने पैसे भी नहीं थे कि घुटने बदलवा लें इस उम्र में, फिर ये फौजी 360 जब से लेना शुरू किया है, अब मैं खुद चल लेता हूँ, खुद का काम पूरी तरीके से कर लेता हूँ, और जो मैंने पलंग पकड़ लिया था ना, वो वहाँ से बच गया हूँ मैं। अब ये तो ताकत है फौजी 360 की, ये अल्लाह की दुआ से कम नहीं है फौजी 360। अब खुद का काम मैं खुद से करता हूँ बिल्कुल।
14: हमारे नेपाल में पहाड़ी इलाका है तो चलना फिरना बहुत होता है, जोड़ों में बहुत दर्द का प्रॉब्लम शाप को रहता है, पर हमने कभी तेल या स्प्रे नहीं लगाते, कुछ नहीं होता उससे। सारे लोग मेरी उम्र के यहाँ फौजी 360 लेते हैं, बहुत कमाल का दवाई है, बिल्कुल भी जोड़ों में दर्द नहीं है इसको लेने से।
18: अगर आप चाहते हैं कि आपके जोड़ों का दर्द अंदर से पूरी तरह ठीक हो सके और आपको पूरी तरह आराम मिल सके, तो सिर्फ एक कॉल करके इस कमाल के आयुर्वेदिक फॉर्मूले फौजी 360 को अपने घर मंगा सकते हैं और जोड़ों के दर्द से पूरी तरह आजादी पा सकते हैं।
21: बॉलीवुड का एक गाना है ना, लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान। तो मेरी कहानी भी ऐसी है कि मैं दुनिया के लगभग बहुत से बड़े बड़े देशों में रहा हूँ और मैंने सब जगह ये जोड़ों के दर्द, स्पेशली घुटने के दर्द का इलाज कराया, बट कहीं भी वैसा रिजल्ट नहीं मिला। 2 ईयर्स बैक व्हेन वी शिफ्टेड टू इंडिया, तब ये फौजी 360 के बारे में पता पड़ा, वी स्टार्टेड यूजिंग इट। मुझे और मेरी वाइफ दोनों को इतना कमाल का रिलीफ मिला कि ऐसा रिलीफ किसी भी ट्रीटमेंट से आज तक नहीं हुआ था।
18: फौजी 360 के बारे में और डिटेल में जानने के लिए हमारी टीम उस आयुर्वेदिक आश्रम तक पहुंची जहां फौजी 360 बनाया जाता है और उन एक्सपर्ट से बात करी और वो सीक्रेट जानने की कोशिश करी कि कैसे सिर्फ एक फॉर्मूले से लोगों के जोड़ों का दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द, पूरी तरह ठीक हो रहा है।
22: इसमें कुछ ऐसी औषधियां हैं जो आपकी बोन्स को मजबूत बनाता है, जो आपके लिगामेंट में जो फ्लूइड की कमी हो गई है, ये उसे दोबारा रिस्टोर करने में मदद करता है और साथ ही दूसरी दवाओं से ये बेहतर इसीलिए है कि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसे डायबिटिक पेशेंट ले सकता है, इसे ब्लड प्रेशर का मरीज ले सकता है, क्योंकि ये पूरी तरह सुरक्षित है और आपको पहले दिन से फायदा दिखने लगेगा। ये ताकत है फौजी 360 की। बस यही कारण था कि हमने सोचा कि अब समय आ चुका है लोगों की, जनता की सेवा करने का और घर घर इसे भिजवाने का। तो जो आप स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं, आप इस पर फोन कर सकते हैं, हमारे केंद्र पर डायरेक्ट फोन होगा। आप अपनी समस्या बताइए, अगर आपको बात सही लगती है, फौजी 360 आपको लगता है कि हाँ अब समय है कि जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक करना है, तो आप इसे मंगा सकते हैं। और साथ ही इसमें कुछ ऐसी औषधियां भी हैं जो आपको पूरे समय आपके शरीर में चुस्ती बनाए रखता है।
18: फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है, यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट्स नहीं मिले, तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
15: फौजी 360 मार्केट में मिलने वाले दूसरे जो पेन किलर ऑयल्स होते हैं, स्प्रे होते हैं, उनसे कैसे अलग है, मैं आपको साइंटिफिकली समझाता हूँ कि ऐसा क्या है इस ट्रीटमेंट में जो इसके रिजल्ट्स बहुत ही शानदार है। देखिए, कोई भी तेल या स्प्रे कैसे काम करता है, सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूँ। आपके दर्द वाले हिस्से पे जब आप तेल लगाते हैं, तो ये बाहर से आपके उस पर्टिकुलर एरिया को सुन्न कर देता है। मतलब आपके बॉडी के अंदर दर्द तो रहता है, उस जोड़ के अंदर दर्द तो है, और वहीं फौजी 360 जो है ये अंदर से काम करता है, क्योंकि जब आप इसे कंज्यूम करते हैं, बॉडी को वो सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है जो जोड़ों को मजबूत बनाता है अंदर से, जो जोड़ों की चिकनाहट कम हो गई है ना, ये उसको दोबारा लौटाता है। तो ये एक अंदर से काम करने वाली चीज है, यानी ये पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से ठीक करता है, और वहीं तेल और स्प्रे सिर्फ टेम्परेरी राहत देते हैं। तो आप अगर अभी भी जोड़ों के दर्द के लिए तेल या स्प्रे यूज कर रहे हैं, तो आप आज से ही वो सब बंद कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ पैसे बर्बाद करने की बात है और टेम्परेरी रिलीफ की बात है। अगर आप पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से मजबूत बनाना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, तो आप एक बार ये फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
0: पिछले महीने मैं बाथरूम में स्लिप हो गई थी, तो बहुत दर्द रहता था पेट में। डॉक्टर ने कहा कुछ L1 L2 का कुछ तो बताया था, पर इन्होंने फौजी 360 लाके दिया और उससे इतना आराम हुआ है कि अब जरा भी दर्द नहीं है। मम्मी पापा जी ने भी लेना शुरू किया है और उनको भी जो घुटनों में दर्द था, उन्हें भी राहत मिली है। तो हर घर में मुझे लगता है ये फौजी 360 होना ही चाहिए।
1: मैं तो 12 महीने ही केदारनाथ बाबा के चरणों में ही रहता हूँ, और यहाँ इतनी ठंड पड़ती है कि ठंड के चक्कर में पूरे समय शरीर अकड़ा हुआ रहता है, सारे जोड़ में बड़ा दर्द बना रहता था। पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता। बर्फ में भी चल लेता हूँ, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। ये ताकत है इस आयुर्वेदिक फौजी 360 की।
18: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है, और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
2: टीवी पे फौजी के बारे में देखा, तो मैंने फोन करके फौजी 360 को सीधा घर मंगा लिया, क्योंकि 3 साल से कमर में इतना भयंकर दर्द था कि घर के सारे कामों के लिए मैं पूरी तरीके से बाइयों पे निर्भर हो चुकी थी। सिर्फ 15 दिन हुए हैं और अब बिल्कुल भी दर्द नहीं है, कमर में जरा भी दर्द नहीं है। इतना शक्तिशाली है ये फौजी 360।
23: बिना सहारे के मैं 2 कदम भी नहीं चल पाती थी, पूरे समय बहू और बेटे की मदद ही लेनी पड़ती थी। पर जब से ये फौजी 360 लिया है, कमर में, घुटने में जरा भी दर्द नहीं है। अब सीढ़ियां चढ़ जाती हूँ, उतर जाती हूँ, चल लेती हूँ आराम से, घर का सारा काम कर लेती हूँ। अब दर्द में पूरी तरीके से राहत है।
24: मेरी उम्र 88 साल है, रोज 5 किलोमीटर पैदल चलता हूँ, लेकिन फिर भी जरा भी दर्द नहीं है। ये शक्ति है फौजी 360 की।
18: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं। फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
10: 1 साल पहले दोनों घुटने बदलने के लिए बोल दिया था, मगर मैंने घर बैठे आयुर्वेद के एक फॉर्मूले से अपने घुटने और जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक किया है, और अब मैं वो सब कर सकता हूँ जो जवान आदमी भी नहीं कर सकता। आप में दम हो, आप करके बताओ। जोड़ों के दर्द के लिए जो भी लोग तेल या स्प्रे लगाते हैं ना, उन्हें आज से ही ये सब बकवास चीजें बंद करना चाहिए। इससे कुछ नहीं होता है, क्योंकि जोड़ों के दर्द का इलाज अंदर से होता है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में यानी घुटने कमर कहीं भी जरा भी दर्द नहीं, और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
18: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है, और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
1: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
11: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है, मैंने जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है। अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
18: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं। फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
14: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने का।
18: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 अपने घर मंगा सकते हैं।
19: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: Hot Mics with Billy Bush streaming on TuneIn, your front row seat to the American zeitgeist. Get engaged on sports, politics, entertainment, tech, pop culture, hosted by yours truly. It's funny, it's honest, provocative, unfiltered takes, and real talk, no fluff, with guests like Megyn Kelly and Dr. Phil, Candace Owens, Jack Osborne, Will Arnett, Charlie Sheen, all engaging personalities who actually say what everyone else is afraid to. On the go, catch the show live or on demand on the TuneIn app. At home and want to listen on your connected device, just say play Hot Mics with Billy Bush on TuneIn. If you missed the live show or want to catch up, listen on demand with the Hot Mics with Billy Bush podcast, available whenever you want.

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। TIT भोपाल, Gen Z's gateway to unbeatable placements।
3: RBI की मॉनेटरी पॉलिसी के फैसलों का ऐलान, 5.25% रेपो रेट बरकरार, ब्याज दरों में किसी भी तरह का बदलाव नहीं। मानसून की दस्तक का आज दूसरा दिन, कोची में जोरदार बारिश, मौसम हुआ सुहावना। पीएम मोदी की अपील का असर, मुंबई में बढ़ा कार पूलिंग का ट्रेंड, 30-40% बढ़ा कार पूलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन। एमपी के छतरपुर में हनुमान चालीसा हवन में उमड़ा आस्था का सैलाब, बाबा बागेश्वर के साथ लाखों भक्तों ने एक साथ किया हवन, तो वहीं विदेशों से भी ऑनलाइन जुड़े श्रद्धालु। सीएम योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, वाराणसी के श्री वरद आंजनेय मंदिर में काटा गया 54 किलो लड्डू केक, 54 परियोजनाओं के लिए लगाए गए 54 पौधे। आज मनाया जा रहा है विश्व पर्यावरण दिवस, देश भर में कार्यक्रमों का आयोजन, सूरत में कलाकार ने प्लास्टिक की बोतलों से बनाया पीएम का विशाल पोस्टर। रामचरण की फिल्म पेटी की बम्प पर ओपनिंग, बॉक्स ऑफिस पर धुरंधर का तोड़ा रिकॉर्ड, पहले दिन की वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
3: रामचरण की फिल्म पेटी ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर किया शानदार प्रदर्शन, फिल्म का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन 112.49 करोड़ रुपए पहुंचा। फिल्म पेटी ने रणवीर सिंह की धुरंधर और सनी देओल की गदर 2 जैसी फिल्मों के ओपनिंग डे रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया, फिल्म का क्रेज न सिर्फ दक्षिण भारत बल्कि हिंदी बेल्ट में भी देखने को मिला। भारत में पहले दिन पेटी की कमाई रही 69.5 करोड़, फिल्म पंडितों के मुताबिक पेटी का शानदार सफर आगे भी रहेगा जारी। पेटी की सफलता के लिए जानवी कपूर आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर पहुंची, सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जानवी कपूर का वीडियो। जानवी कपूर की सादगी की जमकर हो रही है तारीफ, उन्होंने नंगे पैर 3,500 से ज्यादा सीढ़ियां चढ़ी और भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन किए। सिनेमा लवर्स के लिए बड़ी गुड न्यूज, बड़े पर्दे पर रिलीज हुई बॉबी देओल की फिल्म बंदर और वरुण धवन की है जवानी तो इश्क होना है। इमरान हाशमी की फिल्म आवारापन 2 सिनेमा घरों में रिलीज के लिए तैयार, आवारापन 2 के सेट से एक इमरान हाशमी ने शेयर की तस्वीर। मोहनलाल की फिल्म दृश्यम 3 का बॉक्स ऑफिस पर जलवा बरकरार, दृश्यम 3 ने 15वें दिन 1.5 करोड़ का कलेक्शन किया। रणवीर सिंह की धुरंधर अब जापान में दिखाएगी अपना जलवा, 10 जुलाई को रिलीज होगी धुरंधर पार्ट 1। अब टीवी पर दर्शक देख सकेंगे धुरंधर पार्ट 2, जियो हॉटस्टार पर आज से रेगुलर सब्सक्राइबर्स के लिए अवेलेबल है। आज देश को मिलेगी 20,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात। सूरत में 18,000 करोड़ के विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे पीएम मोदी। सूरत के दौरे के बाद केंद्र शासित प्रदेश दमन पहुंचेंगे पीएम मोदी। दमन में हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। दमन के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का मिलेगा लाभ। नमो अस्पताल का भी उद्घाटन करेंगे पीएम। कन्वेंशन सेंटर एनआईएफटी कैंपस का भी शिलान्यास करेंगे। 8वीं बार दमन के दौरे पर पहुंचेंगे पीएम मोदी। पीएम के दौरे को लेकर दमन में जबरदस्त तैयारी। जगह जगह लगाए गए पीएम के बड़े बड़े कटआउट्स। पीएम मोदी आज लक्षद्वीप के कल्पेनी द्वीप और कदमत द्वीप के पूर्वी और पश्चिमी किनारों पर बंदरगाह सुविधाओं के विकास का भी करेंगे शिलान्यास। लक्षद्वीप में विकास और पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। पीएम के दौरे से पहले सूरत से आई क्रिएटिविटी की तस्वीर। एक कलाकार ने प्लास्टिक 17,000 रिसाइकल बोतलों से बनाई प्रधानमंत्री के शानदार पोस्टर। आज दुनिया भर में मनाया जा रहा है विश्व पर्यावरण दिवस। पर्यावरण संरक्षण और पर्यावरण को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए देश भर में कार्यक्रमों का आयोजन। दिल्ली के श्रम शक्ति भवन में मेरा युवा भारत यूथ एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म से जुड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया। केंद्रीय युवा और खेल मंत्री मनसुख मांडविय हुए शामिल। रामलला के दर्शन के लिए पहुंच रहे श्रद्धालुओं का ध्यान खींच रहे हैं भित्ति चित्र। राम मंदिर की दीवारों पर बनाए गए हैं रामायण के प्रसंगों पर आधारित भित्ति चित्र। राम मंदिर के चबूतरे पर बनाए गए हैं रामायण थीम वाली कलाकृतियां। श्री राम और रामायण के प्रसंगों पर बनी कलाकृतियां श्रद्धालुओं के अनुभव को बना रही हैं समृद्ध। अहमदाबाद में पहली विश्व योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का शुभारंभ हुआ। समारोह में सीएम भूपेंद्र पटेल, योग गुरु बाबा रामदेव समेत कई हस्तियां हुई शामिल। पीएम मोदी ने वर्चुअली किया विश्व योगासन चैंपियनशिप का उद्घाटन। योग को बताया मानवता के लिए सबसे बड़ा तोहफा। विश्व में बढ़ती लोकप्रियता की तारीफ। प्रतियोगिता में 60 से ज्यादा देशों के 500 से ज्यादा एथलीट्स ले रहे हैं हिस्सा। एका एरिना में 8 जून तक चलेगी प्रतियोगिता। प्रतियोगिता में पारंपरिक योगासन के साथ कई तरह की प्रतिस्पर्धाओं का होगा आयोजन। वीर द लायन रखा गया है पहली विश्व योगासन खेल प्रतियोगिता का शुभ अंक। योगासन को प्रतिस्पर्धी वैश्विक खेल के रूप में स्थापित करना और 2036 के ओलंपिक में शामिल कराने की दिशा में काम कदम बढ़ाना प्रतियोगिता का मकसद है। उत्तर प्रदेश के झांसी में महिलाओं ने केक काटकर मनाया सीएम योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन। बोले 2027 में एक बार फिर से यूपी में सीएम बनेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। यूपी का एक्सप्रेसवे नेटवर्क प्रदेश में विकास को दे रहा नया आयाम। प्रदेश को तेज कनेक्टिविटी, यात्रा, व्यापार और विकास को मिल रही मजबूती। महंगे डीजल पेट्रोल और पीएम मोदी की अपील के बाद मुंबई में बढ़ा कारपूलिंग का ट्रेंड। कारपूलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन में 30-40% की हुई बढ़ोतरी। असम में आज मंत्रिमंडल का होगा विस्तार। 9 नेता ले सकते हैं मंत्री पद की शपथ। रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में नहीं किया कोई बड़ा बदलाव। रेपो रेट 5.25% पर ही बरकरार। होम और कार लोन की ईएमआई पर फिलहाल कोई असर नहीं। केरल में पहुंचा मॉनसून। मौसम विभाग ने दक्षिणी पश्चिम मॉनसून के केरला पहुंचने की पुष्टि की। पूरे केरल, माहे और लक्षद्वीप के द्वीपों पर मॉनसूनी बारिश। देश के उत्तरी हिस्सों की ओर बढ़ेगा मॉनसून। मौसम विभाग ने देश भर में भारी बारिश की भी दी चेतावनी। भीषण गर्मी झेल रहे इलाकों में लोगों को मिलेगी राहत। आईएमडी के मुताबिक अगले 2 से 3 दिनों में आगे बढ़ेगा मॉनसून। गोवा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश के चुनिंदा हिस्से और कर्नाटक, तमिलनाडु के साथ कुछ पूर्वोत्तर राज्यों में पहुंचेगा मॉनसून। अगले 2 से 3 दिन में पहाड़ी राज्य में आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं। दिल्ली एनसीआर में मतलब मौसम का मिजाज, कई इलाकों में जबरदस्त बारिश से गिरा तापमान। तेज आंधी और बारिश, दोपहर में हुआ अंधेरा, बारिश के कारण तापमान गिरने से करोड़ों लोगों को गर्मी से मिली राहत। कुछ ही देर की बारिश से सड़कों पर लगा पानी, कई जगह पर धीमी हुई ट्रैफिक की रफ्तार। नोएडा में भी तेज आंधी के साथ हुई भारी बारिश, लोगों को जलती चुपती गर्मी से मिली राहत। गाजियाबाद में भी तेज हवाओं के साथ चली धूल भरी आंधी, बारिश ने लोगों को गर्मी से दिलाई राहत। बागेश्वर धाम में हजारों श्रद्धालुओं ने सामूहिक हनुमान चालीसा हवन में लिया हिस्सा, भक्ति के रंग ने अद्भुत दृश्य किया पेश। हनुमान चालीसा के मंत्रोच्चार के बीच हजारों श्रद्धालु भवन में शामिल, रात के अंधेरे में जलते हवन कुंडों की रोशनी दूर तक दिखाई दी। हजारों भक्तों के साथ पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी सामूहिक हनुमान चालीसा हवन में हिस्सा लिया, भक्तिभाव से सराबोर माहौल। बागेश्वर धाम में श्री हनुमान चालीसा हवन समारोह का 6वां आयोजन, रोशनी और भक्ति का दिखा अनोखा संगम। सामूहिक हनुमान चालीसा हवन समारोह में शामिल होने के लिए घंटों पहले से ही भक्त हुए एकत्रित, हवन कुंड में दी आहुति।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है इसके पढ़ना।
4: सभी भाइयों और बहनों को बाबा रवि गिरी का स्नेहिल आशीर्वाद। तो भाइयों और बहनों, मेरा नाम बाबा रवि गिरी है, मैं 78 साल का हूं और पिछले 50 वर्षों से सिर्फ एक ही कार्य कर रहा हूं, प्राकृतिक शुद्ध और गारंटेड इलाज देना। मैंने जीवन के पूरे 78 साल देखे हैं और उनमें से 50 साल केवल एक ही सेवा में लगे हैं, आयुर्वेद के माध्यम से रोगों का इलाज करना। आज हम एक ऐसी पीड़ा पर चर्चा करेंगे जो न बोले तो भीतर से जलाती है और बोले तो लोग हंसते हैं, और उसका नाम क्या है? बवासीर। अरे भाई और बहनों, ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये शरीर का रोग है और जैसे सिर में दर्द होता है वैसे ही गुदा में भी रोग हो सकता है, और सबसे ज्यादा लोग मेरे पास में बवासीर की बीमारी के लिए ही आते हैं, क्योंकि ये रोग न तो उम्र देखता है, न पैसा देखता है, न पद या ओहदा देखता है, बस जब होता है तो इंसान को नाक में दम कर देता है। जलन, दर्द, खून आना, बैठ भी ना पाए, मैंने खुद देखा है लोगों को रोते हुए, और तभी मैंने ठान लिया था बवासीर का इलाज निकालूंगा, ऐसा इलाज जो बवासीर वापस ना हो। मैंने जड़ी बूटियों को परखा, हजारों नुस्खे आजमाए और फिर तैयार की एक ऐसी औषधि जो आज मैं गर्व से कहता हूं गारंटी से बवासीर को ठीक करती है। तो भाइयों और बहनों, आपने पाइल्स के बहुत सारे इलाज कराए होंगे, कई दवाइयां खाई होंगी, लेकिन आपकी बवासीर ठीक नहीं हुई होगी। मैं बाबा रवि गिरी आपसे वादा करता हूं कि आपकी पुरानी से पुरानी पाइल्स ठीक होगी, और ये मेरी गारंटी है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको खूनी बवासीर है या बादी बवासीर, एक हफ्ते में आराम और 21 दिन में बीमारी जड़ से खत्म, ना ऑपरेशन ना साइड इफेक्ट, मैंने ये दवा उन्हीं जड़ी बूटियों से बनाई है जिन्हें हमारे ऋषि मुनियों ने आजमाया था, और आज देश भर से लोग फोन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि बाबा जी आपने तो हमें एक नया जीवन दान दे दिया है। मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, इलाज चाहिए तो आयुर्वेद अपनाओ, और अगर गारंटी इलाज चाहिए तो मेरे 50 वर्षों के अनुभव लो, नहीं फायदा हुआ तो पैसे वापिस, इतना भरोसा है मुझे अपने इलाज पर। तो भाई और बहनों, चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि बवासीर क्या होती है और क्यों होती है। बवासीर क्या है? हमारे मल द्वार या एनस जिसको बोलते हैं, एनस के अंदर या फिर बाहर छोटे छोटे रक्त वाहिकाएं या ब्लड वेसल होती है जो कभी कभी सूज जाती है, फूल जाती है और धीरे धीरे मांस जैसा बाहर निकलने लगता है। इसी को हम आम भाषा में कहते हैं बवासीर या पाइल्स। अगर इन सूजी हुई नसों से खून निकलने लगे तो उसे कहते हैं खूनी बवासीर, और अगर सिर्फ मांस बाहर निकलता है, जलन, दर्द और खुजली होती है तो वो कहलाती है बादी बवासीर। अब सवाल आता है कि ये होती क्यों है? तो सुनिए, इसके मुख्य कारण है कब्ज। अगर पेट साफ नहीं होता, मल सख्त आता है और रोज जोर लगाना पड़ता है तो धीरे धीरे नसें फूल जाती है। दूसरा, लंबे समय तक बैठना। जो लोग घंटों बैठे रहते हैं ऑफिस में गाड़ी चलाते हुए या फिर मोबाइल पर, तो उनमें रक्त संचार घटता है और नसों पर दबाव पड़ता है। तीसरा कारण है तीखा और भारी खाना खाना। बहुत ज्यादा लोग क्या होते हैं कि मिर्ची मसाले, तली चीजें और कम पानी, ये शरीर को गर्म करते हैं और अंदर जलन पैदा करते हैं। चौथा कारण होता है वंशानुगत कारण, जिसको जेनेटिक्स बोलते हैं। अगर आपके घर में माता पिता को बवासीर रही है तो संभावना बढ़ जाती है कि आपको भी हो सकती है। यह रोग सिर्फ शरीर को नहीं, इंसान की आत्मा तक को थका देता है। लेकिन इसके अलावा भी कई कारण हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि जिसका आहार संतुलित नहीं है, उसका कुछ भी संतुलित नहीं हो सकता। आयुर्वेद के अनुसार आहार ही सभी रोगों की जड़ का मुख्य कारण है। फिर जीवन शैली और पाइल्स यानी बवासीर तो मुख्य रूप से आहार से संबंधित है। आहार और विचार दोनों आपके शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विचार से अभिप्राय है, जीवन शैली से है, पर लोगों की इसी अनियमितता को देखते हुए मैंने कुछ खास जड़ी बूटियों का मिश्रण तैयार किया है बवासीर यानी पाइल्स के लिए। बवासीर के मेरे पास बहुत से मरीज आते हैं, कई तो दो तीन बार ऑपरेशन करवा चुके होते हैं फिर भी कोई आराम नहीं होता। वो इतनी आस लेकर आते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। बवासीर का मेरे पास एक बहुत ही कारगर फार्मूला है जो मैंने अब कुडोस आयुर्वेदा से बनवाया है। बवासीर एक बहुत ही कॉमन आम समस्या बन गई है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है पाइल्स होने के चांसेस भी एक व्यक्ति में बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम अपना पूर्ण रूप से ध्यान नहीं रख पाते हैं। और एक बात याद रखो, तनाव भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे गुस्सा आना, काम का तनाव, नींद पूरी ना होना, ये सब पेट को खराब करते हैं और पेट की गड़बड़ी बवासीर को बुलाती है। मैंने देखा है लोग बवासीर से पीड़ित होते हैं पर डॉक्टर के पास जाने में डरते हैं। औरतें तकलीफ सहती है पर परिवार से भी नहीं कह पाती, और फिर जब हालात गंभीर हो जाते हैं तो ऑपरेशन कराना पड़ता है। पर संतों का ये कहना है, रोग को समझो, शरीर की पुकार सुनो, और जीवन शैली सुधारो। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे बताए हुए नुस्खे अपनाओ और बवासीर को जड़ से खत्म करो। ये मेरी गारंटी है कि आपको जल्दी आराम मिलेगा, ये कोई मामूली। लेकिन उससे पहले इसका सही पहचानना जरूरी है। अगर ये लक्षण आपको दिखें, खून आना, सूजन होना, खुजली या जलन, मांस का टुकड़ा सा बाहर निकल आना, तो समझ लीजिए ये बवासीर की दस्तक है और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बाबा रविगिरी हूं ना, आयुर्वेद में ऐसे ऐसे नुस्खे हैं जिनसे बवासीर जड़ से ठीक हो जाती है। पर पहले रोग को जानो, स्वीकार करो, फिर उपचार करो। ये लाइलाज नहीं है और आयुर्वेद में इसका स्थायी समाधान है। मैंने खुद देखा है हजारों लोगों को इससे मुक्ति पाते हुए। तो भाइयों और बहनों, यहां मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं जिसे बहुत ध्यान से सुनना है। हर रोग का है समाधान जब हो मन में विश्वास का ध्यान। आयुर्वेद की राह पकड़ो, बिना डर के जीवन जियो। तो भाइयों और बहनों, मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूं कि आपकी पाइल्स की दिक्कतों को मैं जड़ से खत्म कर सकता हूं। अगर मेरे बताए गए नुस्खे अपनाते हो तो खुद आप बदलाव महसूस करोगे। अब हम बात करेंगे इलाज की। मेरे ये योगों में हरड़, जीरा, काली मिर्च, पीपली, मूल, चित्रक, छव्य, सूर्णकंद, अपामार्ग, अमलतास और बहुत कुछ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं हरड़ के फायदे। ये हरड़ है, औषधीय गुणों से भरपूर है। हरड़ के आयुर्वेद में चमत्कारिक फायदे बताए गए हैं। सेलेनियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, विटामिन, प्रोटीन, जीवाणुरोधी, एंटीबायोटिक गुणों से भरपूर है ये हरड़। बवासीर की बीमारी को दूर करने में बेहद असरदार साबित हुई है। जीरा जो छोंक में यूज करते हैं, ये वही जीरा है। ये कब्ज हो चाहे बवासीर हो, इन सब में

0: ये आंतों में अगर कीड़े हैं तो उनको खत्म करता है, आंतों में सूजन को खत्म करता है। इसके बाद में है चित्रक। चित्रक की रेचिन प्रकृति मानी गई है, यह एक नेचुरल लैक्सेटिव है जो लैटिन को धक्का मारता है, आंतों में पड़ा नहीं रहने देता, रेचन करने वाला है। इसके बाद में है सूरन कंद। यह है सूरन कंद, ये एक प्रोबायोटिक है और पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है। और ये है अपामार्ग, क्षार सूत्र की असली जड़ी बूटी है ये। इसमें सूजन घटाने वाले तत्व है जो बवासीर के मसों को शरीर से काट देते हैं। इसके बाद में है ये अमलतास। अमलतास पर बड़े शोध हुए हैं बड़ी बड़ी लेब में, और पता चला है कि इसमें प्रस्तुत है एंथ्राक्विनोनेज जो बवासीर पर काम करता है, पाचन शक्ति को मजबूत और जड़ पर काम करती है और बवासीर को जड़ से खत्म कर देती है। इसके बाद में है लज्जालु। लज्जालु पर जनरल ऑफ आयुर्वेद ने बताया है कि खूनी बवासीर पर चमत्कारित काम करता है, चाहे कोई भी डिग्री का बवासीर हो सब पर यह काम करता है। इसके बाद में है कचनार। कचनार की छाल काम दिया करती है, ये सूजन को घटाता है, बवासीर में कब्ज को काटता है, आंतों की सूजन को घटाता है, शरीर को विष हरण करता है और शुद्ध करता है। ये है निर्गुंडी, ये वातनाशक है। वात बढ़ने के कारण सूजन हो जाती है मसों में, ये निर्गुंडी जो है ये वात को शमन करके सूजन को घटाता है और मसों का नाश कर देता है। आखिर में यह है इंद्रायन। यह है इंद्रायन की जड़। इसके अंदर फ्लेवोनाइड्स, बेंजोइक एसिड, गैलिक एसिड, ये सारे गुण इसमें होते हैं जो बवासीर में आराम देते हैं। तो ये जितनी भी मैंने जड़ी बूटियां आप देख रहे हैं वो मैंने बताई है, ये सब मिलाकर मैंने बवासीर के लिए एक नुस्खा तैयार किया है और मैंने हजारों लोगों को इस पीड़ा से मुक्ति दिलाई है बिना ऑपरेशन, बिना किसी साइड इफेक्ट, सिर्फ शुद्ध और आयुर्वेदिक नुस्खों से। मेरे बताए नुस्खे अपनाओ, रोज नियम से इन्हें निभाओ, बवासीर को जड़ से मिटाओ, फिर लौट के कभी ना आए वो दर्द पुराना। और हाँ, खान पान में संयम जरूर रखिए, मिर्च मसाले कम, पानी ज्यादा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आपने मेरे बताए हुए नुस्खे नियम से अपनाए तो बवासीर जड़ से खत्म हो जाएगी और फिर दोबारा लौट कर नहीं आएगी। तो अब ऑपरेशन नहीं, अपनाओ रविगिरी के नुस्खे और कहो बवासीर तुझे जड़ से अलविदा। अब देर मत करो, मुझे तुरंत संपर्क करो और ये आयुर्वेदिक दवाई मंगवाओ ताकि बवासीर को हमेशा के लिए अलविदा कह सको। अब मैं भी आपसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: Back to the songs that never left. Jukebox Oldies is your favorite jukebox for 70s and 80s favorites that still feel young. From Madonna to George Michael to Hall & Oates and Eurythmics, the hits live on. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Jukebox Oldies to start listening now.
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन

0: 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में, कहीं खुशी तो कहीं गम। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। ज्वाइन SRM ISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
2: RBI की मॉनेटरी पॉलिसी के फैसलों का ऐलान, 5.25% रेपो रेट बरकरार, ब्याज दरों में किसी भी तरह का बदलाव नहीं। केरला में मॉनसून की दस्तक का आज दूसरा दिन, कोची में जोरदार बारिश, मौसम हुआ सुहावना। पीएम मोदी की अपील का असर, मुंबई में बढ़ा कारपूलिंग का ट्रेंड, 30-40% तक बढ़ा कारपूलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन। एमपी के छतरपुर में हनुमान चालीसा हवन में उमड़ा आस्था का सैलाब, बाबा बागेश्वर के साथ लाखों भक्तों ने एक साथ किया हवन, विदेशों से भी ऑनलाइन जुड़े श्रद्धालु। आज मनाया जा रहा है विश्व पर्यावरण दिवस, देश भर में कार्यक्रमों का आयोजन, सूरत में कलाकार ने प्लास्टिक की बोतलों से बनाया पीएम का विशाल पोस्टर। रामचरण की फिल्म पेडी की बम्पर ओपनिंग, बॉक्स ऑफिस पर धुरंधर का तोड़ा रिकॉर्ड, पहले दिन की वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा और आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात मेघा की करेंगे। जी हां, दक्षिण भारत में मॉनसून की एंट्री हो चुकी है और सिर्फ दक्षिण में ही नहीं, देश के अलग अलग हिस्सों में मौसम का मिजाज थोड़ा बदल सा गया है। एक ओर जहां दिल्ली एनसीआर में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से बारिश और तेज हवाओं ने लोगों को गर्मी से राहत दी है, बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। जो तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के पार चल रहा था, करीब 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास आ गया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक मौसम में उतार चढ़ाव बने रहने की उम्मीद है। तो वहीं दूसरी ओर दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण पश्चिम मॉनसून की एंट्री यहां पर हो चुकी है और इससे कई राज्यों में अच्छी बारिश दर्ज की जा रही है। आपको बता दें, केरला, कर्नाटका हो, तमिलनाडु हो, यहाँ के कई हिस्सों में अच्छी बारिश देखी गई है। और वहीं आपको बता दें, मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि अगले 2 से 3 दिनों में मॉनसून महाराष्ट्र, गोवा, आंध्र प्रदेश और पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों में पहुंच सकता है। इस बीच मौसम विभाग ने आज के लिए यूपी, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश हो, केरला हो, तमिलनाडु समेत देश के 18 राज्यों में तेज बारिश होने की चेतावनी जारी कर दी है और इस दौरान 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं, ये अनुमान जताया गया है। सबसे ज्यादा स्थिति दक्षिण भारत के केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है। इन राज्यों में आईएमडी ने भारी बारिश होने का अलर्ट जारी कर दिया है।

0: उधर केरलम में मॉनसून की जोरदार एंट्री हुई। इधर दिल्ली NCR समेत उत्तर भारत में मौसम का मिजाज अचानक बदल गया। प्री मॉनसून की बारिश राहत लेकर आई। तेज आंधी तूफान के साथ आई झमाझम बारिश ने गर्मी और उमस से निजात दिला दी। मौसम में आई इस नरमी के आज भी रहने के आसार हैं। मौसम विभाग ने तेज आंधी और गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। आज दोपहर फिर से गरज के साथ बौछारें पड़ने और तेज हवाएं चलने का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली NCR में मौसम में आए इस बदलाव की वजह एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, जिसका असर आज और कल उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों में भी देखने को मिलेगा। इस दौरान तेज आंधी और बारिश के साथ ओले गिरने की संभावना जताई गई है।
1: अभी एक वेस्टर्न डिस्टरबेंस है, वो इस समय नॉर्थ पाकिस्तान पे एक सर्कुलेशन की फॉर्म में है, स्ट्रेंथन में है, और उसके साथ ही जहाँ जैसे WD बना हुआ है, जो हवाएं भी अरेबियन सी से इस एरिया में आ रही हैं, जिसके कारण आप थोड़ा ह्यूमिडिटी भी बढ़ जाती है और विच इज़ फेवरेबल फॉर रेनफॉल एक्टिविटी। तो हमारा यही है कि आने वाले 2-3 दिन जहाँ पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में एक्टिविटी रहेगा, जिसके लिए हमने जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड के लिए हमने रेनफॉल के साथ हेलस्टॉर्म का वार्निंग भी दिया है। पंजाब हरियाणा हम अनुमान लगा रहे हैं जो हवाओं की गति है वो 50-60 किलोमीटर रह सकती है। इसके अलावा NCR दिल्ली की बात करें, वहाँ भी हमारा 2 दिन के लिए येलो अलर्ट है। वहाँ भी हमारा यह है कि 40-50 किलोमीटर तक हवाएं रहने का।
0: मॉनसून के केरलम में प्रवेश के बाद इसका इंतजार अब पूरे देश को है। केरलम पहुंचने के बाद मॉनसूनी हवाएं 2 शाखाओं, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में विभाजित होकर आगे बढ़ती हैं और जुलाई के पहले हफ्ते तक पूरे देश को कवर कर लेती हैं।
2: 4 जून को जो मॉनसून है वो केरल में दस्तक दे चुका है और इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको कर्नाटका के हिस्से हुए, कोस्टल कर्नाटका जो हो गया, तमिलनाडु का कुछ हिस्सा जो है कवर करते हुए बे ऑफ बंगाल, और इस साइड पर जो है आपको दिखेगा ये जो ब्लू लाइन आप जो देख रहे हैं, ये इस वक्त हमारा ऑनसेट है। ये आने वाले 6-7 दिन अच्छा मौसम जो है वो रहने की उम्मीद है। अच्छी खासी बारिश जो है वो देखी जाएगी। 12 सेंटीमीटर से ज्यादा जो बारिश है वो जो है उसका अनुमान जो है वो लगाया जा रहा है। लेकिन इसके साथ ही मैं ये चीज भी आपको दिखाऊंगी कि जो लगातार जो मॉनसून है वो आगे बढ़ते हुए नजर आएगा। तो इसके साथ ही साउथ से शुरू हुआ है लेकिन धीरे धीरे जो है वो नॉर्थ ईस्ट साइड में भी जो है मॉनसून जो है वो देखा जाएगा। लेकिन अगर मैं बाकी पूरे आपको देश की मैं स्थिति इस वक्त दिखाना चाहूँ कि किस तरीके से मौसम का हाल है, वो आप इस मैप में देख सकते हैं। ये पूरा आपको ऑरेंज अलर्ट जो है जगह जगह आपको नजर आने वाला है, ऑरेंज या फिर येलो, लेकिन बारिश का अलर्ट जो है देश के अलग अलग राज्यों में इस वक्त आपको नजर आ जाएगा।
0: केरलम में एंट्री के तुरंत बाद मॉनसूनी हवाएं दक्षिण के बाकी राज्यों और पूर्वोत्तर भारत की तरफ तेजी से बढ़ती है। मौसम विभाग के मुताबिक 5 जून से 10 जून के बीच तमिलनाडु, कर्नाटक और गोवा के ज्यादातर हिस्सों में मॉनसूनी बारिश शुरू हो जाएगी। 5 जून से 8 जून के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों मसलन आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में मॉनसून सक्रिय रूप से आगे बढ़ेगा। 8 जून से 15 जून के बीच मॉनसून मुंबई और कोंकण क्षेत्र समेत महाराष्ट्र के ज्यादातर हिस्सों में पहुंच जाएगा। 10 जून से 15 जून के बीच छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में मॉनसून के आने की उम्मीद है। 18 जून से 25 जून के बीच मॉनसून गुजरात और मध्य प्रदेश में एंट्री करेगा। 15 जून से 20 जून के बीच मॉनसून बिहार और उत्तर प्रदेश पहुँच सकता है। 25 जून से 30 जून के बीच दिल्ली से सटे नोएडा और पश्चिमी UP में मॉनसून सक्रिय होगा।
1: आने वाले दिनों की बात करें तो हमारा अनुमान ये है कि केरला, कोस्टल कर्नाटका, वहाँ पे वेरी हैवी रेनफॉल एक्टिविटी, आल्सो वेरी हैवी मीन 12 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल एक्टिविटी ऑलमोस्ट पूरा वीक होती रहेगी। उसके साथ ही कर्नाटक, कोंकण, गोवा, वहाँ भी रेनफॉल एक्टिविटी, हैवी रेनफॉल होने का अनुमान है। तमिलनाडु, देन इंटीरियर कर्नाटका, जहाँ रेनफॉल एक्टिविटी ऑलमोस्ट हैवी रहने का अनुमान है। इसके अलावा भी जहाँ भी जो मानसूनल विंड फेवरेबल हो रही है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में भी, जैसे भी आज मानसून थोड़ा नॉर्थ बे ऑफ बंगाल तक टच किया, जो नॉर्थ बे की लाइन है, और आने वाले 2-3 दिनों में जहाँ भी रेनफॉल एक्टिविटी बढ़ जाएगी, हैवी वेरी हैवी रेनफॉल होने का अनुमान है। तो हमारा आने वाले दिनों में यही फोरकास्ट है, 2-3 दिन जो मानसून है, जो इवन इंटायर गोवा और कोंकण के कुछ हिस्से, महाराष्ट्र के कुछ हिस्से और कवर कर सकता है, कर्नाटक जैसे कवर हो सकते हैं, आंध्रा के, तमिलनाडु के जो हिस्से वो और कवर हो जाएंगे, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के कुछ हिस्से कवर होने का।
0: जहां तक दिल्ली की बात है तो राजधानी को अभी इसके लिए इंतजार करना होगा। दिल्ली में आमतौर पर मॉनसून की पहली बारिश 27 जून के करीब होती है। मौसम विभाग के मुताबिक इस साल भी मॉनसून अपने तय समय यानी 27 से 30 जून के बीच पहुंच सकता है। मतलब ये कि अगर हालात ठीक रहे तो जुलाई की शुरुआत तक पूरे देश में मॉनसून की बारिश होनी शुरू हो जाएगी। दिल्ली से मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: तो वहीं मैदानी इलाकों में मौसम का मिजाज तो बदला है, लेकिन पहाड़ों पर मौसम दिल खुश कर देने वाला है। शिमला में और आसपास बारिश हो रही है। लोग सतरंगी छतरियों और रेनकोट में मॉल रोड पर मस्ती करते हुए नजर आए हैं। तो वहीं कुल्लू मनाली में पहले से ही सैलानियों का हुजूम उमड़ा हुआ नजर आ रहा है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहां के साथ साथ कश्मीर में भी इन दिनों पर्यटकों की भारी भीड़ है। चलिए आपको पहाड़ों पर मौसम की हसीन तस्वीर दिखाते हैं।

0: रंग बिरंगी छतरियां लिए और रेनकोट में घूमते लो। शिमला के मॉल रोड पर ये नजारा मौसम जैसा ही दिलकश है। यूं भी शिमला में मौसम सुहाना था, पर गुरुवार दोपहर जो मूसलाधार बारिश शुरू हुई, शहर की फिजा ही बदल गई, क्योंकि सिर्फ पानी नहीं बरसा, ओले भी गिरे और देखते ही देखते शिमला की सड़कों पर सफेद चादर बिछ गई। ये मौसम, ये फिजा, ऐसी रौनक, सैलानियों को इससे बेहतर भला और क्या चाहिए। लोग रिट्ज और मॉल रोड पर घूमने निकल पड़े। शिमला वैसे भी इन दिनों सैलानियों से गुलजार है।
1: बहुत अच्छा मौसम है यहाँ पे आके, वाकई हमें खुशी मिली है कि ऐसा मौसम वहाँ पे हमें देखने को नहीं मिलता है। अभी हमारे बच्चे भी यहाँ पे आए हैं साथ लेके, हम वो भी काफी खुश हैं, तो हमें काफी अच्छा फील हो रहा है कि हमने ऐसा नहीं देखा है। हम फिरोजपुर, हमारा आदर्शी राज रतन स्कूल है जहाँ से हम आए हैं, हमारे साथ 15 स्टूडेंट है। हम कैंप आए थे यहाँ पे, तो लेकिन यहाँ पे हम आए शिमला बच्चों को घुमाने के लिए माल रोड पे, तो बच्चे भी हमारे इंजॉय कर रहे हैं। वाकई में हमें काफी खुशी हो रही है यहाँ पे और बच्चे भी काफी खुशी मना रहे हैं।
0: शिमला में पानी इतना बरसा कि सड़कों पर जमा हो गया, यहाँ तक कि आवाजाही रुक गई और जून में ठंड का एहसास होने लगा। स्थानीय लोगों के लिए ये परेशानी का सबब हो सकता है और जो घूमने फिरने गए हैं वो मौसम का जश्न मना रहे हैं। शिमला ही नहीं, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और सिरमौर में भी आंधी और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट है और हिमाचल में अगले 6 दिन तक मौसम खराब रहने और बारिश का पूर्वानुमान है। लेकिन ऐसे मौसम में हिमाचल में सैलानियों का हुजूम है। ये तस्वीर चंबा के खजियार की है, जो इन दिनों लोगों की पसंदीदा जगह बना हुआ है। चारों ओर फैले देवदार के पेड़, हरी घास से सजा विशाल मैदान और बीच में मौजूद छोटी झील यहाँ की सुंदरता को और बढ़ा देते हैं। यूं ही इसे हिमाचल का स्विट्जरलैंड नहीं कहते। ऐसी खूबसूरत जगह पर परिवार के साथ फुर्सत के पल बिताना एक अलग एहसास है। ठीक ऐसा ही एहसास लोगों को मनाली में मिलता है, जहाँ इन दिनों सैलानियों का जमावड़ा है।
2: नमस्कार। देखिए, हम सभी जानते हैं कि लगातार मौसम खुशनुमा रहने की वजह से जिला कुल्लू में पर्यटकों का आवागमन जो है वो काफी अधिक संख्या में हुआ है। और यदि इस विषय पर हम आंकड़ों पर नजर डालें तो जो हमारा ऑथेंटिक डाटा है वो ग्रीन टैक्स बैरियर जो मनाली में स्थित है उससे प्राप्त आंकड़ों के अनुसार गत वर्ष मई महीने में लगभग 41,700 के आसपास जो है बाहरी राज्यों से पर्यटक वाहन मनाली में आए थे, लेकिन जो संख्या इस वर्ष बढ़कर लगभग 66,600 जो है वाहन इस मई महीने में इस वर्ष के दर्ज किए गए हैं। तो ये एक भारी जो उछाल है लगभग 25,000 का दोनों वर्ष के आंकड़ों में, तो तुलनात्मक तरीके से अधिक संख्या में पर्यटकों ने इस वर्ष घाटी का रुख किया है। और कम बस यही स्थिति हमारे जो अन्य पर्यटक स्थल हैं, चाहे वो बंजार का क्षेत्र हो, सैंज का क्षेत्र हो या कसोल मणिकरण का एरिया हो, तो वहां पर भी अधिक संख्या में बाहरी राज्यों के और अपने राज्य के जो पर्यटक हैं उनकी संख्या में इजाफा देखा जा रहा है। देखिए, मौसम साफ रहने की वजह से और रोहतांग जो हमारा पास है वो भी टाइमली ओपन हो गया है, तो उसकी वजह से टूरिस्ट जो हैं वो काफ़ी संख्या में आ रहे हैं। और यदि आंकड़ों पर देखा जाए तो वीकेंड पे तो होटल ऑक्यूपेंसी ऑलमोस्ट हमारी 80-90% के आसपास है। इवन वीकडेज में भी काफ़ी अच्छी जो है ऑक्यूपेंसी दर मनाली और विभिन्न पर्यटक स्थलों के होटल्स और होम स्टेज में चल रही है।
0: कुल्लू में नदी किनारे बोटिंग हो रही है, एडवेंचर स्पोर्ट्स का मजा लिया जा रहा है। इलाका सैलानियों से गुलजार है
3: और हम लोग फैमिली के साथ राजस्थान से यहाँ आए हैं। राजस्थान से यहाँ हिमाचल को हमने इसलिए चूज किया बिकॉज यहाँ का वेदर अच्छा है। राजस्थान से कंपैरेटिवली काफी कूल वेदर है यहाँ, वहाँ पे 42-43 डिग्रीज टेम्परेचर, हीट वेव्स काफी ज्यादा हो रहे थे। सो समर वेकेशन में हमने घूमने के लिए इसको चूज किया। यहाँ ग्रीनरी अच्छी है, पॉल्यूशन फ्री है और वेकेशन के लिए हमने मतलब एक कूल प्लेस चाहिए थी, इसलिए हमने हिमाचल को चूज किया। और अच्छा लग रहा है यहाँ के, आज ही आए हैं, काफी चेंज मतलब काफी डिफरेंस है वेदर में। वहाँ इतनी गर्मी थी और अभी यहाँ के अच्छा लग रहा है। और अगले 7-8 डेज हम लोग यहीं पर हैं, सो हम लोग वेकेशन यहीं बनाने वाले हैं अभी।
4: काविश शर्मा, होटल शुभला रॉयल, जनरल मैनेजर। सो कुल्लू मनाली का जो टूरिज्म है वो बड़े पीक सीजन में है और काफी लोगों का व्यवसाय भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है, जैसे कि टैक्सी ड्राइवर, टैक्सी होगी, और उसके अलावा भी और भी जो व्यवसाय हमारे से जुड़े हुए हैं। तो ये काफी पीक में, और खासकर जैसे कि मई महीने में जो बुकिंग्स थी बहुत ज्यादा थी, और जैसे अभी जून चल रहा है तो बहुत, मतलब मई से ज्यादा, मतलब बढ़ोतरी है जून महीने में, और वेरी पीक उसमें है। मतलब पूरे ऑल इंडिया से जो टूरिस्ट इंक्वायरीज है दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, और जैसे मई महीना था उससे ज्यादा बढ़ चुकी है। और खासकर जो आपका महाराष्ट्र हो गया जो, और इसके अलावा जो हमारे साथ के स्टेट्स हैं, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, बिहार हो गया, फिर नॉर्थ ईस्ट हो गया, तो काफी लोगों का आना जारी है, और नॉर्थ इंडिया काफी लोगों का आना जारी है, और अभी भी मुझे फोन कॉल्स काफी आ रहे हैं कि बुकिंग्स के लिए। और कारण ये भी है क्योंकि एक तो गर्मियां बढ़ रही हैं, उस करके भी टूरिस्ट का फ्लो ज्यादा पहाड़ों की तरफ रह रहा है, और खासकर ये भी बहुत अच्छी बात है, और खासकर जो भी हमारे व्यवसाय टूरिज्म से जुड़े हैं उनके लिए भी एक बड़ी अच्छी बात है। और मैं चाहूंगा कि आने वाले समय में भी ये जो टूरिस्ट की बढ़ोतरी, तो जैसे आपको लग रहा है कि जैसे नॉर्थ ईस्ट और जैसे बाहर जो एरिया है वहाँ पे टेम्परेचर 40 से 45 डिग्री टच हो चुका है, उस करके जो टूरिस्ट हैं वो यहाँ को पहाड़ों की तरफ रुख मोड़ रहे हैं और कुल्लू मनाली आ रहे हैं सर। और जैसे कि काफी स्टेट्स में अभी छुट्टियां होती हैं गर्मियों की बच्चों की, तो उस करके भी काफी टूरिस्ट पहाड़ों की तरफ का रुख करते हैं, और ये मेन कारण है को इसी बहाने टूरिस्टों के लिए भी एक अच्छा वो रहता है, और हमें भी मतलब एक सेवा का मौका मिलता है। और जैसे कि आप जानते हैं अतिथि देवो भव, और खासकर जो हमारी परंपरा है खासकर हिमाचलीज की, हम हमेशा अपने गेस्ट को एक मतलब भगवान का दर्जा देते हैं। और
3: सो एवरीथिंग इज वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी नाइस, सो ऑल द पीपल ऑफ द साउथ शुड कम हियर एंड एंजॉय अ लॉट। सो ईस्ट और द वेस्ट, हिमाचल इज द बेस्ट, कुल्लू मनाली इज द वेरी नाइस प्लेस टू एंजॉय।
0: हिमाचल यूं भी सैलानियों को खूब पसंद आता है, और जब मैदानी इलाकों में गर्मी बेहिसाब हो तो कुल्लू मनाली से प्यार हो जाता है। मई के महीने में करीब रिकॉर्ड 66,000 गाड़ियों ने कुल्लू में एंट्री की, जून में भी यही आंकड़ा रहने की उम्मीद है। मौसम के रुख से सैलानी भी खुश हैं और कारोबारी भी।
5: हम लोग राजस्थान से यहाँ आए हैं, राजस्थान में दिन में इतनी गर्मी है, इतनी हीट वेव चल रही है कि वहाँ दिन में हम लोग बाहर भी नहीं निकल पाते थे, इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं 4-7-8 दिन हम लोग यहाँ शांति से सुकून से रहने के लिए, छुट्टियाँ एंजॉय करने के लिए आए हैं। राजस्थान से यहाँ एनवायरनमेंट काफ़ी चेंज है और काफ़ी कूल है, इसलिए हम लोगों ने मनाली चुना है, और यहाँ का एनवायरनमेंट और ग्रीनरी सब कुछ बहुत अच्छी है, राजस्थान से यहाँ काफ़ी चेंज है।
0: हिमाचल की तरह सैलानियों का रुख जम्मू कश्मीर की ओर भी है। बांदीपुरा में बर्फबारी हो रही है, ऊंचे पहाड़ों पर सफेद बर्फ लिपटी है, और तेज ठंडी हवा जैसे सुई चुभा रही है। मैदानी राज्यों से गए सैलानी तो इसी मौसम का मजा लेना चाहते हैं। ऊनी कपड़े और जैकेट से लैस होकर लोग वादी का लुत्फ उठाने इन दिनों करीब 12,000 फीट की ऊंचाई पर राजदान दर्रे के पास हैं।
6: लोग अभी गुरेज जा रहे हैं, आज हमें ये मौका मिला है अच्छा, और इतना सुहाना मौसम और स्नोफॉल हुआ है, और यहाँ पर हमें ठहर के मैगी खाने का मौका मिला है, और यहाँ के लोग इतने मेहमान नवाजी से हमारा खिदमत किया है, उसके लिए हम उनके भी शुक्रगुजार हैं।
7: सम साउथ से पहुंच गए नॉर्थ, जन्नत में कश्मीर जैसे सब कहते हैं, ट्रूली टू द वर्ल्ड कश्मीर इज जन्नत। तो हमें तो इतना अच्छा वेदर लग रहा है, इट्स सो ब्यूटीफुल, हमें वी आर लकी टू हैव स्नोफॉल एंड सच ब्यूटीफुल, इतनी सुंदर वादियां हैं, हमको लग रहा है कि हम मूवी में है, कोई रील भी बनाते हैं, सो इट्स वंडरफुल, वी आर हैविंग अ ग्रेट टाइम, एंड सच रिमोट प्लेसेस आर वेरी गुड टू एक्सप्लोर।
8: सब लोग यहाँ पे आए, विजिट करें, ये जगह को देखें, और जगह के यहाँ पे गवर्नमेंट को भी बोलेंगे इस जगह को प्रमोट करें, जिससे सब लोगों को इसके बारे में पता लगे।
9: 11 बजे हम लोग पहुंच के थे, गुरेज वैली के लिए निकल गए थे, वहाँ पे हम लोगों ने रात को स्टे किया, एंड अभी जब हम रिटर्न आ रहे थे तो ऊपर हमें बारिश मिली थी, एंड यहाँ पे आते आते पूरी स्नो है, तो बहुत अच्छा मौसम हो रखा है। मुंबई में अभी 40 डिग्री चल रहा है, तो वहाँ से यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा मौसम हो रखा है।
4: वातावरण कैसा लग रहा है?
9: बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ बर्फ हो रही है, बारिश भी हो रही है, हमने श्रीनगर में गर्मी देख ली, यहाँ पे ऊपर आके बारिश देख ली, अभी बर्फ हो रही है, तो कम से कम 5 डिग्री तो चल रहा है यहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ठंडी है।
0: वादी में मौजूद जानी पहचानी और मशहूर जगहों पर ही नहीं जा रहे, बल्कि खूबसूरत वादी में नए इलाकों की भी तलाश है। अनंतनाग जिले में वेरीनाग के करीब ये इलाका सैलानियों को खूब पसंद आ रहा है। डेडबल कपरान नाम के इस इलाके में साफ पानी वाली पहाड़ी नदी है। ऊंचे पहाड़ों के साए में दरख्तों का हरा आंचल है। चलते चलते चाहे जितनी दूर निकल जाइए, थकान का एहसास नहीं होता। वादी में ये इलाका एक छिपा हुआ खजाना कहा जाता है, जिसकी ओर बड़ी तादाद में सैलानी आकर्षित हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ भीड़भाड़ कम है, प्रकृति का एहसास ज्यादा है। गर्मी से राहत पाने के लिए जम्मू कश्मीर से बेहतर जगह भला क्या होगी, लेकिन जब बादल गरज रहे हो, क्लाउड बर्स्ट हो रहा हो, तो सैलानियों के लिए सावधानी भी जरूरी है। गोडा में बादल जमकर बरसे और लैंडस्लाइड की वजह से नेशनल हाईवे पर कई जगह मलबा जाम हो गया और कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, कई सैलानी इसमें फंसे। हालांकि सभी को सुरक्षित वहां से निकाल लिया गया। रिपोर्ट गुड न्यूज टुडे।
10: तो वहीं दूसरी ओर शिमला में मौसम खुशनुमा बना हुआ है। यहां इंसान ही नहीं जानवर भी मौसम का मजा ले रहे हैं। शिमला के रिज मैदान पर घोड़ों को रेनकोट पहनाया गया है ताकि वो बेफिक्र होकर मौसम का लुत्फ उठा सकें। देश विदेश से आए सैलानी यहां घुड़सवारी का मजा लेने के लिए पहुंचते हैं, जिसकी ये अद्भुत तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। एक तो अद्भुत नजारा और दूसरी ओर ये तस्वीरें, यहां पर घोड़ों को भी रेनकोट पहनाया जा रहा है। सैलानियों के चेहरों पर खुशी देखने को मिल रही है क्योंकि नजारा बेहद खूबसूरत है। और इसी के साथ जीएनटी स्पेशल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।

0: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
1: Turn it up with today's hits on TuneIn. We're bringing you the songs everyone's talking about, all in one place. Hear the biggest tracks right now from today's top artists. Day or night, today's hits keeps the energy going. Start listening now. Just search today's hits or ask your device to play today's hits on TuneIn.
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: तो आप भी अपने देश में ही सैर सपाटा करने या अपने गांव और शहर में सैलानियों को इनवाइट कीजिए। टूरिज्म को बढ़ावा देने के इस संकल्प में भागीदार बनिए। बस आपको सिर्फ करना इतना है कि अगर आपके आसपास कोई खूबसूरत जगह है या फिर आपके शहर में आने की कोई खास वजह है तो उठाइए कैमरा और बनाइए व्लॉग। फिर हमें 7303409922 नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, हम उसे GNT पर जरूर दिखाएंगे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में, कहीं खुशी तो कहीं गम। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।
3: What's up, everybody? It's Bretzky, and America is turning 250. And I can't think of a better way to celebrate that than playing on an American-owned social casino, SpinQuest.com. With all of your favorite games, live craps, bubble craps, live blackjack, there's no better place to play for free and win real cash prizes. SpinQuest.com.
4: SpinQuest is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Visit SpinQuest.com for more details.
5: Stay connected through the unexpected with Invincible Wi-Fi from Spectrum. Invincible Wi-Fi keeps your home running with fast, fiber-powered internet and automatic 5G and 8-hour battery backup, making sure you stay on track, working, streaming, connected to friends and family, no matter what. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum. Visit InvincibleWi-Fi.com to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। TIT भोपाल, Gen Z's gateway to unbeatable placements.
3: RBI की मॉनेटरी पॉलिसी के फैसलों का ऐलान, 5.25% रेपो रेट बरकरार, ब्याज दरों में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं। केरला में मॉनसून की दस्तक का आज दूसरा दिन, कोच्चि में जोरदार बारिश, मौसम हुआ सुहावना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का असर, मुंबई में बढ़ा कारपूलिंग का ट्रेंड, 30-40% बढ़ा कारपूलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन। एमपी के छतरपुर में हनुमान चालीसा हवन में उमड़ा आस्था का सैलाब, बाबा बागेश्वर के साथ लाखों भक्तों ने साथ किया हवन, विदेशों से भी ऑनलाइन जुड़े श्रद्धालु। विश्व पर्यावरण दिवस पर देशभर में कार्यक्रमों का आयोजन, लखनऊ में सीएम योगी ने किया पौधारोपण, लोगों को दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश। रामचरण की फिल्म पेटी की बम्पर ओपनिंग, बॉक्स ऑफिस पर धुरंधर का तोड़ा रिकॉर्ड, पहले दिन की वर्ल्ड वाइड पर 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम
3: सज गई है खबरों की प्लेट, तैयार है गुड न्यूज का मेन्यू। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ शगुफ्ता साहिब। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ पूजा। खबरों की रफ्तार वही है, बस परिभाषा नहीं है, आपको ट्रेंडिंग न्यूज से लेकर हर अहम खबर दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे 5 मिनट में बच्चे सच्ची खबरों के साथ।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है,
3: रामचरण की फिल्म पेडी ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर किया शानदार प्रदर्शन, फिल्म का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन 112 करोड़ पहुंचा। फिल्म पेडी ने रणवीर सिंह की धुरंधर, सनी देओल की गदर 2 जैसी फिल्मों के ओपनिंग डे रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया, फिल्म का क्रेज न सिर्फ दक्षिण भारत बल्कि हिंदी बेल्ट में भी देखने को मिल रहा। भारत में पहले दिन पेडी की कमाई रही लगभग 70 करोड़, फिल्म पंडितों के मुताबिक पेडी का शानदार सफर आगे भी ऐसे ही जारी रहेगा। पेडी की सफलता के लिए जानवी कपूर आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर पहुंची, सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है जानवी का ये वीडियो। जानवी कपूर की सादगी की जमकर तारीफ हो रही, उन्होंने नंगे पैर 3,550 सीढ़ियां चढ़ी और भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन किए। सिने प्रेमियों के लिए गुड न्यूज, बड़े पर्दे पर रिलीज हुई बॉबी देओल की फिल्म बंदर और वरुण धवन की है जवानी तश्क होना है। इमरान हाशमी की फिल्म आवारापन 2 सिनेमाघरों में रिलीज के लिए तैयार, आवारापन 2 के सेट से एक इमरान हाशमी ने शेयर की तस्वीर। मोहनलाल की फिल्म दृश्यम 3 का बॉक्स ऑफिस पर जलवा बरकरार, दृश्यम 3 ने 15वें दिन 1.5 करोड़ का कलेक्शन किया। रणवीर सिंह की धुरंधर अब जापान में दिखाएगी जलवा, 10 जुलाई को रिलीज होगी धुरंधर पार्ट 1। टीवी पर दर्शक देख सकेंगे धुरंधर पार्ट 2, जियो हॉटस्टार पर आज से ये रेगुलर सब्सक्राइबर्स के लिए अवेलेबल है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में कल हुई बारिश के बाद आज मौसम हुआ सुहाना, तापमान में आई भारी गिरावट। उत्तर प्रदेश का एक्सप्रेसवे नेटवर्क प्रदेश में विकास को दे रहा नया आयाम, प्रदेश को तेज कनेक्टिविटी, यात्रा, व्यापार और विकास को मिल रही मजबूती। आज देश को मिलेगी 20,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात, सूरत में 18,000 करोड़ के विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे पीएम मोदी। आज दुनिया भर में मनाया जा रहा विश्व पर्यावरण दिवस, पर्यावरण संरक्षण और पर्यावरण को लेकर जागरूकता फैलाने के मकसद के साथ इसका आयोजन किया जा रहा। लद्दाख में पारंपरिक उत्सवों के बीच में द्रास समर कार्निवल 2026 का भव्य शुभारंभ। इस समारोह के शुरू होने के साथ ही केंद्र शासित प्रदेश में उत्सवों का दौर शुरू। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने राजस्थान के अजमेर में बदली घरों की रसोई की सूरत। गैस सिलेंडर और चूल्हा मिलने से महिलाएं लकड़ी के धुएं से मिल रही है मुक्ति। पीएम उज्ज्वला योजना की लाभार्थी महिलाओं को चेहरे पर अब राहत की मुस्कान देखने को मिली। सुबह शाम में लकड़ी के धुएं से जूझने से मिली आजादी। अजमेर में हवाई अड्डा बनने से इलाके को हो रही है फायदा। धार्मिक नगरी पुष्कर आना आसान हुआ। मार्बल उद्योग को भी मिली नई गति, रोजगार भी बढ़ा। उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की मुहिम ला रही रंग। उत्तरकाशी के नौगांव ब्लॉक की महिलाएं हो रही हैं सशक्त। स्थानीय उत्पादों को मिल रहा है बढ़ावा। स्वयं सहायता समूहों से जोड़कर महिलाओं को स्थानीय उद्यमों में उपलब्ध कराया जा रहा है रोजगार। अलग अलग तरह की सुंदर और उपयोगी वस्तुएं बन रही हैं। महिला महाराष्ट्र के जालना का किसान बना दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा। 2 एकड़ जमीन में आम के बाग से की 8 लाख रुपए तक की कमाई। पूर्वी चीन में लगातार बारिश से झरनों में बढ़ा पानी, बेहद आकर्षक बन गया ये नजारा। कल से शुरू होगा भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच। न्यू चंडीगढ़ के महाराजा यादवेंद्र सिंह स्टेडियम में सीजन भारत का ये पहला टेस्ट होगा। भारत और अफगानिस्तान का मुकाबला आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का नहीं है हिस्सा। इस मैच में भारत से 2 खिलाड़ियों के डेब्यू की संभावना। भारतीय बल्लेबाजी क्रम में नंबर 3 के लिए साई सुदर्शन और देवदत्त पड्डिकल के बीच में मुकाबला। हालिया फॉर्म को देखते हुए पड्डिकल का खेलना लगभग तय माना जा रहा।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
1: 25 अच्छी खबरों के बाद खबरें विस्तार से आपके लिए खबरों की प्लेट तैयार है।
2: तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की तमाम ट्रेंडिंग न्यूज के साथ।
1: आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के फैसलों का ऐलान, 5.25% रेपो रेट बरकरार, ब्याज दरों में किसी भी तरह का बदलाव नहीं।
2: केरलम में मॉनसून की दस्तक का आज दूसरा दिन, कोच्चि में जोरदार बारिश, केरलम के कई जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी।
1: प्रधानमंत्री मोदी की अपील का असर, मुंबई में बढ़ा कारपूलिंग का ट्रेंड, 30-40% बढ़ा कारपूलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन।
2: रामचरण की फिल्म पैदी की बम्पर ओपनिंग, बॉक्स ऑफिस पर धुरंधर का तोड़ा रिकॉर्ड, पहले दिन की वर्ल्ड वाइड कमाई 100 करोड़ से ज्यादा।
1: जल्द भगवान शिव का किरदार निभाते नजर आ सकते हैं ग्रीक गॉड ऋतिक रोशन, डायरेक्टर अश्विन कुमार ने की ऋतिक से मुलाकात, महादेव के अर्धनारेश्वर और नटराज रूप पर होगा फोकस।
2: और चलिए लंच टाइम की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर के साथ। खबर यह है कि ऋतिक रोशन, जिनके लुक्स और डांसिंग मूव्स की दुनिया दीवानी है, जो ना सिर्फ अपनी एक्टिंग से बल्कि फिजिक और डांस से भी सैकड़ों लोगों के दिलों पर राज करते हैं, वो ऋतिक रोशन जिन्हें ग्रीक गॉड कहते हैं सभी, वो अब फिल्मी पर्दे पर महादेव का किरदार निभाते नजर आ सकते हैं।
1: बिल्कुल शगुफ्ता, चर्चा ये है कि महावतार नरसिम्हा बनाने वाले डायरेक्टर अश्विन कुमार महादेव पर आधारित इस माइथोलॉजिकल फिल्म पर काम कर रहे हैं और भगवान शिव का किरदार निभाने के लिए उनकी पहली पसंद ऋतिक रोशन है।
3: मस्कुलर फिजिक, परफेक्ट जॉलाइन, किलर लुक्स, शानदार स्क्रीन प्रेजेंस और डांस ऐसा कि देखने वाले थिरक उठें। दुनिया इसीलिए तो ऋतिक रोशन को ग्रीक गॉड कहती है और अब रियल लाइफ का ये ग्रीक गॉड रियल लाइफ यानी फिल्मी पर्दे पर माइथोलॉजिकल कैरेक्टर में नजर आ सकता है। अपने किलर लुक्स और शानदार डांस की बदौलत ऋतिक रोशन हमेशा चर्चाओं में रहते हैं, उनके सैकड़ों फैंस उनके दीवाने हैं और अब इस फेहरिस्त में महावतार नरसिम्हा बनाने वाले डायरेक्टर अश्विन कुमार भी जुड़ गए। चर्चा गर्म है कि अश्विन कुमार एक ऐसी भव्य पौराणिक फिल्म पर काम कर रहे हैं जो भगवान शिव पर केंद्रित होगी, लेकिन फिल्म के केंद्र में वो रूप होगा जो पुरुष और प्रकृति यानी सृजन और विध्वंस दोनों का संतुलन है। खबरों की माने तो अश्विनी कुमार की इस फिल्म में भगवान शिव के नटराज और अर्धनारेश्वर रूप पर फोकस होगा और इन दोनों महाकिरदारों के लिए अश्विन की नजरें ऋतिक रोशन पर टिक गई हैं। ऋतिक का शानदार बॉडी स्ट्रक्चर और उनके ग्रेसफुल मूव्स इन दोनों किरदारों के लिए पूरी तरह फिट बैठते हैं। ऋतिक के लुक्स के बारे में तो सब जानते ही हैं और जब बात उनके डांस की हो तो उनकी पहली फिल्म से लेकर आज तक ऋतिक कहर ढाते रहे हैं। हालांकि अभी फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम हो रहा है और ये बेहद शुरुआती दौर में है, लेकिन चर्चाओं का बाजार गर्म है। खबर है कि अपने इस प्रोजेक्ट को लेकर अश्विन कुमार ने कुछ दिन पहले ही ऋतिक रोशन से मुलाकात की है और ऋतिक रोशन को उन्होंने इस फिल्म का निर्देशन भी दिया है। सूत्रों की माने तो ऋतिक को फिल्म का अनोखा कॉन्सेप्ट बेहद पसंद आया है। हालांकि ऋतिक रोशन ऐसे पहले स्टार नहीं हैं जो किसी माइथोलॉजिकल फिल्म का हिस्सा बनने जा रहे हों। इस लिस्ट में कई बड़े सितारों के नाम हैं। सबसे बड़ा और चर्चित नाम है रणबीर कपूर का। संजू और एनिमल जैसी फिल्मों में काबिलियत साबित करने के बाद रणबीर अब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का बेहद शांत और शक्तिशाली किरदार निभाने जा रहे हैं। नितेश तिवारी की भव्य फिल्म रामायण में रणबीर का ये रूप देखने के लिए फैंस का उत्साह 7वें आसमान पर है। इसके अलावा धुरंधर के रहमान डकैत यानी अक्षय खन्ना का अगला प्रोजेक्ट भी एक ऐसे ही कैरेक्टर से जुड़ा है। अक्षय खन्ना फिल्म महाकाली के जरिए तेलुगु सिनेमा में डेब्यू कर रहे हैं। अक्षय इस फिल्म में असुर गुरु शुक्राचार्य के एक बेहद जटिल और शक्तिशाली अवतार में नजर आने वाले हैं। ये किरदार स्क्रीन पर ग्रे शेड और रहस्यमयी किरदारों का एक अनोखा मिश्रण पेश करेगा। इसी कड़ी में युवा प्रतिभाएं भी पीछे नहीं है। सैयारा फिल्म में रातों रात छा जाने वाली एक्ट्रेस अनीत पड्डा पर्दे पर साक्षात माँ दुर्गा का किरदार निभाती दिख सकती हैं। फिल्म का नाम है शक्तिशालिनी, जो मुख्य रूप से माँ दुर्गा की असीम और संहारक शक्ति पर आधारित है। इस फिल्म में अनीता पड्डा मुख्य भूमिका में हैं, जो शिव की शक्ति बनकर पर्दे पर अवतरित होंगी। वे शक्ति और शालिनी नाम के दो अलग अलग और बेहद अलौकिक किरदारों के डबल रोल में नजर आने वाली हैं। चाहे वो ऋतिक रोशन का नटराज रूप धारण करने की चर्चा हो, रणबीर का राम बनना हो या अक्षय खन्ना का शुक्राचार्य के रूप में आना, साफ है कि मेकर्स अब बड़े सितारों के स्टारडम को इतिहास और पुराणों की अमर गाथाओं के साथ जोड़कर बॉक्स ऑफिस पर नया इतिहास रचने की तैयारी में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं फिल्मी फ्राइडे की।

0: फिल्मी फ्राइडे पर इस बार मनोरंजन का ट्रिपल डोज देखने को मिला। एक तरफ नई रिलीज जवानी तो इश्क होना है और बंदर धमाल मचा रही है, तो दूसरी ओर रामचरण की फिल्म पेडी पहले ही बॉक्स ऑफिस पर अपना दम दिखा रही है।
1: और देखिए, इस फिल्म की रिकॉर्ड तोड़ शुरुआत ने इंडस्ट्री में एक नई चर्चा छेड़ दी है। रामचरण की फिल्म ने ओपनिंग कलेक्शन के साथ बॉलीवुड की कई ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्मों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। इस लिस्ट में रणवीर सिंह की 30 करोड़ की ओपनिंग करने वाली धुरंधर, 40 करोड़ फर्स्ट डे कलेक्शन करने वाली सनी देओल की गदर 2 और 57 करोड़ ओपनिंग अपने नाम करने वाली शाहरुख खान की पठान शामिल है। फिल्म ने पहले दिन पैडी नेट कलेक्शन प्रीव्यू शोज जो इसके हुए थे उसमें लगभग 70 करोड़ तक ये कलेक्शन पहुंचा और वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन 112 करोड़ पहुंच रहा है। अब देखिए, फिल्मी फ्राइडे में बात तो हम कर ही रहे हैं, फिल्म पेडी की बात भी कर लेते हैं जो इस वक्त बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है। दमदार एक्शन आपको नजर आएगा, जोरदार एक्टिंग है इसमें। रामचरण की इस फिल्म ने पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर धमाल कर दिया है। फिल्म की रिकॉर्ड तोड़ शुरुआत ने इंडस्ट्री में एक नई चर्चा को छेड़ दिया है।
0: रामचरण की फिल्म ने ओपनिंग कलेक्शन के साथ बॉलीवुड की कई ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं।

0: मेगास्टार राम चरण ने बॉक्स ऑफिस पर तूफान ला दिया है। उनकी फिल्म पेडी ने रिलीज के पहले दिन ही धमाल मचा दिया। फिल्म को लेकर फैंस में भारी उत्साह है। आलम ये बना हुआ है कि फैंस थिएटर के अंदर हो या बाहर जश्न मनाते नजर आ रहे हैं। कहीं ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया गया तो कहीं दर्शक सीटियां और ताली बजाते दिखे। ये ही उत्साह फिल्म के फर्स्ट डे कलेक्शन में भी नजर आया। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म को शानदार रिस्पांस मिल रहा है, तभी तो पेडी ने रिलीज के पहले दिन ही 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। शुरुआती रिपोर्ट्स बता रही हैं कि फिल्म ने पहले दिन भारत में नेट कलेक्शन के तौर पर 69 करोड़ 50 लाख रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 112 करोड़ 49 लाख रुपए से ऊपर पहुंच गया, जो किसी भी बड़ी फिल्म के लिए शानदार शुरुआत मानी जा रही है। इतना ही नहीं, रामचरण की फिल्म ने ओपनिंग कलेक्शन के साथ बॉलीवुड की कई ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्मों के रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। इस लिस्ट में रणवीर सिंह की 30 करोड़ ओपनिंग करने वाली धुरंधर, 40 करोड़ फर्स्ट डे कलेक्शन करने वाली सनी देओल की गदर 2 और 57 करोड़ की ओपनिंग अपने नाम करने वाली शाहरुख खान की पठान भी शामिल है। इन आंकड़ों से साफ है कि फिल्म का क्रेज न सिर्फ दक्षिण भारत में है बल्कि हिंदी बेल्ट में भी देखने को मिल रहा है। रामचरण और जानवी कपूर की पेडी 5 भाषाओं में सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। सबसे ज्यादा कलेक्शन तेलुगु भाषा में हासिल हुआ, जो 47 करोड़ 20 लाख रुपए रहा। इसके बाद हिंदी में 3 करोड़ की कमाई हुई, जबकि तीसरे नंबर पर तमिल भाषा से 45 लाख की कमाई इस फिल्म ने कर ली है। वहीं चौथे पायदान पर कन्नड़ में 25 लाख का कलेक्शन फिल्म ने किया है। आखिर में मलयाली भाषा में 10 लाख का कलेक्शन फिल्म ने हासिल किया है। पेडी फिल्म ने जानवी कपूर के करियर को भी नई उड़ान दी है। फिल्म में उनके काम को लेकर सोशल मीडिया पर खूब चर्चा है। जानवी फिल्म की सक्सेस के लिए दुआ मांगने तिरुपति मंदिर भी पहुंची थी। 2024 में आई फिल्म देवरा के बाद पेडी जानवी की दूसरी साउथ फिल्म है। फिल्म के रिलीज के बीच वो ईश्वर का आशीर्वाद और फिल्म की हिट होने की मन्नत मांगने तिरुमला पहुंची थी। तब उनका कैजुअल लुक में बालाजी मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने का वीडियो खूब सुर्खियों में रहा। फिल्म में रामचरण और जानवी की केमिस्ट्री भी फैंस को बेहद पसंद आ रही है। असल में ये फिल्म 1980 के दशक के आंध्र प्रदेश की वो कहानी है, जहां एक गांव का नौजवान अपने लोगों को एकजुट करने के लिए क्रिकेट, कुश्ती और दौड़ के मैदान में उतरता है, सम्मान और पहचान की लड़ाई लड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: तो एक तरफ फिल्म पेडी बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है, तो दूसरी तरफ फिल्म की हीरोइन जानवी कपूर फिल्म की सक्सेस के लिए दुआएं मांग रही हैं।
2: देखिए, जानवी कपूर तिरुपति मंदिर भी पहुंची थी, जहां उन्होंने फिल्म पेडी की कामयाबी के लिए मन्नत भी मांगी। तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं, वो दिखाते हैं आपको।
0: एक तरफ साउथ एक्टर रामचरण की फिल्म पेडी सिनेमा घरों में रिलीज हुई, तो दूसरी ओर बुची बाबू सना द्वारा निर्देशित इस फिल्म में उनकी को एक्टर जानवी कपूर की तिरुपति मंदिर यात्रा और दर्शन पेडी फिल्म की सक्सेस को लेकर बताई जा रही है। 2024 में आई फिल्म देवरा के बाद पेडी जानवी की दूसरी साउथ फिल्म है। ऐसे में रिलीज के बीच वो दोबारा ईश्वर का आशीर्वाद और फिल्म की हिट होने की मन्नत मांगने तिरुमला पहुंची। उनका कैजुअल लुक में बालाजी मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने का ये वीडियो खूब सुर्खियों में है। वैसे बता दें कि जानवी जब भी तिरुपति मंदिर जाती हैं, तो वीआईपी दर्शन करने की बजाय नंगे पैर चलकर अलीपीरी की 3550 सीढ़ियों का इस्तेमाल करती हैं। वहीं तिरुमला मंदिर पहुंची जानवी का पर्पल कलर की कांजीवरम साड़ी और गहनों के साथ ये पारंपरिक लुक भी लोगों को खूब पसंद आ रहा है। उनके बालाजी दर्शन के दौरान कई दूसरी महिलाएं भी उनके साथ दिखी। वहीं जानवी ने भी वहां मौजूद लोगों को हाथ जोड़कर सम्मान भी दिया। जानवी अपनी लाइफ के हर बड़े और खास मौकों पर बालाजी दर्शन करने आती हैं और उनकी ईश्वर भक्ति को देख फैंस के बीच अक्सर उनकी सराहना भी होती है। दरअसल उनकी माँ श्रीदेवी की भी बालाजी में अटूट आस्था थी, इसलिए जानवी भी शायद बालाजी के दर्शन कर सुकून महसूस करती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: और चलिए अब मौसम की बात कर लेते हैं। बात मानसून की ही, जो दक्षिण भारत तक पहुंच गया है, जिससे कई राज्यों में अच्छी खासी बारिश हो रही है। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु के कई हिस्सों में भी अच्छी बरसात हुई है।
1: मानसून की आगे बढ़ती रफ्तार से किसानों में भी उत्साह है, क्योंकि मानसून के आने से खरीफ फसलों की बुवाई का रास्ता साफ होने वाला है।

0: उधर केरलम में मॉनसून की जोरदार एंट्री हुई। इधर दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में मौसम का मिजाज अचानक बदल गया। प्री मॉनसून की बारिश राहत लेकर आई। तेज आंधी तूफान के साथ आई झमाझम बारिश ने गर्मी और उमस से निजात दिला दी। मौसम में आई इस नरमी के आज भी रहने के आसार हैं। मौसम विभाग ने तेज आंधी और गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। आज दोपहर फिर से गरज के साथ बौछारें पड़ने और तेज हवाएं चलने का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में मौसम में आए इस बदलाव की वजह एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, जिसका असर आज और कल उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों में भी देखने को मिलेगा। इस दौरान तेज आंधी और बारिश के साथ ओले गिरने की संभावना जताई गई है।
1: अभी एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, वो इस समय नॉर्थ पाकिस्तान पे एक सर्कुलेशन की फॉर्म में है, स्ट्रेंथन में है, और उसके साथ ही जहाँ जैसे WD बना हुआ है, जो हवाएं भी अरेबियन सी से इस एरिया में आ रही है, जिसके कारण आप थोड़ा ह्यूमिडिटी भी बढ़ जाती है और विच इज़ फेवरेबल फॉर रेनफॉल एक्टिविटी। तो हमारा यही है कि आने वाले 2 से 3 दिन जहाँ पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में एक्टिविटी रहेगा, जिसके लिए हमने जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड के लिए हमने रेनफॉल के साथ हेलस्टॉर्म का वार्निंग भी दिया है। पंजाब हरियाणा हम अनुमान लगा रहे हैं जो हवाओं की गति है वो 50 से 60 किलोमीटर रह सकती है। इसके अलावा एनसीआर दिल्ली की बात करें, वहाँ भी हमारा 2 दिन के लिए येलो अलर्ट है। वहाँ भी हमारा यह है कि 40 से 50 किलोमीटर तक हवाएं रहने का।
0: मॉनसून के केरलम में प्रवेश के बाद इसका इंतजार अब पूरे देश को है। केरलम पहुंचने के बाद मॉनसूनी हवाएं 2 शाखाओं अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में विभाजित होकर आगे बढ़ती हैं और जुलाई के पहले हफ्ते तक पूरे देश को कवर कर लेती हैं।
2: 4 जून को जो मॉनसून है वो केरल में दस्तक दे चुका है और इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको कर्नाटका के हिस्से हुए, कोस्टल कर्नाटका जो हो गया, तमिलनाडु का कुछ हिस्सा जो है कवर करते हुए बे ऑफ बंगाल, और इस साइड पर जो है आपको दिखेगा ये जो ब्लू लाइन आप जो देख रहे हैं, ये इस वक्त हमारा ऑनसेट है। ये आने वाले 6 से 7 दिन अच्छा मौसम जो है वो रहने की उम्मीद है। अच्छी खासी बारिश जो है वो देखी जाएगी। 12 सेंटीमीटर से ज्यादा जो बारिश है वो जो है उसका अनुमान जो है वो लगाया जा रहा है। लेकिन इसके साथ ही मैं ये चीज भी आपको दिखाऊंगी कि जो लगातार जो मॉनसून है वो आगे बढ़ते हुए नजर आएगा। तो इसके साथ ही साउथ से शुरू हुआ है लेकिन धीरे धीरे जो है वो नॉर्थ ईस्ट साइड में भी जो है मॉनसून जो है वो देखा जाएगा। लेकिन अगर मैं बाकी पूरे आपको देश की मैं स्थिति इस वक्त दिखाना चाहूँ कि किस तरीके से मौसम का हाल है वो आप इस मैप में देख सकते हैं। ये पूरा आपको ऑरेंज अलर्ट जो है जगह जगह आपको नजर आने वाला है, ऑरेंज या फिर येलो, लेकिन बारिश का अलर्ट जो है देश के अलग अलग राज्यों में इस वक्त आपको नजर आ जाएगा।
0: केरलम में एंट्री के तुरंत बाद मॉनसूनी हवाएं दक्षिण के बाकी राज्यों और पूर्वोत्तर भारत की तरफ तेजी

0: 5 जून से 10 जून के बीच तमिलनाडु, कर्नाटक और गोवा के ज्यादातर हिस्सों में मानसूनी बारिश शुरू हो जाएगी। 5 जून से 8 जून के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों, मसलन आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में मानसून सक्रिय रूप से आगे बढ़ेगा। 8 जून से 15 जून के बीच मानसून मुंबई और कोंकण क्षेत्र समेत महाराष्ट्र के ज्यादातर हिस्सों में पहुंच जाएगा। 10 जून से 15 जून के बीच छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में मानसून के आने की उम्मीद है। 18 जून से 25 जून के बीच मानसून गुजरात और मध्य प्रदेश में एंट्री करेगा। 15 जून से 20 जून के बीच मानसून बिहार और उत्तर प्रदेश पहुंच सकता है। 25 जून से 30 जून के बीच दिल्ली से सटे नोएडा और पश्चिमी यूपी में मानसून सक्रिय होगा।
1: आने वाले दिनों की बात करें तो हमारा अनुमान ये है कि केरला, कोस्टल कर्नाटका, वहाँ पे वेरी हैवी रेनफॉल एक्टिविटी, वेरी हैवी मीन 12 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल एक्टिविटी ऑलमोस्ट पूरा वीक होती रहेगी। उसके साथ ही कर्नाटक, कोंकण, गोवा, वहाँ भी रेनफॉल एक्टिविटी, हैवी रेनफॉल होने का अनुमान है। तमिलनाडु, देन इंटीरियर कर्नाटका, जहाँ रेनफॉल एक्टिविटी ऑलमोस्ट हैवी रहने का अनुमान है। इसके अलावा भी जहाँ भी जो मानसूनल विंड फेवरेबल हो रही है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में भी, जैसे भी आज मानसून थोड़ा नॉर्थ बेओ बंगाल तक टच किया, जो नॉर्थ पे की लाइन है, और आने वाले 2-3 दिनों में जहाँ भी रेनफॉल एक्टिविटी बढ़ जाएगी, हैवी वेरी हैवी रेनफॉल होने का अनुमान है। तो हमारा आने वाले दिनों में यही फोरकास्ट है, 2-3 दिन जो मानसून है, जो इवन इंटायर गोवा और कोंकण के कुछ हिस्से, महाराष्ट्र के कुछ हिस्से और कवर कर सकता है, कर्नाटक जिससे कवर हो सकते हैं, आंध्रा के, तमिलनाडु के जो हिस्से वो और कवर हो जाएंगे, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के कुछ हिस्से कवर होने का।
0: जहाँ तक दिल्ली की बात है तो राजधानी को अभी इसके लिए इंतजार करना होगा। दिल्ली में आमतौर पर मानसून की पहली बारिश 27 जून के करीब होती है। मौसम विभाग के मुताबिक इस साल भी मानसून अपने तय समय यानी 27 से 30 जून के बीच पहुंच सकता है। मतलब ये कि अगर हालात ठीक रहे तो जुलाई की शुरुआत तक पूरे देश में मानसून की बारिश होनी शुरू हो जाएगी। दिल्ली से मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: देखिए, मिडल ईस्ट संकट के बीच में ऊर्जा की बढ़ती खपत को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कार पूलिंग की वकालत की थी। पीएम मोदी की अपील का असर मुंबई में दिखने लगा है।
3: हाल के दिनों में नौकरी पेशा मुंबईकरों ने ऑफिस आने जाने के लिए बड़े पैमाने पर कार पूलिंग का इस्तेमाल करना शुरू किया। लिफ्ट ले लो जैसे कम्युनिटी प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन कराकर लोग आने जाने के लिए गाड़ी शेयर कर रहे हैं, जिससे ईंधन और पैसे दोनों की बचत हो रही है।

0: मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन आवाजाही का बड़ा जरिया है। बावजूद इसके बड़ी संख्या में लोग रोजाना ऑफिस आने जाने के लिए कार का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसमें दो दिक्कतें हैं। एक तो ट्रैफिक जैम, दूसरा मिडिल ईस्ट संकट के बाद पेट्रोल डीजल की किल्लत और बढ़ती जा रही कीमत। लेकिन अब मुंबईकरों ने इस झंझट का एक स्मार्ट और सस्ता तोड़ निकाल लिया है, कार पूलिंग।
1: फ्यूल के प्राइसेस जैसे ही बढ़े, एक चीज नोटिस की गई है, वो है कार पूलिंग, जो एक बहुत पहले से भी एग्जिस्ट करती है, लेकिन कार पूलिंग की तरीके इस बार जो है वो बेहतर हो गए हैं। कार पूलिंग लोग ज्यादा करने लगे हैं।
0: मुंबई में कार पूलिंग अब एक बड़ा ट्रेंड बन चुका है। ठाणे, नवी मुंबई और कांदीवली जैसे इलाकों से बीकेसी या लोअर परेल जाने वाले नौकरी पेशा लोग अब अकेले गाड़ी चलाने के बजाय कार पूलिंग का इस्तेमाल करना पसंद कर रहे हैं।
2: पहले तो मैं, जब पेट्रोल प्राइसेस स्टेडी थे फॉर 3-4 ईयर्स, तो मैं कार से ट्रैवल करता था अकेला, तभी इतना एक्टिव नहीं था कारपूल के ग्रुप में। बट अभी रिसेंटली जो 2-3 बार दाम बढ़े हैं पेट्रोल के, उसके बाद इट एक्चुअली पिंचिंग। सो 103 रुपये से 108 रुपये, फिर 108 से 111 रुपये हुए, तो इट स्टार्टेड पिंचिंग। सो वाया मेरे को लिफ्ट ले लो, वो जो ग्रुप है उसका रेफरेंस मिला, तो वो जो एडमिन है उसने मेरे को ग्रुप में ऐड कर लिया, और अभी धीरे धीरे लोग आ रहे हैं साथ में कारपूल में।
0: कारपूलिंग इको फ्रेंडली के साथ साथ बजट फ्रेंडली भी है। सड़कों पर कार की संख्या कम होने से ईंधन की खपत कम होती है, जिससे पर्यावरण को नुकसान कम होता है, साथ ही पॉकेट पर खर्च का भार भी कम हो जाता है। मकरंद परांजपे के मुताबिक कारपूलिंग से उन्हें 70% बचत हो रही है।
2: तो ट्रैवल टाइम तो थोड़ा बढ़ गया, या तो मोटा मोटी ऑलमोस्ट उतना ही रहा है। अगर मैं खर्चे की बात करूँ तो यू कैन से कि मेरा ऑलमोस्ट 70% खर्चा बच गया।
1: 70%, तो ये फ्यूल प्राइसेस पिंच करने की जगह अब आपकी बचत हो रही है।
2: डेफिनेटली, अगर ये कारपूल ग्रुप के बारे में मालूम नहीं होता, लिफ्ट

0: के बारे में, तो शायद मैं जहाँ पे मैं 10 रुपये खर्च कर रहा था, आई वुड हैव एंडेड अप पेइंग 12-13 रुपये, बिकॉज 103 से 111 रुपये, तो वो काफ़ी इट्स ऑलमोस्ट 10% हाइक इन द पेट्रोल फ्यूल प्राइसेस, सो इट्स अ गुड थिंग।
1: मुंबई में कारपूलिंग का ट्रेंड लिफ्ट ले लो के तौर पर पॉपुलर हो रहा है। लिफ्ट ले लो एक ऐप है जिस पर लोग अब तेजी से रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। लिफ्ट लेने वाले भी और लिफ्ट देने वाले भी। खुद महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र मोटर व्हीकल एग्रीगेटर रूल्स के तहत चुनिंदा एप्स को मंजूरी देकर कारपूलिंग को हरी झंडी दी है।
2: कारपूलिंग का जो इंक्रीज है, जो ट्रेंड इंक्रीज अगर देखा जाए तो काफी बड़ा है वो। जब हमारे 10th, आई स्टिल मतलब अभी भी याद है कि 10th मई था शायद वो स्पीच में, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने वो लाइन सेंटेंस डाला था कि कारपूलिंग यूज करें, एंड उसके बाद से जब पेट्रोल के हाइक्स आए प्राइसेस में, तो उसके बाद जितना हमारे रजिस्ट्रेशन है अराउंड 30-40% ऑन डेली बेसिस तो बढ़े हैं।
3: 30-40%
2: बढ़ गया है डेली बेसिस पे रजिस्ट्रेशन, तो लाइक 150-200 रजिस्ट्रेशन ऑन डेली बेसिस होते हैं।
1: मुंबई में कारपूलिंग की पहल 2017 में शुरू हुई थी, लेकिन हाल के दिनों में मिडिल ईस्ट संकट की वजह से इसका चलन तेजी से बढ़ा है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ईंधन बचाने और ट्रैफिक कम करने के लिए कारपूलिंग के इस्तेमाल पर जोर दिया था, जिसका असर भी दिख रहा है। पिछले कुछ समय में अकेले मुंबई में राइड शेयरिंग रजिस्ट्रेशन में करीब 40% तक का उछाल आया है। ये आंकड़ा बताने के लिए काफी है कि कामकाजी प्रोफेशनल्स के बीच कारपूलिंग किस कदर तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। मुंबई से विद्या के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: चलिए इसी के साथ लंच टाइम में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे चार धाम यात्रा की रौनक।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
5: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में, कहीं खुशी तो कहीं गम। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।
6: Ugh, I have had no luck lately. Wait, lady luck?
7: Britsky, I got you. I've had so much luck on SpinQuest.com. They have all of my favorite games, slot games, live blackjack craps, and bubble craps. You can even get a $30 coin pack for just $10.
6: $10 for 30? I'm headed over to SpinQuest.com right now.
8: SpinQuest is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Visit SpinQuest.com for more details.
9: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
10: Jack FM, now playing what we want, commercial free on TuneIn Premium.
11: What about me, Jack? What about me?
10: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial free.
12: Well played, Jack. Well played.
10: Jack FM, playing what we want.
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
14: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
15: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
16: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
17: और दुर्भाग्य कहता है
18: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
15: अविश्वास में विश्वास बसता है,
16: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
2: RBI की मॉनेटरी पॉलिसी के फैसलों का ऐलान, 5.25% रेपो रेट बरकरार, ब्याज दरों में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं। केरला में मानसून की दस्तक का आज दूसरा दिन, कोची में जोरदार बारिश, मौसम हुआ सुहावना। एमपी के छतरपुर में हनुमान चालीसा हवन में उमड़ा आस्था का सैलाब, बाबा बागेश्वर के साथ लाखों भक्तों ने एक साथ किया हवन, विदेशों से भी ऑनलाइन जुड़े श्रद्धालु। विश्व पर्यावरण दिवस पर देश भर में कार्यक्रमों का आयोजन, लखनऊ में सीएम योगी ने किया पौधारोपण, लोगों को दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश। रामचरण की फिल्म पैडी की बम्पर ओपनिंग बॉक्स ऑफिस पर धुरंधर का रिकॉर्ड तोड़ा, पहले दिन वर्ल्ड वाइड 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई की।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
2: देवभूमि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा पूरे शबाब पर है, यात्रा के दूसरे चरण में भी श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर देखने को मिल रहा है। खासकर केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। बाबा केदार और भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए देश विदेश से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। अब तक दोनों धामों में करीब 19 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। यात्रा के दूसरे चरण में भी भक्तों का उत्साह कम होने का नाम नहीं ले रहा। सुबह से लेकर देर शाम तक दोनों धाम में दर्शन के लिए लंबी कतारें देखी जा रही हैं। बाबा केदार के जयकारों और बद्री विशाल के भजनों से पूरा क्षेत्र भक्तिमय माहौल में डूबा हुआ है।
3: और देखिए, यात्रा प्रशासन और स्थानीय प्रशासन की तरफ से श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए व्यापक इंतजाम भी यहां किए गए हैं। सुरक्षा, स्वास्थ्य, आवास, यातायात व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की दौरान कोई परेशानी का सामना न करना पड़े।

0: चार धाम यात्रा अपने दूसरे चरण में है और तेजी से आगे बढ़ रही है। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में अब तक करीब 19 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। अकेले बद्रीनाथ धाम में रोजाना करीब 29,000 तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं। बद्रीनाथ यात्रा नए रिकॉर्ड बना रही है। सुबह से शाम तक दर्शनार्थियों की भारी भीड़ रहती है। अब तक करीब 8,61,000 से ज्यादा श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दरबार में हाजिरी लगा चुके हैं। यहाँ शाम की रौनक देखने लायक है। शाम होते ही बाजारों में चहल पहल बढ़ जाती है। श्रद्धालु घूमते अपने घरों के लिए प्रसाद और सामग्री खरीदते दिखाई देते हैं। वहीं हेमकुंड साहिब में अब तक करीब 50,000 श्रद्धालु हाजिरी लगा चुके हैं। हर नए दिन के साथ हेमकुंड यात्रा में बढ़त देखने को मिल रही है। यहाँ रोजाना 4,500 से ज्यादा श्रद्धालु मत्था टेकने पहुँच रहे हैं।
1: बद्रीनाथ धाम की यात्रा इस समय आस्था का सैलाब देखने को मिल रहा है। बद्रीनाथ धाम में अब तक 8,61,000 से अधिक श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शनों को पहुंच चुके हैं। 8.5 लाख की संख्या जो है वो पार हो चुकी है और अब कभी भी 9 लाख की संख्या बद्री विशाल के यात्रियों की पूरी हो सकती है। वहीं सिखों का पवित्र तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब में लगभग 50,000 श्रद्धालु मत्था टेकने पहुँच चुके हैं। बड़ी कठिन ये चढ़ाई होती है। 19 किलोमीटर खड़ी पैदल चढ़ाई और ऑक्सीजन की कमी के बावजूद जो श्रद्धालुओं का उत्साह हेमकुंड साहिब में जबरदस्त देखने को मिल रहा है। लगभग 4,500 श्रद्धालु हेमकुंड साहिब रोजाना पहुंच रहे हैं।
0: इस बीच मानसून की आहट भी सुनाई देने लगी है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक पहाड़ों में बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना जताई है। हालांकि इस समय पहाड़ों का मौसम बेहद सुहावना और खूबसूरत बना हुआ है। जून के महीने में भी गर्मी का एहसास न के बराबर है, जिस वजह से यात्रियों और पर्यटकों की भारी भीड़ लगी हुई है।
1: वही आज से मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है, 3 दिनों तक पहाड़ों में एक बार फिर से बारिश और ऊंचाई वाली जगहों पर बर्फबारी का पूर्वानुमान मौसम विभाग ने जताया है। ऐसे में जो जून का महीना चल रहा है, खासकर गर्मी सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। पर्यटक और जो यात्री हैं उनके लिए बहुत सुहावना मौसम यहाँ पे पहाड़ों में देखने को मिलेगा। बारिश धीरे धीरे आप पहाड़ों में बारिश देखने को मिलेगी। ऐसे में कहीं ना कहीं जो पहाड़ों का मौसम है वो ठंडक और बड़ा ही सुंदर है।
0: मौसम विभाग के अलर्ट के बाद प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद है। सभी मशीनरी तैयार रखने के निर्देश के साथ साथ यात्रा पर भी नजर रखी जा रही है। प्रशासन द्वारा सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा रही है।
2: इस बार विभिन्न दिनों पे अलर्ट जारी होते रहे तो उसी के अनुक्रम में जिलाधिकारी महोदय के द्वारा प्रॉपर उसमें डायरेक्शन हमें दिए जाते हैं। जो हमारी मशीनरी है वो अलर्ट पे है और कहीं रोड अगर बंद होती है तो उसके लिए जो हमारे यात्रियों के ठहरने के लिए और जो ट्रैफिक जो रुक जाता है उसको किस तरीके से सुचारू करना है, जो भी एजेंसियाँ हैं वो बिल्कुल तत्पर हैं और मशीनरी और मैन पावर जो उनकी है वो डिप्लॉयड है।
0: चार धाम यात्रा केवल धार्मिक यात्रा नहीं बल्कि श्रद्धा, धैर्य और आत्मिक शांति का भी प्रतीक है। यही वजह है कि हर साल लाखों श्रद्धालु इस पवित्र यात्रा का हिस्सा बनते हैं और अपने जीवन के यादगार अनुभवों में इसे शामिल करते हैं। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सिंहवाल के साथ चमोली से कमल अंसिलोड़ी, गुड न्यूज टुडे।
3: केदारनाथ धाम में जहां एक तरफ भक्तों की भारी भीड़ मरती हुई नजर आ रही है तो वहीं दूसरी तरफ प्लास्टिक कचरे का भी ढेर लगा है। ऐसे में धाम समेत पैदल यात्रा मार्ग पर कोई गंदगी ना रहे और सभी प्रकार का कूड़ा समय पर नीचे पहुंचे, इसके लिए रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन विशेष अभियान भी चला रहा है।
4: केदारनाथ नगर पंचायत ने केदार घाटी को स्वच्छ बनाने के लिए कैरी मी बैग पॉलिसी लागू की है, जिसके तहत श्रद्धालु खुद सूखे कूड़े को वापस गौरीकुंड तक ला रहे हैं।
0: ये कोशिश है केदारनाथ धाम को स्वच्छ और प्लास्टिक मुक्त बनाने की, एक पहल जिसमें श्रद्धालुओं की भागीदारी जरूरी है। हर साल लाखों श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुंचते हैं और बड़ी मात्रा में प्लास्टिक की बोतलें, रैपर और सूखा कचरा वहां छोड़ आते हैं, जिनका निदान संभव नहीं हो पाता। ऐसे में जिला प्रशासन ने एक नई पहल शुरू की है। नगर पंचायत केदारनाथ, हीलिंग हिमालयाज फाउंडेशन और सुलभ इंटरनेशनल के सहयोग से धाम में कैरी मी बैग पॉलिसी शुरू की गई है, जिसमें वापसी के दौरान श्रद्धालु खुद सूखे कूड़े को वापस गौरीकुंड तक ला रहे हैं।
5: श्री केदारनाथ धाम में पहली बार वहां पर एमआरएफ सेंटर का भी संचालन किया गया है और वहां पर बेलिंग मशीन के द्वारा प्लास्टिक और जो ड्राई वेस्ट है उसको उसकी बेल्स बनाई जा रही हैं और उनको धीरे धीरे करके नीचे खच्चर के माध्यम से उतारा भी जा रहा है। इस प्रकार से श्री केदारनाथ धाम ट्रैक टू सफाई का काम चल रहा है। इसमें सुलभ की संस्था भी काम कर रही है, सभी नगर पालिका, नगर पंचायत और जिला पंचायत भी काम कर रहे हैं और प्रयास ये है कि डेली जो वेस्ट जनरेट हो रहा है उसका साइंटिफिकली डिस्पोजल किया जाए। इस संदर्भ में एक जिला लेवल पर एक मॉनिटरिंग सेल भी बनाई गई है जो हर 15 दिन में इसकी मॉनिटरिंग करके अपडेट करे।
0: कैरी मी बैग पॉलिसी के तहत नगर पंचायत की ओर से 400 से 500 ग्राम क्षमता वाले बैग में सूखा कूड़ा भरकर यात्रियों को दिया जा रहा है। श्रद्धालुओं को केवल इन बैग को अपने साथ गौरीकुंड तक लाना है, जहां स्वजल विभाग समेत सहयोगी संस्थाओं की ओर से कूड़े का संग्रहण किया जा रहा है। इसके बाद सुलभ इंटरनेशनल वैज्ञानिक एवं पर्यावरणीय मानकों के अनुरूप कूड़े का अंतिम निस्तारण किया जाएगा। प्रशासन का मानना है कि अगर अधिक संख्या में यात्री इस अभियान से जुड़ते हैं तो हर रोज कई टन कूड़ा आसानी से धाम से नीचे लाया जा सकेगा। इसके लिए यात्रियों को जागरूक भी किया जा रहा है। यात्रा मार्ग पर अलग अलग जगहों पर सूचना बोर्ड लगाए गए हैं और लोगों से पर्यावरण संरक्षण में सहयोग की अपील की जा रही है। उम्मीद की जानी चाहिए कि श्रद्धालुओं की भागीदारी से ये अभियान सफल होगा और केदारनाथ धाम में स्वच्छता एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों को नई मजबूती मिलेगी। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: चलिए अब आपको दिखाते हैं दक्षिण भारत में उत्सव के रंग। तमिलनाडु के अलग अलग मंदिरों में इस उत्सव की रौनक देखने को मिली। परिमला रंगनाथर पेरुमल मंदिर में पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ वसंत उत्सव मनाया गया।
3: तो वहीं देखिए नागा कन्या परमेश्वरी अम्मन मंदिर में भी 5वें वार्षिक पाल कुडम उत्सव का यहां पर भव्य आयोजन हुआ। थूथुकुड़ी के पेची अम्मन मंदिर में 108 तिरुविलक्कु पूजा का भव्य आयोजन भी किया गया।
6: आस्था और भक्ति की ये तस्वीरें तमिलनाडु के मियालादुथुरे की हैं, जहां परिमला रंगनाथार पेरुमल मंदिर में भव्य वसंत उत्सव का आयोजन किया गया। 5 दिनों तक चले इस उत्सव को यहां के पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। उत्सव की शुरुआत विशेष धार्मिक अनुष्ठानों के साथ हुई। उसके बाद देवी देवताओं का फल, हल्दी, दूध, चंदन और नारियल पानी जैसे पवित्र द्रव्यों से महाअभिषेक किया गया। परंपरा के मुताबिक मंदिर के प्रवेश द्वार के करीब बने उत्सव मंडप में एक सुंदर कृत्रिम कमाल का तालाब तैयार किया गया, जिसमें भगवान और देवी के उत्सव मूर्तियों को पूरी गरिमा के साथ स्थापित किया गया। वैदिक मंत्रोच्चार और पारंपरिक नाद स्वरम संगीत के बीच भगवान को सुंदर वस्त्रों और सुगंधित फूलों से सजाया गया और फिर भव्य दीप आराधना की गई। मान्यता है कि इस वसंत उत्सव में शामिल होने और भगवान के इस पावन रूप के दर्शन करने से जीवन में सुख, समृद्धि और पवित्रता का संचार होता है। तमिलनाडु के मियालादुथुरे से ही उत्सव की ये एक दूसरी तस्वीर है। कडलुंगड़ी गांव में नागा कन्या परमेश्वरी अम्मन मंदिर के 5वें वार्षिक पाल कुडम उत्सव का भव्य आयोजन किया गया। इस धार्मिक अनुष्ठान में पारंपरिक दक्षिण भारतीय संगीत और नाद स्वरम की मधुर धनों के बीच भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें श्रद्धालु परंपरा के मुताबिक दूध का कलश लेकर शामिल हुए। शोभा यात्रा के मंदिर पहुंचने के बाद भक्तों द्वारा लाए गए पवित्र दूध से देवी नागा कन्या परमेश्वरी अम्मन का भव्य महाअभिषेक किया गया। पुजारियों के विशेष वैदिक मंत्रोच्चार और महाआरती के साथ उत्सव का समापन हुआ। थूथुकुडी के पेची अम्मन मंदिर का वार्षिक उत्सव परंपरा और रीति रिवाज के साथ मनाया गया। उत्सव का मुख्य आकर्षण दीप पूजा था। मंदिर परिसर में कतारबद्ध बैठी 108 महिलाओं ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच एक साथ पीतल के दीपकों को प्रज्वलित किया। महिलाओं ने माता पेची अम्मन के दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए दीपों को कुमकुम, हल्दी और सुगंधित फूलों से पूजा। इस भव्य धार्मिक अनुष्ठान का समापन देवी पेची अम्मन की महादीप आराधना के साथ हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: पेट्रोल डीजल के बढ़ते हुए दामों के बीच में किफायती ईंधन के विकल्प तलाशे जाने लगे हैं। इसी बीच गुड न्यूज ये आई है कि देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी ने अपनी पहली फ्लेक्स फ्यूल कार वैगनार को पेश किया है। केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली में आयोजित एक इवेंट में इस नई कार को शोकेस किया और लॉन्च किया। इस मौके पर केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी मौजूद रहे। खास बात यह है कि मारुति की ये नई कार हायर इथेनॉल ब्लेडिंग पर भी आसानी से दौड़ सकती है। माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में वैकल्पिक फ्यूल का इस्तेमाल भी इससे काफी बढ़ जाएगा।
4: फ्लेक्स फ्यूल एक ऐसी तकनीक है जिसमें वाहन का इंजन पेट्रोल और इथेनॉल के अलग अलग मिश्रण वाले फ्यूल पर चल सकता है। आमतौर पर फ्लेक्स फ्यूल वाहन 20% एथेनॉल या 100% एथेनॉल या फिर इनके बीच के किसी भी ब्लेडिंग पर आसानी से दौड़ सकते हैं और वाहन में लगे सेंसर ईंधन में एथेनॉल की मात्रा को पहचान कर इंजन की सेटिंग अपने आप एडजस्ट भी कर देते हैं जिससे परफॉर्मेंस प्रभावित नहीं होता।
3: अब खबर कामयाबी की एक ऐसी ऊंची उड़ान की करते हैं, आपको मिलवाते हैं किसान की बेटी महक प्रीत कौर के साथ जिन्होंने एयरफोर्स अकेडमी के टेस्ट में पहला स्थान हासिल किया है।
7: पंजाब की महक प्रीत कौर ने जो ऑल इंडिया टेस्ट रैंकिंग है उसमें फर्स्ट रैंक हासिल किया है जो कि एयरफोर्स एकेडमी के लिए टेस्ट हुआ था। काफी लोग उसमें अपेयर हुए थे लेकिन पंजाब की महक प्रीत कौर ने फर्स्ट रैंक जो हासिल किया। हमारे साथ हैं महक प्रीत, थोड़ा सा बताइए इस टेस्ट के बारे में, कब हुआ था, कितने लोग एप्लीकेंट थे और कैसी तैयारी थी आपकी?
8: सर ये मैंने अपनी थर्ड ईयर की अपेयरिंग में एफ कट दिया था। मैंने ये अगस्त में दिया था 2025 में। तो फर्स्टली ये तीन स्टेजेस का प्रोसेस है। फर्स्टली रिटन एग्जामिनेशन होता है जिसमें मैथ्स रीजनिंग जीएस और इंग्लिश होते हैं। ऑब्जेक्टिव लेवल का पेपर होता है, नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो कॉम्पिटेटिव है तो थोड़ा आपको उसी हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजीज बनानी पड़ती है। देन आफ्टर क्लियरिंग रिटन एग्जामिनेशन SSB होती है। दिस इज अ 5-day लॉन्ग प्रोसेस जिसमें आपका मेंटली फिजिकली इमोशनली वो एवरीथिंग दिल जज एंड व्हाट पर्सनालिटी यू हैव वो उस 5 दिन में जज करते हैं। देन यू गेट रिकमेंडेशन एंड उस रिकमेंडेशन के बाद यू हैव मेडिकल टेस्ट। वो मेडिकल क्लियर करने के बाद सर मेरिट लिस्ट आती है।
7: तो यू डॉटर ऑफ अ फार्मर, तो कितना आपका एम्बिशन था कि एयरफोर्स में जाना, ये कहां से आई आपके अंदर बात की आई वांट टू गो टू द एयरफोर्स और फाइनली आपने रैंक जो हासिल किया है, तो आगे आप हाउ यू सी योर लाइफ?
8: सर +1 +2 में मैंने ह्यूमैनिटीज ली थी। ये मैंने यही सोच के ली थी कि मेरे को गवर्नमेंट सर्विसेज में जाना। उस टाइम पे मेरे को इतना एफकार्ड का इतना आइडिया नहीं था। देन मेरे कजन है, ही इज इन आर्मी, ही इज अ लेफ्टिनेंट, उन्होंने मेरे को गाइड किया कि देर इज अ AFPI इंस्टीट्यूट इन मोहाली। तो मैंने वो ज्वाइन किया एंड उसके दौरान मैंने अपनी ग्रेजुएशन साथ की साथ की। उसी में मेरे को पता लगा दैट एफकार्ट एंड व्हाट इज अ CDS एंड व्हाट इज अ एफकार्ट। और फिर मेरे को उन्हें पता कि मेरी जो पर्सनालिटी है उसके साथ अलाइन करती है आर्म्ड फोर्सेस के साथ। तो मैंने उसकी तरफ अपनी एनर्जीज लगाई। तो मेरे को उन्हें लगा मेरा पोटेंशियल है, तो मैंने भी अपनी फिर वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ पे इक्वली काम किया। तो सर मैं इस डायरेक्शन में फिर उस हिसाब से गई।
7: तो एयरफोर्स ही क्यों चुना आपने, भी एयरफोर्स में ही जाना?
8: सर ऑब्वियसली द लाइफ स्टाइल, द यू गेट मोटिवेटेड बाय लुकिंग एट द ऑफिसर्स और जो उनका वर्क लाइफ बैलेंस है एंड प्रोफेशनलिज्म जो हम एक आर्म्ड फोर्सेस के ऑफिसर्स में देखते हैं, एयरफोर्स के ऑफिसर में देखते हैं। और एयरक्राफ्ट तो सर डेफिनेटली एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस।
7: फाइटर पायलट के लिए जाएंगे?
8: सर आई एम एलिजिबल फॉर ग्राउंड ड्यूटी, सो उसी ग्राउंड ड्यूटी के दौरान ही जाऊंगी।
7: फ्रॉम माय एग्रीकल्चर बैकग्राउंड, फादर आपके फार्मर हैं, रोपड़ से आप रहने वाले हैं, तो घर से कितनी सपोर्ट थी, सपोर्ट सिस्टम कैसा था और कितना डिफिकल्ट था ये और कितने आवर्स आपको लगते थे रोज पढ़ाई में?
8: सर बैकग्राउंड कभी मेरे लिए बैरियर नहीं रहा। एक फार्मर की
7: मोटिवेशन है।
8: यस मोटिवेशन है क्योंकि फार्मर की डॉटर होने के नाते आपको बहुत वैल्यूज इंकलकेट होती हैं आपकी पर्सनैलिटी में। चैलेंजेस ऑब्वियसली सर थे क्योंकि आप एक रूरल बैकग्राउंड से आते हो जहां पे इतने रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। बट जैसे कि फिर मैं अपनी ग्रेजुएशन मैंने चंडीगढ़ मोहाली से की है, तो वहां पे रह के मेरे को काफी फैसिलिटीज की अवेलेबिलिटी थी। चैलेंजेस जो मैंने आए मैंने उन्हें इक्वली एम्ब्रेस किया, तो उनको ओवरकम करते करते सर आगे बढ़े।
7: फाइनली जो ड्रीम था टू सर्व द नेशन वो पूरा हो रहा है।
8: हाँ जी सर, दिस इज इवन फर्स्ट स्टेप, अभी आगे जर्नी तो बाकी है। बाकी आई टेक एंड टेक दिस जर्नी विद पॉजिटिव नोट एंड आगे अच्छे से सर करूंगी।
4: अब तो गए छोटे से ब्रेक, आप कहीं मत जाएगा, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग।
10: You've always believed in students, their potential and what they can become. At WGU School of Education, we help current and aspiring educators become great teachers with bachelor's and master's degree programs that are flexible, accredited, and built for real life. With personal support and your pathway to the classroom in any of the 50 states, WGU is where your love for education meets a path to impact. Because teaching isn't just a career, it's a calling. Learn more at WGU.edu.
9: खबरों की मौड़ धौड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: क्रिकेट का रुख कर लेते हैं, आपको टीम इंडिया के खिलाड़ियों का अलग अंदाज दिखाते हैं। एक्शन से पहले टीम इंडिया के फोटोशूट की तस्वीरें भी सामने आ गई हैं, जिसमें इंडियन टीम के ये स्टार्स स्टाइल के साथ पोज देते हुए नजर आ रहे हैं। इस फोटोशूट में आपको शुभमन गिल, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव समेत दूसरे सभी खिलाड़ी दिखाई देंगे। रेड बॉल क्रिकेट में भारत का अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा, लिहाजा न्यू चंडीगढ़ में फैंस की निगाहें टीम इंडिया पर टिकी हुई हैं, खासकर इन युवा खिलाड़ियों के ऊपर।

0: बात फुटबॉल की दीवानगी की कर लेते हैं। सबसे पहले एक ऐसे शहर की तस्वीर आपको दिखाते हैं जिस पर फुटबॉल का बुखार चढ़ा हुआ है। अमेरिका के बोस्टन शहर में 2026 फीफा वर्ल्ड कप की तैयारियां जोरों पर है। यह शहर 13 जून को हैती और स्कॉटलैंड के बीच होने वाले मैच की मेजबानी करेगा। बीनटाउन के नाम से मशहूर बोस्टन में कुल 5 ग्रुप स्टेज मैच, 1 राउंड ऑफ 32 और 1 क्वार्टर फाइनल मैच खेला जाएगा। लेकिन अभी से यहां के सॉकर की दीवानगी देखने को मिली है। वर्ल्ड कप के लिए की गई आधुनिक सजावट शहर को एक नया रूप भी दे रही है। हम आपको बता दें कि यह शहर 1776 में ब्रिटेन से अमेरिकी क्रांति का केंद्र रहा था और इसे सदियों पुरानी विरासत संजोने के लिए खास तौर पर जाना जाता है। और अब यह शहर मॉडर्न गेम्स का पावर हाउस बनकर उभरा। एक तरफ फुटबॉल के सबसे बड़े टूर्नामेंट फीफा वर्ल्ड कप 2026 में मेसी और रोनाल्डो को खेलते हुए देखना फैंस का क्रेज सर चढ़कर बोल रहा है, तो दूसरी तरफ 11 जून से शुरू होने जा रहे ये टूर्नामेंट कई मायनों में खास होने
1: के साथ इन तमाम खबरों के बाद लंच टाइम में आज के लिए बस इतना।
2: और चलिए हम दोनों को इजाजत दीजिए। अच्छी पॉजिटिव खबरें दिन भर जारी हैं, आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग
4: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में कहीं खुशी तो कहीं गम। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।

0: Hey, this is Harry Douglas from Freddie and Harry. Stay locked in to the NBA playoffs with ESPN Radio. Get around-the-clock sports talk covering every matchup, every storyline, and every big moment as games unfold. And throughout the playoffs, catch select live games bringing you courtside for some of the biggest showdowns. From nonstop analysis to can't-miss action, ESPN Radio is your home to follow the NBA playoffs. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए. इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर.
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है. इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे. तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर.
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं. खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर. खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है. खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है. ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे.

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। टीआईटी भोपाल, जेन ज़ीज़ गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स।
3: आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के फैसलों का ऐलान, 5.25% रेपो रेट बरकरार, ब्याज दरों में किसी भी तरह का बदलाव नहीं। केरला में मॉनसून की दस्तक का दूसरा दिन, कोची में जोरदार बारिश, मौसम हुआ सुहाना। केदारनाथ में बीमार श्रद्धालुओं का एयरलिफ्ट, प्रशासन की तत्परता से हेलीकॉप्टर से पहुंचाया गया सेंटर, रेस्क्यू में दिखा शानदार तालमेल। मध्य प्रदेश के छतरपुर में हनुमान चालीसा हवन में उमड़ा आस्था का सैलाब, बाबा बागेश्वर के साथ लाखों भक्तों ने एक साथ किया हवन, विदेशों से भी ऑनलाइन जुड़े श्रद्धालु। विश्व पर्यावरण दिवस पर देश भर में कार्यक्रमों का आयोजन, लखनऊ में सीएम योगी ने किया पौधारोपण, लोगों को दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश। रामचरण की फिल्म पेडी की बम्पर ओपनिंग, बॉक्स ऑफिस पर धुरंधर का तोड़ा रिकॉर्ड, पहले दिन की वर्ल्ड वाइड पर 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से।
3: केरलम के कोची में सक्रिय मॉनसून के कारण बारिश का दौर जारी, तापमान में आई कमी। मौसम विभाग के मुताबिक शहर में गरज और भारी बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना, मौसम में बदलाव के कारण ट्रैफिक की थमी रफ्तार। केरला में आज मौसम विभाग ने 8 जिलों के लिए जारी किया ऑरेंज अलर्ट, राज्य के बाकी सभी जिलों में भारी बारिश की आशंका को देखते हुए येलो अलर्ट जारी। दिल्ली और आसपास के इलाकों में कल हुई बारिश के बाद आज ही मौसम हुआ सुहाना, तापमान में आई भारी गिरावट। हरियाणा पंजाब समेत कई राज्यों में बदला मौसम का मिजाज, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के सक्रिय होने का असर। प्रधानमंत्री के दौरे से पहले सूरत से आई क्रिएटिविटी की तस्वीर, कलाकारों ने प्लास्टिक 17,000 रिसाइकल बोतलों से बनाई प्रधानमंत्री का विशाल पोस्टर। आज दुनिया भर में मनाया जा रहा विश्व पर्यावरण दिवस, पर्यावरण संरक्षण और पर्यावरण को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए देशभर में कार्यक्रमों का आयोजन। दिल्ली के श्रम शक्ति भवन में मेरा युवा मेरा यूथ एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म से जुड़े कार्यक्रम का आयोजन, केंद्रीय युवा और खेल मंत्री मनसुख मांडविया हुए शामिल। रामलला के दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं का ध्यान खींच रहे हैं भित्ति चित्र, राम मंदिर की दीवारों पर बनाए गए हैं रामायण के प्रसंगों पर आधारित भित्ति चित्र। राम मंदिर के चबूतरे पर बनाए गए हैं रामायण थीम वाली कलाकृतियां, श्री राम और रामायण के प्रसंगों पर बनी है कलाकृतियां, श्रद्धालुओं के अनुभव को बना रही है समृद्ध। विश्व पर्यावरण दिवस पर लखनऊ में सीएम योगी ने किया पौधारोपण, लोगों को दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश। आगर मालवा के सिपाही बंटी धाकड़ की पर्यावरण को लेकर शानदार पहल, ग्रीन आर्मी बनाकर लोगों को पौधारोपण के लिए कर रहे हैं प्रेरित। साइकिल यात्रा से भी बंटी लोगों को कर रहे हैं जागरूक, पेड़ लगाने के बताते हैं फायदे। बंटी धाकड़ के प्रयासों से लगाए गए सैकड़ों पौधे अब बन चुके हैं पेड़, पेड़ों की छाया से लोगों को मिल रही है राहत। दिल्ली के प्रदूषण को कम करने में काम आएंगे राजस्थान के अलवर में तैयार पौधे, नर्सरियों में लगाए गए 24 लाख पौधे। रामचरण की फिल्म पेडी ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर किया शानदार प्रदर्शन, फिल्म का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन 112.49 करोड़ पहुंचा। फिल्म पैडी ने रणवीर सिंह की धुरंधर और सनी देओल की गदर 2 जैसी फिल्मों के ओपनिंग डे रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा। फिल्म का क्रेज न सिर्फ दक्षिण भारत बल्कि हिंदी बेल्ट में भी देखने को मिला। भारत में पहले दिन पैडी की कमाई रही 69.50 करोड़। फिल्म पंडितों के मुताबिक पैडी का शानदार सफर आगे भी रहेगा जारी। पैडी की सफलता के लिए जानवी कपूर आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर पहुंची। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा जानवी कपूर का वीडियो। जानवी कपूर की सादगी की जमकर हो रही है तारीफ। उन्होंने नंगे पैर 3,550 सीढ़ियां चढ़ी और भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन किए। सिने प्रेमियों के लिए गुड न्यूज, बड़े पर्दे पर रिलीज हुई बॉबी देओल की फिल्म बंदर और वरुण धवन की है जवानी तो इश्क होना है। इमरान हाशमी की फिल्म आवारापन 2 सिनेमाघरों में रिलीज के लिए तैयार। आवारापन 2 के सेट से इमरान हाशमी ने शेयर की तस्वीर। मोहनलाल की फिल्म दृश्यम 3 का बॉक्स ऑफिस पर जलवा बरकरार। दृश्यम 3 ने 15वें दिन 1,05,00,000 का कलेक्शन किया। रणवीर सिंह की धुरंधर अब जापान में दिखाएगी जलवा। 10 जुलाई को रिलीज होगी धुरंधर पार्ट 1। आप टीवी पर दर्शक देख सकेंगे धुरंधर पार्ट 2। जियो हॉटस्टार पर आज से ये रेगुलर सब्सक्राइबर्स के लिए अवेलेबल है। आज देश को मिलेगी 20,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात। सूरत में 18,000 करोड़ के विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सूरत दौरे के बाद केंद्र शासित प्रदेश दमन पहुंचेंगे पीएम मोदी। दमन में हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का करेंगे उद्घाटन। दमन में कनेक्टिविटी और पर्यटन को मिलेगी इससे नई उड़ान। दमन के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की भी मिलेगी सौगात। नमो अस्पताल का भी उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। कन्वेंशन सेंटर NIEFT कैंपस का करेंगे शिलान्यास। 8वीं बार दमन दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। पीएम के दौरे को लेकर दमन में जबरदस्त तैयारी। जगह जगह लगाए गए पीएम के बड़े बड़े कटआउट्स। प्रधानमंत्री आज लक्षद्वीप के खेल्पनी द्वीप और कदम द्वीप के पूर्वी और पश्चिमी किनारों पर बंदरगाह सुविधाओं के विकास का करेंगे शिलान्यास। अहमदाबाद में पहली विश्व योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का शुभारंभ। समारोह में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, योग गुरु बाबा रामदेव समेत कई हस्तियां हुई शामिल। पीएम मोदी ने वर्चुअली किया विश्व योगासन चैंपियनशिप का उद्घाटन। योग को बताया मानवता के लिए सबसे बड़ा तोहफा। प्रतियोगिता में 60 से ज्यादा देशों के 500 से ज्यादा एथलीट ले रहे हैं हिस्सा। एक अरेना में 8 जून तक चलेगी प्रतियोगिता। प्रतियोगिता में पारंपरिक योगासन के साथ कई तरह की प्रतिस्पर्धाओं का होगा आयोजन। वी द लायन रखा गया है पहली विश्व योगासन खेल प्रतियोगिता का शुभंकर। योगासन को प्रतिस्पर्धी वैश्व खेल के रूप में स्थापित करना और 2036 के ओलंपिक में शामिल कराने की दिशा में कदम बढ़ाना प्रतियोगिता का मकसद। उत्तर प्रदेश के झांसी में महिलाओं ने केक काटकर मनाया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन। बोली 2027 में एक बार फिर यूपी के मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश का एक्सप्रेसवे नेटवर्क प्रवेश में विकास को दे रहा नया आयाम। प्रदेश को तेज कनेक्टिविटी, यात्रा, व्यापार और विकास को मिल रही है इससे मजबूती। महंगे डीजल, पेट्रोल और प्रधानमंत्री मोदी की अपील के बाद मुंबई में बड़ा कार पूलिंग का ट्रेंड। कार पूलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन में 30-40% की हुई बढ़ोतरी। असम में आज हिमंता मंत्रिमंडल का होगा विस्तार। 9 नेता ले सकते हैं मंत्री पद की शपथ। रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में नहीं किया बदलाव। रेपो रेट 5.25% पर बरकरार। होम और कार लोन की ईएमआई पर फिलहाल असर नहीं। बागेश्वर धाम में हजारों श्रद्धालुओं ने सामूहिक हनुमान चालीसा हवन में भाग लिया। भक्ति के रंग में अद्भुत दृश्य किया पेश। हनुमान चालीसा के मंत्रोच्चार के बीच हजारों श्रद्धालु हवन में शामिल। रात के अंधेरे में जलते हवन कुंडों की रोशनी दूर तक दिखाई दी। हजारों भक्तों के साथ पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने भी सामूहिक हनुमान चालीसा हवन में हिस्सा लिया। भक्ति भाव से सराबोर माहौल। बागेश्वर धाम में श्री हनुमान चालीसा हवन समारोह का आयोजन 6वां आयोजन हुआ। रोशनी और भक्ति का दिखा अनोखा संगम। सामूहिक हनुमान चालीसा हवन समारोह में शामिल होने के लिए घंटों पहले से ही भक्त हुए एकत्रित। हवन कुंड में दिया आहुति। कल से शुरू होगा भारत और अफगानिस्तान के बीच एक मात्र टेस्ट मैच न्यू चंडीगढ़ के महाराजा यादवेंद्र सिंह स्टेडियम में। इस सीजन भारत का यह पहला टेस्ट होगा। भारत और अफगानिस्तान का मुकाबला आईसीसी वर्ल्ड चैंपियनशिप का नहीं है हिस्सा, इस मैच में भारत से दो खिलाड़ियों के डेब्यू की संभावना। भारतीय बल्लेबाजी क्रम में नंबर तीन के लिए साई सुदर्शन और देवदत्त पडिक्कल के बीच मुकाबला, हालिया फॉर्म को देखते हुए पडिक्कल का खेलना लगभग तय। विदर्भ के हर्ष दुबे और राजस्थान के मानस उथार में से किसी एक को टेस्ट डेब्यू का मिल सकता है मौका, जसप्रीत बुमराह को आराम दिए जाने के कारण सिराज करेंगे पेस बॉलर्स को लीड। अफगानिस्तान की टीम की कमान हशमतुल्ला शाहिदी संभालेंगे, टेस्ट के बाद तीन वनडे खेले जाएंगे। लद्दाख में पारंपरिक उत्सव के बीच द्रास समर कार्निवल 2026 का भव्य शुभारंभ समारोह शुरू होने के साथ ही केंद्र शासित प्रदेश में उत्सवों का दौर शुरू। कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में सेना की ओर से आयोजित कार्निवल 7 जून तक चलेगा, स्थानीय खेल संस्कृति और परंपरा का दिखेगा संगम। द्रास समर कार्निवल में हॉस्पोलो टेंट पेगिंग और तीरंदाजी की होती है प्रतियोगिताएं, खेलों को बढ़ावा देना और सेना जनता के बीच संबंध मजबूत करना इसका मकसद। जम्मू कश्मीर में बेहतर मौकों की तलाश में कारोबार का रुख कर रहे हैं पढ़े लिखे युवा, रोजगार का नया माध्यम बन रहा प्रदेश का स्टार्टअप इकोसिस्टम। तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दमकल विभाग को मिला हाईटेक उपकरण, प्रदेश के किसी एयरपोर्ट पर पहली बार तैनात किया गया उन्नत क्रैश फायर टेंडर। गुप्तखाल ट्रेकिंग कर लौटा इस साल का पहला दल, बर्फबारी और मौसम की चुनौती के बीच की चढ़ाई। कमशाली से 24 मई को गुप्तखाल के लिए रवाना हुआ था यह दल, समूह में शामिल थे 7 ट्रैक। 5,807 मीटर की ऊंचाई पर है सबसे दुर्गम ट्रैकिंग रूटों में शुमार गुप्तखाल ट्रैकिंग रूट, 10 दिन का था ट्रैकिंग अभियान। इस दल में दिल्ली पंजाब कोलकाता और महाराष्ट्र की ट्रैकिंग के शौकीन शामिल, कमशाली से होते हुए गुप्तखाल पहुंचा यह दल। सीक्रेट पास के नाम से मशहूर है ये यात्रा, हिमालय के सबसे जोखिम भरे और साहसिक ट्रैकों में है शुमार। गुजरात के एक परिवार ने ली राहत की सांस, विदेश में नौकरी के झांसे में फंसी दो सगी बहनों का सफल रेस्क्यू किया गया। नौकरी के लालच में गुजरात से पहले थाईलैंड और फिर लाओस पहुंची दो बहनों का रेस्क्यू ऑपरेशन महीसागर 2.0 चलाकर इंटरनेशनल मानव तस्करी गैंग से बचाई गई। बेटियों से संपर्क टूटने के बाद परिवार ने सांसद से लगाई थी गुहार, सांसद मितेश पटेल के प्रयासों और विदेश मंत्रालय की तत्परता से बची बंधक बनाकर रखी गई दोनों बहनें। लाओस में भारतीय दूतावास ने एजेंसीज की मदद से पहले दोनों का पता लगाया और फिर लाओस की सेना की मदद से छापा मारकर दोनों को सकुशल छुड़ाया। मानव तस्करी गिरोह के चंगुल से छूटने के बाद सुरक्षित हैं दोनों लड़कियां, परिवार ने ली राहत की सांस, कागजी प्रक्रिया पूरी होने के बाद स्वदेश लौटेंगी दोनों बहनें। महाराष्ट्र के जालना का किसान बना दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा, 2 एकड़ जमीन में आम के बाग से की 8 लाख रुपए की कमाई। प्रयोगशील किसान हनुमंत राव काले ने पारंपरिक खेती की जगह जैविक खेती को अपना कमाई का साधन बनाया, आम की बागवानी से कमाए लाखों रुपए। डोमे गांव के रहने वाले रिटायर्ड कृषि अधिकारी हनुमंत राव काले ने मिक्स क्रॉपिंग का किया सफल प्रयोग, 2 एकड़ में लगाए 116 तरह के लगभग 500 आम के पेड़। हनुमंत राव काले ने आधुनिक तकनीक जैविक खेती और पानी के सुनियोजित उपयोग से बदली तस्वीर, सूखा प्रभावित इलाके में खिलाई हरियाली। हनुमंत राव के प्रयोग की पूरे इलाके में हो रही है चर्चा, हनुमंत राव ने अपने बाग में आम के साथ अमरूद चीकू मौसमी संतरा नारियल काजू आंवला जामुन के भी पेड़ लगाए। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने राजस्थान के अजमेर में बद्दी घरों की रसोई की सूरत, गैस सिलेंडर और चूल्हा मिलने से महिलाओं को लकड़ी के धुएं से राहत मिली। पीएम उज्ज्वला योजना की लाभार्थी महिलाओं के चेहरे पर राहत की मुस्कान, सुबह शाम लकड़ी के धुएं से जूझने लगी।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से
4: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में, कहीं खुशी तो कहीं गम। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।
5: Stay Stay connected to the sports world with ESPN Radio on TuneIn.
6: Third period comes to an end. Game two headed to overtime.
5: Whether you're listening to game coverage or expert analysis, ESPN Radio is your go-to for everything sports. Listen to your favorite radio personalities and nonstop sports talk so you don't miss a second of action.
6: They score!
5: Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
7: मुझ में ही है
8: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं,
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
9: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं,
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: केदारनाथ धाम में जहां एक ओर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है, वहीं दूसरी ओर प्लास्टिक कचरे का भी ढेर लग रहा है। ऐसे में धाम सहित पैदल यात्रा मार्ग पर कोई गंदगी ना रहे और सभी प्रकार का कूड़ा समय पर नीचे पहुंच सके, इसके लिए रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन विशेष अभियान चला रहा है। केदारनाथ नगर पंचायत ने केदार घाटी को स्वच्छ बनाने के लिए कैरी मी बैग पॉलिसी लागू की है, जिसके तहत श्रद्धालु खुद सूखे कूड़े को वापस गौरीकुंड तक ले जा रहे हैं।
11: ये कोशिश है केदारनाथ धाम को स्वच्छ और प्लास्टिक मुक्त बनाने की, एक पहल जिसमें श्रद्धालुओं की भागीदारी जरूरी है। हर साल लाखों श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुंचते हैं और बड़ी मात्रा में प्लास्टिक की बोतलें, रैपर और सूखा कचरा वहां छोड़ आते हैं, जिनका निदान संभव नहीं हो पाता। ऐसे में जिला प्रशासन ने एक नई पहल शुरू की है। नगर पंचायत केदारनाथ, हीलिंग हिमालयाज फाउंडेशन और सुलभ इंटरनेशनल के सहयोग से धाम में कैरी मी बैग पॉलिसी शुरू की गई है, जिसमें वापसी के दौरान श्रद्धालु खुद सूखे कूड़े को वापस गौरीकुंड तक ला रहे हैं।
12: श्री केदारनाथ धाम में पहली बार वहां पर MRF सेंटर का भी संचालन किया गया है और वहां पर बेलिंग मशीन के द्वारा प्लास्टिक और जो ड्राई वेस्ट है उसको उसकी बेल्स बनाई जा रही हैं और उनको धीरे धीरे करके नीचे खच्चर के माध्यम से उतारा भी जा रहा है। इस प्रकार से श्री केदारनाथ धाम ट्रैक पर सफाई का काम चल रहा है, इसमें सुलभ की संस्था भी काम कर रही है, सभी नगर पालिका, नगर पंचायत और जिला पंचायत भी काम कर रहे हैं और प्रयास ये है कि डेली जो वेस्ट जनरेट हो रहा है उसका साइंटिफिकली डिस्पोजल किया जाए। इस संदर्भ में एक जिला लेवल पर एक मॉनिटरिंग सेल भी बनाई गई है जो हर 15 दिन में इसकी मॉनिटरिंग करके अपडेट करें।
11: कैरी मी बैग पॉलिसी के तहत नगर पंचायत की ओर से 400 से 500 ग्राम क्षमता वाले बैग में सूखा कूड़ा भरकर यात्रियों को दिया जा रहा है। श्रद्धालुओं को केवल इन बैग को अपने साथ गौरीकुंड तक लाना है, जहां स्वजल विभाग समेत सहयोगी संस्थाओं की ओर से कूड़े का संग्रहण किया जा रहा है। इसके बाद सुलभ इंटरनेशनल वैज्ञानिक एवं पर्यावरणीय मानकों के अनुरूप कूड़े का अंतिम निस्तारण किया जाएगा। प्रशासन का मानना है कि अगर अधिक संख्या में यात्री इस अभियान से जुड़ते हैं तो हर रोज कई टन कूड़ा आसानी से धाम से नीचे लाया जा सकेगा। इसके लिए यात्रियों को जागरूक भी किया जा रहा है। यात्रा मार्ग पर अलग अलग जगहों पर सूचना बोर्ड लगाए गए हैं और लोगों से पर्यावरण संरक्षण में सहयोग की अपील की जा रही है। उम्मीद की जानी चाहिए कि श्रद्धालुओं की भागीदारी से ये अभियान सफल होगा और केदारनाथ धाम में स्वच्छता एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों को नई मजबूती मिलेगी। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
13: Hey guys, Lady Luck here. Are you going on any road trips this summer? I know I'm going to be going on a bunch of road trips. And being that I'm going to be passenger princess, I love playing on SpinQuest.com. SpinQuest has all of my favorite slot games, live blackjack, live craps. Head on over to SpinQuest right now and get yourself a $30 coin pack for just $10.
14: SpinQuest is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Visit SpinQuest.com for more details.
5: Whatever you're in the mood for, there's always something to listen to on TuneIn. Music, news, sports, podcasts, and live radio from around the world. All in one place. Enjoy over 100,000 stations, from local favorites to global voices. So you never miss a beat. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices. At home, in the car, or on the go. Hear it all and more right here on TuneIn.
7: वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे, तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
9: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
2: RBI की मॉनेटरी पॉलिसी के फैसलों का ऐलान, 5.5% रेपो रेट बरकरार।

0: रामचरण की फिल्म पैडी की बम्पर ओपनिंग, बॉक्स ऑफिस पर धुरंधर का तोड़ा रिकॉर्ड, पहले दिन की वर्ल्ड वाइड 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई।
1: वाडीलाल आइसक्रीम, जरा मुस्कुराइए, वाडीलाल खाइए।
2: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: नमस्कार, मैं हूँ पारुल चौधरी और आप देख रहे हैं सास बहू और बेटियां। वैसे आज का ये दिन बहुत ही खास है क्योंकि आज तो हम मना रहे हैं विश्व पर्यावरण दिवस। अब देखिए, पर्यावरण को बचाना तो हम सबकी जिम्मेदारी है, तो पेड़ लगाना, पानी बचाना, यही सब संदेश लेकर हाजिर हैं आज हम आपके लिए। और आज के इस एपिसोड में देखिए, जिस तरह टीवी के सितारे प्यार से सींचते हैं ना अपने रिश्तों को, उसी तरह हमारी धरती को भी तो जरूरत है हमारे प्यार और देखभाल की। तो आज तो हम करेंगे पर्यावरण के आसपास ही एंटरटेनमेंट की बातें और उसके साथ साथ लेकर हाजिर है पर्यावरण को बचाने का संदेश। तो चलिए फिर फटाफट शुरू करते हैं हमारा ये ग्रीन स्पेशल एपिसोड हेडलाइंस के साथ।
4: सास बहू और बेटियां की एंटरटेनमेंट से भरी गुड न्यूज में आज देखिए, बा और बापूजी की एनिवर्सरी पर हुआ डांस धमाल, झूम कर नाचे घर वाले।

मन अति सुंदर के हुए 1000 एपिसोड पूरे मनाया गया जश्न। और जानेंगे स्नेहा और देवांश की लव स्टोरी, दिखेगी इनकी केमिस्ट्री सिर्फ और सिर्फ सास बहू और बेटियां में।

0: कुछ मुलाकातें आपका भविष्य बदल सकती हैं और कुछ फैसले आपकी तकदीर। ओह माय गॉड, आज यही कह रहे हैं हमसे हमारे रीत और राघव। रीत और राघव, बिल्कुल सही बात कही आपने। एक्चुअली देखिए, ये बात लागू करती है हमारे पर्यावरण पर भी, क्योंकि अगर हम कोई सही डिसीजंस लेंगे अपने पर्यावरण की ओर तो हम उसे एक्चुअली बचा सकते हैं। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको रीत और राघव के पास और देखते हैं क्या कुछ एंटरटेनिंग और एक्साइटिंग हो रहा है इनकी कहानी में आज।
1: छुटे आना छुटे मुझसे रंग तेरा डोलना,
2: जगधात्री हुई इमोशनल।
1: मेरा कोई बोलना बोलना माही बोलना,
2: आज ही बनी सहारा।
1: बोलना माही बोलना,
2: रुद्र को मूसा की चेतावनी।

0: के सीरियल जगधात्री में आज जगधात्री इमोशनल हो रही है, टूटकर बिखर रही है, क्योंकि शिवाय ने उसे अपना हाल दिल बयां किया है, लेकिन जगधात्री ने उसके प्यार को इनकार कर दिया है। बस यही बात जगधात्री को खाई जा रही है कि शिवाय का दुख उस पर भारी क्यों पड़ रहा है। ऐसे में आजी उसे बताती है कि वो भी शिवाय से प्यार करती है, लेकिन जगधात्री मना कर देती है क्योंकि वो अपने लक्ष्य से डाइवर्ट जो नहीं होना चाहती।
1: उस राह के हर मोड़ पर वो तेरे साथ खड़ा है। फिर क्यों

0: राह पर मैं चलती हूँ ना, मैं हर एक बलिदान के लिए
1: डिनाय करती है वो, क्योंकि उसको अपने मकसद से हटना नहीं है, फोकस उसका शिफ्ट नहीं होने देना है। तो कितनी भी कोशिश कर रही है वो कि अपने मकसद के साथ रहे, और लेकिन दिल में तो कुछ कुछ हो रहा है और मैं जानती हूँ वो हो रहा है। तो मैं बोलती हूँ कि प्यार है तो जाहिर करने में बुराई क्या है, बोल दो खुल के। लेकिन वो बोलती कि नहीं, ये नहीं कर सकती मैं, होने नहीं दूंगी, मैं ये करने नहीं दूंगी, क्योंकि मुझे मेरे फोकस से हटना ही नहीं है। तो मैं बोलती हूँ कि तू कितना भी चाहे, जो भगवान ने किस्मत में लिखा है वही होगा। तो बोलती है कि नहीं, मैं ये होने नहीं दूंगी। बोलते तेरे होने ना देने से क्या होगा, होता तो वही है जो लिखा हुआ होता है। जाहिर सा कारण है कि उसको अपनी माँ का नाम क्लियर करना है, उसके ऊपर जो जो भी कलंक लगे हैं वो सब धुल देने हैं, साफ करना है, और मूसा के सारे काले धंधे बंद करवाने हैं उसको। जब तक वो नहीं होता तब तक वो अपने आप को वो छूट नहीं दे सकती कि वो किसी से प्यार करेगी, किसी के साथ जिंदगी बिताने के सपने देखेगी, वो नहीं कर सकती वो तब तक।
2: अब जगधात्री भले ही आजी से झूठ बोल ले, लेकिन आजी को भी पता है कि जगधात्री शिवाय से प्यार करने लगी है, बस अपने लक्ष्य के चलते अपने फैसले पर अड़िग है। वहीं दूसरी ओर मूसा जगधात्री के घर में ही नहीं बल्कि तपस्या और रुद्र के कमरे में भी पहुंच जाता है। इससे पहले कि तपस्या उठती, मूसा उसके मुंह पर बेहोशी का स्प्रे मार देता है, जिसके चलते तपस्या उठकर वापस से बेहोश हो जाती है। ऐसे में रुद्र ये देखकर हैरान है कि तभी उसकी नजर पड़ती है मूसा पर, जो सामने बैठा हुआ है। उसे देखकर रुद्र भी घबरा जाता है कि कहीं किसी को ये पता न चल जाए कि वो मूसा से मिला हुआ है। लेकिन तभी मूसा उसे डराता धमकाता है, बंदूक भी दिखाता है और ये भी जताता है कि उसे रुद्र पर शक हो गया है कि रुद्र पुलिस से मिला हुआ है। लेकिन रुद्र सच बताता है कि वो तो पुलिस से बचने की कोशिश कर रहा था और मायादी अनजान में वहाँ पर पहुँच गयी थी।
3: तुम्हारी बहन पुलिस की टाइमिंग कुछ ज्यादा ही मैच नहीं करती थी, इसीलिए मुझे शक हो रहा है शहजादे के तू
4: शक हो रहा है कि मैंने इन्फॉर्मेशन लीक की।
3: यस
4: यस, व्हाट द हेल पार्टनर, क्या क्या वाहियात बात है, मैं ऐसा क्यों करूंगा? और अगर मुझे ऐसा करना होता तो मैं क्या वो पुलिस और मायादी को बुला के वहाँ पे अपना किलर मोड एक्टिवेट करके जाता क्या वो शूट करने के लिए? क्या ये क्या बात है पार्टनर, मैं तुम्हारी टीम में हूँ।
3: एक हफ्ते में दो आर्टिकल छप गए।
2: फिलहाल तो मूसा ने रुद्र की बातों पर यकीन कर लिया और तो उसे ये भी बता दिया कि अब वो उन्हीं के घर पर रहेगा, वो भी छिपकर। ऐसे में रुद्र की परेशानी बढ़ गई है। वहीं दूसरी ओर जगधात्री को डाउट हो गया है कि मूसा शहर में आ गया है। ऐसे में वो अपनी टीम से बातचीत कर रही है और चोरी छिपकर उसकी बातें उसकी सौतेली माँ और बुआ जी सुन रही है, क्योंकि उन्हें जगधात्री पर डाउट हो गया है। इसी बीच आता है कहानी में ट्विस्ट। फोन पर बात करते हुए वहाँ पर पहुँच जाती है माया, जो कर रही है मूसा के बारे में बातचीत। भाई जिस वक्त माया ने फोन काटा उसी वक्त जगधात्री ने भी फोन काटा। ये देखकर रेखा और उसकी ननद को ये यकीन हो गया है कि जरूर जगधात्री माया को कॉल कर उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है या जासूसी कर रही है। इसलिए देखिए कैसे वो भी पहुंच गई है जगधात्री से ये जानने के लिए कि आखिर जगधात्री बात किससे कर रही थी। अब देखना होगा क्या रेखा और उसकी ननद को ये पता चल पाएगा कि जगधात्री एक बड़ी ऑफिसर है। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
5: बाहरी सुंदरता के साथ साथ प्रकृति को बचाना भी हम सबकी जिम्मेदारी है। आज यही मैसेज लेकर आए हैं हमारे लिए हमारे राध्या और प्रथम। लेकिन क्या हो रहा है इनकी कहानी में आज? क्या फिर से आया है कहानी में कोई नया ड्रामा, या फिर कोई नया ट्विस्ट, या फिर ये दोनों कर रहे हैं किसी नई सिचुएशन का सामना? चलिए फटाफट लेकर चलते हैं आपको बिहाइंड द सीन्स मन अति सुंदर के सेट पर।

0: बदला बदला राध्या, सासुमा, दादी और लेडीज गैंग का अंदाज। शुरू हुई पार्टी। जश्न 1000 एपिसोड्स पूरे होने का।
1: प्यारी प्यारी बातें।
0: दंगल टीवी के सीरियल मनती सुंदर ने पूरे कर लिए हैं 1000 एपिसोड्स। ऐसे में पार्टी करना तो बनता ही है, और ऐसे में सभी लोग पहुंच गए हैं आज पार्टी मोड में, जहां है डांस, मस्ती और फन अनलिमिटेड।

0: बात करें आज इनके लुक्स की, तो देखिए हमेशा साड़ी में सिंपल रहने वाली राध्या आज बन गई है एकदम मॉडर्न। शॉर्ट ड्रेस और हाई बूट्स पहनकर आज तो राध्या का अंदाज ही बदल चुका है। तो वहीं बात करें दादी की, तो साड़ी छोड़कर वो आ गई हैं इस मॉडर्न अंदाज में। इसके साथ साथ मनते सुंदर की बाकी लेडीज गैंग भी आज एकदम मॉडर्न अंदाज में नजर आ रही है। भाई पार्टी है तो ऐसे में लुक में चेंज तो बनता ही है। तो भाई आज ये सब हो गई हैं बहू से बेब और कर रही हैं डांस मस्ती। भाई बात करें इन मुंडों की, तो यहाँ इनका स्वैगर भी आज देखने लायक है, पार्टी जो है। तो आइए एक एक कर इन सभी से ही इनके लुक के बारे में तो जानेंगे ही, साथ साथ जानेंगे कि 1000 एपिसोड का जश्न किस तरह से ये मना रहे हैं।
1: आई थिंक डबल एक्साइटमेंट, जैसे हमने कहा कि हम पहले भी अपनी टीम के साथ 1000 सेलिब्रेट कर चुके हैं जब एक्चुअली हमारे 1000 हुए थे, एंड हियर वी आर अगेन, क्योंकि इतना बड़ा मोमेंट है तो हम दोबारा सेलिब्रेट कर रहे हैं। पूरी टीम साथ में है, हमारी पूरी टीम, डायरेक्टर्स, डीओपीज, हमने ऑलमोस्ट 3 साल साथ में बिताए हैं इफ़ यू आर टॉकिंग फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। तो इन लोगों के साथ होना बहुत स्पेशल है एंड सब इस मोमेंट को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आई एम जस्ट फीलिंग वेरी वेरी वेरी हैप्पी।
2: बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं मिडल ऑफ द सफ़र आया हूँ, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि मैं मतलब कि नया आया था या फिर ऐसा कुछ। एवरीबडी एक्सेप्टेड मी सो नाइसली एंड तनिष ने बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया, और वी आर हैविंग अ गुड टाइम, अच्छे से बना रहे हैं हम सीरियल और मज़ा भी कर रहे हैं हम सेट पे। सो आई थिंक इट्स अ वेरी नाइस फीलिंग कि हमारे, अब मैं कह सकता हूँ कि हमारे शो ने 1000 एपिसोड्स पूरे किए हैं। तो क्योंकि मैं पहले यही कहता था कि तनिष ने 1000 किए, मेरे तो 89 हुए, मेरे तो 70, अब मेरे भी 300 से ऊपर हो गए, तो आई थिंक मैं बोल सकता हूँ कि 1000 तक लेके आया हूँ मैं। सो बहुत अच्छा लग रहा है एंड आई एम जस्ट वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ अ शो दैट इज़ डूइंग सो वेल।
3: बहुत सुंदर लग रही हो तुम, यू लुकिंग वेरी ब्यूटिफुल, और कलर बहुत सूट कर रहा है आप पे ये, एंड राधे के रूप में नहीं देख पा रहा मैं तुम्हें वैसे लेकिन बहुत अच्छी लग रही है तनी, सच में बहुत अच्छी लग रही है।
1: आई थिंक स्पर्श के लिए मेरा सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट ये है कि स्पर्श ऐसे अच्छे कपड़े पहनता है कि उनको चुराने का मन करता है। मुझे बड़े अच्छा लगता है ये जिस तरीके से ड्रेसअप होते हैं, एंड प्रथम से बहुत ही अलग दिखते हैं, और हैंडसम तो हमेशा दिखते हैं चाहे प्रथम बन के आए चाहे स्पर्श बन के आए, आज भी उतने ही अच्छे लग रहे हैं। बस अब ज़्यादा नहीं करती हूँ, शर्मा आ रही है उन्हें थोड़ी ज़्यादा ही। सच
2: बताना है।
1: बहुत प्लानिंग होती है एक्चुअली, इनको भी मैंने स्ट्रेस में डाला है, मैंने मेरे डायरेक्टर डीओपी को भी स्ट्रेस में डाला है कि क्या पहन रहे हो क्या पहन रहे हो, और किसी ने कुछ प्लान नहीं किया था कि ऐसे ट्विनिंग करके जाएंगे, बट ऑलमोस्ट हमारी पूरी कास्ट ब्लैक एंड ब्लू में आ गई है कोइंसिडेंटली। तो लड़कियों ने तो जितनी भी लड़कियां हैं सबने बहुत प्लानिंग की होगी डेफिनेटली, इनका तो कुछ कह नहीं सकते, मुझे आइडिया नहीं है।
2: मेरे लिए सबसे बेस्ट मोमेंट रहा है जब मैं शो के अंदर एंटर किया हूँ और सबसे मिला हूँ। आई थिंक वो मेरे बेस्ट मोमेंट था क्योंकि मुझे इतने अच्छे लोग मिले जो कि जिनको मैं आप दोस्त कह सकता हूँ, जिनको मैं अपना कलीग्स कह सकता हूँ, एंड आई थिंक आई एम वेरी ग्रेटफुल।
1: आई थिंक जिस दिन से राधिका लॉक हुई थी उस दिन से ही बहुत ही स्पेशल मोमेंट्स रहे हैं। जितने भी 100 कंप्लीट करते हैं, 100 करते करते 1000 कंप्लीट कर लिए हैं, तो सारे ही दिन बहुत अच्छे जाते हैं। और अपना काम अगर आपको अच्छा लगता है आप जो कर रहे हैं तो उससे बेहतर कोई बात ही नहीं हो सकती। उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं बट मोस्टली हमारी टीम बहुत ही ज़्यादा प्यारी है, तो कोई भी दिन जाओ तो इट्स लाइक अ पिकनिक, तो हम बहुत इंजॉय करते हैं।
0: बात करें बाकी लेडीज गैंग की, तो देखिए कैसे आज वो एक दूसरे की तारीफों के पुल बांध रही हैं। भाई आज दादी का तो रॉकिंग अंदाज देखने को मिला।
4: थोड़ा बहुत हमने सोचा था गर्मी के हिसाब से, लेकिन फिर ऑप्शंस तो हमको पता ही होता है क्या क्या पहनना है। गर्मी थी, थोड़ा स्लीवलेस हो गया, थोड़ा पार्टीवेयर भी हो गया, और हमने एक दूसरे की ओपिनियंस लिए हैं कि क्या अच्छा लग रहा है क्या खराब लग रहा है। तो मैंने एकता से पूछा कि दो ड्रेसेस हैं इसमें से चूज करो कौन सी अच्छी लग रही है, एकता ने चूज की ये वाली, तो ये एकता की चॉइस है। इयररिंग्स भी एकता ने बोले कि यही पहनना।
5: दादी तो साड़ी में भी अच्छी लग रही है और इसमें भी बहुत अच्छी लग रही है।
6: थैंक यू। ये बात सच बोली कि सोचने में ज्यादा टाइम लगा, तैयार होने में बहुत ही कम लगा। तो जाहिर सी बात है कि पूछना पड़ता है जब किसी स्पेशल ओकेजन में आप जा रहे हो किसी फंक्शन में, तो थोड़ा बहुत ओपिनियन तो लेनी पड़ती है। तो मैंने भी ली थी
4: 6, 7, 8, 9, 10 ड्रेस लेके आए थे और मैं एक एक ऐसे बैग से निकाल रही थी और अंशुमा को दिखा रही थी, अंशुमा ये पहनूं, ठीक है ये पहनूं। तो ऐसे करते करते फिर फाइनली अंशुमा ने बोला कि ये अच्छा लगेगा,
7: क्योंकि वैसे भी मैं लाल मिर्ची हूँ तो थोड़ा सा
6: खुशी की बात है. और हमसे पहली जो जनरेशन किया है जिन्होंने, उनको बहुत बड़ा श्रेय जाता है. हम तो इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि देखिए आगे कहाँ तक ले जाते हैं.
7: आपको कैसा लग रहा है 10 एपिसोड करके?
8: 10 एपिसोड भी नहीं हुए अभी शायद. अभी तो मुझे ज्वाइन किए को थोड़ा 10 दिन ही हुए हैं. बट आई स्टिल रिमेम्बर कि जब मैं दंगल का एक शो करती थी 2023 में, तब ये स्टार्ट हुआ था, तब मैं देखती थी. एंड जब मेरा कास्ट हुआ इसमें, आई वाज लाइक ये अभी भी चल रहा है, ये शो इतना अच्छा चल रहा है.
7: अभी भी चल रहा है और आगे की जनरेशन आगे भी बोलेंगे ये शो
8: अभी भी चल रहा है और ये चलते ही रहेगा. बस यही प्रार्थना है कि ये चलता रहे.
0: इसी के साथ साथ बाकी कलाकार भी इस पार्टी के लिए काफी एक्साइटेड है.
9: मुझे तो बिल्कुल समय नहीं लगा, हम लोग शूट करके ही आ रहे हैं तो मतलब थोड़ा ही टाइम मिला. मेकअप हमारा था ही, बस थोड़ा सा हेयर कर लिया, कॉस्ट्यूम लेके आए थे बस.
10: सेम हियर मैं मतलब कुछ भी प्लानिंग नहीं था ऐसा, पार्टी वेयर पहनना था तो बस ब्लैक ही माइंड में आता सबसे पहले, तो जो मिला वो पहन लिया. क्योंकि अभी कट टू कट चल रहा है शूट और उतना टाइम नहीं था कि स्पेशल शॉपिंग करें. लेकिन हाँ, बहुत अच्छे से हम ट्विनिंग कर रहे हैं, पूरी टीम ट्विनिंग कर रही है. हाँ, पूरी
9: टीम नहीं किया था, डिसाइड नहीं किया था. हाँ, आके हम लोगों ने एक दूसरे को देखा, अरे ब्लू, तुम भी ब्लू, हम भी ब्लू, मतलब
10: ब्लू ब्लैक.
11: पहले जो कम्प्लेन जिस बोला था ना, एक तो और एम कम्प्लेन ही करते रहते हैं. बट चलो आज कॉम्प्लीमेंट.
12: शी इज लुकिंग डैम प्रिटी और ब्लू बहुत सूट कर रहा है सृष्टि. एंड आई रिमेम्बर कि ऐसी ड्रेस एक बार करीना ने कहीं पहनी थी, सो आई एम अ बिग फैन ऑफ करीना, सो चाइल्डहुड क्रश. तो एग्जैक्टली सेम ड्रेस ऐसे ही पहना हुआ है, तो बहुत बहुत प्रिटी लग रही हो, बहुत कूल लग रही हो.
11: थैंक यू. एंड ऑब्वियसली मैन इन ब्लैक, ही इज लुकिंग डैशिंग एज ऑलवेज. चाहे कोई भी पार्टी हो, कोई भी गैदरिंग हो, इनके आउटफिट्स आर अमेजिंग. एंड द वे ही कैरीज हिमसेल्फ, हिज पर्सोना, इसका जो ऑरा है, इट्स जस्ट अमेजिंग. ये सबको साथ में कैसे लेके चलना चाहिए, एक यूनिट को साथ में कैसे लेके चलना चाहिए, वो किसी को सीखना है तो प्लीज इनसे सीखे.
0: तो भाई ये तो हुई पार्टी की बातें. अगर बात करें सीन की, तो यहाँ पर प्रथम को हो गया है अपनी गलती का एहसास और देखिए कैसे वो खुद को ही नुकसान पहुँचा रहा है, क्योंकि उसे पता है कि उसने राध्या का दिल दुखाया है.
13: क्यों तो ये समझ नहीं पाया कि राधा जो कुछ भी कर रही है वो सब एक नाटक है? क्यों तू उसकी मजबूरी समझ नहीं पाया प्रथम? क्यों उसकी आंखों का दर्द, उसके दिल की चुभन तू क्यों पहचान नहीं पाया प्रथम? क्यों क्यों प्रथम क्यों?
0: भाई वहाँ पहुँच जाती है राध्या प्रथम की हमदर्द बनकर, और आज प्रथम दिल खोलकर राध्या से बातें कर रहा है, अपनी गलतियाँ उसे बता रहा है और उससे माफी भी मांग रहा है. ऐसे में राध्या तो बेचारी फिर एक बार पिघल गई.
13: मैंने अपने रिश्ते को इतना कमजोर दिखाया कि कोई भी उसकी नींव आके हिला जाए. तुम मुझे डिवोर्स देने वाली, मुझे डिवोर्स देकर तुम हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के जाने वाली थी राध्या.
14: अभी हमें आपके ऊपर पूरा विश्वास है.
13: लेकिन मेरे विश्वास का क्या है राध्या? वो तो इतना कमजोर पड़ गया ना कि मैं इंडियन की तरह ये मान गया कि तुमने मुझसे सिर्फ पैसों के लिए शादी की है, कि तुम सिर्फ अपने हक का पैसा लेके यहाँ से जाना चाहती हो. शादी के रिश्ते को निभाना पड़ता है, उसे मजबूत बनाना पड़ता है ताकि कोई उसे इतनी आसानी से तोड़ ना सके. अगर मैं सच कह रहा हूँ, मुझे ना माँ और दादी पे गुस्सा नहीं आ रहा, मुझे खुद पे गुस्सा आ रहा है राध्या, मुझे खुद पे गुस्सा आ रहा है.
0: तो भाई माफी मांगकर प्रथम ने राध्या से अपने रिश्ते तो सुधार लिए हैं और इनकी गलतफहमियां भी दूर हो चुकी हैं. लेकिन अब देखना होगा कि इस कहानी में और कौन सा नया ट्विस्ट आता है. मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट.
15: आज तो हम मना रहे हैं विश्व पर्यावरण दिवस, और दोस्तों आपके लिए यही संदेश लेकर आए हैं कि देखिए, एक पौधा लगाने में कुछ मिनट लगते हैं लेकिन उसका फायदा सालों तक होता है. तो आप भी प्लीज पौधे लगाएं, पेड़ पौधे लगाएं और अपने पर्यावरण को बचाएं. और उसके साथ साथ लेकर हाजिर हैं अब आपके लिए स्पेशल स्टोरी.
16: Night, all night. Do you feel all right? Wanna nudge all night?
0: एकता कपूर की नई पारी. एकता और सुजैन का हुआ कोलैबोरेशन. लॉन्च पर लगा सितारों का मेला. भाई आज मौका भी है और दस्तूर भी, क्योंकि आज है एकता कपूर और सुजैन खान के ज्वेलरी ब्रांड एकत्र का लॉन्च. जी हाँ, टीवी, फिल्मों और वेब सीरीज के बाद अब एकता लेकर आ रही है अपना खुद का ज्वेलरी ब्रांड, वो भी सुजैन खान के साथ. और इस खास मौके पर एकता सुजैन ने रखी है ये खास लॉन्च पार्टी, जिसमें इन्हें विश करने और ढेर सारी बधाइयां देने पहुंचे हैं ये सभी सितारे. तो चलिए इस पार्टी के सभी नज़ारे हम आपको दिखाते हैं. तो शुरुआत करते हैं कपल से. तो यहाँ पर नजर आई करिश्मा तन्ना अपने हस्बैंड से. वैसे यहाँ पर देखिए कैसे वो अपना बेबी बम भी फ्लॉन्ट कर रही है. भाई करिश्मा जल्दी मम्मी जो बनने वाली है, और एकता भी करिश्मा को यहाँ देखकर काफी खुश है.

इसके अलावा यहाँ नजर आई धीरज और विन्नी की जोड़ी। शब्बीर और कांची की जोड़ी। करण और तेजस्वी की जोड़ी। और विक्की और अंकिता की जोड़ी। आज ये सभी सजे धजे हैं और पार्टी के लिए एकदम रेडी शेडी होकर आए हैं, क्योंकि इनकी पार्टी वाइब ऑन जो हो गई है। ऐसे में इनकी केमिस्ट्री साफ देखने को जाहिर है। भाई ये तो रही जोड़ियों की बात, बात करें हसीनाओं की तो इस लॉन्च पर नजर आए कई सारी हसीनाएं। शुरुआत करते हैं नागिनों से। तो यहाँ पर नजर आए प्रियंका चहर चौधरी।

சிக்கனி கமான். Alice Kaushik, Anita Hasnandani, साथ ही यहाँ आई अलग ही अंदाज में अनुपमा यानी कि रूपाली गांगुली. इसके अलावा श्रद्धा आर्या, रिधिमा पंडित, शिवांगी जोशी, नुशरत, महिमा चौधरी, जानवी कपूर, श्रेया शरण, नीलम, निधांशी गोयल,

0: रोशनी वालिया
1: हुसन तेरा तौबा तौबा तौबा तौबा
0: क्रिस्टल डिशूजा
1: हुसन तेरा तौबा तौबा तौबा तौबा
0: और उर्वशी जो अपने बेटों संग यहाँ पहुँची। भाई आज सबका अंदाज है एकदम अलग। वैसे बात करें एकता और सुजैन की तो यहाँ एकता का आज लुक काफी अलग है। ब्लैक कलर का आउटफिट और उस पर ये चमकीली सिल्वर टाई, तो वही रेड कलर के आउटफिट पे नजर आई सुजैन। अपने इस ज्वेलरी ब्रांड के लॉन्च पर आज इनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं है और साथ है इतने सारे दोस्त तो बात ही बन गई। बात करें मुंडो की तो यहाँ पर पहुँचे सिद्धार्थ मल्होत्रा।
1: हुसन तेरा तौबा तौबा तौबा
0: अर्जुन बिजलानी।
1: हुसन तेरा तौबा तौबा तौबा तौबा हुसन तेरा तौबा
0: तौबा नमिक पॉल।
1: हुसन तेरा तौबा तौबा तौबा तौबा
0: हर्षद चोपड़ा। सुनील ग्रोवर।
1: तेरा तो अख तेरी मंगे कंगना हूने मैं बनाना मेनू।
0: तुषार कपूर।
1: जान मंगला मैं ते तो जान वारदा आपे निकलूगी नी तू।
0: फरदीन खान।
1: तेरे विच नशा पहले तोड़दा कुड़े सोनिए शराब दा ता नाम लगदा।
0: एकता और सुजैन को ढेर सारी बधाइयां देने के लिए,
1: मेहमान मेरी,
0: यानी कि अब एकत्रा में दिखेंगे ज्वेलरी के कई सारे डिजाइन। तो हो जाइए आप सब इसके लिए तैयार। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
2: आज तो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे और हमारे साथ एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज को सेलिब्रेट करने आ रही हैं स्नेहा पापसर, जिन्होंने शेयर की है हमारे साथ एक बहुत बड़ी गुड न्यूज। जी हाँ, हो गया है उनका रुका देवांश के साथ और आज तो हम ये इंटरेस्टिंग डे आउट कर रहे हैं इन दोनों के साथ। तो चलिए फटाफट लेकर चलते हैं आपको हमारी इस खूबसूरत जोड़ी के पास। आज तो कर रहे हैं ये हमारी टीम सास बहू और बेटिया के लिए कुकिंग। करते हैं इन दोनों से खास मुलाकात।

0: यह स्नेहा के रियल साथिया जिनके प्यार में गुम हो चुकी है स्नेहा। यह है स्नेहा के फियांसे देवांश और देखिए स्नेहा और देवांश कैसे अपनी जिंदगी की नई पारी शुरू करने जा रहे हैं। दोनों की सगाई हो चुकी है और जल्द ही होगी शादी, लेकिन इनकी लव स्टोरी है बड़ी ही मजेदार और बहुत ही स्पाइसी, बिल्कुल एक पिज्जा की तरह। तो आज स्नेहा और देवांश की पिज्जा वाली लव स्टोरी देखेंगे, देखेंगे कि शादी से पहले रिश्तों को कैसे मिठास से भरा जाता है। भाई इनकी सगाई हो चुकी है, शादी में अभी वक्त है, लेकिन उससे पहले दोनों की केमिस्ट्री आज जांचेंगे, देखेंगे कि एक अभिनेत्री और एक म्यूजिशियन की लव स्टोरी कैसी होती है, क्या है दोनों के गुदगुलाते हुए पल, कैसे खाने पर दोनों की हो रही है बॉन्डिंग, कैसे स्नेहा सज रही है अपने पिया के लिए, करा है खास श्रृंगार और इनके पिया जी ने भी इन्हें दिया एक टेस्टी सा सरप्राइज। भाई दोनों मिलकर पिज्जा बना रहे हैं और अपनी फेवरेट जगह पर खा रहे हैं, साथ में हो रहा है डांस और रोमांस। सास बहू और बेटियां आज आपको मिला रहा है अभिनेत्री स्नेहा से, जिन्हें लोग जानते हैं गुम है किसी में प्यार है की करिश्मा के रूप में। भाई पर्दे की करिश्मा यानी स्नेहा ने रियल लाइफ में अपना जीवन साथी चुन लिया है, जो है देवांश। संगीत की दुनिया से जुड़े हुए देवांश के साथ स्नेहा जल्दी शादी करेगी, हाल ही में इनकी सगाई हुई है। सगाई के ये सारे पल आज इन दोनों ने हमारे साथ शेयर किए और साथ साथ हमें दिखाया कि मनोरंजन की इंडस्ट्री से दो लोग जब साथ होते हैं तो कैसी होती है उनकी जिंदगी। शादी से पहले लड़का लड़की कैसे एक दूसरे के साथ अपने लाइफ का बैलेंस बनाए, जिसमें बहुत काम आता है दोनों का किचन में साथ करना। तो आज दोनों किचन में साथ काम कर रहे हैं, एक दूसरे की ढाल बन रहे हैं और इसके लिए दोनों ने ही अलग अलग तैयारी की है। सबसे पहले चलते हैं स्नेहा के घर पे, जो आज कर रही है खास श्रृंगार अपने पिया देवांश से मिलाने के लिए सास बहू और बेटियां संग।
1: जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने क्या पहना हुआ है, सो बाकी लोगों की तरह अपने पार्टनर से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा तैयार या ऐसा कुछ मैंने नहीं किया है। एंड मैं थोड़ा बहुत मेकअप करूँगी, मिनिमल लुक रखूँगी, बिकॉज मुझे भी ऐसा पसंद है एंड मोर इम्पोर्टेंटली उसको ऐसा पसंद है। सो ऐसे मैं रेगुलरली उसको नहीं मिलती हूँ एंड ये सरप्राइज है उनके लिए कि मैं उनको इस लुक में मिल रही हूँ इतने टाइम बाद, ऐसे रेडी होकर मिल रही हूँ। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड।
0: अपने पिया से मिलने के लिए आज स्नेहा ने देखी क्या तैयारी की है, अपने होने वाले पति की खास ड्रेस पहनी है और आज खास श्रृंगार भी कर रही है।
1: पहले अपने हेयर ओपन करूंगी मैं एंड थोड़ा बहुत मेकअप करूंगी, एक्सेसराइज करूंगी एंड बाकी करते करते ही मैं बता दूंगी।
0: अपनी मंगेतर की फेवरेट ड्रेस तो पहन ली, लेकिन अब सिंपल सी इयररिंग पहनेंगी, अंगूठी पहनेंगी और हाँ एक खास तरह की जादुई लिपस्टिक भी लगाने वाली है स्नेहा। तो देखते हैं उनका ये श्रृंगार।
1: सो हम एक्सेसराइज इसको गोल्ड से करेंगे एंड दीज आर द इयररिंग्स एंड दिस लुक रियली लुक्स वेरी क्लासी। ब्लैक आउटफिट तो हमेशा क्लासी लगता है, आप कभी भी पहन सकते हो। I'm not sure मुझे इसमें पहनना चाहिए या फिर इसमें पहनना चाहिए। I think this is nice. ज़्यादा कुछ नहीं करने वाली हूँ मैं, थोड़ा बहुत लिपस्टिक लगा लेते हैं। These are three shades. हम एक्टर्स के लिए ऐसा कुछ होना बहुत इजी टू कैरी होता है, इसमें हमको तीन शेड्स मिल जाते हैं। सो अगर कुछ कोई भी अगर मेरे दोस्त लोग भी ये देख रहे होंगे, मेरे एक्टर फ्रेंड्स, तो ये जरूर देखना, ये बहुत काम की चीज है फॉर एन एक्टर।
0: गेट रेडी विद स्नेहा में अगला स्टेप है ये जादुई लिपस्टिक, जो देखिए स्नेहा के लुक को कैसे बदल रही है और अपने पिया से मिलने के लिए देखिए उनका एक्साइटमेंट।
1: सो दिस इज द शेड जो मैंने लगाया है एंड आई फील कि ये इस आउटफिट के साथ एकदम परफेक्ट लग रहा है।

0: नाउ आई ओपन माय हेयर. मैंने इसको थोड़ा सा यू रोल करके रखा हुआ था, मुझे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा नेचुरली लगेगा.
1: देखा स्नेहा का मेकअप, हेयर और ड्रेस रेडी है और अब पिया मिलन के लिए वो रेडी है और ये खुशी अपने इस खास डांस के साथ उन्होंने हमारे साथ बांटी.
0: I have this shades, specs. I'm not sure मुझे लगाना चाहिए या नहीं, but let's see कैसा लगता है और अगर अच्छा लगेगा तो ही हम लगाएंगे. I'm not sure. इसको हटा के भी अच्छी लग रही, नहीं लगा कर भी अच्छी लग रही. चलो लेट्स सी इसका क्या करना है. अभी इसके बाद मुझे हील्स पहनना है एंड लेट मी सी अगर मुझे कुछ कैरी करना हो तो मैं करूं.

सो आई एम ऑलमोस्ट क्या मतलब हो ही गई, अभी तो मैं रेडी. इतने ही एफर्ट लगते हैं मुझे अपने पार्टनर को इम्प्रेस करने में. सो दिस इज माई यू नो होल लुक एंड बाकी सब तो आपने देख ही लिया है. बहुत मिनिमल एक्सेसरीज है एंड दीज आर माई फुटवेयर. सो नाउ वी आर रेडी टू गो एंड मीट हिम और मैं आप सबको उनसे ही मिलवाने वाली हूँ.

0: स्नेहा के मंगेतर देवांश उनके घर से थोड़ा दूर पे रहते हैं, तो स्नेहा रेडी वेडी होके अब जा रही है देवांश के घर पे, तो चलिए हम भी चलते हैं उनके साथ।
1: सो आपने मुझे देख लिया, मैं रेडी तो हो ही गई हूँ। अभी ज्यादा देर नहीं करते हैं क्योंकि आप लोगों ने वैसे ही बहुत ज्यादा वेट कर लिया है, बहुत सस्पेंस मैंने क्रिएट कर दिया है, तो अभी मैं ज्यादा आप लोगों को इंतजार नहीं करवाऊंगी। एंड अभी हम देवांश से मिलने जा रहे हैं, तो चलते हैं, उनका घर ज्यादा दूर नहीं है, हम अभी पहुंच जाएंगे। सो लेट्स गो।

0: दिस इज द लिफ्ट और हम फाइनली अब उनके घर जा रहे हैं. कम विद मी. मैं तो मिलती रहती हूँ बट पता नहीं ऐसी एक्साइटमेंट हो रही है जैसे मैं पहली बार मिल रही हूँ. एक्चुअली मैं पहली बार मिलवा रही हूँ आप सभी को, इसलिए इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट मुझे हो रही है. सो फाइनली पहुँच गए हैं हम ऑलमोस्ट.
1: स्नेहा संग इस खास पिया मिलन डे आउट में अगला पड़ाव है स्नेहा के मंगेतर देवांश का घर और देखिए ये सरप्राइज उनके पिया को कैसा लगा.
0: लेट्स गो एंड मीट हिम. ऐसे माइक मेरे हाथ में देख के ना वो ऐसे हो जाएंगे कि अरे जितना मुझे पता है.
2: हेलो. Oh my God.
0: See, I told you ना माइक देख के oh my God और अरे वाला रिएक्शन. So पहले come inside.
2: Come.
0: So ये है मेरी पार्टनर इन रियल लाइफ. स्क्रीन पर तो आपने यू नो अलग अलग को एक्टर्स को मेरा यू नो पार्टनर होते हुए देखा है बट ही इज माई रियल लाइफ पार्टनर.
2: So, पहली बात तो क्या बात है यार, तुम ये मेरा फेवरेट लुक लेके आए हो, तो थैंक यू सो मच फॉर दिस. ओके.
1: अब जरा सुनते हैं स्नेहा और देवांश की लव स्टोरी. आखिर दोनों कहाँ मिले और कैसे मिले जानते हैं खुद इनकी जुबानी.
2: जब स्नेहा 21 इयर्स की थी उसके या सो मैं था 26 आई गेस है ना. अभी तो काफी टाइम हो गया है, मतलब हम लोग दोनों ही काफी एज ज्यादा हो गई हम लोग की तो. पर ठीक है, तो हम लोग स्टार्टिंग में मिले 21 इयर्स की ये थी स्नेहा थी, मैं 26 का था. तो हम लोग सामने, स्नेहा मेरी नेबर थी बाई चांस, ठीक है. सो स्नेहा सामने रहती थी और उसके बाद फिर
0: हाउ वी मेट, क्योंकि हम सामने सामने रहते थे यू नो, सामने वाली खिड़की में एक
2: चांद का टुकड़ा रहता है. नहीं वो क्या हुआ था, मैंने सोचा कि मैं बाद में ही कभी अपने लिए कुछ और डेडिकेट करूंगा, आगे आपको मिलेगा शायद से, ठीक है, कुछ तो कुछ डेडिकेट करूंगा,
0: हमारा अपना खुद का
2: कुछ होगा, ठीक है. तो उसके बाद फिर स्नेहा कभी कभी वो चीज हो जाती थी हमारे साथ कि स्नेहा से मिलने के बहाने शक्कर लेने चले गए या कुछ लेने चले गए कि हाँ सामने वाले खिड़की में चांद का टुकड़ा टाइप का, ठीक है. उसके बाद फिर हमारी दोस्ती हुई, एक हमारा कॉमन फ्रेंड है उसके थ्रू हमारे हम लोग मिले, उसके बाद हमारी दोस्ती हुई और उसके बाद फिर आपके सामने सब चीज़. बाकी स्नेहा बताए.
0: बाकी वेट करना पड़ा, हम ऑफकोर्स तभी मिल चुके थे एंड तभी हमने डिसाइड कर लिया था कि हम आगे चल के ये रिश्ता चलाएंगे और यू नो शादी भी करेंगे. बट वी वर टू यंग, मतलब आई वॉज तो 21. अगर मैं अभी घर पे बताती हूँ उस टाइम पे तो ऑफकोर्स किसी के भी पेरेंट्स हो तो यही सोचेंगे कि नहीं इट इज़ टू अर्ली शादी और ये सब के बारे में सोचने के लिए. सो हमने करियर पर ध्यान दिया यू नो, थोड़ा सा दोनों की हमने थोड़ा थोड़ा ग्रो किया. पहले हम कुछ और थे, अभी हम कुछ और हैं. धीरे धीरे फोकस्ड है अपने वर्क पे एंड जैसे जैसे हमारी एज होती गई हमारा काम चलता गया और एक सही टाइम पर हमने अपनी यू नो अपनी अपनी फैमिलीज को बताया. और जब फैमिलीज को बताया तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, वो कहानी आपको यही बताएंगे.
2: तो बेसिकली हम लोगों ने पहले स्टार्टिंग में बताया नहीं घर पे कि इतना यंग एज थी हम सबकी दोनों की, तो इसलिए हमने बताया नहीं पहले. बट क्या हुआ कि धीरे धीरे हम डर भी रहे थे कि जितना टाइम जा रहा था हमारा उतना हमें डर लग रहा था कि क्या बोलेंगे घर वाले, कैसा रहेगा, लव मैरिज है तो इस सब की रिगार्डिंग तो क्या कैसा क्या हो सकता है, वो हमारे सब दोनों के दिमाग में बहुत डर बैठा हुआ था. बट जो टाइम आया शायद सही टाइम यही था, तो इसलिए हमने बताया और जैसे ही जितना हम डर रहे थे उतना ज्यादा बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ,
0: नहीं निकला.
2: मतलब दोनों फैमिलीज बहुत इजीली मान गई हैं, बहुत दोनों फैमिलीज ने बहुत थोड़ा सा ये है कि उनकी फैमिली ने मेरा बैकग्राउंड थोड़ा सा देखा, मेरे फैमिली ने उनका बैकग्राउंड देखा कि क्या है, दोनों के अलग अलग बैकग्राउंड हैं. दोनों हम लोग एक चीज़ अच्छी है कि हम दोनों एमपी से हैं, ठीक है. तो एमपी से हैं, मैं गुना से हूँ
0: और मैं उज्जैन के नियर बाय उज्जैन संभाग में आगर जिला से हूँ. सुसनेर हमारी प्लेस का नाम है,
2: ठीक है. तो ये हमारा म्यूचुअल एक चीज़ बैठ गई थी कि यार हम दोनों का हाँ एक कल्चर सेम है, बट फिर भी थोड़ा सा अलग तो हो ही जाता है,
0: लग रहा था,
2: डर लग रहा था। और उसके बाद जैसे ही फैमिलीज को मिलाया, फैमिलीज से मिले हम लोग, तो सब कुछ सॉर्ट होता गया।
0: ये ना सारे मतलब ऑलमोस्ट जितने भी यू नो जो भी लोग रिलेशनशिप में आए हैं, जो आगे जाके अपना रिश्ता चलाना चाहते हैं, फैमिलीज को मनाना चाहते हैं, सबके मन में डर होता है। बट गाइज हमारे मन में भी था, बट हमने पेशेंस रखी, हमने यू नो उस 21 वाली एज में घर पे नहीं बताया, बिकॉज हम अपनी फैमिलीज को, अपने अपने पेरेंट्स को जानते थे कि वो ऐसा सोच रही है, वो वैसा सोच
2: रही, कुछ भी हो सकता है। किसी के भी पेरेंट्स इतना यंग एज में सोचेंगे कि यार ये तो गलत रास्ते पे तो नहीं जा रहे हैं,
0: you know,
2: सही टाइम के साथ साथ सब कुछ।
0: दैट वाज द बेस्ट पार्ट कि हमने कोई भी शो ऑफ नहीं किया। लोग जब यू नो रिलेशनशिप में आते हैं, दे पोस्ट पिक्चर्स एंड इतने, हमको भी मन था बहुत कि हम साथ में फोटो डालें। इवन ग्रुप्स में भी ऐसा होता था कि जब हम ग्रुप में होते हैं ना, तो उस ग्रुप में या तो ये होते थे या मैं होती थी, हम दोनों की फैमिलीज ना देख ले वो फोटो हम दोनों को साथ में, बिकॉज हम दोनों को आगे जाके शादी की बात करनी है, तो ऐसा नहीं लगना चाहिए ना कि ऐसी ऐसी चीजें थी एंड ऑल दैट, थोड़ा मनाने में प्रॉब्लम होगा। तो पेशेंस हमने रखी। सो गाइज अगर ऐसा कुछ किसी की लाइफ में चल रहा है, तो आई वुड से कि पेशेंस इज द की। धीरे धीरे टाइम दो चीजों को, फैमिलीज अपने आप अंडरस्टैंड कर लेती है। जब हमारी शादी की एज हो गई, वो खुद बोलने लगे कि अब शादी, तो जब शादी का टाइम आया तो हमने बता दिया कि हाँ है, आप देख लो, आप मिल लो, ऐसे करके, और फिर बहुत स्मूथली सब चला जितना सोचा था, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ।
1: स्नेहा और देवाज की सगाई हो चुकी है, तो जरा सास बहू बेटिया के अंदाज में हो जाए एक हैप्पी डांस, यानी होने वाली पति पत्नी का एक रोमांटिक सा खास पल।

0: स्नेहा और देवांश पति पत्नी तो बनने जा रहे हैं, लेकिन जरा लेते हैं इनका टेस्ट कि किचन में दोनों की केमिस्ट्री कैसी है। जी हाँ, रसोई वो जगह होती है जहाँ पर केमिस्ट्री बहुत जरूरी है। जमाना बदल रहा है, अब केवल बीवी नहीं हस्बैंड को भी किचन का काम आना चाहिए। पर तो भाई स्नेहा तो किचन के काम में थोड़ी कच्ची है, लेकिन देवांश कुछ खास बनाते हैं, तो चलते हैं इनकी रसोई में क्योंकि ये कुछ खास बनाने जा रहे हैं।
1: हमारा एक स्पेशल चीज है कि हम लोग ना जब भी ऐसा होता है कि यार कुछ बैठते हैं बातें करना है, तो हम लोग एक बस पिज्जा बनाते हैं और खुद ही बनाएंगे, खुद ही पिज्जा पे बैठ के। यहाँ पे ये वाली जगह है, वहाँ पे हम लोग बैठ के पिज्जा खाते हैं, बातें करते हैं थोड़ी देर, तो ऐसे करके हमारा एक स्पेशल मोमेंट है। बाकी स्नेहा जो बोलेगी वैसा भी हो सकता है,
2: बिकॉज यू नो ऐसी एक्टिविटीज ना हर कपल में होनी चाहिए, लाइक कुकिंग हो गया, या फिर शाम को नीचे यू नो वॉक पे चले गए, या फिर कुछ प्ले कर लिया, जिम जा लिया साथ में, तो ऐसी चीजें होनी चाहिए। एंड उसी में से एक एक्टिविटी है कुकिंग, जो हम मिलके कर लेते हैं, बिकॉज मुझे ज्यादा आता नहीं है, पर देवांश के साथ मिलकर हम मिलजुल कर चीजें करते हैं, तो मैं सीख भी गई हूँ बहुत कुछ।
1: बहुत मेहनत वाला काम नहीं होता है, इसलिए पिज्जा बनाते हैं।
0: ये है स्नेहा और देवांश की रसोई, और अब ये दोनों मिलकर बनाएंगे पिज्जा।
2: वी हैव पिज्जा बेस जो हमने बाहर से ही मंगवाया है, इसलिए ज्यादा टाइम लगेगा भी नहीं चीजों को रेडी करने। एंड जो सारी इंग्रेडिएंट्स जो भी लगेंगे, रेसिपी हो गई ये तो एक तरह से, वो सारी देख रहे हैं आप, ये निकाल ही रहे हैं। एंड पिज्जा फॉर द फर्स्ट टाइम इन्होंने ही बनाया था घर पर, एंड दैट्स हाउ मैं भी सीख गई। जब मैं अकेले थी और मेरी कुक नहीं आई थी, मुझे कुछ आता नहीं है बनाना, बट मैंने इनसे सीखा था, तो मैंने ये घर पे ट्राई किया था, एंड बहुत डिलीशियस।
1: और अभी ये तीन टाइम पिज्जा भी खा सकते हैं, ये इतना क्योंकि इजीली बन जाता है।
2: बस ये कि डाइट को भूलना पड़ता है। बट हाँ, मेरा तो काम ये है कि अभी मैं डाइट वाइट करूँ, बट अब हम करेंगे। सॉरी, मुझे कुछ बताना नहीं है उस बारे में। कुछ कुछ हम छुपा कर भी रखते हैं, वरना आप लोगों को सरप्राइज कैसे मिलेगा। तो अभी हम ऐसे प्लान कर रहे हैं कि हम डाइट वाइट भी करें और साथ में जिम जाएं। ये मुझसे होने रहा है। किए हुए स्वीट कॉर्न है,
1: ये पिज़्ज़ा बेस है।
2: मैं इसको चॉप कर दूं। That's how I do it. मुझे टाइम भी लगता है। तरीका तुम्हें सिखाते हैं, हंस के देखो ना लतीफा तुम्हें सुनाते हैं। तो आप कुछ बोलेंगे या फिर मैं ही बोलूं? वरना हाँ, सबको ऐसे लगेगा कि मैं आपको बोलने नहीं देती।
1: क्या करती है क्या नहीं करती है ये जानती है, बट मैं अपने बारे में बताता हूँ और ऐसे में ज्यादा कंफर्टेबल रहूंगा। सॉरी गाइस, मैं थोड़ा सा शाय भी हूँ ऑन कैमरा, अब बैक कैमरा मुझे नहीं बुलवा लो, ठीक है। सो अभी कैसा है कि मैं मेरा बैकग्राउंड बताता हूँ आपको, मैं काफ़ी सिंगिंग रियलिटी शोज में एज क्रिएटिव काम कर चुका हूँ। उसके बाद मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया इन रियलिटी शोज से, उसके बाद मैंने खुद के इंडिपेंडेंट कुछ प्रोजेक्ट्स किए, लाइक एआई प्रोजेक्ट्स। अभी एआई काफ़ी ट्रेंड है सब चीज़ों का, एआई प्रोजेक्ट्स, म्यूजिक प्रोजेक्ट्स, शूट्स, एडिट्स। सो ये सारे प्रोजेक्ट्स मैं बेसिकली, मैं भी मीडिया फील्ड से हूँ, तो एक वो होता है ना कि कोई बात चलता है,
2: सॉरी,
1: बड़े बड़े देशों में
2: छोटी छोटी बातें।
1: तो अभी एक चीज़ है कि हम दोनों को ऐसा लग रहा है मुझे कि कॉम्बो पैक है, कि हाँ हम दोनों मीडिया फील्ड से हैं, हम दोनों बॉलीवुड लवर हैं। सो मुझे बहुत ज़्यादा मूवीज़ का बहुत कीड़ा है, तो मैं मूवीज़ देखने का मुझे बहुत पसंद है। तो आई होप कि मैं कभी ऐसा ट्राई करूँगा कि एक मूवी मैं डायरेक्ट करूँ और उसमें स्नेहा मेरी हीरोइन रहे। अभी भी डायरेक्ट कर ही रहा हूँ मैं, आपको अच्छे से काटो। वैसे
2: भले ही ये सब नहीं करती हूँ,
1: बट हाँ लाइफ में बहुत सपोर्ट है।
2: ऐसे भी तो
1: सपोर्ट कर रही हूँ यार। ठीक है, अभी अब सास को इम्प्रेस करने के लिए कर रहा हूँ।
2: सो अभी ये अनियंस चॉप हो चुके हैं, कैप्सिकम हो चुका है एंड हमारे पास स्वीट कॉर्न भी है जो हमने बॉईल करके ऑलरेडी रख लिए थे। अभी देवांश बटर लगा रहे हैं हमारे पिज्जा बेस पे और अभी हम इनको इसको पलट कर इस पर ये लगाने वाले हैं ना पिज्जा पास्ता सॉस लगाने वाले है एंड देन फिर हम उस पे ऐसे इनको ऐसे स्प्रेड कर देंगे।
1: मैंने उतने ज्यादा शोज नहीं देखे हैं स्नेहा के, बट हाँ जब मैंने हम लोग मिले उसके बाद मैंने देखे काफी शोज। सो गुमे किसी के प्यार में देखा तो उसमें हाँ उसका एक डायलॉग जो था प्लीज बोल के बताओगे एक बार, काफी ऑडियंस को भी बहुत टाइम बाद मिलेगा देखने को प्लीज। वैसे ही हाँ, जैसे बोलते थे शो का, उसके बाद मैं बताता
2: हूँ।
1: तो ये मेरा फैमिली में भी और हर जगह ना ये बहुत ज्यादा पसंद था सबको। मुझे बाद में पता चला अभी हमारे एंगेजमेंट के बाद जब फैमिली को पता चला कि अच्छा ये है स्नेहा ये है। मुंबई जब आया था तो तभी लोग कुछ लोग बोलते थे कि अरे ये तो हीरोइन लेके आएगा हीरोइन लेके आएगा, ये तो वहीं से मुंबई से लेके आएगा। तो उसके बाद फिर जब ये सच हो गया तब सबको सच हो गया कि हाँ उनके शायद जुबान पे सरस्वती माँ बैठी हुई थी। ठीक है तो ऐसा मुझे फील होता है। और रही बात की स्नेहा के जो वो है शोज का कैरेक्टर कौन सा मुझे पसंद था, तो सबसे पहले मैंने स्नेहा को देखा था, वो मैंने पहले देख चुका था स्नेहा को। उसके बाद फिर मैंने डाटो सुट्टो वाला जो देखा स्नेहा का करिश्मा वाला, फिर मैंने देखा ईशानी में, आई गेस अंकिता नाम था ना, ठीक है तो ईशानी में देखा। बट एक और शो था दंगल पे उसमें स्नेहा ने एक रोल किया था, बट मैंने छोटी सी क्लिप देखी हुई है। स्नेहा गन वन मारती है और जो भी विलन है वो पूरा जाके खाई वाई में गिर जाता है। सो
2: इट वॉज सासू माँ ने मेरी कदर ना जानी, आई थिंक 24 में मैंने किया था, 2024 या 2025 में किया था। सासू माँ ने मेरी कदर ना जानी, मैंने पवित्रा का रोल किया था एंड आई वॉज नेगेटिव इन द शो एंड मैं साइको थी उसमें। तो उस वो कैरेक्टर ऐसे था ना कि आई वॉज लाइक कि अगर यू नो ये देवांश की मम्मी ने देख लिया या पापा ने देख लिया तो यार मैं तो पहले ही रिजेक्ट हो जाऊंगी कि इतनी खतरनाक बहू तो नहीं चाहिए बाबा, यू नो उस पे करना
1: स्प्रेड करना। सो ये आप करिए, हम बिल्कुल माइक पकड़ देते हैं।
2: मुझे इतना मतलब बेसिकली देवांश ना बहुत ज्यादा कैमरा शाय है। एक सेकेंड ना, ये मेरी बेइज्जती क्यों करवा रही है ये चीज, हमेशा तो ऐसे नहीं होता है।
1: सांस देख रही है ना
2: या तो मैं कॉन्शियस हो गई हूँ।
1: नहीं नहीं आज सांस देख रही है ना आपकी,
2: ये चीज अच्छे से वो नहीं हो रहा है। मैंने शो किया था सासू माँ ने मेरी कदर ना जानी,
1: देखते हैं असलियत में आपका
2: असलियत में मुझे अपनी कदर करवानी पड़ेगी। पहले ये सब बेसिक चीजें मुझे आनी चाहिए जो कि बिल्कुल नहीं आती, उनके बेटे से इतना काम करवाऊंगी तो सासू माँ मेरी कदर नहीं जान पाएंगी।
1: मैं ऊपर ऊपर से
2: आई थिंक दैट्स एनफ।
1: हां यस
2: ठीक है। जब भी मैं किचन में जाती हूँ, मैं इसलिए ऐसा बोल रही थी क्योंकि मेरे हाथ से इतना कुछ टूटता है गिरता है, मैं चीजें मेरी कुक भी जब खाना बनाती है तो वो मुझे बोलती कि दीदी आप बैठो मैं आप दूर रहो मुझसे, मैं बना के आपको दे दूंगी। उनको भी डर लगता है मुझसे, तो इसीलिए ये जो आप देख रहे थे ऐसे नहीं है कि मुझे बिल्कुल ही नहीं आता, मैं कर सकती हूँ। बट यू नो अभी आप लोग आए हुए हैं एंड आई वॉज वेरी कॉन्शियस, सो सारी चीजें इसीलिए ये प्लेट्स एंड ऑल ये सारा देवांश ने ही किया क्योंकि उनको पता था कि मैं कुछ ना कुछ तो गिरा ही दूंगी।
1: पक्का गिराएगी ये तो।
2: और कुछ बोल रहे
1: यार मैं ही बोल रहा हूँ तब से कितना अच्छे तरीके से मैंने बनाया।
2: अरे हाँ मैंने इनको पहली बार कैमरा के सामने इतना ज्यादा बोलते देखा है। और एनीवेज जैसे ये आपको दिख रहे हैं ना अभी ऐसे बिल्कुल नहीं है, ही इज वेरी यू नो कॉमेडी पर्सन इन यू नो रियल ये तो कैमरा है, कैमरा के सामने ही इज वेरी मतलब ऐसे ऐसे होके बैठे हैं, बट रियल लाइफ में ये ज्यादा जब ये कंफर्टेबल हो जाते हैं ना तो फिर इनका रियल देवांश निकल कर आते हैं।
0: तो भाई पिज्जा का आखिरी स्टेप अभी बाकी है, जब तक पिज्जा बेक हो रहा है तब तक स्नेहा ने दिया देवांश को एक सरप्राइज। म्यूजिक वीडियो बन चुका है और आज सास बहू और बेटियां में देख लीजिए स्नेहा और देवांश का ये खास म्यूजिक वीडियो।

Devam barışta.

0: की ब्यूटीफुल।
1: तो देखते हैं कि कैसा बना है ये पिज्जा और क्या होने वाले पति पत्नी का ये इम्तिहान हुआ पूरा।
2: ये सब देख के बहुत बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगी। ये यार अब मैं क्या बोलूँ इस पे। All I can say is मैं सीख जाऊंगी इनकी तरह। वैसे ये चीज दोनों को आनी चाहिए।
3: तुम्हें भी आता है।
2: बट यार जब
3: तो मजदूरी वाले काम तुम कर लेते हो ना, चॉपिंग वॉपिंग का ये सब देखो।
2: राजा वाला काम तुम कर रहे हो।
3: राजा और शेफ वाला काम मैं कर रहा
2: हूँ। ओहो। बट या मैं All I can say is मैं सीख जाऊंगी। और नहीं भी सीखी तो यार वैसे भी लड़का कुक करते हुए बहुत अच्छा लगता है। या
3: लड़के को भी ये चीज अच्छी लगनी चाहिए। लड़का अच्छा लग रहा है उससे मटन नहीं करता।
1: शादी करना और डेट पर जाना जो अलग अलग चीज है। अब स्नेहा और देवांश की शादी होने जा रही है तो इन्हें बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से हटकर मियां बीवी का फर्ज निभाना पड़ेगा। और आज किचन में इन दोनों की केमिस्ट्री देखकर तो ऐसा ही लगा। तो चलिए इनके साथ इनके फेवरेट कॉर्नर में खाते हैं साथ पिज्जा और उम्मीद करते हैं कि शादी में भी ये पिज्जा वाला स्वाद हमेशा बना रहे।
2: So, जब भी यू नो बारिश होती है तो हम ऐसी कुछ चीजें कर लेते हैं, या तो वो क्या बोलते हैं पकौड़ा, वो मैं नहीं खाती बट उसकी जगह हम फ्राइज या ऐसी कुछ चीजें कर लेते हैं।
3: ये ऑयली चीज कब खाते हैं? तो एज ऑफ नाउ तो हमारा एक पिज्जा बन गया, ठीक है। तो फिलहाल में हम पिज्जा एंजॉय करते हैं।
2: चलो पहले सबसे पहले आप लोगों को
3: गाइस प्लीज सारी बहुओं को ये सास तो पता नहीं कब बनेगी बट उसकी सास देखेगी। बेटी थी अब ये बहू बनने वाली है।
2: चिली ज्यादा तो नहीं? नाइस यम्मी।
3: वो लग रहा है कि जल गया बट जला नहीं है।
2: जला नहीं है वो, साइड से लग रहा है उसका चीज जो है, चीज थोड़ा सा वो हो गया है, पक गया है ज्यादा। बट द पिज्जा इज रियली नाइस।
1: तो ये थे स्नेहा और देवांश जिनकी सगाई हो चुकी है, बस शादी में थोड़ा वक्त है। और शादी से पहले होने वाले पति पत्नी को एक दूसरे को कैसे समझना चाहिए ये हमें स्नेहा और देवांश के साथ पता चला। तो उम्मीद है गुमे किसी के प्यार है कि करिश्मा की ये रियल लाइफ साथिया उनका जीवन भर ख्याल रखे। तो इस दुआ के साथ सास बहू और बेटियां लेता है इनसे अलविदा।
2: सो थैंक यू यहाँ आने के लिए और देवांश से मिलने के लिए। और आप सबका वेट भी खत्म हो गया, मैंने आपको मिलवा भी दिया। अब हाँ सबका यही क्वेश्चन है कि शादी कब करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमारी इंगेजमेंट ये शादी जैसी लगी है। ये जो
3: तो मैरिज का विश कर रहे हैं, मतलब कि यार क्या बात है शादी कर लिए बताया भी नहीं, ये सब चीजें
2: करेंगे। और हमें भी जब हमारा रोका हो रहा था तो ऐसे ही फील आ रहा था कि हमारी शादी हो रही है। बिकॉज हमने सोचा बहुत छोटा सा था बट हमें खुद भी नहीं पता था कि यू नो इतना बड़ा कुछ हो जाएगा। सो नाउ अभी हम इंगेज्ड हैं एंड अब हमारे क्यूट क्यूट वीडियोस फोटोज आपको मिलते रहेंगे जो कि हमने छुपा कर रखे थे 5-6 इयर्स से, बट अब आपको मिल जाएंगे क्योंकि अब आपको मैंने ऑफिशियली मिलवा दिया है। एंड सास बहू बेटियों के थ्रू मैंने आप सभी को फॉर द फर्स्ट टाइम मीडिया पर देवांश आए हैं और हम दोनों ऐसे स्क्रीन पर पहली बार हमने स्क्रीन शेयर की है।
3: मैं देखता था बट सबसे पहले आज मैं सास बहू बेटियां पर ही आया हूं, सब लोग मुझे वहीं देख रहे हैं आज।
2: या So, thank you.
3: Thank you so much, guys.

0: जिनकी क्यूट सी लव स्टोरी हमने दिखाई। भाई सगाई हो चुकी है, बस अब शादी का इंतजार है, तो इनको शादी की एडवांस में बधाई और उम्मीद करते हैं कि इसी तरह इनका ये रिश्ता हमेशा बना रहे। मुंबई से नूपुर मौची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
1: अनुपमा तो हमेशा परिवार और समाज को जोड़ने की बात करती हैं, लेकिन क्या आज विश्व पर्यावरण दिवस पर वो अपने परिवार वालों को समझाएंगी कि किस तरह हमारे छोटे छोटे कदम बचा सकते हैं हमारे एनवायरनमेंट को? जी हाँ, अनुपमा बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। फिलहाल तो इनकी कहानी में भी चल रहा है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामा जिसे आप मिस नहीं कर सकते। लेकर चलते हैं आप सबको अनुपमा के पास।
2: अनुपमा के घर पर लगा डांस का तड़का। बा और बाबूजी की शादी की सालगिरह पर डांस धमाल। बन रहे हैं नए रिश्ते, जाने अनजाने हो रहा है प्यार का इजहार। स्टारप्लस के सीरियल अनुपमा में आज तो अनुपमा ढोल नगाड़ा बजा रही है, खुश हो रही है क्योंकि बा और बाबूजी की शादी की सालगिरह है। ऐसे में देखिए कैसे आज अनुपमा उन्हें दे रही है एक प्यारा सा सरप्राइज, जिसे देखकर बा और बाबूजी दोनों ही बहुत खुश हो रहे हैं क्योंकि पूरा परिवार उनके साथ है। और तो और सरप्राइज में पार्टी भी रखी गई है। ऐसे में बा और बाबूजी एक दूसरे के लिए लेकर आए हैं उनका पसंदीदा तोहफा। जरा देखिए कैसे बाबूजी ने बा के लिए हाथों में गजरा पकड़ा हुआ है। जरा देखिए कैसे बाबूजी ने बा के लिए अपने हाथों में गजरा पकड़ा हुआ है, तो वहीं बा लेकर आए हैं बाबूजी का फेवरेट क्रीम रोल। ऐसे में ये सरप्राइज देखकर दोनों ही बहुत खुश हैं। इतना ही नहीं, सभी घर वालों के सामने बाबूजी ने बा के बालों में गजरा लगाया, प्यार का गीत गुनगुनाया, तो वहीं बा ने भी अपने हाथों से अपने पति को क्रीम रोल खिलाया। ये देखकर सभी घर वाले खूब खुश हो रहे हैं। और सबकी खुशी दुगनी तब हुई जब अनुपमा लेकर आ गई बा और बाबूजी के लिए जयमाला। ऐसे में अनुपमा की डिमांड बा और बाबूजी दोनों ने ही पूरी की है एक दूसरे को माला पहनाकर।

0: आज बहुत ही अच्छा माहौल है क्योंकि एक तो सरप्राइज माँ बापू जी को दी, अनुपमा ने सब कुछ अरेंज किया और बच्चे साथ में है सब, तो बहुत अच्छा लगा। और ऐसा है कि हर वक्त ऐसा कुछ ना कुछ होता है कि एक ड्रामा होता है शाह हाउस में, कोई भी फेस्टिवल हो तो वो झगड़ों से ही ख़त्म होता है, पर इस बार ऐसा नहीं हुआ। सब ने हंसी खुशी पूरा ये एनिवर्सरी का माहौल मनाया है, गाना हुआ, पूरे इतने सालों के जो जो अच्छे अच्छे मोमेंट्स थे उसे कैप्चर करके फोटोग्राफ्स में डाले थे, तो यही तो है जो हमारी यादें बनकर ये फोटोग्राफ्स हमारे पास रहते हैं और हमारी यादों को हम फिर से याद करते हैं।
1: जैसे कि आप सब जानते हैं, शाह परिवार का सबसे क्यूट कपल है बा और बापूजी, और आज उनकी एनिवर्सरी है तो हम सब ने सोचा कि अच्छे से पूरा घर डेकोरेट करते हैं, बा बापूजी की बहुत सारी फोटोज, उनकी जो जितनी भी यादगिरी है वो सारी हमने घर में लगा है ताकि उनको याद आए कि अरे कितने सारे प्यारे मोमेंट्स उन्होंने जिए। एंड आंखों पे पट्टी बांध के बा बापू जी को ले आए और बहुत ही प्यार से उनको विश किया एंड सेलिब्रेट।
2: भाई सेलिब्रेशन का तो मौका है ही, क्योंकि सीरियल में यही एक जोड़ी है जिसके रिश्ते में अब तक कोई दरार नहीं आई है। ऐसे में अनुपमा ने इस जोड़ी की नजर भी उतारी और तो और सभी को ये बताया भी कि प्यार हो तो इनके जैसा हो।

0: लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब प्रेम जाने के लिए आगे बढ़ता है तो वो गिरने लगता है, लेकिन तभी दिग्विजय और अनुपमा दोनों ही उसे संभाल लेते हैं। यहाँ पर उन्हें धन्यवाद कहने के बजाय प्रेम अपना दर्शन दिखाता है। इससे पहले कि और बात आगे बढ़ती, तभी अनुपमा की प्यारी बिटिया रानी आ जाती है और इनके टशन पर ब्रेक लगाती है।
1: यस, अब जैसे कि आप जानते ही है, हम दोनों ने कैफे खोले हैं। शाह परिवार का एक कैफे है और कोठारीज का एक कैफ़े है, तो वो थोड़ा सा मनमुटाव है, सामने कंपटीशन है। अब कंपटीशन के लिए भी हमने एनरोल किया है, प्रेम राही ने एनरोल किया है, तो कंपटीशन के वजह से रिश्तों में थोड़ा सा कचास गुजराती में बोलते आ गया है, पर बड़े समझा रहे हैं। बापूजी ने भी समझाया कि ऐसा नहीं करते, काम अपनी जगह है, रिश्ते अपनी जगह है, हम दोनों साथ मिलके भी काम कर सकते हैं और बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। फैमिली रिलेशंस ज़्यादा ज़रूरी है, बट प्रेम अभी ज़्यादा कंपेटिटिव है, तो अब क्या ही बोले, उम्र के साथ सीख जाएगा।
0: भाई जयू की डिमांड पर बा और बाबूजी दोनों पहुँच गए शादी की सालगिरह का केक काटने के लिए। ऐसे में पूरे परिवार के साथ मिलकर इन्होंने अपनी सालगिरह का केक काटा, सभी का मुंह मीठा किया और सभी का धन्यवाद भी किया।

इसी बीच आता है कहानी में ट्विस्ट। घर पर मेहमान बनकर पहुंच जाते हैं प्रेम और राही, जो लेकर आए हैं बा और बाबूजी के लिए उनकी शादी की सालगिरह का तोहफा। जरा देखिए कैसे दोनों अंदर आते हैं, बा और बाबूजी का आशीर्वाद लेते हैं, तोहफा भी देते हैं और बर्थडे में शामिल भी होते हैं।

लेकिन सेलिब्रेशन अभी आधा अधूरा है क्योंकि अभी तो सिर्फ मुंह मीठा हुआ है, एंटरटेनमेंट तो अभी बाकी है। और ये एंटरटेनमेंट का तड़का कोई और नहीं बल्कि अनुपमा लगाती है, जिसकी शुरुआत बा और बाबूजी करते हैं अपने डांस और अपने प्यार से।

0: डांस हुआ और साथ में क्या है कि प्रेम और राही आए तो थोड़ा टेंशन का माहौल था, पर बहुत ही अच्छे से मैच्योरली पूरी चीज को उन्होंने भी संभाला और बहुत अच्छी अच्छी बातें हम लोगों ने की, लाइक कि जेन जी आज का जो न्यू जनरेशन है वो प्यार को कैसे, प्यार का कैसे इजहार करता है और हम हमारी पुरानी पीढ़ी किस तरह से प्यार को बताती है, उस बात के भी आज हमने बहुत सारे डिस्कशन हुई, तो एक अच्छा सा क्यूट सा सीन था।
1: भाई इस डांस में सभी जमकर नाच तो रहे हैं, लेकिन जो टूटे हुए रिश्ते हैं वो भी कहीं ना कहीं मिल ही रहे हैं और कुछ रिश्ते तो बन भी रहे हैं, क्योंकि हाल ही में कुछ के दिलों ने धड़कना शुरू किया है।

खैर इस डांस में तो मस्ती अनलिमिटेड है, जिसमें परी भी झूमने की कोशिश कर रही है, लेकिन परी की माँ ने उसे रोक लिया क्योंकि परी प्रेग्नेंट है।

0: खैर, बा और बाबूजी की शादी की सालगिरह पर पूरा परिवार साथ तो आया, लेकिन कुछ रिश्तों में मनमुटाव अब भी है। देखना होगा कि ये मनमुटाव कैसे दूर होंगे। मुंबई से शीतल कावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
1: कुछ मुलाकातें आपका भविष्य बदल सकती हैं और कुछ फैसले आपकी तकदीर। ओह माय गॉड, आज यही कह रहे हैं हमसे हमारे रीत और राघव। रीत और राघव, बिल्कुल सही बात कही आपने। एक्चुअली देखिए, ये बात लागू करती है हमारे पर्यावरण पर भी, क्योंकि अगर हम कोई सही डिसीजंस लेंगे अपने पर्यावरण की ओर तो हम उसे एक्चुअली बचा सकते हैं। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको रीत और राघव के पास और देखते हैं क्या कुछ एंटरटेनिंग और एक्साइटिंग हो रहा है इनकी कहानी में आज।

शारदा बुआ का आखिरी दांव। ध्रुव और विक्रांत के बीच भिड़ंत। जी टीवी के सीरियल जाने अनजाने हमले में रीत के पीछे गुंडे पड़े हुए हैं और रीत जंगल में अपनी जान बचाकर भाग रही है और कोशिश कर रही है अपने आप को और अपने होने वाले बच्चे को बचाने की।

तो वहीं रीत को घर में न पाकर राघव भी रीत की तलाश में निकल चुका है और मार्केट में अपनी रीत को ढूंढ रहा है। इसी बीच उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ती है जो रीत की तरह दिखती है, पर वो रीत नहीं होती। ऐसे में राघव को हार मिलती है और राघव परेशान होता है। इमोशनल होकर अपने आप को ही कोसता है और ऊपर वाले से दुआ मनाता है कि उसकी मुलाकात रीत से करा दे। कि तभी जाते हुए रास्ते में उसे जानकारी मिलती है कि एक लड़की का एक्सीडेंट हो गया है। बस फिर क्या, राघव डरता भी है। वो उस डेड बॉडी के पास भी आता है और दौर डेड बॉडी के ऊपर पड़े हुए चादर को हटाकर देखने की कोशिश करता है कि कहीं उसकी रीत तो नहीं। लेकिन वहाँ उसे गुड न्यूज मिलती है क्योंकि वहाँ उसे रीत जो नजर नहीं आती। ऐसे में राघव को परेशान देखकर पुलिस उससे सवाल जवाब करती है और राघव पुलिस से मदद मांगता है कि वो उसकी रीत को ढूंढने में मदद करे।

0: थे।
1: वहीं दूसरी ओर ध्रुव और विक्रांत का भी आमना सामना हो गया है। दोनों के बीच बहसबाजी चल रही है, वो भी उन्नति को लेकर। ऐसे में ध्रुव विक्रांत को दे देता है चेतावनी कि वो उसकी उन्नति से दूर रहे, लेकिन विक्रांत ये मानने को तैयार नहीं। इतना ही नहीं, उसे तो इतना गुस्सा आता है कि वो ध्रुव को मारने के लिए पत्थर भी उठा लेता है। भाई विक्रांत के ऊपर तो गुस्से का भूत सवार है। ऐसे में गुस्से में आकर वो ध्रुव के साथ हाथापाई करने लगता है और ध्रुव अपने आप को बचाने के लिए विक्रांत को धक्का देता है, लेकिन धक्के के कारण विक्रांत गिर जाता है खाई में। ये देखकर ध्रुव परेशान है। अब विक्रांत की डेड बॉडी मिलेगी या नहीं, ये तो आने वाले एपिसोड्स में दिखेगा। फिलहाल तो बुआ जी ने अपना आखिरी दाव खेला है और वो है रीत का बच्चा जो बुआ जी के हाथों लग गया है। और देखिए कैसे बुआ जी उसे लेकर आ गई है इस घने जंगल में अकेला छोड़ने के लिए।
2: सॉरी, मुझे माफ कर दे बेटा, पर क्या करूं, तेरा तो यही अंजाम होना था, क्योंकि तेरी रगों में ऐसे दो लोगों का खून बह रहा है जिन्हें मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत करती हूँ। तेरी माँ रीत, जो इस दुनिया में मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है, जिसके कदम रखते ही सूर्यवंशी परिवार में मेरा राज, मेरा सिंहासन, सब कुछ मुझसे छीन लिया। तो शुक्र मना कि इस धरती पर तेरा इतना छोटा सा सफर था। अब अगर तू चाहता है कि अगले जन्म में तुझे लंबी उम्र मिले, तो माता रानी से प्रार्थना करता कि ऐसे माँ बाप के घर में पैदा हो जो शारदा सूर्यवंशी के दुश्मन ना हो। गीत, तुम्हें और राघव को कभी पता नहीं चलेगा तुम्हारा बेटा हॉस्पिटल में नहीं मरा, तो आज मरेगा यहाँ इस जंगल में खूंखार जानवरों के बीच।
1: फिलहाल तो सास बहू और बेटियां आपको बता चुका है कि रीत के सामने ये खबर आई है कि उसका बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा है। देखना होगा कि अब रीत को कैसे इस बात का पता चलेगा कि उसका बच्चा सही सलामत है। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
3: पानी की हर बूंद कीमती है, इसलिए पानी बचाइए। वैसे बचा कर तो रखी है हमने आपके लिए ये अगली कहानी भी, जिसमें कहानी का लेखक लेकर आया है एक इंटरेस्टिंग मोड, जिससे आ रहा है यहाँ पर भी एक नया ड्रामा। कैसे? ऐसे।
1: पिट गया युग, तन्वी की बगावत, युग और तन्वी का सिंदूरी रिश्ता, दंगल टीवी के सीरियल 30 के पार जब मिला प्यार में आज थी तन्वी और व्योम की शादी, लेकिन युग ने आकर उनकी शादी पर ब्रेक लगा दिया। और तो और युग ने तन्वी की मांग भी भर दी। बस फिर क्या, ये देखकर युग के पापा से रहा ना गया और उन्होंने जमकर की युग की पिटाई।
4: उसका परिणाम ही हो रहा है, उसका रिएक्शन, उसका एक्शन, सब कुछ हो रहा है आज। एंड खून से तो अभी भी लथपथ हूँ मैं, एंड इसके बाद अब मेरा मेकअप नहीं हुआ है, वरना आप देखते कि ये मेरे गाल जो है वो भी थोड़े लाल दिखते हैं आप लोगों को. सो यस, उसका एक्शन रिएक्शन सब आज ही हुआ है वापस. यस
1: भाई, एक्शन तो आज युग ने भी किया है, क्योंकि आज वो अपने मम्मी पापा से बगावत कर रहा है. वो चाहता ही नहीं है कि तन्वी की शादी व्योम से हो. ये सुनकर ना सिर्फ युग के मम्मी पापा को गुस्सा आ रहा है, बल्कि अक्का साहब भी पहुंच गई है युग को ताने कसने के लिए. लेकिन तभी युग ने व्योम का सच बता दिया और इस सच ने बखेड़ा खड़ा कर दिया.
0: मैं जो भी किया हूँ ना, गलत नहीं किया. ओके,
5: क्या बकवास कर रहे हो तुम?
0: बकवास नहीं, सच है अक्का साहब ये. क्योंकि शादी के ठीक 30 मिनट पहले ना, व्योम दादा एक नाचने वाली लड़की के साथ नशे में धो धो के सुहाग रात मनाने जा रहे थे.
5: अरे वाह योग, मतलब अब अपनी काली करतूत छुपाने के लिए मेरे दादा का इल्जाम लगा रहे हो. साफ साफ बोलो ना कि जब से उस तन्वी के घर पर तुम किराए पर रहने के लिए गए हो, तब से तुम दोनों का टाका गिरा हुआ है. सिंदूरा, क्या मैं बोल रही हूँ काकी? सही तो बोल रही हूँ. कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये तुम दोनों की मिली भगत है?
1: भाई सिंदूरा ने तो अपने ही भाई युग पर लाल छन तक लगा दिया, और अक्का साहब ने भी ताने कसना बंद नहीं किया. इतना ही नहीं, आज तो तन्वी को भी युग पर गुस्सा आ गया है. तभी तो देखिए कैसे मंडप छोड़ पहुंच गई है वो युग पर अपना गुस्सा उतारने.
5: अगर तुम्हारी बात सच है तो आकर शादी रोकी क्यों नहीं तुमने? क्यों मेरी मां बन के ऐसा रिश्ता बना दिया जिसका भार हम दोनों कभी नहीं उठा पाएंगे? शादी ब्याह को मजाक समझ रहे तुम लोगों ने? बिना सोचे समझे कर दिया. जिंदगी में हर कदम तुमने बिना सोचे समझे उठाया है.
4: मेरे घर पे ना माय डैड इज द मोस्ट ऑथराइज्ड पर्सन, कि मेरे ऊपर अगर सबसे पहले अगर किसी को चढ़ना होता है वो है मेरे डैड, एंड उसके बाद अक्का साहेब. सो यस ऑफ कोर्स एज यूजुअल ये दोनों मेरे पे चढ़ रहे हैं, एंड फॉर अ ट्विस्ट इवन तन्वी मुझ पे चढ़ रही है आज. एंड आई एम क्लूलेस कि भाई ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने कैसे कर दिया, अब क्या होगा, अब क्या नहीं होगा. सो ऑल ऑफ दिस. यस
1: खैर, बवाल चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अक्का साहब जो चाहती हैं वो वही करके रहेंगी. वो तो चाहती हैं तन्वी और व्योम की शादी करवाना. ऐसे में देखिए कैसे वो पहुंच गई हैं शादी के मंडप में पानी का लोटा लाकर तन्वी की मांग में भरे सिंदूर को मिटाने के लिए, लेकिन पंडित ने उन्हें मना कर दिया. इतना ही नहीं, युग ने भी ऐलान कर दिया है कि वो तन्वी और व्योम की शादी होने नहीं देगा. बस फिर क्या, इस बात पर अक्का साहब को आ गया गुस्सा, और उन्होंने व्योम को ना सिर्फ धक्का मारा बल्कि उसे आगाह भी किया. और अपने फैसले में अटल होते हुए अक्का साहब पहुंच गई तन्वी की मांग से सिंदूर पोछने. लेकिन यहां पर आ गया ट्विस्ट, क्योंकि तन्वी ने अक्का साहब का हाथ पकड़ लिया.

रश्मि के सेट से दीपिका सिंह ने शेयर की है ये BTS नज़ारे जहां वो फाइट करती नजर आ रही हैं। तो कैसे हुआ ये सीन शूट, आइए डालते हैं इस सीन पर नजर।

0: सेदू का फैन होने के नाते बस अब यही एक होप है कि इस बार दोनों साथ रहे।
1: फैंस की फेवरेट जोड़ी तो सेदू ही है।
2: गंगा माई की बेटियां में कहानी में नया ट्विस्ट आ गया है, जहां पर स्नेहा और सेदू की शादी हो गई है। वही फैंस की डिमांड पर ये दोनों एक तो हो गए हैं, लेकिन जल्दी इनकी लव स्टोरी में नया ट्विस्ट भी आने वाला है।
3: प्यार को मिली मंजिल,
4: चौरा माता महादेव का आशीर्वाद है हमारे प्यार को, हमें किसी और की मंजूरी नहीं चाहिए, आज से हमेशा के लिए आप हमारे घर में होंगे।
3: लेकिन शादी के बाद सिद्धू का एक बड़ा सच स्नेहा के सामने आया।
4: ठकुराइन दुर्गावती सिंह हमारी माँ,
5: आप एक सूदखोर महाजन हैं जो लोगों के पैसों से अपनी तिजोरी भरती है। अगर दोबारा हमारे घर में आने की कोशिश भी की ना तो आपकी भी कंप्लेंट कर देंगे।
6: तुम्हारे मासूम चेहरे के पीछे का है ये हम अच्छी तरह से जानते।
3: क्या स्नेहा सिद्धू को माफ करे या हमेशा के लिए उससे अलग हो जाए?
7: गाइस सर कुछ सिखाएंगे मुंबई के बारे में?
8: मैं सीखना चाहती हूँ।
9: मुंबई का थोड़ा गाने में ज्ञान है थोड़ा हो।
2: इंडिया बेस्ट डांसर का नया प्रोमो देख लीजिए, जहां जावेद जाफरी कंटेस्टेंट वैदही के साथ परफॉर्मेंस करते नजर आए अपने मशहूर गाने पर।
10: Place where you survive if you've got the pace. You gotta be fast, you gotta be tase. You gotta be sure not to win the race. Chota chota matter bunny police case. Bada bada lapada gul without trace. Ghabrane ka nahi, give it in the face. Woh kya bolta hai? Haan, jaisa desh waisa bhesh. Dikhe baithi ganga, bucket se nikle kanga. Dekh rahe na panga nahi to ho jayega danga. Sabki bina bhala changa, sama bhik manga.
11: Cannot judge anybody, sari par la panga. खाने का पीने का मरने का जीने का चलने का फिरने का उठने का खेलने का टच नहीं लेने का भाव से घुसने का कसकर पर आई एम मुंबई। आने का जाने का नाचने का गाने का नहाने का धोने का हंसने का रोने का बोलने मारने का भाव से घुसने का कसकर पर आई एम मुंबई।
12: स्वाति, डॉक्टर वो है पर मेरे दिल की सांसों को ऑक्सीजन उसी से मिलती है।
2: जी टीवी पर जल्द शुरू होने जा रहा है नया सीरियल, जिसका नाम है तू ही रे दिल में, जिसमें नजर आएंगे अबरार काजी, प्रियांशी यादव और सिमरन रावल। ऐसे में सामने आई है इसकी पहली झलक, आप भी डाल लीजिए इस प्रोमो पर एक नजर।
13: इंसान किसी को कितना भी चाह ले, होता वही है जो किस्मत चाहती है।
14: तेरे सपनों का राजकुमार अब सच में तेरा होने जा रहा है।
13: उलझे रिश्ते संजोएगी कैसे, तीन जिंदगियां प्यार के एक धागे में, किस्मत पिरोएगी कैसे।
2: इश्क जुनूनी के सेट से आए हैं ये बीटीएस नजारे सामने, जहां पर टॉम एंड जेरी अंदाज में नजर आए रूहानी और गुरु। देख लीजिए इनकी मस्ती।
15: कैसी है, क्या कर रही है बैठ के?
16: नहीं, बस टाइम पास।
15: टाइम पास। हाउ ओल्ड आर यू, कितने साल की है?
16: मैं
15: 18 साल की। मैं हूँ
2: भाई खतरों के खिलाड़ी के सेट से सामने आया है ये फन बैंटर वाला वीडियो, जहाँ पर हर्ष गुजराल और रूहानी का कर रहे हैं मस्ती नए और पुराने गानों पर।
15: म्यूजिक में व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक डू जेन ज़ीज लिसन?
16: थोड़ा सा मैं तो क्लासिक्स पसंद करती हूँ और रैप कभी कभार।
15: सुना ना कुछ।
16: अच्छा गाना है इसका।
15: गाना कहाँ है?
16: आप कौन सा म्यूजिक सुनते हैं?
15: मैं

ऋतिक रोशन ने ये पोस्ट शेयर कर अपने डिसअपॉइंटमेंट के बारे में बताया है कि उन्हें एक्साइटिंग रोल्स नहीं मिल रहे हैं। फिल्म मेकर्स उन्हें बस अच्छे रोल्स ही ऑफर कर रहे हैं, लेकिन उन्हें करना है कुछ हटके।

0: तो दोस्तों, ये था आज का हमारा पर्यावरण स्पेशल एपिसोड। तो उम्मीद करते हैं आपको ये एपिसोड पसंद आया हो। और देखिए, पर्यावरण को बचाने के लिए हमें किसी बड़े कदम की ज़रूरत नहीं है, बल्कि छोटी छोटी अच्छी आदतों को अपनाने की ज़रूरत है, जैसे कि पेड़ लगाना, पानी को बचाना और स्वच्छता की पहल, जो हमारी धरती को बचा सकती है। अब मुलाकात होगी आपसे कल, जहां फिर लेकर आएंगे हम आपके लिए एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज। तब तक आप रखिए अपना अच्छे से ख्याल। प्लीज हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए एक छोटा सा कदम उठाइए। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर प्लैनेट अर्थ। टेक केयर, बाय बाय।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: Buzz, did you know APG&E offers a choice of affordable fixed-rate electricity plans and that they have thousands of five-star reviews?
3: Where did you see all this?
2: Online at APGE.com.
3: Watson, you're always so plugged in.
4: Every game, every moment, TuneIn keeps you close to the action. Follow your favorite teams all season long with live games, nonstop sports talk, and expert sports analysis so you can jump into the action. Hear it all on ESPN Radio, NBC Sports Radio, Big 12 Radio, Talk Sport, and more. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices at home, in the car, or on the go. So you never miss a second of sports action. Search sports to start listening now.
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। टीआईटी भोपाल, जेन ज़ीज़ गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स।
3: खराब मौसम के बावजूद धूमधाम से जारी चार धाम यात्रा, अब तक 30 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए दर्शन, केदारनाथ धाम में भक्तों की संख्या 11 लाख पार। केदारनाथ में दिखी प्रशासन की शानदार तैयारी, बीमार श्रद्धालु का हेलीकॉप्टर से पहुंचाया गया हायर सेंटर, समय पर हो सका इलाज। वायुसेना की 94वीं एनिवर्सरी को लेकर शानदार तैयारी, हिंडन एयरफोर्स स्टेशन से होगी समारोह की शुरुआत, काशी में गंगा के ऊपर राफेल, तेजस और सुखोई भरेंगे शौर्य की उड़ान। केरला में अब मॉनसून की दस्तक का आज दूसरा दिन, कोची में जोरदार बारिश, मौसम हुआ सुहाना। देश दुनिया में मनाया जा रहा पर्यावरण दिवस, सूरत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ मां के नाम के तहत लगाया, लोगों से की पौधा लगाने की अपील। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के फैसलों का ऐलान, 5.25% रेपो रेट बरकरार, ब्याज दरों में किसी भी तरह का बदलाव नहीं।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
3: बद्रीनाथ धाम में तेजी से बढ़ रही है श्रद्धालुओं की संख्या, अब तक करीब 9 लाख लोगों को बाबा बद्री विशाल के हुए हैं दिव्य दर्शन। यात्रा की शुरुआत से ही रिकॉर्ड संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालु, हर तरफ छाया भक्ति का माहौल। बद्रीनाथ में रुक रुक कर हो रही है बारिश, सुहाने मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं तीर्थयात्री। कोची में मॉनसून की बारिश का दौर जारी, अगले कुछ दिनों तक ऐसे ही मौसम रहने का अनुमान। कोची में मॉनसून की बारिश के चलते तापमान में दर्ज की गई कमी, कई जगह पर रुक रुक के चल रही है बारिश, इससे हो रहा है ट्रैफिक। केरलम के 8 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी, मौसम विभाग ने मध्य से तेज बारिश की जताई संभावना। दिल्ली एनसीआर में सुबह से छाए बादल, तापमान में दर्ज की गई गिरावट, वीकेंड की कूल कूल रहने के अनुमान। वेस्टर्न डिस्टरबेंस का कई दूसरे राज्यों में भी दिख रहा है असर, हरियाणा और पंजाब में भी मौसम विभाग ने प्री मॉनसून बारिश का जताया है अनुमान। देश दुनिया में मनाया जा रहा है पर्यावरण दिवस, सूरत में पीएम मोदी ने एक पेड़ मां के नाम के तहत लगाया, लोगों से की पौधे लगाने की अपील। विश्व पर्यावरण दिवस पर लखनऊ में सीएम योगी ने किया पौधारोपण, लोगों को दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश। आगर मालवा के सिपाही बंटी धाकड़ के पर्यावरण को लेकर शानदार पहल, ग्रीन आर्मी बनाकर लोगों को पौधारोपण के लिए कर रहे हैं प्रेरित। साइकिल यात्रा से भी बंटी लोगों को कर रहे हैं जागरूक, पेड़ लगाने के बता रहे हैं फायदे। बंटी धाकड़ के प्रयासों से लगाए गए सैकड़ों पौधे अब बन चुके हैं पेड़, पेड़ों की छाए से लोगों को मिलती है राहत। चमोली के प्रसिद्ध फूलों की घाटी में विश्व पर्यावरण दिवस पर पर्यटकों ने किया पौधारोपण, एक पेड़ मां के नाम का दिया संदेश। अलवर के बुजुर्ग सुरेंद्र सेन लोगों में जगा रहे हैं पर्यावरण की अलग, 47 साल से करते आ रहे हैं पौधारोपण। विश्व पर्यावरण के मौके पर गाजियाबाद के डीएम ने लोगों को किया जागरूक, एमएमए गर्ल्स इंटर कॉलेज के परिसर में किया पौधारोपण। दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने एक पौधा मां के नाम अभियान में पौधारोपण किया, पर्यावरण को लेकर लोगों को किया जागरूक। वायुसेना की 94वीं एनिवर्सरी को लेकर शानदार तैयारी, हिंडन एयरफोर्स स्टेशन से होगी समारोह की शुरुआत। काशी में गंगा के ऊपर राफेल तेजस और सुखोई भरेंगे शौर्य की उड़ान। आज देश को मिलेगी 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात। सूरत में 18,000 करोड़ के विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे पीएम मोदी। सूरत दौरे के बाद केंद्र शासित प्रदेश दमन पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दमन में हवाई अड्डे की नए टर्मिनल का करेंगे उद्घाटन। दमन में कनेक्टिविटी और पर्यटन को मिलेगी नई उड़ान। दमन के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का भी मिलेगी सौगात। नमो अस्पताल के भी उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कन्वेंशन सेंटर NIFT कैंपस का करेंगे शिलान्यास। 8वीं बार दमन दौरे पर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम के दौरे को लेकर दमन में जबरदस्त तैयारी, जगह जगह लगाए गए पीएम के बड़े बड़े कटआउट्स। प्रधानमंत्री आज लक्षद्वीप के कल्पेनी द्वीप और कदम द्वीप के पूर्वी और पश्चिमी किनारों पर बंदरगाह सुविधाओं के विकास का भी करेंगे शिलान्यास। लक्षद्वीप में विकास और पर्यटन को मिलेगा इससे बढ़ावा। अहमदाबाद में पहली विश्व योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का हुआ शुभारंभ। समारोह में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, योग गुरु बाबा रामदेव समेत कई हस्तियां शामिल। पीएम मोदी ने वर्चुअली किया विश्व योगासन चैंपियनशिप का उद्घाटन। योग को बताया मानवता के लिए सबसे बड़ा तोहफा, विश्व में बढ़ती लोकप्रियता की तारीफ की। प्रतियोगिता में 60 से ज्यादा देशों के 500 से ज्यादा एथलीट्स ले रहे हैं हिस्सा। एका एरिना में 8 जून तक चलेगी प्रतियोगिता। प्रतियोगिता में पारंपरिक योगासन के साथ कई तरह की प्रतिस्पर्धाओं का होगा आयोजन। वीर द लायन रखा गया है पहली विश्व योगासन खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ। योगासन को प्रतिस्पर्धी वैश्विक खेल के रूप में स्थापित करना और साल 2036 के ओलंपिक में शामिल कराने की दिशा में कदम बढ़ाना प्रतियोगिता का मकसद। रामचरण की फिल्म पैदी ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर करा शानदार प्रदर्शन। फिल्म का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन 112.49 करोड़ रुपए पहुंचा। फिल्म पैदी ने रणवीर सिंह की धुरंधर और सनी देओल की गदर 2 जैसे फिल्मों के ओपनिंग डे रिकॉर्ड को भी छोड़ दिया पीछे। फिल्म का क्रेज न सिर्फ दक्षिण भारत बल्कि हिंदी बेल्ट में भी देखने को मिला। भारत में पहले दिन पैदी की कमाई रही 69.50 करोड़। फिल्म पंडितों के मुताबिक पैदी का शानदार सफर आगे भी यूं ही जारी रहेगा। पैदी की सफलता के लिए जानवी कपूर आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर पहुंची। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जानवी कपूर का वीडियो। जानवी कपूर की सादगी की जमकर हो रही है तारीफें। उन्होंने नंगे पैर 3,550 सीढ़ियां चढ़ी और भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन किए। सिने प्रेमियों के लिए गुड न्यूज आई सामने। बड़े पर्दे पर रिलीज हुई बॉबी देओल की फिल्म बंदर और वरुण धवन की है जवानी तो इश्क होना है। इमरान हाशमी की फिल्म अवारापन 2 सिनेमाघरों में रिलीज के लिए हुई तैयार। अवारापन 2 के सेट से एक इमरान हाशमी ने शेयर की है तस्वीर। मोहनलाल की फिल्म दृश्यम 3 का बॉक्स ऑफिस पर जलवा बरकरार। दृश्यम 3 ने 15वें दिन 1.05 करोड़ का कलेक्शन किया। रणवीर सिंह की धुरंधर अब जापान में दिखाई की अपना जलवा। 10 जुलाई को रिलीज होगी धुरंधर पार्ट 1। अब टीवी पर दर्शक देख सकेंगे धुरंधर पार्ट 2। जियो हॉटस्टार पर आज से ये रेगुलर सब्सक्राइबर्स के लिए अवेलेबल है। उत्तर प्रदेश के झांसी में महिलाओं ने केक काटकर मनाया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन। सीएम योगी को जन्मदिन के लिए बधाई। उत्तर प्रदेश का एक्सप्रेसवे नेटवर्क प्रदेश में विकास को दे रहा है नया आयाम। प्रदेश को तेज कनेक्टिविटी, यात्रा, व्यापार और विकास को मिल रही है मजबूती। महंगे डीजल पेट्रोल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद मुंबई में बड़ा कारपूलिंग का ट्रेंड। कारपूलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन में 30-40% की हुई बढ़ोतरी। असम में आज हिमंत बिस्व शर्मा मंत्रिमंडल का होगा विस्तार। 9 नेता ले सकते हैं मंत्री पद की शपथ। रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में नहीं किया कोई बदलाव। रेपो रेट 5.25% पर ही बरकरार। होम और कार लोन की EMI पर फिलहाल कोई भी असर नहीं। बागेश्वर धाम में हजारों श्रद्धालुओं ने सामूहिक हनुमान चालीसा हवन में लिया भाग। भक्ति के रंग में अद्भुत दृश्य किया पेश।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम

0: Ready to tackle those home projects? Whether it's a new patio, fresh paint, or some more space, now's the perfect time to make it happen. With a home equity loan from CME Federal Credit Union, you'll get an introductory 3.99% APR for 12 months, giving you the flexibility to take on those dream house projects. From big renovations to simple refreshes, your home's next chapter starts at CME. Visit CMEFCU.org to apply today and get your plans underway. Terms and conditions apply. Federally insured by NCUA. Equal housing lender.
1: Hey, this is Harry Douglas from Freddie and Harry. Stay locked in to the NBA playoffs with ESPN Radio. Get around-the-clock sports talk covering every matchup, every storyline, and every big moment as games unfold. And throughout the playoffs, catch select live games bringing you courtside for some of the biggest showdowns. From nonstop analysis to can't-miss action, ESPN Radio is your home to follow the NBA playoffs. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
3: सभी भाइयों और बहनों को बाबा रवि गिरी का स्नेहिल आशीर्वाद। तो भाइयों और बहनों, मेरा नाम बाबा रवि गिरी है, मैं 78 साल का हूं और पिछले 50 वर्षों से सिर्फ एक ही कार्य कर रहा हूँ, प्राकृतिक शुद्ध और गारंटेड इलाज देना। मैंने जीवन के पूरे 78 साल देखे हैं और उनमें से 50 साल केवल एक ही सेवा में लगे हैं, आयुर्वेद के माध्यम से रोगों का इलाज करना। आज हम एक ऐसी पीड़ा पर चर्चा करेंगे जो न बोले तो भीतर से जलाती है और बोले तो लोग हंसते हैं, और उसका नाम क्या है? बवासीर। अरे भाई और बहनों, ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये शरीर का रोग है। और जैसे सिर में दर्द होता है वैसे ही गुदा में भी रोग हो सकता है, और सबसे ज़्यादा लोग मेरे पास में बवासीर की बीमारी के लिए ही आते हैं, क्योंकि ये रोग न तो उम्र देखता है, न पैसा देखता है, न पद या ओहदा देखता है, बस जब होता है तो इंसान को नाक में दम कर देता है। जलन, दर्द, खून आना, बैठ भी ना पाए, मैंने खुद देखा है लोगों को रोते हुए। और तभी मैंने ठान लिया था बवासीर का इलाज निकालूंगा, ऐसा इलाज जो बवासीर वापस ना हो। मैंने जड़ी बूटियों को परखा, हजारों नुस्खे आजमाए और फिर तैयार की एक ऐसी औषधि जो आज मैं गर्व से कहता हूँ गारंटी से बवासीर को ठीक करती है। तो भाइयों और बहनों, आपने पाइल्स के बहुत सारे इलाज कराए होंगे, कई दवाइयाँ खाई होंगी, लेकिन आपकी बवासीर ठीक नहीं हुई होगी। मैं बाबा रवि गिरी आपसे वादा करता हूँ कि आपकी पुरानी से पुरानी पाइल्स ठीक होगी, और ये मेरी गारंटी है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको खूनी बवासीर है या बादी बवासीर, एक हफ्ते में आराम और 21 दिन में बीमारी जड़ से खत्म, ना ऑपरेशन ना साइड इफेक्ट। मैंने ये दवा उन्हीं जड़ी बूटियों से बनाई है जिन्हें हमारे ऋषि मुनियों ने आजमाया था, और आज देश भर से लोग फोन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि बाबा जी आपने तो हमें एक नया जीवन दान दे दिया है। मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, इलाज चाहिए तो आयुर्वेद अपनाओ, और अगर गारंटी इलाज चाहिए तो मेरे 50 वर्षों के अनुभव लो, नहीं फायदा हुआ तो पैसे वापिस, इतना भरोसा है मुझे अपने इलाज पर। तो भाई और बहनों, चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि बवासीर क्या होती है और क्यों होती है। बवासीर क्या है? हमारे मल द्वार या एनस जिसको बोलते हैं, एनस के अंदर या फिर बाहर छोटे छोटे रक्त वाहिकाएं या ब्लड वेसल होती है जो कभी कभी सूज जाती है, फूल जाती है और धीरे धीरे मांस जैसा बाहर निकलने लगता है। इसी को हम आम भाषा में कहते हैं बवासीर या पाइल्स। अगर इन सूजी हुई नसों से खून निकलने लगे तो उसे कहते हैं खूनी बवासीर, और अगर सिर्फ मांस बाहर निकलता है, जलन, दर्द और खुजली होती है, तो वो कहलाती है बादी बवासीर। अब सवाल आता है कि ये होती क्यों है, तो सुनिए, इसके मुख्य कारण है कब्ज। अगर पेट साफ नहीं होता, मल सख्त आता है और रोज जोर लगाना पड़ता है, तो धीरे धीरे नसें फूल जाती है। दूसरा, लंबे समय तक बैठना। जो लोग घंटों बैठे रहते हैं ऑफिस में गाड़ी चलाते हुए या फिर मोबाइल पर, तो उनमें रक्त संचार घटता है और नसों पर दबाव पड़ता है। तीसरा कारण है तीखा और भारी खाना खाना। बहुत ज्यादा लोग क्या होते हैं कि मिर्ची मसाले, तली चीजें और कम पानी, ये शरीर को गर्म करते हैं और अंदर जलन पैदा करते हैं। चौथा कारण होता है वंशानुगत कारण, जिसको जेनेटिक्स बोलते हैं। अगर आपके घर में माता पिता को बवासीर रही है तो संभावना बढ़ जाती है कि आपको भी हो सकती है। यह रोग सिर्फ शरीर को नहीं, इंसान की आत्मा तक को थका देता है। लेकिन इसके अलावा भी कई कारण हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि जिसका आहार संतुलित नहीं है, उसका कुछ भी संतुलित नहीं हो सकता। आयुर्वेद के अनुसार आहार ही सभी रोगों की जड़ का मुख्य कारण है। फिर जीवन शैली और पाइल्स यानी बवासीर तो मुख्य रूप से आहार से संबंधित है। आहार और विचार दोनों आपके शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विचार से अभिप्राय है, जीवन शैली से है, पर लोगों की इसी अनियमितता को देखते हुए मैंने कुछ खास जड़ी बूटियों का मिश्रण तैयार किया है बवासीर यानी पाइल्स के लिए। बवासीर के मेरे पास बहुत से मरीज आते हैं, कई तो दो तीन बार ऑपरेशन करवा चुके होते हैं फिर भी कोई आराम नहीं होता। वो इतनी आस लेकर आते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। बवासीर का मेरे पास एक बहुत ही कारगर फार्मूला है जो मैंने अब कुडोस आयुर्वेदा से बनवाया है। बवासीर एक बहुत ही कॉमन आम समस्या बन गई है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है पाइल्स होने के चांसेस भी एक व्यक्ति में बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम अपना पूर्ण रूप से ध्यान नहीं रख पाते हैं। और एक बात याद रखो, तनाव भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे गुस्सा आना, काम का तनाव, नींद पूरी ना होना, ये सब पेट को खराब करते हैं और पेट की गड़बड़ी बवासीर को बुलाती है। मैंने देखा है लोग बवासीर से पीड़ित होते हैं पर डॉक्टर के पास जाने में डरते हैं। औरतें तकलीफ सहती है पर परिवार से भी नहीं कह पाती, और फिर जब हालात गंभीर हो जाते हैं तो ऑपरेशन कराना पड़ता है। पर संतों का ये कहना है, रोग को समझो, शरीर की पुकार सुनो और जीवन शैली सुधारो। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे बताए हुए नुस्खे अपनाओ और बवासीर को जड़ से खत्म करो। ये मेरी गारंटी है कि आपको जल्दी आराम मिलेगा। ये कोई मामूली, लेकिन उससे पहले इसका सही पहचानना जरूरी है। अगर ये लक्षण आपको दिखें, खून आना, सूजन होना, खुजली या जलन, मांस का टुकड़ा सा बाहर निकल आना, तो समझ लीजिए ये बवासीर की दस्तक है और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बाबा रविगिरी हूं ना, आयुर्वेद में ऐसे ऐसे नुस्खे हैं जिनसे बवासीर जड़ से ठीक हो जाती है। पर पहले रोग को जानो, स्वीकार करो, फिर उपचार करो। ये लाइलाज नहीं है और आयुर्वेद में इसका स्थायी समाधान है। मैंने खुद देखा है हजारों लोगों को इससे मुक्ति पाते हुए। तो भाइयों और बहनों, या मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ जिसे बहुत ध्यान से सुनना है। हर रोग का है समाधान जब हो मन में विश्वास का ध्यान। आयुर्वेद की राह पकड़ो, बिना डर के जीवन जियो। तो भाई और बहनों, मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूँ कि आपकी पाइल्स की दिक्कतों को मैं जड़ से खत्म कर सकता हूँ। अगर मेरे बताए गए नुस्खे अपनाते हो तो खुद आप बदलाव महसूस करोगे। अब हम बात करेंगे इलाज की। मेरे ये योगों में हरड़, जीरा, काली मिर्च, पीपली, मूल, चित्रक, छव्य, सूर्यकंद, अपामार्ग, अमलतास और बहुत कुछ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ हरड़ के फायदे। ये हरड़ है, औषधीय गुणों से भरपूर है। हरड़ के आयुर्वेद में चमत्कारिक फायदे बताए गए हैं। सेलेनियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, विटामिन, प्रोटीन, जीवाणुरोधी, एंटीबायोटिक गुणों से भरपूर है ये हरड़। बवासीर की बीमारी को दूर करने में बेहद असरदार साबित हुई है। जीरा जो छोंक में यूज करते हैं, ये वही जीरा है। ये कब्ज हो चाहे बवासीर हो, इन सब में बहुत कारगर है। बवासीर का असली कारण खाना अच्छी तरह से न पचना और कब्ज का हो जाना होता है। जीरा लीवर से एंजाइम्स बनाकर खाने को पचवाता है, अपच को दूर करता है और सख्त लेटिन को मुलायम करता है। अगला है काली मिर्च जो पाचन क्रिया को मजबूत करती है। इसके बाद में है पीपली मूल, ये आंतों में अगर कीड़े हैं तो उनको खत्म करता है, आंतों में सूजन को खत्म करता है। इसके बाद में है चित्रक। चित्रक की रेचिन प्रकृति मानी गई है, यह एक नेचुरल लैक्सेटिव है जो लेटिन को धक्का मारता है, आंतों में पड़ा नहीं रहने देता, रेचन करने वाला है। इसके बाद में है सूर्यकंद। यह है सूर्यकंद, ये एक प्रोबायोटिक है और पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है। और ये है अपामार्ग, क्षार सूत्र की असली जड़ी बूटी है ये। इसमें सूजन घटाने वाले तत्व है जो बवासीर के मसों को शरीर से काट देते हैं। इसके बाद में है ये अमलतास। अमलतास पर बड़े शोध हुए हैं बड़ी बड़ी लेब में और पता चला है कि इसमें प्रस्तुत है एंथ्राक्विनोनेज जो बवासीर पर काम करता है, पाचन शक्ति को मजबूत और जड़ पर काम करती है और बवासीर को जड़ से खत्म कर देती है। इसके बाद में है लज्जालू। लज्जालू पर जनरल ऑफ आयुर्वेद ने बताया है कि खूनी बवासीर पर चमत्कारित काम करता है, चाहे कोई भी डिग्री का बवासीर हो, सब पर ये काम करता है। इसके बाद में है कचनार। कचनार की छाल काम दिया करती है, ये सूजन को घटाता है, बवासीर में कब्ज को काटता है, आंतों की सूजन को घटाता है, शरीर को विष हरण करता है और शुद्ध करता है। ये है निर्गुंडी, ये वातनाशक है। वात बढ़ने के कारण सूजन हो जाती है मसों में, ये निर्गुंडी जो है ये वात को शमन करके सूजन

0: ने बताई है, ये सब मिलाकर मैंने बवासीर के लिए एक नुस्खा तैयार किया है और मैंने हजारों लोगों को इस पीड़ा से मुक्ति दिलाई है बिना ऑपरेशन, बिना किसी साइड इफेक्ट, सिर्फ शुद्ध और आयुर्वेदिक नुस्खों से। मेरे बताए नुस्खे अपनाओ, रोज नियम से इन्हें निभाओ, बवासीर को जड़ से मिटाओ, फिर लौट के कभी ना आए वो दर्द पुराना। और हाँ, खान पान में संयम जरूर रखिए, मिर्च मसाले कम, पानी ज्यादा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आपने मेरे बताए हुए नुस्खे नियम से अपनाए तो बवासीर जड़ से खत्म हो जाएगी और फिर दोबारा लौट कर नहीं आएगी। तो अब ऑपरेशन नहीं, अपनाओ रविगिरी के नुस्खे और कहो बवासीर तुझे जड़ से अलविदा। अब देर मत करो, मुझे तुरंत संपर्क करो और ये आयुर्वेदिक दवाई मंगवाओ ताकि बवासीर को हमेशा के लिए अलविदा कह सको। अब मैं भी आपसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को
2: 50. Oh, hey, Watson. Just getting jacked up for the summer with my pull-up routine.
3: No, Buzz. We get jacked up because electric rates often go up during the hot summer months. Good thing people can lock in an affordable electric plan with APG&E.
4: Learn more at APGE.com.
5: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
7: ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
8: खराब मौसम के बावजूद धूमधाम से जारी चार धाम यात्रा, अब तक 30 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। केदारनाथ धाम में भक्तों की संख्या 11 लाख पर। केदारनाथ में देखिए प्रशासन की शानदार तैयारी, बीमार श्रद्धालु का हेलीकॉप्टर से पहुंचाया गया हाय सेंटर, समय पर हो सका इलाज। वायुसेना की 94वीं एनिवर्सरी को लेकर शानदार तैयारी, हिंडन एयरफोर्स स्टेशन से होगी समारोह की शुरुआत। काशी में गंगा के ऊपर राफेल, तेजस और सुखोई भरेंगे शौर्य की उड़ान। केरल में मॉनसून की दस्तक का आज दूसरा दिन, कोची में जोरदार बारिश, मौसम हुआ सुहावना। देश दुनिया में मनाया जा रहा पर्यावरण दिवस, सूरत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ मां के नाम लगाया, लोगों से भी पौधा लगाने की अपील की। RBI की मॉनेटरी पॉलिसी के फैसलों का हुआ ऐलान, 5.25% रेपो रेट बरकरार, ब्याज दरों में किसी भी तरह का कोई भी बदलाव नहीं।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को।
8: नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रार्थना हो स्वीकार, और मैं हूं आपके साथ सरगम पंत श्रीवास्तव। अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास चल रहा है। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि जब इस माह में रविवार को सप्तमी की तिथि पड़ती है तो इसे भानु सप्तमी भी कहा जाता है। देखिए ये तिथि सूर्यदेव और भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त करने के लिए जानी जाती है। माना जाता है कि भानु सप्तमी पर सूर्यदेव की पूजा करने से करियर को नया आयाम मिलता है, साथ ही साधक को शारीरिक एवं मानसिक कष्टों से भी मुक्ति मिलती है। तो अधिक मास की इस भानु सप्तमी पर सूर्य उपासना कैसे की जाए, क्या क्या लाभ होंगे इस तिथि से, आपको आज के शो में ये तमाम जानकारी आपको मिलेगी।

0: भानु सप्तमी पर करें सूर्योदय का सत्कार। सूर्य की लालिमा दूर करेगी नेत्र विकार। त्वचा संबंधी कष्टों से मिलेगी मुक्ति। मिलेगा मान सम्मान और बढ़ेगी सकारात्मक ऊर्जा की शक्ति। ज्येष्ठ का महीना रविवार और सप्तमी की तिथि। माना जाता है कि जब ये मंगलकारी संयोग बनता है तब ये तिथि सूर्य सप्तमी या भानु सप्तमी कहलाती है। माना जाता है कि ये सूर्य देव की साधना करने से सौभाग्य और ज्ञान का वरदान मिलता है और साथ ही सूर्य नारायण की साधना करने से आपके कारोबार में सफलता पाई जा सकती है। सूर्य यानी नवग्रह का राजा। वेदों में सूर्य को जगत की आत्मा कहा जाता है। पूरे ब्रह्मांड का केंद्र और संपूर्ण जगत को गति प्रदान करने वाला सूर्य ही है। अपनी रोशनी और ऊर्जा से पूरी धरती का पालन पोषण करने वाला सूर्य जागृत देव हैं। पंचांग के अनुसार हर महीने में दो बार शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में सप्तमी की तिथि आती है और जब ये तिथि रविवार के दिन पड़ती है तो वो तिथि भानु सप्तमी कहलाती है। चलिए जानते हैं कि किस तिथि को पड़ रही है अधिक मास की भानु सप्तमी। अधिक मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि 7 जून से लग रही है। 7 जून सुबह 2:40 पर सप्तमी तिथि शुरू होगी। 8 जून को सुबह 3:24 पर इस तिथि का समापन होगा। 7 जून को सूर्योदय के समय सप्तमी तिथि मिल रही है और रविवार भी है, इसलिए अधिक मास की भानु सप्तमी 7 जून को ही मनाई जाएगी।
1: जब भी ज्येष्ठ मास में कृष्ण पक्ष में सप्तमी का दिन जो होता है उसे भानु सप्तमी कहते हैं और इस बार तो अधिक मास में पड़ने वाली इस भानु सप्तमी का ऐसे महत्व समझिए कि आज ही के दिन भगवान सूर्य नारायण के प्रथम बार उनके अश्व का जो 7 अश्व हैं जो उनका रथ है उस पर प्रकट पहली बार ही दर्शन हुए थे। देवताओं को भी समस्त प्राणियों को सर्वप्रथम आज के भानु सप्तमी के दिन ही सूर्य नारायण के दर्शन उनके रथ पर हुए थे जिसमें 7 घोड़े जुटे हुए हैं।
0: माना जाता है कि इसी तिथि पर भगवान सूर्य देव 7 घोड़ों के रथ पर सवार होकर पहली बार प्रकट हुए थे और उन्होंने अपने तेज से पूरे संसार को प्रकाश से युक्त किया था। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि भानु सप्तमी के दिन की जाने वाली सूर्य पूजा से जीवन में सुख समृद्धि और आरोग्य की प्राप्ति होती है। मत्स्य पुराण कहता है कि ये तिथि पूरी तरह से भगवान सूर्य देव को समर्पित है। इस दिन किए गए स्नान दान और पूजा का फल कई गुना ज्यादा मिलता है। इस दिन सूर्य देव की पूजा का विधान है। मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन की सभी समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है। सूर्य देव को अर्घ देने से जीवन में खुशहाली और शांति आती है।
1: सबसे पहले इसमें सुबह उठकर स्नान आदि करके व्रत उपवास रखा जाता है और फिर सूर्य की पूजा की जाती है और सूर्य को पूजा करने के बाद स्नान करने के बाद किसी गरीब ब्राह्मण को तांबे के बर्तन और उसमें गेहूं अनाज आदि भर के और शुद्ध घी भर के स्वर्ण दान अगर सक्षम हो तो वो करें और जो लाल रंग के वस्त्र आज ब्राह्मण को दान करता है वही पुण्य फल पूर्ण रूपेण प्राप्त कर लेता है।
0: भानु सप्तमी के दिन सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, फिर सूर्योदय को तांबे के लोटे में जल दें। अब घर के मंदिर में दीपक जलाएं, फिर आरती करके व्रत का संकल्प लें। इसके बाद सूर्य देवता के मंत्रों का जाप करें, संभव हो तो सूर्य चालीसा का पाठ भी करें। सूर्य देव से घर की खुशहाली की प्रार्थना करें। ज्योतिष शास्त्र मानता है कि इस दिन सूर्य नारायण की विधिवत उपासना करने से उत्तम सेहत सौभाग्य और ऐश्वर्य का वरदान पाया जा सकता है। सभी जानते हैं कि ब्रह्मांड की ऊर्जा और प्रकाश का कारण सूर्य ही है। ज्योतिष में सूर्य ही राज्य, औषधि, पिता और खाने पीने की चीजों का कारक माने गए हैं। जानकार बताते हैं कि भानु सप्तमी की तिथि पर सूर्य उपासना करने से बड़ी समस्या का उपचार संभव है।
1: सूर्य नारायण को अर्घ देना आज के दिन विशेष पुण्यदायी और विशेष क्रिया है और सूर्य को जल देने के समय पे सूर्य का जो मूल मंत्र है ओम घणे सूर्याय नमः, इस मंत्र का जाप करते करते इस प्रकार से अपने दोनों हाथ उठाकर जल दें कि उस जल की अंदर से सूर्य की किरणें आपके शरीर पर पड़े, तभी आपको पुण्य फल प्राप्त होगा। और दूसरा, गायत्री मंत्र का जाप करना आज विशेष पुण्यदायी साबित होगा।
0: कहते हैं सूर्य देव की आराधना से भक्त सभी शक्तियों और गुणों का स्वामी बन सकता है, शास्त्रों और जानकारों की माने तो सूर्य उपासना इंसान को यशस्वी, तेजस्वी और निरोगी बनाती है। सूर्य उपासना से शरीर का बहुमुखी विकास होता है। सूर्य उपासना से ज्ञान, सुख, पद, प्रसिद्धि, सफलता मिलती है। कारोबार या नौकरी में समस्याएं आ रही हों, तो सूर्य की उपासना लाभकारी होती है। सूर्य के कारण व्यक्ति को राजकीय सेवा भी हासिल होती है। तो देखा आपने कितनी कल्याणकारी है सूर्य की उपासना। माना जाता है कि सूर्य को नियमित अर्घ देने से आपका पूरा जीवन सवरने लगता है। तो देखो, भानु सप्तमी पर सूर्य देव को अर्घ देने के नियम क्या होंगे, साथ ही सूर्य संबंधी किन महाप्रयोगों से आपके जीवन में खुशियों का संचार होगा, ये सब आपको बताएंगे। तब तक आप देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार।
2: सारी सृष्टि में ऊर्जा और प्रकाश का कारण सूर्य देव ही हैं और सूर्य से आरोग्यता का वरदान पाने की दिव्य तिथि है भानु सप्तमी। वैसे सूर्य को मजबूत करने का सबसे सरल तरीका सूर्य को अर्घ देने का है, पर अलग अलग समस्याओं में सूर्य से लाभ पाने के लिए कई पूजा विधियां भी बताई गई हैं। सूर्य देव की उपासना से आपकी हर मनोकामना पूरी हो सकती है, कैसे आइए जानते हैं।

0: रवि सप्तमी कहिए या भानु सप्तमी, ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि ये वो तिथि होती है जिस दिन आप अपनी कुंडली के सूर्य को बलवान करने के प्रयोग कर सकते हैं। माना जाता है कि सूर्य के मंत्रों का विधिवत जाप करने से सूर्य नारायण आपके जीवन से संकटों को दूर कर देते हैं। देव के साथ ब्रह्मांड की सैर पर निकलने वाले सात घोड़े संपन्नता का प्रतीक माने गए हैं। चाहे उत्तम सेहत की कामना हो या फिर संतान को बनाना हो तेजस्वी, या फिर आपकी चाहत हो समाज में पद प्रतिष्ठा की, जीवन का हर सुख भगवान सूर्य देव की कृपा से पाया जा सकता है।
1: किसी भी व्यक्ति को अगर आत्मविश्वास की कमी है, किसी व्यक्ति को सम्मान प्राप्त करने में दिक्कत आती है, किसी व्यक्ति को नेत्र संबंधी पीड़ा है और किसी व्यक्ति को चर्म रोग है, उनके लिए सबसे सुंदर तिथि है आज के दिन। जो व्यक्ति उपवास करता है, उनका पूजन करता है, इन रोगों से मुक्ति पा जाता है।
0: ये हम सभी के जीवन पर सूर्य देव की ही कृपा है जिनकी ऊर्जा से संसार की सभी जरूरतें पूरी होती हैं। अगर सूर्य की रोशनी ना होती तो इस संसार में जीवन भी ना होता। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि जो व्यक्ति नियमित रूप से सूर्य देव को अर्घ देता है, उसकी कुंडली का सूर्य मजबूत होता है। तो भानु सप्तमी पर आप सूर्य देव की कृपा पाने के लिए कैसे दें अर्घ, गौर से देखिए। उगते हुए सूर्य को या सूर्योदय के आधे घंटे के अंदर जल चढ़ाना श्रेष्ठ होता है। बेहतर होगा कि सादा जल अर्पित करें। ऐसे स्थान से जल अर्पित करें जहां से वो पौधों में जा सके। पीतल या तांबे के लोटे से ही जल अर्पित करें। जल अर्पित करते समय सूर्य देव की वंदना करें। जल अर्पित करने के बाद भगवान सूर्य का ध्यान करें, फिर आज्ञा चक्र और अनाहत चक्र पर तिलक लगाएं।
1: विशेष तौर पे आज के दिन नमक ना खाएं। व्रत उपवास में आज के दिन मीठा भोजन ही करना होता है, व्रत की पारायण के समय पर भी। और आज मिथ्या भाषण ना करें और दिन में सोने का बिल्कुल भी प्रयास ना करें। काला वस्त्र बिल्कुल धारण ना करें। आज रविवार के दिन स्नान करने के पश्चात उपवास करके और पश्चात व्रत के पारायण के साथ ही ब्राह्मण को तांबे का बर्तन घी भरकर दान करें और उसमें स्वर्ण डालकर अगर दान कर देंगे, ऐसी कोई मनोकामना आपकी नहीं जो पूर्ण होने से रह जाए।
0: सनातनी संस्कार कहते हैं कि किसी भी उपासना विधि का अहम हिस्सा होते हैं मंत्र जाप, जो पूजा उपासना में एक अद्भुत असर लाते हैं। सूर्य उपासना में भी सूर्य नारायण के मंत्रों का जाप बहुत प्रभावशाली माना जाता है और इसीलिए सूर्य उपासना में भी सबसे जरूरी है कि आप जल अर्पित करते समय सूर्य देव के मंत्रों का जाप करें। सूर्य उपासना के महाचमत्कारी मंत्र। ओम एहि सूर्य सहस्रंशो तेजो राशो जगतपते अनुकंपाय माम भक्ताय गृहणार्घाय दिवाकरः। ओम हिन हिन सूर्याय सहस्त्र किरणाय मनोवांछित फलम देहि देहि स्वाहा। ओम सूर्याय नमः। ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नहे सूर्यः प्रचोदयात्। जानकार बताते हैं कि मंत्र जाप सिर्फ अर्घ देते समय ही नहीं बल्कि अर्घ के बाद भी जरूरी होता है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य शुभ फल नहीं दे रहा तो आपके जीवन में अंधकार छाने लग जाता है। अगर सूर्य देव की कृपा पाने के कुछ उपाय किए जाएं तो इससे निश्चित ही लाभ मिलता है। सूर्य को बलवान या लाभकारी बनाने के लिए कौन से महा उपाय हम कर सकते हैं, गौर से समझिए।
1: किसी व्यक्ति को अगर किसी प्रकार भूमि प्राप्त करने में या उच्च पद प्राप्त करने में अर्थात प्रमोशन में दिक्कत आ रही हो, भानु सप्तमी के दिन उपवास करें, जहां उपवास करने के स्नान करने के पश्चात व्यक्ति को चर्म रोगों से, नेत्र पीड़ाओं से सम्मान प्राप्ति होने का तो लाभ होगा। विशेष तौर पर तांबे का बर्तन अवश्य दान करें। तांबे के बर्तन में गाय का शुद्ध घी और काली गाय का मिल जाए तो बहुत सुंदर, और उसमें एक सोने का कोई पात्र में डाल के टुकड़ा और सूर्य नारायण के मंत्रों के जाप करने के पश्चात किसी गरीब ब्राह्मण को दान दे दें, उसके पैर छूकर आशीर्वाद लें और उसको बोलें कि वो तंडुल अर्थात चावल और गेहूं और जौ आपके ऊपर छिड़क दे, तो आपकी मनोकामना पूर्ण होने से कोई नहीं रोक सकता।
0: भगवान सूर्य को जवा पुष्प या आग के पुष्प अर्पित करें। गुड़, गेहूं और तांबे के बर्तनों का दान करें। रविवार का उपवास रखें या सात्विक आहार ग्रहण करें। अगर कुंडली में खराब सूर्य की दशा चल रही हो तो रोज सुबह सूर्य को जल अर्पित करें। सुबह और शाम ओम आदित्याय नमः का जाप करें। रविवार को गुड़ और गेहूं का दान करें। सुबह की पहली किरण जिस तरह धरती का अंधकार दूर करती है, उसी तरह आपके जीवन को भी प्रकाशमान कर सकती है सूर्य उपासना। गीता का ज्ञान कहता है कि आपके कर्म आपका भाग्य सुनिश्चित करते हैं, और इसलिए अपने कर्मों में सुधार कीजिए और भगवान भास्कर की कृपा पाकर अपने जीवन में बिखेर लीजिए खुशियों का प्रकाश।
2: तो चलिए अब आपको लेकर चलते हैं भगवान सूर्य के उस दरबार में, जहां मान्यता है कि यहां भगवान सूर्य की उपासना प्रभु श्री नाम ने की थी। देखिए, कहते हैं कि यहां सूर्य की उपासना शालिग्राम स्वरूप में की जाती है।
0: ब्रह्मांड में ऊर्जा का स्तोत्र है सूर्य। वो साक्षात देव है। सूर्य की ऊर्जा से ही संसार में गति होती है। भगवान सूर्य की कृपा से साधक को आरोग्यता के साथ साथ आयुष्मान भव का भी वरदान मिल जाता है। वेदों से लेकर पुराणों उपनिषदों तक सूर्य की उपासना का विस्तृत वर्णन है। पांचांग में ऐसी कई तिथियां आती हैं जब सूर्य नारायण की उपासना को सर्वोपरि माना जाता है। सूर्य उपासना के लिए देश के कोने कोने से सूर्य मंदिरों की स्थापना की गई है। ओडिशा के कोणार्क और गुजरात के मोढेरा का सूर्य मंदिर तो विश्व विख्यात है, लेकिन आज हम आपको लेकर चलेंगे बिहार राज्य में, जहां फाल्गुन नदी के किनारे गया जिले में स्थापित है एक अद्वितीय सूर्य मंदिर। मान्यता है कि भगवान सूर्य इस धाम में अपने पूरे परिवार के साथ विराजमान है।
3: सूर्य मंदिर बिहार का पहला ऐसा सूर्य मंदिर है जिनमें सूर्य भगवान अपने समस्त परिवार के साथ है। सूर्य भगवान, उनकी श्रीमती छाया देवी,
4: उनके दोनों पुत्र हैं शनि और यम और अरुण सारथी, और साथ में सात घोड़े का रथ जिसमें एक चक्का लगा हुआ है जो शास्त्रीय प्रमाण को परिपुष्ट करता है।
0: दावा किया जाता है कि मंदिर का इतिहास काफी प्राचीन है। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि भगवान सूर्य की इस प्रतिमा को राक्षस गयासुर ने स्थापित किया था, इसीलिए ये लाखों साल पुरानी प्राचीन प्रतिमा है।
4: ये बहुत प्राचीन प्रतिमा है। इसके बारे में शास्त्रों में वर्णन है कि गयासुर के द्वारा यह स्थापित किया गया। पूरे सालिग्राम पत्थर की यह मूर्ति है, 7 फीट लगभग इनकी ऊंचाई है, और ये अपने पूरे परिवार के साथ है। जो इस तरह की मूर्तियाँ पूरे ऑल ओवर इंडिया में बहुत कम देखने को मिलती है।
0: स्थानीय पुजारी बताते हैं कि भगवान सूर्य की ये प्रतिमा दिव्य है, क्योंकि ये प्रतिमा शालिग्राम की शिला से बनाई गई है जिसकी ऊंचाई 7 फीट से भी ज्यादा है।
3: ये सूर्य नारायण प्रतिमा जो है पूरे बिहार में सबसे बड़ी एक आदमकद प्रतिमा है, जिसमें भगवान सूर्यदेव खड़ी मुद्रा में लगभग 7 फुट 4 इंच एवं चौड़ाई 4 फुट 2 इंच के लगभग। इस तरह की प्रतिमा अन्यत्र एशिया में कहा जाए भारतीय उप अथवा महाद्वीपों में कुछ एक ही सूर्य भगवान की प्रतिमा इतनी बड़ी होंगी, जैसा कि गया क्षेत्र में ब्राह्मणी घाट में स्थित भगवान सूर्य देव की प्रतिमा है।
0: वायु पुराण में लिखा मंदिर से जुड़ा पौराणिक इतिहास ये बताता है कि भगवान सूर्य देव की स्थापना यहाँ भगवान ब्रह्मा ने की थी जब उन्होंने यहाँ घोर तपस्या की थी।
3: जब ब्रह्मदेव यज्ञ करने गया क्षेत्र आए थे, यज्ञ उन्होंने किया था, सूर्यदेव की प्रतिष्ठापना उसी दरमियान भगवान सूर्यदेव जब गया क्षेत्र में सभी देवी देवताओं के साथ सूर्यदेव यहाँ आए थे। जैसे विष्णुपद मंदिर के अंदर षोडश वेदी में सूर्य पद, चंद्र पद, अग्नि पद, ये सभी पद यानी भगवान उस जगह आके खड़े हुए थे। तो ये प्राचीनतम ही है और प्रतिष्ठापित किया जाए तो अनेकों अनेक गया क्षेत्र में मंदिर देवता प्रतिष्ठापना किए गए।
0: मान्यता है कि इस धाम में माथा टेकने वाले हर एक श्रद्धालु को उसकी मुँह मांगी मुराद मिल जाती है, साथ ही मिलता है सूर्य देव से आरोग्यता का वरदान। परंपरा है कि इस धाम में सूर्य के सबसे प्रभावशाली स्तोत्र हैं। आदित्य हृदय स्त्रोत का जाप करने से संतान प्राप्ति में आने वाली बाधा का निराकरण होता है, साथ ही रोगों का नाश होता है और शरीर के हर प्रकार के चर्म रोग दूर हो जाते हैं।
4: यहाँ पूजन करने से हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती है, विशेष करके जिनको संतान में परेशानी है, जिनके घर में किसी तरह का कोई कष्ट है और खास करके चर्म रोग और शरीर से संबंधित जितने भी प्रकार के रोग हैं उसके उसमें लाभ होता है। और चर्म रोग के लिए तो एक नहीं अनेकों उदाहरण हैं, जिन्होंने इनकी उपासना की है, इनकी साधना की है, उनको प्रत्यक्ष का लाभ मिला है।
0: माना जाता है कि 7 घोड़ों के रथ पर सवार पूरे परिवार के साथ भगवान सूर्य इस धाम में भक्तों को दर्शन देते हैं, इसीलिए रविवार के साथ साथ साल के हर उत्सव पर सूर्य उपासना वाली तिथियों पर यहाँ उत्सव मनाया जाता है। इस अलौकिक सूर्य धाम में व्रतियों के साथ साथ श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। तो आप भी सृष्टि के प्रकाश पुंज कहे जाने वाले सूर्य देव के इस चमत्कारी मंदिर में आकर अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकते हैं।
2: तो प्रार्थना हो स्वीकार में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिलती।
6: Die Hard music fan? Quello Concerts brings you thousands of full-length concert films and behind-the-scenes music documentaries. From today's icons to yesterday's legends, we have it all. Quello Concerts by Stingray. Now available for free on Pluto TV. Stream now, pay never.
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
9: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
10: और दुर्भाग्य कहता है
11: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
9: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब देशवासियों से फॉरेन ट्रिप की बजाय स्वदेश घूमने की अपील की है, तो जीएनटी भी आप लोगों से अपने आसपास की खूबसूरत, ऐतिहासिक और दूसरी सैर सपाटा करने वाली जगहों की तस्वीरों को शेयर करने की लगातार अपील कर रहा है, और हम आपके भेजे गए उन वीडियोस को गुड न्यूज टुडे पर लगातार दिखा भी रहे हैं। तो चलिए आज आपको हिमाचल प्रदेश के हिल स्टेशन कसौली लेकर चलते हैं, जहां की खूबसूरत वादियां यकीनन आपको भी वहां जाने के लिए जरूर खींचेंगे। ये व्लॉग हमारे ही एक दर्शक ने हमें भेजा है।

0: आज हम आपको लेके आए हैं कसौली के सुंदर वादियों में। हिमाचल प्रदेश का ये एक ऐसा क्षेत्र है जो कि हरियाली, देवदार के पेड़ों, ओक के पेड़ों से सुंदर और शांत वातावरण में स्थित है। यहाँ के पर्यटक स्थल जैसे चर्च, सनसेट, मंकी पॉइंट, गिलबर्ट ट्रेल, जो मंकी पॉइंट है यहाँ का, वो इस क्षेत्र की सबसे ऊंचाई वाला क्षेत्र है और वहाँ का जो नज़ारा है, दृश्य है, वो बहुत ही दर्शनीय है। देश विदेश के यात्रियाँ यहाँ पे आते हैं और वहाँ का पूरा दृश्य हम देख सकते हैं। ग्रीनरी, हरियाली, जो कि सबके मन की शांति और विकास, विद्यार्थियों के पढ़ने लिखने के लिए बहुत ही उचित स्थान बताया गया है। और यहाँ पे जो गिलबर्ट ट्रेल है, ये पर्यटक और ट्रैकिंग के लिए बहुत फेमस है। एंड जो सनसेट पॉइंट है, वो सूर्यास्त का एक हसीन दृश्य प्रस्तुत करता है। सभी देशवासियों से अपील करती हूँ कि इस स्थल पे आके अपने एंजॉय कीजिए, अपने परिवार के साथ अधिक से अधिक मात्रा में यहाँ पे आए। और देश विदेश से घूमने से अच्छा है कि आप अपने प्रदेश, अपने इंडिया, अपने भारत की स्थल को जाने पहचाने, यहाँ की प्रकृति और संस्कृति से रूबरू हुए। ये जो कसौली है, ये चंडीगढ़ से 35 किलोमीटर की दूरी पर है। जैसे ही आप चंडीगढ़ से शिमला रोड पे आते हो, कसौली चौक पे, वहाँ से एक लेफ्ट टर्न आपको लेना होता है। कसौली चौक से आते आते एक सुंदर और एक बोर्डिंग स्कूल है, कसौली इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, वहाँ से ये थोड़ा सा 7 किलोमीटर की दूरी पर है। आप आए और कसौली के इस सुंदर और शांत वातावरण का इंजॉय लीजिए।
1: तो आप भी अपने देश में ही सैर सपाटा करने अपने गांव और शहर में सैलानियों को इनवाइट कीजिए। टूरिज्म को बढ़ावा देने के संकल्प में आप भी भागीदार बने। आपको करना बस इतना है कि अगर आपके आसपास कोई खूबसूरत जगह है या फिर आपके शहर में आने का कोई खास कारण है, तो उठाइए अपना कैमरा और बना दीजिए ब्लॉग, और फिर हमें 7303409922 नंबर पर व्हाट्सएप कर दें। हम उसे गुड न्यूज टुडे पर जरूर दिखाएंगे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: Hot Mics now streaming on TuneIn, your go-to show for explosive sports showdowns, bare-knuckle politics, raw Hollywood gossip, tech power plays, and pop culture chaos, hosted by yours truly, Billy Bush. Want to catch the latest episodes on your connected device? It's easy. One, set a reminder with your smart speaker by saying, remind me to listen to Hot Mics Monday through Thursday at 12 p.m. Eastern, 9 a.m. Pacific. Two, when it's time, just say, play Hot Mics on TuneIn. And you're in for unfiltered takes, A-list guests, and the stories everyone else is too scared to touch.
2: चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। TIT Bhopal, Gen Z's gateway to unbeatable placements.
6: चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह। अब तक 30 लाख से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन। बाबा केदारनाथ धाम में आंकड़ा 11 लाख के पार। वायुसेना के 94वें स्थापना दिवस की भव्य तैयारी, गाजियाबाद के हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर होगा समारोह। काशी में गंगा के ऊपर राफेल, तेजस और सुखोई भरेंगे उड़ान। केरलम में मॉनसून की दस्तक का आज दूसरा दिन, कोची में जोरदार बारिश, मौसम हुआ सुहावना। देश और दुनिया में मनाया जा रहा है पर्यावरण दिवस, सूरत में पीएम मोदी ने एक पेड़ मां के नाम के तहत लगाया पौधा, लोगों से की पौधे लगाने की अपील। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के फैसलों का ऐलान, 5.25% रेपो रेट बरकरार, ब्याज दरों में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं।

0: नमस्कार, मैं हूं नवजोत संधावा। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे, और गुड न्यूज टुडे पर सबसे बड़ी गुड न्यूज जिसका इंतजार पूरा भारत कर रहा था, मॉनसून की एंट्री हो चुकी है। कल केरलम के तट से टकरा गया है, तो उम्मीदों वाला मॉनसून इसको कहा जा रहा है। और ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इसी को लेकर आज हम करेंगे चर्चा। दरअसल देश में मौसम का मिजाज बदल चुका है। दक्षिणी राज्यों में मॉनसून ने अपनी एंट्री ले ली है, झमाझम बारिश वहां पर हो रही है। और अगर हम दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों की बात करें तो फिलहाल ये भी भीगे हुए हैं। हालांकि यहां पर असर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का है, लेकिन बाकी राज्यों में कैसा है मौसम, क्या कह रही है मॉनसून की चाल, आपके शहर में मॉनसून कब तक पहुंचने वाला है, इस साल कहां कितनी बारिश होगी, इस पर आज हम करेंगे बात। हमारे साथ होंगे मौसम वैज्ञानिक और साथ ही साथ एग्रीकल्चर एक्सपर्ट भी। तो चलिए सबसे पहले बात मॉनसून की चाल की ही कर लेते हैं, और मौसम का हाल क्या है वो भी आपको बता देते हैं। गुरुवार को केरलम के तट पर मॉनसून ने दस्तक दे दी है। अब तक अगर देखा जाए तो 7 दिन केरलम कर्नाटक में भारी बारिश होगी, ऐसा मौसम विभाग का कहना है। और इस दौरान कई तटीय इलाकों में तेज बारिश की भी संभावना है। तमिलनाडु में भारी बारिश होगी, और इधर अगर हम उत्तर पूर्व भारत की बात करें तो 5-6 दिन लगातार बारिश की संभावना वहां भी है। 2 से 3 दिनों में मॉनसून आगे बढ़ेगा। अनुकूल परिस्थितियों में मॉनसून आगे बढ़ेगा। जो खबर आ रही है वो यही है कि पुडुचेरी, लक्षद्वीप, तेलंगाना में 8 जून तक भारी बारिश की संभावना, यानी कि तब तक इन इलाकों में मॉनसून पहुंच जाएगा। जबकि मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में 2 दिन तापमान सामान्य के आसपास रह सकता है, क्योंकि कल शाम में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से दिल्ली एनसीआर पूरी तरह से भीगी, और आज भी वैसा ही मौसम रह सकता है। तापमान में थोड़ी कमी भी दर्ज की जाएगी, तो कई जगह अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। न्यूनतम तापमान की अगर बात की जाए तो 25 से 27 डिग्री के बीच रहने की संभावना है। यहां पर फिलहाल 1-2 दिन हल्की बारिश का अनुमान है। 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना भी है। फिर उसके बाद रविवार को आसमान साफ रहेगा, और रविवार को तापमान में हल्की बढ़ोतरी भी हो सकती है। तो मॉनसून जून के आखिर में दिल्ली पहुंचेगा। मॉनसून 15 जुलाई तक पूरे देश में सक्रिय हो जाएगा, यानी एक तरीके से पूरे देश को कवर कर लेगा। तो कृषि पर इसका असर कैसा रहेगा ये भी हम आपको आगे बताएंगे, और साथ ही साथ क्या कहता है आपके शहर का मॉनसून, यानी कब तक आपके शहर में मॉनसून दस्तक देने वाला है, इस पर भी डिटेल में आगे बात करेंगे। क्योंकि ये है उम्मीदों का मौसम, और इस पर बहुत कुछ टिका हुआ है, हमारे देश की इकोनॉमी भी।
1: अगर आप जो फिगर में देखेंगे कि मानसून केरला और कुछ कर्नाटक के हिस्से भी कवर किया है, और इसके अलावा तमिलनाडु के हिस्से आज कवर हुए हैं, और थोड़ा ब्यो बंगाल की ब्रांच कवर हुई है। तो इसका रीज़न यही है कि कंटिन्यूज अब जो कन्वेक्टिव एक्टिविटी है जहां इंक्रीज हो गई है, उसका रीज़न क्या है कि जो जहां वेस्टर्ली हवाओं की जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी बढ़ गई है, 4.5 तक है। लो लेवल में जो विंड्स हैं वो 20-25 नॉट्स हैं, और ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो मानसून है जहां उसके कारण वाइड स्प्रेड रेनफॉल एक्टिविटी रहा इस रीज़न में, तो हमने मानसून को जहां कवर किया है। अगर आप आने वाले दिनों की बात करें तो हमारा अनुमान ये है कि केरला, कोस्टल कर्नाटका, वहाँ पे वेरी हैवी रेनफॉल एक्टिविटी, वेरी हैवी मीन 12 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल एक्टिविटी ऑलमोस्ट पूरा वीक होती रहेगी। उसके साथ ही कर्नाटक, कोंकण, गोवा, वहाँ भी रेनफॉल एक्टिविटी, हैवी रेनफॉल होने का अनुमान है। तमिलनाडु, देन इंटीरियर कर्नाटका, जहाँ रेनफॉल एक्टिविटी ऑलमोस्ट हैवी रहने का अनुमान है। इसके अलावा भी जहाँ भी जो मानसूनल विंड फेवरेबल हो रही है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में भी, जैसे भी आज मानसून थोड़ा नॉर्थ ब्यो बंगाल तक टच किया, जो नॉर्थ पे की लाइन है, और आने वाले 2-3 दिनों में जहाँ भी रेनफॉल एक्टिविटी बढ़ जाएगी, हैवी वेरी हैवी रेनफॉल होने का अनुमान है। तो हमारा आने वाले दिनों में यही फोरकास्ट है, 2 से 3 दिन जो मानसून है, जो इवन इंटायर गोवा और कोंकण के कुछ हिस्से, महाराष्ट्र के कुछ हिस्से और कवर कर सकता है, कर्नाटक के हिस्से कवर हो सकते हैं, आंध्र के, तमिलनाडु के जो हिस्से वो और कवर हो जाएंगे, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के कुछ हिस्से कवर होने का अनुमान।
2: लेकिन अभी दिल्ली में आने में जो है थोड़ा सा वक्त जरूर लगेगा, लेकिन मौसम जो है वो लगातार बदल रहा है, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ भी आपने कहा था कि पहाड़ी राज्यों में जो है इस वक्त एक्टिवेट है, और उसका असर दिखने वाला है।
1: हाँ जी, अभी एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, वो समय नॉर्थ पाकिस्तान पे एक सर्कुलेशन की फॉर्म में है, स्ट्रेंथन में है और उसके साथ ही जहाँ जैसे WD बना हुआ है जो हवाएं भी अरेबियन सी से इस एरिया में आ रही हैं जिसके कारण आप थोड़ा ह्यूमिडिटी भी बढ़ जाती है और विच इज़ फेवरेबल फॉर रेनफॉल एक्टिविटी। तो हमारा यही है कि आने वाले 2 से 3 दिन जहाँ पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में एक्टिविटी रहेगा, जिसके लिए हमने जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड के लिए हमने रेनफॉल के साथ हेलस्टॉर्म का वार्निंग भी दिया है। पंजाब, हरियाणा हम अनुमान लगा रहे हैं जो हवाओं की गति है वो 50 से 60 किलोमीटर रह सकती है। इसके अलावा NCR दिल्ली की बात करें, वहाँ भी हमारा 2 दिन के लिए येलो अलर्ट है, वहाँ भी हमारा यह है कि 40 से 50 किलोमीटर तक हवाएं रहने का अनुमान है।
2: राजस्थान की अगर स्थिति की बात करूँ तो वहाँ पे इस वक्त जो है वो मौसम कैसा बना हुआ है, क्योंकि बीते कुछ दिनों पहले वहाँ पे लगातार आंधी जो है वो देखी जा रही है।
1: अभी वहाँ भी जैसे जब इसका इफेक्ट रहेगा क्योंकि हवाएं जैसे मैंने बताया अरेबियन सी से जा रही हैं, वहाँ भी हल्का फुल्का रेनफॉल रहेगा, वहाँ भी हवाएं जो हैं 50 से 60 किलोमीटर रह सकती है। कहीं ना कहीं ईस्ट राजस्थान में भी आज हेलस्टॉर्म होने का पॉसिबिलिटी है, MP में भी वहाँ जो हमारा ऑरेंज अलर्ट है वहाँ भी 50 से 60 किलोमीटर हवा रहने का अनुमान है।
2: तो जिस तरीके से जून के महीने की शुरुआत हुई, मतलब तापमान फिर भी थोड़े कम थे लेकिन गर्मी जो है देखी गई, अब लोगों को राहत मिल सकती है आने वाले दिनों में।
1: जी अभी क्या था पिछले कुछ दिनों में, कोई पहले तो एनीवे टेम्परेचर अभी भी सामान्य के पास ही है, ज़्यादा नहीं है, पहले सामान्य से काफ़ी कम थे, अब स्लोली क्या है कि टेम्परेचर सामान्य के पास है। अब इस डिस्टर्बेंस के प्रभाव से टेम्परेचर थोड़ा 2 से 3 डिग्री गिरने का अनुमान है, उसके बाद फिर टेम्परेचर थोड़ा बढ़ेगी।
0: चलिए वैसे बता दें कि गुड न्यूज ये है कि एक वेस्टर्न डिस्टरबेंस एक्टिव होने की वजह से दिल्ली से लेकर मुंबई तक वीकेंड बिल्कुल कूल रहने वाला है। और इससे पहले कि हम उम्मीदों वाले मॉनसून पर चर्चा करें, हमारे साथ मनीषा लड्डा से जान लेते हैं कि आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहने वाला है।
2: अब आने वाले 6 से 7 दिन अच्छा मौसम जो है वो रहने की उम्मीद है, अच्छी खासी बारिश जो है वो देखी जाएगी, 12 सेंटीमीटर से ज़्यादा जो बारिश है वो जो है उसका अनुमान जो है वो लगाया जा रहा है। लेकिन इसके साथ ही मैं ये चीज़ भी आपको दिखाऊंगी कि जो लगातार जो मानसून है वो आगे बढ़ते हुए नजर आएगा। तो इसके साथ ही साउथ से शुरू हुआ है लेकिन धीरे धीरे जो है वो नॉर्थ ईस्ट साइड में भी जो है मानसून जो है वो देखा जाएगा। लेकिन अगर मैं बाकी पूरे आपको देश की मैं स्थिति इस वक्त दिखाना चाहूँ कि किस तरीके से मौसम का हाल है वो आप इस मैप में देख सकते हैं। ये पूरा आपको ऑरेंज अलर्ट जो है जगह जगह आपको नजर आने वाला है, ऑरेंज या फिर येलो, लेकिन बारिश का अलर्ट जो है देश के अलग अलग राज्यों में इस वक्त आपको नजर आ जाएगा। एक पश्चिमी विक्षोभ जो है इस वक्त पहाड़ी राज्यों में जो है वो सक्रिय है, जिसका असर आप देख सकते हैं कि देखने को मिलेगा। ऑरेंज अलर्ट जो है वो दिया गया है, चाहे फिर वो हिमाचल की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, उत्तराखंड की बात की जाए, हर तरफ जो है ऑरेंज अलर्ट, साथ ही साथ हेल स्टॉर्म का भी अलर्ट जो है मौसम विभाग द्वारा जारी किया गया है। लेकिन इसका असर जो है वो मैदानी राज्यों पर भी पड़ता हुआ नजर आएगा और उसी को देखते हुए जितने भी हमारे प्लेन एरियाज है, चाहे पंजाब की बात हो, चंडीगढ़ हो, राजस्थान हो, दिल्ली NCR हो, उत्तर प्रदेश हो, सभी जगह जो है ऑरेंज अलर्ट, क्योंकि सामान्य से कम तापमान जो है वो लगातार बने लेकिन उमस की स्थिति जो है अरब सागर से उठती हुई हवाओं की वजह से बनी हुई, लेकिन आने वाले दिनों में लोगों को राहत मिलेगी। साथ ही साथ अगर हम राजस्थान के स्थिति की बात करी जाए तो वहां पर भी बीते कुछ दिनों से जो है धूल भरी आंधी जो है वो देखी जा रही थी, लेकिन अब थोड़ी सी कमी जो है उसमें देखी जा सकती है क्योंकि बारिश जो है उसके जो अनुमान है वो अब देखा जा रहा है। तो पूरे उत्तर भारत की बात हो या देश के हर एक राज्य में जो स्थिति है वो अब कुछ इस तरीके से ही नजर आने वाली है। मौसम एक बार फिर से अब बदलने वाला है, लोगों को चिलचिलाती और उमस भरी गर्मी से राहत मिलने वाली है। कैमरा पर्सन सचिन चंदो के साथ मनीषा लड्डा, दिल्ली।
0: चलिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर गुरुदत्त मिश्रा वेदर एक्सपर्ट हैं, आनंद आरा जी एनवायरमेंटलिस्ट हैं, डॉक्टर सुशील द्विवेदी एनवायरमेंटलिस्ट हैं, साथ ही साथ चौधरी रामकुमार वालिया हमारे साथ प्रेसिडेंट इंडियन किसान यूनियन एंड एग्रीकल्चर एक्सपर्ट भी हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुरुदत्त जी, शुरुआत में आप ही से करूंगी। देखिए, मौसम और मानसून दोनों का इंतजार हर किसी को रहता है और मौसम पे बहुत कुछ निर्भर करता है, हमारी एग्रीकल्चर, हमारी इकोनॉमी, हमारा मूड, हमारी दिनचर्या, सब कुछ उस पर डिपेंड करता है। इस बार भले 4 दिन की देरी से मॉनसून ने दस्तक दी है, लेकिन क्या हम इसको उम्मीदों वाला मॉनसून कह सकते हैं?
3: देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो लगातार बहुत गर्मी पड़ रही थी, आपने देखा होगा बीच में, और उससे थोड़ा सा राहत तो है इंडिया में, और अभी 7 तारीख तक ऐसी राहत बनी रहने वाली है। अभी जो तापमान है अधिकतम हो या न्यूनतम सामान्य के आसपास बने हुए हैं, लेकिन 7 तारीख के बाद जो मैदानी इलाके हैं, सेंट्रल इंडिया, नॉर्थ वेस्ट इंडिया, फिर से उसमें तापमान में हल्की सी बढ़ोतरी हमको देखने को मिलेगी। सबसे अच्छी बात यह कि जो मौसम विभाग ने साल पूर्वानुमान किया है कि जो वर्षा होगी 90% प्लस माइनस 4% होगी, जो पूर्वानुमान है। और थोड़ा सा लेट आया केरला में, लेकिन मानसून आ गया। अभी लगातार एक दो दिन में जो साउथ की और भी तमिलनाडु कर्नाटक है गोवा है वो राज्यों में बढ़ जाएगा मानसून, और धीरे धीरे मानसून प्रगति पर है। पूरी अर्थव्यवस्था है 70% खेती पर निर्भर करता है,
4: उसमें खास
3: लोगों का पानी और सारी बातें हैं। थोड़ा सा लगातार इन सब बातों से काफी देश में काफी मतलब जो इतना तापमान एक्सट्रीम सुपर अलिनो कारण था, अलिनो का प्रभाव तो आगे रहेगा और हम आशा भी यही करते हैं कि आगे आने वाले दिनों में हमको अच्छी मानसूनी वर्षा मिले, क्योंकि जहां वर्षा नहीं होगी लोग तकलीफ में होंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जो आंधी तूफान कल भोपाल में भी काफी तेज आंधी से लोगों को नुकसान हुआ, पेड़ पौधे गिरे और ये प्री मानसून एक्टिविटी में खासकर ये गरज चमक के साथ स्थिति बहुत नाजुक होती है। लोग इसके बाद भी नहीं मानते रोडों में चलना, थोड़ी देर के लिए अपने किनारे खड़े हो जाए, कार हो स्कूटर है मोटरसाइकिल है जो भी है, क्योंकि आंधी में पेड़ गिरने की संभावना है। और ये लगभग मैदानी क्षेत्र में पूरे भारत में ये प्री मानसून एक्टिविटी बनी हुई है, चाहे वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण हो चाहे चक्रवाती हवाओं का प्रभाव हो, अभी भी बना हुआ है और 7-8 तारीख तक लगभग यही स्थिति जो आज की है बनी रहेगी। उसके बाद थोड़ा सा तापमान में बढ़ोतरी होगी और हम तो आशा यही कर रहे हैं कि आने वाला मानसून धीरे धीरे पूरे जो देश में है फैलेगा बढ़ेगा और अच्छी वर्षा होना चाहिए।
0: सर एक चीज क्लियर कर दीजिए, हालांकि देखिए केरल के तट पर मानसून पहुंच चुका है, तमिलनाडु में भारी बारिश हो रही है, येलो अलर्ट इन दोनों राज्यों के लिए है, जो उत्तर भारत में स्थिति बनी है जो कि थोड़ी सी राहत दिल्ली एनसीआर हो, पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश का इलाका हो, राजस्थान का इलाका हो, जो थोड़े भीगे हैं, ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इसको कहेंगे या हम इसको प्री मानसून बारिश कहें?
3: देखिए है तो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी है, लेकिन चूंकि मानसून वहां नहीं आया इसलिए हमको प्री मानसून ही मान के चलते हैं। है तो साइसर और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कारण से अरब सागर से नमी आ रही है, तो ये प्री मानसून एक्टिविटी है। जहां मानसून एक बार प्रवेश हो जाता है और घोषित हो जाता है फिर वो प्री मानसून की बात नहीं होती वहां पर। जैसे केरला वगैरह में मानसून आ गया प्रवेश हो गया तो वहां प्री मानसून की स्थिति नहीं होगी, लेकिन जहां मानसून नहीं डिक्लेयर हुआ है नहीं आया है वहां प्री मानसून ही कहलाएगा, चाहे वो चक्रवाती हवाओं से हो चाहे पश्चिमी विक्षोभ से हो। ये कि कम से कम पानी आ गया गिर गया, लोगों को तापमान में राहत मिली, थोड़ा सा राहत है तो ऐसी राहत रहे अच्छी बात है, लेकिन बहुत दिनों तक ये रहेगी नहीं होंगी, थोड़ा सा राहत कमजोर हो जाएगी।
0: क्यों उम्मीदों वाला, डॉक्टर सुशील द्विवेदी आपके पास आ रही हूं, क्यों इसको उम्मीदों वाला मानसून कहा जाए? देखिए हर चीज इस पर डिपेंड होती है, जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा हमारी इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, मूड्स, हमारी हेल्थ, सब कुछ इस पर डिपेंड करता है। 4 दिन की देरी हुई लेकिन बावजूद इसके चलिए एंट्री हो चुकी है अच्छी खासी बारिश और अगले 7 दिन तक कई जगहों पर येलो और ऑरेंज अलर्ट केरल और तमिलनाडु में जारी किया गया है। 70-90% हिस्सा मानसून का जो होता है टोटल बारिश का वो मानसून पे ही डिपेंड करता है। इस बार किस तरह की स्थिति देखते हैं आप?
5: आप पूरी तरह से आसान हुए थे और मानसून तो वैसे भी खुशियां लाता है। आपको याद होगा हम सब लोग बचपन से देखते आए हैं, जब भी मानसून होता है तो आसपास खुशियां बिखेर देता है। आपने हमने सिनेमा में भी अक्सर देखा होगा कि हर सिनेमा हर फिल्म में एक न एक सीन रखा जाता है मानसून या बारिश का। बारिश का नाम ही है खुशियां लाना। और चूंकि भारत अपना देश है जो ये एग्रीकल्चर रिच इकोनॉमी है, हमारे यहाँ जो पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था एग्रीकल्चर पे आधारित है। मैं विशेष रूप से बुंदेलखंड से ताल्लुक रखता हूं तो वहां तो आपने अभी परिस्थितियां खुद देखी कि पिछले मई में आपने देखा कि भारत में जो अधिकतम तापमान का जो रिकॉर्ड है वो बांदा बुंदेलखंड में रिकॉर्ड किया गया। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर इतनी ज्यादा तापमान देखने को मिल रहा था, लोग झुलस रहे थे, लोग कहीं ना कहीं से ऐसे लोग जिनके पास संसाधन नहीं थे, आमतौर पे गरीब लोग या फिर जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज लोग, बूढ़े लोग या जिनके पास संसाधन उतने नहीं है। तो निश्चित ही जब जैसे ही मानसून आता है तो ना केवल हम इंसानों को खुशियां होती बल्कि आपने देखे होंगे कि जो हमारे आसपास की जैव विविधता है, कीड़े मकोड़े हैं, पतंगे हैं, मधुमक्खी भी है या जो भी जीव जंतु हैं, वो सब खुशी से सराबोर हो जाते हैं और एक प्रकार का एक अच्छा माहौल बनता है। और ये सभी माहौल मिलके भारत की समृद्धि की ओर ले जाने का एक संकेत बनता है। तो अगर सही मानसून सही समय पर और उचित इंटेंसिटी के साथ आ रहा है तो निश्चित ही इस देश की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी और चारों तरफ खुशहाली आएगी और कहीं ना कहीं से एक प्रगति का मार्ग प्रशस्त होगा।
0: बिल्कुल, लौटती हूँ सर आपके पास। चौधरी राम कुमार वालिया जी आपके पास आऊंगी, आप प्रेसिडेंट भी है इंडियन किसान यूनियन के, एग्रीकल्चर एक्सपर्ट भी है। सर एक छोटा सा अपडेट, क्योंकि इस साल कहा जा रहा है कि 10% कम होगी, जो सामान्य बारिश होती है उससे 10% कम होगी। अलनीनो का असर है और जून में थोड़ा सा कमजोर रहने वाला है, लेकिन मानसून सितंबर तक एक्टिव रह सकता है, ये कहा जा रहा है। कृषि और किसानी क्षेत्र में किस तरह की उम्मीदें हैं इस बार?
6: निश्चित तौर पर वर्तमान में किसान के धान की बुआई का काम चल रहा है, इसी के साथ मक्का, ज्वार, सोयाबीन आदि की बुआई का काम है। ऐसे में यदि खाली बारिश आती है तो किसान के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक है। बस भगवान से प्रार्थना ये है कि ओलावृष्टि ना हो, आंधी तूफान ना आए। यदि खाली बारिश आ रही तो बारिश से किसान को कोई नुकसान नहीं, जमीन अच्छी नमी आएगी, जमीन के अंदर जमीन उपजाऊ होगी और धान की जो बुआई का काम है वो बहुत अच्छे से हो सकेगा। तो बारिश का तो हम स्वागत करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं बारिश ही आए, आंधी तूफान ना आए, ओलावृष्टि ना हो। तो बारिश तो सबके लिए लाभदायक है, इसमें कोई दो राय नहीं।
0: बिल्कुल, चलिए आगे इसी पर अपडेट आपसे लेंगे। आनंद आरा जी, अब आपके पास आती हूँ। देखिए सर, एक आंकड़ा और मैं यहाँ पर रख देती हूँ, जिसमें साल 2020 से 25 तक अगर देखा जाए तो सबसे कम बारिश 2021 और 2023 में हुई थी। हालांकि पिछले साल औसत से अधिक बारिश हुई है, 937 mm बारिश दर्ज की गई है। अमूमन सर कितनी एक्सपेक्टेशंस रहती हैं?
7: देखिए, नॉर्मली अगर हम नॉर्मल मानसून की बात करें तो यही अपना 30-35-40 इंच के करीब बरसात होती है साल में। पर इस साल इसकी जो महत्ता है वो शायद बढ़ जाती है, क्योंकि इस बार ये जो मिडल ईस्ट के अंदर वॉर छिड़ा हुआ है उसकी वजह से फर्टिलाइज़र की अवेलेबिलिटी वो थोड़ी सी बाधित हो सकती है। तो इसलिए इस मानसून का आना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे ही आपकी पूरी जो इस समय की खेती है आपकी है, तो वो समर की जो बुआई वगैरह हो रही है, धान है, ये हमारे स्टेपल फूड्स हैं, तो इनके लिए ये होना बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि अभी वालिया जी ने कहा कि आंधी ना आए, ओलावृष्टि ना हो, तो अगर बारिश जो कि फोरकास्ट है कि 90% भी है पर सितंबर तक इसकी आशा है, तो और ये बीच बीच में होती रहेगी तो ये एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छी होगी। और इसमें हो सकता है कि इसकी वजह से जो थोड़ी बहुत फर्टिलाइज़र की कमी हो, वैसे तो सुनने में तो यही आया है कि सरकार ने पूरे इंतजाम कर रखे हैं कि पूरा फर्टिलाइज़र सारे देश के अंदर अवेलेबल हो, और जो उसकी एडिशनल कॉस्ट है उसकी सब्सिडी भी बढ़ा दी गई है, तो जिससे किसान के ऊपर ज़्यादा बोझ ना पड़े। पर इन सब चीज़ों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि टाइमली बारिश अच्छे तरह से पूरे पीरियड में स्प्रेड होना, और अगर अब इस समय अगले 3 हफ्ते के अंदर अच्छी बारिश हो जाती है तो जो धान की खेती हुई है उसके लिए जो रोपाई हो रही है उसके लिए ये बहुत ही फायदेमंद होगा। और यह तो है कि भाई अब इस समय जो हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, जलवायु परिवर्तन की बात करते हैं, तो मेरा तो ये कहना है कि अब जो हमारी जो नॉर्मल होता था अब वो नॉर्मल नहीं है, हमें एक न्यू नॉर्मल ढूंढना पड़ेगा। क्योंकि अब जो हम सोचते थे कि ना कभी इस तरह से होगा, ये नॉर्मल है, अब उसमें एक्सट्रीम इवेंट्स बहुत होंगे। जैसे आपने कल शाम को भी देखा होगा कि दिल्ली एनसीआर के अंदर किस तरह का हाहाकार मचा, कितने पेड़ गिरे, कितनी
0: इलेक्ट्रिसिटी,
7: कितना नुकसान हुआ। और कुछ एरिया तो ऐसे हैं कि जहाँ पे आज सुबह बिजली की आपूर्ति हो चुकी है। तो ये जो एक्सट्रीम इवेंट्स होंगे ना, ये बहुत ही खतरनाक हैं, और अब इनकी वजह से पूरा सबसे इम्पैक्ट जो है वो खेती पे पड़ेगा। तो इसलिए जो आपका जो आज की डिबेट का टाइटल है कि उम्मीदों से भरी मानसून, तो मैं आशा करता हूं कि ये सच्ची होगी।
0: बिल्कुल, उम्मीदों से भी भरा
7: और अच्छी होगी कि भाई इस तरह से हो, रेगुलर बारिश हो, पीरियडिक बारिश हो, तो उससे ना तो बाढ़ आएगी ना उससे किसी और तरह की नुकसान होंगे, और जी खेती के लिए जो है जो इस समय हमारी बैकबोन है और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है गांव में रूरल एरिया के अंदर, उसकी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस होगी।
0: गुरुदत्त जी आपके पास आते हो, अल नीनो के असर की भी बात हो रही थी इस पर।
3: देखिए इस साल सुपर अल नीनो का मतलब है कि जो प्रशांत महासागर में जो समुद्र का तापमान है, सतही तापमान है, करीब 5 डिग्री बढ़ा हुआ मिल रहा है। तो जब तापमान समुद्र का बढ़ता है तो निश्चित तौर पर ये हमारे एरिया को प्रभावित करता है, इंडिया को प्रभावित करता है, जिसमें ज्यादा गर्मी पड़ना, कम बारिश होना, कहीं कहीं एक्सट्रीम हो सकता है कि मतलब जो हमारे आर्य साहब ने बताया कि कभी अति बारिश की बात करूंगी, एकदम से बहुत तेज बारिश हो गई, फिर लगातार 15 दिन कोई बारिश नहीं हुई, कहीं थोड़ा सी बारिश हुई, तो ये जो मौसम का पूरा चक्कर है पूरा गड़बड़ा जाता है उससे। अब आगे कुछ कह नहीं सकते क्योंकि जो रफ्तार हुई मानसून की है वो कितना सपोर्ट करेगी, कितना आएगा अल नीनो, कितना प्रभाव करेगा, क्योंकि अल नीनो का प्रभाव तो है, क्योंकि इस बार हमने पिछली बार देख लिया कि जो एक्सट्रीम गर्मी पड़ेगी, लंबे समय तक तेज गर्मी पड़ेगी, पीरियड बहुत अधिक था दिन में, तो वो अल नीनो का प्रभाव है, दिख रहा है। और औसत मानसून की बात ये करते हैं, किसी शहर में 20 मिलीमीटर वर्षा हो गई, कहीं दूसरी जगह 200 मिलीमीटर हो गई, तो सामान्य तौर पर दोस्तों हम मान लेते हैं कि चलो दोनों को भाग देके मिला के नॉर्मल हो जाएगी, लेकिन जिसको 20 मिलीमीटर वर्षा मिली बहुत कम है, और जिसको 200 मिली वो भी उसके काम की नहीं क्योंकि ज्यादा बह गई। तो खेती में मुझे लगता है कि ऐसी तकनीक यूज करें कि कम दिनों की फसल बोएं या कम पानी वाली फसलों को बोएं, जिसमें कि अगर कहीं कोई बाद में भविष्य में खतरा होता है कम वर्षा का तो उससे हम बच सकें।
0: बिल्कुल इसी पर एक बार चौधरी रामकुमार वालिया जी, देखिए यही बात आनंद जी भी सुझा रहे थे, हमें वैकल्पिक चीजों की तरफ भी जाना होगा, चाहे हम मॉनसून के पैटर्न को देखें, मौसम के टोटल पैटर्न को देखें, जमीन को देख ले कहाँ कितनी उपजाऊ है, कहीं बहुत ज्यादा बारिश हो रही, कहीं बहुत ज्यादा कम हो रही, क्या इसको लेकर भी विचार हो रहा है?
6: आज भारत के किसान की दशा और दिशा खराब है, किसानों के बेटे खेती किसानी को नहीं करना चाह रहे हैं, उसका कारण ये है कि खेती जो है घाटे का सौदा बन के रह गई है, सरकारों को जो संरक्षण किसान को देना चाहिए वो नहीं दे रही, किसान के ऊपर आज दोहरी मार पड़ रही है, आज बरसात की और जिसको कहना चाहिए भगवान की मार भी किसान के ऊपर पड़ रही है, साहूकार की मार भी किसान के ऊपर पड़ रही है और सरकार की मार भी किसान के ऊपर पड़ रही है। ऐसे में यदि भारत कृषि प्रधान देश बनाना है, किसानों को बचाना है, खेती किसानी को बढ़ाना है, तो सरकार को किसानों को संरक्षण देना पड़ेगा। अब इसमें मुख्य रूप से देखिए, कीटनाशक दवाएं किसानों को फ्री सरकार मुहैया कराए, अच्छे फर्टिलाइजर सरकार किसानों को मुहैया कराए, सरकार किसान की पूरी फसल का बीमा कराए और उसकी फसल उसकी जो किस्त है वो खुद अदा करने का काम करे। अगर इस तरह से सरकार काम करेगी,
0: सर ये तमाम चीजें आप ठीक है, ये आपकी बात सही है, सरकारी स्तर पर ये काम हो भी रहा है और इस पर विचार भी हो रहा है। आपने कहा कि किसानों के बच्चे जो हैं, हम इस डिबेट में नहीं जाएंगे कि वो खेती करना चाहते नहीं, क्योंकि हमने हाल फिलहाल में ये बहुत जगह देखा है, विदेशों से लोग नौकरी छोड़ के भारत आ रहे हैं और अपनी अपनी जमीनों को संभाल रहे हैं, एक पक्ष वो भी है। लेकिन सर जो बात हो रही है, मौसम के पैटर्न जिस तरीके से बदल रहे हैं, जिस तरीके से कहीं ज्यादा बारिश हो रही है, कहीं कम बारिश हो रही है, क्या इसको देखते हुए अब इस बात को लेकर विचार हो रहा है कि फसल के पैटर्न को भी चेंज किया जाए या फिर दूसरी तरह की फसलें लगाई जाए, क्या ये हो सकता है?
6: देखिए हम भगवान से किसी तरह की ये नहीं कर सकते कि भगवान हमारी मर्जी से चलेंगे, प्रकृति हमारी मर्जी से चलेगी, प्रकृति अपने नियमों के अनुसार चलती है, प्रभु अपने नियम के अनुसार चलते हैं। अगर कहीं बारिश होनी है तो बारिश होगी, ओलावृष्टि होनी है तो ओलावृष्टि होगी। हम केवल जैसे एक छतरी से हम अपने आप को बचा सकते हैं, उसी प्रकार से कुछ उपाय करके खेती किसानी को बचा सकते हैं। हम बारिश को नहीं रोक सकते, ओलावृष्टि को नहीं रोक सकते, लेकिन कुछ उपाय जरूर कर सकते हैं कि हम अपनी खेती को बचाएं, अपनी फसल को बचाएं, और उसके लिए सरकार का संरक्षण देना, सहयोग देना बहुत ही जरूरी है।
0: सुशील जी इसी पर एक जवाब आपका, आप खुद बुंदेलखंड से आते हैं और इस मुद्दे को लेकर भी आपने कई बार बात रखी है, एक तो इसी को लेकर जवाब रखिए, और दूसरा सर बड़ी बात यह है कि बहुत बार हम पिछले कई सालों से इसको लेकर हम चर्चा भी करते आए हैं कि पैटर्न्स बदल गए हैं, सर्दियां देखिए बहुत कम हो गई, कुछ महीने

0: फिर वेस्टर्न डिस्टरबेंस आया, सर्दियों में वेस्टर्न डिस्टरबेंस नहीं आया लेकिन अब आ रहा है वेस्टर्न डिस्टरबेंस। किस तरह का ये पूरा पैटर्न बना है, असर इसका कितना धरती पर होता है? सुशील जी, डॉक्टर सुशील द्विवेदी सर आपके पास आती हूँ वालिया जी, एक बार डॉक्टर सुशील जी को बात रखने दीजिए, एनवायरमेंटलिस्ट हैं। सुशील जी मेरी आवाज आप तक आ रही है?
1: हेलो
0: जी जी सर अपनी बात रखिए इस पर।
1: जी जी
0: जी सर
1: जी जी जी मेरी आवाज आ रही
0: है? बिल्कुल सर सुन पा रहे हैं आप अपनी
1: जैसा
0: बात
1: आपने कहा कि आज जी जी आज जैसा आपने कहा कि आज के दौर में बिल्कुल अनिश्चितता की स्थिति है मौसमी चरम परिस्थितियों के कारण, और इसमें हमें और आपको कुछ ना कुछ विज्ञान के द्वारा हमें और आपको कुछ आसान जरूर नजर आ रही। आज के दौर में जो वैज्ञानिक सूखा प्रतिरोधी फसलें हैं जिन्हें
0: सुशील जी कुछ टेक्निकल इशू है शायद, लेकिन इसी सवाल का जवाब अगर आनंद जी आप रख दें तो आनंद आ रहे जी।
2: द्विवेदी जी की बात से ही मैं शुरू करता हूं कि एक तो जो हमारा जो स्पीशीज है, जो हम वैरायटीज ग्रो कर रहे हैं, और जो IARI जैसी संस्थाएं हैं जो ढूंढ रही हैं कि कौन कौन सी फसलें ऐसी हैं जिनमें पानी कम लगता है और जिनकी जो टाइम है उनका जो 90 दिन की जगह 60 दिन में हो, इस तरह की टेक्निक्स का तो काम हो ही रहा है और इसको पूरा बढ़ावा सरकार को देना चाहिए। और दूसरा ये है कि किसानी में जो भी अब हम खेती करें उसमें हमें एक टेक्निक है जिसको आई थिंक सारी दुनिया में चल भी रही है, छोटे स्केल पे चल रही है, कुछ छोटे स्टेट हैं लाइक इसराइल जहाँ तो प्रैक्टिकली वो पूरा कर रहे हैं, वो है हमारा ग्रीन हाउस। तो अगर हमें ग्रीन हाउस करना है उसकी इम्पोर्टेंस और बढ़ जाती है, क्योंकि जितना हमारा खेती का एरिया था वो धीरे धीरे करके इंडस्ट्रियल एरिया में कन्वर्ट होता जा रहा है।
0: बिल्कुल हाँ।
2: जैसे अगर आप दिल्ली के आसपास ही देखें, NCR में देखें, तो जेवर एयरपोर्ट ने कोई 5000 हेक्टेयर जमीन जो है वो एक तरह से उन्होंने एग्रीकल्चर जमीन के ऊपर वो घर और इंडस्ट्री लगा रहे हैं, एयरपोर्ट बना है। तो हमें एक दिन तो जाना ही पड़ेगा ग्रीन हाउस कल्चर पे। तो अगर वो टेक्निक्स हम अपनाना शुरू कर दें आज
0: जी,
2: तो अगले कुछ दिनों के मतलब अगले सालों में हमें जो लगता है कि किसी तरह फूड शॉर्टेज की समस्या उभर सकती है, हम उसका निदान कर सकते हैं।
0: बिल्कुल, चलिए यहीं से बात को चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है और ध्यान देने की भी जरूरत है। साथ ही साथ हम जानेंगे, सुशील जी भी हमारे साथ मौजूद है, आप भी अपनी बात रखिएगा, जानेंगे अभी कि मॉनसून ने 4 दिन बाद दस्तक केरल में दी है। केरल तमिलनाडु दोनों जगह पर येलो अलर्ट है, वहां पर अच्छी खासी बारिश हो रही है, 7 दिन तक ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। लेकिन क्या मॉनसून की रफ्तार बिल्कुल सही रहेगी? जैसा कहा जाता है कि जून के अंत तक उत्तर भारत में मॉनसून दस्तक दे देगा, इस पर बात करेंगे आगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत

0: Music for every mood lives on TuneIn. Whether you want to relax, focus, or turn things up, you'll find the right station. Hear from the top stations, like today's hits. Classic rock. Coffeehouse. And more. Stream nonstop music from stations you know and new favorites waiting to be discovered. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है

0: कि भाग्य कहीं दूर नहीं,
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: आपका स्वागत है। आया उम्मीदों वाला मॉनसून, चार दिन बाद दस्तक दी है, लेकिन इसे उम्मीदों वाला मॉनसून कहा जा रहा है। हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं जिनके साथ चर्चा कर रहे हैं। ब्रेक पर जाने से पहले वैकल्पिक तरीके क्या हो सकते हैं खेती के, और साथ ही साथ जो तरीके से मॉनसून की रफ्तार है, क्या वाकई हम इसको कह सकते हैं उम्मीदों वाला मॉनसून? डॉक्टर सुशील द्विवेदी, आपकी बात रह गई थी, अपनी बात रख दीजिए, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं।
1: वर्तमान में विज्ञान एक वरदान के रूप में सामने आ रहा है, जिसमें सूखा प्रतिरोधी फसलों को तैयार करने में हमारे वैज्ञानिक बहुत प्रमुखता से योगदान दे रहे हैं। साथ ही हमें और आपको माइक्रो इरिगेशन और ड्रिप इरिगेशन की तरफ भी सोचना पड़ेगा। इसके लिए हमें इजराइल और सिंगापुर या फिर ऐसे जगह से हमें सबक लेना पड़ेगा जहां पर वो पानी की हर एक कीमती बूंद का इस्तेमाल करते हैं। जब हमारी एग्रीकल्चर अच्छी होगी तभी हम आत्मनिर्भर भारत, जिसका सपना हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देखा है और पूरे देश के लगभग 145 करोड़ लोग आज ये मान के चल रहे हैं कि हम शायद दुनिया के लिए खाने का कटोरा के रूप में आगे आएंगे, लोगों को हम भोजन प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि भारत एक एग्रीकल्चर रिच इकोनॉमी है। तो जब हम इस प्रकार के नवाचार आविष्कार करेंगे, वैज्ञानिक जो प्रयोगशालाओं में काम करेंगे और वो जमीन पर उतरेंगे, तो निश्चित ही चारों तरफ फसलें लहलहाएंगी। साथ ही हमें आपको अपने एंशिएंट ग्रेन को अपनाना पड़ेगा, जिन्हें हम श्री अन्न कहते हैं, जिन्हें हम मोटे अनाज कहते हैं, क्योंकि वो न्यूट्रिएंट से प्रचुर होते हैं। इसी कारण उनको सुपर फूड भी कहा जाता है। उनमें रफेज होते हैं, वो इंटेस्टाइन की एक्सरसाइज कराते हैं, हमारे अंदर विशेष प्रकार के प्रीबायोटिक फिनोमेनन को अच्छे से बनाए रखने में मदद करते हैं। जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया है उनके लिए भोजन का आधार बनते हैं। तो ये विज्ञान ने प्रूव कर दिया है और हमारे जो पूर्वज थे बहुत पहले से श्री अन्न अर्थात मोटे अनाज का उत्पादन करते आए हैं। तो हमें धीरे धीरे, बुंदेलखंड तो इसमें अग्रणी रहा है, लेकिन जैसे जैसे हम और आप लोग विकास किए कालांतर में और हम लोग पश्चिम के विकास के मॉडल पे तरफ खींचते चले गए, जहां पर उपभोक्तावाद, ज्यादा से ज्यादा सामान खरीदने की होड़ और हमें चमकीली चीजों ने आकर्षित किया। तो हमें अपने एंशियंट नॉलेज को अर्थात इंडियन नॉलेज सिस्टम को अपनाना है, साथ ही मॉडर्न साइंस को आधार बना के और ऐसे नवाचार आविष्कार कुछ कंप्रोमाइज वे में करके और पानी की एक एक बूंद का इस्तेमाल करके निश्चित ही हम इस सपने को पूरा कर पाने में सफल होंगे, जो कि आत्मनिर्भर भारत का सपना होगा और जिसकी वजह से भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया के लिए एक मिसाल बनेगी एग्रीकल्चर रिच इकोनॉमी के रूप में।
0: बिल्कुल गुरुदत्त जी, आपके पास आते हुए सर, एक जो नॉर्मली अगर हम पैटर्न की बात करें, कहा जाता है कि 31 मई या 1 जून को केरल के तट पर मॉनसून दस्तक दे देता है, और 1 से 10 जून की बात करें तो केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पूर्वोत्तर के राज्यों को कवर करता है। 10 से 15 जून में महाराष्ट्र, गुजरात के जो तमाम हिस्से हैं, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, यहां तक पहुंच जाता है। 15 से 25 जून के बीच में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उत्तराखंड के क्षेत्र, और फिर अंत में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, पूर्वी उत्तर प्रदेश, यानी कि 27 जून के आसपास 30 तक ये मॉनसून पूरी तरह से कवर कर लेता है देश को, और फिर उसके बाद रिटर्निंग। इस बार सर, क्या जिस तरीके से अभी मॉनसून की चाल है, जहां एंट्री हुई है, क्या हम कह सकते हैं कि बिल्कुल सामान्य रफ्तार के साथ चलेगा या फिर कहीं ब्रेक लग सकता है?
2: देखिए, जो अभी परिस्थितियां हैं, दो चार दिन के अंदर जो कर्नाटक, तमिलनाडु, पांडिचेरी यहां पहुंचने वाला, जिस टाइप से विंड फेवरेबल विंड है, अगर यही धीरे धीरे रफ्तार रही तो दो चार दिन, जो सामान्य तिथि से दो चार दिन आगे भी मानसून को प्रवेश कर जाना चाहिए। अब इसमें यह होता है कि मानसून तो प्रवेश कर गया, लेकिन कितना सपोर्टिव सिस्टम रहेगा, कि कितनी ज्यादा वर्षा होगी, नहीं होगी या कम वर्षा होगी, ये भी निर्भर करता है। कई बार ऐसा होता है कि मानसून तो प्रवेश कर जाता है धीरे धीरे पूरे इंडिया में, लेकिन उतना या छोटे जो वर्षा हमको नहीं मिल पाती, जो हमको धान के लिए, क्योंकि अब ये खरीफ की फसल का समान है, तो हमको धान की फसल में पानी अच्छा लगता है, क्योंकि एक किलो चावल तैयार होने में करीब 2,500 से 3,500 लीटर पानी लगता है एक किलो चावल में, जबकि गेहूं में 1,500 लीटर लगता है, मक्का में आपका 900 लीटर पानी लगता है। तो धान को पानी काफी चाहिए, क्योंकि खरीफ फसल का जमाना है, और मानसून की रफ्तार और सिस्टम क्या होगा वो आगे देखेंगे, क्योंकि जो परिस्थितियां लीनो की हैं वो ऐसा हो सकता है कि बीच में हमको धोखा दे जाए, जुलाई अगस्त में कम वर्षा हो सकता है, जून में भी सामान्य से कम वर्षा होने की संभावना है भारत में। तो अभी जो रफ्तार चल रही है, मान के चल रहे हैं, अगर सामान्य स्थिति है तो जो नॉर्मल तिथि से एक दो दिन बाद मानसून धीरे धीरे हमारे देश के शेष भागों में बढ़ जाए।
0: और ये जो कहा जा रहा है कि इस बार सितंबर तक एक्टिव रह सकता है मॉनसून, सर
2: देखिए जून से लेकर सितंबर तक तो मानसून काल है ही 4 महीने का हमारे यहाँ, तो होता क्या है कि 15 सितंबर के बाद मानसून अक्सर कमजोर पड़ जाता है, लेकिन अगर कई बार अलिनो फायदा भी दे जाता है कि कहीं कहीं आखिरी समय तक हमको अच्छी वर्षा मिल जाती है, हो सकता है बीच में अलिनो के कारण से जो बीच का पीरियड है जुलाई अगस्त से कम हो और सितंबर में हमको रेन ठीक मिल जाए। तो ये उम्मीदों का साल है, जो मिल जाए बहुत अच्छा है, जितने कम उसमें खेती की जाए, कम पानी और कम दिनों वाली फीसों में बहुत अच्छा रहेगा। और परिस्थितियां हैं, चक्र है मौसम का, प्रभावित तो है, पूरा वर्ल्ड इससे परेशान है, कोई हम पर परेशान नहीं है, क्योंकि पर्यावरणीय परिस्थितियां बहुत अनुकूल हमारे नहीं है। हम धीरे धीरे परेशानी की ओर बढ़ रहे हैं, आबादी बढ़ रही है, जमीनी रकबा कम हो रहा है, पुल है आपके, खेल के मैदान है, बड़े बड़े बाईपास तो बनते जा रहे हैं। अब कम जमीन में हमको ज्यादा पैदावार देना है तो लोग क्या करते हैं कि अधिक लंबे दिनों की फसल बोते हैं तो उसको खूब पानी और खूब खाद की आवश्यकता पड़ती
0: उसको है। उसको लेकर हम चर्चा कर, बिल्कुल सही कहा सर, उसको लेकर चर्चा हो ही रही थी, दोनों एनवायरमेंटलिस्ट हमारे साथ हैं, उन्होंने अपनी अपनी बात रखी। एक बार आनंद जी आपके पास आते हुए, सर जिस तरीके से चाहे अल नीनो के इफेक्ट की बात करें या कहें कि मौसमी सीजन बदलते जा रहे हैं, उस हिसाब से आपने कहा कि हमें न्यू नॉर्म्स की तरफ जाना होगा, वो क्या हो सकते हैं?
3: नहीं देखिए, जैसे हम कहते हैं कि भाई 31 मई 1 जून को मानसून केरला में ब्रेक करेगा, यह एक एवरेज है, बड़े लॉन्ग टर्म एवरेज है। अब पिछले 10-20 साल का अगर हम हिसाब लगाएंगे तो ये जो न्यू नॉर्म, ये जो है ना पैटर्न बदल रहा है। और जैसे हम देखते हैं कि सितंबर के एंड के अंदर बहुत तेज बरसात होती है, क्योंकि अभी 6-7 साल पहले मैं आपको यहाँ इधर नोएडा और पूरे NCR के अंदर बहुत तेज बारिश हुई, इतना कि भाई जो वेटलैंड थी, जो तालाब थे, वो भर गए थे। इसी तरह अगर आपको याद हो 2010 के अंदर अक्टूबर 3 तक बारिश होती रही। ये सारे के सारे एक हमको आगाह कर रहे हैं, हमको बता रहे हैं कि आपका जो क्लाइमेट सिस्टम है वो कितनी बुरी तरह से ध्वस्त हो चुका है, और उसके लिए जो जो कार्य कर रहे हैं उसके लिए हमें जी जान से जुड़ना है। और वो सिर्फ इंडिया में ही नहीं होगा, उसके लिए इंडिया को वर्ल्ड वाइड अगर हमें विश्वगुरु भी बनना है, या जैसे कि हम थे कभी, अगर वो पोजीशन जिस हम आज सोच भी रहे हैं उसके बारे में, तो हमें इस क्लाइमेट चेंज के ऊपर सारी दुनिया में इस चीज़ के ऊपर इम्पैक्ट लाना होगा। और ये जैसे 3-4 ऑर्गेनाइजेशन बने हुए हैं, उनके जो रेजोल्यूशन होते हैं वो बस सिर्फ पेपर पे रह जाते हैं, ग्राउंड पे नहीं उतरते।
0: लेकिन सर हमारे यहाँ स्थिति कैसी है? आप जैसे आप हैं, सुशील जी हैं, ऐसे तमाम एनवायरमेंटलिस्ट हैं, सरकार के बहुत सारे एडवाइजर्स होते हैं इसको लेकर। अब देखिए, आपने एक एग्रीकल्चर को लेकर भी, खेती किसानी को लेकर भी एक आपने सजेशन दिया, लेकिन ये कितने माने जाते हैं सजेशन, एक्चुअल पोजिशन क्या, एक बार सुशील जी आप समझा दीजिए इसको लेकर। डॉक्टर द्विवेदी,
1: यस यस, देखिए हमें और आपको अपनी गवायतों की तरफ पीछे लौटना पड़ेगा। हमें और आपको कुछ ना कुछ ऐसे बदलावों की तरफ हैप्पीली स्वीकार करना पड़ेगा जो बदलाव मेरे आपकी एग्रीकल्चर को बेहतर करने में सहायक होंगे। मिसाल के रूप में आपको याद होगा कि पुराने समय में हमारी आपकी जो जरूरतें थी वो सीमित रहती थी और हम प्रकृति हितैषी जीवन जीते थे, मतलब हम प्रकृति के साथ एक अच्छा रिश्ता बना के रखते थे, प्रकृति के साथ हम संतुलन बना के रखते थे, प्रकृति के साथ हम अत्याचार नहीं करते थे, या हम कह सकते हैं कि हम प्रकृति की सुरक्षा में कहीं ना कहीं से अपना योगदान देने में अपना सहायता करते थे। अभी देखिए, वर्तमान में देखो, सरकार ने बहुत अच्छे कुछ इनिशिएटिव लिए हैं, जैसे एक मिशन लाइफ है जिसमें लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, मतलब मैं और आप अपने जीवन से अपने अपने इंडिविजुअल एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत क्या अच्छा काम करूं कि ये धरती, ये प्रकृति, एक अच्छी प्रकृति के एक धरती बनाने में मैं योगदान दे सकूं। दूसरा, जैसे अभी सरकार ने एक और इनिशिएटिव किया, खेत बचाओ अभियान, सॉयल को भी बचाना है, मिट्टी को बचाना है, क्योंकि जब खेत या सॉयल को बचाने में सफल होंगे तभी तो हम और आप लोग एक अच्छे से एक उत्पादन कर पाने में सहायक होंगे और दुनिया की जरूरतों को पूरा कर पाने में। साथ ही जैसे अभी मानसून आएगा, तो अब ये सरकार अपने अपने स्तर पर और आप सब मीडिया संस्थान भी इसमें बहुत जागरूकता फैला रहे कि लोगों को पानी की एक एक कीमती बूंद को बचाना है, मतलब कंजर्वेशन करना है, वाटर कंजर्वेशन, चाहे वो रेन वाटर जब हार्वेस्टिंग हो सकता है, चाहे वो खेतों में भी देखा होगा कि सरकार ने बहुत सारी सब्सिडी दी कि वहां पर लोगों से कहा कि आप सरोवर बनाइए और वहां पर तालाब सरोवरों को लिए उन्होंने सब्सिडी दी, एक अच्छी बात है। इससे जैसे बुंदेलखंड जैसे एरिया में जहां पर बहुत सारी जगहों पर डार्क जोन में तब्दील हो गया है एरिया, मतलब अब पानी को पुराने स्तर पर लाने में बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी, बहुत नीचे पानी चला गया है, तो ऐसी
0: ये स्थिति सर काफी एरियाज में हुई है। बिल्कुल, एक बार इसी को लेकर चौधरी रामकुमार जी आपसे कमेंट चाहूंगी कि खेती के पैटर्न को भी बदलना होगा। हमारे दोनों एनवायरमेंटलिस्ट, हमारे मौसम वैज्ञानिक, उन्होंने भी इसको लेकर अपने अपने सुझाव रखे हैं।
4: निश्चित तौर पर मैं दोनों की बात से सहमत हूं। हमें आज के दौर के अनुसार अपने खेती के पैटर्न को बदलना पड़ेगा। आज हमें जो हमारा पर्यावरण है उसके अनुसार चलना पड़ेगा, मौसम के अनुसार चलना पड़ेगा, आज के जरूरत के अनुसार चलना पड़ेगा, आज के मार्केट की मांग के अनुसार, ग्राहकों की मांग के अनुसार हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा। किसान के घर अगर संपन्नता लानी है तो किसानों को भी जागरूक होना पड़ेगा, जैविक कृषि को अपनाए। अब देखिए जैसे कि अब आजकल धान की बुआई का काम चल रहा है, आज किसानों को जैविक धान पर ध्यान देना चाहिए। अगर आम चावल की बात करें तो उससे जैविक चावल कई गुना ज्यादा महंगा है, तो इस प्रकार से हमें जैविक कृषि की तरफ भी बढ़ना चाहिए और अपनी खेती किसानी को तकनीकी रूप से अच्छे कीटनाशक दवाइयों का हमें उपयोग करना चाहिए, अच्छे खाद का उपयोग करना चाहिए, अच्छे पौधे का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। तो इस प्रकार से अच्छी फसल लेने के लिए हमें पढ़ा लिखा भी होना जरूरी है, जागरूक भी होना
0: जरूरी है। और बड़ी बात यह है कि मॉनसून का प्लस पॉइंट यह है कि वाटर कंजर्वेशन को भी लेकर जरूर इसको लेकर चर्चा करनी चाहिए। आखिरी सवाल गुरुदत्त जी, दिल्ली एनसीआर के लिए क्या गुड न्यूज है सुहावने मौसम वाली, कब तक?
2: लगातार कई दिनों से आप देखेंगे कितनी मानसून एक्टिविटी, चाहे वो नॉर्थ वेस्ट के कारण हो या डब्ल्यूडी हो रही है दिल्ली जैसी शहर में, खासकर एनसीआर में अभी इन दिनों काफी तकलीफों का मौसम रहता था, खासकर मई जून उमस भरी गर्मी, लेकिन राहत है, अभी भी दो चार दिन वहां राहत रहेगी क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ पाकिस्तान में अभी दिख रहा है, करीब 7-8 तारीख तक ये चलेगा,
0: ठीक है,
2: फिर ये थोड़ा सा चेंज आएगा इसके बाद, तो खुशी की बात है कि
0: असली राहत मानसून के साथ ही होगी, कब तक पहुंचेगा इंतजार उसका भी रहेगा, लेकिन कहा जा रहा है कि उम्मीदों वाला मानसून इस बार हो सकता है भारत में। फिलहाल यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप तमाम खास मेहमानों का साथ जोड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक ब्रेक, आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: thumbs up, you'll find the right station. Hear from the top stations like today's hits, classic rock, coffee house, and more. Stream nonstop music from stations you know and new favorites waiting to be discovered. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: मिडिल ईस्ट संकट के बीच ऊर्जा की बढ़ती खपत को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में कारपूलिंग की वकालत की थी। प्रधानमंत्री मोदी की अपील का असर मुंबई में देखने को मिला है। हाल के दिनों में नौकरी पेशा मुंबईकरों ने ऑफिस आने जाने के लिए बड़े पैमाने पर कारपूलिंग का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। लिफ्ट लो जैसे कम्युनिटी प्लेटफॉर्म्स पर रजिस्ट्रेशन कराकर लोग आने जाने के लिए गाड़ी शेयर कर रहे हैं, जिससे ईंधन और पैसे दोनों की बचत हो रही है।

0: मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन आवाजाही का बड़ा जरिया है। बावजूद इसके बड़ी संख्या में लोग रोजाना ऑफिस आने जाने के लिए कार का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसमें दो दिक्कतें हैं। एक तो ट्रैफिक जैम, दूसरा मिडिल ईस्ट संकट के बाद पेट्रोल डीजल की किल्लत और बढ़ती जा रही कीमत। लेकिन अब मुंबईकरों ने इस झंझट का एक स्मार्ट और सस्ता तोड़ निकाल लिया है, कार पूलिंग।
1: फ्यूल के प्राइसेस जैसे ही बढ़े, एक चीज नोटिस की गई है, वो है कार पूलिंग, जो एक बहुत पहले से भी एग्जिस्ट करती है, लेकिन कार पूलिंग की तरीके इस बार जो है वो बेहतर हो गए हैं। कार पूलिंग लोग ज्यादा करने लगे हैं।
0: मुंबई में कार पूलिंग अब एक बड़ा ट्रेंड बन चुका है। ठाणे, नवी मुंबई और कांदीवली जैसे इलाकों से बीकेसी या लोअर परेल जाने वाले नौकरी पेशा लोग अब अकेले गाड़ी चलाने के बजाय कार पूलिंग का इस्तेमाल करना पसंद कर रहे हैं।
2: पहले तो मैं, जब पेट्रोल प्राइसेस स्टेडी थे फॉर 3-4 इयर्स, तो मैं कार से ट्रैवल करता था अकेला, तभी इतना एक्टिव नहीं था कारपूल के ग्रुप में। बट अभी रिसेंटली जो 2-3 बार दाम बढ़े हैं पेट्रोल के, उसके बाद इट्स एक्चुअली पिंचिंग। सो 103 रुपए से 108 रुपए, फिर 108 से 111 रुपए हुए, तो इट्स स्टार्टेड पिंचिंग। सो वाया मेरे को लिफ्ट ले लो, वो जो ग्रुप है उसका रेफरेंस मिला, तो वो जो एडमिन है उसने मेरे को ग्रुप में ऐड कर लिया, और अभी धीरे धीरे लोग आ रहे हैं साथ में कारपूल में।
0: कारपूलिंग इको फ्रेंडली के साथ साथ बजट फ्रेंडली भी है। सड़कों पर कार की संख्या कम होने से ईंधन की खपत कम होती है, जिससे पर्यावरण को नुकसान कम होता है, साथ ही पॉकेट पर खर्च का भार भी कम हो जाता है। मकरंद परांजपे के मुताबिक कारपूलिंग से उन्हें 70% बचत हो रही है।
2: तो ट्रैवल टाइम तो थोड़ा बढ़ गया, या तो मोटा मोटी ऑलमोस्ट उतना ही रहा है। अगर मैं खर्चे की बात करूँ तो यू कैन से कि मेरा ऑलमोस्ट 70% खर्चा बच गया।
1: 70%, तो ये फ्यूल प्राइसेस पिंच करने की जगह अब आपकी बचत हो रही है।
2: डेफिनेटली, अगर ये कारपूल ग्रुप के बारे में मालूम नहीं होता, लिफ्ट ले लो के बारे में, तो शायद मैं जहाँ पे मैं 10 रुपए खर्च कर रहा था, आई वुड हैव एंडेड अप पेइंग 12-13 रुपए, बिकॉज 103 से 111 रुपए, तो काफी इट्स ऑलमोस्ट 10% हाइक इन द पेट्रोल फ्यूल प्राइसेस, सो इट्स अ गुड थिंग।
0: मुंबई में कारपूलिंग का ट्रेंड लिफ्ट ले लो के तौर पर पॉपुलर हो रहा है। लिफ्ट ले लो एक ऐप है जिस पर लोग अब तेजी से रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। लिफ्ट लेने वाले भी और लिफ्ट देने वाले भी। खुद महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र मोटर व्हीकल एग्रीगेटर रूल्स के तहत चुनिंदा एप्स को मंजूरी देकर कारपूलिंग को हरी झंडी दी है।
3: कारपूलिंग का जो इंक्रीज है, जो ट्रेंड इंक्रीज अगर देखा जाए तो काफी बड़ा है वो। जब हमारे 10th, आई स्टिल मतलब अभी भी याद है कि 10th मई था शायद, वो स्पीच में जब हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने वो लाइन सेंटेंस डाला था कि कारपूलिंग यूज़ करें, एंड उसके बाद से जब पेट्रोल के हाइक्स आए प्राइसेस में, तो उसके बाद जितना हमारे रजिस्ट्रेशन है अराउंड 30-40% ऑन डेली बेसिस तो बढ़े हैं।
1: 30-40%
3: बढ़ गया है डेली बेसिस पे रजिस्ट्रेशन, तो लाइक 150-200 रजिस्ट्रेशन ऑन डेली बेसिस होते हैं।
0: मुंबई में कारपूलिंग की पहल 2017 में शुरू हुई थी, लेकिन हाल के दिनों में मिडिल ईस्ट संकट की वजह से इसका चलन तेजी से बढ़ा है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ईंधन बचाने और ट्रैफिक कम करने के लिए कारपूलिंग के इस्तेमाल पर जोर दिया था, जिसका असर भी दिख रहा है। पिछले कुछ समय में अकेले मुंबई में राइड शेयरिंग रजिस्ट्रेशन में करीब 40% तक का उछाल आया है। ये आंकड़ा बताने के लिए काफी है कि कामकाजी प्रोफेशनल्स के बीच कारपूलिंग किस कदर

0: तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। मुंबई से विद्या के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: चलो आपको दिखाते हैं दक्षिण भारत में उत्सव के रंग। तमिलनाडु के अलग अलग मंदिरों में इस उत्सव की रौनक देखने को मिल रही है। परिमला रंगनाथर पेरुमल मंदिर में पूरी श्रद्धा उत्साह के साथ वसंत उत्सव मनाया गया, तो नागा कन्निका परमेश्वरी अम्मन मंदिर में पांचवें वार्षिक पाल कुडम उत्सव का भव्य आयोजन किया गया। वहीं थूथुकुडी के पेंची अम्मन मंदिर में 108 तिरुविलुक्कु पूजा का भव्य आयोजन हुआ।
0: आस्था और भक्ति की ये तस्वीरें तमिलनाडु के मियालादुथुरै की हैं, जहां परिमला रंगनाथार पेरुमल मंदिर में भव्य वसंत उत्सव का आयोजन किया गया। 5 दिनों तक चले इस उत्सव को यहां के पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। उत्सव की शुरुआत विशेष धार्मिक अनुष्ठानों के साथ हुई। उसके बाद देवी देवताओं का फल, हल्दी, दूध, चंदन और नारियल पानी जैसे पवित्र द्रव्यों से महाअभिषेक किया गया। परंपरा के मुताबिक मंदिर के प्रवेश द्वार के करीब बने उत्सव मंडप में एक सुंदर कृत्रिम कमाल का तालाब तैयार किया गया, जिसमें भगवान और देवी के उत्सव मूर्तियों को पूरी गरिमा के साथ स्थापित किया गया। वैदिक मंत्रोच्चार और पारंपरिक नाद स्वरम संगीत के बीच भगवान को सुंदर वस्त्रों और सुगंधित फूलों से सजाया गया और फिर भव्य दीप आराधना की गई। मान्यता है कि इस वसंत उत्सव में शामिल होने और भगवान के इस पावन रूप के दर्शन करने से जीवन में सुख, समृद्धि और पवित्रता का संचार होता है। तमिलनाडु के मियालादुथुरै से ही उत्सव की एक दूसरी तस्वीर है। कडलुंगड़ी गांव में नागा कन्निका परमेश्वरी अम्मन मंदिर के 5वें वार्षिक पाल कुडम उत्सव का भव्य आयोजन किया गया। इस धार्मिक अनुष्ठान में पारंपरिक दक्षिण भारतीय संगीत और नाथ स्वरम की मधुर धनों के बीच भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें श्रद्धालु परंपरा के मुताबिक दूध का कलश लेकर शामिल हुए। शोभा यात्रा के मंदिर पहुंचने के बाद भक्तों द्वारा लाए गए पवित्र दूध से देवी नागा कन्निका परमेश्वरी अम्मन का भव्य महाअभिषेक किया गया। पुजारियों के विशेष वैदिक मंत्रोच्चार और महाआरती के साथ उत्सव का समापन हुआ। थूथुकुडी के पेची अम्मन मंदिर का वार्षिक उत्सव परंपरा और रीति रिवाज के साथ मनाया गया। उत्सव का मुख्य आकर्षण दीप पूजा था। मंदिर परिसर में कतारबद्ध बैठी 108 महिलाओं ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच एक साथ पीतल के दीपकों को प्रज्वलित किया। महिलाओं ने माता पेची अम्मन के दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए दीपों को कुमकुम, हल्दी और सुगंधित फूलों से पूजा। इस भव्य धार्मिक अनुष्ठान का समापन देवी पेची अम्मन की महादीप आराधना के साथ हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: पीएम मोदी ने जब देशवासियों से फॉरेन ट्रिप के बजाय स्वदेश घूमने की अपील की, तो जीएनटी भी आप लोगों से अपने आसपास की खूबसूरत ऐतिहासिक जगहों की तस्वीरों को शेयर करने के लिए कह रहा है। हम आपके भेजे गए उन तमाम वीडियोस को गुड न्यूज टुडे पर लगातार दिखा भी रहे हैं। तो चलिए आज आपको बिहार के बेगूसराय लिए चलते हैं, जहां पर एक ऐतिहासिक राम जानकी मंदिर आस्था और विश्वास की जीती जागती मिसाल है। बताया जाता है कि इस मंदिर में अयोध्या से जुड़ी धरोहरों को संजो कर रखा गया है।

0: हेलो दोस्तों, वेलकम टू मिनी ब्लॉग। तो आपका स्वागत है एक छोटा सा ब्लॉग में घुमक्कड़ विशाल। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे सलोना बड़ी ठाकुरबाड़ी
1: का मुख्य द्वार है, तो मैं इससे अंदर प्रवेश कर रहा हूँ और सामने में ये प्यारा सा महल का यह दृश्य काफी सुंदर दिख रहे हैं, तो मैं इससे अंदर की ओर और बढ़ रहा हूँ।
0: सामने आप देख सकते हैं नागर शैली में निर्मित प्यारा सा लाल पत्थर से नक्काशी गई मंदिर जो ठाकुर जी को समर्पित है। यह मंदिर लगभग 300 साल पुराना है। इसे बनवाने में 16 वर्षों का समय लगा था, जो इस मूर्ति कला और स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना प्रदर्शित करता है। तो आप देख सकते हैं यह मंदिर ठाकुर जी रामलला को समर्पित है। काफी सुंदर पत्थर की नक्काशी मूर्ति स्थापित है अंदर, तो आपको हम नजदीक से दिखा रहे हैं।
1: मंदिर में सीता, राम, लक्ष्मण, हनुमान के साथ अन्य भी भगवान विराजमान हैं। रामलला का आशीर्वाद लेके अब मैं आगे मंदिर परिसर का भ्रमण करूंगा और आपको भी दिखाऊंगा। तो देखते रहे मंदिर को कितने अद्भुत तरीकों से तराशा गया है।
0: काफी सुंदर कलाकृति आप देख सकते हैं मंदिर की।
1: मंदिर के शिखर की छत पे आ चुका और यहाँ से आपको यह अद्भुत कलाकृतियाँ लाल पत्थर से निर्मित यह मंदिर आपको नजदीक से दिखा रहा हूँ। सामने आप देख सकते हैं पत्थर की बनी हुई गेट है। सब देखने के बाद इस परिसर में स्थित यह तालाब देख रहे हैं, यह काफी सुंदर हरा भरा चारों ओर वृक्ष लगा हुआ है।
2: तो अभी अपने देश में सैर सपाटा करने अपने गांव और शहर में सैलानियों को इनवाइट करना चाहते हैं, टूरिज्म को बढ़ावा देने के संकल्प के भागीदार बनना चाहते हैं, तो जल्दी से अपने आसपास की कोई खूबसूरत जगह का वीडियो बनाइए और हमें भेज दीजिए 7303409922 पर। हम आपका ये वीडियो गुड न्यूज टुडे पर दिखाएंगे।
3: जैक FM नाउ प्लेइंग व्हाट वी वांट कमर्शियल फ्री ऑन TuneIn Premium।
4: What you got for me, Jack?
3: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial free.
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
1: Get into the game with your favorite teams and never miss a game. Follow your teams on TuneIn and get live updates. Just select teams you want to follow on TuneIn and you'll get notifications like when the games start. Enjoy all the recommended stations, sports talk, and podcasts. Just favorite your teams and start listening.
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
6: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा, स्वागत है आपका चाय पर चर्चा में। आज सबसे पहले बात उस जंग की जो काला हिरण नाम की फिल्म पर छिड़ी है। एक तरफ सलमान खान है, दूसरी ओर प्रोड्यूसर अमित जानी है, और दोनों के बीच बात कैसे बिगड़ती जा रही है इसकी इनसाइड स्टोरी आज आपको बताएंगे।
7: नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। देखिए, बात हम रणवीर कपूर की भी करेंगे जिनकी फिल्म रामायण चर्चा में है। दावा है कि फिल्म का बजट 4,000 करोड़ का है। अब इस मेगा बजट को लेकर सवाल उठने लगे हैं और आवाज उठाई है मनोज बाजपेयी ने। उन्होंने क्या कुछ कहा है ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे।
6: नमस्कार, मैं अर्षा गुप्ता, स्वागत है आप सभी का चाय पर चर्चा में। बात देखिए मानसून की तो करेंगे, जिसने रफ्तार फाइनली पकड़ ली है और अब उसकी तेजी के साथ आगे बढ़ने की पूरी उम्मीद है। केरल बारिश से तरबतर है तो तमिलनाडु में भी ऐसे ही हालात नजर आ रहे हैं। आपके शहर कब पहुंच रहा है मानसून, कब होगी बारिश, आज आपको दिखाएंगे। और आज वर्ल्ड एनवायरमेंट डे भी है, ऐसे में आज आपको ऐसे घर की सैर पर लिए चलेंगे जहां प्रचंड गर्मी के बावजूद सालों से एयर कंडीशन की जरूरत ही नहीं पड़ी।
8: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका, मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। और इस शो में बात करेंगे मुंबई की भी, जहां पर इन दिनों कार पूल का कल्चर काफी तेजी से बढ़ रहा है। लोगों में साथ साथ एक ही कार से आने जाने का ट्रेंड बढ़ा है, तो कैसे मुंबई की नई आदत बन रहा है कार पूल, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले जल्दी से देख लेते हैं अभी की हेडलाइंस।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
10: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
11: TIT भोपाल, Gen Z's gateway to unbeatable placements.
12: गुजरात और दमन दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी ने विकास योजनाओं की दी सौगात। हजीरा में लार्सन एंड टर्बो की इंडस्ट्रियल फैसिलिटी का लिया जायजा। सूरत को 200 बेड वाले अस्पताल का तोहफा। शारदा यात्रा को लेकर श्रद्धालु में गजब का उत्साह। अब तक 30 लाख से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन बाबा केदारनाथ धाम में, आंकड़ा 11 लाख के पार। वायुसेना के 94वें स्थापना दिवस की भव्य तैयारी। गाजियाबाद के हिंडन एफओ स्टेशन पर होगा समारोह। काशी में गंगा के ऊपर रफेल, तेजस और सुखोई भरेंगे उड़ान। देश दुनिया में मनाया जा रहा पर्यावरण दिवस। सूरत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगाया एक पेड़ मां के नाम। पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण की अपील। भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर शानदार खबर, वित्तीय वर्ष 2025-26 में 7.7% रही जीडीपी ग्रोथ, जनवरी से मार्च की तिमाही में 7.8% की दर से हुई वृद्धि। नहीं बदलेगी आपके लोन की ईएमआई, आरबीआई ने रेपो रेट 5.25% रखी बरकरार, विदेश निवेशकों को लुभाने के लिए भी उठाए कदम।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: चलिए आज सबसे पहले बात करेंगे बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान की, जो कि एक ऐसे ताजा मामले में फिर सुर्खियों में हैं, जो उनके एक विवादित केस से प्रेरित बताया जा रहा है। दरअसल फिल्म प्रोड्यूसर अमित जानी की काला हिरन इन दिनों खूब विवादों में है। बताया जा रहा है कि इस फिल्म को लेकर सलमान खान की कानूनी टीम ने पिछले दिनों प्रोड्यूसर्स को नोटिस जारी किया था।
2: बिल्कुल देखिए, लेकिन इसके बाद एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, आई एम श्योर आपने देखा होगा, जिसमें प्रोड्यूसर अमित जानी ने यह दावा किया है कि उनको जान से मारने की धमकी मिल रही है। वहीं इसी बीच सलमान खान की ही दोस्त रही सोमी अली ने अमित जानी का सपोर्ट भी किया और मामला और ज्यादा सुर्खियां बटोरने लगा है।
3: इस पोस्टर ने बवाल काट रखा है, समझ लीजिए बॉलीवुड की नई लीग बॉर का ये अब नया पोस्टर है। फिल्म का नाम है काला हिरण। ये फिल्म अभी आई नहीं है, लेकिन आने से पहले ही इस फिल्म को लेकर ड्रामा शुरू हो चुका है। दावा है कि फिल्म सलमान खान के चर्चित ब्लैक बक पोचिंग केस और लॉरेंस बिश्नोई विवाद पर है। पोस्टर सामने आते ही फिल्म सुर्खियों में आ गई, लेकिन इसके बाद सलमान खान की लीगल टीम ने जो किया उसके बाद तहलका मच गया। इस नोटिस में फिल्म के प्रोडक्शन और प्रमोशन को तुरंत रोकने की मांग की गई थी। नोटिस में ये भी चेतावनी दी गई कि अगर सलमान के मामले से जुड़ा कंटेंट हटाया नहीं गया तो कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। ये नोटिस जैसे ही प्रोड्यूसर अमित जानी को मिला, उनका गुस्सा सातवें आसमान पर जा पहुंचा।
4: और एक मैसेज तो इनकी टूलकिट के द्वारा, अब वो असली है कि नकली है नहीं पता है, डी कंपनी के नाम से भिजवाया गया है।
3: अमित जानी ने यह भी आरोप लगाया कि पिछले 36 घंटों में उन्हें हजारों धमकी भरे मैसेजेस मिले हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि उन्हें पता है कि इन धमकियों के पीछे है कौन। वीडियो में अमित जानी ये कहते नजर आ रहे हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो धमकियों का जवाब दें या लीगल नोटिस का।
4: सलमान खान की टूल किट के द्वारा जो हजारों गालियां दिलवाई गई, भाई आप किस्म की धमकियां दिलवाई गई, उन धमकियों का जवाब दूं या इस नोटिस का जवाब दूं।
3: इस पूरे मामले में अब सलमान खान की एक्स गर्लफ्रेंड सोमी अली भी कूद पड़ी हैं। अमित जानी के वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए सोमी अली ने सोशल मीडिया पर लिखा कि जो लोग दोषी होते हैं वो छिपते हैं और धमकियां देते हैं। उन्होंने अमित जानी का समर्थन करते हुए कहा कि उन्हें फिल्म बनाने का पूरा अधिकार है। फिलहाल फिल्म काला हिरण का फर्स्ट लुक और टीजर 20 जून को रिलीज किए जाने की बात कही गई है। हालांकि नोटिस के बाद अमित जानी का कहना है कि ये सलमान खान की बायोपिक नहीं है, लेकिन फिल्म को लेकर उठे सवाल और बढ़ता विवाद इस बात का संकेत है कि काला हिरण की चर्चा अभी और तेज होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: देखिए, इस फिल्म को लेकर कंट्रोवर्सी हो रही है, लेकिन बहुत सारी ऐसी फिल्में होती हैं जो अलग अलग वजह से हिट होती हैं। हालांकि आम दर्शकों की अगर हम बात करें तो नॉर्मली हम लोग फिल्म क्यों देखने जाते हैं, किस चीज को, क्या हम हीरो की वजह से, स्टोरी की वजह से, स्क्रीन प्ले की वजह से, आपका क्या मानना है?
5: मुझे लगता है पर्सनल रीजंस होते हैं, हमने मेरा तो स्टार कास्ट ही होता है कि मुझे हीरो या हीरोइन में से कौन पसंद है या फिर कहानी क्या है।
6: मुझे लगता है समय के साथ मेरा पसंद काफी बदला है। पहले जब यंग एज में थे तब सिर्फ शाहरुख उसकी कोई भी फिल्म देख लो, लेकिन अब जो है मैं सिर्फ और सिर्फ कंटेंट देख करके जाती हूँ, अगर कंटेंट अच्छा है तो मैं जाती हूँ।
2: स्टारकास्ट तो ऑफ कोर्स इम्पोर्टेंट है, जो हमारे फेवरेट एक्टर्स हैं उनको देखने के लिए तो हम जाते ही हैं, लेकिन आजकल हाइप भी बहुत बना दिया जाता है फिल्मों का कि ये बहुत बड़ी फिल्म है, बहुत बड़े बजट के साथ इसे रिलीज किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल आदि पुरुष हो गई, रामायण जो अब रिलीज होने जा रही है, तो ऐसी फिल्मों को देखने के लिए भी लोगों के मन में एक हाइप बना रहता है।
7: तो ये कहीं ना कहीं आपको लगता है कि मेगा बजट को लेकर, हम रामायण की यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं जिसको लेकर खुद ही बॉलीवुड के अंदर कुछ एक आपत्ति है, जैसे मनोज वाजपेयी ने कहा है कि आप फिल्म के बजट लेकर चर्चा कर रहे हैं, तो चर्चा बजट की होनी चाहिए। हालांकि देखिए, प्रचार तो किसी भी तरीके का हो सकता है, बहुत जगह हमने देखा है कि नेगेटिव प्रचार भी होता है। आप प्रचार को लेकर क्या कहेंगे? फिल्म का अगर प्रमोशन हो रहा है तो
5: प्रमोशन प्रमोशनल स्टंट्स ही होते हैं, ये फिल्म की हाइप बनाने के लिए क्रिएट किया जाता है। अगर कोई फिल्म सच में लार्जर देन लाइफ है तो देखो ना उसको क्या हर्ज है। उसको ना
6: 11 आई थी तो उसमें कहा गया कि एक उसका
5: कितना हाइप क्रिएट हुआ था।
6: हाँ, उसमें बताया गया कि एक जो उसका बहुत ही फेमस गाना था, जो टाइटल ट्रैक था, सिर्फ वो गाना मात्र 8 करोड़ में शूट हुआ था, सिर्फ एक गाना, तो बदला नहीं है, तो सिर्फ वो। तो ये बात तो है कि भाई अब पैसे को लेके जैसे से बात की जा रही है, 4,000 करोड़ की मूवी, ऑब्वियसली एक हाइप है, पीआर स्टंट है।
2: रणबीर कपूर की फिल्म है, इससे पहले ब्रह्मास्त्र भी आई थी और उसको लेकर भी बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट किया गया था कि ये इतने करोड़ों में बनी है, लेकिन क्या वो उस लेवल का परफॉर्म कर पाई, वो डिसअपॉइंटमेंट रही। लेकिन फिर भी ये स्टंट है जो अपनाया जा रहा है, अब देखते हैं रामायण की
7: चर्चाएं बहुत हो रही है, इसीलिए चर्चा चाय पर भी हो रही है। तो चलिए आप भी देखिए।

भारत की आत्मा में बसे हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। वो धर्म, त्याग, कर्तव्य और एकता के प्रतीक हैं। उसी राम कथा को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए भारतीय सिनेमा इतिहास की सबसे बड़ी और सबसे भव्य फिल्म बनाई जा रही है। कहा जा रहा है कि ये सिर्फ एक फिल्म नहीं होगी, बल्कि रामायण की भावना को हॉलीवुड स्तर की तकनीक के साथ दुनिया भर तक ले जाने की एक कोशिश है। सिनेमा ने श्री राम की कहानी को कई बार जिया है और हर बार रामायण ने लोगों के दिलों में खास जगह भी बनाई है, लेकिन इस बार श्री राम के जीवन पर बन रही ये फिल्म अपनी कहानी कहने के तरीके से ज्यादा भारी भरकम बजट को लेकर शुरू से चर्चा में है। दावा है कि इस फिल्म का ओवरऑल बजट 4000 करोड़ रुपए है,

फिल्मों के भारी भरकम बजट पर छिड़ी चर्चा में एक्टर मनोज वाजपेयी की एंट्री हुई है। उन्हें फिल्मों का भारी भरकम बजट पीआर स्टंट लगता है। मनोज ने कहा, देखिए वो लोगों के पीआर का जरिया होता है, उसके जरिए ही ज्यादा बातचीत, कम से कम मैं जानता हूँ 15 सालों से चल रहा है, ये सब काफी जल्दी फैल रहा है। कई बार कुछ दर्शक मिलते हैं मुझे इधर उधर, तो वो भी नंबर्स में बात करने लगते हैं। मैंने उनको डांटा भी कि भाई तुम्हारे अकाउंट में नहीं जा रहा है, अगर आपके अकाउंट में जा रहा है आप तब बात करिए, आप ये बताइए कि फिल्म कैसी लगी, बुरी लगी या अच्छी, उसकी बात करिए। मनोज के बयान के बाद फैंस की क्यूरियोसिटी बढ़ गई है, आखिर रणबीर की रामायण में ऐसा क्या है, आखिर कौन सी ऐसी चीज है जो इस फिल्म को इतना बड़ा बजट का बनाती है। तो दावा है कि इस फिल्म का बजट 4,000 करोड़ है और ये भारत की सबसे महंगी फिल्म है, यानी ये भारतीय सिनेमा का अब तक का सबसे महंगा प्रोजेक्ट होगा। फिल्म में रामायण का संसार दिखाने के लिए बड़े बड़े सेट्स लगाए गए हैं, लंका, राम रावण युद्ध, पुष्पक विमान, सब हॉलीवुड जैसा दिखेगा। इसके अलावा वनवास, सीता हरण और युद्ध के सीन बड़े पैमाने पर दिखाए जाएंगे, और ये सब दुनिया का सबसे बेहतरीन स्टूडियो DNEG कर रहा है, जिसमें काफी वक्त और पैसा खर्च किया गया है। AI डबिंग की नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है, मतलब ये कि एक ही भाषा में फिल्म बनकर AI से दूसरी भारतीय भाषाओं में मुंह की हरकतें बिल्कुल मैच कर डब किया जाएगा। ये भारतीय सिनेमा में पहली दफा हो रहा है। इसके अलावा फिल्म के प्रमोशन पर बड़ी रकम खर्च होगी। दावा है कि फिल्म IMAX पे रिलीज होगी, जिसके मायने हैं स्क्रीन बड़ी और तस्वीर बेहद साफ। आखिर सच यही है कि बजट चाहे जितना भी बड़ा हो या PR का हाइप कितना भी हो, फिल्म की असली परीक्षा सिनेमा हॉल में होगी, और इन सब के बीच फैंस को फिल्म का बेसब्री से इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।

0: रणवीर ऐसे लुक्स देंगे तो देखनी तो पड़ेगी ना मूवी जाके, मुझे तो अच्छे लगे नहीं गुड. अब देखते हैं जस्टिफाई करते हैं नहीं. 90s वाले हैं ना जो मिलेनियल्स हैं, डेविड धवन और गोविंदा की जोड़ी को वो बखूबी जानते हैं. और डेविड धवन वन ऑफ द फेवरेट डायरेक्टर्स में से एक थे हम लोगों के, है ना. वापस आ रहे हैं अपना जलवा दिखाने के लिए अपने बेटे के साथ. सो वैसे ही इमोशंस
1: गोविंदा, लेकिन वहां पर हैं उनके बेटे
0: वरुण धवन. क्या क्या एक्सपेक्टेशन है?
2: बिल्कुल. अभी जो हम अभी बात भी हम कर रहे थे थोड़ा सा जब तक ये चल रही थी मूवी का, तो आपको बता दें कि वही जैसे डेविड धवन सुनते हैं तो उनके साथ गोविंदा ही स्ट्राइक करता है सबसे पहले. गोविंदा और करिश्मा कपूर जो उनकी जोड़ी थी, दैट वाज अमेजिंग. तो अभी जो है जो भी हम देख रहे हैं अब इनके साथ, भले ही भाई उनके बेटे आ रहे हैं, जाहिर सी बात है अपने बेटे के लिए वो पिक्चर बना रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उससे उनका इमेज जो है वो हट ही नहीं पा रहा है वरुण धवन का अब उससे, क्योंकि इस तरह की मूवीज वो पहले भी बना चुके हैं. हालांकि बॉर्डर में उन्होंने अपने उस इमेज को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने शायद एक्सेप्ट बहुत नहीं किया उस इमेज को. तो ये एक चैलेंज उनके लिए.
1: नहीं देखिए, जब गोविंदा एक्चुअली डेविड धवन ने कोशिश ये जरूर की थी कि वरुण को लाके गोविंदा का रिप्लेसमेंट, मतलब आज की जनरेशन के लिए वरुण धवन को वैसे किया जाए, लेकिन देखिए गोविंदा है, एग्जैक्टली चीची चीची है. तो लेकिन अभी ये बात है कि अब वरुण धवन की फिल्म जो रिलीज हुई है फिर भी लोग पसंद करते हैं, फैन फॉलोइंग अच्छी खासी है.
0: डू यू लाइक वरुण धवन?
3: हाँ डेफिनेटली. और
0: आगे बोलने की जरूरत ही नहीं है, यहीं पे आपको जनरेशन ने आंसर दे दिया, यही है जेन ज़ी, है ना. इन्हीं के लिए बनाई जा रही है और इन्हीं के लिए डेविड धवन जो है पसीना बहा रहे हैं, साथ में बहा रहे हैं उनके बेटे. अब इस रिपोर्ट में क्या कुछ खास है आपको दिखाते हैं.
4: कितनी बार आपने कोई फिल्म देखते हुए सोचा है अरे ये तो मैंने पहले भी देखा है कहीं? रीमेक होने की वजह से नहीं बल्कि इसलिए क्योंकि हर दूसरा सीन आपको किसी और पुराने बॉलीवुड फिल्म की याद दिला देता है. डेविड धवन की लेटेस्ट कॉमेडी है जवानी तो इश्क होना है, देखते वक्त बिल्कुल आपको यही महसूस होगा. फिल्म जस और बानी की कहानी है जो गोवा में मिलते हैं, प्यार करते हैं और फिर शादी कर लेते हैं और 5 साल बाद एक मैरिज काउंसलर के ऑफिस में पहुंच जाते हैं. क्यों? क्योंकि जस को बच्चा चाहिए और बानी को करियर. बहुत ही वैलिड कॉन्फ्लिक्ट है, बट ये फिल्म इस कॉन्फ्लिक्ट को नहीं बल्कि बच्चा कैसे होता है इस जोक के साथ चलती है. दोनों अलग हो जाते हैं, बानी जस को मूव ऑन करने को कहती है और जस मूव ऑन भी कर लेता है और सीधे लंदन पहुंच जाता है. वहां उसे प्रीत मिलती है, प्यार हो जाता है, बट बॉलीवुड में ड्रामा के बिना कुछ नहीं होता. जैसे ही दोनों प्यार में जुड़ जाते हैं वैसे ही एंट्री होती है बानी की और अनाउंस करती है कि वो है प्रेग्नेंट. और फिल्म में एक प्रेगनेंसी से ड्रामा पूरा नहीं होता. प्रीत भी यही कहती है कि मैं भी आपके बच्चे की मां बनने वाली हूं. और ये डबल प्रेगनेंसी का ड्रामा, केओस, कॉन्फ्लिक्ट, मिसअंडरस्टैंडिंग और हिट एंड मिस की कॉमेडी पूरे फिल्म के दौरान चलती है. कई बार तो आप रुक कर ये भी पूछते हैं थोड़ा ज्यादा नहीं हो रहा है क्या. प्लॉट पूरा पूरा बॉलीवुड कॉमेडी हिट्स का ग्रेटेस्ट कलेक्शन है. कहीं साजन चले ससुराल तो कहीं जुड़वा की झलक आपको दिखेगी. फिल्म का ह्यूमर भी किसी और दौर में अटका हुआ लगता है. कुछ जोक्स काम करते हैं, बहुत सारे नहीं. और कुछ तो इतने रिग्रेसिव लगते हैं कि ऐसा महसूस होता है कि जैसे स्क्रिप्ट भी बहुत पिछड़े जमाने की है. अब डेविड धवन के फैंस ये कहेंगे कि डेविड धवन है और फिर भी कॉमेडी नहीं है, तो जी बिल्कुल ऐसा नहीं है. मौनी राय का एक मॉडर्न डे अवतार जो कि निरूपा रॉय से इंस्पायर्ड है, वो डेफिनेटली पूरे थिएटर में हंसी लेकर आया. तो अगर आपको लॉजिक, प्रोग्रेसिव स्टोरी टेलिंग या फ्रेश कॉमेडी ढूंढ रहे हैं तो ये फिल्म आपके लिए नहीं है. लेकिन अगर आप लाउड केओस, पुराने गाने, फैमिली कॉमेडी वाली एनर्जी और घर बैठे यूके वेकेशन का मजा लेना चाहते हैं तो शायद इस फिल्म में आपके लिए एंटरटेनमेंट जरूर है कि वक्त कट जाए.
1: चलिए फिल्मी फ्राइडे में अब बात फिल्म पैदी की भी कर लेते हैं जो इस समय बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है. दमदार एक्शन, जोरदार एक्टिंग से भरपूर रामचरण की इस फिल्म ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दी.
2: बिल्कुल, आपको बता दें कि फिल्म की रिकॉर्ड तोड़ शुरुआत ने इंडस्ट्री में नई चर्चा छेड़ दी है. रामचरण की फिल्म ने ओपनिंग कलेक्शन के साथ बॉलीवुड की कई ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्मों के रिकॉर्ड्स तोड़ दिए. चलिए देखते हैं.

0: मेगास्टार रामचरण ने बॉक्स ऑफिस पर तूफान ला दिया है। उनकी फिल्म पेडी ने रिलीज के पहले दिन ही धमाल मचा दिया। फिल्म को लेकर फैंस में भारी उत्साह है। आलम ये बना हुआ है कि फैंस थिएटर के अंदर हो या बाहर जश्न मनाते नजर आ रहे हैं। कहीं ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया गया तो कहीं दर्शक सीटियां और ताली बजाते दिखे। ये ही उत्साह फिल्म के फर्स्ट डे कलेक्शन में भी नजर आया। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म को शानदार रिस्पांस मिल रहा है, तभी तो पेडी ने रिलीज के पहले दिन ही 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। शुरुआती रिपोर्ट्स बता रही हैं कि फिल्म ने पहले दिन भारत में नेट कलेक्शन के तौर पर 69 करोड़ 50 लाख रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 112 करोड़ 49 लाख रुपए से ऊपर पहुंच गया, जो किसी भी बड़ी फिल्म के लिए शानदार शुरुआत मानी जा रही है। इतना ही नहीं, रामचरण की फिल्म ने ओपनिंग कलेक्शन के साथ बॉलीवुड की कई ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्मों के रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। इस लिस्ट में रणवीर सिंह की 30 करोड़ ओपनिंग करने वाली धुरंधर, 40 करोड़ फर्स्ट डे कलेक्शन करने वाली सनी देओल की गदर 2 और 57 करोड़ की ओपनिंग अपने नाम करने वाली शाहरुख खान की पठान भी शामिल है। इन आंकड़ों से साफ है कि फिल्म का क्रेज न सिर्फ दक्षिण भारत में है बल्कि हिंदी बेल्ट में भी देखने को मिल रहा है। रामचरण और जानवी कपूर की पेडी 5 भाषाओं में सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। सबसे ज्यादा कलेक्शन तेलुगु भाषा में हासिल हुआ, जो 47 करोड़ 20 लाख रुपए रहा। इसके बाद हिंदी में 3 करोड़ की कमाई हुई, जबकि तीसरे नंबर पर तमिल भाषा से 45 लाख की कमाई इस फिल्म ने कर ली है। वहीं चौथे पायदान पर कन्नड़ में 25 लाख का कलेक्शन फिल्म ने किया है। आखिर में मलयाली भाषा में 10 लाख का कलेक्शन फिल्म ने हासिल किया है। पेडी फिल्म ने जानवी कपूर के करियर को भी नई उड़ान दी है। फिल्म में उनके काम को लेकर सोशल मीडिया पर खूब चर्चा है। जानवी फिल्म की सक्सेस के लिए दुआ मांगने तिरुपति मंदिर भी पहुंची थी। 2024 में आई फिल्म देवरा के बाद पेडी जानवी की दूसरी साउथ फिल्म है। फिल्म के रिलीज के बीच वो ईश्वर का आशीर्वाद और फिल्म की हिट होने की मन्नत मांगने तिरुमला पहुंची थी। तब उनका कैजुअल लुक में बालाजी मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने का वीडियो खूब सुर्खियों में रहा। फिल्म में रामचरण और जानवी की केमिस्ट्री भी फैंस को बेहद पसंद आ रही है। असल में ये फिल्म 1980 के दशक के आंध्र प्रदेश की वो कहानी है, जहां एक गांव का नौजवान अपने लोगों को एकजुट करने के लिए क्रिकेट, कुश्ती और दौड़ के मैदान में उतरता है, सम्मान और पहचान की लड़ाई लड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: और चलिए अब बात करते हैं मॉनसून की, जो दक्षिण भारत में पहुंच चुका है और इससे कई राज्यों में अच्छी बारिश दर्ज की गई है। केरला हो, कर्नाटका हो, तमिलनाडु हो, कई हिस्सों में अच्छी बारिश हुई है।
2: मैं तो आज भी उम्मीद कर रही थी क्योंकि हमने बड़े सारे प्लान्स बनाए थे, हमारे प्लान फेल हो गए हैं, लेकिन लेट्स होप फॉर द बेस्ट।
3: दर्शकों को बता दो, कल जाते जाते हमने कहा था ना सरप्राइज है, सरप्राइज एक्चुअली मॉनसून वाला ही था, बारिश नहीं हुई तो सरप्राइज,
2: बट सरप्राइज बताएंगे नहीं, है ना,
3: मैंने बताया ना पोस्टपोन है।
2: हाँ, पोस्टपोन हो गया, आपको मिल जाएगा सरप्राइज। एनीवेज, देखिए मॉनसून की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है, उत्तर भारत तक ये पहुंचने वाला है, लेकिन इसकी वजह से किसानों की बल्ले बल्ले हो गई है। क्या लगता है कि मॉनसून यहाँ तक कब तक आएगा?
3: मैंने 4 बजे शो किया है उम्मीदों वाला मॉनसून, तो उम्मीद लगा सकते हैं। हालांकि अभी भी अगले 7 दिन इंतजार करना होगा कि साउथ में किस तरह की बारिश, यानी केरल और तमिलनाडु दोनों जगह पर किस तरह की बारिश हो रही है, तो उस हिसाब से फिर मौसम विभाग आगे प्रेडिक्ट करेगा। लेकिन हाँ, एक गुड न्यूज ये है कि दिल्ली एनसीआर के लिए WD एक और सक्रिय होगा, तो फिलहाल अभी आप 7 तारीख तक एंजॉय कर सकते हैं।
4: और पूरे देश की अगर बात करें तो मॉनसून लगभग फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में हर जगह आपको आ चुका होगा,
2: तो वीकेंड मान के चल सकते हैं कि ठंडा ठंडा यहाँ रह सकता है ना, तो आपके लिए राहत है, हमारे लिए भी राहत है। देखिए,

0: उधर केरलम में मॉनसून की जोरदार एंट्री हुई। इधर दिल्ली NCR समेत उत्तर भारत में मौसम का मिजाज अचानक बदल गया। प्री मॉनसून की बारिश राहत लेकर आई। तेज आंधी तूफान के साथ आई झमाझम बारिश ने गर्मी और उमस से निजात दिला दी। मौसम में आई इस नरमी के आज भी रहने के आसार हैं। मौसम विभाग ने तेज आंधी और गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। आज दोपहर फिर से गरज के साथ बौछारे पड़ने और तेज हवाएं चलने का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली NCR में मौसम में आए इस बदलाव की वजह एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, जिसका असर आज और कल उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों में भी देखने को मिलेगा। इस दौरान तेज आंधी और बारिश के साथ ओले गिरने की संभावना जताई गई है।
1: अभी एक वेस्टर्न डिस्टरबेंस है, वो इस समय नॉर्थ पाकिस्तान पे एक सर्कुलेशन की फॉर्म में है, स्ट्रेंथन में है, और उसके साथ ही जहाँ जैसे WD बना हुआ है, जो हवाएं भी अरेबियन सी से इस एरिया में आ रही है, जिसके कारण आप थोड़ा ह्यूमिडिटी भी बढ़ जाती है और विच इज़ फेवरेबल फॉर रेनफॉल एक्टिविटी। तो हमारा यही है कि आने वाले 2 से 3 दिन जहाँ पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में एक्टिविटी रहेगा, जिसके लिए हमने जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड के लिए हमने रेनफॉल के साथ हेलस्टॉर्म का वार्निंग भी दिया है। पंजाब हरियाणा हम अनुमान लगा रहे हैं जो हवाओं की गति है वो 50 से 60 किलोमीटर रह सकती है। इसके अलावा NCR दिल्ली की बात करें, वहाँ भी हमारा 2 दिन के लिए येलो अलर्ट है। वहाँ भी हमारा यह है कि 40 से 50 किलोमीटर तक हवाएं रहने का।
0: मॉनसून के केरलम में प्रवेश के बाद इसका इंतजार अब पूरे देश को है। केरलम पहुंचने के बाद मॉनसूनी हवाएं 2 शाखाओं अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में विभाजित होकर आगे बढ़ती है और जुलाई के पहले हफ्ते तक पूरे देश को कवर कर लेती है।
2: 4 जून को जो मॉनसून है वो केरल में दस्तक दे चुका है और इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको कर्नाटका के हिस्से हुए, कोस्टल कर्नाटका जो हो गया, तमिलनाडु का कुछ हिस्सा जो है कवर करते हुए बे ऑफ बंगाल, और इस साइड पर जो है आपको दिखेगा ये जो ब्लू लाइन आप जो देख रहे हैं, ये इस वक्त हमारा ऑनसेट है। ये आने वाले 6 से 7 दिन अच्छा मौसम जो है वो रहने की उम्मीद है। अच्छी खासी बारिश जो है वो देखी जाएगी। 12 सेंटीमीटर से ज्यादा जो बारिश है वो जो है उसका अनुमान जो है वो लगाया जा रहा है। लेकिन इसके साथ ही मैं ये चीज भी आपको दिखाऊंगी कि जो लगातार जो मॉनसून है वो आगे बढ़ते हुए नजर आएगा। तो इसके साथ ही साउथ से शुरू हुआ है लेकिन धीरे धीरे जो है वो नॉर्थ ईस्ट साइड में भी जो है मॉनसून जो है वो देखा जाएगा। लेकिन अगर मैं बाकी पूरे आपको देश की मैं स्थिति इस वक्त दिखाना चाहूँ कि किस तरीके से मौसम का हाल है वो आप इस मैप में देख सकते हैं। ये पूरा आपको ऑरेंज अलर्ट जो है जगह जगह आपको नजर आने वाला है, ऑरेंज या फिर येलो, लेकिन बारिश का अलर्ट जो है देश के अलग अलग राज्यों में इस वक्त आपको नजर आ जाएगा।

0: तो हमारा अनुमान ये है कि केरला कोस्टल कर्नाटका वहाँ पे वेरी हैवी रेनफॉल एक्टिविटी, आल्सो वेरी हैवी मीन 12 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल एक्टिविटी ऑलमोस्ट पूरा वीक होती रहेगी। उसके साथ ही कर्नाटक कोंकण गोवा वहाँ भी रेनफॉल एक्टिविटी हैवी रेनफॉल होने का अनुमान है। तमिलनाडु देन इंटीरियर कर्नाटका जहाँ रेनफॉल एक्टिविटी ऑलमोस्ट हैवी रहने का अनुमान है। इसके अलावा भी जहाँ भी जो मानसूनल विंड फेवरेबल हो रही है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में भी, जैसे भी आज मानसून थोड़ा नॉर्थ ब्यो बंगाल तक टच किया जो नॉर्थ पे की लाइन है, और आने वाले दो तीन दिनों में जहाँ भी रेनफॉल एक्टिविटी बढ़ जाएगी हैवी वेरी हैवी रेनफॉल होने का अनुमान है। तो हमारा आने वाले दिनों में यही फोरकास्ट है, दो से तीन दिन जो मानसून है जो इवन इंटायर गोवा और कोंकण के कुछ हिस्से, महाराष्ट्र के कुछ हिस्से और कवर कर सकता है, कर्नाटक जैसे कवर हो सकते हैं, आंध्र के तमिलनाडु के जो हिस्से वो और कवर हो जाएंगे, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के कुछ हिस्से कवर होने का।
1: जहाँ तक दिल्ली की बात है तो राजधानी को अभी इसके लिए इंतजार करना होगा। दिल्ली में आमतौर पर मॉनसून की पहली बारिश 27 जून के करीब होती है। मौसम विभाग के मुताबिक इस साल भी मॉनसून अपने तय समय यानी 27 से 30 जून के बीच पहुंच सकता है। मतलब ये कि अगर हालात ठीक रहे तो जुलाई की शुरुआत तक पूरे देश में मॉनसून की बारिश होनी शुरू हो जाएगी। दिल्ली से मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: प्रधानमंत्री मोदी ने जब देशवासियों से फॉरेन ट्रिप के बजाय स्वदेश घूमने की अपील की तो GNT यानी गुड न्यूज टुडे भी आप लोगों से अपने आसपास की खूबसूरत, ऐतिहासिक और दूसरी सैर सपाटा करने वाली जगहों की तस्वीरों को शेयर करने की अपील कर रहा है, और हम आपके भेजे गए उन वीडियोस को GNT पर लगातार दिखा रहे हैं।
3: तो चलिए आज आपको हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति लिए चलते हैं, जहां एक खूबसूरत पिनमैली में मौजूद मुट गांव की कुछ दिलकश तस्वीरें आपका इंतजार कर रही हैं। हमारे एक ब्लॉगर हैं जिन्होंने वीडियो हमें भेजा है, आपको दिखाते हैं वही तस्वीरें।

हेलो दोस्तों, तो आज मैं अपने बचपन के दोस्तों के साथ आ चुका हूँ भारत देश के आखिरी गांव जो बसा है पिन वैली में। पिन वैली के इस आखिरी गांव का नाम है मुद। मुद एक बहुत ही शानदार और ठंडी जगह है। यहाँ के लोग बहुत ही भोले और बहुत ही अच्छे हैं। उन्होंने हमें बड़े प्यार से खाना खिलाया और अब हम सभी दोस्त यहाँ से वापिस बढ़ रहे हैं काजा के लिए। पर वहाँ जाने से पहले मैं आप सभी को दिखाना चाहता हूँ कि इस पिन वैली में बसे एक छोटे से गांव मुद के ये बेहतरीन नज़ारे कितने मनमोहक हैं।

सामने देखा ये बेहतरीन नज़ारे मूर्त विलेज के। जो मैं देख सकता हूँ वो तो मैं आपको कभी भी एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, पर जो आप अपनी आंखों से देख रहे हैं उसे देख के महसूस कीजिए कि यह जगह कितनी खूबसूरत है।

0: तो आप भी अपने ही देश में सैर सपाटा करने अपने गांव और शहर में सैलानियों को इनवाइट कीजिए, टूरिज्म को बढ़ावा देने के संकल्प के भागीदार बनिए। बस करना सिर्फ इतना सा है कि अगर आपके आसपास कोई खूबसूरत जगह है या फिर आपके शहर में आने की कोई खास वजह है तो कैमरा उठाइए, स्टार्ट कर दीजिए ब्लॉग्स बनाने। फिर हमें 7303409922 नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम उसे GNT पर जरूर दिखाएंगे।
1: और चलिए यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको ऐसे घर लिए चलेंगे जहां पर भीषण गर्मी में कभी AC की जरूरत महसूस ही नहीं होती है, जरूरत महसूस ही नहीं होती है।

0: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
2: ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का, आप देख रहे हैं चाय पर चर्चा। इससे पहले आगे बढ़े, नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
4: ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
2: गुजरात और दमन दौरे पर प्रधानमंत्री ने दिया विकास का तोहफा। हजीरा में लार्सन एंड ट्रूबो की इंडस्ट्रियल फैसिलिटी का लिया जायजा। सूरत को 200 बेड वाले अस्पताल की दी सौगात। चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह। अब तक 30 लाख से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन। केदारनाथ पहुंचने वालों का आंकड़ा 11 लाख के पार। वायुसेना के 94वें स्थापना दिवस की भव्य तैयारी। गाजियाबाद के हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर होगा ये समारोह। काशी में गंगा के ऊपर राफेल, तेजस और सुखोई भरेंगे उड़ान।

0: देखिए, जितनी तपती गर्मी और धूप से लोग परेशान रहे हैं कुछ दिनों से, हालांकि अभी फिलहाल दिल्ली एनसीआर में फिर भी मौसम जो है वो बेहतर है। ऐसे में हरियाली देखकर ही दिल खुश हो जाता है और यही वजह है कि मुझे लगता है कि पर्यटक भी बार बार नेचर की तरफ ही जाते हैं,
1: पहाड़ों का रुख करते हैं।
0: आज वर्ल्ड एनवायरमेंट डे भी है और इस लिए भी खास करके ये चर्चा अहम हो जाती है कि कई लोग इतनी कोशिश करते हैं अपनी अपनी भागीदारी निभाने की कि अपने घर में ही कम से कम वो कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हरियाली हो ताकि उनके घर और आसपास का कम से कम जो वातावरण है वो कूल रह सके और अच्छा रह सके। आपको क्या लगता है?
1: मुझे ऐसा लगता है कि हम जैसे फ्लैट्स में थोड़ा सा कंजेस्टेड हो जाता है बट स्टिल वी हैव बालकनीज, तो वहां पर जितना पॉसिबल है उतना हम कर पाते हैं। मतलब आई लाइक प्लांट्स, आई लव प्लांट्स।
0: किचन में भी पॉट्स रखे जा सकते हैं हर जगह,
1: बट ये कि ये केयर बहुत मांगते हैं। तरह तरह के प्लांट्स आप ले तो आते हैं बट थोड़े टाइम के बाद मुरझा जाए तो आपको दुख बहुत लगता है।
0: आपने रखा है घर में?
2: बिल्कुल, पूरी बालकनी ग्रीन है।
1: नाइस,
2: और मजा आता है जब बारिश आती है तो बालकनी में बैठ के मजा आता है। आपका है नेचर से प्यार?
0: बिल्कुल बिल्कुल।
2: तो आज पहन के भी ग्रीन कलर आई है,
0: इसीलिए क्योंकि आज डे है, स्पेशल डे है, तो
2: एनवायरमेंट डे।
0: तो इसको ही प्रमोट करने के लिए ताकि लोग भी अपने घर में प्लांटिंग जरूर करें। गार्डनिंग का शौक हर किसी को होता है और कौन नहीं चाहता कि उनके घर में एक किचन गार्डन हो, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाता है ज्यादा। लेकिन जितना ज्यादा हम कर सकते हैं, इंडोर प्लांट्स भी लगा सकते हैं, जितनी घर के बाहर टेरेस के ऊपर जितनी गार्डनिंग कर सकते हैं उतनी जरूर करें। बिल्कुल, और उससे फायदे कई हैं। आपको बता दें कि घर की हरियाली को बढ़ावा देने के लिए दरअसल बालकनी, छत और वर्टिकल गार्डनिंग का ट्रेंड खूब चल निकला है। जाहिर है लोग अपने ऐसे घरों में तपती गर्मी के बावजूद कूल महसूस कर रहे हैं और साथ ही पर्यावरण संरक्षण की भी मिसाल पेश कर रहे हैं।
3: तो वहीं आज दिल्ली के एक ऐसे ही

0: गर्मी हर साल एक नया रिकॉर्ड बनाती है और ऐसे में लोग एसी और कूलर का सहारा लेते हैं ताकि गर्मी से बचा जाया सके। लेकिन कभी आपने सोचा है कि बिना एसी कूलर के, बिना बिजली खपत के भी घर को ठंडा रखा जा सकता है? और अगर नहीं सोचा तो मैं वो दिखाने आपको आज एक ऐसी ही राजधानी दिल्ली के घर में लेकर आई हूँ। इस घर को आप देख सकते हैं, हर तरफ आपको हरियाली ही हरियाली जो है वो नजर आने वाली है।
1: दावा है कि दिल्ली की बेतहाशा गर्मी में ये 40 साल पुराना घर एक ग्रीन हाउस बना हुआ है। इसे समझाने के लिए ये दावा किया जा रहा है कि बाहरी तापमान के मुकाबले इस घर में 15 डिग्री कम टेम्परेचर रहता है। इस घर को बनाने वाली अनीता टिक्कू कहती हैं कि जब ये घर बनाया गया तो इसको डिजाइन ही दिल्ली की गर्मी और पर्यावरण को ध्यान में रखकर किया गया। तो चलिए सबसे पहले आपको घर के रेन गार्डन में ले चलते हैं।
2: तो ये जो मेरा छोटा सा गार्डन है, जो शायद बाकी लोग पेव कर देते हैं कि घास उग नहीं रही, पेड़ बड़े हो गए हैं, तो हम पक्का कर लेते हैं। तो मैंने पक्का नहीं किया, मैंने ऐसे पौधे ढूंढे जो छांव में चल सकें, और 4 इंच की गहराई दी है इसको, और जो ऊपर से बारिश का पानी है वो इस रिचार्ज पेट में पहले आता है। रिचार्ज पेट जल्दी भर जाता है, बहुत गहरा भी नहीं है, तो वो ओवरफ्लो करके मेरे रेन गार्डन में जाता है।
1: ये तो बात थी घर के बाहर की हरियाली की, जिसे पर्यावरण संरक्षण मॉडल पर कायम किया गया। जाहिर है ये रेन गार्डन बारिश के पानी को जमीन के अंदर पहुंचाने में मदद करने के साथ ही भूजल स्तर बनाए रखने में भी मददगार है। तो वहीं इस घर को बनाने में एक खास तरह के पत्थर का इस्तेमाल भी हुआ है जो तापमान को संतुलित रखता है। कोटा स्टोन फ्लोरिंग इस घर की एक खासियत है, जिसमें राजस्थान के कोटा पत्थर की प्राकृतिक ठंडक फर्श को गर्म होने से बचाती है। इस पत्थर की नेचुरल ठंडक पूरे घर के तापमान को संतुलित बनाए रखने में मदद देती है। घर में हवा के आवागमन यानी वेंटिलेशन का विशेष ख्याल भी रखा गया है। खिड़कियों और खुले हिस्सों की ऐसी व्यवस्था की गई है कि प्राकृतिक वेंटिलेशन लगातार बना रहे और घर के भीतर ठंडी हवा का प्रवाह होता रहे। साथ ही घर के बीचों बीच बना खुला आंगन और ऊंची छतें गर्म हवा को ऊपर की ओर निकालने का काम करती हैं।
0: टेम्परेचर 38-39 जो है वो जा चुका है, लेकिन घर के टेम्परेचर को अगर आप देखोगे तो 30 डिग्री आपको तापमान घर का नजर आने वाला है। और इसके साथ ही आपको ह्यूमिडिटी लेवल भी जो है वो पता चल जाएगा कि कितनी ज्यादा ह्यूमिड जो है आज उमस जो है वो बनी हुई है। तो 65% ह्यूमिडिटी है और 30 जो डिग्री है वो घर का तापमान है।
1: इन्हीं सारी खासियतों के चलते दावा है कि बेतहाशा गर्मी के दिनों में भी ये घर बाहर की अपेक्षा ठंडा और आरामदायक रहता है। वैसे एसी के बगैर ये घर एक और कारण से जुदा कहा जा रहा है, वो है इवापोरेटिव कूलर्स के ये डक्ट्स।
2: हमारा इवापोरेटिव कूलर ऊपर की छत पे रखा हुआ है और उसकी हवा यहाँ से आती है। इवापोरेटिव कूलर भी कोई नई चीज़ तो है नहीं, सबको पता है, सबके घरों में होते थे। और जब हवा सूखी हो, जब उसमें नमी ना हो, तो इवापोरेटिव कूलर्स बहुत इफेक्टिव होते हैं। इस घर में, इस कमरे में, मतलब ये हमारा घर का सबसे बड़ा कमरा है और इसमें हम ज़्यादातर कूलर ही इस्तेमाल करते हैं। एक आध महीना होता है जब हमें एसी की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें तो ऐसा भी होता है कि जब मेरे दोस्त बैठे हों तो मुझे कहते हैं कि अनीता प्लीज़ कूलर बंद कर दो, ठंड लग रही है।
1: आज भीषण गर्मी, बढ़ती ऊर्जा खपत और जलवायु परिवर्तन की बेतहाशा चुनौतियां हैं, लेकिन इन्हीं चैलेंजेस के बीच अनीता टिक्कू ये दावा करती हैं कि उनका ये खूबसूरत और कूल आशियाना आधुनिक सुविधाओं के साथ नेचुरल आर्किटेक्ट की एक मिसाल है।
0: देख सकते हैं कि इससे अभी मैम ने टेम्परेचर चेक किया तो जो टेम्परेचर था अब 26 डिग्री जो है आपको शो होने वाला है। और ये छत का मैं आपको टेम्परेचर बता रही हूँ जहाँ पर सबसे ज़्यादा धूप पड़ती है और उसी की वजह से जो हीट है वो कमरे के अंदर आती है। लेकिन अगेन मैं इसका इस वाली साइड में भी वॉल में अभी अगर आपको चेक करके बताऊंगी तो अराउंड 27 डिग्री बाहर का टेम्परेचर, 37 डिग्री और अंदर का अगर हम बात करें तो 27 डिग्री के आसपास। आप देख सकते हैं कि 10 डिग्री भी कम होना अपने आप को कितनी ज़्यादा राहत जो है वो देता है।
2: अगर ये ह्यूमिडिटी कम हो तो आपको ठंड लगेगी इस कमरे में।
1: यही नहीं, इस घर की रसोई से निकलने वाले जैविक कचरे को भी होम कंपोस्टिंग सिस्टम के जरिए खाद में बदला जाता है, जिसका इस्तेमाल किचन गार्डन में करते हैं, यानी कचरे से खाद और खाद से हरियाली। जाहिर है हम उस दौर में जी रहे हैं जब दुनिया बेतहाशा तपिश से राहत पाने के लिए नए नए समाधान खोज रही है। ऐसे में दिल्ली में बना ये ग्रीन आशियाना आधुनिक मशीनों में नहीं बल्कि नेचर से तालमेल बिठाने की एक बेहतरीन सोच है, जहां नेचुरल वेंटिलेशन, रेन गार्डन, कंपोस्टिंग और वाटर कंजर्वेशन इस घर की USP ही है।
0: 40 साल पुराना ये घर है और यहाँ पे अगर हम बाहर की टेम्परेचर और घर के अंदर की टेम्परेचर की बात करें तो करीब करीब 10 से 12 डिग्री का मोटा मोटा फर्क जो है वो देखने को मिलता है। और आई थिंक ज्यादा ही जो है टेम्परेचर हम यहाँ पर महसूस कर रहे हैं क्योंकि ठंडक जो है वो लगातार बनी हुई है। कैमरा पर्सन संचिन चंदोक के साथ मनीषा लड्डा, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे।
1: केदारनाथ धाम में जहां एक ओर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है तो वहीं दूसरी ओर प्लास्टिक कचरे का भी ढेर लग रहा है और ऐसे में धाम समेत पैदल यात्रा रूट पर कोई गंदगी ना रहे, सभी तरह का कूड़ा समय पर नीचे पहुंचे, इसके लिए रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन एक खास कैंपेन चला रहा है।
3: बिल्कुल, आपको बता दें कि दरअसल केदारनाथ नगर पंचायत ने केदार घाटी को स्वच्छ बनाने के लिए कैरी मी बैक पॉलिसी लागू की है जिसके तहत श्रद्धालु खुद सूखे कूड़े को वापस गौरीकुंड तक ला रहे हैं।
4: ये कोशिश है केदारनाथ धाम को स्वच्छ और प्लास्टिक मुक्त बनाने की, एक पहल जिसमें श्रद्धालुओं की भागीदारी जरूरी है। हर साल लाखों श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुंचते हैं और बड़ी मात्रा में प्लास्टिक की बोतलें, रैपर और सूखा कचरा वहां छोड़ आते हैं जिनका निदान संभव नहीं हो पाता। ऐसे में जिला प्रशासन ने एक नई पहल शुरू की है। नगर पंचायत केदारनाथ, हीलिंग हिमालयाज फाउंडेशन और सुलभ इंटरनेशनल के सहयोग से धाम में कैरी मी बैग पॉलिसी शुरू की गई है जिसमें वापसी के दौरान श्रद्धालु खुद सूखे कूड़े को वापस गौरीकुंड तक ला रहे हैं।
5: श्री केदारनाथ धाम में पहली बार वहां पर MRF सेंटर का भी संचालन किया गया है और वहां पर बेलिंग मशीन के द्वारा प्लास्टिक और जो ड्राई वेस्ट है उसको उसकी बेल्स बनाई जा रही हैं और उनको धीरे धीरे करके नीचे खच्चर के माध्यम से उतारा भी जा रहा है। इस प्रकार से श्री केदारनाथ धाम ट्रैक टू सफाई का काम चल रहा है, इसमें सुलभ की संस्था भी काम कर रही है, सभी नगर पालिका, नगर पंचायत और जिला पंचायत भी काम कर रहे हैं और प्रयास ये है कि डेली जो वेस्ट जनरेट हो रहा है उसका साइंटिफिकली डिस्पोजल किया जाए। इस संदर्भ में एक जिला लेवल पर एक मॉनिटरिंग सेल भी बनाई गई है जो हर 15 दिन में इसकी मॉनिटरिंग करके अपडेट करे।
4: कैरी मी बैग पॉलिसी के तहत नगर पंचायत की ओर से 400 से 500 ग्राम क्षमता वाले बैग में सूखा कूड़ा भरकर यात्रियों को दिया जा रहा है। श्रद्धालुओं को केवल इन बैग को अपने साथ गौरीकुंड तक लाना है जहां स्वजल विभाग समेत सहयोगी संस्थाओं की ओर से कूड़े का संग्रहण किया जा रहा है। इसके बाद सुलभ इंटरनेशनल वैज्ञानिक एवं पर्यावरणीय मानकों के अनुरूप कूड़े का अंतिम निस्तारण किया जाएगा। प्रशासन का मानना है कि अगर अधिक संख्या में यात्री इस अभियान से जुड़ते हैं तो हर रोज कई टन कूड़ा आसानी से धाम से नीचे लाया जा सकेगा। इसके लिए यात्रियों को जागरूक भी किया जा रहा है। यात्रा मार्ग पर अलग अलग जगहों पर सूचना बोर्ड लगाए गए हैं और लोगों से पर्यावरण संरक्षण में सहयोग की अपील की जा रही है। उम्मीद की जानी चाहिए कि श्रद्धालुओं की भागीदारी से ये अभियान सफल होगा और केदारनाथ धाम में स्वच्छता एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों को नई मजबूती मिलेगी। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सिंहवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: और चलिए चीन की बात करते हैं। चीन के जियांगशी प्रांत में इन दिनों आसमान से बरसी मेहरबानी ने धरती पर ऐसा नजारा रच दिया जिसे देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो रहा है। लगातार हुई बारिश के बाद लुशान पर्वत की ढलानों पर बसे हुए शिवफेंग क्षेत्र के झरने पूरे शबाब पर हैं।
6: ऊंची ऊंची चट्टानों से दूधिया धाराओं की तरह गिरता पानी, ऐसा लगता है मानो पहाड़ खुद जीवन का संगीत गुनगुना रहे हों। नेचर का यह अनोखा जल उत्सव इन दिनों चीन में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि नए नियमों से और रोचक होने वाला है फुटबॉल का महाकुंभ।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
8: K-pop takes center stage. Bold sounds, global energy, and hits that move fast. Today's K-pop plays the biggest tracks, breakout anthems, and chart toppers. Fresh music on repeat, so you never miss a beat. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Today's K-pop to start listening now.
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे।
6: देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
1: इस बार फीफा वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है 12 जून से, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको की सह मेजबानी में ये टूर्नामेंट खेला जाएगा। इस बार के विश्व कप में 48 टीमें खेलेंगी। ये वर्ल्ड कप के इतिहास में पहली बार हो रहा है जब 48 टीमों को शामिल किया गया है।
2: बिल्कुल, लेकिन इस बार देखिए टूर्नामेंट में खेले जाने वाले कुल 104 मुकाबले कुछ हद तक हॉकी की तरह खेले जाएंगे, क्योंकि इसमें कुछ हॉकी वाले ही नियम लगाए गए हैं। तो क्या है ये हॉकी के रूल्स एंड रेगुलेशंस, चलिए आपको यहाँ पर बताते हैं।

0: लगातार जुनून को एंथम में बदल देने वाली शकीरा का इंतजार कर रही है। कोलंबियाई पॉप स्टार शकीरा फीफा विश्व कप के उद्घाटन समारोह में टूर्नामेंट के ऑफिशियल गाने को प्रेजेंट करने वाली हैं। इसकी रिहर्सल जोर शोर से चल रही है। मैक्सिको सिटी के सबसे बड़े मंच पर जब शकीरा उतरेंगी तो उनका अंदाज कुछ इस तरह का होगा। जून से दुनिया का दिल फुटबॉल की हर एक किक पर धड़केगा। रोमांच इसलिए भी खास होगा क्योंकि इस बार 32 की बजाय 48 टीमें खेलेंगी। तीन देश मिलकर मेजबानी करेंगे और खिताब के लिए 7 की बजाय 8 मैच जीतने होंगे। यही नहीं, पहली दफा मैच के बीच खिलाड़ी इंटरव्यू देंगे। कॉर्नर किक में VAR का दखल होगा और फाइनल में भव्य हाफ टाइम शो होगा। इस बार के वर्ल्ड कप में केवल खेल का रोमांच ही नहीं बढ़ेगा बल्कि कुछ नियमों से खेल का अंदाज भी बदलेगा। आम तौर पर फुटबॉल में 45-45 मिनट के दो हाफ होते हैं जिन्हें 15 मिनट का हाफ टाइम ब्रेक अलग करता है, लेकिन इस बार मैच 4 क्वार्टर में बटा हुआ नजर आएगा। मौसम की वजह से हर मैच में दोनों हाफ के बीच जरूरी हाइड्रेशन ब्रेक दिया जाएगा। ये ब्रेक पहले हाफ में लगभग 22वें मिनट और दूसरे हाफ में 67वें मिनट के आसपास होगा। यानी 2026 का फीफा विश्व कप केवल गोल, जीत और ट्रॉफी की कहानी नहीं होगा बल्कि एक नए तरह के स्टार्टअप, सिक्योरिटी और रणनीति के साथ एंटरटेनमेंट का अद्भुत संगम होगा। यही वजह है कि इस बार फीफा वर्ल्ड कप के टिकट्स के लिए मारामारी मची है। कहा तो ये भी जा रहा है कि एक मैच के टिकट्स की कीमत लाखों से करोड़ों तक जा पहुंची है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
1: हमारे लिए वक्त हो गया है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आपका ही मजा आएगा। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी है।
2: गुड न्यूज़ टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: विश्व प्रसिद्ध ताजमहल जिसका दीदार करने के लिए आम से लेकर खास लोग आते रहे हैं, लेकिन अभी जो वीडियो हम आपको अब दिखाने वाले हैं उसमें आपको कुछ बंदर नजर आएंगे। ये देखिए जो यहाँ एक वाटर टैंक में खूब मस्ती करते हुए आपको नजर आएंगे।
2: जी हाँ, ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल है। बंदरों की ये उछल कूद लोगों को खूब पसंद आ रही है। कभी तैरते हैं तो कभी खेलते हुए आपको नजर आ जाएंगे। लोग इस तस्वीर को देखकर हैरान हैं और अपने मोबाइल कैमरों में इस पल को कैद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर मैं आपको उज्जैन के महाकाल मंदिर लिए चलते हैं, जहां सिंगर कैलाश खेर बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेने पहुंचे।
3: वहीं महाकाल के दरबार में पहुंचे तमाम श्रद्धालुओं के साथ कैलाश खेर ने भी भस्म आरती में हिस्सा लिया और फिर बाबा के नाम कुछ ऐसी प्यारी सी स्तुति की।
4: एक बार जो महाकाल के द्वार पे आ जाए, हे जन

0: रोम रोम को पुलकित करके भरते दीनानाथ। बहुत गजब अनुभूति हो रही है, महाकाल के दर्शन, भस्म आरती के दर्शन हुए।
1: तो चाय पर चर्चा में अभी के लिए बस इतना है, आप ख्याल रखिए अपना, मिलेंगे मंडे शाम 5 बजे चाय पर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: If you own a business like I do, even one missed call means money left on the table. I couldn't keep up with calls and texts, and I was losing potential customers until I switched to Quo. Quo is the number one business phone system that streamlines communication so you can scale your business. I can send an automated text response I created anytime someone calls, leaves a voicemail, or texts me. Plans start at just $15 a month. No brainer. Money is on the line. Always say hello with Quo. Try Quo for free at Quo.com/tune in. That's Quo.com/tune in.
4: Tune In's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
5: Did you know you can control the speed of what you're listening to? During playback, you can tap on the speed control setting to adjust the speed, whether you'd like to make it faster to get to the end or take it a bit slower to give it time to digest. You can listen to all your favorite podcasts and audiobooks however you want. Plus, if you follow your favorite podcast and books, you'll get recommendations on what to listen to next. Why not try out this feature today?
1: खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
1: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
1: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
11: Sage University, transforming your passion into profession. TIT Bhopal, Gen Z's gateway to unbeatable placements.
12: गुजरात और दमन दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया विकास का तोहफा। हजीरा में लार्सन एंड टुब्रो की इंडस्ट्रियल फैसिलिटी का लिया जायजा। सूरत को 200 बेड वाले अस्पताल की दी सौगात। चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह। अब तक 30 लाख से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन। केदारनाथ पहुंचने वालों का आंकड़ा 11 लाख के पार हुआ। देश दुनिया में मनाया जा रहा पर्यावरण दिवस। सूरत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगाया एक पेड़ मां के नाम। पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण की अपील की। भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर शानदार खबर। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 7.7% रही जीडीपी ग्रोथ। जनवरी से मार्च तक की तिमाही में 7.8% की दर से हुई वृद्धि। नहीं बदलेगी आपके लोन की ईएमआई। आरबीआई ने रेपो रेट 5.25% रखी बरकरार। विदेशी निवेशकों को लुभाने के लिए भी उठाए गए कदम।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। जीएनटी स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। तो जीएनटी स्पेशल में आज बात ऋतिक रोशन के उस रूप की जिसकी अब फैंस ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ये रूप आपके सामने है। ऋतिक रोशन के लुक्स की वजह से फैंस उन्हें ग्रीक गॉड कहते हैं, ये तो आप जानते हैं। और अब रियल लाइफ के ये ग्रीक गॉड रियल लाइफ यानी फिल्मी पर्दे पर भगवान की भूमिका निभाते हुए नजर आ सकते हैं। चर्चा तो ये है कि महावतार नरसिम्हा बनाने वाले डायरेक्टर अश्विन कुमार महादेव पर आधारित एक फिल्म पर काम कर रहे हैं और भगवान शिव का किरदार निभाने के लिए उनकी पहली पसंद है ऋतिक रोशन। यानी कभी बड़े पर्दे पर सुपर हीरो क्रिश का रोल निभाने वाले ऋतिक अब जल्द ही महादेव के सुपर अवतार में सिल्वर स्क्रीन पर हम सबको नजर आ सकते हैं। ये बात जब से छिड़ी है ऋतिक के फैंस में खासी एक्साइटमेंट है, क्योंकि वाकई ऋतिक को महादेव के रोल में देखना एक अलग एक्सपीरियंस हम सब के लिए हो सकता है।

0: टेस्टिंग और अंदाज ऐसा कि दिल जीत। सुपर हीरो के अवतार से लेकर ऐतिहासिक किरदार तक,
1: आप अपने मायके वापस तशरीफ ले।
2: खामोश मत रहना।
0: इंटरनेशनल कॉन आर्टिस्ट से लेकर देसी हीरो विजय दीनानाथ चौहान तक, बरसों से अलग अलग रोल्स में फैंस का दिल जीतते आए हैं ऋतिक रोशन। मस्कुलर फिजिक, परफेक्ट जॉ लाइन, किलर लुक्स, शानदार स्क्रीन प्रेजेंस और जोरदार डांस ने करोड़ों चाहने वालों को उनका दीवाना बना रखा है।

0: उनके लुक्स के लिए दुनिया उन्हें बॉलीवुड का ग्रीक गॉड कहा करती है। और अब बॉलीवुड का ये ग्रीक गॉड पर्दे पर असल में गॉड यानी भगवान का किरदार निभाता नजर आ सकता है। खबर है कि महाअवतार नरसिम्हा फिल्म बनाने वाले डायरेक्टर अश्विन कुमार ऋतिक को लेकर एक माइथोलॉजिकल स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं। चर्चाएं गर्म है कि अश्विन कुमार एक ऐसी भव्य पौराणिक फिल्म पर काम कर रहे हैं जो भगवान शिव पर केंद्रित होगी। इस फिल्म के केंद्र में वो रूप होंगे जो पुरुष और प्रकृति यानी सृजन और विध्वंस दोनों का संतुलन है। बताया जा रहा है कि अश्विनी कुमार की इस फिल्म में भगवान शिव के नटराज और अर्धनारीश्वर रूप पर फोकस होगा। पर इन दोनों महाकिरदारों के लिए अश्विन की नजर ऋतिक रोशन पर लंबे अरसे से टिकी हुई है। पिछले साल महावतार नरसिम्हा की रिलीज के समय डायरेक्टर अश्विन कुमार ने इंडिया टुडे को दिए इंटरव्यू में इस बात का जिक्र भी किया था।
1: Demigod personified. When look, if you look at his structure and you, and he's very good mover and he's a dancer. So I think him playing some sort of a fantastical character, apart from the film that he does, is a part of his career. I think he should. I think I would want to see him in that kind of a fantastical role.
2: What would be that fantastic?
1: Probably as the Nataraj, a dancer. A dancer who would create or destroy cosmically.
2: Wow, that's amazing. Hope people are listening to this and something comes up. Or you make one where we
1: Yeah, perhaps yes. If by the mercy of Lord Shiva and grace of His, yes.
0: का शानदार बॉडी स्ट्रक्चर और उनके ग्रेसफुल मूव्स इन दोनों किरदारों के लिए उन्हें बिल्कुल परफेक्ट बनाते हैं। हालांकि अभी फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम हो रहा है और ये बेहद शुरुआती दौर में है, लेकिन चर्चाओं का बाजार गर्म है। खबर है कि अपने इस प्रोजेक्ट को लेकर अश्विन कुमार ने कुछ दिन पहले ही ऋतिक रोशन से मुलाकात की है और ऋतिक रोशन को उन्होंने इस फिल्म का नरेशन भी दिया है। सूत्रों की माने तो ऋतिक को फिल्म का अनोखा कॉन्सेप्ट बेहद पसंद आया है।
3: आज की जो वायरल न्यूज है उससे ये पता चल रहा है कि ऋतिक रोशन हमको बहुत ही जल्द एक नए अवतार में नजर आएंगे। ये अवतार में जिसकी बात कर रही हूँ वो है अर्धनारेश्वर का, जो वो बहुत ही जल्द प्ले करते हुए नजर आ सकते हैं, बिकॉज जो डायरेक्टर है महाअवतार नरसिम्हा के अश्विन कुमार ने ये स्क्रिप्ट ऋतिक के पास ले गए और ऐसा कहा जा रहा है कि ऋतिक को ये स्क्रिप्ट बहुत पसंद भी आई है और चांसेस है कि ऋतिक ये किरदार प्ले कर सकते हैं। और यही नहीं, ये एक्चुअली न्यूज हमसे ही अश्विन कुमार ने बहुत एक साल पहले न्यूज ब्रेक की थी कि ही इज इंटरेस्टेड टू वर्क विथ ऋतिक रोशन और वो उनको अर्धनारेश्वर के रूप में दिखते हैं। तो ये बहुत एक्साइटिंग खबर है ऋतिक के फैंस के लिए। और हमने महा अवतार नरसिम्हा देखा ही है, वो एक विजुअल स्पेक्टेकल था और लोगों को बहुत पसंद भी आया था। एंड दिस इज अगेन, हम ऋतिक को बहुत ही अलग अवतार में देखेंगे। उनको हमने बहुत सुपर हीरो रोल्स प्ले करते हुए देखा है, बट दिस विल बी समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग फॉर द फैंस जो उनको बहुत समय से बड़े पर्दे पे देखना चाहते हैं। एंड दिस विल बी अ विजुअल ट्रीट फॉर ऑल ऑफ अस।
0: अभी ये चर्चा चल ही रही थी कि इसी बीच ऋतिक रोशन की ओर से की गई एक सोशल मीडिया पोस्ट ने चर्चा को जरा और हवा दे दी। इस पोस्ट में ऋतिक ने अपना एक पिक्चर शेयर किया है जिसमें वे पेरिस में घूमते नजर आ रहे हैं। फोटो के साथ ऋतिक ने लिखा है, मुझसे अभी पूछा गया कि मैं किस तरह का रोल ढूंढ रहा हूँ। मैंने इसका जवाब सोचा तो मैं खुद हैरान रह गया। आपको फिल्म लक बाय चांस का जफर याद है? बस वैसा ही कुछ अगर मिल जाए तो मैं तुरंत काम करने के लिए तैयार हो जाऊंगा, लेकिन डायरेक्टर्स मुझे सिर्फ गुड गाय के रोल ही देना चाहते हैं। ऋतिक की इस पोस्ट के बाद ये चर्चा और तेज हो गई है कि कहीं गुड गाय रोल से उनका इशारा डायरेक्टर अश्विन कुमार के ऑफर की तरफ तो नहीं है, क्योंकि महादेव से बड़ा गुड गाय भला कौन ही हुआ है और होगा। अगर ऐसा होता है तो ऋतिक जल्द ही पर्दे पर महादेव के रोल में नजर आ सकते हैं। ऋतिक के फैंस उन्हें शिवजी के अवतार में तांडव करते देखने के लिए खासे एक्साइटेड होंगे। वैसे आपको बता दें कि इस समय बॉलीवुड और साउथ फिल्मों के कई ए-लिस्ट स्टार्स अलग अलग मैथोलॉजिकल फिल्मों में काम कर रहे हैं। इनमें सबसे बड़ा और चर्चित नाम है रणवीर कपूर का। संजू और एनिमल जैसी फिल्मों में अपनी वर्सेटैलिटी साबित करने के बाद रणवीर अब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का बेहद शांत और शक्तिशाली किरदार निभाने जा रहे हैं। नितेश तिवारी की भव्य फिल्म रामायणम में रणवीर का ये रूप देखने के लिए फैंस का उत्साह सातवें आसमान पर है।

0: इसके अलावा धुरंधर के रहमान डकैत यानी अक्षय खन्ना का अगला बड़ा प्रोजेक्ट भी एक ऐसे ही कैरेक्टर से जुड़ा है। अक्षय खन्ना फिल्म महाकाली के जरिए तेलुगु सिनेमा में डेब्यू कर रहे हैं। अक्षय इस फिल्म में असुर गुरु शुक्राचार्य के एक बेहद जटिल और शक्तिशाली अवतार में नजर आने वाले हैं। इस किरदार में स्क्रीन पर एक रहस्यमयी किरदार के कई ग्रे शेड्स नजर आएंगे। तो वहीं डायरेक्टर राजा मौली की अगली फिल्म वाराणसी भी अपने आप में कई पौराणिक किरदारों और संदर्भों को समेटे है। ये एक टाइम ट्रेवल कॉन्सेप्ट पर बनी एक्शन एडवेंचर फिल्म बताई जा रही है, जिसके ट्रेलर में त्रेता युग में घटी घटनाओं और रामायण के संदर्भों को साफ तौर पर देखा जा सकता है। राजा मौली की इस फिल्म में महेश बाबू और प्रियंका चोपड़ा मुख्य किरदार निभा रहे हैं।
1: Tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tu

0: मैथोलॉजिकल कैरेक्टर निभाने के मामले में न्यूकमर्स भी पीछे नहीं हैं। चर्चा है कि सैयारा फिल्म से रातों रात छा जाने वाली एक्ट्रेस अनीत फड्डा भी मैडॉक फिल्म्स के लिए मैथोलॉजिकल कैरेक्टर प्ले करती दिख सकती हैं। इस फिल्म का नाम है शक्तिशालिनी, जिसमें अनीता फड्डा दोहरी भूमिका में नजर आएंगी। फिल्म अच्छाई और बुराई के संग्राम से जुड़ी बंगाली लोक कथाओं पर आधारित होगी, जिसमें अनीता देवी माँ से प्रेरित रक्षक यानी शक्ति के किरदार में दिख सकती हैं, तो वहीं दूसरा किरदार शालिनी एक बुरी और दुष्ट ताकत पर आधारित होगा। अब चाहे वो ऋतिक रोशन का नटराज रूप धारण करने की चर्चा हो, रणवीर का राम बनना हो या अक्षय खन्ना का शुक्राचार्य के रूप में आना, साफ है कि मेकर्स अब बड़े सितारों के स्टारडम को इतिहास और पुराणों की अमर गाथाओं के साथ जोड़कर बॉक्स ऑफिस पर नया इतिहास रचने की तैयारी में है। मुंबई से अनीता बिटो के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: अब तक तो रणबीर कपूर की रामायण और राजामौली की वाराणसी का ही इंतजार लोगों का था, लेकिन अब ऋतिक की इस मूवी को लेकर भी बज नजर आ रहा है। एक के बाद एक कई मैथोलॉजिकल फिल्में सिल्वर स्क्रीन पर आने वाली हैं। वैसे देखिए, आस्था से जुड़े हुए विषयों पर बॉलीवुड में ना पहले भी कई बार शानदार फिल्में बनाई गई हैं, जहां सबकी भावनाओं का ख्याल रखते हुए पौराणिक किरदारों को बेहद भव्यता और सम्मान के साथ पर्दे पर दिखाया जाता है। और इन विषयों पर बॉलीवुड में ना पहले भी कई बार शानदार फिल्में बनाई गई हैं, जहां सबकी भावनाओं का ख्याल रखते हुए पौराणिक किरदारों को बेहद भव्यता और सम्मान के साथ पर्दे पर दिखाया जाता है, और इन फिल्मों को लोगों का खूब प्यार भी मिला है।
2: कौन है?
3: भगवान।
2: भगवान।

0: यात्री यहाँ आते हैं तीर्थ पे अपने भगवान से मिलने, और उनकी सुविधा हमारा धर्म है।
1: ईश्वर में आस्था, भगवान में विश्वास वो नेमत है जो सदियों की सोच समझ संवेदनाओं की छलनी से छनकर हम तक पहुंची है। कभी वेद पुराण शास्त्र जैसे तमाम ग्रंथों और रचनाओं के जरिए, तो कभी दादी नानी की कहानियों के जरिए पीढ़ी दर पीढ़ी इंसानों को आस्था की ये डोर इतने विश्वास के साथ थमाई जाती है कि ये हमारे व्यक्तित्व में रच बस जाती है। और यही विश्वास जब सिनेमा के पर्दे पर लार्जर देन लाइफ अंदाज में बेहद भव्यता के साथ साकार होता है, लोग उसे हाथों हाथ लेते हैं। बीते सालों में बॉलीवुड की कई फिल्मों ने इस विश्वास को बढ़ाया भी है, संवारा भी है और एक नए रूप में पर्दे पर उतारा भी है।
2: जब तक लोग ऐसे खिलौनों में मानते रहेंगे ना, तब तक हमारा धंधा चलता रहेगा।
3: ये भगवान की मूर्ति है, इसको खिलौना मत बोलिए।
2: अरे भगवान भगवान है ना, वो तुम इंसानों का भ्रम है।
4: तेरे सक्षम में पाप के लिए दंड मिलेगा तुझे, वो स्वयं दंड।
1: 2012 में आई ओ माय गॉड एक ऐसी फिल्म थी। ओ माय गॉड एक ऐसे इंसान की कहानी थी जिसे भगवान में विश्वास नहीं था। इस अविश्वास को विश्वास में बदलने के लिए खुद भगवान ने धरती पर उतरकर घटनाओं का ताना बाना बुना था। बाद में इसका पार्ट 2 भी रिलीज किया गया। अक्षय कुमार ने इस फिल्म के पहले भाग में भगवान कृष्ण तो दूसरे भाग में भगवान शिव का किरदार निभाया था।
5: महाराज तुम तो उल्टी गंगा बहा रहे हो। गंगा कहाँ से बहती है इसके बारे में मुझे मत बता।
1: कमाल की बात ये थी कि इस फिल्म में भगवान ने एक इंसान का भरोसा जीतने के लिए खुद इंसानियत का रास्ता चुना था। इसी कॉन्सेप्ट पर बनी ओ माई गॉड फिल्म को लोगों ने बेहद पसंद किया था। ये पहली बार था जब किसी फिल्म ने नई पीढ़ी के सामने अध्यात्म के धागों के साथ इंसानियत के धर्म और विज्ञान के लॉजिक को बड़े असरदार तरीके से पिरोने और बुनने की कोशिश की थी।
6: आशीर्वाद नहीं चाहिए, पैसे चाहिए।

0: भगवान अमरेंद्र बाहुबली का रक्त हो तुम।
1: लेकिन वही असल दुनिया से परे एक कहानी पर आधारित बाहुबली फिल्म में डायरेक्टर राजा मौली ने सर्वशक्तिमान की सत्ता को बेहद दमदार तरीके से दिखाया था। बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए ईश्वर का आशीर्वाद और साथ कितना जरूरी है, ये फिल्म की कहानी में एक नहीं बल्कि कई मौकों पर दिखाया गया। फिल्म के मुख्य किरदार का नाम ही शिवा रखा गया। बाहुबली में शिवलिंग उठाने और लड़ाई से पहले रक्त से महादेव का अभिषेक करने वाला सीन आज भी लोगों के मन में बसा है।

2016 में रिलीज हुई अजय देवगन की फिल्म शिवाय में भी फिल्म के मुख्य किरदार को महादेव से प्रेरित दिखाया गया था। इस फिल्म में अजय देवगन ने एक शेरदिल पर्वतारोही का किरदार निभाया था।

0: ने एक शेरदिल पर्वतारोही का किरदार निभाया था।
1: आग बहे तेरी रग में।
0: शिवाय की जिंदगी में भगवान शिव के प्रभाव को फिल्म की कहानी में दिखाया गया था। इसी तरह सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म केदारनाथ भी भगवान शिव की महिमा पर आधारित है। इस फिल्म में 2013 की केदारनाथ त्रासदी का जिक्र किया गया है। फिल्म की ज्यादातर शूटिंग केदारनाथ में हुई थी। फिल्म का गाना नमो नमो हे शंकरा आज भी लोगों की जुबान पर है।

0: एक कौन सा सैटेलाइट है जिससे दुनिया भर की जुबानें तू कैच कर लेता है?
1: सर मैं जुबान कैच नहीं करता सर।
2: इसी क्रम में आदित्य पंचोली की फिल्म सैटेलाइट शंकर के समय इस सीरियल की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई थी कि जब ये टीवी पर आता था तो हर जगह सन्नाटा छा जाता था। इस सीरियल ने लोगों के दिलों में अरुण गोविल को राम और दीपिका चिखलिया को सीता के रूप में ऐसा बसाया कि आज भी ये छवि धूमिल नहीं हुई है। इससे इतना तो साफ हो जाता है कि अगर लोगों की भावनाओं और आस्था को उचित सम्मान देकर फिल्में बनाई जाएं, तो न केवल वे सुपरहिट होती हैं, बल्कि लोगों की यादों में हमेशा के लिए रह जाती हैं। यही वजह है कि फैंस ने रामायणम और वाराणसी जैसी फिल्मों से खासी उम्मीद लगा रखी है। और उसी बीच अगर ऋतिक रोशन भी महादेव के रूप में पर्दे पर आ जाते हैं तो फैंस के लिए ये एक शानदार तोहफा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: अब बात फिल्मी फ्राइडे की करते हैं। फिल्मी फ्राइडे पर इस बार एंटरटेनमेंट का ट्रिपल डोज हम सबको देखने को मिला है। एक तरफ नई रिलीज जवानी है तो इश्क होना है और बंदर धमाल मचा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ रामचरण की फिल्म पैडी पहले ही बॉक्स ऑफिस पर अपना दमखम दिखा रही है। फिल्म के ताबड़तोड़ और रिकॉर्ड तोड़ शुरुआत ने इंडस्ट्री में एक नई चर्चा को छेड़ दिया है। रामचरण की फिल्म ने ओपनिंग कलेक्शन के साथ बॉलीवुड की कई ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस लिस्ट में रणवीर सिंह की 30 करोड़ ओपनिंग करने वाली धुरंधर, 40 करोड़ फर्स्ट डे कलेक्शन करने वाली सनी देओल की गदर 2 और 57 करोड़ ओपनिंग अपने नाम करने वाले शाहरुख खान की पठान शामिल हैं। पहले दिन पैडी नेट कलेक्शन प्रीव्यूज शोज के साथ लगभग 70 करोड़ इसका पहुंचा कलेक्शन और वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन 112 करोड़ के नजदीक पहुंच गया है। इन तीनों फिल्मों में सबसे ज्यादा कमाल दिखा रही है फिल्म पैडी। पैडी इस समय बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है। दमदार एक्शन और जोरदार एक्टिंग से भरपूर रामचरण की इस फिल्म ने पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया है। फिल्म की रिकॉर्ड तोड़ शुरुआत ने इंडस्ट्री में एक नई चर्चा को छेड़ दिया है। रामचरण की फिल्म ने ओपनिंग कलेक्शन के साथ बॉलीवुड की कई ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्मों के रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया है।

मेगास्टार रामचरण ने बॉक्स ऑफिस पर तूफान ला दिया है। उनकी फिल्म पेडी ने रिलीज के पहले दिन ही धमाल मचा दिया। फिल्म को लेकर फैंस में भारी उत्साह है। आलम ये बना हुआ है कि फैंस थिएटर के अंदर हो या बाहर, जश्न मनाते नजर आ रहे हैं। कहीं ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया गया तो कहीं दर्शक सीटियां और ताली बजाते दिखे। ये ही उत्साह फिल्म के फर्स्ट डे कलेक्शन में भी नजर आया। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म को शानदार रिस्पांस मिल रहा है, तभी तो पेडी ने रिलीज के पहले दिन ही 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। शुरुआती रिपोर्ट्स बता रही हैं कि फिल्म ने पहले दिन भारत में नेट कलेक्शन के तौर पर 69 करोड़ 50 लाख रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 112 करोड़ 49 लाख रुपए से ऊपर पहुंच गया, जो किसी भी बड़ी फिल्म के लिए शानदार शुरुआत मानी जा रही है। इतना ही नहीं, रामचरण की फिल्म ने ओपनिंग कलेक्शन के साथ बॉलीवुड की कई ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्मों के रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। इस लिस्ट में रणवीर सिंह की 30 करोड़ ओपनिंग करने वाली धुरंधर, 40 करोड़ फर्स्ट डे कलेक्शन करने वाली सनी देओल की गदर 2 और 57 करोड़ की ओपनिंग अपने नाम करने वाली शाहरुख खान की पठान भी शामिल है। इन आंकड़ों से साफ है कि फिल्म का क्रेज न सिर्फ दक्षिण भारत में है बल्कि हिंदी बेल्ट में भी देखने को मिल रहा है। रामचरण और जानवी कपूर की पेडी 5 भाषाओं में सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। सबसे ज्यादा कलेक्शन तेलुगु भाषा में हासिल हुआ, जो 47 करोड़

0: 20 लाख रुपए रहा। इसके बाद हिंदी में 3 करोड़ की कमाई हुई, जबकि तीसरे नंबर पर तमिल भाषा से 45 लाख की कमाई इस फिल्म ने कर ली है। वहीं चौथे पायदान पर कन्नड़ में 25 लाख का कलेक्शन फिल्म ने किया है। आखिर में मलयाली भाषा में 10 लाख का कलेक्शन फिल्म ने हासिल किया है। बेदी फिल्म ने जानवी कपूर के करियर को भी नई उड़ान दी है। फिल्म में उनके काम को लेकर सोशल मीडिया पर खूब चर्चा है। जानवी फिल्म की सक्सेस के लिए दुआ मांगने तिरुपति मंदिर भी पहुंची थी। 2024 में आई फिल्म देवरा के बाद पेड्डी जानवी की दूसरी साउथ फिल्म है। फिल्म के रिलीज के बीच वो ईश्वर का आशीर्वाद और फिल्म की हिट होने की मन्नत मांगने तिरुमला पहुंची थी। तब उनका कैजुअल लुक में बालाजी मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने का वीडियो खूब सुर्खियों में रहा। फिल्म में रामचरण और जानवी की केमिस्ट्री भी फैंस को बेहद पसंद आ रही है। असल में ये फिल्म 1980 के दशक के आंध्र प्रदेश की वो कहानी है, जहां एक गांव का नौजवान अपने लोगों को एकजुट करने के लिए क्रिकेट, कुश्ती और दौड़ के मैदान में उतरता है, सम्मान और पहचान की लड़ाई लड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: आप भी अपने वीकेंड को अच्छा बनाइए, क्योंकि इस एंटरटेनमेंट के डोज में आप भी तड़का लगा सकते हैं, क्योंकि आपके पास है ढेरों ऑप्शंस। फिलहाल इजाजत दीजिए, अच्छी खबरें जारी हैं, देखते रहिए जीएनटी।

0: बंगाल बांग्लादेश बॉर्डर पर लोगों की भीड़ क्यों? बीएसएफ कर रही बॉर्डर पर तारबंदी, लोगों का विरोध। यूपी में पहले पीटा, फिर जबरन जय श्री राम बुलवाया। सड़क पर दिखा इंसानियत का सबसे खूबसूरत चेहरा। वायरल खबरों की पूरी और पक्की पड़ताल देखिए नवजोत रंधावा के साथ फैक्ट चेक शाम 7:34 पर।
1: Tune in's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
2: Missed out on your latest podcast episodes? Don't worry. TuneIn has got you covered. Not only can you catch up and stream all the episodes you missed, but we can remind you when the next episode airs so you don't miss a thing. Just favorite the podcast you love. All new episodes will appear on the homepage. Nice, right?
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से देशवासियों से फॉरेन ट्रिप की बजाय स्वदेश घूमने की अपील की है, तो जीएनटी भी आप लोगों से अपने आसपास की खूबसूरत ऐतिहासिक जगहों की तस्वीरों को शेयर करने की लगातार अपील कर रहा है। हम आपके भेजे गए उन वीडियोस को जीएनटी पर लगातार दिखा भी रहे हैं। ऐसा ही एक वीडियो आया है बिहार के बेगूसराय से, जहां का एक ऐतिहासिक राम जानकी मंदिर आस्था विश्वास की जीती जागती मिसाल है। और बताया जाता है कि इस मंदिर में अयोध्या से जुड़ी धरोहरें हैं। तो चलिए आपको भी बिहार के इस 300 साल पुराने गौरवशाली वैभव के दर्शन करवाते हैं।

0: हेलो दोस्तों, वेलकम टू मिनी ब्लॉग। तो आपका स्वागत है एक छोटा सा ब्लॉग में घुमक्कड़ विशाल। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे सलोना बड़ी ठाकुरबाड़ी
1: का मुख्य द्वार है, तो मैं इससे अंदर प्रवेश कर रहा हूँ और सामने में ये प्यारा सा महल का यह दृश्य काफी सुंदर दिख रहे हैं, तो मैं इससे अंदर की ओर और बढ़ रहा हूँ।
0: सामने आप देख सकते हैं नागर शैली में निर्मित प्यारा सा लाल पत्थर से नक्काशी गई मंदिर जो ठाकुर जी को समर्पित है। यह मंदिर लगभग 300 साल पुराना है। इसे बनवाने में 16 वर्षों का समय लगा था, जो इस मूर्ति कला और स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना प्रदर्शित करता है। तो आप देख सकते हैं यह मंदिर ठाकुर जी रामलला को समर्पित है। काफी सुंदर पत्थर की नक्काशी मूर्ति स्थापित है अंदर, तो आपको हम नजदीक से दिखा रहे हैं।
1: मंदिर में सीता

0: तो आप भी अपने देश में ही सैर सपाटा करने अपने गांव और शहर में सैलानियों को इनवाइट कर सकते हैं, टूरिज्म को बढ़ावा देने के संकल्प के भागीदार बन सकते हैं। बस करना सिर्फ इतना सा है कि अगर आपके आसपास कोई खूबसूरत जगह है या फिर आपके शहर में आने की कोई खास वजह है तो उठाइए अपना कैमरा, स्टार्ट कर दीजिए ब्लॉग्स बनाने। फिर हमें 7303409922 नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, हम उसे GNT पर जरूर दिखाएंगे।
1: गुड न्यूज़ टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।

0: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
1: 1 second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In 1 second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
2: Hey, it's Billy Bush. Tune into my show, Hot Mics, Monday to Thursday at noon Eastern, 9 a.m. Pacific for the latest in politics, entertainment, tech, sports, pop culture, and much more. Just tell your device to play Hot Mics on TuneIn to listen.
3: बंगाल बांग्लादेश बॉर्डर पर लोगों की भीड़ क्यों? बीएसएफ कर रही बॉर्डर पर तारबंदी, लोगों का विरोध। यूपी में पहले पीटा, फिर जबरन जय श्री राम बुलवाया। सड़क पर दिखा इंसानियत का सबसे खूबसूरत चेहरा। वायरल खबरों की पूरी और पक्की पड़ताल देखिए नवजोत रंधावा के साथ फैक्ट चेक शाम 7:34 पर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट srmup.in।
6: गुजरात और दमन के दौरे पर पीएम ने दिया विकास का तोहफा। हजीरा में लार्सन एंड ट्रूबो की इंडस्ट्रियल फैसिलिटी का लिया जायजा। सूरत को 200 बेड वाले अस्पताल की सौगात। चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह देखने को मिला। अब तक 30 लाख से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन। केदारनाथ पहुंचने वालों का आंकड़ा 11 लाख के पार। देश दुनिया में मनाया जा रहा है पर्यावरण दिवस। सूरत में पीएम मोदी ने लगाया एक पेड़ मां के नाम। पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण की अपील। भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर शानदार खबर। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 7.7% रही जीडीपी ग्रोथ। जनवरी से मार्च की तिमाही में 7.8% की दर से हुई वृद्धि। नहीं बदलेगी आपके लोन की ईएमआई। आरबीआई ने रेपो रेट 5.25% रखी बरकरार। विदेशी निवेशकों को लुभाने के लिए उठाए कदम।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
6: सूरत के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हजीरा में एलएनटी प्लांट का किया दौरा। औद्योगिक कार्यों और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की। पीएम मोदी ने एलएनटी प्लांट में जोरावर टैंक का भी लिया जायजा। भारतीय सेना के लिए सबसे नया टैंक है जोरावर।

0: डीआरडीओ ने एलएनटी के साथ मिलकर तैयार किया है लाइट टैंक जोरावर। अगले साल तक भारतीय सेना को पूर्वी लद्दाख में तैनात करने के लिए मिल जाएगा ये टैंक। भारतीय सेना का फ्यूचरिस्टिक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल प्रोग्राम का एंट्री मॉडल भी हो रहा है तैयार। भारतीय सेना के सोवियत मूल के BMP-2 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स की लेगा जगह। पीएम ने हजीरा में एलएनटी प्लांट में ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की प्रगति की समीक्षा की। भविष्य के स्वच्छ ऊर्जा स्रोत के लिए अहम है ये प्लांट। पीएम ने देश को दी 20,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात। सूरत में 18,000 करोड़ के विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास। वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के पैकेज 6 और 7 का भी उद्घाटन। गुजरात और महाराष्ट्र के बीच कनेक्टिविटी और आर्थिक संपर्क को मजबूत करना उद्देश्य। सूरत में 200 बेड्स वाले ईएसआईसी अस्पताल का भी किया उद्घाटन। विशाल जनसभा को भी किया संबोधित। सूरत के दौरे के बाद केंद्र शासित प्रदेश दमन पहुंचेंगे पीएम। दमन में हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का करेंगे उद्घाटन। दमन में लोगों के बेहतर स्वास्थ्य और सुविधाओं का मिलेगा लाभ। तो वहीं नमो अस्पताल का भी उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। कन्वेंशन सेंटर NIFT कैंपस का भी उद्घाटन और शिलान्यास। गुजरात के डिप्टी सीएम हर्ष संघवी ने 5 किलोमीटर चलाई साइकिल। लोगों से पेट्रोल और डीजल बचाने की अपील। भारत की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर। वित्त वर्ष 2026 में जीडीपी विकास दर अनुमान से ज्यादा 7.7% की वृद्धि दर्ज। बलिया के सोरहा ताल को यूनेस्को की तरफ से मिला रामसर साइट का दर्जा। वैश्विक पहचान और इको टूरिज्म की बढ़ेंगी संभावनाएं। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित को अगला वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ किया गया नियुक्त। 1 जुलाई से संभालेंगे नया पदभार। त्रिपुरा के बॉर्डर इलाके में पहुंचे गृह मंत्री। भारत बांग्लादेश सीमा पर लंकामुरा बॉर्डर आउटपोस्ट पर बीएसएफ के अत्याधुनिक हथियारों का निरीक्षण। मिर्जापुर में मां पीताम्बरी देवी मंदिर में सीएम योगी के जन्मदिन का आयोजन किया गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं की मां की विशेष याद। पार्टी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री की फोटो को खिलाई मिठाई। तो वहीं खिंचवाई फोटो। दिल्ली के कालकाजी मंदिर में मनाया गया यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का जन्म दिवस। सीएम की दीर्घायु और स्वास्थ्य की कामना के साथ किया गया रुद्राभिषेक। सीएम योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन पर खास पूजा अर्चना का आयोजन किया गया और साथ ही चढ़ाया गया 51 किलो के लड्डुओं का प्रसाद। यूपी के झांसी में महिलाओं ने केक काटकर मनाया सीएम योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन। सीएम योगी को जन्मदिन की बधाई दी। देश दुनिया में मनाया जा रहा है पर्यावरण दिवस। सूरत में पीएम मोदी ने एक पेड़ मां के नाम के तहत लगाया पौधा। तो वहीं लोगों से पौधा लगाने की अपील। विश्व पर्यावरण दिवस पर लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया पौधारोपण। लोगों को दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश। आगरमालवा के सिपाही बंटी धाकड़ की पर्यावरण को लेकर शानदार पहल देखने को मिली। ग्रीन आर्मी बनाकर लोगों को पौधारोपण के लिए कर रहे प्रेरित। साइकिल यात्रा से भी बंटी लोगों को कर रहे हैं जागरूक। पेड़ लगाने के बताते हैं फायदे। बंटी धाकड़ के प्रयासों से लगाए गए सैकड़ों पौधे अब बन चुके हैं पेड़। पेड़ों की छाया से लोगों को मिल रही है राहत। चमोली की प्रसिद्ध फूलों की घाटी में विश्व पर्यावरण दिवस पर पर्यटकों ने किया पौधारोपण। एक पेड़ मां के नाम का दिया संदेश। अलवर के बुजुर्ग सुरेंद्र सेन लोगों में जगा रहे पर्यावरण की अलग। 46 साल से करते आ रहे हैं पौधारोपण। विश्व पर्यावरण के मौके पर गाजियाबाद के डीएम ने लोगों को जागरूक किया। तो वहीं MMH गर्ल्स इंटर कॉलेज के परिसर से किया पौधारोपण। दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने एक पौधा मां के नाम अभियान में पौधारोपण किया, पर्यावरण को लेकर लोगों को जागरूक किया। वायुसेना के 94वें एनिवर्सरी को लेकर शानदार तैयारी, हिंडन एयरफोर्स स्टेशन से होगी समारोह की शुरुआत। नर्मदा में ऐतिहासिक स्टैचू ऑफ यूनिटी बना वर्ल्ड क्लास टूरिस्ट डेस्टिनेशन, पीएम मोदी के विदेश के बजाय देश के पर्यटक स्थलों पर जाने के आह्वान का दिखा असर। प्रदूषण मुक्त ट्रांसपोर्टेशन के साथ पर्यावरण सुरक्षा को लेकर कई योजनाओं की हुई शुरुआत, तो वहीं पीएम ने किया था भारत के पहले ई व्हीकल ओनली जोन के तौर पर डेवलप करने का ऐलान। 5 सालों में स्टैचू ऑफ यूनिटी अथॉरिटी द्वारा चलाए गए लगभग 459 इलेक्ट्रिक व्हीकल, ग्रीनिंग एकता नगर के तहत 60 लाख से ज्यादा नए पेड़ लगाने का अभियान। सैलानियों का मंत्रमुग्ध करती एकता नगर की हरियाली और कुदरती खूबसूरती देखने को मिली, सड़कों के आसपास लगाए गए 15 लाख पौधे। उज्जैन के महाकाल मंदिर में भक्तों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए प्रशासन ने कसी अपनी कमर, देर रात से भस्म आरती में हिस्सा लेने वाले भक्तों ने किया संवाद। बद्रीनाथ धाम में तेजी से बढ़ रही है श्रद्धालुओं की संख्या, अब तक करीब 9 लाख लोगों को बाबा बद्री विशाल के दिव्य दर्शन। यात्रा की शुरुआत से ही रिकॉर्ड संख्या में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु, हर तरफ छाया भक्ति का माहौल। बद्रीनाथ में रुक रुक कर हो रही है बारिश, सुहावने मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं तीर्थयात्री। प्रशासन की तरफ से श्रद्धालुओं की सहूलियतों का रखा जा रहा है खास ख्याल, सुगम दर्शन के लिए की जा रही है सारी व्यवस्थाएं। केदारनाथ में दिखी प्रशासन की शानदार तैयारी, बीमार श्रद्धालु का हेलीकॉप्टर से पहुंचाया गया हायर सेंटर, मौके से हो चुका है इलाज। बागेश्वर धाम में हजारों श्रद्धालुओं ने सामूहिक हनुमान चालीसा हवन में हिस्सा लिया, भक्ति के रंग में अद्भुत नजारा देखने को मिला। हनुमान चालीसा के मंत्रोच्चार के बीच हजारों श्रद्धालु हवन में हुए शामिल, रात के अंधेरे में जलते हवन कुंडों की रोशनी दूर तक दिखाई दी। हजारों भक्तों के साथ पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी सामूहिक हनुमान चालीसा हवन में हिस्सा लिया, भक्ति भाव से सराबोर माहौल। बागेश्वर धाम में श्री हनुमान चालीसा हवन समारोह का 6वां आयोजन किया गया, रोशनी और भक्ति का दिखा अनोखा संगम। सामूहिक हनुमान चालीसा हवन समारोह में शामिल होने के लिए घंटों पहले से ही भक्त हुए एकत्रित, हवन कुंड में आहुति दी। कोची में मानसून की बारिश का दौर लगातार जारी, अगले कुछ दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने के अनुमान। कोची में मानसून की बारिश के चलते तापमान में दर्ज की गई कमी, कई जगहों पर रुक के चल रही है ट्रैफिक। केरलम के 8 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी, मौसम विभाग ने मध्यम से तेज बारिश की जताई संभावना। दिल्ली एनसीआर में सुबह से छाए बादल, तापमान में दर्ज की गई गिरावट, वीकेंड के भी कूल रहने के अनुमान। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का कई दूसरे राज्यों में भी दिख रहा है असर, हरियाणा पंजाब में भी मौसम विभाग ने प्री मानसूनी बारिश का जताया अनुमान। काजल अग्रवाल और श्रेयस तलपड़े की फिल्म द इंडिया स्टोरी का नया टीजर हुआ रिलीज, खेती में जहरीले कीटनाशकों के दुरुपयोग और खाद्य पदार्थों में मिलावट जैसे गंभीर मुद्दों पर बनी है फिल्म। एक बार फिर से बड़े पर्दे पर लौट रही है लोकप्रिय एनिमेटेड फ्रेंचाइजी आइस एज, नई फिल्म आइस एज बॉइलिंग प्वाइंट का टीजर और पोस्टर जारी। फिल्म भारत भाग्य विधाता को प्रमोट करने में जुटी हैं कंगना रनौत, देश के बड़े बड़े शहरों में जाकर अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े असंग हीरोज को सम्मानित करने का अभियान शुरू करेंगी। एक्टर जैकी श्रॉफ की आज वेडिंग एनिवर्सरी पर पत्नी आयशा श्रॉफ ने शेयर की अनसीन फोटोज, लिखा मेरी जिंदगी के सबसे बड़े सहारे। श्रद्धा कपूर और करण जौहर के बाद एकता कपूर ने ज्वेलरी बिजनेस में रखा है अपना कदम, लैब ग्रोन डायमंड ब्रांड एकत्र ज्वेल्स के साथ जुड़ी। रामचरण की फिल्म पेटी ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर किया शानदार प्रदर्शन. फिल्म का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन 112.49 करोड़ पर पहुंचा. पेटी ने रणवीर सिंह की धुरंधर और सनी देओल की गदर 2 जैसी फिल्मों के ओपनिंग डे रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है. भारत में पहले दिन पेटी की कमाई रही 69.5 करोड़ रुपए. फिल्म पंडितों के मुताबिक पेटी का शानदार सफर आगे भी रहेगा जारी. पेटी की सफलता के लिए जानवी कपूर आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर पहुंची. सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जानवी कपूर का वीडियो. जानवी कपूर की सादगी की जमकर हो रही है तारीफ. उन्होंने नंगे पैर 3,500 से ज्यादा सीढ़ियां चढ़ी और भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन किए. सिनेमा लवर्स के लिए गुड न्यूज. बड़े पर्दे पर रिलीज हुई बॉबी देओल की फिल्म बंदर और वरुण धवन की है जवानी तो इश्क होना है. इमरान हाशमी की फिल्म आवारापन 2 सिनेमा घरों में रिलीज के लिए तैयार. आवारापन 2 के सेट से इमरान हाशमी ने शेयर की तस्वीर. मोहनलाल की फिल्म दृश्यम 3 का बॉक्स ऑफिस पर जलवा लगातार बरकरार. दृश्यम 3 ने 15वें दिन 1.5 करोड़ का कलेक्शन किया. रणवीर सिंह की धुरंधर अब जापान में दिखाएगी जलवा. 10 जुलाई को रिलीज होगी धुरंधर पार्ट 1. अब टीवी पर दर्शक देख सकेंगे धुरंधर पार्ट 2. जियो हॉटस्टार पर आज से रेगुलर सब्सक्राइबर्स के लिए अवेलेबल है. कल से शुरू होगा भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच. न्यू चंडीगढ़ के महाराजा यादवेंद्र सिंह स्टेडियम में इस सीजन भारत का पहला टेस्ट होगा. भारत अफगानिस्तान का मुकाबला आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का नहीं है हिस्सा. इस मैच में भारत से 2 खिलाड़ियों के डेब्यू की संभावना. भारतीय बल्लेबाजी क्रम में नंबर 3 के लिए साई सुदर्शन और देवदत्त पड्डिकल के बीच मुकाबला. हालिया फॉर्म को देखते हुए पड्डिकल का खेलना लगभग तय. विदर्भ के हर्ष दुबे और राजस्थान के मानव सुथार में किसी एक को टेस्ट डेब्यू का मिल सकता है मौका. जसप्रीत बुमराह को आराम दिए जाने के कारण सिराज करेंगे पेस बॉलर्स को लीड. अफगानिस्तान की टीम कमान हशमतुल्लाह शाहिदी संभालेंगे. टेस्ट के बाद 3 वनडे खेले जाएंगे. बैंकॉक में चींटियों का अनोखा कैफे देखने को मिला. यहां पर लोग चोटियों की दुनिया को करीब से देख सकते हैं. कैफे में पारदर्शी पाइप और ग्लास चेंबर बनाए गए हैं. इन चींटियां भोजन जुटाने और कॉलोनी चलाने का काम करती दिखी. कैफे में एक दुर्लभ जीवित रानी चींटी भी प्रदर्शित है. दक्षिणी थाईलैंड की है और करीब 30 साल तक जीवित रह सकती है. कैफे में परिवार और बच्चे बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और चींटियों के व्यवहार और उनकी संगठित जीवन शैली को समझ रहे हैं. नियमित आने वाले ग्राहक कहते हैं चींटियों को काम करते हुए देखकर मन शांत होता है. उनकी मेहनत और अनुशासन लोगों को प्रेरित कर रही है. चाइना के गांसु प्रांत में सिनो लॉजिस्टिक्स यानी कि चाइना के जानकारों के तीसरे विश्व सम्मेलन का आयोजन हुआ. लगभग 70 देशों के 300 से ज्यादा प्रतिनिधि शामिल हुए. सम्मेलन के दौरान प्रतिनिधियों ने म्यूरल्स की नकल करने से लेकर बांस की पट्टियों पर लिखने और चाइना की पारंपरिक वेशभूषा हानफू पहनने जैसी गतिविधियों में हिस्सा लिया. कोलंबिया की पॉप स्टार शकीरा मेक्सिको में होने वाली फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप की ओपनिंग सेरेमनी में लेंगे हिस्सा. सेरेमनी की में गाएंगी वर्ल्ड कप का ऑफिशियल गाना. मेजबान मेक्सिको और साउथ अफ्रीका के बीच होने वाले ओपनिंग मैच के किक ऑफ से 90 मिनट पहले शुरू होगी ये सेरेमनी. एक इटालियन फ्रेज से लिया गया है टूर्नामेंट के ऑफिशियल एंथम डाई डाई का नाम, जिसका मतलब है चलो या आगे बढ़ो. ब्राजील में दिखा आस्था का शानदार दृश्य. कॉप्स क्रिस्टी डे के मौके पर शानदार कालीन बनाकर लोगों ने प्रदर्शित की अपनी आस्था और कला. लोगों ने पैचवर्क तकनीक से बनाई मनमोहक कला. तो वहीं रियो डी जनेरियो की मशहूर क्राइस्ट द रिडीमर प्रतिमा के चरणों में बिछाए गए हैं कालीन. सिलाई की अनोखी और पारंपरिक तकनीक से बनाया गया ये कालीन, जिसमें कपड़े के छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर बनाया जाता है एक बड़ा और आकर्षक डिजाइन. वॉलंटियर्स ने रिसाइकल किए गए कपड़ों से बनाए हैं ये कालीन, जिसमें बेकार कपड़ों के टुकड़ों को दिया गया है धार्मिक तस्वीरों का रूप। पारंपरिक कॉर्पस क्रिस्टी समारोह में एक प्रार्थना सभा भी की गई आयोजित, लोगों ने मांगी विश्व शांति की कामना। पूर्वी चाइना में लगातार बारिश से झरनों में बढ़ा पानी, बेहद आकर्षक बन गया है नजारा। माउंट लुशान की दक्षिणी ढलान पर पूरे वेग से बह रहे हैं झरने, बड़ी संख्या में पहुंच रहे पर्यटक। शिफेंग का प्रसिद्ध झरना बारिश के बाद और भी दिखाई दे रहा है भव्य खूबसूरती, लोगों को कर रही है मंत्रमुग्ध। इस स्थल का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व, बारिश के मौसम में यहां ऐसे ही बनी रहती है खूबसूरती। प्राकृतिक सौंदर्य के कारण फोटोग्राफर्स शानदार तस्वीरें कैद कर रहे हैं, क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियां बढ़ गई हैं। चाइना ने स्पेस में नया सैटेलाइट समूह भेजा, ताइवान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर में गुरुवार को सफल प्रक्षेपण किया गया। सैटेलाइट्स को बीजिंग समय के मुताबिक शाम 7:39 पर संशोधित लॉन्ग मार्च 6 रॉकेट के लिए भेजा गया। ये सैटेलाइट्स चाइना के मेगा कमर्शियल लो अर्थ ऑर्बिट नेटवर्क स्पेसल कॉन्स्टलेशन में शामिल होंगे, भविष्य में हाई स्पीड डेटा और संचार सेवाओं को बेहतर बनाने में करेगा मदद। लॉन्च के बाद सभी सैटेलाइट्स अपनी तय कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित हो गए, इसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर इंटरनेट और संचार सेवाओं का विस्तार करना। इस प्रक्षेपण के साथ लॉन्ग मार्च रॉकेट श्रृंखला ने अपनी 648वीं उड़ान का रिकॉर्ड किया दर्ज। पोप के दौरे को लेकर कैनरी द्वीप समूह में तैयारी, 6 से 12 जून तक स्पेन के दौरे पर रहेंगे पोप लियो। पोप लियो के दौरे से पहले कैनरी द्वीप के शहरों की शानदार सजावट देखने को मिली, सड़कों और सार्वजनिक स्थलों पर उत्साह का माहौल। दौरे के अंतिम चरण में कैनरी में हजारों लोगों के जुटने की उम्मीद, प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर व्यापक तैयारियां की। टैनरिफ शहर को बड़े धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों के लिए सजाया जा रहा है, स्थानीय लोग भी पोप के स्वागत में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। ग्रान कैनरिया और टेनरीफ में प्रवासियों से पोप करेंगे मुलाकात, प्रवासियों के साथ एकजुटता दिखाने और उनके संघर्षों को सामने लाने के लिए है दौरा।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
2: बंगाल बांग्लादेश बॉर्डर पर लोगों की भीड़ क्यों? बीएसएफ कर रही बॉर्डर पर तारबंदी, लोगों का विरोध। यूपी में पहले पीटा फिर जबरन जय श्री राम बुलवाया। सड़क पर दिखा इंसानियत का सबसे खूबसूरत चेहरा। वायरल खबरों की पूरी और पक्की पड़ताल देखिए नवजोत रंधावा के साथ फैक्ट चेक शाम 7:34 पर।
3: आपके घर की सीढ़ियों से किस ग्रह का संबंध है? सीढ़ियों के नीचे क्या बाथरूम या पूजा घर बना सकते हैं? और अगर सीढ़ियां गलत तरीके से बन गई हैं तो उन सीढ़ियों की समस्या को कैसे दूर करें? वास्तुशास्त्र और ज्योतिष में क्या है सीढ़ियों का महत्व, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
4: Less interruption, more listening. With TuneIn Premium, get less ads on all music, news, and sports, so you can get back to what really matters. Listen to all your favorite stations on over 200 devices, so you never miss a second of airtime. Plus, enjoy commercial-free news, ESPN Radio, and more. With Premium Upgrade to TuneIn Premium, and start listening now.
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब देशवासियों से फॉरेन ट्रिप की बजाय स्वदेश घूमने की अपील की, तो जीएनटी भी आप लोगों से अपने आसपास की खूबसूरत, ऐतिहासिक और दूसरी सैर सपाटा करने वाली जगहों की तस्वीरों को शेयर करने की अपील कर रहा है, और हम आपके भेजे हुए उन वीडियोस को जीएनटी पर लगातार दिखा रहे हैं। तो चलिए आज आपको हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति लिए चलते हैं, जहां की खूबसूरत पिन वैली में मौजूद मुठ गांव की कुछ दिलकश तस्वीरों को आप तक लाए हैं एक व्लॉगर। यकीनन उनकी ये वीडियो आपको वहां ले जाने के लिए जरूर मजबूर करेगी।

हेलो दोस्तों, तो आज मैं अपने बचपन के दोस्तों के साथ आ चुका हूँ भारत देश के आखिरी गांव जो बसा है पिन वैली में। पिन वैली के इस आखिरी गांव का नाम है मुद। मुद एक बहुत ही शानदार और ठंडी जगह है। यहाँ के लोग बहुत ही भोले और बहुत ही अच्छे हैं। उन्होंने हमें बड़े प्यार से खाना खिलाया और अब हम सभी दोस्त यहाँ से वापिस बढ़ रहे हैं काजा के लिए। पर वहाँ जाने से पहले मैं आप सभी को दिखाना चाहता हूँ कि इस पिन वैली में बसे छोटे से गांव मुद के ये बेहतरीन नज़ारे कितने मनमोहक हैं।

तो हमने देखा ये बेहतरीन नज़ारे खुद विलेज के। जो मैं देख सकता हूँ वो तो मैं आपको कभी भी एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, पर जो आप अपनी आंखों से देख रहे हैं उसे देख के महसूस कीजिए कि यह जगह कितनी खूबसूरत है।

0: तो आप भी अपने देश में ही सैर सपाटा करने अपने गांव और शहर में सैलानियों को इनवाइट कीजिए। टूरिज्म को बढ़ावा देने के इस संकल्प में भागीदार बनिए। बस आपको सिर्फ करना इतना है कि अगर आपके आसपास कोई खूबसूरत जगह है या फिर आपके शहर में आने की कोई खास वजह है तो उठाएं कैमरा और बनाएं ब्लॉग। फिर हमें 7303409922 नंबर पर व्हाट्सएप कर दें, हम उसे GNT पर जरूर दिखाएंगे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: आपके घर की सीढ़ियों से किस ग्रह का संबंध है? सीढ़ियों के नीचे क्या बाथरूम या पूजा घर बना सकते हैं? और अगर सीढ़ियां गलत तरीके से बन गई हैं तो उन सीढ़ियों की समस्या को कैसे दूर करें? वास्तुशास्त्र और ज्योतिष में क्या है सीढ़ियों का महत्व, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। TIT भोपाल, Gen Z's gateway to unbeatable placements.
5: गुजरात और दमन दौरे पर प्रधानमंत्री ने दिया विकास का तोहफा, अजीरा में लॉसन एंड टर्बो की इंडस्ट्रियल फैसिलिटी का लिया जायजा, सूरत को 200 बेड वाले अस्पताल की सौगात। चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह, अब तक 30 लाख से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन, केदारनाथ पहुंचने वालों का आंकड़ा 11 लाख के पार। देश दुनिया में मनाया जा रहा पर्यावरण दिवस, सूरत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगाया एक पेड़ मां के नाम, पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण की अपील। भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर शानदार खबर, वित्तीय वर्ष 2025-26 में 7.7% रही GDP ग्रोथ, जनवरी से मार्च की तिमाही में 7.8% की दर से हुई वृद्धि। नहीं बदलेगी आपके लोन की EMI, RBI ने रेपो रेट 5.25% रखी बरकरार, विदेशी निवेशकों को लुभाने के लिए भी उठाए कदम।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत।
5: नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ श्वेता झा। शाम के 7 बज चुके हैं और 7 गुड न्यूज के साथ हम हाजिर हैं। हम आपको आज की 7 गुड न्यूज के बारे में बताएंगे और सबसे पहले बात आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज की, प्रकृति जो जितनी खूबसूरत है उतनी ही उपयोगी भी है। पेड़ पौधे हैं तो हमें स्वच्छ हवा मिलती है, शुद्ध जल फसल मिलती है और जीवन को संतुलित बनाए रखने का आधार भी प्रकृति है। पेड़ों की हरियाली सिर्फ धरती की सुंदरता नहीं बढ़ाती बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए जीवन का संरक्षण भी करती है और यही कारण है कि प्रकृति की रक्षा करना केवल एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि मानव अस्तित्व की सबसे बड़ी आवश्यकता है। इसी से जुड़ी हुई आज की हमारी पहली गुड न्यूज है और वो है पर्यावरण सुरक्षा का संकल्प। जी हाँ, एक पेड़ हमें छाव भी देता है और सांसें भी, फल भी देता है और पर्यावरण को संतुलित भी रखता है और यही वजह है कि प्रकृति के प्रति हर छोटी कोशिश आने वाले कल को बेहतर बनाने की दिशा में बड़ा कदम बन जाती है। और आज पर्यावरण दिवस है, ऐसे में आज तो प्रकृति के लिए एक कदम उठाना हर किसी का फर्ज होना चाहिए। आज देश भर में पर्यावरण दिवस बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया, कहीं किसी ने एक नया पेड़ लगाया तो कहीं पर्यावरण को सुरक्षित बनाए रखने के उद्देश्य से कार्यक्रम हुए।

0: विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर देश भर में हरियाली के संकल्प का स्वर गूंज उठा है। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक लोगों में प्रकृति के प्रति प्रेम देखने के लिए मिल रहा है। शहर शहर पौधारोपण कार्यक्रम हो रहा है। नेता से लेकर अभिनेता और आम से लेकर खास सभी विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर एक पेड़ लगा रहे हैं। लेकिन इस अभियान की सबसे खूबसूरत तस्वीरें उन जगहों से आई है जिन्होंने हरियाली को अपने जीवन का मिशन बना दिया है। झारखंड के रांची में कल्पतरु मैन के नाम से पहचान बनाने वाले निखिल मेहुल अब तक 3000 से अधिक कल्प वृक्ष लगा चुके हैं। उनका सपना है कि रांची को कल्पतरु सिटी के तौर पर नई पहचान मिले। उनके लगाए पौधे आज हजारों लोगों को स्वच्छ हवा और हरियाली का उपहार दे रहे हैं।
1: झारखंड में 4 कल्प वृक्ष हैं और पूरे भारत में वयस्क जो बड़े पेड़ हैं वो 9 हैं। तो हमारे मन में ये प्रश्न आया कि आखिर ये दुर्लभ की स्थिति इतनी कम संख्या में क्यों है। तो हमने इस पर काफी रिसर्च किया, तत्पश्चात हमने सोचा कि इस पर कार्य करने की आवश्यकता है।
0: राजस्थान में भी एक ऐसी मिसाल मौजूद है जो किसी प्रेरणादायक कहानी से कम नहीं। एक बुजुर्ग पिछले 46 वर्षों से प्रकृति की सेवा में जुटे हैं। रोजाना 8 से 10 किलोमीटर दूर से पानी लाकर वे पौधों का पालन पोषण करते हैं। उनकी मेहनत का ही नतीजा है कि अब तक वे 1,10,000 से ज्यादा पौधे लगा चुके हैं। यही वजह है कि लोग उन्हें प्यार से ट्री मैन कहकर पुकारते हैं। मध्य प्रदेश के एक पुलिस हवलदार ने भी पर्यावरण के लिए बड़ा त्याग किया। सरकारी नौकरी की व्यस्तताओं के बीच उन्होंने पिछले 8 वर्षों में 1,000 से अधिक पौधे लगाए। कभी नन्हे पौधे रहे ये वृक्ष अब विशाल पेड़ों का रूप ले चुके हैं और आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ वातावरण देने का काम कर रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के झांसी से भी एक प्रेरणादायक तस्वीर सामने आई है जहां लोगों ने पर्यावरण संरक्षण को जन भागीदारी का रूप दिया। झांसी में जिला जन कल्याण महासमिति, झांसी रानी फाउंडेशन और JKT नेचर केयर के संयुक्त अभियान जन जन प्लास्टिक संग्रह अभियान में शहरवासियों ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया। लोगों ने अपने घरों और आसपास के क्षेत्रों से अनुपयोगी प्लास्टिक इकट्ठी कर न केवल स्वच्छता का संदेश दिया बल्कि पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी का भी परिचय दिया।
2: इस अभियान के अंतर्गत हमने लोगों से अपील की, आइए प्लास्टिक को कचरा बनने से रोकें। आम तौर पर हम लोग करते क्या है, घरों पर सूखे कचरे को और गीले कचरे को मिलाकर दे देते हैं जिसका पृथक्कीकरण नहीं हो पाता है और वो कचरा लैंडफिल साइट पे चला जाता है जो हमारी पृथ्वी को नुकसान पहुंचाता है। पृथ्वी को संरक्षित करने का एकमात्र उपाय है कि हम सूखे कचरे को अलग करें, गीले कचरे को अलग करें।
0: पौधे लगाना, प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करना भविष्य को मजबूत बनाने जैसा है। जब दुनिया जलवायु परिवर्तन और बढ़ते प्रदूषण की चुनौतियों से जूझ रही है, ऐसे पर्यावरण प्रहरी उम्मीद की नई कहानी लिख रहे हैं जिनका संदेश साफ है। अगर हर व्यक्ति साल में सिर्फ एक पौधा भी लगाए और उसकी देखभाल करे तो धरती फिर से हरियाली की चादर ओढ़ सकती है। आगर मालवा से प्रमोद कारपेंटर, अलवर से हिमांशु शर्मा और रांची से आकाश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देवभूमि उत्तराखंड में चल रहे चारधाम यात्रा में भरपूर उत्साह देखने के लिए मिल रहा है। खास करके केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। बाबा केदार और भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। अब तक दोनों धामों में करीब 19 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। इसी से जुड़ी आज की हमारी अगली यानी कि दूसरी गुड न्यूज है और वो है चारधाम यात्रा में बन रहे ऐतिहासिक रिकॉर्ड। मौसम के पड़ाव के हिसाब से चारधाम यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत हो गई है जिसमें भक्तों का उत्साह कम होने का नाम नहीं ले रहा। सुबह से लेकर देर शाम तक दोनों धामों में दर्शन के लिए लंबी कतारें देखी जा रही है।

0: केदार घाटी इन दिनों आस्था और भक्ति के रंगों से सराबोर है। बाबा केदार के धाम में श्रद्धा का सैलाब उमड़ रहा है। देश के कोने कोने से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु भगवान केदारनाथ के दर्शन और पूजन के लिए पहुंच रहे हैं। 22 अप्रैल को बाबा केदारनाथ के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोले गए थे। तब से लेकर अब तक 11 लाख से ज्यादा श्रद्धालु बाबा केदार के चरणों में शीश झुका चुके हैं। यात्रा के शुरुआती चरण में प्रतिदिन 30,000 से ज्यादा श्रद्धालु धाम पहुंच रहे थे और दर्शन कर पुण्य लाभ अर्जित कर रहे थे। हालांकि पिछले कुछ दिनों से बदले मौसम और बारिश की वजह से यात्रियों की संख्या में कुछ कमी देखने को मिली है, लेकिन इसके बावजूद रोजाना करीब 20,000 श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं और इन आंकड़ों से साफ है कि श्रद्धालुओं की आस्था पर मौसम का कोई असर नहीं पड़ रहा।
1: 46 दिन की यात्रा में 11 लाख भक्तों ने बाबा केदार के दर्शन कर दिए हैं। भले ही मौसम के कारण इन दिनों यात्रियों की संख्या में थोड़ा बहुत कमी आई है, बावजूद इसके प्रत्येक दिन 20,000 के आसपास भक्त बाबा केदार के दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। अब धाम पहुंच रहे सभी भक्तों को बाबा केदार के स्पर्श दर्शन कराए जा रहे हैं।
0: इन दिनों केदारनाथ यात्रा में एक और विशेष आकर्षण देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों से देव डोलियां भी बाबा केदार के दर्शनों के लिए धाम पहुंच रही हैं। पारंपरिक वाद्य यंत्रों, धार्मिक अनुष्ठानों और जयकारों के साथ पहुंच रही ये देव डोलियां यात्रा को और अधिक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रंग दे रही है। की ऐसी ही अद्भुत तस्वीर बाबा बद्रीनाथ के धाम में भी देखने को मिल रही है। अलकनंदा तट पर स्थित भगवान बद्री विशाल के दरबार में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। सुबह की पहली आरती से लेकर देर शाम तक दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की कतारें लगी रहती हैं। कोई परिवार सहित पहुंच रहा है तो कोई वर्षों की मनोकामना लेकर भगवान बद्रीनाथ के चरणों में शीश झुकाने आया है। बद्री विशाल के धाम में लगातार बढ़ती भीड़ को देखते हुए उत्तराखंड पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने यात्रा मार्ग पर एक प्रभावी ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान लागू किया है।
2: बद्रीनाथ धाम में भगवान विष्णु के दर्शनों को के लिए अब तक 8,88,000 से अधिक श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के धाम बद्रीनाथ में पहुंच चुके हैं। वहीं अब सड़कों पे जो जाम जैसी स्थिति, जो गेट बार बार कई किलोमीटर लंबा पहुंच रहा था, उससे अब मुक्ति मिलती हुई दिखाई दे रही है।
0: जाहिर है केदारनाथ की तरह बद्रीनाथ धाम में भी भक्ति और परंपरा का सुंदर संगम दिखाई दे रहा है। चार धाम यात्रा के इस पवित्र पड़ाव पर आस्था की ये निरंतर धारा बता रही है कि देवभूमि उत्तराखंड आज भी करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बनी हुई है। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल के साथ चमोली से कमल नयन सिलोड़ी, गुड न्यूज टुडे।
3: बर्फबारी और मौसम की चुनौती के बीच इस साल गुप्तखाल ट्रैकिंग की शुरुआत हो चुकी है। इस साल पहला जत्था जबरदस्त बर्फबारी के बीच गुप्तखाल के दुर्गम रास्तों पर ट्रैकिंग करता हुआ ऊपर पहुंचा और अब वो सुरक्षित तरीके से वापस लौट गया है। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो तीसरी गुड न्यूज है वो है गुप्तखाल ट्रैकिंग कर वापस लौटा पहला जत्था। देखिये, गुप्तखाल ट्रैकिंग को सबसे दुर्गम ट्रैक में से एक माना जाता है। यहाँ पर
4: हमको सीधा यहाँ से डाउन निकलना
3: गए ये लोगों का पहला जत्था सकुशल वापस लौट आया है। पहले जत्थे में अलग अलग राज्यों से आए ट्रैकर शामिल थे। ये दल गमशाली से 26 मई को गुप्तखाल के लिए रवाना हुआ था। 5,807 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस खतरनाक और मुश्किल ट्रैकिंग रूट पर आरोहण अभियान के बाद सभी लोग सुरक्षित वापस जोशीमठ लौट आए हैं। 10 दिन के ट्रैकिंग अभियान के दौरान इस कठिन रूट पर बर्फबारी का सामना करते हुए दल वापस लौटा है। इस दल में दिल्ली, पंजाब, कोलकाता और महाराष्ट्र के ट्रैकिंग के शौकीन लोग शामिल हुए। गमशाली से होते हुए जब ये दल गुप्तखाल पहुंचा तो वहां पर सभी ट्रैकर्स ने पूजा अर्चना की। गुप्तखाल में इस दौरान बर्फ का साम्राज्य फैला हुआ था और वहां पर लगातार बर्फबारी हो रही थी। गुप्तखाल की चढ़ाई के बाद इस दल ने माना पास के बर्फीले रास्तों को पार कर सकुशल वापस लौटने में सफलता प्राप्त की।
2: चमोली जनपद में दुर्गम ट्रैकों में एक गुप्तखाल ट्रैक को पहला दल अब आरोहण करके वापस लौट आया है। बताते चले सबसे दुर्गम 5,807 मीटर की ऊंचाई पे गुप्तखाल मौजूद है। इसकी चढ़ाई जो चढ़नी पड़ती है जोशीमठ से 60 किलोमीटर के करीब, गमसाली जाने के बाद वहां से ये ट्रैक शुरू होता है और बद्रीनाथ माणा पास जो भारत चीन सीमा पर स्थित है वहां से इसमें बाहर निकला जाता है और वहीं से वापसी की जाती है। लेकिन गुप्तखाल जो है वो माणा पास और गमसाली के बीच में पहाड़ियों में है, बहुत ही दुर्गम ये स्थान है। यहाँ की ट्रैकिंग, जो ट्रैकिंग के शौकीन है वो बहुत ही इसे ज़्यादा ट्रैकिंग करने के शौकीन होते हैं। ऐसे में इस समय 26 मई को यहाँ से जो पहला दल था इसमें अलग अलग प्रदेशों के लोग थे, 7 लोग इसमें ट्रैकिंग पर गए थे, उनके साथ बड़ी संख्या में पोर्टर और जो गाइड थे वो यहाँ पे पहुँचे थे। ऐसे में 26 मई को यहाँ से निकले थे और 4 जून को ये लोग आरोहण करके अब वापस लौट चुके हैं।
3: बढ़ेंगे आगे, आपको बता दें कि शिरडी के साई बाबा के चरणों में भक्त अपनी मन्नत पूरी होने के बाद सोने चांदी के जेवर चढ़ाते हैं। पंजाब के अजय कुमार गोयल ने भी साई बाबा को सोना चढ़ाया है। गोयल ने साई बाबा को एक सोने का मुकुट अर्पित किया है जिसकी कीमत करीब 35 लाख रुपए है। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो चौथी गुड न्यूज है वो है साई बाबा को सोने का मुकुट समर्पित। जी हाँ, अपनी मनोकामना पूरी होने के बाद पंजाब के बठिंडा जिले के अजय कुमार गोयल साई बाबा के चरणों में पहुंचे। अजय ने 237 ग्राम सोने का मुकुट साई बाबा मंदिर को अर्पण किया। इस स्वर्ण मुकुट की कीमत 34,70,000 रुपए है। दरअसल अजय ने अपने बीमार पिता सुरेंद्र कुमार गोयल के लिए 2 साल से ज्यादा की जिंदगी की मुराद बाबा से मांगी थी। दरअसल उनके पिता बीमार थे और डॉक्टर्स ने उन्हें केवल 2 महीने का वक्त दिया था, लेकिन साई बाबा की कृपा से वो 2 साल से ज्यादा जिए। ऐसे में जब अजय गोयल की मुराद पूरी हुई तो उन्होंने साई बाबा को नकाशीदार सोने का ये मुकुट अर्पित किया। साई बाबा को देश के कोने कोने से श्रद्धालु अपनी मुराद पूरी होने पर सोने और चांदी के आभूषण अर्पित करते हैं। 15 मई को भुवनेश्वर के भक्त ने सोने का ब्रोच अर्पित किया और 29 मई को लखनऊ के श्री गोविंद गोयल ने 1 करोड़ मूल्य का सोने का मुकुट साई को अर्पित किया।
5: मेरे फादर को 2 साल पहले 10 साल पहले कैंसर हुआ था और डॉक्टरों ने गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली में डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था भी उनको अभी 2 महीने का वक्त है उनके पास। और मैंने बाबा जी से यही मांगा था, बाबा जी मेरे को 2 साल मिलने दे दो इनको। और वो बाबा जी ने 2 साल 3 दिन दिए उनको और 2 साल 3 दिन के बाद उनकी वो पूरे हो गए। और हमें एक सुखी थी भी बाबा जी, हमें बाबा जी के मुकुट हम चढ़ा के आएंगे पर आज हमारी वो पूरी हो गई है। वो अभी ये ठीक रहे 2 साल हमें और जिंदगी इनकी मिल जाए। और 2 साल ही उन्होंने जिंदगी, बाबा जी ने हमें 2 साल की जिंदगी उनकी जिंदगी और मिली है, बाबा जी ने दी उनको। हमें मुकुट चढ़ाया बाबा जी का, गोल्ड का मुकुट चढ़ाया है। 34.7 लाख कीमत है इसकी और कीमत कुछ नहीं है जे तो एक मैं कह ही नहीं सकता, सारा कुछ ही बाबा जी, मेरा शरीर भी बाबा जी के ही है। मैं चढ़ाने वाला ये पैसे कुछ नहीं है जी, ये चीजें कुछ नहीं है मेरे लिए।
3: रामनगरी अयोध्या से एक ऐतिहासिक खोज सामने आई है जिसने देश के इतिहासकारों और पुरातत्वविदों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। अयोध्या में विष्णु प्रकाशाचार्य द्वारा स्थापित करीब 1,000 साल पुराने आचार्य मंदिर परिसर से लगभग 5,000 प्राचीन और दुर्लभ पांडुलिपियों का एक विशाल संग्रह मिला है। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो पांचवी गुड न्यूज है वो है अयोध्या के मंदिर में मिली प्राचीन पांडुलिपि। आपको बता दें कि अयोध्या के एक प्राचीन मंदिर में प्राचीन पांडुलिपियां मिली हैं। विष्णु प्रकाशाचार्य द्वारा स्थापित 1,000 साल पुराने आचार्य मंदिर में मिली है ये प्राचीन पांडुलिपियां। लगभग 5,000 की संख्या में ये पांडुलिपियां फारसी, अरबी, उर्दू और कुछ रोमन लिपि में मिली है। विशेषज्ञों के मुताबिक इतनी बड़ी संख्या में विभिन्न भाषाओं और लिपियों के ऐतिहासिक दस्तावेजों का एक ही स्थान पर मिलना प्राचीन काल में अयोध्या के वैश्विक सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंधों को दर्शाने वाला साबित हो सकता है। फिलहाल इस बहुमूल्य ऐतिहासिक धरोहर के संरक्षण और इसके पाठों के अनुवाद की तैयारी शुरू कर दी गई है जिससे कि इतिहास के कई नए पन्ने सामने आ सकते हैं।
6: विष्णु प्रकाशाचार्य द्वारा स्थापित यह स्थान है और यहाँ पे जो भी पांडुलिपियां मिली हैं वो फारसी में है और आपके अरबी में है, उर्दू में है, कुछ रोमन में है। अब वो किस लिपि में लिखी हैं ये जब आपके भारत सरकार से जो लोग आए थे वो उसका जब हिंदी रूपांतरण कराएंगे तो कन्फर्म होगा। बाकी उसमें कुछ 12वीं शताब्दी की हैं, 13वीं की भी हैं कुछ 14वीं 15वीं की हैं और 17वीं शताब्दी की हैं, 19वीं शताब्दी की हैं। तो ऐसी बहुत सारी पांडुलिपियाँ आपके स्थान पे दंडधावन कुंड पे मिली हैं, तकरीबन ये 5000 के आसपास ये जो इनकी संख्या है।
7: विभिन्न स्थानों पे इस प्रकार की पांडुलिपियां हमें मिली हैं, जैसे लक्ष्मण किला में, रामकथा संग्रहालय में, अंतर्राष्ट्रीय रामायण शोध संस्थान में, गोकुल भवन में और हनुमानगढ़ी में, और अन्य स्थानों का भी सर्वेक्षण किया जा रहा है।
3: पंजाब के रूपनगर जिले की एक किसान की बेटी महकप्रीत कौर ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। महकप्रीत ने एयरफोर्स एकेडमी की मेरिट लिस्ट में ऑल इंडिया रैंक हासिल किया है। साधारण परिवार से ताल्लुक रखने वाली महकप्रीत की इस अभूतपूर्व सफलता से उनके परिवार और गांव में जश्न का माहौल है। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो छठी गुड न्यूज है वो इसी से जुड़ी है, और वो है एयरफोर्स एकेडमी में टॉप पर महकप्रीत कौर। जी हाँ, आपको बता दें कि ये कहा जाता है कि अगर हौसले बुलंद हो और इरादे पक्के तो इंसान आसमान की ऊंचाइयों को भी छू सकता है, और इस बात को सच कर दिखाया है पंजाब के रूपनगर जिले के एक छोटे से गांव की रहने वाली महकप्रीत कौर ने। एक साधारण किसान परिवार की बेटी महकप्रीत ने एयरफोर्स अकेडमी की मेरिट लिस्ट में पूरे देश में पहला स्थान हासिल कर न केवल अपने माता पिता बल्कि देश का नाम रोशन किया है। महकप्रीत को अपनी सफलता का यकीन था, लेकिन वो पूरे देश में टॉप करेंगी इसका उन्हें भरोसा नहीं था। ऐसे में जब उन्हें ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल हुई तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। महकप्रीत ने इस मुकाम को हासिल करने के लिए दिन रात एक कर दिया, और उनकी इस सफल यात्रा में उनके माता पिता और मेंटोर्स का पूरा सपोर्ट रहा।
8: पंजाब की महकप्रीत कौर ने जो ऑल इंडिया टेस्ट रैंकिंग है उसमें फर्स्ट रैंक हासिल किया है, जो कि एयरफोर्स अकेडमी के लिए टेस्ट हुआ था। काफी लोग उसमें अपेयर हुए थे, लेकिन पंजाब की महकप्रीत कौर ने फर्स्ट रैंक जो हासिल किया। हमारे साथ हैं महकप्रीत, थोड़ा सा बताइए इस टेस्ट के बारे में, कब हुआ था, कितने लोग एप्लीकेंट थे और कैसी तैयारी थी आपकी?
9: सर, ये मैंने अपनी थर्ड ईयर की अपेयरिंग में एफ कट दिया था। मैंने ये अगस्त में दिया था 2025 में। तो फर्स्टली ये 3 स्टेजेस का प्रोसेस है। फर्स्टली रिटन एग्जामिनेशन होता है जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, जीएस और इंग्लिश होते हैं। ऑब्जेक्टिव लेवल का पेपर होता है, नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो कॉम्पिटेटिव है तो थोड़ा आपको उसी हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजीज बनानी पड़ती है। देन आफ्टर क्लियरिंग रिटन एग्जामिनेशन SSB होती है। दिस इज अ 5-day-long प्रोसेस जिसमें आपका मेंटली, फिजिकली, इमोशनली वो एवरीथिंग दिल जज एंड व्हाट पर्सनालिटी यू हैव वो उस 5 दिन में जज करते हैं। देन यू गेट रिकमेंडेशन, एंड उस रिकमेंडेशन के बाद यू हैव मेडिकल टेस्ट। वो मेडिकल क्लियर करने के बाद सर मेरिट लिस्ट आती है।
3: मिडिल ईस्ट संकट के बीच ऊर्जा की बढ़ती खपत को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में कारपूलिंग की वकालत की थी। प्रधानमंत्री मोदी की अपील का असर मुंबई में दिखने लगा। हाल के दिनों में नौकरी पेशा मुंबईकर्स ने ऑफिस आने जाने के लिए बड़े पैमाने पर कारपूलिंग का इस्तेमाल करना शुरू किया है। इसी से जुड़ी हमारी अगली यानी कि 7वीं और आखिरी गुड न्यूज है, और वो है मुंबई में बढ़ी कारपूलिंग की डिमांड। आपको बता दें लिफ्ट ले लो जैसे कम्युनिटी प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन कराकर लोग आने जाने के लिए गाड़ी शेयर कर रहे हैं, जिससे कि ईंधन और पैसे दोनों की बचत हो रही है।

0: मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन आवाजाही का बड़ा जरिया है। बावजूद इसके बड़ी संख्या में लोग रोजाना ऑफिस आने जाने के लिए कार का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसमें दो दिक्कतें हैं। एक तो ट्रैफिक जैम, दूसरा मिडिल ईस्ट संकट के बाद पेट्रोल डीजल की किल्लत और बढ़ती जा रही कीमत। लेकिन अब मुंबईकरों ने इस झंझट का एक स्मार्ट और सस्ता तोड़ निकाल लिया है, कार पूलिंग।
1: फ्यूल के प्राइसेस जैसे ही बढ़े, एक चीज नोटिस की गई है, वो है कार पूलिंग, जो एक बहुत पहले से भी एग्जिस्ट करती है, लेकिन कार पूलिंग की तरीके इस बार जो है वो बेहतर हो गए हैं। कार पूलिंग लोग ज्यादा करने लगे हैं।
0: मुंबई में कार पूलिंग अब एक बड़ा ट्रेंड बन चुका है। ठाणे, नवी मुंबई और कांदीवली जैसे इलाकों से बीकेसी या लोअर परेल जाने वाले नौकरी पेशा लोग अब अकेले गाड़ी चलाने के बजाय कार पूलिंग का इस्तेमाल करना पसंद कर रहे हैं। कार पूलिंग इको फ्रेंडली के साथ साथ बजट फ्रेंडली भी है। सड़कों पर कार की संख्या कम होने से ईंधन की खपत कम होती है, जिससे पर्यावरण को नुकसान कम होता है, साथ ही पॉकेट पर खर्च का भार भी कम हो जाता है। मकरंद परांजपे के मुताबिक कार पूलिंग से उन्हें 70% बचत हो रही है।
2: तो ट्रैवल टाइम तो थोड़ा बढ़ गया या तो मोटा मोटी ऑलमोस्ट उतना ही रहा है। अगर मैं खर्चे की बात करूँ तो यू कैन से कि मेरा ऑलमोस्ट 70% खर्चा बच गया।
0: मुंबई में कार पूलिंग का ट्रेंड लिफ्ट ले लो के तौर पर पॉपुलर हो रहा है। लिफ्ट ले लो एक ऐप है जिस पर लोग अब तेजी से रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। लिफ्ट लेने वाले भी और लिफ्ट देने वाले भी। खुद महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र मोटर व्हीकल एग्रीगेटर रूल्स के तहत चुनिंदा एप्स को मंजूरी देकर कार पूलिंग को हरी झंडी दी है। पिछले कुछ समय में अकेले मुंबई में राइड शेयरिंग रजिस्ट्रेशन में करीब 40% तक का उछाल आया है। ये आंकड़ा बताने के लिए काफी है कि कामकाजी प्रोफेशनल्स के बीच कार पूलिंग किस कदर तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। मुंबई से विद्या के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: इसी के साथ 7:07 गुड न्यूज में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़।
5: Every city has hidden stories. The building you pass every day. The park where history was made. The person no one remembers who changed everything. Audio brings those stories to life. And now we're on TuneIn. Explore 15 unique cities. Discover what you've been missing. Audio, now on TuneIn. Search Audio on TuneIn to start exploring.
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।

आपके घर की सीढ़ियों से किस ग्रह का संबंध है? सीढ़ियों के नीचे क्या बाथरूम या पूजा घर बना सकते हैं? और अगर सीढ़ियां गलत तरीके से बन गई हैं, तो उन सीढ़ियों की समस्या को कैसे दूर करें? वास्तु शास्त्र और ज्योतिष में क्या है सीढ़ियों का महत्व, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।

0: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit Dick's.com/scorecardplus for details.
1: Jazz fans, rejoice. Stingray Jazz offers riveting concert films and documentaries from the world's most prestigious stages. Whether you're a lifelong connoisseur or just getting up to tempo, Stingray Jazz, now available for free on Pluto TV. Stream now, pay never.
2: Good news today.
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
2: गुजरात और दमन दौरे पर प्रधानमंत्री ने दिया विकास का तोहफा, हजीरा में लार्सन एंड जूब्रो की इंडस्ट्रियल फैसिलिटी का किया लिया जायजा, सूरत को 200 बेड वाले अस्पताल की सौगात। चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह, अब तक 30 लाख से ज्यादा भक्तों ने दर्शन किए, केदारनाथ पहुंचने वालों का आंकड़ा 11 लाख के पार। देश और दुनिया में मनाया जा रहा पर्यावरण दिवस, सूरत में प्रधानमंत्री मोदी ने लगाया एक पेड़ मां के नाम, पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण की अपील।

0: चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ला।
1: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां और झूठे दावे बिजली की रफ्तार से फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है, कभी पुरानी तस्वीर को नई साजिश का रंग देकर पेश किया जाता है और लोग बिना जांचे परखे इन्हें सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टीवी की स्क्रीन तक सीमित नहीं है। यहां हर किसी के हाथ में कैमरा है और हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नहीं बताकर परोसी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कोसों दूर लगे। नतीजा ये होता है कि लोग बिना सोचे समझे, बिना जांचे परखे ने सच मानकर शेयर कर देते हैं और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं। जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी। तो आज फैक्ट चेक में सबसे पहले बात करेंगे सोशल मीडिया पर छाए उस वीडियो की जिसके जरिए ये दावा किया जा रहा है कि बंगाल बांग्लादेश बॉर्डर पर तार लगाने का विरोध किया गया, बांग्लादेश के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं लोग, लेकिन बीएसएफ फुल एक्शन मोड में है। क्या है वायरल वीडियो की सच्चाई आगे बताएंगे। अगली खबर होगी उस वायरल तस्वीर से जुड़ी हुई जिसके जरिए दावा यह किया जा रहा है कि वीडियो यूपी का है जहां पर एक व्यक्ति को पहले पीटा गया फिर उससे जबरन जय श्री राम बुलवाया गया। इसकी सच्चाई क्या है आगे बताएंगे। शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
1: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें सुरक्षा कर्मी बॉर्डर जैसी जगह पर प्रदर्शन कर रहे लोगों को काबू में करते नजर आ रहे हैं। वीडियो पर लिखा हुआ है कि बंगाल बांग्लादेश बॉर्डर पर तार लगाने का विरोध किया जा रहा है, बांग्लादेश के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन बीएसएफ फुल एक्शन मोड में नजर आ रही है। यूजर्स इसे भारत बांग्लादेश सीमा पर उपजे हालिया तनाव से जोड़कर शेयर कर रहे हैं। क्या है इसकी सच्चाई, देखिए हमारी रिपोर्ट।
2: सोशल मीडिया पर यह वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। वीडियो में सुरक्षा कर्मी प्रदर्शन कर रहे लोगों को काबू करते दिख रहे हैं। कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए ये दावा कर रहे हैं कि बंगाल बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग के कार्य को लेकर कुछ बांग्लादेशी नागरिकों ने प्रदर्शन किया, जिसके बाद वहां बीएसएफ एक्शन मोड में नजर आ रही है। एक इंस्टाग्राम यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, बंगाल बांग्लादेश सीमा पर एक बार फिर तनाव की स्थिति देखने को मिली है। रिपोर्ट्स के अनुसार सीमा क्षेत्र में तारबंदी के कार्य को लेकर कुछ बांग्लादेशी नागरिकों ने विरोध दर्ज करवाया। सीमा सुरक्षा और अवैध घुसपैठ रोकने के उद्देश्य से की जा रही इस प्रक्रिया पर दोनों देशों की एजेंसियां नजर बनाए हुए हैं। हालांकि इस मामले को लेकर विभिन्न पक्षों की ओर से अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। सीमा से जुड़ी हर गतिविधि पर प्रशासन और सुरक्षा बलों की कड़ी निगरानी जारी है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है।
1: दरअसल सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। कुछ लोग वीडियो को शेयर करते हुए दावा यह कर रहे हैं कि बंगाल बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग के कार्य को लेकर कुछ बांग्लादेशी नागरिकों ने प्रदर्शन किया, जिसके बाद वहां बीएसएफ एक्शन मोड में नजर आ रही है, लगातार कार्रवाई की जा रही है। वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने इसकी पड़ताल शुरू की। दावे की सच्चाई जानने के लिए सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान हमारा ध्यान बैकग्राउंड से आ रही आवाजों पर गया। जब हमने इसे ध्यान से सुना तो वो बांग्ला नहीं लग रही थी। अगर पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश बॉर्डर पर हुए प्रदर्शन का ये वीडियो होता तो फिर जाहिर सी बात है कि इसमें बांग्ला में आवाजें सुनाई देती, लेकिन ऐसा था नहीं। इसके अलावा वीडियो में हमें एक और चीज देखने को मिली, अगर ये फेंसिंग का कार्य यहां पर चल रहा था तो फिर यहां कोई तार क्यों नहीं नजर आई, ये समझ से बिल्कुल परे था। इसके अलावा हाल फिलहाल में सर्च के दौरान ऐसी कोई प्रमाणिक रिपोर्ट हमें नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके, लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा, जिसमें हमारा पहला सवाल यही कि वायरल हो रहा वीडियो कब का है और कहां का है। हमारा दूसरा सवाल, कहीं जानबूझकर किसी और घटना से संबंधित वीडियो को नया एंगल देकर वायरल तो नहीं किया जा रहा, सच और झूठ जानिए इस रिपोर्ट में।
2: Yeah. दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उन्हें सर्च किया। इस दौरान हमें एक फेसबुक अकाउंट पर मिला। ये वीडियो 11 फरवरी 2026 को साझा किया गया है। इसके साथ ही यहाँ बताया गया था कि चुनाव की तैयारियाँ तेज हो गयी, सेना के जवान अभ्यास जारी रखे हुए हैं। चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न करवाने के लिए सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। यहां पर हमें नेपाल हैशटैग देखने को मिला। इसके बाद हमें एक नेपाली फेसबुक अकाउंट पर वायरल वीडियो देखने को मिला। ये पोस्ट 12 फरवरी 2026 को साझा की गई थी। यहां जानकारी मिली कि सेना चुनाव की तैयारी के लिए मॉक अभ्यास कर रही है। आगे की पड़ताल में हमें नेपाल के तन्हू जिला पुलिस कार्यालय के फेसबुक अकाउंट पर वायरल वीडियो से संबंधित एक फोटो देखने को मिली। ये पोस्ट 9 फरवरी 2026 को साझा की गई थी। इसमें ये जानकारी दी गई थी कि 21 फरवरी को होने वाले आगामी प्रतिनिधि सभा सदस्य चुनाव के स्वतंत्र, निष्पक्ष और भयमुक्त वातावरण में संपन्न करवाने के उद्देश्य से तन्हू जिला प्रशासन कार्यालय, तन्हू जिला निर्वाचन कार्यालय और तन्हू जिला पुलिस कार्यालय ने नेपाली सेना, सशस्त्र पुलिस बल और राष्ट्रीय अनुसंधान कार्यालय के कार्यालय प्रमुखों की उपस्थिति में मॉडल मतदान और मतदान स्थल पर उत्पन्न होने वाली विभिन्न सुरक्षा चुनौतियों के प्रबंधन से संबंधित समन्वय और संयुक्त परियोजनाओं, संयुक्त अभ्यासों का आयोजन किया गया। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल हो रहा दावा झूठा साबित हुआ। वायरल वीडियो नेपाल में हुई मॉक ड्रिल का है, जिसे भारत का बताकर शेयर किया जा रहा है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो को धार्मिक एंगल देते हुए यूजर्स ये दावा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भगवा गमछा पहने एक व्यक्ति ने एक धर्म विशेष समुदाय से ताल्लुक रखने वाले व्यक्ति को पहले थप्पड़ मारा और फिर बाद में उसे जय श्री राम बोलने के लिए मजबूर किया। वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है, पड़ताल करती हमारी रिपोर्ट।
2: सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि भगवा गमछा पहने एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को थप्पड़ मारता है और बाद में उसे जय श्री राम बोलने के लिए मजबूर करता है।
3: जय श्री राम।
2: वीडियो को शेयर करते हुए एक यूजर ने लिखा, मैं एक भारतीय हिंदू लड़की हूँ और इस वीडियो को देखकर मुझे खुद पर शर्म आ रही है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है। वीडियो का सच झूठ जाने बगैर इसे धड़ल्ले से वायरल किया जा रहा है। वहीं कुछ यूजर्स इस वीडियो के जरिए कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं।
1: दरअसल सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और इस वीडियो को उत्तर प्रदेश का बताते हुए कुछ यूजर्स ये कह रहे हैं कि ये हिंदू व्यक्ति ने दूसरे समुदाय के ताल्लुक रखने वाले शख्स को पहले थप्पड़ मारा और फिर जय श्री राम बोलने पर मजबूर किया। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर इसी मिलते जुलते दावे के साथ ये वीडियो लगातार शेयर हो रहा है। ऐसे में इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। फैक्ट चेक टीम ने दावे की जांच के लिए सर्च किया लेकिन हाल फिलहाल में ऐसी कोई भी रिपोर्ट हमें नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके, क्योंकि अगर वाकई में उत्तर प्रदेश में इस तरह की कोई भी घटना हुई होती तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर होती और इसके बारे में सर्च के दौरान भी कोई जानकारी हमें नहीं मिली, कोई भी प्रमाणिक रिपोर्ट हमें नहीं मिली। लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा। हमारा पहला सवाल यही कि यह घटना कब की है और कहां की है। हमारा दूसरा सवाल, कहीं किसी पुराने वीडियो को धार्मिक एंगल देकर जानबूझकर इसे वायरल तो नहीं किया जा रहा है। अब देखिए सच और झूठ क्या है।
2: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वीडियो की पड़ताल में जुटी। सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे इंटरनेट पर सर्च किया। इस दौरान हमें 8 नवंबर 2025 को छपी एक न्यूज रिपोर्ट मिली। इसमें दी गई जानकारी के मुताबिक ये घटना हरियाणा के हिसार के कैंप चौक इलाके में घटी थी। रिपोर्ट में ये भी बताया गया था कि रणवीर नाम का एक व्यक्ति नॉनवेज की दुकान पर पहुंचा और दुकानदार पर हमला करने लगा। पीड़ित की पहचान उत्तराखंड निवासी मनु के रूप में हुई थी। सर्च के दौरान हमें एक और रिपोर्ट मिली। 25 नवंबर 2025 को ये रिपोर्ट पब्लिश हुई थी। रिपोर्ट के अनुसार दुकानदार को थप्पड़ मारने के बाद रणबीर ने खुद को बजरंग दल का सदस्य बताया और मनु पर हमला जारी रखा। रिपोर्ट में आगे बताया गया था कि दुकानदार ने बार बार उससे कहा कि वो हिंदू है, इसके बावजूद खुद को बचाने के प्रयास में उसे जय श्री राम के नारे लगाने पड़े। इसके बाद हमने नॉनवेज दुकान के मालिक का पता लगाने की कोशिश की, हमने हिसार के कैंप चौक इलाके में मांसाहारी दुकानों की खोज की और मनु चिकन पकौड़े नाम की एक दुकान मिली। दुकान की भौगोलिक स्थिति का पता लगाने के बाद हमें दुकान के साइन बोर्ड पर एक फोन नंबर मिला, हालांकि जब हमने कॉल किया तो वो नंबर बंद था। मनु ने अपनी पहचान की पुष्टि करते हुए फैक्ट चेक को बताया कि वो हिंदू है। बातचीत के दौरान उसने कहा कि उस मंगलवार को उन्होंने दुकान सिर्फ सफाई के लिए खोली थी, हालांकि शाम को कुछ ग्राहक आ गए इसलिए उन्होंने जो भी खाना उपलब्ध था वही परोस दिया। मनु के मुताबिक रणवीर अचानक दुकान पर आया और उस पर हमला करने लगा और इसका वीडियो कैमरा में रिकॉर्ड कर लिया। मनु ने उसे बताया कि वो हिंदू है, लेकिन रणवीर ने उसकी बात नहीं मानी और उससे धार्मिक नारा लगाने को कहा। बाद में जब वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस ने कार्रवाई की और रणवीर को गिरफ्तार कर लिया। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल दावा झूठा साबित हुआ। वायरल हो रहा वीडियो नवंबर 2025 का है और हरियाणा के हिसार का है और वीडियो में दिख रहे दोनों व्यक्ति हिंदू हैं। पीड़ित ने इसकी पुष्टि की है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: फैक्ट चेक में फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के उस पर आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में, दिखाएंगे ऐसे वीडियो जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
4: Hey, it's Billy Bush. Tune into my show, Hot Mics, Monday to Thursday at noon Eastern, 9 a.m. Pacific for the latest in politics, entertainment, tech, sports, pop culture, and much more. Just tell your device to play Hot Mics on TuneIn to listen.
5: विश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें Good News Today बनाता है।
6: Good News Today.
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
9: और दुर्भाग्य कहता है
1: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
1: वक्त है फैक्ट चेक के आखिरी सफर का, जहां आपको दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हैं, जिन्हें खूब पसंद किया जा रहा है।
10: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो ने लोगों के दिल को छू लिया है। ये वीडियो न केवल मानवीय संवेदनाओं की मिसाल पेश करता है, बल्कि ये भी दिखाता है कि मुश्किल घड़ी में मदद के लिए आने जाने वाले लोग आज भी समाज में मौजूद हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक सब्जी विक्रेता का ठेला अचानक सड़क पर पलट जाता है। ठेले में रखे आलू और प्याज बड़ी मात्रा में सड़क पर बिखर जाते हैं। कुछ ही पलों में पूरा रास्ता सब्जियों से भर जाता है और ठेला चालक असहाय नजर आने लगता है। उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती अपनी मेहनत से जुटाई गई सब्जियों को दोबारा समेटने की होती है। लेकिन इसके बाद जो सीन सामने आता है वो हर किसी का दिल जीत लेता है। आसपास से गुजर रहे लोग बिना किसी झिझक के मदद के लिए आने लगते हैं। कोई सड़क पर गिरे आलू उठाने लगता है तो कोई प्याज इकट्ठा करने में जुट जाता है। कुछ लोग ठेले को संभालने और उसे सीधा करने में मदद करते हैं, जबकि कुछ लोग बिखरी हुई सब्जियों को वापस ठेले में रखने का काम शुरू कर देते हैं। सबसे खास बात ये रही कि वहाँ मौजूद किसी भी व्यक्ति ने मदद करने से पहले कोई सवाल नहीं पूछा। लोगों के लिए उस समय केवल एक बात मायने रख रही थी कि एक मेहनतकश व्यक्ति परेशानी में है और उसे सहायता की आवश्यकता है। यही सोच इस वीडियो को और अधिक खास बना देती है। ये वीडियो लोगों को खूब पसंद आ रहा है, उसकी मासूमियत और अलग अंदाज ने इंटरनेट का ध्यान खींच लिया है। वीडियो की शुरुआत में एक छोटा बच्चा स्कूल यूनिफॉर्म पहने हुए नजर आता है। उसकी पीठ पर स्कूल बैग टंगा हुआ है, जिससे साफ पता चलता है कि वो पढ़ाई के लिए स्कूल जा रहा है। पहली नजर में यह सीन बिल्कुल नॉर्मल लगता है, क्योंकि रोजाना लाखों बच्चे स्कूल जाते हैं। लेकिन जैसे ही कैमरा थोड़ा आगे बढ़ता है, लोगों की नजर उस खास बात पर पड़ती है जिसने इस वीडियो को वायरल बना दिया है। दरअसल ये बच्चा किसी साइकिल, मोटरसाइकिल या किसी दूसरे सामान्य वाहन पर नहीं, बल्कि एक बकरे की सवारी करते हुए स्कूल जा रहा है। यही अनोखा नजारा लोगों को बेहद पसंद आ रहा है। वीडियो में बच्चा पूरे आत्मविश्वास के साथ बकरे की पीठ पर बैठा दिखाई देता है। उसके हाथ में एक छोटी सी छड़ी भी नजर आती है, जिससे ऐसा लगता है मानो वो अपने इस अनोखे वाहन को कंट्रोल कर रहा हो। सबसे दिलचस्प बात यह है कि बच्चा पूरी तरह सहज दिखाई देता है और आराम से अपने रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। हमारी संस्कृति में बेटियों को लक्ष्मी और साक्षात देवी का रूप माना जाता है, और जब बेटी अपने घर पहुंचती है तो उसका स्वागत कुछ ऐसा होता है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। लोग जमकर इस वीडियो पर कमेंट्स कर रहे हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि पारंपरिक लिबास में एक छोटी बच्ची बेहद क्यूट लग रही है। घर में दाखिल होने से पहले एक थाली में उसके पैर पखारे जाते हैं, माथे पर तिलक लगाया जाता है और आरती उतार कर उसका गृह प्रवेश कराया जाता है। सोशल मीडिया पर यह दिल छू लेने वाला वीडियो खूब वायरल हो रहा है। इसमें एक युवक अपनी पहली सैलरी अपने माता पिता के हाथों में सौंपता नजर आ रहा है। बेटे की पहली कमाई देखकर माँ बाप जिस तरह इमोशनल हुए, उसने इंटरनेट पर हर किसी का दिल जीत लिया। ये वीडियो IIM से ग्रेजुएट हुए एक लड़के का है। MBA करने के बाद जब लड़के की पहली जॉब लगी और पहली सैलरी आई, तो उसने इसे बेहद खास अंदाज में अपने मम्मी पापा को गिफ्ट किया। यूजर्स इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं। वैसे तो इन दिनों सोशल मीडिया पर मेलोडी का खुमार हर किसी के सिर चढ़कर बोल रहा है, लेकिन इस वायरल वीडियो की तो बात ही अलग है। देखिए कैसे 1 रुपए वाली मेलोडी टॉफी ने बुजुर्ग महिला के चेहरे पर मुस्कान ला दी। कहते हैं कि प्यार की कोई उम्र नहीं होती, और ये वीडियो इसी बात को सच साबित कर रहा है। इस खूबसूरत वीडियो में बुजुर्गों के दिलों में फिर से प्यार के रंग भर दिए। वाटर पार्क से जुड़े मजेदार और अनोखे वीडियो इंटरनेट यूजर्स को काफी पसंद आते हैं। कभी कोई व्यक्ति स्लाइड से फिसलते समय अजीब हरकत कर बैठता है, तो कभी किसी के साथ ऐसा मजेदार हादसा हो जाता है कि देखने वाले अपनी हंसी नहीं रोक पाते। इन दिनों भी एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर चर्चा बटोर रहा है। वायरल हो रहे इस वीडियो में एक वाटर पार्क का दिलचस्प नजारा देखने को मिलता है। वीडियो की शुरुआत में एक लड़की बड़ी आरामदायक तरीके से पानी की स्लाइड पर फिसलते हुए नीचे की तरफ आती दिखाई देती है। वो पूरी तरह से राइड के मजे ले रही होती है और उसके चेहरे पर भी उत्साह साफ नजर आता है। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि अगले कुछ सेकंड में उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जो न केवल उसे चौंका देगा बल्कि सोशल मीडिया पर लाखों लोगों का मनोरंजन भी करेगा। जैसे ही लड़की स्लाइड के लास्ट हिस्से की ओर पहुंचती है, तभी पीछे से एक दूसरी लड़की उसी स्लाइड पर बेहद तेज गति से नीचे आती हुई दिखाई देती है। उसकी स्पीड इतनी अधिक होती है कि वो अपने आगे मौजूद लड़की को समय रहते देख नहीं पाती। कुछ ही पलों में दोनों के बीच जोरदार टक्कर हो जाती है। टक्कर इतनी अचानक होती है कि दोनों लड़कियां अपना बैलेंस खो बैठती हैं और सीधे पानी में जा गिरती हैं। ये पूरा दृश्य इतना अचानक होता है कि वहाँ मौजूद लोग भी कुछ क्षणों के लिए हैरान हो जाते हैं। हालांकि किसी को गंभीर चोट नहीं लगती। आप किसी जंगल सफारी पर गए हों और आपकी गाड़ी के ठीक बगल में एक खूंखार बब्बर शेर बैठा हो, तभी अचानक कुछ लोग आराम से उसके बगल से पैदल और बाइक पर गुजरने लगे, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? यकीनन ये नजारा किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी है। लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि सफारी गाड़ी में बैठा एक पर्यटक वीडियो बना रहा है, तभी सड़क पर एक के बाद एक बाइक सवार गुजरते हैं। हैरान करने वाला मोड़ तब आता है जब कैमरा थोड़ा घूमता है और सड़क के बीच एक विशाल काय शेर बैठा दिखाई देता है। हद तो तब हो गई जब बाइकर्स के साथ साथ एक शख्स बड़े आराम से पैदल ही शेर के पास से गुजर जाता है, मानो वहाँ कोई शेर नहीं बल्कि कोई बिल्ली बैठी हो। इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात यह है कि शेर भी उन्हें देखकर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता और शांति से बैठा रहता है। सोशल मीडिया पर वायरल ये वीडियो लोगों का ध्यान खींच रहा है, जिसने फुटबॉल मैच को ही यादगार बना दिया। इस वीडियो को देखकर लोग सिर्फ मुस्कुरा ही नहीं रहे बल्कि इसे इंटरनेट का सबसे क्यूट फुटबॉल वीडियो भी बता रहे हैं। दरअसल एक फुटबॉल मैच के दौरान ऐसा मजेदार नजारा देखने को मिला जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। खिलाड़ी मैदान में पूरी गंभीरता से मैच खेल रहे थे, तभी अचानक एक छोटा सा बछड़ा मैदान में आ गया। शुरुआत में खिलाड़ियों को लगा कि शायद वह थोड़ी देर बाद बाहर चला जाएगा, लेकिन अगले ही पल उसने जो किया उसे देखकर मैदान में मौजूद हर व्यक्ति हंसने लगा। वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसे ही खिलाड़ी फुटबॉल को एक दूसरे की तरफ पास कर रहे थे, वैसे ही वो नन्हा बछड़ा भी पूरी उत्सुकता के साथ गेंद के पीछे दौड़ने लगा। गेंद मैदान के जिस कोने में जाती, बछड़ा भी उसी दिशा में तेजी से भागता दिखाई देता। उसकी मासूम हरकतें और उत्साह देखकर खिलाड़ी भी अपनी हंसी रोक नहीं पाए।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ला।
11: आपके घर की सीढ़ियों से किस ग्रह का संबंध है? सीढ़ियों के नीचे क्या बाथरूम या पूजा घर बना सकते हैं? और अगर सीढ़ियां गलत तरीके से बन गई हैं तो उन सीढ़ियों की समस्या को कैसे दूर करें? वास्तुशास्त्र और ज्योतिष में क्या है सीढ़ियों का महत्व, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
12: Every city has hidden stories. The building you pass every day. The park where history was made. The person no one remembers who changed everything. Audio brings those stories to life. And now we're on TuneIn. Explore 15 unique cities. Discover what you've been missing. Audio, now on TuneIn. Search Audio on TuneIn to start exploring.
5: जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
1: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज़ टुडे पर।

0: उसके प्रहार से ड्रैगन हो जाएगा अंधा। एक अटैक से बिखर जाएगा आतंकिस्तान का कुनबा। दो दुश्मन, दो हथियार, दोनों ही दमदार। देखिए रण क्षेत्र शनिवार शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम
3: अच्छी खबर में किंतु की गुंजाइश न रह जाए और बुरी खबर से परंतु सच्चाई ढूंढकर लाए, ऐसी अच्छी और सच्ची खबरों के साथ आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। एक ऐसा शो जहां दिन की बड़ी खबर हम आपको आसान शब्दों में पॉइंट बाय पॉइंट समझाएंगे, यानी बड़ी खबर का सच्चा और अच्छा विश्लेषण। कैसे कैरी मी बैग पॉलिसी के तहत बाबा केदार के धाम को प्लास्टिक मुक्त बनाने की पहल हो रही है, आज आपको आगे बताएंगे। रामनगरी में 400 साल पुरानी पांडुलिपि मिली है जो 12वीं से लेकर 19वीं शताब्दी तक इतिहास को समेटे दुर्लभ दस्तावेज है। और 20,000 किलोमीटर दूर बैठे हार्ट सर्जरी रोबोटिक सर्जरी की बदौलत मेडिकल साइंस में नया कीर्तिमान हासिल किया है। डिटेल्स देंगे शुरुआत हेडलाइंस के साथ।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
5: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। टीआईटी भोपाल, जेन जी'स गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स।
3: गुजरात और दमन दौरे पर प्रधानमंत्री ने दिया विकास का तोहफा। हजीरा में लार्सन एंड ट्यूब्रो की इंडस्ट्रियल फैसिलिटी का लिया जायजा। सूरत को 200 बेड वाले अस्पताल की सौगात। चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह। अब तक 30 लाख से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन। केदारनाथ पहुंचने वालों का आंकड़ा 11 लाख के पार। देश दुनिया में मनाया जा रहा है पर्यावरण दिवस। सूरत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगाया एक पेड़ मां के नाम, पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण की अपील। भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर शानदार खबर। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 7.7% रही जीडीपी ग्रोथ। जनवरी से मार्च की तिमाही में 7.8% की दर से हुई वृद्धि। नहीं बदलेगी आपके लोन की ईएमआई। आरबीआई ने रेपो रेट 5.25% बरकरार रखा। विदेशी निवेशकों को लुभाने के लिए भी उठाए गए कदम। अच्छी और सच्ची खबरों में हम सबसे पहले बात एक ऐसी मुहिम की करेंगे जो धीरे धीरे जन आंदोलन का रूप लेती जा रही है। ये मुहिम है देवभूमि उत्तराखंड के चार धामों में से एक केदारनाथ धाम में कैरी मी बैक नाम से चलाई जा रही है। इसका मकसद दरअसल हिमालय की गोद में बसे इस पवित्र तीर्थस्थल को प्लास्टिक और सूखे कूड़े से मुक्त करना है। मुहिम के तहत श्रद्धालुओं को 400 से 500 ग्राम क्षमता वाले विशेष बैग्स दिए जाते हैं जिनमें सूखा कूड़ा भरकर श्रद्धालु अपने साथ गौरी कुंड तक लाते हैं। आज विश्व पर्यावरण दिवस है तो ऐसे में ये खबर लोगों को पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाने का संदेश देती है।

0: हिंदुओं की पवित्र तीर्थ यात्राओं में से एक देवभूमि की चारधाम यात्रा, जिसके प्रति लोगों का विश्वास और आस्था भी बढ़ी है और बढ़ी है साल दर साल इस यात्रा पर आने वाले लोगों की संख्या भी। तीर्थयात्रियों की ये संख्या हजारों में नहीं बल्कि बीते कुछ सालों में लाखों तक पहुंच गई है, जिसके चलते हिमालय की गोद में बसे इन देवधामों में एक समस्या खड़ी हो गई है और ये समस्या है प्लास्टिक और सूखे कूड़े की, जिसके समाधान के लिए एक अनोखा कैंपेन शुरू किया गया है। इसका नाम रखा गया है कैरी मी बैक। अभी ये मुहिम चारों धामों में से एक केदारनाथ धाम में शुरू की गई है, जहां हर साल सबसे ज्यादा श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं।
1: सफाई का काम चल रहा है, इसमें सुलभ की संस्था भी काम कर रही है, सभी नगर पालिका, नगर पंचायत और जिला पंचायत भी काम कर रहे हैं और प्रयास ये है कि डेली जो वेस्ट जनरेट हो रहा है उसका साइंटिफिकली डिस्पोजल किया जाए। इस संदर्भ में एक जिला लेवल पर एक मॉनिटरिंग सेल भी बनाई गई है जो हर 15 दिन में इसकी मॉनिटरिंग करके अपडेट करेगी।
0: ये मुहिम नगर पंचायत केदारनाथ ने हीलिंग हिमालयास फाउंडेशन और सुलभ इंटरनेशनल के सहयोग से शुरू की है, जिसके तहत नगर पंचायत केदारनाथ की ओर से लोगों को 400 से 500 ग्राम क्षमता वाले बैग्स में सूखा कूड़ा भरकर दिया जा रहा है। तीर्थयात्री सूखे कूड़े से भरे इन बैग्स को अपने साथ गौरीकुंड तक लेकर आ रहे हैं, जहां इन्हें एक जगह पर इकट्ठा किया जा रहा है। इसके बाद इस कूड़े का पर्यावरणीय मानकों के अनुरूप निपटारा किया जाएगा। प्रशासन का मानना है कि अगर ज्यादा से ज्यादा तीर्थयात्री मुहिम से जुड़े तो रोजाना कई टन कूड़ा आसानी से केदारनाथ धाम से नीचे लाया जा सकेगा।
2: गौरीकुंड में देना लड़के को, मैं नंबर आपका अभी ले रही है हमारी टीम और वो नीचे आपको नंबर दे देगा, बात करवा देगा। गौरीकुंड में जैसे एंटर करोगे ना, जहाँ पे की सुलभ वालों का एक वो जो घोड़ा पड़ाव जैसा है, वहाँ पे रख दोगे तो वहाँ पे लड़का मिल जाएगा आपको। मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो आप वहाँ छोड़ देना, अपने आप ढूंढ लेगा, आप वहाँ छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं।
0: इस अनोखी मुहिम का मकसद देवधाम को कूड़ा मुक्त बनाना और स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत करना है, इसलिए प्रशासन ये चाहता है कि बाबा केदार के दर्शन के बाद श्रद्धालु हिमालय की स्वच्छता और प्रकृति संरक्षण का संदेश भी अपने साथ लेकर जाएं। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर ये कैंपेन सफल होता है तो इसे दूसरे तीर्थ स्थलों और पर्यटन स्थलों पर भी लागू किया जा सकता है।
1: श्री केदारनाथ धाम की यात्रा में कूड़े के मैनेजमेंट को लेकर के काफ़ी प्रयास किए गए हैं, जैसे कि एक डिपॉजिट रिफंड सिस्टम है जिसमें प्लास्टिक की बॉटल्स को एक एक्स्ट्रा टैग लगाया जाता है और जब कोई व्यक्ति उसको डिपॉजिट करता है तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी 5 रुपये 10 रुपये उसमें रिफंड होते हैं। इसी तरीके से श्री केदारनाथ धाम में पहली बार वहाँ पर MRF सेंटर का भी संचालन किया गया है और वहाँ पर बेलिंग मशीन के द्वारा प्लास्टिक और जो ड्राई वेस्ट है उसको, उसकी बेल्स बनाई जा रही हैं और उनको धीरे धीरे करके नीचे खच्चर के माध्यम से उतारा भी जा रहा है।
0: वहीं 19 अप्रैल से शुरू हुई इस चारधाम यात्रा का दूसरा फेज शुरू हो चुका है, जिसमें श्रद्धालुओं के लिए यात्रा को और सुगम और सुरक्षित बनाया जाए, इसकी पूरी कोशिश सरकार और प्रशासन की ओर से की जा रही है। मॉनसून सीजन को देखते हुए प्रशासन ने तैयारियां भी शुरू कर दी है और तीर्थयात्रियों से भी यात्रा के दौरान सावधानी बरतने की अपील की है।
3: यात्रियों को ये संदेश ये भी होगा कि अब धीरे धीरे हमारा बरसात का सीजन भी आने वाला है और चूंकि यहाँ पे भीड़ बहुत बड़ी है और हमारा जो जोशीमठ में है वन वे भी किया गया है, तो बिल्कुल एक बार जो है रजिस्ट्रेशन करके भी जरूर आएं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन से आएंगे तो एक हम डाटा भी हम लोगों के पास होता है और यहाँ पे ठंडा भी रहता है, तो आप जो गर्म कपड़े हैं उनको भी लेके आएं और जो अपनी आवासीय व्यवस्थाएं हैं उनकी भी पूरी पहले से इंतजाम कर लेंगे तो यहाँ आकर के अनावश्यक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और यात्रियों से यही अपेक्षा रहेगी कि आप आए और थोड़ी सी आपको कष्ट जरूर होगा क्योंकि भीड़ ज्यादा है, कतारें लंबी लग रही है, दर्शनों में थोड़ा वक्त लग सकता है, तो आप अगर धैर्य बना के रखेंगे तो बाबा केदार हो या बद्रीनारायण हो जरूर आपकी जो भी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करेंगे।
0: देवभूमि की इस चारधाम यात्रा को लेकर इस साल जिस तरह का उत्साह श्रद्धालुओं में देखा जा रहा है उसके चलते अब तक तीर्थयात्रियों का आंकड़ा 30 लाख से ज्यादा हो चुका है। इनमें भी सबसे ज्यादा श्रद्धालु केदारनाथ और बद्रीनाथ पहुंचे हैं। दोनों ही धामों में 19 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं।
4: देखिए, जैसे कि इस बार सामान्य तो दिख भी रहा है कि बड़ी संख्या में हमारे पास यात्रियों की तादाद आ रही है। बद्रीनाथ में 8.5 लाख से ज़्यादा यात्री हमारे पहुंच चुके हैं और 50,000 से ऊपर हमारे यात्री हेमकुंड साहिब में पहुंच चुके हैं, क्योंकि ये सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में और हमारे उच्च अधिकारियों के लगातार मॉनिटरिंग के क्रम में ही ये उपलब्धि हासिल की गई है, क्योंकि जो मूलभूत सुविधाएं थी वो प्रॉपर इस बार तैयार की गई थी। और अभी भी बद्रीनाथ में हमारा 25,000 के करीब यात्री डेली बेसिस पे आ रहा है।
0: श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखकर उम्मीद है कि इस साल इस यात्रा के समापन पर पुराने सभी रिकॉर्ड टूट सकते हैं। केदारनाथ से प्रवीण सेमवाल और चमोली से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज।

0: और अगली खबर अयोध्या से, जहां 1000 साल पुराने आचार्य मंदिर में 400 साल पुरानी पांडुलिपि मिली है। करीब 5000 की संख्या में ये पांडुलिपियां फारसी, अरबी, उर्दू और कुछ रोमन लिपि में लिखी गई हैं, जिनका अध्ययन किया जाएगा और इसके बाद इन दुर्लभ पांडुलिपियों को अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय में रखा जाएगा। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या के गौरवशाली इतिहास को समेटे हुए ये वो दुर्लभ दस्तावेज है जो आने वाले वक्त में लोगों को अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय में देखने को मिल सकता है। ये पांडुलिपियां 12वीं से लेकर 19वीं शताब्दी तक की बताई जा रही हैं, जो अयोध्या के 1000 साल पुराने आचार्य मंदिर से मिली है। इनकी संख्या 5000 के करीब है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि सनातन धर्म के इस बेहद प्राचीन मंदिर में मिली ये पांडुलिपियां फारसी, अरबी, उर्दू और कुछ रोमन लिपियों में लिखी गई हैं।
1: ये दंतधावन कुंड आचार्य मंदिर तकरीबन 1000 साल प्राचीन विष्णु प्रकाशाचार्य द्वारा स्थापित यह स्थान है और यहाँ पे जो भी पांडुलिपियां मिली हैं वो फारसी में है और आपके अरबी में है, उर्दू में है, कुछ रोमन में है, बाकी उसमें कुछ 12वीं शताब्दी की हैं, 13वीं की भी हैं, कुछ 14वीं 15वीं की हैं और 17वीं शताब्दी की हैं, 19वीं शताब्दी की हैं। तो ऐसी बहुत सारी पांडुलिपियां आपके स्थान पे दंतधावन कुंड पे मिली हैं। तकरीबन ये 5000 के आसपास ये जो इनकी संख्या है।
0: आचार्य मंदिर के पुजारी का कहना है कि ज्यादातर पांडुलिपियां भोजपत्र की हैं, जिनका जल्दी ही हिंदी में अनुवाद कराया जाएगा, जिसके बाद ही इन दुर्लभ पांडुलिपियों पर लिखे इतिहास से पर्दा उठ सकेगा। हालांकि उन्होंने बताया कि इन पांडुलिपियों पर अयोध्या के मंदिरों, पुराने कुंडों और मंदिरों के लिए दी गई जमीनों का लेखा जोखा हो सकता है।
1: देखिए, ज्यादातर ये जो लिपियां हैं ये कुछ हुक्मनामे हैं और शहंशाह हिंद की तरफ से जो जमीन दी गई स्थान को उसमें है। अयोध्या में जो मंदिर बसाए गए हैं दंतधावन कुंड की तरफ से उनकी है, कुछ अयोध्या को लेकर के जो और चीजें हैं उसकी है। तो तथा कथित कहा जाए तो ये अयोध्या का एक पूरा इतिहास है, प्राचीन इतिहास है। लमसम सारी जो है वो भोजपत्र पे हैं, कुछ है तामपत्र पे थी, तो जब अंग्रेज यहाँ से जाने लगे तो उन्होंने भोजपत्र पे करके और उसको तामपत्र खुद लिखा।
0: दरअसल अयोध्या में भगवान श्री राम से जुड़ी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करने के लिए दुर्लभ पांडुलिपियों का देश भर से संग्रह किया जा रहा है और फिर इन्हें जांच के बाद अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय में रखा जाएगा। लेकिन इस संग्रहालय में सिर्फ उन्हीं पांडुलिपियों को रखा जाएगा जो सिर्फ हाथ से लिखी है और दुर्लभ है।
2: विभिन्न स्थानों पे इस प्रकार की पांडुलिपियां हमें मिली है, जैसे लक्ष्मण किला में, रामकथा संग्रहालय में, अंतर्राष्ट्रीय रामायण शोध संस्थान में, गोकुल भवन में और हनुमानगढ़ी में और अन्य स्थानों का भी सर्वेक्षण किया जा रहा है। ये विभिन्न भाषाओं में, कुछ हिंदी में मिली है, कुछ संस्कृत में मिली है, अलग अलग जगहों पे उर्दू में भी मिल रही है, तो हम उन सभी को असेस करके डिजिटाइज करा रहे हैं।
0: बताया जा रहा है कि पांडुलिपियों को इकट्ठा करने की मुहिम के तहत देश के अलग अलग हिस्सों से कई लोग ऐसी दुर्लभ पांडुलिपियों की जानकारी अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय और डायरेक्टर संजीव सिंह को दे चुके हैं। इस पूरे अभियान का मकसद सिर्फ पांडुलिपियों को इकट्ठा करना ही नहीं बल्कि इन्हें वैज्ञानिक तरीके से सुरक्षित रखना भी है, इसीलिए इन्हें डिजिटल रूप में सेव करने की तैयारी है ताकि आने वाले समय में लोग इन्हें आसानी से देख भी सकें और पढ़ भी सकें।
3: इस प्रकल्प में हम लोग दो तरह की बात करेंगे, एक तो पांडुलिपियों का संग्रहण कर रहे हैं, दूसरा उन पांडुलिपियों को जो हमको नहीं मिल पा रही हैं, तो उनका जो है फेसेमाइल या टेक्निकल, आजकल बहुत से टेक्निकल डिवाइस के रूप में जैसे कि हम माइक्रोफिल्म बना लेंगे, तो क्या होगा कि आपको एक ही जगह सब चीज मिल जाएगी। तो रेफरेंस के लिए जो संदर्भ है, तो इसलिए युवाओं को ही नहीं, शोधार्थियों के लिए जो राम, राम साहित्य, राम कथा पर शोध कर रहे हैं, उनके लिए अद्भुत केंद्र होने वाला है।
0: इस पूरी पहल के जरिए रामायण की कालातीत विरासत को सुरक्षित कर आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना है। अयोध्या से मयंक शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: बात एक जादुई कुर्सी की, जिस पर बैठे बैठे एक भारतीय डॉक्टर ने 20,000 किलोमीटर दूर मौजूद पेशेंट की बाईपास सर्जरी कर दी। मेडिकल साइंस में अद्भुत कीर्तिमान से जुड़ा ये मामला गुआना की राजधानी जॉर्जटाउन और भारत के इंदौर से जुड़ा है। ये सर्जरी भारत में विकसित सर्जिकल रोबोटिक सिस्टम की मदद से की गई है, जो दुनिया की सबसे लंबी दूरी से की गई रोबोटिक हृदय सर्जरी मानी जा रही है और चिकित्सा क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि। गुआना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली ने भारतीय डॉक्टर्स की इस शानदार उपलब्धि को स्वास्थ्य सेवाओं की में तकनीकी क्रांति की दिशा में बड़ा कदम बताया।

0: मेडिकल साइंस से जुड़ी ये उपलब्धि अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय लगती है, लेकिन ये सच है क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बदौलत स्वास्थ्य के क्षेत्र में ऐतिहासिक बदलाव आ रहे हैं। मसाज या रिक्लाइनर चेयर जैसी दिखने वाली इस खास कुर्सी पर बैठकर हजारों किलोमीटर दूर ऑपरेशन की बात आम लोगों के लिए काल्पनिक कहानियों जैसी है, लेकिन एडवांस सर्जिकल रोबोटिक तकनीक पर काम करने वाली एक निजी कंपनी डॉक्टर्स की कल्पनाओं को भी पंख देने का काम कर रही है। अगर अब डॉक्टर और मरीज अलग अलग शहर में ही नहीं बल्कि अलग अलग देश में भी बैठे हों तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 20,000 किलोमीटर की दूरी भी अब 2 मीटर के ही बराबर लगती है। चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में भारत की एक और ऐतिहासिक उपलब्धि इसी दूरी को पाटने से जुड़ी है। भारतीय मूल के हृदय रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव ने दुनिया की सबसे लंबी दूरी की रोबोटिक कार्डिक टेली सर्जरी की है।
1: क्या आप सोच सकते हैं कि 20,000 किलोमीटर दूर से कोई डॉक्टर किसी मरीज का सर्जरी कर सकता है, वो भी दिल की सर्जरी? लेकिन ऐसा हुआ है और इसे संभव किया है डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव ने। डॉक्टर साहब गुयाना में थे और वहां से उन्होंने एक पेशेंट की सर्जरी की है जो कि भारत में इंदौर में बैठा हुआ था।
0: अमेरिकी देश गुयाना की राजधानी जॉर्ज टाउन से इंदौर की दूरी करीब 20,000 किलोमीटर है, फिर भी उन्होंने वहीं से दिल से जुड़ी सर्जरी को अंजाम दिया।
2: पहले तो काफी टेली सर्जरीज कर रखी हैं, 180 के करीब, और 22 हार्ट सर्जरीज कर रखी हैं लॉन्ग डिस्टेंस से, और जो लास्ट मैंने किया था वहाँ से फ्रांस से इंदौर में। पर ये जो रिकॉर्ड है ये जॉर्ज टाउन गायाना से इंदौर में, ये कम्युनिकेशन जो डिस्टेंस होता है केबल के थ्रू, क्योंकि वहाँ से जाते हैं सिग्नल, तो वो 20,000 किलोमीटर है और ये वर्ल्ड का रिकॉर्ड है। तो अभी तक जो पहले रिकॉर्ड था वो करीब 12,000 किलोमीटर का था। तो ये हम लोग जो कर रहे हैं ये इसलिए कर रहे हैं कि कहीं भी बैठ करके हम एक्सपर्टीज जो हैं मरीज को कहीं भी दे सकते हैं। तो इससे है ना, पेशेंट को ट्रैवल नहीं करना पड़े, जो एक्सपर्ट सर्जन हैं वो अपनी एक्सपर्टीज वहाँ पे दे सकते हैं। तो इसके लिए दुनिया में सबसे ज्यादा बहुत फायदा होगा।
0: एडवांस सर्जिकल रोबोटिक तकनीक पर काम करने वाली कुर्सी अपने घर या क्लिनिक में बैठे सर्जन के लिए किसी कमांड सेंटर की तरह काम करती है, यानी एक चलता फिरता ऑपरेशन थिएटर जो कंप्यूटर के जरिए कमांड देता है। मैग्नीफाइड तकनीक वाले 3D ग्लासेस पहनकर सर्जन रियल टाइम में पेशेंट को ऑपरेट कर सकते हैं, जिससे मरीज से दूरी कोई मायने नहीं रखती। यही वजह है कि करीब 290 से 300 मिलीसेकंड की नेटवर्क लेटेंसी के बावजूद सर्जरी पूरी तरह से सुरक्षित और सफल रही। हाई डेफिनेशन 3D विजुअलाइजेशन और एडवांस रोबोटिक कंट्रोल्स की मदद से दोनों देशों की मेडिकल टीमों ने बेहतरीन तालमेल दिखाया, जिसकी वजह से गुयाना के ही रहने वाले 65 वर्षीय मरीज की इंदौर में सफल बाईपास सर्जरी कर दी गई, ताकि आर्टरीज यानी धमनियों में ब्लॉकेज को दूर किया जा सके।
2: 65 इयर्स ओल्ड और कोरोनरी आर्टरी डिजीज थी, मतलब ब्लॉकेजेस थे हार्ट की आर्टरीज में, और उनको 2 बाईपासेस चाहिए थे। तो वट हमने जो वहाँ से किया वो जो लेफ्ट इंटर मेमोरी आर्टरी होती है चेस्ट में, तो वहाँ बैठ करके मैंने उसको डाइसेक किया। ये बहुत ही डेलिकेट ऑपरेशन है और बहुत प्रिसाइज होना पड़ता है, क्योंकि अगर वो आर्टरी डैमेज हो जाए तो वो लाइफ लाइन होती है पेशेंट्स की। तो हम लोगों ने बिल्कुल सक्सेसफुली किया। और ऑल्सो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे एक हमारी हार्ट सर्जरी की टीम भी थी, वो जो रोबोटिक मंत्रा सिस्टम में ट्रेंड है, डॉक्टर ललित मलिक जो हैं मणिपाल के, उन्होंने भी 150 के करीब केसेस कर रखे हैं और टेली सर्जरी कर रखी हैं, तो वो इंदौर में मौजूद थे। तो अगर किसी कारण से इंटरप्शन हो जाए या कुछ और चाहिए तो पेशेंट का जो सेफ्टी है बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं हुई। तो सर्जरी हुई सक्सेसफुली इन टर्म्स ऑफ द टेली सर्जरी।
0: जिस तरह सिस्टम सर्जन के पास लगा होता है ठीक उसी तरह अस्पताल में भी सिस्टम लगा होता है। इस मामले में फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क के जरिए टेली रोबोटिक सर्जरी को अंजाम दिया गया। इसके अलावा रोबोटिक आर्म की वजह से सर्जरी के दौरान मरीज का पारंपरिक तरीकों की तुलना में ज्यादा सुरक्षित अनुभव रहा।
2: तो हम लोगों ने बहुत पहले टेस्टिंग कर रखी है और जो हम लोग यूज करते हैं वो फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क होता है और वो भी पॉइंट टू पॉइंट होता है, तो उसमें इंटरप्शन हो ही नहीं सकता और बिल्कुल साइबर सिक्योर होता है। तो उससे है ना जो डिले होती है नॉर्मल ट्रांसमिशन में वो भी है ना कम रहती है. तो इसके अभी तक जितने हम लोगों ने केसेस कर रखे हैं ये कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ कि है ना नेटवर्क लॉस हुआ, कनेक्टिविटी चली गई. इसीलिए हम लोग सेफ्टी के साथ भी करते हैं कि एक टीम होती है वहीं पे.
0: भारतीय डॉक्टर्स की इस उपलब्धि को गुआना के 60वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के साथ भी जोड़ा गया है. गुआना सरकार इसे अपने राष्ट्रीय रोबोटिक सर्जरी कार्यक्रम की शुरुआत के रूप में देख रही है. गुआना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली ने भारतीय डॉक्टर्स की शानदार उपलब्धि को स्वास्थ्य सेवाओं में तकनीकी क्रांति की दिशा में एक बड़ा कदम बताया.
3: A landmark cardiac telesurgery procedure was conducted on the 26th of May 2026 on our Diamond Jubilee in the Cooperative Republic of Guyana at 6 a.m. The team performed a coronary artery bypass graft. The surgery was performed by internationally renowned cardiac surgeon Dr. Sudhir Srivastava and his entire team, both from India and from Guyana, and of course, regionally. Dr. Srivastava operated remotely from Guyana on a patient located in India using the SSI Mantra 3 robotic surgical system. From today, our surgeon is called Freedom 60.
0: साफ है कि इस तरह के मेक इन इंडिया एडवांस सर्जिकल रोबोटिक तकनीक पर काम करने वाली कुर्सी दूर दराज के इलाकों में बैठे मरीजों के लिए काफी मददगार है, जिसकी वजह से बड़े शहर में लाए बिना उनकी जान बचाई जा सकती है. दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे. हमारे देश में हर साल कई फिल्में रिलीज होती हैं, कुछ हिट होती हैं, कुछ सुपरहिट होती हैं. फिल्म की कहानी तय करती है कि वो हिट है या सुपरहिट है, मगर बीते कुछ सालों से फिल्म की कहानियों से ज्यादा उनके बजट को लेकर चर्चा हो रही है. वो खूब सुर्खियों में है. रिलीज से पहले बजट की चर्चा से ऐसा माहौल बना दिया जाता है कि दर्शक सिनेमा घरों तक खींचे चले आते हैं. वो अलग बात है कि फिल्म कैसी है इसका असली पता फिल्म देखने के बाद ही चलता है. दिग्गज अभिनेता मनोज बाजपेयी भी यही मानते हैं कि फिल्म के बिग बजट की चर्चा एक पीआर स्टंट से ज्यादा नहीं है. हाल फिलहाल में रणवीर कपूर की बिग बजट वाली फिल्म रामायणम की खूब चर्चा हो रही है क्योंकि इसका बजट 4000 करोड़ है.

भारत की आत्मा में बसे हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। वो धर्म, त्याग, कर्तव्य और एकता के प्रतीक हैं। उसी राम कथा को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए भारतीय सिनेमा इतिहास की सबसे बड़ी और सबसे भव्य फिल्म बनाई जा रही है। कहा जा रहा है कि ये सिर्फ एक फिल्म नहीं होगी, बल्कि रामायण की भावना को हॉलीवुड स्तर की तकनीक के साथ दुनिया भर तक ले जाने की एक कोशिश है। सिनेमा ने श्री राम की कहानी को कई बार जिया है और हर बार रामायण ने लोगों के दिलों में खास जगह भी बनाई है, लेकिन इस बार श्री राम के जीवन पर बन रही ये फिल्म अपनी कहानी कहने के तरीके से ज्यादा भारी भरकम बजट को लेकर शुरू से चर्चा में है। दावा है कि इस फिल्म का ओवरऑल बजट 4000 करोड़ रुपए है,

फिल्मों के भारी भरकम बजट पर छिड़ी चर्चा में एक्टर मनोज बाजपेयी की एंट्री हुई है। उन्हें फिल्मों का भारी भरकम बजट पीआर स्टंट लगता है। मनोज ने कहा, देखिए वो लोगों के पीआर का जरिया होता है, उसके जरिए ही ज्यादा बातचीत, कम से कम मैं जानता हूँ 15 सालों से चल रहा है, ये सब काफी जल्दी फैल रहा है। कई बार कुछ दर्शक मिलते हैं मुझे इधर उधर, तो वो भी नंबर्स में बात करने लगते हैं। मैंने उनको डांटा भी कि भाई तुम्हारे अकाउंट में नहीं जा रहा है, अगर आपके अकाउंट में जा रहा है आप तब बात करिए, आप ये बताइए कि फिल्म कैसी लगी, बुरी लगी या अच्छी, उसकी बात करिए। मनोज के बयान के बाद फैंस की क्यूरियोसिटी बढ़ गई है। आखिर रणबीर की रामायण में ऐसा क्या है, आखिर कौन सी ऐसी चीज है जो इस फिल्म को इतना बड़ा बजट का बनाती है। तो दावा है कि इस फिल्म का बजट 4,000 करोड़ है और ये भारत की सबसे महंगी फिल्म है, यानी ये भारतीय सिनेमा का अब तक का सबसे महंगा प्रोजेक्ट होगा। फिल्म में रामायण का संसार दिखाने के लिए बड़े बड़े सेट्स लगाए गए हैं। लंका, राम रावण युद्ध, पुष्पक विमान, सब हॉलीवुड जैसा दिखेगा। इसके अलावा वनवास, सीता हरण और युद्ध के सीन बड़े पैमाने पर दिखाए जाएंगे और ये सब दुनिया का सबसे बेहतरीन स्टूडियो DNEG कर रहा है, जिसमें काफी वक्त और पैसा खर्च किया गया है। AI डबिंग की नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है, मतलब ये कि एक ही भाषा में फिल्म बनकर AI से दूसरी भारतीय भाषाओं में मुंह की हरकतें बिल्कुल मैच कर डब किया जाएगा। ये भारतीय सिनेमा में पहली दफा हो रहा है। इसके अलावा फिल्म के प्रमोशन पर बड़ी रकम खर्च होगी। दावा है कि फिल्म IMAX पर रिलीज होगी, जिसके मायने हैं स्क्रीन बड़ी और तस्वीर बेहद साफ। आखिर सच यही है कि बजट चाहे जितना भी बड़ा हो या PR का हाइप कितना भी हो, फिल्म की असली परीक्षा सिनेमा हॉल में होगी और इन सब के बीच फैंस को फिल्म का बेसब्री से इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।

0: खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ, आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
2: आपके घर की सीढ़ियों से किस ग्रह का संबंध है? सीढ़ियों के नीचे क्या बाथरूम या पूजा घर बना सकते हैं? और अगर सीढ़ियां गलत तरीके से बन गई हैं तो उन सीढ़ियों की समस्या को कैसे दूर करें? वास्तुशास्त्र और ज्योतिष में क्या है सीढ़ियों का महत्व, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
3: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
4: Did you know you can control the speed of what you're listening to? During playback, you can tap on the speed control setting to adjust the speed, whether you'd like to make it faster to get to the end or take it a bit slower to give it time to digest. You can listen to all your favorite podcasts and audiobooks however you want. Plus, if you follow your favorite podcast and books, you'll get recommendations on what to listen to next. Why not try out this feature today?
5: न्यूज पर रात सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे सीढ़ियों के बारे में। सीढ़ियों का आपके भाग्य से क्या संबंध है, घर की सीढ़ियां कैसी होनी चाहिए और सीढ़ियों को बनाने में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 6 जून 2026, दिन शनिवार, तिथि है अधिक ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि, नक्षत्र है श्रवण नक्षत्र, प्रातः 6:03 तक चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं, शाम के 7:03 तक राहु काल का समय प्रातः 9 से 10:30 तक पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 6 जून 2026 दिन शनिवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य विद्यमान है वृषभ राशि में, बुध और शुक्र मिथुन राशि में, बृहस्पति कर्क राशि में, केतु सिंह राशि में, चंद्रमा मकर राशि में, राहु कुंभ राशि में, शनि विद्यमान है मीन राशि में और मंगल फिलहाल विद्यमान है मेष राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। हम आज बात कर रहे हैं ज्योतिष और वास्तु शास्त्र के नजरिए से सीढ़ियों के बारे में। वास्तु शास्त्र में सीढ़ियों का क्या महत्व है? देखिए, सीढ़ियां किसी भी घर की उन्नति से संबंध रखती हैं। ये सीढ़ियां आपके घर में कहीं भी हों, ये जीवन के उतार चढ़ाव से संबंध रखती हैं। सीढ़ियां अगर

घर के बाहर हैं तो ये शुक्र से संबंध रखती हैं, और सीढ़ियां अगर घर के अंदर हों तो ये मंगल से संबंध रखती हैं। वैसे देखिए सीढ़ियों का मतलब होता है उतार चढ़ाव, इसलिए कुल मिलाकर सीढ़ियों का संबंध होता है राहु और केतु के साथ। गलत सीढ़ियां जीवन में आकस्मिक समस्याएं पैदा कर देती हैं। अगर आपने गलत तरीके से घर में सीढ़ियां बनाई हैं तो अचानक आपके जीवन में समस्या आ सकती है। इनके कारण बिना वजह के राहु और केतु आपके जीवन में प्रभावित हो जाते हैं। सीढ़ियों पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, आर्थिक मजबूती आएगी, करियर की समस्या हल होगी, स्वास्थ्य में सुधार होता रहेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, पारिवारिक समस्या हल होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सफलता मिलेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, बेवजह के तनाव से बचाव करें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो आपकी मुश्किलें कम हो जाएंगी। कर्क राशि, कोई बड़ी समस्या आपकी हल होगी, धन का लाभ होगा, चोट चपेट से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तो देखिए सीढ़ियां आपको घर के ऊपर भी ले जाती हैं और सीढ़ियां आपको घर के नीचे भी ले आती हैं। उतार चढ़ाव से संबंध होने की वजह से सीढ़ियों का संबंध आपके जीवन में राहु और केतु के साथ बनता है। अब आपको बताते हैं कि सीढ़ियों के निर्माण में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नैऋत्य कोण में यानी दक्षिण पश्चिम कोने में सीढ़ियां सबसे ज्यादा उत्तम, सबसे ज्यादा सही मानी जाती हैं। सीढ़ियों का निर्माण उत्तर से दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए या
पूरब से पश्चिम दिशा की तरफ होना चाहिए, मुख्य द्वार के सामने, ईशान कोण यानी पूरब उत्तर के कोने में, या आग्नेय कोण दक्षिण पूर्व के कोने में सीढ़ियां नहीं होनी चाहिए। सीढ़ियां जितनी सीधी हों, जितनी सरल हों, उतना अच्छा होगा। सीढ़ियां कम घुमावदार होनी चाहिए और सीढ़ियां हमेशा चौड़ी होनी चाहिए और सीढ़ियों पर प्रकाश की उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए। सीढ़ियों के नीचे जो जगह है वहां पर बाथरूम, स्टोर या पानी वाली चीजें नहीं होनी चाहिए। सीढ़ियों के नीचे जो जगह है भूल कर भी वहां पर मंदिर मत बनाइएगा। सीढ़ियों के नीचे बाथरूम का होना और सीढ़ियों के नीचे मंदिर का होना बहुत ही ज्यादा नकारात्मक होता है। सीढ़ियों पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, रुका हुआ काम आपका बन जाएगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संतान पक्ष की उन्नति होगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, करियर में समस्या हो सकती है, धन की हानि से बचाव करें, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृश्चिक राशि, आर्थिक लाभ होगा, सेहत की स्थिति बेहतर होती जाएगी, जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, ऐसा हो सकता है कि आपको पहले से जानकारी ना रही हो और आपने अपने घर में गलत तरीके से सीढ़ियां बनवा ली हों। अगर सीढ़ियां आपके घर में गलत बन गई हों तो क्या उपाय करेंगे? सीढ़ियों का रंग सफेद रखें तो सबसे ज्यादा बेहतर होगा। और सीढ़ियों के साथ वाली जो दीवार है
उस पर एक बड़ा सा लाल रंग का स्वस्तिक लगा दीजिएगा। अगर सीढ़ियों के नीचे कुछ गलत निर्माण करवा लिया है, सीढ़ियों के नीचे कुछ गलत कंस्ट्रक्शन हो गया है, तो वहां पर एक तुलसी का पौधा लगाइएगा। सीढ़ियों पर और सीढ़ियों के नीचे अंधेरा नहीं होना चाहिए, सीढ़ियों के नीचे प्रकाश की उचित व्यवस्था आपको करनी चाहिए। जिस स्टेप पर सीढ़ियां शुरू हो रही हैं और जिस स्टेप पर सीढ़ियां खत्म हो रही हैं, वहां पर एक हरे रंग का डोर मैट रख दीजिएगा। सीढ़ियों के नीचे टेबल लगा करके पढ़ने लिखने की वस्तुएं रख सकते हैं, पढ़ने लिखने का काम कर सकते हैं या किताब रखने की व्यवस्था कर सकते हैं। सीढ़ियों के नीचे पानी रखना या सीढ़ियों के नीचे पानी रखने की व्यवस्था करना सबसे ज्यादा नकारात्मक माना जाता है। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुका हुआ काम आपका बन जाएगा, लाभकारी यात्रा हो सकती है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, सेहत की स्थिति बेहतर होगी, करियर में सफलता मिलेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, अनावश्यक तनाव ना पालें, वाद विवाद से बचाव करें, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मीन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, महत्वपूर्ण काम बन जाएगा, नजदीकी रिश्तों में समस्या हो सकती है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तो आज हमने बात की सीढ़ियों के वास्तु और ज्योतिष के साथ कनेक्शन की। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए एक लकी टिप। जिन पुरुषों का विवाह नहीं हो पा रहा है, ऐसे पुरुषों को हर शुक्रवार को माता लक्ष्मी को गुलाब का फूल अर्पित करना चाहिए
और उनसे शीघ्र विवाह की प्रार्थना करनी चाहिए। अब जान लेते हैं दिनांक 6 जून 2026 दिन शनिवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। इसके बाद हनुमान जी से कृपा करने की प्रार्थना करिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीज।
2: नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ श्वेता झा, स्वागत है आपका न्यूज पथ में। राह जिंदगी की हो या खबरों की, उसमें कई मोड़ होते हैं, कई रफ्तार होते हैं, कई पड़ाव होते हैं। देश और दुनिया से जुड़ी पॉजिटिव खबरों के साथ आपको लिए चलेंगे न्यूज पथ पर, लेकिन सबसे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। टीआईटी भोपाल, जेन ज़ीज़ गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स।
2: गुजरात और दमन दौरे पर प्रधानमंत्री ने दिया विकास का तोहफा। अजीरा में लार्सन एंड टोबो की इंडस्ट्रियल फैसिलिटी का लिया जायजा। सूरत को 200 बेड वाले अस्पताल की सौगात। चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह। अब तक 30 लाख से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन। केदारनाथ पहुंचने वालों का आंकड़ा 11 लाख के पार। देश दुनिया में मनाया जा रहा पर्यावरण दिवस। सूरत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगाया एक पेड़ मां के नाम। पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण की अपील। भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर शानदार खबर। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 7.7% रही जीडीपी ग्रोथ। जनवरी से मार्च की तिमाही में 7.8% की दर से हुई वृद्धि। नहीं बदलेगी आपके लोन की ईएमआई। आरबीआई ने रेपो रेट 5.25% रखी बरकरार। विदेशी निवेशकों को लुभाने के लिए भी उठाया कदम। आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर, और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेरा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है, क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। और चर्चा चार धाम यात्रा में आस्था के हुजूम के साथ अच्छी व्यवस्थाओं की भी।
4: चार धाम की चल रही यात्रा में केदारनाथ धाम में उमड़ रहा आस्था का सैलाब। इस धाम में इस बार यात्रियों के पहुंचने का रिकॉर्ड बन रहा है। 46 दिनों की यात्रा में ही यहां 11 लाख से ज्यादा भक्त बाबा केदार के दर्शन करने पहुंच चुके हैं। हर दिन यहां 20,000 के आसपास भक्त पहुंच रहे हैं। भक्तों के अलावा यहां जगह जगह से देव डोलियां भी पहुंच रही हैं। केदारनाथ धाम में भक्तों को स्पर्श और श्रृंगार दोनों ही तरह के दर्शन कराए जा रहे हैं। केदारनाथ धाम की यात्रा को लेकर की गई अच्छी तैयारियों का भक्तों को लाभ भी मिल रहा है। यात्रा के दौरान बीमार श्रद्धालुओं के लिए यहाँ हेलीकॉप्टर से की गई व्यवस्था भी है। ये तस्वीरें यात्रा के दौरान बीमार पड़े ऐसे ही एक श्रद्धालु की हैं, जिसे बेहतर इलाज के लिए हेलीकॉप्टर से भेजा गया। बद्रीनाथ धाम से लेकर श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा को लेकर भी भक्तों में जबरदस्त जोश है। यहां दर्शन के लिए पहुंचने वाले यात्रियों की संख्या 8,88,000 से आगे बढ़ते हुए 9 लाख की तरफ बढ़ती चली जा रही है। यहां हर दिन लगभग 29,000 यात्री बाबा बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। भक्तों की सुविधा के लिए यहां अच्छी व्यवस्था की गई है। पुलिस वाले भी भक्तों को चाय पानी पिलाते नजर आ रहे हैं। वहीं हेमकुंड साहिब की यात्रा में 19 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई चढ़ने के बाद भी बच्चे, बुजुर्ग और युवा सभी पूरे उत्साह के साथ पवित्र गुरुद्वारे पहुँच कर मत्था टेक रहे हैं। सिखों के इस पवित्र तीर्थ हेमकुंड साहिब में 50,000 से ज्यादा श्रद्धालु मत्था टेक चुके हैं। यात्रा मार्ग पर भी श्रद्धालुओं की सुविधा का यहां पूरा ध्यान रखा जा रहा है। अटलाकोटी में एक महिला श्रद्धालु जब चलने में असमर्थ हो गई, तो एसडीआरएफ के जवानों ने उन्हें टू हैंड लिफ्टिंग कर घांघरिया पहुंचाया। अपनी मनोकामना पूरी होने पर शिरडी के साईं बाबा के भक्त इस दरबार में अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज करा रहे हैं, साथ में उन्हें अपनी ओर से भेंट भी अर्पित करते हैं। पंजाब के भटिंडा से पहुंचे ऐसे ही एक भक्त अजय कुमार गोयल ने बाबा को सोने का मुकुट अर्पित किया। 237 ग्राम सोने के इस मुकुट की कीमत 34,70,000 रुपए बताई गई है। भक्त अजय ने कैंसर से पीड़ित अपने पिता के लिए 2 साल की जिंदगी और देने की मन्नत मांगी थी। दरअसल अजय के पिता का इलाज करने वाले डॉक्टर्स ने जब कहा था कि अब उनके पास सिर्फ 2 महीने का वक्त बचा है, तब अजय ने साईं बाबा से उनके लिए ये मन्नत मांगी थी, जिसके बाद अजय को अपने पिता के साथ 2 से 3 दिन का वक्त बिताने का मौका मिला और फिर उनके पिता उन्हें छोड़कर चले गए। अपनी मन्नत पूरी होने के बाद अजय ने साईं बाबा के दरबार में पहुंचकर उन्हें सोने का ये मुकुट अर्पित किया। उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल फूलों की घाटी के खुलने के बाद यहां लगातार पर्यटकों का पहुंचना जारी है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर यहां पहुंचने वाले पर्यटक एक पेड़ माँ के नाम अभियान को आगे बढ़ाते भी दिखे। फूलों की घाटी के इको सेंसिटिव जोन में नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क प्रशासन और पर्यटकों ने यहां पौधारोपण भी किया। 1 जून को फूलों की घाटी को पर्यटकों के लिए खोला गया था और 15 जून के बाद फूलों की घाटी का मुख्य सीजन शुरू हो रहा है, जिसमें यहां और ज्यादा खूबसूरत छटा का दीदार करने का पर्यटकों को अवसर मिलेगा। उत्तराखंड के चमोली जिले में 5,807 मीटर की ऊंचाई पर स्थित चुनौतीपूर्ण हाई ऑल्टीट्यूड ट्रैक से ट्रैकिंग कर सकुशल लौटा इस वर्ष का पहला दल। इस दल में 7 ट्रैकर शामिल थे, जो गमशाली से 26 मई को गुप्तखाल के लिए रवाना हुए थे। ट्रैकर का ये दल गुप्तखाल पहुंचकर बर्फबारी और मौसम की चुनौती के बीच आरोहण किया और 10 दिनों के अपने अभियान के दौरान इस कठिन रूट पर माणा पास के बर्फीले रास्तों को पार कर ये दल सकुशल जोशी मठ पहुँच गया। इस दल में दिल्ली, पंजाब, कोलकाता और महाराष्ट्र के ट्रैकिंग के शौकीन शामिल थे।
2: और अब बात मॉनसून की। दक्षिण भारत में मॉनसून की एंट्री हो गई है। इसके साथ ही देश के अलग अलग हिस्सों में मॉनसून का मिजाज बदल गया है। राजधानी दिल्ली एनसीआर में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से बारिश और तेज हवाओं ने लोगों को गर्मी से राहत दी। बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। वहीं दूसरी ओर दक्षिण भारत में दक्षिण पश्चिम मॉनसून की एंट्री हो चुकी है, जिससे कि कई राज्यों में बारिश हो रही है। केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के कई हिस्सों में अच्छी बारिश हुई है।

0: केरल में मॉनसून दस्तक दे चुका है। 6 जून को यहां भारी बारिश का भी अलर्ट जारी किया गया है। फिलहाल मॉनसून केरल समेत कर्नाटक और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों तक पहुंच चुका है और आने वाले दिनों में ये देश के दूसरे राज्यों तक पहुंचेगा। वहीं दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में मौसम का मिजाज अचानक बदल गया। प्री मॉनसून की बारिश राहत लेकर आई। तेज आंधी तूफान के साथ आई झमाझम बारिश ने गर्मी और उमस से निजात दिला दी और मौसम विभाग के ऐलान के बाद से उत्तर भारत के लोगों के चेहरे खिल गए हैं। यहां जून के आखिर तक मॉनसून के पहुंचने की उम्मीद है।
1: 4 जून को केरल में मानसून ने दस्तक दी, उसके बाद पूरे देश में मौसम का मिजाज बदला दिखाई पड़ रहा है। 4 जून को दिल्ली एनसीआर में भी ठीक ठाक बारिश हुई, तेज हवाएं चली, जिसके बाद मौसम पूरी तरह से बदल गया। 4 जून से पहले दिल्ली एनसीआर वाले भीषण गर्मी से परेशान थे, लेकिन उसके बाद जब बारिश हुई, अभी आप देखिए कि आज भी मौसम सुहावना बना हुआ है। सूर्य देवता परेशान नहीं कर रहे, चमक नहीं रहे, तेज रोशनी से गर्मी नहीं हो रही, ह्यूमिडिटी नहीं है और मौसम लगातार अच्छा बना हुआ है। आपको बता दें कि अभी भी कई राज्यों के लिए मौसम विभाग ने भारी बारिश और तूफान का अलर्ट जारी किया है। हालांकि दिल्ली एनसीआर के लिए कहा गया है कि आज भी दिन भर ऐसे ही बादल छाए रहेंगे और बीच बीच में 40 से 60 किलोमीटर की रफ्तार की जो तेज हवाएं हैं वो चल सकती हैं। हल्की बारिश भी दिल्ली एनसीआर में हो सकती है और 6 जून तक ऐसा ही मौसम दिल्ली एनसीआर में लगातार बना रहेगा।
0: मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में मौसम में आए इस बदलाव की वजह एक नया वेस्टर्न डिस्टरबेंस है, जिसका असर शुक्रवार, आज और शनिवार को उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों में भी देखने को मिलेगा। इस दौरान तेज आंधी और बारिश के साथ ओले गिरने की संभावना जताई गई है।
2: अभी एक वेस्टर्न डिस्टरबेंस है, वो इस समय नॉर्थ पाकिस्तान पे एक सर्कुलेशन की फॉर्म में है, स्ट्रेंथन में है और उसके साथ ही जहाँ जैसे WD बना हुआ है, जो हवाएं भी अरबियन सी से

इस एरिया में आ रही है, जिसके कारण आप थोड़ा ह्यूमिडिटी भी बढ़ जाती है और विच इज़ फेवरेबल फॉर रेनफॉल एक्टिविटी। तो हमारा यही है कि आने वाले 2 से 3 दिन जहां पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में एक्टिविटी रहेगा, जिसके लिए हमने जम्मू कश्मीर, हिमाचल उत्फॉर्म में है, स्ट्रेंथन में है, और उसके साथ ही जहाँ जैसे WD बना हुआ है, जो हवाएं भी अरेबियन सी से इस एरिया में आ रही है, जिसके कारण आप थोड़ा ह्यूमिडिटी भी बढ़ जाती है और विच इज़ फेवरेबल फॉर रेनफॉल।

0: स्ट्रेंथन में है और उसके साथ ही जहाँ जैसे WD बना हुआ है जो हवाईली वेव अरेबियन सी से इस एरिया में आ रही है जिसके कारण आप थोड़ा ह्यूमिडिटी भी बढ़ जाती है और विच इज़ फेवरेबल फॉर रेनफॉल एक्टिविटी। तो हमारा यही है कि आने वाले 2 से 3 दिन जहाँ पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में एक्टिविटी रहेगा, जिसके लिए हमने जम्मू कश्मीर, हिमाचल उत्फॉर्म में है, स्ट्रेंथन में है और उसके साथ ही जहाँ जैसे WD बना हुआ है जो हवाईली वेव अरेबियन सी से इस एरिया में आ रही है जिसके कारण आप थोड़ा ह्यूमिडिटी भी बढ़ जाती है और विच इज़ फेवरेबल फॉर रेनफॉल एक्टिविटी। तो हमारा यही है कि आने वाले 2 से 3 दिन जहाँ पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में एक्टिविटी रहेगा, जिसके लिए हमने जम्मू कश्मीर, हिमाचल
1: की ओर बढ़ते हुए पूरे देश में पहुँचती हैं और अपने साथ मानसून लेकर जाती हैं। हालांकि इस प्रक्रिया में 1 से 1.5 महीना तक लग जाता है, अक्सर लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि मॉनसून की शुरुआत हमेशा केरल से ही क्यों होती है। इसका मुख्य कारण केरल की भौगोलिक स्थिति है। केरल दक्षिण पश्चिमी तट पर स्थित है। जब भूमध्य रेखा से उठने वाली मॉनसूनी हवाएं भारत की तरफ बढ़ती हैं, तो सबसे पहले वे केरल के तट से ही टकराती हैं। यही वजह है कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून का पहला और सबसे जोरदार प्रभाव केरल पर ही पड़ता है।
2: एक बार मैं मैप आपको दिखाती हूँ। हर किसी को इंतजार था, 26 मई की जो है तारीख पहले दी गई थी कि केरल में मॉनसून जो है 26 मई को दस्तक देगा, लेकिन देरी हुई। फिर 1 जून की तारीख आई, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको कर्नाटका के हिस्से हुए, कोस्टल कर्नाटका जो हो गया, तमिलनाडु का कुछ हिस्सा जो है कवर करते हुए बे ऑफ बंगाल, और इस साइड पर जो है आपको दिखेगा ये जो ब्लू लाइन आप जो देख रहे हैं, ये इस वक्त हमारा ऑनसेट है। ये जो डेट आज की जो है हिट कर गई है क्योंकि मॉनसूनी बारिश है, उसकी शुरुआत हो चुकी है।
1: केरलम में एंट्री के तुरंत बाद मॉनसूनी हवाएं दक्षिण के बाकी राज्यों और पूर्वोत्तर भारत की तरफ तेजी से बढ़ती है। मौसम विभाग के मुताबिक 5 जून से 10 जून के बीच तमिलनाडु, कर्नाटक और गोवा के ज्यादातर हिस्सों में मॉनसूनी बारिश शुरू हो जाएगी। 5 जून से 8 जून के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों मसलन असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में मॉनसून सक्रिय रूप से आगे बढ़ेगा। 8 जून से 15 जून के बीच मॉनसून मुंबई और कोंकण क्षेत्र समेत महाराष्ट्र के ज्यादातर हिस्सों में पहुंच जाएगा। 10 जून से 15 जून के बीच छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में मॉनसून के आने की संभावना है। 18 जून से 25 जून के बीच मॉनसून गुजरात और मध्य प्रदेश में एंट्री करेगा। 15 जून से 20 जून के बीच मॉनसून बिहार और उत्तर प्रदेश पहुंच सकता है।
0: एनीवे टेम्परेचर अभी भी सामान्य के पास ही है, ज़्यादा नहीं है, पहले सामान्य से काफ़ी कम थे। अब स्लोली क्या है कि टेम्परेचर सामान्य के पास है। अब इस डिस्टर्बेंस के प्रभाव से टेम्परेचर थोड़ा 2 से 3 डिग्री गिरने का अनुमान है, उसके बाद फिर टेम्परेचर थोड़ा बढ़ेगा।
1: मॉनसून की 4 दिन की देरी का असर अब पूरे उत्तर भारत के मॉनसून कैलेंडर पर पड़ने वाला है। आमतौर पर दिल्ली NCR और उत्तर प्रदेश में मॉनसून 25 जून से 30 जून के बीच पहुंच जाता है, लेकिन इस बार केरलम में हुई देरी के कारण दिल्ली और यूपी में मॉनसून की एंट्री जुलाई के पहले हफ्ते यानी 3 से 5 जुलाई के आसपास होने की संभावना बन रही है।
3: भारत में मॉनसून दस्तखत दे चुका है और केरल के साथ साथ अब ये मॉनसून तमिलनाडु को भी टच कर चुका है। ऐसे में राजस्थान में भी प्री मॉनसून एक्टिविटीज अभी देखी जा रही है। पिछले 24 घंटों में राजस्थान में कई जगह पे हल्की से मध्यम, वहीं कई जगहों पे तेज वर्षा दर्ज की गई है और यहाँ पे बीकानेर के डूंगरगंज में सबसे ज़्यादा बारिश अभी देखी गई है जो कि 75 mm है। टेम्परेचर्स की अभी मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर इस वक्त श्रीगंगानगर में हो रहा है जो कि 44.1 डिग्री सेल्सियस है। वहीं मिनिमम टेम्परेचर अजमेर में है जो कि 19 डिग्री सेल्सियस है। यही जो बारिश का सिलसिला है, आंधी का सिलसिला है, मौसम विभाग का कहना है कि अगले दो से तीन दिन भी जारी रहने वाला है और ऐसे में कई जगह पे बारिश होगी, कई जगह पे आंधी दर्ज की जाएगी, पर टेम्परेचर्स में इस वक्त राहत देखने को मिलेगी क्योंकि ये जो प्री मॉनसून एक्टिविटीज हो रही है ये कुछ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के एक्टिव होने की वजह से हो रही है। हालांकि 2 से 3 दिन बाद यानी कि 8 तारीख के बाद से टेम्परेचर में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी होगी, वापस से गर्म हवाएं चलने लगेगी। वहीं बॉर्डर एरियाज की अगर मैं बात करूँ तो राजस्थान के बॉर्डर एरियाज में ये टेम्परेचर 44 से 46 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है और

0: ऐसे में उन एरियाज में हीट वेव भी दर्ज की जा सकती है।
1: हालांकि मानसूनी हवाओं की आगे बढ़ने की गति पर निर्भर करेगा कि उत्तर भारत के लोगों को इस भयंकर उमस और गर्मी से कब तक पूरी तरह से राहत मिल पाएगी। मतलब ये कि अगर हालात ठीक रहे तो जुलाई की शुरुआत तक पूरे देश में मानसून की बारिश होनी शुरू हो जाएगी। जयपुर से रिदम जैन के साथ, दिल्ली से मनीषा लड्डा के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे।
2: भारतीय मूल के डॉक्टर ने की सबसे लंबी दूरी से रोबोटिक सर्जरी। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेस वे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
3: अपने भारत दौरे के दौरान वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज गुजरात के जामनगर पहुंची। जामनगर एयरपोर्ट पर औपचारिक स्वागत के बाद उन्होंने जामनगर स्थित तेल रिफाइनरी का दौरा भी किया। डेल्सी रोड्रिगेज 3 से 7 जून तक भारत के अपने आधिकारिक दौरे पर हैं। गुरुवार को दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की थी। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति की इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच कच्चे तेल, खनन और फार्मास्यूटिकल क्षेत्रों में रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना है। वेनेजुएला भारत के लिए क्रूड ऑयल की सप्लाई करने वाले प्रमुख देशों में शामिल है। विष्णु प्रकाशाचार्य के स्थापित किए गए 1000 साल पुराने अयोध्या के आचार्य मंदिर में मिली प्राचीन पांडुलिपि। लगभग 5000 की संख्या में ये दुर्लभ पांडुलिपियां फारसी, अरबी, उर्दू और कुछ रोमन लिपि में लिखी गई हैं। फिलहाल इस बहुमूल्य ऐतिहासिक धरोहर के संरक्षण और इसके पाठों के अनुवाद की तैयारी शुरू कर दी गई है, जिससे इतिहास के कई नए पन्ने खुलकर सामने आ सकते हैं। भारतीय मूल के हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव ने दुनिया की सबसे लंबी दूरी की रोबोटिक कार्डियक टेली सर्जरी की है। दावा किया जा रहा है कि ये विश्व रिकॉर्ड है। ये सर्जरी भारत और दक्षिण अमेरिकी देश गुयाना के बीच करीब 20,000 किलोमीटर की दूरी पर सफलतापूर्वक संपन्न की गई। खास बात यह है कि इस उपलब्धि में इस्तेमाल की गई तकनीक पूरी तरह मेड इन इंडिया है। गुयाना का 65 वर्षीय मरीज भारत के इंदौर में था, जबकि डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव गुयाना में थे। यह ऐतिहासिक सर्जरी गुयाना के जॉर्ज टाउन पब्लिक हॉस्पिटल और मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित IRCAD इंडिया के बीच लगभग 20,000 किलोमीटर की फाइबर नेटवर्क दूरी पर की गई। करीब 4 घंटे 50 मिनट तक चली इस जटिल प्रक्रिया में डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव ने दूर बैठकर रोबोटिक सिस्टम के जरिए हार्ट की सर्जरी की।
2: और अब बात पर्यावरण सुरक्षा के संकल्प की। हर साल 5 जून को मनाया जाने वाला विश्व पर्यावरण दिवस हमें याद दिलाता है कि यह धरती हमारा इकलौता घर है और इसकी हरियाली को बचाना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। देश और दुनिया में जब लगातार कंक्रीट के जंगल बढ़ते जा रहे हैं और मौसम का मिजाज बदल रहा है, ऐसे में प्रकृति के प्रति हर छोटी कोशिश आने वाले कल को बेहतर बनाने की दिशा में बड़ा कदम बन जाती है।

0: विश्व पर्यावरण दिवस पर हरियाली और पर्यावरण बचाने के संकल्प लेने का दिन है। सरकारी मुहिम के अलावा कुछ जागरूक लोग निजी स्तर पर हरियाली और पर्यावरण को लेकर काफी संजीदा हैं। शहर शहर वृक्षारोपण कार्यक्रम हो रहे हैं। नेता से लेकर अभिनेता और आम से लेकर खास तक सभी विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर पेड़ लगा रहे हैं। लेकिन इस अभियान की सबसे खूबसूरत तस्वीरें उन जगहों से आई हैं जिन्होंने हरियाली को अपना जीवन का मिशन बना दिया है। झारखंड के रांची में कल्पतरु मैन के नाम से पहचान बनाने वाले निखिल मेहुल अब तक 3000 से अधिक कल्प वृक्ष लगा चुके हैं। उनका सपना है कि रांची को कल्पतरु सिटी के तौर पर नई पहचान मिले। उनके लगाए पौधे आज हजारों लोगों को स्वच्छ हवा और हरियाली का उपहार दे रहे हैं।
1: झारखंड में 4 कल्प वृक्ष हैं और पूरे भारत में वयस्क जो बड़े पेड़ है वो 9 है। तो हमारे मन में ये प्रश्न आया कि आखिर ये दुर्लभ की स्थिति इतनी कम संख्या में क्यों है। तो हमने इस पर काफी रिसर्च किया, तत्पश्चात हमने सोचा कि इस पर कार्य करने की आवश्यकता है। तो फिर हम रांची के जो डोरंडा के पास में 3 कल्प वृक्ष हैं वहां से हमने दाने लाए, तत्पश्चात उनको तैयार किया और इनके प्रसार और इनके संरक्षण पे लगातार हम 2019 से कार्यरत हैं।
0: निखिल के मुताबिक कल्पतरु दीर्घायु और दुर्लभ वृक्षों में से एक है जो हजारों वर्षों तक जीवित रह सकता है। ये अंडरग्राउंड वाटर को बढ़ाने और बड़ी मात्रा में जल संरक्षण करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जलवायु परिवर्तन और बढ़ते पर्यावरण संकट के दौर में ऐसे वृक्षों का संरक्षण करना बेहद जरूरी है।
1: 2019 के बाद से हमने इनको 3 स्तर पे पौधे तैयार किए थे। तो सर्वप्रथम हमने 100 आसपास दाने डाले थे लेकिन उनमें इनकी जो पौधे की जर्मिनेशन थी बहुत ही कम थी। तो वहां से लगभग 46 पौधे अंकुरित हुए थे, फिर वे बड़े हुए और मैंने उसे नेत्रहाट आवास विद्यालय लातेहार, राजभवन जो अभी लोक भवन हो गया है वहां पे, फिर विधानसभा भवन और हमारे भारत के अन्य राज्यों में हरियाणा, उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड विश्वविद्यालय और छत्तीसगढ़ के गुरु घासीदास विश्वविद्यालय इत्यादि कई ऐसे भारत के क्षेत्रों में भी हमने इनका पौधा रोपण किया।
0: हिंदू पौराणिक मान्यताओं में कल्प वृक्ष को समुद्र मंथन से प्राप्त 14 रत्नों में से एक माना गया है। इसे दिव्य और मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला वृक्ष भी कहा जाता है। निखिल की ये पहल न केवल पर्यावरण संरक्षण की दिशा में प्रेरणादायक है बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए हरित और सुरक्षित भविष्य का संदेश भी देती है। राजस्थान के अलवर में भी एक ऐसी मिसाल मौजूद है। सुरेंद्र जैन उर्फ बंटी को लोग ट्री मैन कहकर पुकारते हैं। पिछले 46 वर्षों से वे पर्यावरण संरक्षण की ऐसी मिसाल पेश कर रहे हैं जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। उन्होंने सिर्फ पौधे नहीं लगाए बल्कि उन्हें बच्चों की तरह पालकर विशाल वृक्ष बनाया। दावा है कि उन्होंने अब तक 1,10,000 से अधिक पौधे लगाए हैं। मध्य प्रदेश के आगर मालवा के एक पुलिस हवलदार ने भी पर्यावरण के लिए बड़ा त्याग किया। सरकारी नौकरी की व्यस्तताओं के बीच उन्होंने पिछले 8 वर्षों में 1,000 से अधिक पौधे लगाए। कभी नन्हे पौधे रहे ये वृक्ष अब विशाल पेड़ बन चुके हैं और आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ वातावरण देने का काम कर रहे हैं। हवलदार बंटी के इस जुनून को देख कर हर कोई अचरज में पड़ जाता है। उनके इसी जुनून को देख कर अब उन्हें लोगों का साथ मिलने लगा है।
2: मेरा ही एक सुबह शाम जाना, पौधों को पानी पिलाना अधिक से अधिक, और अगर किसी दिन मान लो मैं जा नहीं पाता तो मुझे ऐसा लगता है कि आज एक काम छूट गया और अंदर से अच्छा नहीं लगता। इसलिए मेरा ये लक्ष्य है कि अधिक से अधिक पौधे लगाएं और उनको पानी पिलाकर बड़ा करें। और हमने जन्मदिन के अवसर पर लोगों को बुलाया है, वो भी पौधा रोपण करते हैं। किसी की शादी की सालगिरह है तो वो भी आते हैं, पौधे लगाते हैं और उनको देख रेख भी हम कर रहे हैं। और ऐसा ही है कि अधिक से अधिक पौधे लगाएं और बड़े हुए।
0: दरअसल हवलदार बंटी ने कुछ वर्ष पहले कुछ पौधे लगाए और उनकी देखभाल करने लगे, मगर उनका कारवां तब बढ़ा जब सोशल मीडिया का सहारा लेकर उन्होंने ग्रीन आर्मी नाम से ग्रुप बनाया और इस ग्रुप में जिले के आला अधिकारी, गणमान्य नागरिक, व्यापारी और आम लोगों को जोड़ने लगे। यही नहीं, उन्होंने लोगों के जन्मदिन, शादी की सालगिरह पर लोगों को पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित किया और आज हर कोई आगे आकर उनकी इस मुहिम को आगे बढ़ा रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश के झांसी में भी लोगों ने पर्यावरण संरक्षण को जन भागीदारी का रूप दिया झांसी रानी फाउंडेशन और जेकेटी नेचर केयर ने जन जन प्लास्टिक संग्रह अभियान में लोगों ने उत्साह के साथ बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लोगों ने अपने घरों और आसपास के क्षेत्रों से प्लास्टिक इकट्ठी कर न केवल स्वच्छता का संदेश दिया बल्कि पर्यावरण के प्रति अपना संकल्प दोहराया।
3: इस अभियान के अंतर्गत हमने लोगों से अपील की, आइए प्लास्टिक को कचरा बनने से रोकें। आमतौर पर हम लोग करते क्या है, घरों पर सूखे कचरे को और गीले कचरे को मिलाकर दे देते हैं जिसका पृथक्कीकरण नहीं हो पाता है और वो कचरा लैंडफिल साइट पे चला जाता है जो हमारी पृथ्वी को नुकसान पहुंचाता है और हमारे भूजल स्तर को गिराने का काम करता है। उसका रोकने का एकमात्र उपाय है, प्राकृतिक जल स्रोतों को बचाने का एकमात्र उपाय है, पृथ्वी को संरक्षित करने का एकमात्र उपाय है कि हम सूखे कचरे को अलग करें, गीले कचरे को अलग करें।
0: जब दुनिया जलवायु परिवर्तन और बढ़ते प्रदूषण की चुनौतियों से जूझ रही है तो ऐसे में पर्यावरण के प्रहरी उम्मीद की नई इबारत लिख रहे हैं जिनका संदेश साफ है कि अगर हर व्यक्ति साल में सिर्फ एक पौधा भी लगाए और उसकी देखभाल करे तो धरती फिर से स्वर्ग बन सकती है। हर साल 5 जून को मनाया जाने वाला विश्व पर्यावरण दिवस हमें याद दिलाता है कि ये धरती हमारा इकलौता घर है और इसकी हरियाली को बचाना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। साल 2026 में जब कंक्रीट के जंगल लगातार बढ़ते जा रहे हैं और मौसम का मिजाज बदल रहा है तब सिर्फ एक दिन का उत्सव मनाना काफी नहीं है। अगर पर्यावरण संतुलित रहेगा तो पृथ्वी पर जीवन सुरक्षित रहेगा। अगर धरती को बचाना है और इसे हरा भरा देखना है तो इस बार हमें अपनी सोच और आदतों को बदलने का एक सच्चा संकल्प लेना होगा। अलवर से हिमांशु मिश्रा और रांची से आकाश कुमार के साथ आगर मालवा से प्रमोद कारपेंटर, गुड न्यूज टुडे।
4: न्यूज पेपर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपके लिए चलते हैं धन बाजार।
5: कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन भारतीय शेयर बाजार में खास गिरावट देखने को मिली। शुक्रवार को 30 शेयर वाला बीएसई सेंसेक्स 116 अंक गिरकर 74,243 पर बंद हुआ। वहीं 50 शेयर्स वाला एनएसई निफ्टी 49 अंकों की गिरावट के साथ 23,366 पर बंद हुआ। ग्लोबल मार्केट में वीक ट्रेंड्स के बीच शुक्रवार को गोल्ड की कीमतों में गिरावट देखने को मिली। ऑल इंडिया सराफा एसोसिएशन के मुताबिक 99.9% शुद्धता वाले 10 ग्राम सोने का भाव 1,59,900 रुपए पर पहुंच गया है। वहीं चांदी की कीमतों में भी गिरावट दर्ज की गई है। 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 5,000 रुपए लुढ़क कर 2,60,700 रुपए पहुंच गई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की पॉलिसी की घोषणा के बाद अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत में बड़ी मजबूती देखने को मिली। शुक्रवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 81 पैसे मजबूत होकर 94.93 के स्तर पर बंद हुआ।
4: न्यूज पथ में हम खबरों के सफर को आगे बढ़ाएं, उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
7: ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
4: गुजरात और दमन दौरे पर प्रधानमंत्री ने दिया विकास का तोहफा। हजीरा में लासन एंड टोबो की इंडस्ट्रियल फैसिलिटी का लिया जायजा। सूरत को 200 बेड वाले अस्पताल की सौगात। चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह। अब तक 30 लाख से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन। केदारनाथ पहुंचने वालों का आंकड़ा 11 लाख के पार। देश दुनिया में मनाया जा रहा पर्यावरण दिवस। सूरत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगाया एक पेड़ मां के नाम। पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण की अपील। चलिए न्यूज पथ पर खबरों के सफर को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन उससे पहले हमें रुकना होगा यहाँ, यानी कि वायरल चौक पर। यहाँ देख लेते हैं उन वीडियोस को जो कि सोशल मीडिया में धमाल मचाए हुए हैं। इनमें से कुछ वीडियोस ऐसे हैं जो आपको इमोशनल कर देंगे और कुछ आपको हंसने पर मजबूर।
5: बिहार के गोपालगंज में एक युवक को पुल के दरार का वीडियो बनाना भारी पड़ गया। जादूपुर मंगलपुर पुल में आई दरार को दिखाने के लिए वो ईंट की मदद से गैप नापने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान उसका मोबाइल फोन हाथ से फिसल कर दरार के बीच नीचे जा गिरा। पूरी घटना कैमरे में रिकॉर्ड हो गई और अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। लोग इस वीडियो पर खूब हंस रहे हैं। ताजमहल एक बार फिर चर्चा में है, लेकिन इस बार वजह कोई ऐतिहासिक पहलू नहीं बल्कि बंदरों की मस्ती है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में कई बंदर ताजमहल परिसर के एक वाटर टैंक में नहाते और उछल कूद करते नजर आ रहे हैं। कभी वो पानी में छलांग लगाते दिखते हैं तो कभी तैरते और खेलते दिखाई देते हैं। इस अनोखे नजारे को देख पर्यटक भी हैरान हैं और अपने मोबाइल कैमरों में इस पल को कैद करने लगे। सोशल मीडिया पर एक भावुक वीडियो लोगों का दिल जीत रहा है। वीडियो में एक प्यासा बंदर पानी की बोतल तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन डर की वजह से पीछे हट जाता है। तभी एक महिला आगे आती है और बोतल खोलकर उसे पानी पिलाने लगती है। बंदर भी आराम से पानी पीता नजर आता है। इंसान और जानवर के बीच ममता और संवेदनशीलता का ये नजारा लोगों को खूब पसंद आ रहा है। एक छोटे से बच्चे का जादू दिखाने वाला वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। वीडियो में मासूम बच्चा बड़े आत्मविश्वास के साथ लोगों को अपने जादुई करतब दिखाता नजर आता है। वो मंत्र पढ़ने का अभिनय करता है और फिर खाली हाथ से सिक्के निकालकर सबको चौंका देता है। बच्चे की मासूमियत, आत्मविश्वास और प्रस्तुति का अंदाज लोगों को पसंद आ रहा है। एक मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर खूब हंसा रहा है। वीडियो में एक तोता आराम से सो रही बिल्ली के पास पहुंचता है, उसे बार बार जगाने की कोशिश करता है। कभी वो उसके करीब जाकर आवाज करता है तो कभी हल्के से छूकर प्रतिक्रिया लेने की कोशिश करता है। बिल्ली गहरी नींद में होने के बावजूद तोते की शरारतों से परेशान नजर आती है। दोनों की ये प्यारी नोकझोंक इंटरनेट यूजर्स का दिल जीत रही है।
4: न्यूज पर के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी हाउसिंग सोसाइटी में रहने वालों की। महानगरों में बनी हाउसिंग सोसाइटी में रहने वालों के लिए नियम कायदे होते हैं जो कि अक्सर चर्चा का विषय बन जाते हैं। बेंगलुरु में रहने वाले एक व्यक्ति ने अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों पर बूमर रूल्स थोपने का आरोप लगाया, जिस पर ऑनलाइन डिबेट हो रही है। सोशल मीडिया में बूमर का अर्थ ऐसे लोगों से होता है जो कि बुजुर्ग या फिर पुरानी सोच वाले हैं और जो बदलाव को आसानी से स्वीकार नहीं करते, या फिर युवाओं

0: आईटी में अव्यवहारिक नियम या प्रतिबंध लगाए जाते हैं जिससे लोग परेशान होते हैं। शख्स ने एक्सपोस्ट में अपनी बात को समझाते हुए कहा है कि अपार्टमेंट मैनेजमेंट कमेटी में ज्यादातर रिटायर्ड लोग बैठे हैं जो निवासियों के लिए इम्प्रैक्टिकल रूल्स बनाते हैं। उसने उदाहरण देते हुए कहा कि हाउसिंग सोसाइटी में घास पर बैठने से मना करना, बच्चों को खुली जगह में खेलने से रोकना और स्विमिंग पूल में बॉल ना ले जाने देना जैसे नियम बनाए जाते हैं। बेंगलुरु निवासी ने बताया कि युवा लोग कामकाज और परिवार में व्यस्त रहते हैं, इसलिए मैनेजमेंट कमेटी में शामिल नहीं हो पाते। शख्स का अनुमान है कि हाउसिंग सोसाइटी में प्रगतिशील नेतृत्व आने में अभी एक दशक लग सकता है। शख्स के वायरल पोस्ट पर कई लोगों ने इसी तरह की शिकायतें साझा की, जैसे साइकिल चलाने पर रोक, स्विमिंग के समय तय करना या बगीचे में जूते पहनने पर प्रतिबंध। कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने आवारा कुत्तों को परिसर में रखने से जुड़ी सुरक्षा चिंताएं भी उठाई। वहीं कुछ लोगों ने कहा कि उन्हें ऐसे कठोर नियमों का सामना कभी नहीं करना पड़ा। फिलहाल बेंगलुरु के हाईराइज अपार्टमेंट में रहने वाले इस शख्स की पोस्ट वायरल है। हाउसिंग सोसाइटी में नियमों को लेकर हमने गुरुग्राम में लोगों से बात की और उनकी राय जानी।
1: पार्कों को लेकर जिस तरह के फरमान होते हैं कि बच्चे पार्क में नहीं खेलेंगे, स्विमिंग पूल को लेकर फरमान होते हैं कि बच्चे उसके अंदर जो बॉल्स होती हैं वो लेकर नहीं उतरेंगे। इसके साथ साथ गुरुग्राम की कुछ ऐसी सोसाइटी भी थी उपल साउथ एंड सोना रोड के ऊपर, जो बकायेदार थे, जब उन्होंने बकाया नहीं दिया आरडब्ल्यूएस को, तो आरडब्ल्यूएस ने फरमान जारी किया था कि इनके जितने भी डिलीवरी बॉय आएंगे उनको सिक्योरिटी चेक पर ही रोका जाएगा। क्या कुछ इसके पीछे की सच्चाई है, आपको क्या कुछ कहेंगे?
2: जी नीरज जी, मैं ऐसा हमारी सोसाइटी में तो ऐसा कोई रूल है नहीं, लेकिन जो सोसाइटीज की बात है, अलग अलग सोसाइटीज जो हैं उसमें ऐसी ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं और ऐसी ऐसी घटनाएं जो हैं वो मनमानी होती हैं। ऐसा कोई कानून तो है नहीं, लेकिन हम जनरल बात के लिए जहाँ ये होता है कि अभी पार्क में बच्चे नहीं खेलेंगे ताकि घास खराब ना हो, फुटबॉल नहीं खेलेंगे, और जिस तरह स्विमिंग पूल की बात है, स्विमिंग पूल की गाइडलाइंस हैं, तो अगर अंडर गाइडलाइंस वो काम कर रहे हैं तो हमें कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर कोई गाइडलाइन का वायलेशन करता है तो वो डायरेक्शन दे सकती है सोसाइटीज। लेकिन जहां तक आप ऊपरलैंड की बात कर रहे हो, अगर बकायेदार कोई नहीं दे रहा अपनी मेंटेनेंस, तो उसके गेस्ट को या उसकी डिलीवरी को रोकना ये तो बिल्कुल इलीगल काम है। तो ऐसा कोई काम ना तो कानून में, आप उसके तरीके हैं, आप उसको लीगल नोटिस भेजो, आप उसके डीआर को कंप्लेंट करो अगर कोई मेंटेनेंस पे नहीं करा, तो उसके लिए आपके पास लीगल रेमेडीज हैं। लेकिन ऐसे तुगल की फरमान की भी हम एंट्री नहीं करने देंगे, हम उसके घर में गेस्टों को नहीं जाने देंगे, डिलीवरी बॉय को नहीं जाने देंगे, ये सब बिल्कुल गैर कानूनी है।
1: अच्छा, आपके सोसाइटी में क्या कुछ हालात हैं, क्या कुछ ऐसे डिसीजन आपकी आरडब्ल्यूएस में भी लिए गए हैं पिछले कुछ दिनों में जिसकी वजह से आपको परेशानी का सामना करना पड़ा हो?
2: नहीं, हमारी आरडब्ल्यूएस में ऐसे खास तो नहीं, लेकिन उन्होंने थोड़े दिन पहले क्या किया था कि गाड़ियों को क्लैंप लगाने शुरू कर दिए थे और एक एक हजार रूपए 500-500 रूपए उनसे हटना शुरू कर दिया था। तो हमने उसकी शिकायत डीसी साहब को की और डीसी साहब ने तुरंत उसका संज्ञान लिया और इनको आदेश दिया कि आप कोई भी गैर कानूनी, क्योंकि आप वसूली है तो अवैध वसूली है, आप किसी गाड़ी को तो करके या गाड़ी पर क्लैंप लगा के आप पैसे नहीं ले सकते। तो हमारी सोसाइटीज में तो ऐसा कोई बड़ा मुद्दा तो है नहीं, बट ये छोटी छोटी चीजें हैं आरडब्ल्यू की अपनी मनमानी, क्योंकि आरडब्ल्यू वाले अपने आप को बहुत बड़ी ताकत समझने लग जाते हैं, तो ये ऐसी थोड़ी बहुत मनमानी तो हर सोसाइटी में चलती है।
3: आ रही है प्रॉब्लम इसके साथ सर कि जो ये नई युवा पीढ़ी है, बुजुर्ग जो है, इसमें फर्क है हमारा कि हमारी जो सोच है वो अलग है, इनकी नई सोच अलग है। तो जो हमारे जो बच्चे हैं ये पढ़े लिखे मल्टीनेशनल एमएनसी में काम कर रहे हैं, तो इनको यहाँ खर्चे ज्यादा दिख रहे हैं, हमें खर्चे कम दिखते, हम ज्यादा हमें दिखते हैं, पर वो कहते कोई बात नहीं, इसमें करने दो, इन्हें खाने दो।
1: अच्छा सर, ज्यादातर आरडब्ल्यूएस के ग्रुप्स बने हुए हैं, उनके ऊपर तमाम तरह की समस्याएं भी सुनने को मिलते हैं, तो किस किस तरह की समस्याएं इन ग्रुप्स के ऊपर आप फील फेस करते हैं और क्या क्या लगता है कि क्या कुछ बदलाव होने चाहिए?
3: देखो, कई चीजें ऐसी है, जैसे हर सोसाइटी में कोई ना कोई ग्रुप होता है और ग्रुप होने के बाद क्या है कि आरडब्ल्यू नाजायज तरीके से प्रेशर डालती है, किसी को गाड़ी की तरह से या मतलब कोई गैस रोक देना या और भी कई ऐसी समस्याएं हैं, स्विमिंग पूल में नहीं जाने देना, जिम में नहीं जाओगे, तो ऐसी कई ऐसी है जो आरडब्ल्यू अनऑथराइज तरीके से परेशान करती है।
0: फिल्म स्टार ऋतिक रोशन नए किरदार को निभाने के लिए तैयार हैं, बेकरार हैं। इसके साथ ही फिल्म जगत से जुड़ी कुछ और इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए आइए सीधे आपको लिए चलें फिल्मी मोड पर।
4: काजल अग्रवाल और श्रेयस तलपड़े की बहुप्रतीक्षित फिल्म द इंडिया स्टोरी

0: पुरी का नया टीजर रिलीज हो गया है। फिल्म खेती में जहरीले कीटनाशकों के दुरुपयोग और खाद्य पदार्थों में मिलावट जैसे गंभीर मुद्दों को उजागर करती है। सामाजिक और राष्ट्र विषय पर आधारित इस ड्रामा में तिशा शारदा और मनीष वाधवा भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। चेतन डीके के निर्देशन में बनी ये फिल्म 24 जुलाई 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। फिल्म हिंदी, तमिल और तेलुगु में पैन इंडिया रिलीज होगी। लोकप्रिय एनिमेटेड फ्रेंचाइजी आइस एज एक बार फिर बड़े पर्दे पर लौट रही है। नई फिल्म आइस एज बॉइलिंग पॉइंट का टीजर और पोस्टर जारी कर दिया गया है। इस बार मैनी, डियागो, सिड और उनके साथी ज्वालामुखी, लावा और डायनासोर से भरी खतरनाक दुनिया में रोमांचक सफर पर निकलते दिखाई देंगे। जॉन डॉन्किंग के निर्देशन में बनी फिल्म में पुराने पसंदीदा किरदारों की वापसी भी होगी। वॉल्ट डिज्नी स्टूडियोज की ये फिल्म 5 जनवरी 2027 को अंग्रेजी और हिंदी में सिनेमाघरों में रिलीज होगी। ऋतिक रोशन ने हाल ही में खुलासा किया है कि वो अब पारंपरिक रोमांटिक या आदर्शवादी नायक की छवि से बाहर निकलकर कुछ नया करना चाहते हैं। अभिनेता ने कहा कि उन्हें फिल्म लक बाय चांस में निभाया गया जफर का किरदार आज भी बेहद पसंद है और वो उसी तरह की भूमिका दोबारा करना चाहेंगे। ऋतिक का मानना है कि निर्देशक अब भी उन्हें केवल अच्छे इंसान वाले किरदारों में देखते हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी ये इच्छा शेयर की है। वरुण धवन की नई फिल्म है जवानी तो इश्क होना है दर्शकों के बीच पहुंच गई है। फिल्म में कॉमेडी, रोमांस और फैमिली ड्रामा का मिश्रण देखने को मिलता है। कई दर्शकों को वरुण की ऊर्जा में सलमान खान और गोविंदा की झलक महसूस हो रही है। पूजा हेगड़े और मृणाल ठाकुर ने फिल्म में ग्लैमर का तड़का लगाया है। कहानी में प्रेगनेंसी ड्रामा भी शामिल है जो कई मजेदार स्थितियां पैदा करता है। डेविड धवन के निर्देशन में बनी ये फिल्म पुराने बॉलीवुड मनोरंजन की याद ताज़ा करती है।
1: और आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी देश या फिर शहर के विकास के लिए बेहद जरूरी है। इस बात का ध्यान रखते हुए यूपी में एक्सप्रेसवे का जाल बिछाया गया है और ये राज्य उसका हब बन गया है। इससे कई फायदे देखने को मिल रहे हैं। आवाजाही का समय तो कम हुआ ही है, कनेक्टिविटी भी बेहतर हुई है, साथ ही आर्थिक विकास को भी रफ्तार मिली है।
0: वो सड़कें हैं जिनसे न सिर्फ बड़े शहरों के बीच यात्रा आसान हुई है बल्कि आर्थिक विकास, कृषि और उद्योगों को बढ़ावा मिल रहा है। यूपी देश का सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे वाला राज्य बन गया है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे के बुनियादी ढांचे पर काम हुआ है। आसान भाषा में समझें तो उत्तर प्रदेश अब एक्सप्रेसवे प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा इसलिए, चाहे बात आप गंगा एक्सप्रेसवे की कर लें, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की कर लें, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की कर लें या अन्य एक्सप्रेसवे की कर लें, कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी प्रदेश में बढ़ी है।
0: यूपी में एक्सप्रेसवे के एक विशाल नेटवर्क का निर्माण हुआ है जिससे राज्य की कनेक्टिविटी के साथ ही आर्थिक विकास को नई रफ्तार मिली है। गंगा एक्सप्रेसवे की इन तस्वीरों को देखिए, जो मेरठ के बिजौली गांव से शुरू होकर प्रयागराज के जूदापुर दादू गांव तक जाता है। इस एक्सप्रेसवे के जरिए मेरठ से प्रयागराज का सफर जो पहले 10 से 12 घंटे का होता था, वो सफर महज 6 घंटे में पूरा किया जा सकता है। यूपी के इस सबसे बड़े एक्सप्रेसवे की लंबाई 594 किलोमीटर है। 6 लेन का ये एक्सप्रेसवे राज्य के 12 जिलों को जोड़ता है। शाहजहांपुर के पास इस पर 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी बनाई गई है जिससे इमरजेंसी में वायुसेना के विमान भी उतर सकते हैं। अब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की इन तस्वीरों को देखिए, जो पूर्वी यूपी को लखनऊ और दिल्ली जैसे बड़े केंद्र से जोड़ता है। 341 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे राज्य के 9 प्रमुख जिलों लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर से होकर गुजरता है। इस पर सुल्तानपुर के पास हवाई पट्टी भी बनी है।
2: पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हैं और सामने आपको दिखाएंगे वेलकम टू पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लिखा आपको दिखाई पड़ेगा। अब ये जो सड़क है यानी कि हम इस वक्त लखनऊ के छोर पर हैं, लखनऊ से गाजीपुर जाने में पहले घंटों लग जाते थे, लेकिन अब ये जो गाजीपुर आप लगा सामने देख रहे हैं ना 340 किलोमीटर मोटा मोटा आप 4 घंटे में यहाँ से गाजीपुर पहुँच सकते हैं। पहले ये रास्ता मुश्किल भी था, सड़क अच्छी भी नहीं थी और घंटों लग जाते थे गाजीपुर पहुंचने में।
0: गंगा और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे तो एक मिसाल भर है। प्रदेश में बुंदेलखंड जैसे पिछड़े क्षेत्र को मुख्य धारा की कनेक्टिविटी देने के लिए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे भी बनाया गया है, जिससे राज्य के 7 जिलों चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा को फायदा मिल रहा है। इसी तरह 96 किलोमीटर लंबा दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे दोनों जगहों की यात्रा के समय को बहुत कम कर रहा है।
2: जो कॉरिडोर है उसके जरिए बिजनेस लाने की भी बात है। आप अगर इस यहाँ पर तस्वीरों को देखेंगे तो इस तरह के बोर्ड्स आपको दिखाई पड़ेंगे, अलर्ट टुडे अलाइव टुमारो, यानी कि जो लोग तेज गति में गाड़ियां चलाते हैं यहाँ पर एक्सप्रेसवेज पर अक्सर देखा जाता है, उन्हें अलर्ट करती तस्वीर भी आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगी। तो जो कहानी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की है वही कहानी मेरठ एक्सप्रेसवे जो कि बना, यानी कि दिल्ली से मेरठ की दूरी कम हो गई और आपको अगर उत्तराखंड जाना है तो वहां से भी उसको कनेक्ट कर दिया गया।
0: गंगा एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे समेत यूपी में एक्सप्रेसवे का एक मजबूत नेटवर्क तैयार हो चुका है और इस फहरिस्त में और भी एक्सप्रेसवे हैं।
2: कई तोहफे यूपी के लिए हैं। अब अगर आप बात करें गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे की, कानपुर एक्सप्रेसवे की, बताया जा रहा है लखनऊ से कानपुर की दूरी उस एक्सप्रेसवे से मात्र 45 मिनट हो जाएगी। अभी 2 से 2.5 घंटा लखनऊ से कानपुर पहुंचने में लगता है और कई जगहों पर जाम मिलता है। तो फिलहाल प्रधानमंत्री की नजर उत्तर प्रदेश पर है और खासकर फोकस उनका इंफ्रास्ट्रक्चर पर है, और इंफ्रास्ट्रक्चर की आप बात करते हैं तो हाईवेज जिस तरीके से बने हैं वो प्रदेश के लिए फिलहाल वरदान साबित हो रहे हैं। एक्सीडेंट्स ना हो उसको लेकर भी तमाम तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं। गंगा एक्सप्रेसवे उसका जीता जागता उदाहरण है। कैमरामैन गौरव गुप्ता के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ।
1: फीफा फुटबॉल विश्व कप की ओपनिंग सेरेमनी में दिखेगा पॉप स्टार शकीरा का जादू। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश और दुनिया की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
3: चीन के गांसू प्रांत में सिनोलॉजिस्ट यानी चीन का अध्ययन करने वाले विशेषज्ञों का तीसरा विश्व सम्मेलन आयोजित हुआ। कार्यक्रम में करीब 70 देशों से 300 से ज्यादा प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सम्मेलन का मकसद चीनी संस्कृति, इतिहास और परंपराओं को बेहतर तरीके से समझना था। इस दौरान मेहमानों ने प्राचीन भित्ति चित्रों की नकल बनाई, बांस की पट्टियों पर लिखने का अनुभव लिया और पारंपरिक चीनी पोशाक हानफू पहनकर वहां की सांस्कृतिक विरासत को करीब से महसूस किया। मशहूर पॉप स्टार शकीरा फीफा फुटबॉल विश्व कप की ओपनिंग सेरेमनी में अपनी प्रस्तुति देने जा रही हैं। मेक्सिको में होने वाले उद्घाटन समारोह में वो टूर्नामेंट का आधिकारिक गीत डाई डाई गाएंगी। ये कार्यक्रम मेजबान मेक्सिको और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाले पहले मुकाबले से करीब 90 मिनट पहले शुरू होगा। शकीरा के साथ नाइजीरियाई गायक बर्ना बॉय भी मंच साझा करेंगे। आयोजकों को उम्मीद है कि ये रंगारंग प्रस्तुति टूर्नामेंट की शुरुआत को और यादगार बना देगी। ब्राजील में कॉर्पस क्रिस्टी डे के मौके पर आस्था और कला का शानदार नजारा देखने को मिला। रियो डी जेनेरियो में लोगों ने एक रंग बिरंगे कपड़ों के छोटे छोटे टुकड़ों से खूबसूरत कालीन तैयार किए। ये कालीन मशहूर क्राइस्ट द रिडीमर प्रतिमा के आसपास बिछाए गए। खास बात ये रही कि इन्हें रिसाइकिल किए गए कपड़ों से बनाया गया था। वॉलंटियर्स ने कई धार्मिक चित्र भी उकेरे। इस अवसर पर प्रार्थना सभा हुई जहां लोगों ने विश्व शांति और मानवता की खुशहाली की कामना की।
1: ब्रेक प्लाजा पर हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मजा आएगा। ब्रेक के बाद लिए चलेंगे खेल चक्कर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक।
5: Want to hear something funny? Check out Just for Laughs Radio, your destination for all things comedy. Enjoy non-stop stand-up from your favorite comics, plus the ones you haven't discovered yet. Get your daily dose of laughter on Just for Laughs Radio, now on TuneIn.
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी सोच।
1: अंडर 18 एशिया कप में पाकिस्तान को हराकर फाइनल में पहुंचा भारत। जी हाँ, खेल जगत से जुड़ी ऐसी कुछ और इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए आइए सीधे आपको लिए चले खेल चक्कर। अंडर 18 हॉकी एशिया कप 2026 के फाइनल में पहुंची भारतीय मेंस टीम। सेमीफाइनल में भारतीय टीम ने पाकिस्तान को 5-3 से मात देते हुए खिताबी मुकाबले में अपनी जगह बना ली, साथ ही पाकिस्तान को मुकाबले से बाहर कर दिया। अब फाइनल में शनिवार को भारत का सामना जापान से होगा। श्रेयस अय्यर होंगे भारत की T20 टीम के कप्तान, जो सूर्य कुमार यादव की जगह लेंगे। श्रेयस पिछले कुछ साल से भारतीय क्रिकेट के सबसे सफल कप्तानों में से एक बनकर उभरे हैं। IPL में उनका कप्तानी रिकॉर्ड भी उनके पक्ष में रहा है। वो 3 अलग अलग फ्रेंचाइजीज को फाइनल तक पहुंचाने वाले पहले कप्तान हैं। श्रेयस अय्यर होंगे भारत की T20 टीम के कप्तान, जो सूर्य कुमार यादव की जगह लेंगे। श्रेयस पिछले कुछ साल से भारतीय क्रिकेट के सबसे सफल कप्तानों में से एक बनकर उभरे हैं। IPL में उनका कप्तानी रिकॉर्ड भी उनके पक्ष में रहा है। वो 3 अलग अलग फ्रेंचाइजीज को फाइनल तक पहुंचाने वाले पहले कप्तान हैं। श्रेयस की बल्लेबाजी पर उनकी कप्तानी के दबाव का असर नहीं दिखा है, जो उनकी सबसे बड़ी ताकत रही है। मुंबई स्थित BCCI हेडक्वार्टर में शनिवार को अलग अलग सीरीज और टूर्नामेंट के लिए टीम चयन को लेकर बैठक होगी। चयन समिति की बैठक में इंग्लैंड आयरलैंड दौरे और एशियन गेम्स को लेकर कई अहम फैसले होने हैं। T20 की कप्तानी को लेकर तस्वीर पहले ही साफ हो चुकी है। बैठक में अब 15 साल के तूफानी बल्लेबाज की सीनियर टीम इंडिया में मौका दिए जाने की उम्मीद भी जताई जा रही है। वहीं T20 टीम के लिए तिलक वर्मा को उप कप्तानी की जिम्मेदारी सौंपे जाने की चर्चा भी है। आप भी अपने देश में सैर सपाटा करने, अपने गांव और शहर में सैलानियों को इनवाइट करिए, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इस संकल्प में भागीदार बने। बस आपको सिर्फ इतना करना है कि अगर आपके आसपास कोई खूबसूरत जगह है या फिर आपके शहर में आने की खास वजह है, तो उठाएं अपना कैमरा, बनाएं व्लॉग और हमें 7303409922 पर व्हाट्सएप करें, हम उसे GNT पर दिखाएंगे। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ।
2: Whatever you're in the mood for, tune in has the music to match. From today's hits,
3: somebody save me,
2: to timeless favorites,
3: and life is like a song,
2: and new discoveries.
3: So much more than a history. Wake up.
2: It's all streaming in one place. Discover stations that fit your vibe and keep the music going all day long. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
0: अच्छी सुबह।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
1: पर्यावरण दिवस के खास मौके पर अब बात ईशा फाउंडेशन के संस्थापक सदगुरु महाराज की मुहिम मिट्टी बचाओ की। एक पृथ्वी एक परिवार और एक भविष्य के सिद्धांत से प्रेरित होकर पर्यावरण संरक्षण के लिए चलाई जा रही ये मुहिम अब रंग ला रही है। देश ही नहीं दुनिया भर में रासायनिक खेती से मिट्टी की सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है, जिससे कि उपजाऊ जमीन बंजर हो रही है। भारत जैसे देश में जहां आबादी का बड़ा हिस्सा खेती पर निर्भर है और उसमें भी छोटे किसानों की तादाद सबसे ज्यादा है, ऐसे में अगर जमीन उपज देने में नाकाबिल होगी तो ये देश के अन्नदाता के सामने बड़ा संकट होगा। इसको ध्यान में रखते हुए ईशा फाउंडेशन ने कदम आगे बढ़ाए और रासायनिक खेती को जैविक खेती में बदलने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया। बिगड़ती मिट्टी की सेहत के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए किसानों की काउंसलिंग की जाती है और फिर उन्हें जैविक खेती के लिए जरूरी ट्रेनिंग दी जाती है। जैव विविधता और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सदगुरु की ओर से एक और बड़ा अभियान चलाया जा रहा है, कावेरी कॉलिंग। इसमें कावेरी नदी को पुनर्जीवित करने के साथ ही 8,40,00,000 लोगों के जीवन को बदलने की मुहिम है, जिसका लक्ष्य नदी बेसिन में करीब 2.5 अरब पेड़ लगाकर नदी को पुनर्जीवित करना और किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारना है। सदगुरु के इन प्रयासों से आज किसानों को काफी लाभ हो रहा है और उनकी फसलों की गुणवत्ता में सुधार आ रहा है।
7: इसे संभव बना है ये धरती पर हमारा समय।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को।
8: Hey, this is Freddie Coleman from Freddie and Harry. Stay on top of the Major League Baseball season with ESPN Radio. Get daily sports talk covering every big moment from around the league.
9: To right field, and it will leave.
8: From the first pitch of the season to the stretch run.
9: And that's the ball game.
8: We've got you covered with analysis, storylines, and insider perspective. And all season long, catch select live games so you can tune in for key matchups and hear the action unfold. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
4: खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
10: कौन सा रंग अगर आपको नुकसान करे तो दुर्घटनाएं करवा सकता है? कौन सा रंग बीमारी से लड़ने और निकलने में सहायता करता है? कौन सा रंग जीवन में शुभ कार्य करवा देता है? अलग अलग रंगों के प्रयोग से कैसे चमकाएं किस्मत, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन, टीआईटी भोपाल, जेन ज़ीज़ गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स।
4: गुजरात और दमन दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी ने दिया विकास का तोहफा, हजारों मील, हजारों हजीरा में लार्सन एंड ट्यूब्रो की इंडस्ट्रियल फैसिलिटी का लिया जायजा, सूरत को 200 बेड वाले अस्पताल की सौगात। चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह, अब तक 30 लाख से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन, केदारनाथ पहुंचने वालों का आंकड़ा 11 लाख के पार। देश और दुनिया में मनाया जा रहा पर्यावरण दिवस, सूरत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगाया एक पेड़ मां के नाम, पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण की अपील। भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर शानदार खबर, वित्तीय वर्ष 2025-26 में 7.7% रही जीडीपी ग्रोथ, जनवरी से मार्च की तिमाही में 7.8% की दर से हुई वृद्धि। नहीं बदलेगी आपकी लोन की ईएमआई, आरबीआई ने रेपो रेट 5.25% रखी बरकरार, विदेशी निवेशकों को लुभाने के लिए उठाए गए कदम।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो

नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में, जहां हम बात कर रहे हैं अनमोल आस्था की। आस्था जो नजर आई शिरडी साई मंदिर में, जब एक श्रद्धालु ने लाखों रुपए की कीमत वाला स्वर्ण मुकुट बाबा को भेंट किया। सोने के बने कीमती गहने हमेशा से ही साई को भेंट किए जाते रहे हैं। कुछ दिन पहले लखनऊ के एक श्रद्धालु ने करीब 800 ग्राम का मुकुट चढ़ाया था। आज आपको साई के दरबार में आस्था की ऐसी ही भव्य तस्वीरें दिखाएंगे। श्रद्धा की ऐसी ही तस्वीरें महाकाल और बाबा वैद्यनाथ के धाम से भी आई हैं, जहां भक्तों ने दिल खोलकर दान किया है। आपको इन मंदिरों में चढ़ावे की रकम और उसके इस्तेमाल के बारे में विस्तार से बताएंगे। साथ ही बात होगी अयोध्या के राम मंदिर की, जहां रोज हजारों की तादाद में श्रद्धालु आ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद मंदिर परिसर में जरा भी गंदगी नजर नहीं आएगी। आज आपको राम मंदिर में साफ सफाई करने वाली टीम से भी मिलवाएंगे। शुरुआत करते हैं शिरडी के साईं बाबा मंदिर से, जहां भक्त और भक्ति का अनोखा रूप देखने को मिला। पंजाब के एक श्रद्धालु ने अपने पिता के लिए मांगी गई मन्नत पूरी होने पर करीब 35 लाख रुपए का स्वर्ण मुकुट अर्पित किया। इससे पहले हीरो जड़ा ब्रोच और लाखों रुपए का चढ़ावा भी मंदिर को मिला। देश के सबसे बड़े आस्था केंद्रों में शामिल इस मंदिर में हर साल करोड़ों रुपए का दान आता है, जिसे जनसेवा और कल्याणकारी कार्यों में लगाया जाता है। देखिए रिपोर्ट।

0: तन मन धन सब है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। साईं के दरबार में जो मांगा वो मिला, इसीलिए कृतज्ञ भाव से भेंट चढ़ाने चले आए। मन में श्रद्धा, चेहरे पर विनम्रता, हाथों में सोने का मुकुट। यकीनन ये भेंट कीमती है, करीब 35 लाख का है ये स्वर्ण मुकुट। पर रुपयों का क्या है, साई के भक्तों के लिए तो जीवन ही साई है, जो भी अर्पण करे कम ही लगता है।
1: और कीमत कुछ नहीं है, जे तो एक मैं कह नहीं सकता, सारा कुछ ही बाबा जी, मेरा शरीर भी बाबा जी के ही है। मैं चढ़ाने वाला जी पैसे कुछ नहीं है, जे ये चीजें कुछ नहीं है मेरे लिए। बहुत अच्छा फील हुआ, और हमारी फैमिली को ऐसे लगा भी हम अब जैसे लग रहा है शिरडी में, हमारा हम शिरडी में रहने लग गए हैं, ऐसे लगता है हम तो बाबा जी ही रख लें अपने पास, हम तो जहाँ पर ही जहाँ रहने लगे हैं। बाबा सारा कुछ बाबा जी के, हमारा कुछ नहीं है, हम क्या दे सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, ये चीजें बाबा जी से ऊपर कुछ भी नहीं है दुनिया में।
0: शिरडी के साई बाबा मंदिर में ऐसे दृश्य आम है, देश के कोने कोने से भक्त आते हैं, लाखों के गहने जेवर और भेंट चढ़ाते हैं। इसके पीछे गहरा विश्वास है कि जो भी है जैसा भी है सब साईं ने दिया है। ख्वाहिशें पूरी हो गई तो भक्त दरबार में हाथ जोड़ने पहुंच जाते हैं। पंजाब के रहने वाले इस भक्त ने कैंसर से जूझ रहे अपने पिता के लिए और 2 साल की जिंदगी मांगी थी और इनकी मन्नत कबूल हो गई।
1: मेरे फादर को 10 साल पहले कैंसर हुआ था और डॉक्टरों ने गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली में डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था भी उनको अभी 2 महीने का वक्त है उनके पास, और मैंने बाबा जी से यही मांगा था, बाबा जी मेरे को 2 साल मिलने दे दो इनको। और वो बाबा जी ने 2 साल 3 दिन दिए उनको, और दो साल 3 दिन के बाद उनकी वो पूरे हो गए।
0: ऐसी गहरी आस्था जुड़ी है इस दरबार से कि भक्तों को हर भेंट मामूली लगती है। कुछ ऐसे भी हैं जो लाखों का उपहार दे जाते हैं और उनका चेहरा भी सामने नहीं आता। कुछ दिन पहले दिल्ली के एक साई भक्त ने असली हीरों से जड़ा सोने का ब्रोच भेंट किया। मोर पंख के आकार में बने इस ब्रोच की कीमत करीब 15 लाख है। इंद्रधनुषी रंगों से सजा, चमकता हीरे की चमक बिखेरता ये मोर पंखी ब्रोच कमाल का है। देने वाले ने इसे गुरु दक्षिणा के तौर पर भेंट किया है। इसके अलावा 9 लाख रुपए का नगद चढ़ावा भी अर्पित किया है।
2: ओम साई राम। बाबा के भक्त बाबा की बहुत समर्पित भाव से सेवा करते हैं, बाबा को अपना फैमिली का सबसे करीबी मानते हैं, और गुरु दक्षिणा देके बाबा की सेवा करते हैं। आज बाबा के दिल्ली के एक भक्त ने जो है लगभग 80 ग्राम का जो है वो हीरे का जो है डायमंड का जो है ब्राउन जो है बाबा को अर्पण किया है, उसकी कीमत जो है लगभग 15 लाख के नजदीक है। भक्त ने अपना नाम जो है उजागर न करने की संस्थान को विनती की है।
0: ये बेश कीमती ब्रोच साईं बाबा की प्रतिमा पर ओढ़ाई जाने वाली चादर के दुपट्टे को सजाने में काम आएगा, लेकिन ये अकेला नहीं है। करीब 10 लाख की कीमत का एक और ब्रोच ओडिशा के दंपत्ति ने भी भेंट किया।
3: हम लोग 17-18 साल हो गया, हम लोग साल में 2 बार आते हैं शिरडी, और ऐसा है कि मतलब कुछ दिन हो गया कि हम लोग बाबा के लिए कुछ ना कुछ लेके आते हैं और हमारे सामने बाबा उसको स्वीकार करते हैं, पहनते हैं, और हम जब उसको देखते हैं तो बहुत ही सेटिस्फैक्शन आता है हम लोगों को, और बाबा ने हमको बहुत कुछ दिया है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बहुत अच्छा लगता है यहाँ आने से, क्योंकि यहाँ के अथॉरिटीज़ जो हैं वो हमको इतना सपोर्ट करते हैं, लगता है कि ये हमारा खुद का घर है और हमारे अपने ही हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे बार बार आने को मन करता है और हम हमेशा इंतजार करते हैं कि कब हम यहाँ आए।
0: बेशकीमती पत्थरों से लैस सोने के बने इस नक्काशीदार ब्रोच को भी साईं की चादर पर सजाया जाएगा। इससे पहले लखनऊ के एक श्रद्धालु ने साईं बाबा मंदिर को करीब 1 करोड़ रुपए का स्वर्ण मुकुट भेंट किया था। मोर पंख और रत्न जड़ित ये विशाल मुकुट करीब 800 ग्राम का है, और दिलचस्प बात ये है कि साईं भक्त गोपाल गोयल के मन में यूं ही स्वर्ण मुकुट भेंट करने की भावना आई थी और साईं ने इसका इंतजाम कर दिया। जो मांगा वो बाबा ने दिया, इसीलिए बाबा को जो अर्पित किया उसकी कीमत क्यों आंकी जाए। बाबा को सब अर्पित होता है, बाबा सब स्वीकार करते हैं। शिरडी साईं बाबा मंदिर देश के सबसे बड़े आस्था केंद्रों में शामिल है, जहां हर दिन हजारों की तादाद में श्रद्धालु बाबा के दर्शन के लिए पहुंचते हैं और अपनी श्रद्धा के अनुसार भेंट अर्पित करते हैं। ऐसा हर उपहार, ऐसी हर भेंट साईं के लिए भक्तों के असीम आस्था का उदाहरण है। शिरडी साईं मंदिर को भक्तों से सालाना 400 से 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का दान मिलता है। नए साल, गुरु पूर्णिमा या फिर रामनवमी जैसे उत्सवों पर कुछ ही दिनों में करोड़ों का चढ़ावा चढ़ जाता है, जिसमें सोने चांदी के कीमती गहने शामिल होते हैं। शिरडी में नए साल के मौके पर लगभग 23 करोड़ रुपए से ज्यादा का चढ़ावा आया था, जिसमें विदेशी करेंसी, सोना चांदी और हीरा शामिल थे। ये भेंट नकदी में भी होती है और ऑनलाइन भी होती है। देने वाले डेबिट या क्रेडिट कार्ड, चेक या फिर डीडी से भी दान करते हैं। यहाँ तक कि मनी ऑर्डर से करीब 10 करोड़ रुपए मिले और 6 देशों से करीब 17 लाख रुपए दान स्वरूप प्राप्त हुए। यहाँ सोने चांदी और हीरे की भेंट देने वाले भक्तों की भरमार है, लेकिन साईं का दरबार तो सभी के लिए एक जैसा है। जैसी शक्ति वैसी भक्ति, कोई सोना चढ़ाता है कोई सिक्का। अनुमान है कि मंदिर के दान पात्र में रोजाना लगभग 27 से 30 लाख रुपए केवल सिक्कों के रूप में आते हैं। उन्हें गिनने और जमा करने के लिए कई बार अलग व्यवस्था करनी पड़ती है। जो कीमती भेंट साईं बाबा को दी जाती है वो उनकी संपत्ति होती है। जहाँ तक बात है नगद चढ़ावे की, तो उनका इस्तेमाल आम लोगों के लिए अस्पताल और मेडिकल सुविधा में किया जाता है। मुफ्त भोजन, पढ़ाई लिखाई और चैरिटी में भी इसका इस्तेमाल होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भी एक भक्त ने मनोकामना पूरी होने पर चांदी का मुकुट और कर्णफूल अर्पित किए। विधि विधान से भेंट स्वीकार कर भगवान महाकाल का विशेष श्रृंगार किया गया। वहीं देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम में दान पात्रों की गिनती में 26 लाख रुपए निकले। दोनों धामों की तस्वीरें भक्तों की आस्था दिखाती हैं, जो अपनी शक्ति और क्षमता के मुताबिक दिल खोलकर मंदिरों में दान करते हैं।

0: महाकाल के दरबार में छोटा बड़ा कोई नहीं, जिसकी जैसी श्रद्धा वैसा उसका समर्पण। कोई अपनी मन्नत पूरी होने पर मुकुट चढ़ा रहा है, तो कोई मन्नत पूरी होने पर भोग लगाता है, तो कोई दान पात्र में अपनी आस्था अर्पित करता है। उज्जैन से देवघर तक ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं, जहां भक्तों का विश्वास और समर्पण दिखाई दे रहा है। 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल महाकालेश्वर मंदिर में रोजाना लाखों श्रद्धालु भगवान महाकाल के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। भक्त यहां आकर प्रार्थना करते हैं और आशीर्वाद पाते हैं। मनोकामना पूरी होने पर कई लोग अपनी श्रद्धा के अनुसार विशेष भेंट भी अर्पित करते हैं। चंडीगढ़ के रहने वाले शिवम अपने पूरे परिवार के साथ बाबा महाकाल के दरबार पहुंचे, क्योंकि महाकाल ने मुराद जो पूरी कर दी। श्रद्धा स्वरूप उन्होंने बाबा महाकाल को चांदी का मुकुट और कर्ण फूल अर्पित किया। इस भेंट को पूरे विधि विधान और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ स्वीकार किया गया।
1: मैं इधर आया हूँ बाबा जी की कृपा से। मेरा कोई मनोकामना थी वो पूरी हुई। जो मेरे को सौभाग्य मिला, जितने के मैं कर पाया, मैं उतना करने के लिए सक्षम हुआ। मैंने जो चाहता था वो मैंने पूरा किया। मैंने बाबा जी पे जो मनोकामना करी थी इनके मुकुट चढ़ाने की, वो मैंने पूरा चढ़ा दिया। बस मेरी मनोकामना पूरी हुई। जय श्री महाकाल।
0: इसके बाद बाबा महाकाल का इन्हीं रजत आभूषणों से विशेष श्रृंगार भी हुआ। महाकाल की नगरी में मन्नत पूरी होने पर इस तरह की भेंट चढ़ाने की परंपरा लंबे समय से चली आ रही है। श्रद्धालु अपनी क्षमता और भावनाओं के अनुसार मुकुट, छत्र, कुंडल, वस्त्र या दूसरी सामग्रियां अर्पित करते हैं। अनुमान है कि हर साल भक्तों द्वारा करीब 150 करोड़ से अधिक का चढ़ावा दिया जाता है। महाकाल कॉरिडोर के निर्माण के बाद से श्रद्धालुओं की संख्या में भारी वृद्धि भी हुई है, जिसके बाद दान और मंदिर की आय में भी रिकॉर्ड उछाल आया है। नकद ही नहीं, बल्कि हर साल मंदिर को सैकड़ों किलो सोना चांदी प्राप्त होता है। चढ़ावे की धनराशि का उपयोग मंदिर के विकास, श्रद्धालुओं की बेहतर सुविधा और हजारों भक्तों को निशुल्क भोजन में किया जाता है। महाकाल को प्रसन्न करने के लिए भक्त सिर्फ भेंट नहीं देते, बल्कि मंदिर में अन्नकूट और छप्पन भोग की भी विशेष मान्यता है। मान्यता के अनुसार कार्तिक मास की 14 पर अन्नकूट, छप्पन भोग और सावन पूर्णिमा पर 125,000 लड्डुओं का भोग लगाया जाता है। यदि किसी भक्त की मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो वो अपनी ओर से भी 56 भोग अर्पित कर सकता है। सिर्फ महाकाल ही नहीं, बल्कि बाबा बैद्यनाथ के दरबार में भी अटूट श्रद्धा देखने को मिल रही है। देवघर के मंदिर परिसर में स्थापित दान पात्रों को खोला गया और उनमें जमा राशि की गिनती हुई। ये प्रक्रिया जिला प्रशासन और मंदिर प्रशासन की निगरानी में पूरी की गई। मंदिर परिसर में रखे गए 18 दान पात्रों से करीब 26,94,813 रुपए नकद प्राप्त हुए। इसके अलावा 865 नेपाली रुपए और 2 अमेरिकी डॉलर भी मिले। बाबा बैद्यनाथ धाम में देश ही नहीं, बल्कि विदेशों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, इसलिए समय समय पर विदेशी मुद्रा भी दान पात्रों में मिलती रहती है। आने वाले श्रावणी मेले को देखते हुए दान पात्रों को खाली कराया गया है, क्योंकि सावन के दौरान प्रतिदिन लाखों श्रद्धालु मंदिर पहुंचते हैं और बड़ी मात्रा में दान अर्पित करते हैं। इस राशि का उपयोग मेले से जुड़ी व्यवस्थाओं और विकास कार्यों में किया जाता है। उज्जैन में चांदी का मुकुट और कर्ण फूल अर्पित करने वाले श्रद्धालु हों या देवघर के दान पात्रों में उमड़ा विश्वास, दोनों ही तस्वीरें ये बता रही हैं कि बाबा के दरबार में हर भक्त की आस्था का अपना महत्व है। जिसकी जैसी श्रद्धा वैसा ही उसका समर्पण, और यही भाव इन पवित्र धामों की सबसे बड़ी पहचान है। देवघर से शैलेंद्र कुमार मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: शिरडी का साई मंदिर, जिसकी गिनती देश के सबसे ज्यादा चढ़ावे वाले मंदिरों में होती है, लेकिन इस सूची में सबसे आगे आंध्र प्रदेश का वेंकटेश्वर मंदिर है, जिसकी सालाना आय करीब 1500 करोड़ रुपए है। दूसरे नंबर पर केरल का पद्मनाभ स्वामी मंदिर है, जिसकी सालाना आय करीब 800 करोड़ है। अब तीसरे नंबर पर अयोध्या के राम मंदिर को माना जा रहा है। अनुमान है कि मंदिर में सालाना करीब 700 करोड़ का चढ़ावा आ रहा है। राम मंदिर में रोजाना हजारों की तादाद में श्रद्धालु आ रहे हैं, लेकिन खूबी यह है कि इतनी भीड़ के बावजूद पूरा पूरा परिसर चमकता नजर आता है। जो टीम दिन रात सफाई में जुटी है, उनका काम और सेवा भाव देखकर श्रद्धालु गदगद हैं। देखिए रिपोर्ट।

0: रामलला को देखने पूजने की जैसे होड़ है। रोज हजारों की तादाद में राम भक्तों का हुजूम, विशाल राम मंदिर परिसर में जैसे भक्ति का मेला, लेकिन इसके बावजूद कहीं गंदगी का नामो निशान नहीं, कुछ भी बेतरतीब नहीं। कहीं भी चले जाइए, साफ सफाई नजर आती है, हर चीज चमकती दमकती मिलती है, मशीन से बहुत मदद मिलती है, पर जहां जरूरत हो वहां हाथों से भी सफाई होती है। यहां काम सिर्फ काम नहीं, सेवा भाव है। भगवान राम के धाम में अगर सब कुछ इतना व्यवस्थित है तो इसका क्रेडिट प्रबंधन को है, पर दिन रात काम करने वाली ये टीम भी बधाई की पात्र है।
1: हम लोग यहाँ 15 जनवरी 2024 से कार्य कर रहे हैं। ये हमारी कंपनी के लिए बहुत सौभाग्य का विषय है, राम जी की सेवा करने का हम लोग मौका मिला और हमारी 24 घंटे सेवा यहाँ चलती रहती निरंतर। इसमें हम लोग को बड़ी आनंद आता है, हमारे स्टाफ भी बड़े खुश रहते हैं, सबको बड़ा यहाँ पे अच्छा लगता है। साफ सफाई हमारे गर्भगृह से बाहर पर कोटा में मंदिर एरिया में बाहर आपका पीएफसी एरिया हो गया, आउटर हो गया, चारों तरफ मैंने मंदिर परिसर के हर एक एरिया में सफाई कार्य होता है। यहाँ का भाव कार्य करना कुछ अलग है, यहाँ जब आप आइए तो कार्य करने में अच्छा लगता है, जैसे लगता है कि हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। बहुत ही अंदर से सुकून मिलता, बहुत शांति मिलती।
0: मंदिर की साफ सफाई और सज्जा राम का ही काम है, और राम काम किए बिना भक्तों को विश्राम कहाँ। जो लोग यहाँ सेवा दे रहे हैं उन्हें भी अपना काम भक्ति जैसा लगता है।
1: देखिए हम लोग यहाँ जब महाकुंभ हुआ था तो पर डे यहाँ 3-4 लाख लोग आते थे, उस समय भी हम लोगों ने अपनी सेवा में कोई कमी नहीं रखी। आज के डेट में भी डेली 1.25 लाख 1.5 लाख कभी 2 लाख, यानी ये रेशियो कंटिन्यू चलता रहता है, लेकिन हमारे कार्य में कोई बाधा नहीं होती है और निरंतर चलता रहता है।
2: नहीं,
1: हमारे यहाँ 8 घंटे की शिफ्ट चलती है, 24 घंटे शिफ्ट चलती है, सब लोगों का सिस्टम बना हुआ है, कोई आराम से अपना कार्य करता है, सबको अपना टाइम से लंच का छुट्टी का जो भी सिस्टम है सब निरंतर चलता रहता है। दर्शन हम लोग पर डे करते हैं, हम लोग तो इसी प्रांगण में रहते हैं, पिछले जन्म में कुछ पुण्य का कार्य होगा तभी हम लोग यहाँ कार्य कर रहे हैं और हमारी कंपनी कार्य कर रही है।
3: राम मंदिर में काम करते हैं हम, गर्भगृह एरिया हो गया, राम दरबार एरिया हो गया, सप्तऋषि एरिया हो गया, शेषावतार एरिया हो गया, प्लस पीएफसी बिल्डिंग हो गया, प्रसाद वितरण एरिया हो गया, आउटर एरिया हो गया, हर एरिया में हम 24 घंटे अपने स्टाफ के साथ काम करते हैं। यहाँ पे हमें काम करने में आनंद अनुभूत होती है और सफाई का काम करते हैं उसी तरह करते हैं जैसे माता शिवरी ने किया था राम जी के लिए, तो उसी मनोभाव से हम यहाँ पे काम करते हैं। ऐसे तो कूड़ा डस्टबिन वगैरह लगा है लेकिन पब्लिक आती है, हम किसको किसको समझाएंगे। यहाँ पे हजारों प्रकार के लोग आते हैं तो कुछ लोग डस्टबिन का यूज करते हैं, कुछ लोग ऐसे फेंक देते हैं, उनको पता नहीं होता है, इसलिए सारी जगह पे सब कुछ सफाई करना पड़ता है। वॉशरूम से लेकर हम लोग बाहर का एरिया, आउटर का एरिया, अंदर फ्लोर का एरिया सब कुछ साफ करते हैं।
0: करीब 7 एकड़ में फैले राम मंदिर परिसर में साफ सफाई एक बड़ी चुनौती का काम है, खासकर तब जब परिसर में कोई बड़ा आयोजन हो या कुंभ जैसा बड़ा अवसर। कुछ ही दिनों में लाखों लोगों का आना जाना होता है, ऐसे में इन सफाई कर्मियों की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है।
4: एक्चुअली हमारे शिफ्ट तो सुबह चालू हो जाते हैं लेकिन रामलला के सोने के पहले हम लोग उठ जाते हैं और हमारा जो काम है यहाँ पे 24 घंटे चलता रहता है और एक हम वर्ल्ड लेवल क्लास की क्लीनिंग यहाँ पर दे रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे मशीनें भी हैं, मैन पावर भी है, मैनुअल क्लीनिंग भी करते हैं, ज़्यादातर हम मशीनों से ही काम ज़्यादा करते हैं, जिससे कि हम मशीनों से होता ही है कि हमें साफ सफाई अच्छी मिलती है, क्वालिटी अच्छी मिलती है। क्या कुछ वो आइडिया नहीं कब बढ़ेगा कब घटेगा, कभी कभी ऐसा होता है कि लाखों लोग आ जाते हैं, कभी कभी 5 लाख लोग भी आ जाते, कभी 10 भी हो जाता है, तो हम लोग उसमें ऐसे चैलेंजिंग फेस करते हैं कि लोग चल रहे हैं और हम लोग सफाई भी कर रहे हैं, लोगों को देखना रहता है कि कहीं किसी को कुछ भी असुविधा ना हो साफ सफाई को लेकर के, हम एरिया भी अपना साफ कर लें, उनको भी असुविधा ना हो, क्योंकि हम लोग एक सेवा भाव से यहाँ पे जुड़े हुए हैं।
0: राम मंदिर में काम करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि दिन रात रामलला के दर्शन हो जाते हैं, आरती में शामिल हो जाते हैं, प्रसाद मिल जाता है, इसलिए साफ सफाई करने वाले खुद को भाग्यवान मानते हैं, लेकिन इनका सेवा भाव साफ नजर आता है। जो भी दर्शन करने अयोध्या जाते हैं साफ सफाई देखकर दंग रह जाते हैं, खुश होते हैं, सफाई टीम को धन्यवाद कहते हैं।
5: साफ सफाई के लिए अभी आप समझ लीजिए, अभी हम लोग जस्ट ऐसे आ रहे हैं, एक तरफ से आप समझिए, एक तरफ से कोई गंदगी जैसे फैला दिया, जो आदमी नहीं जान रहा है डस्टबिन कहाँ पे है क्या है। हालांकि डस्टबिन हर जगह पे मिल रही, कोने कोने में मिल रही है, फिर भी आदमी जो नहीं देख पा रहा है इधर उधर फेंक दे रहा है, सफाई कर्मी उसको तुरंत झाड़ू लगा के या ग्रूमिंग करके या उसको तुरंत डस्टबिन में डाल दे रहे हैं।
6: इतने लोग होते हुए भी बहुत साफ सुथरा है, बहुत अच्छा है, दर्शन बढ़िया हुए, कोई दिक्कत
7: नहीं। ऐसी आशा है कि यहाँ तो हिंदुस्तान के हर कोने से आदमी आता है, तो लैंग्वेज प्रॉब्लम होता है, फूड का प्रॉब्लम होने के चांसेस होते हैं, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, हर चीज की सुविधा है, आपको दर्शन करने के लिए पैसा खर्चा नहीं करना पड़ता है, आप आइए, हर चीज आपको फ्री है, हर चीज की सुविधा है, आपका सामान आपका हर चीज जो है सुरक्षित रहता है, कोई मतलब सोचने वाली कोई बात ही नहीं है। और इतना सब होना है बोल तो पीछे एडमिनिस्ट्रेशन और योगी जी का धन्यवाद।
0: राम मंदिर में रोजाना भक्तों का यूं ही तांता है, न सिर्फ राम लला बल्कि परिसर में मौजूद सभी मंदिरों में दर्शन अब सुलभ हैं। इसके अलावा मंदिर परिसर में बने चित्र और मूर्तियां भी राम भक्तों का ध्यान खींचती हैं। लोग रुककर गौर से देर तक भगवान राम से जुड़ी कहानियों की तस्वीरें देखते हैं और आनंद से भरे वापस लौटते हैं। इनके इस आनंद में परिसर में तैनात सफाई कर्मियों का भी बड़ा योगदान है, जो अपना काम भक्तिभाव से किए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
8: भगवान राम की अयोध्या से जुड़ी एक और बड़ी खबर, प्राचीन आचार्य मंदिर से करीब 5,000 दुर्लभ पांडुलिपियां मिली हैं, जो 12वीं से लेकर 19वीं शताब्दी के बीच की बताई जा रही हैं। खास बात यह है कि इनमें से कई पांडुलिपियां फारसी, अरबी, उर्दू और रोमन लिपि में लिखी गई हैं। जांच के बाद इन्हें अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय में सुरक्षित रखा जाएगा।
9: प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या के गौरवशाली इतिहास को समेटे हुए ये वो दुर्लभ दस्तावेज है, जो आने वाले वक्त में लोगों को अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय में देखने को मिल सकता है। ये पांडुलिपियां 12वीं से लेकर 19वीं शताब्दी तक की बताई जा रही हैं, जो अयोध्या के 1000 साल पुराने आचार्य मंदिर से मिली है। इनकी संख्या 5,000 के करीब है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि सनातन धर्म के इस बेहद प्राचीन मंदिर में मिली ये पांडुलिपियां फारसी, अरबी, उर्दू और कुछ रोमन लिपियों में लिखी गई हैं। आचार्य मंदिर के पुजारी का कहना है कि ज्यादातर पांडुलिपियां भोजपत्र की हैं, जिनका जल्दी ही हिंदी में अनुवाद कराया जाएगा, जिसके बाद ही इन दुर्लभ पांडुलिपियों पर लिखे इतिहास से पर्दा उठ सकेगा। हालांकि उन्होंने बताया कि इन पांडुलिपियों पर अयोध्या के मंदिरों, पुराने कुंडों और मंदिरों के लिए दी गई जमीनों का लेखा जोखा हो सकता है। दरअसल अयोध्या में भगवान श्री राम से जुड़ी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करने के लिए दुर्लभ पांडुलिपियों का देश भर से संग्रह किया जा रहा है और फिर इन्हें जांच के बाद अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय में रखा जाएगा। लेकिन इस संग्रहालय में सिर्फ उन्हीं पांडुलिपियों को रखा जाएगा जो सिर्फ हाथ से लिखी हैं और दुर्लभ है।
10: विभिन्न स्थानों पे इस प्रकार की पांडुलिपियां हमें मिली हैं, जैसे लक्ष्मण किला में, रामकथा संग्रहालय में, अंतर्राष्ट्रीय रामायण शोध संस्थान में, गोकुल भवन में और हनुमानगढ़ी में और अन्य स्थानों का भी सर्वेक्षण किया जा रहा है। ये विभिन्न भाषाओं में, कुछ हिंदी में मिली है, कुछ संस्कृत में मिली है, अलग अलग जगहों पे उर्दू में भी मिल रही है, तो हम उन सभी को असेस करके डिजिटाइज करा रहे हैं।
9: बताया जा रहा है कि पांडुलिपियों को इकट्ठा करने की मुहिम के तहत देश के अलग अलग हिस्सों से कई लोग ऐसी दुर्लभ पांडुलिपियों की जानकारी अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय और डायरेक्टर संजीव सिंह को दे चुके हैं। इस पूरे अभियान का मकसद सिर्फ पांडुलिपियों को इकट्ठा करना ही नहीं बल्कि इन्हें वैज्ञानिक तरीके से सुरक्षित रखना भी है, इसीलिए इन्हें डिजिटल रूप में सेव करने की तैयारी है ताकि आने वाले समय में लोग इन्हें आसानी से देख भी सकें और पढ़ भी सकें। इस पूरी पहल के जरिए रामायण की कालातीत विरासत को सुरक्षित कर आने वाली पीढ़ियों तक पहुँचाना है। अयोध्या से मयंक शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
8: इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: stay in the game with TuneIn. Hear nonstop sports talk, live games, and coverage that never slows down. Keep up with your favorite teams from every play to every post-game breakdown. Listen to sports stations like ESPN Radio, NBC Sports Radio, Big 12 Radio, Talk Sport, and more. Plus, catch live games all year round, so you never miss a moment of sports action. Start listening on TuneIn.
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज।

0: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
1: TuneIn has got your favorite podcast, from sports to special interests. Did you know that you can listen to all your favorites offline? It's simple. Just head to any podcast page, tap the three little dots next to the episode title, and hit download. Whether it's true crime, lifestyle, health, and science, or anything else, stream your favorite podcasts and listen to them anytime, anywhere.
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
6: ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
2: गुजरात और दमन दौरे पर प्रधानमंत्री ने दिया विकास का तोहफा। हजीरा में लार्सन एंड ट्यूब्रो की इंडस्ट्रियल फैसिलिटी का जायजा लिया। सूरत को 200 बेड वाले अस्पताल की सौगात। चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह। अब तक 30 लाख से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन। केदारनाथ पहुंचने वालों का आंकड़ा 11 लाख के पार। देश और दुनिया में मनाया जा रहा पर्यावरण दिवस। सूरत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगाया एक पेड़ माँ के नाम। पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण की अपील। भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर शानदार खबर। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 7.7% रही GDP ग्रोथ। जनवरी से मार्च की तिमाही में 7.8% की दर से हुई वृद्धि। नहीं बदलेगी आपके लोन की EMI। RBI ने रेपो रेट 5.25% रखी बरकरार। विदेशी निवेशकों को लुभाने के लिए उठाए कदम।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
2: बद्रीनाथ धाम में एक बार फिर से मौसम ने ली करवट। धाम में हो रही है बारिश, बादलों ने डाला डेरा। धाम के मैदानी इलाकों में बारिश के बीच नीलकंठ पर्वत, नरनारायण और कुबेर पर्वत पर बर्फबारी। बिछी बर्फ की सफेद चादर। बारिश और बर्फबारी से धाम में जबरदस्त ठंड। तापमान में अचानक आई तेज गिरावट के बाद चरम पर भक्तों का जोश। बरसाती छाता, गर्म कपड़ों के साथ बड़ी संख्या में बद्री विशाल के दर्शन के लिए पहुंच रहे श्रद्धालु। दर्शनार्थियों में लगातार बढ़ोतरी। चमोली पीपलकोठी के पास बनेर पानी में बारिश के चलते बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग हुआ बाधित। यातायात पूरे तरीके से बंद। सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल श्री हेमकुंड साहिब में हुई बर्फबारी रुक रुक कर जारी है। मौसम की आंख मिचोली। आज दोपहर बाद मौसम ने अचानक से ली करवट। चारों तरफ बिछी बर्फ की सफेद चादर। बर्फबारी शुरू होते ही प्रशासन सतर्क। वहां मौजूद पुलिस, SDRF सेवादारों ने एहतियात के तौर पर श्रद्धालुओं को सुरक्षित रूप से घांगरिया के लिए रवाना किया। मौसम की परिस्थितियों को देखते हुए पूरी सावधानी बरतने की अपील भी की जा रही है। जून की इस बेमौसम बर्फबारी में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आना जारी। अब तक 55

0: 3000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। समुद्र तल से लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब। दिल्ली में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट, कुछ हिस्सों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण सुबह सुबह हुई थी हल्की से मध्यम बारिश। मौसम विभाग के मुताबिक न्यूनतम तापमान में 3.7 डिग्री की गिरावट, वहीं अधिकतम तापमान सामान्य से 4.2 डिग्री कम। बारिश के पूर्वानुमान के बावजूद वीकेंड के लिए कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है, हालांकि वीकेंड पर जारी रहेगी गर्मी से राहत। कल भी जारी रह गए तापमान में गिरावट, शनिवार को अधिकतम तापमान 35 से 37 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान, न्यूनतम तापमान भी 24 से 26 डिग्री के आसपास रह सकता है। बारिश के बाद मॉडरेट श्रेणी में बनी हुई है राजधानी की हवा की गुणवत्ता। दिल्ली का 24 घंटे का औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स 131 दर्ज हुआ। बद्रीनाथ धाम में तेजी से बढ़ रही श्रद्धालुओं की संख्या, अब तक करीब 9 लाख लोगों ने बाबा बद्री विशाल के किए दर्शन। यात्रा की शुरुआत से ही रिकॉर्ड संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालु, हर तरफ छाया भक्ति का माहौल। बद्रीनाथ में रुक रुक कर हो रही बारिश, सुहावने मौसम का लुत्फ उठा रहे तीर्थयात्री। प्रशासन की तरफ से श्रद्धालुओं की सहूलियत का रखा जा रहा खास ख्याल, सुगम दर्शन के लिए की जा रही है सारी व्यवस्थाएं। केदारनाथ में दिखी प्रशासन की शानदार तैयारी, बीमार श्रद्धालु का हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट किया गया, पहुंचाया गया अस्पताल। जम्मू कश्मीर में माता की भवानी मंदिर में यात्री भवन का उद्घाटन, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किया भवन का उद्घाटन। भक्तों को सुरक्षित, साफ सुथरी और आरामदायक सुविधाएं देना है मकसद। मंदिर परिसर में करीब 4 करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई सुविधाएं। श्रीनगर से लगभग 25 किलोमीटर दूर स्थित है मंदिर, बड़ी संख्या में भक्तों को करता है आकर्षित। वार्षिक मेला खीर भवानी और ज्येष्ठ अष्टमी के दौरान बड़ी संख्या में आते तीर्थयात्री। रामगढ़ के आम का दुबई तक जलवा, 4 टन आम्रपाली की पहली खेप विदेश रवाना। लोकल फॉर वोकल से लेकर लोकल टू ग्लोबल बना रामगढ़ का आम, भेजी गई 4 टन की खेप। दमन के दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, नमो हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का किया उद्घाटन। अधिकारियों संग नए टर्मिनल के मॉडल की समीक्षा की, सभी सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। दमन को नमो अस्पताल की भी मिली सौगात, नई आधुनिक सुविधाओं से लैस है ये नया अस्पताल। दौरे के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों से किया गया प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत, 8वीं बार दमन दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी। लक्षद्वीप के कल्पेनी द्वीप और कदमत द्वीप के पूर्वी और पश्चिमी किनारों पर बंदरगाह सुविधाओं के विकास का भी वर्चुअल शिलान्यास, लक्षद्वीप में विकास और पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। दमन से पहले सूरत दौरे पर भी प्रधानमंत्री मोदी, सूरत में 18,000 करोड़ के विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास। बड़ोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के पैकेज 6 और 7 का भी उद्घाटन, गुजरात और महाराष्ट्र के बीच कनेक्टिविटी और आर्थिक संपर्क को मजबूत करना है परियोजना का उद्देश्य। सूरत में 200 बिस्तर वाले ESIC अस्पताल का भी किया गया उद्घाटन, विशाल जनसभा को संबोधित किया गया। हजीरा में प्रधानमंत्री मोदी ने LNG प्लांट में जोरावर टैंक का लिया जायजा, भारतीय सेना के लिए सबसे नया टैंक है जोरावर। पीएम ने हजीरा में LNG प्लांट में ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की प्रगति की समीक्षा की, भविष्य में स्वच्छ ऊर्जा स्रोत के लिए अहम है ये प्लांट। बलरामपुर के दौरे पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, 294 करोड़ रुपए की लागत वाली 75 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। दौरे के दौरान बच्चों के बीच नजर आए सीएम योगी, गोद में उठाकर किया दुलार। छोटी छोटी बालिकाओं का किया कन्या पूजन, खिलौना चॉकलेट बांटते नजर आए मुख्यमंत्री। रामनगरी अयोध्या में प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए किया गया विशेष अनुष्ठान, सीएम योगी के जन्मदिन पर उनकी लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना। यज्ञ में शामिल संतों और श्रद्धालुओं को विशेष आहुतियां उन्होंने अर्पित की, श्रद्धालुओं के बीच बांटे गए 1.25 क्विंटल देसी घी के लड्डू। मिर्जापुर में मां पीताम्बरा देवी मंदिर में सीएम योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन का आयोजन, बीजेपी कार्यकर्ताओं की ने की मां की विशेष आरती। पार्टी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री की फोटो को खिलाई मिठाई, खिंचवाई गई फोटोस। दिल्ली के कालकाजी मंदिर में मनाया गया यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन, सीएम की दीर्घायु और स्वास्थ्य की कामना के साथ किया गया रुद्राभिषेक। सीएम योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन पर खास पूजा अर्चना का आयोजन, साथ ही चढ़ाया गया 51 किलो के लड्डुओं का प्रसाद। उत्तर प्रदेश के झांसी में महिलाओं ने केक काटकर मनाया मुख्यमंत्री का जन्मदिन, सीएम योगी को जन्मदिन की बधाई दी। नर्मदा में ऐतिहासिक स्टैचू ऑफ यूनिटी बना वर्ल्ड क्लास टूरिस्ट डेस्टिनेशन, पीएम मोदी के विदेश के बजाय देश के पर्यटक स्थलों पर जाने के आह्वान का दिखा असर। प्रदूषण मुक्त ट्रांसपोर्टेशन के साथ पर्यावरण सुरक्षा को लेकर कई योजनाओं की शुरुआत, पीएम ने किया था भारत के पहले ई व्हीकल ओनली जोन के तौर पर डेवलप करने का ऐलान। 7 सालों में स्टैचू ऑफ यूनिटी अथॉरिटी द्वारा चलाए जा रहे लगभग 469 इलेक्ट्रिक व्हीकल, ग्रीनिंग एकता नगर के तहत 60 लाख से ज्यादा नए पेड़ लगाने का अभियान। सैलानियों को मंत्रमुग्ध करती है एकता नगर की हरियाली और कुदरती खूबसूरती, सड़कों के आसपास लगाए गए 15 लाख पौधे। उज्जैन के महाकाल मंदिर में भक्तों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए प्रशासन ने की कसी कमर, देर रात से भस्म आरती में हिस्सा लेने वाले भक्तों ने किया संवाद। गुजरात के डेप्यूटी सीएम हर्ष संघवी ने 5 किलोमीटर चलाई साइकिल, लोगों से पेट्रोल और डीजल बचाने की अपील। भारत की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर, वित्त वर्ष 2026 में जीडीपी विकास दर अनुमान से ज्यादा, 7.7% की वृद्धि दर्ज। बलिया के सुरहा ताल को यूनेस्को की तरफ से मिला रामसर साइट का दर्जा, वैश्विक पहचान और इको टूरिज्म की बढ़ेंगी सुविधाएं। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित को अगला वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ किया गया नियुक्त, 1 जुलाई से संभालेंगे नया पदभार। त्रिपुरा के बॉर्डर इलाके में पहुंचे गृहमंत्री, भारत बांग्लादेश सीमा पर लंकामुरा बॉर्डर आउटपोस्ट पर बीएसएफ के अत्याधुनिक हथियारों का किया निरीक्षण। देश और दुनिया में मनाया जा रहा है पर्यावरण दिवस, सूरत में पीएम मोदी ने एक पेड़ मां के नाम के तहत लगाया पौधा, लोगों से की पौधा लगाने की अपील। विश्व पर्यावरण दिवस पर लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया पौधारोपण, लोगों को दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश। आगर मालवा के सिपाही बंटी धाकड़ की पर्यावरण को लेकर शानदार पहल, ग्रीन आर्मी बनाकर लोगों को पौधारोपण के लिए कर रहे हैं प्रेरित। साइकिल यात्रा से भी बटी लोगों को कर रहे जागरूक, पेड़ लगाने के लिए बताते हैं कई फायदे। बंटी धाकड़ के प्रयासों से लगाए गए सैकड़ों पौधे अब बन चुके हैं पेड़, पेड़ों की छाया से लोगों को मिल रही है राहत। चमोली की प्रसिद्ध फूलों की घाटी में विश्व पर्यावरण दिवस पर पर्यटकों ने किया पौधारोपण, एक पेड़ मां के नाम का दिया संदेश। अलवर के बुजुर्ग सुरेंद्र सैनी लोगों में जगा रहे पर्यावरण की अलख, 40 साल से करते आ रहे हैं पौधारोपण। विश्व पर्यावरण के मौके पर गाजियाबाद के डीएम ने लोगों को जागरूक किया, एमएमएच गर्ल्स इंटर कॉलेज के परिसर में किया पौधारोपण। दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने एक पौधा मां के नाम अभियान में पौधारोपण किया, पर्यावरण को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाई। वायुसेना की 94 एनिवर्सरी को लेकर शानदार तैयारी, हिंडन एयरपोर्ट स्टेशन से होगी समारोह की शुरुआत, काशी में गंगा के ऊपर राफेल तेजस और सुखोई भरेंगे शौर्य की उड़ान। पाकिस्तान को रौंदकर अंडर 18 हॉकी एशिया कप 2026 के फाइनल में पहुंची भारतीय टीम, अब फाइनल में शनिवार को भारत का सामना जापान से होगा। सेमीफाइनल में पाकिस्तान को 5-3 से मात दी, मैच के सबसे बड़े हीरो रहे पूर्ति आशीष सानी रहे, जिन्होंने अकेले 4 गोल दागकर पाकिस्तान की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। भारतीय टी20 क्रिकेट में बड़े बदलाव की शुरुआत, सूर्य कुमार यादव से वापस ली गई कप्तानी, श्रेयस अय्यर होंगे भारत के टी20 टीम के नए कप्तान। कल बीसीसीआई की चयन समिति की बैठक, इसमें इंग्लैंड आयरलैंड दौरे और एशियन गेम्स को लेकर होने हैं कई अहम फैसले। कल से शुरू होगा भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच, न्यू चंडीगढ़ के महाराजा यादविंद्र सिंह स्टेडियम में इस सीजन का भारत का पहला टेस्ट मैच होगा। काजल अग्रवाल, श्रेयस तलपड़े की फिल्म द इंडिया स्टोरी का नया टीजर रिलीज, खेती में जहरीली कीटनाशकों के दुरुपयोग और खाद्य पदार्थों में मिलावट जैसे गंभीर मुद्दों पर बनी है फिल्म। एक बार फिर बड़े पर्दे पर लौट रही लोकप्रिय एनिमेटेड फ्रेंचाइजी आइस एज, नई फिल्म आइस एज बॉइलिंग पॉइंट का टीजर और पोस्टर जारी। फिल्म भारत भाग्य विधाता को प्रमोट करने में जुटी कंगना, देश के बड़े शहरों में जाकर अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े अनसंग हीरोज को सम्मानित करती नजर आई। एक्टर जैकी श्रॉफ की आज वेडिंग एनिवर्सरी पर पत्नी आयशा श्रॉफ ने शेयर की अनसीन फोटोज, लिखा मेरी जिंदगी के सबसे बड़े सहारे। श्रद्धा कपूर और करण जौहर के बीच एकता कपूर ने ज्वेलरी बिजनेस में रखा कदम, लैब्रोन डायमंड ब्रांड एकता ज्वेलर्स के साथ जुड़ी। रामचरण की फिल्म बेडी ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर किया शानदार प्रदर्शन, फिल्म का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन 112.49 करोड़ पहुंचा। बेडी ने रणवीर सिंह की धुरंधर और सनी देओल की गदर 2 जैसी फिल्मों के ओपनिंग डे रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। फिल्म का क्रेज न सिर्फ दक्षिण भारत में बल्कि हिंदी बेल्ट में भी देखने को मिल रहा है। भारत में पहले दिन पेडी ने कमाए 69.50 करोड़ रुपए। फिल्म पंडितों के मुताबिक पेडी का शानदार सफर आगे जारी रहेगा। पेडी की सफलता के लिए जानवी कपूर आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में पहुंची, सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल। जानवी कपूर की सादगी की जमकर हो रही तारीफ, उन्होंने नंगे पैर 3,550 सीढ़ियां चढ़कर भगवान के दर्शन किए। सिने प्रेमियों के लिए गुड न्यूज, बड़े पर्दे पर रिलीज हुई बॉबी देओल की फिल्म बंदर और वरुण धवन की है जवानी तो इश्क होना है। इमरान हाशमी की फिल्म आवारापन 2 सिनेमाघरों में रिलीज के लिए तैयार, आवारापन 2 के सेट से इमरान हाशमी ने शेयर की तस्वीर। मोहनलाल की फिल्म दृश्यम 3 का बॉक्स ऑफिस पर जलवा बरकरार, दृश्यम 3 ने 15वें दिन 1.05 करोड़ कलेक्शन किया। रणवीर सिंह की धुरंधर अब जापान में दिखाई जाएगी, 10 जुलाई को रिलीज होगी धुरंधर पार्ट 1। अब टीवी पर दर्शक देख सकेंगे धुरंधर पार्ट 2 जियो हॉटस्टार पर, आज से ये रेगुलर सब्सक्रिप्शन के लिए अवेलेबल। चीन के गांसु प्रांत में सिनो लॉजिस्टिक यानी चीन के जानकारों के तीसरे विश्व सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें लगभग 70 देशों के 300 से ज्यादा प्रतिनिधि शामिल हुए। सम्मेलन के दौरान प्रतिनिधियों ने म्यूरल्स की नकल करने से लेकर बांस की पट्टियों पर लिखने और चीन की पारंपरिक वेशभूषा हानफू पहनने जैसी गतिविधियों में हिस्सा लिया। कोलंबिया की पॉप स्टार शकीरा मैक्सिको में होने वाले फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप की ओपनिंग सेरेमनी में लेंगी हिस्सा, सेरेमनी में गाएंगी वर्ल्ड कप का ऑफिशियल सॉन्ग। मेजबान मैक्सिको और साउथ अफ्रीका के बीच होने वाले ओपनिंग मैच के किक ऑफ से 90 मिनट पहले शुरू होगी ये सेरेमनी। नाइजीरिया आर्टिस्ट बर्ना बॉय भी होंगे साथ। एक इटालियन फ्रेज से लिया गया है टूर्नामेंट का ऑफिशियल एंथम डाई डाई का नाम, जिसका मतलब है चलो या आगे बढ़ो।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: Stay locked in to the NBA playoffs with ESPN Radio. Get around the clock sports talk covering every matchup, every storyline, and every big moment as the games unfold. And throughout the playoffs, catch select live games bringing you courtside for some of the biggest showdowns. From nonstop analysis to can't miss action, ESPN Radio is your home to follow the NBA playoffs. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
0: में ही है
3: और दुर्भाग्य कहता है
0: कि भाग्य कहीं दूर नहीं,
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे,
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
0: मदर डेयरी ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। कंपनी ने देश में पहला ऐसा दूध का पैकेट लॉन्च किया है जो मिट्टी में प्रदूषण फैलाए बिना अपने आप प्राकृतिक रूप से गल जाएगा। एक और जहां प्लास्टिक को जमीन में गलने में सैकड़ों साल लग जाते हैं, तो वहीं ये पैकेट महज 2 साल में ही मिट्टी में मिलकर गायब हो जाएगा और पर्यावरण में प्लास्टिक का नामोनिशान भी नहीं रहेगा। ग्राहकों के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि इस नए और आधुनिक पैकेट का उनकी जेब पर कोई असर नहीं होगा, यानी कि कंपनी ने ग्राहकों के लिए दूध की कीमतों में कोई अतिरिक्त बढ़ोतरी नहीं की है। फिलहाल इसे काउ मिल्क की पैकेजिंग के लिए यूज किया जा रहा है, बाद में इसे अन्य प्रोडक्ट्स में भी लाया जाएगा। दूध की नई पैकेजिंग की ग्राहक भी जमकर तारीफ कर रहे हैं।
5: मदर डेयरी ने काउ मिल्क रीग्रेडेबल पाउच में निकाला है। ये पाउच देखो, हमारी पैकिंग चेंज हो गई है। ये अपने आप ही मिट्टी में घुल जाता है, ज्यादा दिन तक पड़ा रहेगा तो मिट्टी में डिजोल्व हो जाएगा।
6: बहुत ही अच्छे इनिशिएटिव लिया गया मदर डेयरी के द्वारा। और फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ऐसे फेल है जिसकी वजह से लोग कूड़ा फेंक देते हैं इधर उधर या नहीं फेंक अच्छा ही जगह पे नहीं डाल पाते, तो दीज पाउचेस विल हेल्प अ लॉट आउट एनवायरमेंट बिकॉज दिस विल बी डिग्रेडेबल इनटू द सॉइल बाय इटसेल्फ।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें,
7: कौन सा रंग अगर आपको नुकसान करे तो दुर्घटनाएं करवा सकता है, कौन सा रंग बीमारी से लड़ने और निकलने में सहायता करता है, कौन सा रंग जीवन में शुभ कार्य करवा देता है, अलग अलग रंगों के प्रयोग से कैसे चमकाएं किस्मत, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
2: Every game, every moment, TuneIn keeps you close to the action. Follow your favorite teams all season long with live games, nonstop sports talk, and expert sports analysis so you can jump into the action. Hear it all on ESPN Radio, NBC Sports Radio, Big 12 Radio, Talk Sport, and more. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices at home, in the car, or on the go, so you never miss a second of sports action. Search sports to start listening now.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। Sage University, transforming your passion into profession. TIT Bhopal, Gen Z's gateway to unbeatable placements.
0: गुजरात और दमन के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया विकास का तोहफा। हजीरा में लार्सन एंड ट्यूब्रो की इंडस्ट्रियल फैसिलिटी का जायजा लिया। सूरत को 200 बेड वाले अस्पताल की सौगात दी। चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह। अब तक 30 लाख से ज्यादा भक्तों ने दर्शन किए। केदारनाथ पहुंचने वालों का आंकड़ा 11 लाख के पार। पर्यावरण दिवस के मौके पर दुनिया भर में पर्यावरण संरक्षण का संदेश सूरत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगाया एक पेड़ मां के नाम, लोगों से वृक्षारोपण की अपील की। भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर शानदार खबर, वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% रही जीडीपी ग्रोथ, जनवरी से मार्च की तिमाही में 7.8% की दर से हुई वृद्धि। नहीं बदलेगी आपके लोन की ईएमआई, आरबीआई ने रेपो रेट 5.25% रखी बरकरार, विदेशी निवेशकों को लुभाने के लिए भी उठाए कदम।

0: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में।
1: नमस्कार।
0: लाल, हरा, नीला, पीला, काला, सफेद, यूं तो देखिए संसार में कई प्रकार के रंग हैं, लेकिन आज के कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं इन्हीं रंगों की कि कैसे इन रंगों के प्रयोग से, इसके इस्तेमाल से आपकी किस्मत सवर सकती है, चमक सकती है। लेकिन उससे पहले पंडित जी से जान लेते हैं आज का गुडलक मंत्र क्या है।
1: देखिए, अगर बात बात में आप चिंता करते हैं, हर बात पर तनाव पालने की आदत है आपकी, तो अपने जीवन में हरे रंग का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करिए। अगर आप ग्रीन कलर का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें तो ये आपके मन को चिंता मुक्त करेगा और मन के तनाव को दूर करेगा।
0: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं 6 जून 2026 यानी कि दिन शनिवार का पंचांग क्या है।
1: दिनांक 6 जून 2026 दिन शनिवार, तिथि है अधिक ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि, नक्षत्र है श्रवण नक्षत्र, प्रातः 6:03 तक चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं, शाम के 7:03 तक राहु काल का समय, प्रातः 9 से 10:30 तक पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
0: तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और पंडित जी, क्योंकि रंगों के बारे में हम बात कर रहे हैं और जैसे मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा, यूं तो अनेकों प्रकार के रंग हैं, लेकिन रंग हमारे जीवन से किस तरह से जुड़ा हुआ है और किस तरह से इन रंगों का प्रयोग करके हम अपनी किस्मत को बदल सकते हैं, उसके बारे में हम बताएं।
1: जी देखिए, रंग एक बहुत महत्वपूर्ण मामला है मानव जीवन के लिए भी, भोग विलास के लिए भी और आध्यात्म के लिए भी। ईश्वर विभिन्न रंगों के माध्यम से अभिव्यक्त होते हैं और ईश्वर विभिन्न रंगों के माध्यम से आपको अपनी तरफ आकर्षित भी करते हैं। दुनिया में मुख्य रूप से दो ही शक्तियां काम करती हैं, रंग और तरंग। इन्हीं शक्तियों से ही सारी सृष्टि चलती है। हर व्यक्ति, वस्तु, यहां तक कि जो आप शब्द बोलते हैं, जो आपकी भावनाएं हैं, इनका भी रंग होता है। जब हमारे मन का रंग किसी और के रंग से मिलता है तो रंगों से हमारा मिलन होता है, और जब हमारे मन का रंग किसी से हटता है तो रंग हमें दूर भी ले जाते हैं। रंग के आधार पर ग्रह नक्षत्र काम करते हैं और ज्योतिष के तमाम उपाय रंगों के आधार पर काम करते हैं। अगर आपको पता हो तो सही और सटीक रंग आपकी किस्मत को मजबूत करते हैं, और अगर आप गलत रंगों का प्रयोग करें तो इससे आपका भाग्य कमजोर होगा। इसीलिए ज्योतिष में आप देखिए कि लोग पूछते हैं कि मेरे लिए कौन सा रंग शुभ है, कौन सा रंग मैं पहनूं, कौन सा रंग मैं ना पहनूं, इस विषय पर भी लोग बात करते हैं, क्योंकि विशेष तरीके के रंग आपके मन पर, आपके सोचने समझने पर असर डाल देते हैं।
0: तो चलिए सबसे पहले बात लाल रंग के बारे में करते हैं। लाल रंग की क्या विशेषता है, क्या खासियत है इस रंग के बारे में, और किस तरीके से अपने भाग्य को चमकाने के लिए इसका प्रयोग करें, इसके बारे में जानते हैं।
1: देखिए, वायु में, हवा में सबसे ज्यादा जो तीव्र शक्तिमान रंग दिखता है वो लाल है। इसीलिए खतरे का और इमरजेंसी का रंग लाल रखा गया है। दूर से दिखाई देगा, इसकी ताकत बहुत ज्यादा होती है हवा के अंदर भी। अत्यंत ऊर्जा और शक्ति का रंग है। ज्योतिष में इसको मंगल और सूर्य का रंग माना जाता है। अगर आपके लिए लाल रंग शुभ है, आपको सूट करे, आप इसको पहनते रहें, तो आत्मविश्वास बढ़ेगा, साहस बढ़ेगा, स्वास्थ्य अच्छा होगा। लेकिन अगर आपको लाल रंग नुकसान करे, सूट ना करे, तो लाल रंग पहनने से दुर्घटनाओं की और चोट चपेट की संभावना बढ़ेगी। जो लोग बहुत जल्दी अशांत हो जाते हैं, जिनका मन बहुत जल्दी चिंता करता है, ऐसे लोगों को लाल रंग का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सामान्यतः मिथुन और कन्या, खासतौर से इनका लग्न मिथुन लग्न और कन्या लग्न में, और ज्यादातर मिथुन और कन्या राशि में भी ये रंग आम तौर पर लाभ नहीं पहुंचाता, क्योंकि अगर ये लाल रंग का इस्तेमाल करें तो इनका मन अशांत होता है, चोट चपेट की और दुर्घटना की संभावना बन जाती है।
0: तो बातचीत का ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल पंडित जी से जान लेते हैं मेष वृषभ और मिथुन राशि का राशिफल क्या कुछ कहता है।
1: मेष राशि, आर्थिक मजबूती आती दिखाई दे रही है, करियर की समस्या हल होगी, स्वास्थ्य में सुधार होता रहेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, पारिवारिक समस्या हल होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सफलता मिलेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, व्यर्थ के तनाव से बचाव करें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65% जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा।
0: तो चलिए लाल रंग के बाद अब पीले रंग के बारे में बात करते हैं, क्या विशेषता है पीले रंग की और किस तरीके से इसका प्रयोग करें ताकि जीवन में सार्थक बदलाव आए, आइए पंडित जी से जानते हैं।
1: देखिए पीला रंग कम से कम हिंदू परंपरा में, भारतीय परंपरा में अत्यंत पवित्र माना जाता है, इसीलिए पीला रंग शुभ चीजों से और मंगल कार्यों से संबंध रखता है। ज्योतिष में पीले रंग को बृहस्पति देव का रंग माना जाता है। अगर पीला रंग आप धारण करते हैं और ये आपको सूट करे तो शिक्षा, संतान, सुख और ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। लेकिन अगर पीला रंग आपको नुकसान करे, सूट ना करे, तो पेट खराब कर देगा, लीवर में दिक्कत आ जाएगी, दाम्पत्य जीवन में समस्या पैदा होगी। जो लोग स्वभाव से सात्विक ना हो, मांस मदिरा का ज्यादा प्रयोग करते हो, ऐसे लोगों को इस रंग का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पीला रंग वृषभ, तुला और मकर लग्न के लिए बहुत ही निगेटिव होता है। वृष, तुला और मकर राशि पर भी निगेटिव असर डालेगा, लेकिन वृषभ, तुला और मकर लग्न के लोगों के लिए ये रंग निगेटिव होता है, क्योंकि अगर ये ज्यादा पीले रंग का इस्तेमाल करें तो ये बीमार पड़ सकते हैं।
0: फिलहाल आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कर्क सिंह और कन्या राशि का राशिफल क्या कुछ कहता है।
1: कर्क राशि, कोई बड़ी समस्या इस समय आपकी हल होगी, धन का लाभ होगा, चोट चपेट से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, रुका हुआ काम बन जाएगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संतान पक्ष की उन्नति होगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: तो चलिए कार्यक्रम को अभी आगे बढ़ाते हैं और अब पंडित जी से जान लेते हैं कि आज का पहला सवाल वो किसका ले रहे हैं।
1: जी आज का पहला प्रश्न संजय वर्मा जी ने हमें लिखा है और संजय वर्मा जी कानपुर उत्तर प्रदेश से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 9 अप्रैल 1978 शाम को 6:55, जन्म स्थान है कानपुर। संजय जी कह रहे हैं कि मैं व्यापार करता हूं अभी और मेरे व्यापार में उतार चढ़ाव बहुत रहता है और कर्जे भी मेरे हमेशा कुछ ना कुछ बने रहते हैं, तो मैं क्या उपाय करूं जिससे मेरा व्यापार बेहतर चले और मुझे कर्ज से मुक्ति मिले। संजय जी, सबसे पहली जो गड़बड़ी है कुंडली में वो ये है कि आप बहुत जल्दी आगे बढ़ना चाहते हैं, जल्दी आगे नहीं बढ़ सकेंगे, धीरे धीरे चलिए, थोड़ा धैर्य रख के पैसा कमाने की कोशिश करिए। जल्दबाजी के चक्कर में गड़बड़ियां होती हैं क्योंकि चंद्रमा कंट्रोल में नहीं है। अगर आप आराम से चलें, बुद्धिमानी से चलें, तो भविष्य आपका बड़ा सुंदर दिखाई दे रहा है, आप काफी तरक्की कर पाएंगे, लेकिन पेशेंस चाहिए। आप ऐसा करिए, एक पीला पुखराज बनवा के पहनिए, 6 से 8 रत्ती का, सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में बृहस्पतिवार को सवेरे एक पीला पुखराज बनवा के पहन लें। दूसरा काम करें, सुबह और शाम दोनों समय एक एक बार संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करिए और फिर कहूंगा धैर्य से चलिए। वैसे आपका समय मई 2027 के बाद से काफी बेहतर दिखाई दे रहा है।
0: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात हरे रंग की कर लेते हैं। हरे रंग की आखिरकार क्या विशेषता है और किस तरीके से इस रंग का प्रयोग कर हम अपने जीवन को बदल सकते हैं, आइए पंडित जी से जानते हैं।
1: हरा रंग जो है ना, बड़ा चमत्कारी है और हरे रंग का इतना ज्यादा जीवन में प्रयोग है कि आप देखिए, प्रकृति ने अपने आप को प्रेजेंट किया है हरे रंग में। वृक्षों की पत्तियां, पौधे, हरा रंग है उसका, इसकी खासियत है भाई, ये विशेष रंग है। ये रंग अच्छा स्वास्थ्य देता है और आपके मन पर, आपके मूड पर असर डाल देता है। प्रकृति ने हरा रंग चारों तरफ इसीलिए बिखेर रखा है कि आप जब भी उस रंग के संपर्क में आए, आप स्वस्थ रहें, आप प्रसन्न रहें। ज्योतिष में हरा रंग बुध का रंग माना जाता है। अगर आपको हरा रंग सूट करे, हरा रंग लाभ पहुंचाए, तो ये आपके मन को और आपके दिमाग को अच्छा बना देगा, स्वास्थ्य आपका उत्तम कर देगा। लेकिन अगर हरा रंग आपको सूट ना करे, तो ये आपकी मानसिक चिंताएं बढ़ा देगा और त्वचा की समस्या, नर्व की समस्या दे सकता है। जिन लोगों को दिमाग का ज्यादा प्रयोग करना पड़ता हो या वाणी का ज्यादा प्रयोग करना पड़ता हो, ऐसे लोगों को हरे रंग का प्रयोग जरूर करना चाहिए। आप बहुत दिन से बीमार थे, दवाई खाए हैं, अब ठीक हो रहे हैं, रिकवरी कर रहे हैं, तो रिकवरी आपकी तेजी से हो, आप जल्दी स्वस्थ हो जाएं, आप हरे रंग के कपड़े और हरे रंग की बेडशीट का प्रयोग करना शुरू कर दें। हरा रंग जो है, ये कर्क लग्न और वृश्चिक लग्न के लिए बिल्कुल अनुकूल नहीं होता और कर्क राशि और वृश्चिक राशि के लिए भी अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन मुख्यतः कर्क और वृश्चिक में ग्रीन कलर आने से ये बिल्कुल एकदम से डिप्रेशन की तरफ कभी कभी जाने लगते हैं। तो कर्क और वृश्चिक वालों को मैं कहूंगा कि आप ग्रीन कलर का इस्तेमाल थोड़े लिमिटेशन में करें, थोड़े नियंत्रण में करें, तो आपके लिए बेहतर होगा।
0: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात नीले रंग की कर लेते हैं। नीला रंग आखिरकार इतना खास क्यों है, इसकी क्या विशेषता है और किस तरीके से नीले रंग का प्रयोग कर हम अपनी जिंदगी को, अपने भाग्य को बदल सकते हैं, आइए जानते हैं।
1: देखिए, नीला रंग रहस्यमयी रंग है, सामान्य रंग नहीं है। भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण, भगवान राम नीले रंग के दिखाए जाते हैं ना हिंदू परंपरा में। उसका कारण यही है कि ये विराट रंग है। आकाश का रंग भी नीला है क्योंकि ये विराट रंग है, रहस्य का रंग है। ये रंग तीव्र आध्यात्म और भाग्य से संबंध रखता है। ज्योतिष में इसको शुभ शनि का रंग माना जाता है। कुछ लोग नीले रंग को राहु का रंग भी कहते हैं। अगर आप नीला रंग प्रयोग करते हैं और ये रंग आपको लाभ देता है तो व्यक्ति की बुद्धि को तेज कर देता है, काम करने की क्षमता को बढ़ा देता है और इंट्यूशन की क्षमता, अंतर्ज्ञान की क्षमता बढ़ा देता है। अगर नीला रंग आपको सूट ना करे और आप ज्यादा नीला रंग पहनने लगे तो ये वाणी खराब करेगा और आपके करियर की उन्नति को, आपके करियर को आगे बढ़ने से रोक देगा। जिन लोगों को आध्यात्मिक और मानसिक उन्नति करनी हो उनको लाइट ब्लू कलर का प्रयोग जरूर करना चाहिए। नीला रंग मिथुन, तुला और कुंभ लग्न के लिए बहुत ही शुभ है। इसी तरह मिथुन, तुला और कुंभ राशि के लिए भी टेक्निकली नीला रंग अच्छे परिणाम देता है। आप गहरा ध्यान करना चाहते, मेडिटेशन वालों को खास तौर से मैं कहूंगा कि अगर आप ध्यान करना चाहते हैं, गहराई में जाना चाहते हैं, तो नीले रंग के चित्रों पर, नीले रंग के कैरिकेचर्स पर ध्यान दें, उसको अपने मन में उतारने का प्रयास करें, आप बहुत गहरा ध्यान कर पाएंगे।
0: तो बातचीत का यह सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल क्या है।
1: तुला राशि, करियर में समस्या हो सकती है, धन की हानि से बचाव करें, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। वृश्चिक राशि, आर्थिक लाभ होगा, सेहत की स्थिति बेहतर हो जाएगी, जल्दबाजी में निर्णय ना लें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुका हुआ काम बन जाएगा, लाभकारी यात्रा हो सकती है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं सफेद रंग की। सफेद रंग की क्या विशेषता है और किस तरीके से इसके प्रयोग करके हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं, उसे चमका सकते हैं, ये जानते हैं।
1: देखिए सफेद रंग के बारे में आप एक बात जानिए कि सफेद कोई रंग होता ही नहीं है, अलग से कोई इंडिविजुअल रंग नहीं है। वास्तव में 7 रंग जो हैं विबग्योर, जो इंद्रधनुष के 7 बेसिक रंग हैं जिनको विबग्योर कहते हैं, उन 7 रंगों को बराबर मात्रा में मिलाइए, सफेद रंग प्रकट हो जाएगा। ये रंग वास्तव में 7 रंगों का सटीक मिश्रण है। ज्योतिष में ये चंद्रमा और शुक्र का रंग माना जाता है। चंद्रमा इस रंग से ज्यादा संबंधित है। ईश्वर, आध्यात्म और सफलता की सबसे ऊंची स्थिति का संबंध सफेद रंग से माना गया है। आपको जब अपने आप सफेद रंग सबसे ज्यादा अच्छा लगने लगे, अनुकूल लगने लगे, तो ईश्वर की कृपा समझनी चाहिए। जिन लोगों को सफेद रंग का ज्यादा अनुभव होता है, निद्रा में, जीवन में, काम में सफेद चीजें बार बार आपके सामने आती हैं, उनको जीवन में अपने व्यवहार और स्वभाव का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि जीवन में अगर सफेद रंग बराबर आ रहा है तो ईश्वर की कृपा आपके ऊपर ज्यादा है, और ऐसी स्थिति में आप अपने खान पान, स्वभाव, व्यवहार को बेहतर कर लें तो अच्छा होगा।
0: तो चलिए रंगों के इसी क्रम में अब बात करते हैं काले रंग की। काले रंग की क्या विशेषता है, काला रंग क्यों इतना खास है, इतना अलग है, और इसका प्रयोग किस तरीके से कर सकते हैं जीवन को बदलने के लिए, आइए जानते हैं।
1: जैसे सफेद रंग कोई रंग नहीं है, वैसे ही काला रंग कोई रंग नहीं है। ये रंग वास्तव में कोई रंग नहीं है। जहां कोई रंग नहीं होता वहां काला रंग होता है। लैक ऑफ कलर इज ब्लैक, यानी जहां कोई रंग नहीं है वो काला रंग है। काला रंग शनि के अशुभ प्रभाव को, जीवन के संघर्ष को, जीवन की कठिनाई को दर्शाता है। हालांकि काले रंग को सामान्य जीवन में नकारात्मक माना जाता है, लेकिन आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत यहीं से होती है। ये रंग तभी ज्यादा प्रयोग करना चाहिए जब आपका जीवन सामान्य गति से चल रहा हो। अगर आप जिंदगी के बुरे दौर से गुजर रहे हो, कठिन समय से गुजर रहे हो, तो काले रंग का ज्यादा प्रयोग मत करिए। जिनके जीवन में संघर्ष ज्यादा है, हर काम में ज्यादा बाधा आती है, हर काम में ज्यादा रुकावट आती है, उन्हें भूल कर भी काले रंग का ज्यादा प्रयोग अपने जीवन में नहीं करना चाहिए।
0: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक राशिफल क्या है।
1: मकर राशि, स्वास्थ्य की स्थिति आपकी बेहतर होती दिख रही है। करियर में सफलता मिलेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, अनावश्यक तनाव ना पालें, वाद विवाद से बचाव करें, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। मीन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा, रिश्तों में थोड़ी समस्या हो सकती है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और आज का दूसरा सवाल भी ले लेते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को याद दिला दूं कि अगर आपके जीवन में कोई दुख तकलीफ है, कोई परेशानी है जिसका समाधान आप पंडित जी से जानना चाहते हैं तो ये बिल्कुल संभव है। टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हमारी ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है, इस ईमेल आईडी पर आप हमें अपने प्रश्न लिख करके भेज सकते हैं। तो चलिए पंडित जी से ही जान लेते हैं कि आज का अगला यानी कि दूसरा सवाल वो किसका ले रहे हैं।
1: जी, अगला प्रश्न सुनील कुमार ने हमें लिखा है और सुनील कुमार जी हमें देहरादून से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 3 फरवरी 1969। जन्म का समय सुबह के 6:30। जन्म का स्थान है सहारनपुर। ये कह रहे हैं कि मैंने अपनी प्रॉपर्टी अभी अभी बेच दी है और मैं देहरादून शिफ्ट कर गया हूँ। यहाँ पे मैंने अपना एक व्यापार शुरू किया है और अब मैं यहाँ मकान बनवाना चाहता हूँ, लेकिन काफी समय से प्रयास करने के बाद भी संपत्ति का लाभ नहीं हो पा रहा है, कोई रास्ता नहीं बन पा रहा है, तो अपनी प्रॉपर्टी का फायदा मुझे कब तक होगा। सुनील जी, सबसे पहले मैं कहूँगा कि प्रॉपर्टी बनवाने में जल्दबाजी मत करिए, अभी थोड़ा इंतजार करिए। बुद्धिमानी ये कहती है कि 1 साल रुकिए, जून 2027 के बाद कोई बना बनाया मकान या बना बनाया फ्लैट खरीदिएगा। अभी अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने पर ध्यान दें तो वो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। दूसरी बात, अभी अगले 1 साल तक थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ध्यान देंगे, सेहत के मामले में किसी तरह की लापरवाही नहीं करेंगे। आपका व्यापार अच्छा हो, आपको संपत्ति का लाभ हो, आप स्वस्थ रहें, इसके लिए एक मूंगा बनवा के पहन लें, 8-10 रत्ती का मूंगा, तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, मंगलवार को सवेरे एक मूंगा पहने, सुबह और शाम 1-1 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपको लाभ होगा।
0: जिनका जन्मदिन 6 जून को है, आप सभी को हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। तो चलिए बिना देर किए पंडित जी से जान लेते हैं कि आप सभी का आने वाला साल कैसा रहने वाला है।
1: जिन लोगों का जन्मदिन 6 जून को है उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं।

0: करेंगे पूरे साल भर माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: तो चलिए पंडित जी से जानते हैं कि आखिरकार आज की जिज्ञासा क्या है और उस जिज्ञासा का समाधान क्या है।
0: आज की जिज्ञासा है कि क्या रात को सोते समय जो आप रत्नों की अंगूठियां पहनते हैं वो निकाल देनी चाहिए। देखिए रत्न की अंगूठी अगर आप पहनते हैं एक बार, पुखराज पहना, नीलम पहना, माणिक पहना, ओपल पहना, तो बार बार इसको निकालना नहीं चाहिए। अगर एक बार आपने निकाला और 24 घंटे तक नहीं पहना, 24 घंटे का गैप हो गया, तो उसे फिर सही समय पर सही दिन पहनना चाहिए। लेकिन जैसे आपने घंटे भर के लिए निकाला, कोई चेकअप कराना है, कोई जांच करानी है, तो एक घंटे बाद फिर आप पहन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपने आज सुबह निकाला, कल सुबह तक भूले रहे, 24 घंटा बीत गया, तो 24 घंटा अगर बीत गया तब आपको उस दिन का इंतजार करना होगा, सही दिन पर सही समय में दोबारा धारण करेंगे।
1: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जानते हैं कि 6 जून 2026 यानी कि दिन शनिवार का शुभ पहर कौन सा है।
0: दिनांक 6 जून दिन शनिवार, शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 के बीच में। इस समय में 3 हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। आपके काम में जो रुकावट चली आ रही है, जो बाधा चली आ रही है, वो बाधा दूर होगी।
1: और अब पंडित जी से जान लेते हैं कि आज की भाग्यशाली राशि यानी कि आज का गुड लक राशि कौन सी है।
0: हम आपको बता रहे हैं कि जीवन को बेहतर बनाने के लिए और आगे बढ़ने के लिए अलग अलग राशि के लोग क्या उपाय करें। आज की गुड लक राशि है मीन। जीवन की बेहतरी के लिए सूर्य देव की नियमित उपासना करें, सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं कम से कम, और नियमित रूप से गरीबों को, निर्धनों को अन्न का दान करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: और अब कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं जहां हम पंडित जी से जानेंगे कि आज का महाउपाय क्या है।
0: अगर आपको क्रोध ज्यादा आता हो, आप अपने क्रोध पर कंट्रोल नहीं कर पाते हो, उस चक्कर में चीजें बिगड़ जाती हो, तो क्या करेंगे, सोमवार को थोड़े से चावल ले लें, दाना उसका एक एक देख लें, टूटा हुआ दाना नहीं होना चाहिए, बिना टूटे हुए थोड़े से चावल के दाने ले लें, इन्हीं चावल की दानों की खीर बनाइए और भगवान शिव को अर्पित करके सोमवार की शाम को प्रसाद के रूप में ग्रहण करिए।
1: पंडित जी हमें तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: धन्यवाद।
1: तो आज के लिए हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।
2: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars, NSYNC, and Britney Spears. Or rock artists, like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.

नमस्कार, मैं हूं आपकी साथ गुप्ता साहिल देव। जीएनटी स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। तो जीएनटी स्पेशल में आज बात ऋतिक रोशन के उस रूप की जिसकी अब फैंस ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ये रूप आपके सामने है। ऋतिक रोशन के लुक्स की वजह से फैंस उन्हें ग्रीक गॉड कहते हैं, ये तो आप जानते हैं। और अब रियल लाइफ के ये ग्रीक गॉड रियल लाइफ यानी फिल्मी पर्दे पर भगवान की भूमिका निभाते हुए नजर आ सकते हैं। चर्चा तो ये है कि महावतार नरसिम्हा बनाने वाले डायरेक्टर अश्विन कुमार महादेव पर आधारित एक फिल्म पर काम कर रहे हैं और भगवान शिव का किरदार निभाने के लिए उनकी पहली पसंद है ऋतिक रोशन। यानी कभी बड़े पर्दे पर सुपर हीरो कृष का रोल निभाने वाले ऋतिक अब जल्द ही महादेव के सुपर अवतार में सिल्वर स्क्रीन पर हम सबको नजर आ सकते हैं। ये बात जब से छिड़ी है ऋतिक के फैंस में खासी एक्साइटमेंट है, क्योंकि वाकई ऋतिक को महादेव के रोल में देखना एक अलग एक्सपीरियंस हम सबके लिए हो सकता है।

0: स्टंटिंग और अंदाज ऐसा कि दिल जीत। सुपर हीरो के अवतार से लेकर ऐतिहासिक किरदार तक,
1: आप अपने मायके वापस तशरीफ ले।
2: खामोश मत रहना।
0: इंटरनेशनल कॉन आर्टिस्ट से लेकर देसी हीरो विजय दीनानाथ चौहान तक, बरसों से अलग अलग रोल्स में फैंस का दिल जीतते आए हैं ऋतिक रोशन। मस्कुलर फिजिक, परफेक्ट जॉ लाइन, किलर लुक्स, शानदार स्क्रीन प्रेजेंस और जोरदार डांस ने करोड़ों चाहने वालों को उनका दीवाना बना रखा है।

0: उनके लुक्स के लिए दुनिया उन्हें बॉलीवुड का ग्रीक गॉड कहा करती है। और अब बॉलीवुड का ये ग्रीक गॉड पर्दे पर असल में गॉड यानी भगवान का किरदार निभाता नजर आ सकता है। खबर है कि महाअवतार नरसिम्हा फिल्म बनाने वाले डायरेक्टर अश्विन कुमार ऋतिक को लेकर एक माइथोलॉजिकल स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं। चर्चाएं गर्भ है कि अश्विन कुमार एक ऐसी भव्य पौराणिक फिल्म पर काम कर रहे हैं जो भगवान शिव पर केंद्रित होगी। इस फिल्म के केंद्र में वो रूप होंगे जो पुरुष और प्रकृति यानी सृजन और विध्वंस दोनों का संतुलन है। बताया जा रहा है कि अश्विनी कुमार की इस फिल्म में भगवान शिव के नटराज और अर्ध नारीश्वर रूप पर फोकस होगा। पर इन दोनों महाकिरदारों के लिए अश्विन की नजर ऋतिक रोशन पर लंबे अरसे से टिकी हुई है। पिछले साल महावतार नरसिम्हा की रिलीज के समय डायरेक्टर अश्विन कुमार ने इंडिया टुडे को दिए इंटरव्यू में इस बात का जिक्र भी किया था।
1: Demigod personified. When look, if you look at his structure, and he is a very good mover and is a dancer. So I think him playing some sort of a fantastical character, apart from the film that he does, is a part of his career. I think he should. I think I would want to see him in that kind of a fantastical role.
2: What would be that fantastic?
1: Probably as the Nataraj, a dancer. A dancer who would create or destroy cosmically.
2: Yeah. Wow, yeah. That's amazing. Hope people are listening to this and something comes up. Or you make one where we.
1: Yeah, perhaps yes. If by the mercy of Lord Shiva and grace of his, yes.
0: ऋतिक का शानदार बॉडी स्ट्रक्चर और उनके ग्रेसफुल मूव्स इन दोनों किरदारों के लिए उन्हें बिल्कुल परफेक्ट बनाते हैं। हालांकि अभी फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम हो रहा है और ये बेहद शुरुआती दौर में है, लेकिन चर्चाओं का बाजार गर्म है। खबर है कि अपने इस प्रोजेक्ट को लेकर अश्विन कुमार ने कुछ दिन पहले ही ऋतिक रोशन से मुलाकात की है और ऋतिक रोशन को उन्होंने इस फिल्म का नरेशन भी दिया है। सूत्रों की माने तो ऋतिक को फिल्म का अनोखा कॉन्सेप्ट बेहद पसंद आया है।
3: आज की जो वायरल न्यूज है उससे ये पता चल रहा है कि ऋतिक रोशन हमको बहुत ही जल्द एक नए अवतार में नजर आएंगे। ये अवतार में जिसकी बात कर रही हूँ वो है अर्ध नारेश्वर का, जो वो बहुत ही जल्द प्ले करते हुए नजर आ सकते हैं। बिकॉज जो डायरेक्टर है महाअवतार नरसिम्हा के अश्विन कुमार ने ये स्क्रिप्ट ऋतिक के पास ले गए और ऐसा कहा जा रहा है कि ऋतिक को ये स्क्रिप्ट बहुत पसंद भी आई है और चांसेस है कि ऋतिक ये किरदार प्ले कर सकते हैं। और यही नहीं, ये एक्चुअली न्यूज हमसे ही अश्विन कुमार ने बहुत एक साल पहले न्यूज ब्रेक की थी कि ही इज इंटरेस्टेड टू वर्क विथ ऋतिक रोशन और वो उनको अर्ध नारेश्वर के रूप में दिखते हैं। तो ये बहुत एक्साइटिंग खबर है ऋतिक के फैंस के लिए। और हमने महा अवतार नरसिम्हा देखा ही है, वो एक विजुअल स्पेक्टेकल था और लोगों को बहुत पसंद भी आया था। एंड दिस इज अगेन, हम ऋतिक को बहुत ही अलग अवतार में देखेंगे। उनको हमने बहुत सुपर हीरो रोल्स प्ले करते हुए देखा है, बट दिस विल बी समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग फॉर द फैंस जो उनको बहुत समय से बड़े पर्दे पे देखना चाहते हैं। एंड दिस विल बी अ विजुअल ट्रीट फॉर ऑल ऑफ देम।
0: अभी ये चर्चा चल ही रही थी कि इसी बीच ऋतिक रोशन की ओर से की गई एक सोशल मीडिया पोस्ट ने चर्चा को जरा और हवा दे दी। इस पोस्ट में ऋतिक ने अपना एक पिक्चर शेयर किया है जिसमें वे पेरिस में घूमते नजर आ रहे हैं। फोटो के साथ ऋतिक ने लिखा है, मुझसे अभी पूछा गया कि मैं किस तरह का रोल ढूंढ रहा हूँ। मैंने इसका जवाब सोचा तो मैं खुद हैरान रह गया। आपको फिल्म लक बाय चांस का जफर याद है? बस वैसा ही कुछ अगर मिल जाए तो मैं तुरंत काम करने के लिए तैयार हो जाऊंगा, लेकिन डायरेक्टर्स मुझे सिर्फ गुड गाय के रोल ही देना चाहते हैं। ऋतिक की इस पोस्ट के बाद ये चर्चा और तेज हो गई है कि कहीं गुड गाय रोल से उनका इशारा डायरेक्टर अश्विन कुमार के ऑफर की तरफ तो नहीं है, क्योंकि महादेव से बड़ा गुड गाय भला कौन ही हुआ है और होगा। अगर ऐसा होता है तो ऋतिक जल्द ही पर्दे पर महादेव के रोल में नजर आ सकते हैं। ऋतिक के फैंस उन्हें शिवजी के अवतार में तांडव करते देखने के लिए खासे एक्साइटेड होंगे। वैसे आपको बता दें कि इस समय बॉलीवुड और साउथ फिल्मों के कई ए-लिस्ट स्टार्स अलग अलग मैथोलॉजिकल फिल्मों में काम कर रहे हैं। इनमें सबसे बड़ा और चर्चित नाम है रणवीर कपूर का। संजू और एनिमल जैसी फिल्मों में अपनी वर्सेटैलिटी साबित करने के बाद रणवीर अब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का बेहद शांत और शक्तिशाली किरदार निभाने जा रहे हैं। नितेश तिवारी की भव्य फिल्म रामायणम में रणवीर का ये रूप देखने के लिए फैंस का उत्साह सातवें आसमान पर है।

इसके अलावा धुरंधर के रहमान डकैत यानी अक्षय खन्ना का अगला बड़ा प्रोजेक्ट भी एक ऐसे ही कैरेक्टर से जुड़ा है। अक्षय खन्ना फिल्म महाकाली के जरिए तेलुगु सिनेमा में डेब्यू कर रहे हैं। अक्षय इस फिल्म में असुर गुरु शुक्राचार्य के एक बेहद जटिल और शक्तिशाली अवतार में नजर आने वाले हैं। इस किरदार में स्क्रीन पर एक रहस्यमयी किरदार के कई ग्रे शेड्स नजर आएंगे। तो वहीं डायरेक्टर राजा मौली की अगली फिल्म वाराणसी भी अपने आप में कई पौराणिक किरदारों और संदर्भों को समेटे है। ये एक टाइम ट्रेवल कॉन्सेप्ट पर बनी एक्शन एडवेंचर फिल्म बताई जा रही है, जिसके ट्रेलर में त्रेता युग में घटी घटनाओं और रामायण के संदर्भों को साफ तौर पर देखा जा सकता है। राजा मौली की इस फिल्म में महेश बाबू और प्रियंका चोपड़ा मुख्य किरदार निभा रहे हैं।

0: मैथोलॉजिकल कैरेक्टर निभाने के मामले में न्यू कमर्स भी पीछे नहीं है। चर्चा है कि सैयारा फिल्म से रातों रात छा जाने वाली एक्ट्रेस अनीत पड्डा भी मैडॉक फिल्म्स के लिए मैथोलॉजिकल कैरेक्टर प्ले करती दिख सकती हैं। इस फिल्म का नाम है शक्तिशालिनी, जिसमें अनीता पड्डा दोहरी भूमिका में नजर आएंगी। फिल्म अच्छाई और बुराई के संग्राम से जुड़ी बंगाली लोक कथाओं पर आधारित होगी, जिसमें अनीता देवी माँ से प्रेरित रक्षक यानी शक्ति के किरदार में दिख सकती हैं, तो वहीं दूसरा किरदार शालिनी एक बुरी और दुष्ट ताकत पर आधारित होगा। अब चाहे वो ऋतिक रोशन का नटराज रूप धारण करने की चर्चा हो, रणवीर का राम बनना हो या अक्षय खन्ना का शुक्राचार्य के रूप में आना, साफ है कि मेकर्स अब बड़े सितारों के स्टारडम को इतिहास और पुराणों की अमर गाथाओं के साथ जोड़कर बॉक्स ऑफिस पर नया इतिहास रचने की तैयारी में है। मुंबई से अनीता ब्रिटो के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: अब तक तो रणबीर कपूर की रामायण और राजामौली की वाराणसी का ही इंतजार लोगों का था, लेकिन अब ऋतिक की इस मूवी को लेकर भी बज नजर आ रहा है। एक के बाद एक कई मैथोलॉजिकल फिल्में सिल्वर स्क्रीन पर आने वाली हैं। वैसे देखिए, आस्था से जुड़े हुए विषयों पर बॉलीवुड में ना पहले भी कई बार शानदार फिल्में बनाई गई हैं, जहां सबकी भावनाओं का ख्याल रखते हुए पौराणिक किरदारों को बेहद भव्यता और सम्मान के साथ पर्दे पर दिखाया जाता है, और इन फिल्मों को लोगों का खूब प्यार भी मिला है।
2: भगवान भगवान।

0: यात्री यहाँ आते हैं तीर्थ पे अपने भगवान से मिलने, और उनकी सुविधा हमारा धर्म है।
1: ईश्वर में आस्था, भगवान में विश्वास वो नेमत है जो सदियों की सोच समझ संवेदनाओं की छलनी से छनकर हम तक पहुंची है। कभी वेद पुराण शास्त्र जैसे तमाम ग्रंथों और रचनाओं के जरिए, तो कभी दादी नानी की कहानियों के जरिए पीढ़ी दर पीढ़ी इंसानों को आस्था की ये डोर इतने विश्वास के साथ थमाई जाती है कि ये हमारे व्यक्तित्व में रच बस जाती है। और यही विश्वास जब सिनेमा के पर्दे पर लार्जर देन लाइफ अंदाज में बेहद भव्यता के साथ साकार होता है, लोग उसे हाथों हाथ लेते हैं। बीते सालों में बॉलीवुड की कई फिल्मों ने इस विश्वास को बढ़ाया भी है, संवारा भी है और एक नए रूप में पर्दे पर उतारा भी है।
2: जब तक लोग ऐसे खिलौनों में मानते रहेंगे ना, तब तक हमारा धंधा चलता रहेगा।
3: ये भगवान की मूर्ति है, इसको खिलौना मत बोलिए।
2: अरे भगवान भगवान है ना, वो तुम इंसानों का भ्रम है।
4: तेरे सक्षम में पाप के लिए दंड मिलेगा तुझे, वो स्वयं दंड।
1: 2012 में आई ओ माय गॉड एक ऐसी फिल्म थी। ओ माय गॉड एक ऐसे इंसान की कहानी थी जिसे भगवान में विश्वास नहीं था। इस अविश्वास को विश्वास में बदलने के लिए खुद भगवान ने धरती पर उतरकर घटनाओं का ताना बाना बुना था। बाद में इसका पार्ट 2 भी रिलीज किया गया। अक्षय कुमार ने इस फिल्म के पहले भाग में भगवान कृष्ण तो दूसरे भाग में भगवान शिव का किरदार निभाया था।
5: महाराज तुम तो उल्टी गंगा बहा रहे हो।
6: गंगा कहाँ से बहती है इसके बारे में मुझे मत बताना।
1: कमाल की बात ये थी कि इस फिल्म में भगवान ने एक इंसान का भरोसा जीतने के लिए खुद इंसानियत का रास्ता चुना था। इसी कॉन्सेप्ट पर बनी ओ माय गॉड फिल्म को लोगों ने बेहद पसंद किया था। ये पहली बार था जब किसी फिल्म ने नई पीढ़ी के सामने अध्यात्म के धागों के साथ इंसानियत के धर्म और विज्ञान के लॉजिक को बड़े असरदार तरीके से पिरोने और बुनने की कोशिश की थी।
7: आशीर्वाद नहीं चाहिए, पैसे चाहिए।

0: भगवान अमरेंद्र बाहुबली का रक्त हो तो।
1: लेकिन वही असल दुनिया से परे एक कहानी पर आधारित बाहुबली फिल्म में डायरेक्टर राजा मौली ने सर्वशक्तिमान की सत्ता को बेहद दमदार तरीके से दिखाया था। बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए ईश्वर का आशीर्वाद और साथ कितना जरूरी है, ये फिल्म की कहानी में एक नहीं बल्कि कई मौकों पर दिखाया गया। फिल्म के मुख्य किरदार का नाम ही शिवा रखा गया। बाहुबली में शिवलिंग उठाने और लड़ाई से पहले रक्त से महादेव का अभिषेक करने वाला सीन आज भी लोगों के मन में बसा है।

2016 में रिलीज हुई अजय देवगन की फिल्म शिवाय में भी फिल्म के मुख्य किरदार को महादेव से प्रेरित दिखाया गया था। इस फिल्म में अजय देवगन ने एक शेरदिल पर्वतारोही का किरदार निभाया था। शिवाय की जिंदगी में भगवान शिव के प्रभाव को फिल्म की कहानी में दिखाया गया था। इसी तरह सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म केदारनाथ भी भगवान शिव की महिमा पर आधारित है। इस फिल्म में 2013 की केदारनाथ त्रासदी का जिक्र किया गया है। फिल्म की ज्यादातर शूटिंग केदारनाथ में हुई थी। फिल्म का गाना नमो नमो हे शंकरा आज भी लोगों की जुबान पर है।

0: कि कौन सा सैटेलाइट है जिससे दुनिया भर की जुबानें तू कैच कर लेता है।
1: सर मैं जुबान कैच नहीं करता सर।
2: इसी क्रम में आदित्य पंचोली की फिल्म सैटेलाइट शंकर में भी भगवान शिव के प्रति विश्वास और भक्ति दिखाई गई।
3: सर कहाँ है?
1: बोला जी
0: मुझे तुम्हारा सैनिक शपथ चाहिए सोल्जर।
4: सर मैं सोमवार सुबह बेस पर हाजिरी के लिए मौजूद रहूंगा सर।
2: तो वहीं आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की फिल्म ब्रह्मास्त्र को भी इस लिस्ट में शामिल किया जा सकता है। फिल्म के कई किरदार सनातन धर्म के पौराणिक किरदारों से प्रभावित नजर आते हैं। फिल्म के मुख्य किरदार का नाम ही शिवा रखा गया था, जो दुनिया को बुरी शक्तियों से बचाने के लिए ब्रह्मास्त्र की रक्षा का वचन लेता है। सिर्फ बड़े पर्दे पर ही नहीं बल्कि छोटे पर्दे पर भी धर्म और आस्था से जुड़े धारावाहिकों ने खूब कमाल दिखाया है। रामानंद सागर की रामायण इस लिस्ट में आज कई दशकों बाद भी टॉप पर है। बताया जाता है कि रिलीज होने के समय इस सीरियल की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई थी कि जब ये टीवी पर आता था तो हर जगह सन्नाटा छा जाता था। इस सीरियल ने लोगों के दिलों में अरुण गोविल को राम और दीपिका चिखलिया को सीता के रूप में ऐसा बसाया कि आज भी ये छवि धूमिल नहीं हुई है। इससे इतना तो साफ हो जाता है कि अगर लोगों की भावनाओं और आस्था को उचित सम्मान देकर फिल्में बनाई जाएं, तो न केवल वे सुपरहिट होती हैं, बल्कि लोगों की यादों में हमेशा के लिए रह जाती हैं। यही वजह है कि फैंस ने रामायणम और वाराणसी जैसी फिल्मों से खासी उम्मीद लगा रखी है। और उसी बीच अगर ऋतिक रोशन भी महादेव के रूप में पर्दे पर आ जाते हैं तो फैंस के लिए ये एक शानदार तोहफा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: अब बात फिल्मी फ्राइडे की करते हैं। फिल्मी फ्राइडे पर इस बार एंटरटेनमेंट का ट्रिपल डोज हम सबको देखने को मिला है। एक तरफ नई रिलीज जवानी है तो इश्क होना है और बंदर धमाल मचा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ रामचरण की फिल्म पैडी पहले ही बॉक्स ऑफिस पर अपना दमखम दिखा रही है। फिल्म के ताबड़तोड़ और रिकॉर्ड तोड़ शुरुआत ने इंडस्ट्री में एक नई चर्चा को छेड़ दिया है। रामचरण की फिल्म ने ओपनिंग कलेक्शन के साथ बॉलीवुड की कई ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस लिस्ट में रणवीर सिंह की 30 करोड़ ओपनिंग करने वाली धुरंधर, 40 करोड़ फर्स्ट डे कलेक्शन करने वाली सनी देओल की गदर 2 और 57 करोड़ ओपनिंग अपने नाम करने वाले शाहरुख खान की पठान शामिल हैं। पहले दिन पैडी नेट कलेक्शन प्रीव्यूज शोज के साथ लगभग 70 करोड़ इसका पहुंचा कलेक्शन और वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन 112 करोड़ के नजदीक पहुंच गया है। इन तीनों फिल्मों में सबसे ज्यादा कमाल दिखा रही है फिल्म पैडी। पैडी इस समय बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है। दमदार एक्शन और जोरदार एक्टिंग से भरपूर रामचरण की इस फिल्म ने पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया है। फिल्म की रिकॉर्ड तोड़ शुरुआत ने इंडस्ट्री में एक नई चर्चा को छेड़ दिया है। रामचरण की फिल्म ने ओपनिंग कलेक्शन के साथ बॉलीवुड की कई ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्मों के रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया है।

0: मेगास्टार रामचरण ने बॉक्स ऑफिस पर तूफान ला दिया है। उनकी फिल्म पेडी ने रिलीज के पहले दिन ही धमाल मचा दिया। फिल्म को लेकर फैंस में भारी उत्साह है। आलम ये बना हुआ है कि फैंस थिएटर के अंदर हो या बाहर, जश्न मनाते नजर आ रहे हैं। कहीं ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया गया तो कहीं दर्शक सीटियां और ताली बजाते दिखे। ये ही उत्साह फिल्म के फर्स्ट डे कलेक्शन में भी नजर आया। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म को शानदार रिस्पांस मिल रहा है। तभी तो पेडी ने रिलीज के पहले दिन ही 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। शुरुआती रिपोर्ट्स बता रही हैं कि फिल्म ने पहले दिन भारत में नेट कलेक्शन के तौर पर 69 करोड़ 50 लाख रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 112 करोड़ 49 लाख रुपए से ऊपर पहुंच गया, जो किसी भी बड़ी फिल्म के लिए शानदार शुरुआत मानी जा रही है। इतना ही नहीं, रामचरण की फिल्म ने ओपनिंग कलेक्शन के साथ बॉलीवुड की कई ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्मों के रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। इस लिस्ट में रणवीर सिंह की 30 करोड़ ओपनिंग करने वाली धुरंधर, 40 करोड़ फर्स्ट डे कलेक्शन करने वाली सनी देओल की गदर 2 और 57 करोड़ की ओपनिंग अपने नाम करने वाली शाहरुख खान की पठान भी शामिल है। इन आंकड़ों से साफ है कि फिल्म का क्रेज न सिर्फ दक्षिण भारत में है बल्कि हिंदी बेल्ट में भी देखने को मिल रहा है। रामचरण और जानवी कपूर की पेडी 5 भाषाओं में सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। सबसे ज्यादा कलेक्शन तेलुगु भाषा में हासिल हुआ, जो 47 करोड़ 20 लाख रुपए रहा। इसके बाद हिंदी में 3 करोड़ की कमाई हुई, जबकि तीसरे नंबर पर तमिल भाषा से 45 लाख की कमाई इस फिल्म ने कर ली है। वहीं चौथे पायदान पर कन्नड़ में 25 लाख का कलेक्शन फिल्म ने किया है। आखिर में मलयाली भाषा में 10 लाख का कलेक्शन फिल्म ने हासिल किया है। पेडी फिल्म ने जानवी कपूर के करियर को भी नई उड़ान दी है। फिल्म में उनके काम को लेकर सोशल मीडिया पर खूब चर्चा है। जानवी फिल्म की सक्सेस के लिए दुआ मांगने तिरुपति मंदिर भी पहुंची थी। 2024 में आई फिल्म देवरा के बाद पेडी जानवी की दूसरी साउथ फिल्म है। फिल्म के रिलीज के बीच वो ईश्वर का आशीर्वाद और फिल्म की हिट होने की मन्नत मांगने तिरुमला पहुंची थी। तब उनका कैजुअल लुक में बालाजी मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने का वीडियो खूब सुर्खियों में रहा। फिल्म में रामचरण और जानवी की केमिस्ट्री भी फैंस को बेहद पसंद आ रही है। असल में ये फिल्म 1980 के दशक के आंध्र प्रदेश की वो कहानी है, जहां एक गांव का नौजवान अपने लोगों को एकजुट करने के लिए क्रिकेट, कुश्ती और दौड़ के मैदान में उतरता है, सम्मान और पहचान की लड़ाई लड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: आप भी अपने वीकेंड को अच्छा बनाइए, क्योंकि इस एंटरटेनमेंट के डोज में आप भी तड़का लगा सकते हैं, क्योंकि आपके पास है ढेरों ऑप्शंस। फिलहाल इजाजत दीजिए, अच्छी खबरें जारी हैं, देखते रहिए जीएनटी।

0: Hey, music lovers. Ready to take your listening to the next level? Upgrade to TuneIn Premium for curated music channels that fit every mood. Listen with less ads so you can keep the music going. So you get more of today's hits. More country roads. Classic rock. Plus, enjoy commercial-free news, ESPN Radio, and more with Premium Upgrade to TuneIn Premium. And start listening now.
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: इस बार का फीफा वर्ल्ड कप शुरू होने जा रहा है 12 जून से, जिसने संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको की सह मेजबानी में ये टूर्नामेंट खेला जाना है। इस बार के विश्व कप में 48 टीमें खेलेंगी। ये वर्ल्ड कप के इतिहास में पहली बार हो रहा है जब 48 टीमों को शामिल किया गया, लेकिन इस बार टूर्नामेंट में खेले जाने वाले कुल 104 मुकाबले कुछ हद तक हॉकी की तरह होंगे, क्योंकि इसमें कुछ हॉकी वाले ही नियम लगाए गए हैं। तो क्या है बदले हुए नियम, आपको बताते हैं।

दिल थाम कर जुनून को एंथम में बदल देने वाली शकीरा का इंतजार कर रही है। कोलंबियाई पॉप स्टार शकीरा फीफा विश्व कप के उद्घाटन समारोह में टूर्नामेंट के ऑफिशियल गाने को प्रेजेंट करने वाली हैं। इसकी रिहर्सल जोर शोर से चल रही है। मैक्सिको सिटी के सबसे बड़े मंच पर जब शकीरा उतरेंगी तो उनका अंदाज कुछ इस तरह का होगा। जून से दुनिया का दिल फुटबॉल की हर एक किक पर धड़केगा। रोमांच इसलिए भी खास होगा क्योंकि इस बार 32 की बजाय 48 टीमें खेलेंगी। तीन देश

0: कर मेजबानी करेंगे और खिताब के लिए 7 की बजाय 8 मैच जीतने होंगे। यही नहीं, पहली दफा मैच के बीच खिलाड़ी इंटरव्यू देंगे। कॉर्नर किक में वीएआर का दखल होगा और फाइनल में भव्य हाफ टाइम शो होगा। इस बार के वर्ल्ड कप में केवल खेल का रोमांच ही नहीं बढ़ेगा बल्कि कुछ नियमों से खेल का अंदाज भी बदलेगा। आमतौर पर फुटबॉल में 45-45 मिनट के दो हाफ होते हैं जिन्हें 15 मिनट का हाफ टाइम ब्रेक अलग करता है, लेकिन इस बार मैच 4 क्वार्टर में बटा हुआ नजर आएगा। मौसम की वजह से हर मैच में दोनों हाफ के बीच जरूरी हाइड्रेशन ब्रेक दिया जाएगा। ये ब्रेक पहले हाफ में लगभग 22वें मिनट और दूसरे हाफ में 67वें मिनट के आसपास होगा। यानी 2026 का फीफा विश्व कप केवल गोल, जीत और ट्रॉफी की कहानी नहीं होगा बल्कि एक नए तरह के स्टार्टअप, सिक्योरिटी और रणनीति के साथ एंटरटेनमेंट का अद्भुत संगम होगा। यही वजह है कि इस बार फीफा वर्ल्ड कप के टिकट्स के लिए मारामारी मची है। कहा तो ये भी जा रहा है कि एक मैच के टिकट्स की कीमत लाखों से करोड़ों तक जा पहुंची है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: Want to hear something funny? Check out Just for Laughs Radio, your destination for all things comedy. Enjoy non-stop stand-up from your favorite comics, plus the ones you haven't discovered yet. Get your daily dose of laughter on Just for Laughs Radio, now on TuneIn.
1: खबरें तो आ रहा है।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे,
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम।
3: गुजरात और दमन के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया विकास का तोहफा। हजीरा में लार्सन एंड ट्यूब्रो की इंडस्ट्रियल फैसिलिटी का जायजा लिया। सूरत को 200 बेड वाले अस्पताल की सौगात दी। चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह। अब तक 30 लाख से ज्यादा भक्तों ने दर्शन किए। केदारनाथ पहुंचने वालों का आंकड़ा 11 लाख के पार। पर्यावरण दिवस के मौके पर दुनिया भर में पर्यावरण संरक्षण का संदेश। सूरत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगाया एक पेड़ मां के नाम। लोगों से वृक्षारोपण की अपील की। भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर शानदार खबर। वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% रही जीडीपी ग्रोथ। जनवरी से मार्च की तिमाही में 7.8% की दर से हुई वृद्धि। नहीं बदलेगी आपके लोन की ईएमआई। आरबीआई ने रेपो रेट 5.25% रखी बरकरार। विदेशी निवेशकों को लुभाने के लिए भी उठाए कदम।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
3: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां और झूठे दावे बिजली की रफ्तार से फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है, कभी पुरानी तस्वीर को नई साजिश का रंग देकर पेश किया जाता है और लोग बिना जांचे परखे इन्हें सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टीवी की स्क्रीन तक सीमित नहीं है। यहां हर किसी के हाथ में कैमरा है और हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नहीं बताकर परोसी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कोसों दूर लगे। नतीजा ये होता है कि लोग बिना सोचे समझे, बिना जांचे परखे इन्हें सच मानकर शेयर कर देते हैं और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं। जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी। तो आज फैक्ट चेक में सबसे पहले बात करेंगे सोशल मीडिया पर छाए उस वीडियो की जिसके जरिए ये दावा किया जा रहा है कि बंगाल बांग्लादेश बॉर्डर पर तार लगाने का विरोध किया गया। बांग्लादेश के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं लोग, लेकिन बीएसएफ

0: एक्शन मोड में है। क्या है वायरल वीडियो की सच्चाई आगे बताएंगे। अगली खबर होगी उस वायरल तस्वीर से जुड़ी हुई जिसके जरिए दावा यह किया जा रहा है कि वीडियो यूपी का है जहां पर एक व्यक्ति को पहले पीटा गया फिर उससे जबरन जय श्री राम बुलवाया गया। इसकी सच्चाई क्या है आगे बताएंगे। शुरुआत करते फैक्ट चेक की।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और
0: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें

0: किया जा रहा है। बांग्लादेश के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन बीएसएफ फुल एक्शन मोड में नजर आ रही है। यूजर्स इसे भारत बांग्लादेश सीमा पर उपजे हालिया तनाव से जोड़कर शेयर कर रहे हैं। क्या है इसकी सच्चाई, देखिए हमारी रिपोर्ट।
1: सोशल मीडिया पर यह वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। वीडियो में सुरक्षाकर्मी प्रदर्शन कर रहे लोगों को काबू करते दिख रहे हैं। कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए ये दावा कर रहे हैं कि बंगाल बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग के कार्य को लेकर कुछ बांग्लादेशी नागरिकों ने प्रदर्शन किया, जिसके बाद वहां बीएसएफ एक्शन मोड में नजर आ रही है। एक इंस्टाग्राम यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, बंगाल बांग्लादेश सीमा पर एक बार फिर तनाव की स्थिति देखने को मिली है। रिपोर्ट्स के अनुसार सीमा क्षेत्र में तारबंदी के कार्य को लेकर कुछ बांग्लादेशी नागरिकों ने विरोध दर्ज करवाया। सीमा सुरक्षा और अवैध घुसपैठ रोकने के उद्देश्य से की जा रही इस प्रक्रिया पर दोनों देशों की एजेंसियां नजर बनाए हुए हैं। हालांकि इस मामले को लेकर विभिन्न पक्षों की ओर से अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। सीमा से जुड़ी हर गतिविधि पर प्रशासन और सुरक्षा बलों की कड़ी निगरानी जारी है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है।
0: दरअसल सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। कुछ लोग वीडियो को शेयर करते हुए दावा यह कर रहे हैं कि बंगाल बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग के कार्य को लेकर कुछ बांग्लादेशी नागरिकों ने प्रदर्शन किया, जिसके बाद वहां बीएसएफ एक्शन मोड में नजर आ रही है, लगातार कार्रवाई की जा रही है। वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने इसकी पड़ताल शुरू की। दावे की सच्चाई जानने के लिए सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान हमारा ध्यान बैकग्राउंड से आ रही आवाजों पर गया। जब हमने इसे ध्यान से सुना तो वो बांग्ला नहीं लग रही थी। अगर पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश बॉर्डर पर हुए प्रदर्शन का ये वीडियो होता तो फिर जाहिर सी बात है कि इसमें बांग्ला में आवाजें सुनाई देती, लेकिन ऐसा था नहीं। इसके अलावा वीडियो में हमें एक और चीज देखने को मिली, अगर ये फेंसिंग का कार्य यहां पर चल रहा था तो फिर यहां कोई तार क्यों नहीं नजर आई, ये समझ से बिल्कुल परे था। इसके अलावा हाल फिलहाल में सर्च के दौरान ऐसी कोई प्रमाणिक रिपोर्ट हमें नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके, लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा, जिसमें हमारा पहला सवाल यही कि वायरल हो रहा वीडियो कब का है और कहां का है। हमारा दूसरा सवाल, कहीं जानबूझकर किसी और घटना से संबंधित वीडियो को नया एंगल देकर वायरल तो नहीं किया जा रहा, सच और झूठ जानिए इस रिपोर्ट में।
1: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उन्हें सर्च किया। इस दौरान हमें एक फेसबुक अकाउंट पर मिला। ये वीडियो 11 फरवरी 2026 को साझा किया गया है। इसके साथ ही यहां बताया गया था कि चुनाव की तैयारियां तेज हो गई, सेना के जवान अभ्यास जारी रखे हुए हैं। चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न करवाने के लिए सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। यहां पर हमें नेपाल हैशटैग देखने को मिला। इसके बाद हमें एक नेपाली फेसबुक अकाउंट पर वायरल वीडियो देखने को मिला। ये पोस्ट 12 फरवरी 2026 को साझा की गई थी। यहाँ जानकारी मिली कि सेना चुनाव की तैयारी के लिए मॉक अभ्यास कर रही है। आगे की पड़ताल में हमें नेपाल के तन्हू जिला पुलिस कार्यालय के फेसबुक अकाउंट पर वायरल वीडियो से संबंधित एक फोटो देखने को मिली। ये पोस्ट 9 फरवरी 2026 को साझा की गई थी। इसमें ये जानकारी दी गई थी कि 21 फरवरी को होने वाले आगामी प्रतिनिधि सभा सदस्य चुनाव के स्वतंत्र, निष्पक्ष और भयमुक्त वातावरण में संपन्न करवाने के उद्देश्य से तन्हू जिला प्रशासन कार्यालय, तन्हू जिला निर्वाचन कार्यालय और तन्हू जिला पुलिस कार्यालय ने नेपाली सेना, सशस्त्र पुलिस बल और राष्ट्रीय अनुसंधान कार्यालय के कार्यालय प्रमुखों की उपस्थिति में मॉडल मतदान और मतदान स्थल पर उत्पन्न होने वाली विभिन्न सुरक्षा चुनौतियों के प्रबंधन से संबंधित समन्वय और संयुक्त परियोजनाओं, संयुक्त अभ्यासों का आयोजन किया गया। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल हो रहा दावा झूठा साबित हुआ। वायरल वीडियो नेपाल में हुई मॉक ड्रिल का है, जिसे भारत का बताकर शेयर किया जा रहा है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
0: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो को धार्मिक एंगल देते हुए यूजर्स ये दावा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भगवा गमछा पहने एक व्यक्ति ने एक धर्म विशेष समुदाय से ताल्लुक रखने वाले व्यक्ति को पहले थप्पड़ मारा और फिर बाद में उसे जय श्री राम बोलने के लिए मजबूर किया। वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है, पड़ताल करती हमारी रिपोर्ट।
2: जय श्री राम बोल,
3: जय श्री राम।

0: सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि भगवा गमछा पहने एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को थप्पड़ मारता है और बाद में उसे जय श्री राम बोलने के लिए मजबूर करता है।
1: जय श्री राम।
0: वीडियो को शेयर करते हुए एक यूजर ने लिखा, मैं एक भारतीय हिंदू लड़की हूं और इस वीडियो को देखकर मुझे खुद पर शर्म आ रही है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है। वीडियो का सच झूठ जाने बगैर इसे धड़ल्ले से वायरल किया जा रहा है। वहीं कुछ यूजर्स इस वीडियो के जरिए कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं।
2: दरअसल सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और इस वीडियो को उत्तर प्रदेश का बताते हुए कुछ यूजर्स ये कह रहे हैं कि ये हिंदू व्यक्ति ने दूसरे समुदाय के ताल्लुक रखने वाले शख्स को पहले थप्पड़ मारा और फिर जय श्री राम बोलने पर मजबूर किया। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर इसी मिलते जुलते दावे के साथ ये वीडियो लगातार शेयर हो रहा है। ऐसे में इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। फैक्ट चेक टीम ने दावे की जांच के लिए सर्च किया लेकिन हाल फिलहाल में ऐसी कोई भी रिपोर्ट हमें नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके, क्योंकि अगर वाकई में उत्तर प्रदेश में इस तरह की कोई भी घटना हुई होती तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर होती और इसके बारे में सर्च के दौरान भी कोई जानकारी हमें नहीं मिली, कोई भी प्रमाणिक रिपोर्ट हमें नहीं मिली, लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा। हमारा पहला सवाल यही कि यह घटना कब की है और कहां की है। हमारा दूसरा सवाल, कहीं किसी पुराने वीडियो को धार्मिक एंगल देकर जानबूझकर इसे वायरल तो नहीं किया जा रहा है। अब देखिए सच और झूठ क्या है।
0: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वीडियो की पड़ताल में जुटी। सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे इंटरनेट पर सर्च किया। इस दौरान हमें 8 नवंबर 2025 को छपी एक न्यूज रिपोर्ट मिली। इसमें दी गई जानकारी के मुताबिक ये घटना हरियाणा के हिसार के कैंप चौक इलाके में घटी थी। रिपोर्ट में ये भी बताया गया था कि रणबीर नाम का एक व्यक्ति नॉनवेज की दुकान पर पहुंचा और दुकानदार पर हमला करने लगा। पीड़ित की पहचान उत्तराखंड निवासी मनु के रूप में हुई थी। सर्च के दौरान हमें एक और रिपोर्ट मिली। 25 नवंबर 2025 को ये रिपोर्ट पब्लिश हुई थी। रिपोर्ट के अनुसार दुकानदार को थप्पड़ मारने के बाद रणबीर ने खुद को बजरंग दल का सदस्य बताया और मनु पर हमला जारी रखा। रिपोर्ट में आगे बताया गया था कि दुकानदार ने बार बार उससे कहा कि वो हिंदू है, इसके बावजूद खुद को बचाने के प्रयास में उसे जय श्री राम के नारे लगाने पड़े। इसके बाद हमने नॉनवेज दुकान के मालिक का पता लगाने की कोशिश की। हमने हिसार के कैंप चौक इलाके में मांसाहारी दुकानों की खोज की और मनु चिकन पकौड़ी नाम की एक दुकान मिली। दुकान की भौगोलिक स्थिति का पता लगाने के बाद हमें दुकान के साइन बोर्ड पर एक फोन नंबर मिला। हालांकि जब हमने कॉल किया तो वो नंबर बंद था। मनु ने अपनी पहचान की पुष्टि करते हुए फैक्ट चेक को बताया कि वो हिंदू है। बातचीत के दौरान उसने कहा कि उस मंगलवार को उन्होंने दुकान सिर्फ सफाई के लिए खोली थी, हालांकि शाम को कुछ ग्राहक आ गए इसलिए उन्होंने जो भी खाना उपलब्ध था वही परोस दिया। मनु के मुताबिक रणवीर अचानक दुकान पर आया और उस पर हमला करने लगा और इसका वीडियो कैमरा में रिकॉर्ड कर लिया। मनु ने उसे बताया कि वो हिंदू है लेकिन रणबीर ने उसकी बात नहीं मानी और उससे धार्मिक नारा लगाने को कहा। बाद में जब वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस ने कार्रवाई की और रणबीर को गिरफ्तार कर लिया। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल दावा झूठा साबित हुआ। वायरल हो रहा वीडियो नवंबर 2025 का है और हरियाणा के हिसार का है और वीडियो में दिख रहे दोनों व्यक्ति हिंदू है। पीड़ित ने इसकी पुष्टि की है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
2: फैक्ट चेक में फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के उस पर आप खुली चलेंगे वायरल दुनिया में दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
4: The weather in Central Ohio just got better, and so should your loan rate. CME Federal Credit Union wants to try to beat your current loan rate by 2% on autos and toys. Plus, enjoy no payments for 90 days on car loans and no payments for 60 days on motorcycles, boats, and more. With car rates as low as 4.9% APR and toy rates starting at 6.5% APR, it's the perfect time to save. Apply today at cmefcu.org. Terms apply. Minimum floor rates 4.99% APR car, 6.5% APR other vehicles. Federally insured by NCUA.
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार
2: धाड़ और चिल्ला फैक्ट चेक के आखिरी सफर का, जहां आपको दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हैं, जिन्हें खूब पसंद किया जा रहा है।
5: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो ने लोगों के दिल को छू लिया है। ये वीडियो न केवल मानवीय संवेदनाओं की मिसाल पेश करता है, बल्कि ये भी दिखाता है कि मुश्किल घड़ी में मदद के लिए आने जाने वाले लोग आज भी समाज में मौजूद हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक सब्जी विक्रेता का ठेला अचानक सड़क पर पलट जाता है। ठेले में रखे आलू और प्याज बड़ी मात्रा में सड़क पर बिखर जाते हैं। कुछ ही पलों में पूरा रास्ता सब्जियों से भर जाता है और ठेला चालक असहाय नजर आने लगता है। उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती अपनी मेहनत से जुटाई गई सब्जियों को दोबारा समेटने की होती है। लेकिन इसके बाद जो सीन सामने आता है वो हर किसी का दिल जीत लेता है। आसपास से गुजर रहे लोग बिना किसी झिझक के मदद के लिए आने लगते हैं। कोई सड़क पर गिरे आलू उठाने लगता है तो कोई प्याज इकट्ठा करने में जुट जाता है। कुछ लोग ठेले को संभालने और उसे सीधा करने में मदद करते हैं, जबकि कुछ लोग बिखरी हुई सब्जियों को वापस ठेले में रखने का काम शुरू कर देते हैं। सबसे खास बात ये रही कि वहाँ मौजूद किसी भी व्यक्ति ने मदद करने से पहले कोई सवाल नहीं पूछा। लोगों के लिए उस समय केवल एक बात मायने रख रही थी कि एक मेहनतकश व्यक्ति परेशानी में है और उसे सहायता की आवश्यकता है। यही सोच इस वीडियो को और अधिक खास बना देती है। ये वीडियो लोगों को खूब पसंद आ रहा है। उसकी मासूमियत और अलग अंदाज ने इंटरनेट का ध्यान खींच लिया है। वीडियो की शुरुआत में एक छोटा बच्चा स्कूल यूनिफॉर्म पहने हुए नजर आता है। उसकी पीठ पर स्कूल बैग टंगा हुआ है, जिससे साफ पता चलता है कि वो पढ़ाई के लिए स्कूल जा रहा है। पहली नजर में यह सीन बिल्कुल नॉर्मल लगता है, क्योंकि रोजाना लाखों बच्चे स्कूल जाते हैं। लेकिन जैसे ही कैमरा थोड़ा आगे बढ़ता है, लोगों की नजर उस खास बात पर पड़ती है जिसने इस वीडियो को वायरल बना दिया है। दरअसल ये बच्चा किसी साइकिल, मोटरसाइकिल या किसी दूसरे सामान्य वाहन पर नहीं, बल्कि एक बकरे की सवारी करते हुए स्कूल जा रहा है। यही अनोखा नजारा लोगों को बेहद पसंद आ रहा है। वीडियो में बच्चा पूरे आत्मविश्वास के साथ बकरे की पीठ पर बैठा दिखाई देता है। उसके हाथ में एक छोटी सी छड़ी भी नजर आती है, जिससे ऐसा लगता है मानो वो अपने इस अनोखे वाहन को कंट्रोल कर रहा हो। सबसे दिलचस्प बात यह है कि बच्चा पूरी तरह सहज दिखाई देता है और आराम से अपने रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। हमारी संस्कृति में बेटियों को लक्ष्मी और साक्षात देवी का रूप माना जाता है, और जब बेटी अपने घर पहुंचती है तो उसका स्वागत कुछ ऐसा होता है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। लोग जमकर इस वीडियो पर कमेंट्स कर रहे हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि पारंपरिक लिबास में एक छोटी बच्ची बेहद क्यूट लग रही है। घर में दाखिल होने से पहले एक थाली में उसके पैर पखारे जाते हैं, माथे पर तिलक लगाया जाता है और आरती उतार कर उसका गृह प्रवेश कराया जाता है। सोशल मीडिया पर यह दिल छू लेने वाला वीडियो खूब वायरल हो रहा है। इसमें एक युवक अपनी पहली सैलरी अपने माता पिता के हाथों में सौंपता नजर आ रहा है। बेटे की पहली कमाई देखकर माँ बाप जिस तरह इमोशनल हुए, उसने इंटरनेट पर हर किसी का दिल जीत लिया। ये वीडियो IIM से ग्रेजुएट हुए एक लड़के का है। MBA करने के बाद जब लड़के की पहली जॉब लगी और पहली सैलरी आई, तो उसने इसे बेहद खास अंदाज में अपने मम्मी पापा को गिफ्ट किया। यूजर्स इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं। वैसे तो इन दिनों सोशल मीडिया पर मेलोडी का खुमार हर किसी के सिर चढ़कर बोल रहा है, लेकिन इस वायरल वीडियो की तो बात ही अलग है। देखिए कैसे 1 रुपए वाली मेलोडी टॉफी ने बुजुर्ग महिला के चेहरे पर मुस्कान ला दी। कहते हैं कि प्यार की कोई उम्र नहीं होती, और ये वीडियो इसी बात को सच साबित कर रहा है। इस खूबसूरत वीडियो में बुजुर्गों के दिलों में फिर से प्यार के रंग भर दिए। वाटर पार्क से जुड़े मजेदार और अनोखे वीडियो इंटरनेट यूजर्स को काफी पसंद आते हैं। कभी कोई व्यक्ति स्लाइड से फिसलते समय अजीब हरकत कर बैठता है, तो कभी किसी के साथ ऐसा मजेदार हादसा हो जाता है कि देखने वाले अपनी हंसी नहीं रोक पाते। इन दिनों भी एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर चर्चा बटोर रहा है। वायरल हो रहे इस वीडियो में एक वाटर पार्क का दिलचस्प नजारा देखने को मिलता है। वीडियो की शुरुआत में एक लड़की बड़ी आरामदायक तरीके से पानी की स्लाइड पर फिसलते हुए नीचे की तरफ आती दिखाई देती है। वो पूरी तरह से राइड के मजे ले रही होती है और उसके चेहरे पर भी उत्साह साफ नजर आता है। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि अगले कुछ सेकंड में उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जो न केवल उसे चौंका देगा बल्कि सोशल मीडिया पर लाखों लोगों का मनोरंजन भी करेगा। जैसे ही लड़की स्लाइड के लास्ट हिस्से की ओर पहुंचती है, तभी पीछे से एक दूसरी लड़की उसी स्लाइड पर बेहद तेज गति से नीचे आती हुई दिखाई देती है। उसकी स्पीड इतनी अधिक होती है कि वो अपने आगे मौजूद लड़की को समय रहते देख नहीं पाती। कुछ ही पलों में दोनों के बीच जोरदार टक्कर हो जाती है। टक्कर इतनी अचानक होती है कि दोनों लड़कियां अपना बैलेंस खो बैठती हैं और सीधे पानी में जा गिरती हैं। ये पूरा दृश्य इतना अचानक होता है कि वहां मौजूद लोग भी कुछ क्षणों के लिए हैरान हो जाते हैं। हालांकि किसी को गंभीर चोट नहीं लगती। आप किसी जंगल सफारी पर गए हों और आपकी गाड़ी के ठीक बगल में एक खूंखार बब्बर शेर बैठा हो, तभी अचानक कुछ लोग आराम से उसके बगल से पैदल और बाइक पर गुजरने लगे, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? यकीनन ये नजारा किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी है। लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि सफारी गाड़ी में बैठा एक पर्यटक वीडियो बना रहा है, तभी सड़क पर एक के बाद एक बाइक सवार गुजरते हैं। हैरान करने वाला मोड़ तब आता है जब कैमरा थोड़ा घूमता है और सड़क के बीच एक विशालकाय शेर बैठा दिखाई देता है। हद तो तब हो गई जब बाइकर्स के साथ साथ एक शख्स बड़े आराम से पैदल ही शेर के पास से गुजर जाता है, मानो वहाँ कोई शेर नहीं बल्कि कोई बिल्ली बैठी हो। इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात यह है कि शेर भी उन्हें देखकर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता और शांति से बैठा रहता है। सोशल मीडिया पर वायरल ये वीडियो लोगों का ध्यान खींच रहा है, जिसने फुटबॉल मैच को ही यादगार बना दिया। इस वीडियो को देखकर लोग सिर्फ मुस्कुरा ही नहीं रहे बल्कि इसे इंटरनेट का सबसे क्यूट फुटबॉल वीडियो भी बता रहे हैं। दरअसल एक फुटबॉल मैच के दौरान ऐसा मजेदार नजारा देखने को मिला जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। खिलाड़ी मैदान में पूरी गंभीरता से मैच खेल रहे थे, तभी अचानक एक छोटा सा बछड़ा मैदान में आ गया। शुरुआत में खिलाड़ियों को लगा कि शायद वह थोड़ी देर बाद बाहर चला जाएगा, लेकिन अगले ही पल उसने जो किया उसे देखकर मैदान में मौजूद हर व्यक्ति हंसने लगा। वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसे ही खिलाड़ी फुटबॉल को एक दूसरे की तरफ पास कर रहे थे, वैसे ही वो नन्हा बछड़ा भी पूरी उत्सुकता के साथ गेंद के पीछे दौड़ने लगा। गेंद मैदान के जिस कोने में जाती, बछड़ा भी उसी दिशा में तेजी से भागता दिखाई देता। उसकी मासूम हरकतें और उत्साह देखकर खिलाड़ी भी अपनी हंसी रोक नहीं पाए।
3: गुन्नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
6: Need a good laugh? We know a place. Just for Laughs Radio brings you non-stop stand-up bits by the best comics in the game. From all-timers to rising stars. And the punchline? It's all waiting for you on TuneIn. Head on over to Just for Laughs Radio today. Come.
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है।
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है।
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
3: गुन्नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
2: खबर अयोध्या से, जहां पर 1000 साल पुराने आचार्य मंदिर में 400 साल पुरानी पांडुलिपि मिली है। करीब 5000 की संख्या में ये पांडुलिपियां फारसी, अरबी, उर्दू और कुछ रोमन लिपि में लिखी गई हैं, जिनका अध्ययन किया जाएगा और इसके बाद इन दुर्लभ पांडुलिपियों को अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय में रखा जा सकता है।
11: प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या के गौरवशाली इतिहास को समेटे हुए ये वो दुर्लभ दस्तावेज है जो आने वाले वक्त में लोगों को अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय में देखने को मिल सकता है। ये पांडुलिपियां 12वीं से लेकर 19वीं शताब्दी तक की बताई जा रही हैं, जो अयोध्या के 1000 साल पुराने आचार्य मंदिर से मिली है। इनकी संख्या 5000 के करीब है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि सनातन धर्म के इस बेहद प्राचीन मंदिर में मिली ये पांडुलिपियाँ फारसी, अरबी, उर्दू और कुछ रोमन लिपियों में लिखी गई हैं।
10: ये दंडधावन कुंड आचार्य मंदिर तकरीबन 1000 साल प्राचीन विष्णु प्रकाशाचार्य द्वारा स्थापित यह स्थान है और यहाँ पे जो भी पांडुलिपियाँ मिली हैं वो फारसी में है और आपके अरबी में है, उर्दू में है, कुछ रोमन में है, बाकी उसमें कुछ 12वीं शताब्दी की हैं, 13वीं की भी हैं, कुछ 14वीं 15वीं की हैं और 17वीं शताब्दी की हैं, 19वीं शताब्दी की हैं। तो ऐसी बहुत सारी पांडुलिपियाँ आपके स्थान पे दंडधावन कुंड पे मिली हैं। तकरीबन ये 5000 के आसपास ये जो इनकी संख्या है।
11: आचार्य मंदिर के पुजारी का कहना है कि ज्यादातर पांडुलिपियाँ भोजपत्र की हैं, जिनका जल्दी ही हिंदी में अनुवाद कराया जाएगा, जिसके बाद ही इन दुर्लभ पांडुलिपियों पर लिखे इतिहास से पर्दा उठ सकेगा। हालांकि उन्होंने बताया कि इन पांडुलिपियों पर अयोध्या के मंदिरों, पुराने कुंडों और मंदिरों के लिए दी गई जमीनों का लेखा जोखा हो सकता है।
10: देखिए, ज्यादातर ये जो लिपियां हैं ये कुछ हुक्मनामे हैं और शहंशाह हिंद के तरफ से जो जमीन दी गई स्थान को उसमें है। अयोध्या में जो मंदिर बसाए गए हैं दंडधावन कुंड की तरफ से उनकी है, कुछ अयोध्या को लेकर के जो और चीजें हैं उसकी है। तो तथा कथित कहा जाए तो ये अयोध्या का एक पूरा इतिहास है, प्राचीन इतिहास है। लमसम सारी जो है वो भोजपत्र पे हैं, कुछ है ताम्रपत्र पे थी, तो जब अंग्रेज यहाँ से जाने लगे तो उन्होंने भोजपत्र पे करके और उसको ताम्रपत्र खुद लिखा।
11: दरअसल अयोध्या में भगवान श्री राम से जुड़ी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करने के लिए दुर्लभ पांडुलिपियों का देश भर से संग्रह किया जा रहा है और फिर इन्हें जांच के बाद अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय में रखा जाएगा। लेकिन इस संग्रहालय में सिर्फ उन्हीं पांडुलिपियों को रखा जाएगा जो सिर्फ हाथ से लिखी है और दुर्लभ है।
12: विभिन्न स्थानों पे इस प्रकार की पांडुलिपियां हमें मिली हैं, जैसे लक्ष्मण किला में, रामकथा संग्रहालय में, अंतर्राष्ट्रीय रामायण शोध संस्थान में, गोकुल भवन में और हनुमानगढ़ी में और अन्य स्थानों का भी सर्वेक्षण किया जा रहा है। ये विभिन्न भाषाओं में, कुछ हिंदी में मिली है, कुछ संस्कृत में मिली है, अलग अलग जगहों पे उर्दू में भी मिल रही है, तो हम उन सभी को असेस करके डिजिटाइज करा रहे हैं।
11: बताया जा रहा है कि पांडुलिपियों को इकट्ठा करने की मुहिम के तहत देश के अलग अलग हिस्सों से कई लोग ऐसी दुर्लभ पांडुलिपियों की जानकारी अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय और डायरेक्टर संजीव सिंह को दे चुके हैं। इस पूरे अभियान का मकसद सिर्फ पांडुलिपियों को इकट्ठा करना ही नहीं बल्कि इन्हें वैज्ञानिक तरीके से सुरक्षित रखना भी है। इसीलिए इन्हें डिजिटल रूप में सेव करने की तैयारी है ताकि आने वाले समय में लोग इन्हें आसानी से देख भी सकें और पढ़ भी सकें।
13: इस प्रकल्प में हम लोग दो तरह की बात करेंगे, एक तो पांडुलिपियों का संग्रहण कर रहे हैं, दूसरा उन पांडुलिपियों को जो हमको नहीं मिल पा रही हैं, तो उनका जो है पैसे माइल या टेक्निकल, आजकल बहुत से टेक्निकल डिवाइस के रूप में जैसे कि हम माइक्रोफिल्म बना लेंगे, तो क्या होगा कि आपको एक ही जगह सब चीज मिल जाएगी। तो रेफरेंस के लिए जो संदर्भ है, तो इसलिए युवाओं को ही नहीं, शोधार्थियों के लिए जो राम, राम साहित्य, राम कथा पर शोध कर रहे हैं, उनके लिए अद्भुत केंद्र होने वाला है।
11: इस पूरी पहल के जरिए रामायण की कालातीत विरासत को सुरक्षित कर आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना है। अयोध्या से मयंक शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: इस बार का फीफा वर्ल्ड कप शुरू होने जा रहा है 12 जून से, जिसने संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको की सह मेजबानी में यह टूर्नामेंट खेला जाना है। इस बार के विश्व कप में 48 टीमें खेलेंगी। ये वर्ल्ड कप के इतिहास में पहली बार हो रहा है जब 48 टीमों को शामिल किया गया, लेकिन इस बार टूर्नामेंट में खेले जाने वाले कुल 104 मुकाबले कुछ हद तक हॉकी की तरह होंगे क्योंकि इसमें कुछ हॉकी वाले ही नियम लगाए गए हैं। तो क्या है बदले हुए नियम, आपको बताते हैं।

0: दिल थाम कर जुनून को एंथम में बदल देने वाली शकीरा का इंतजार कर रही है। कोलंबियाई पॉप स्टार शकीरा फीफा विश्व कप के उद्घाटन समारोह में टूर्नामेंट के ऑफिशियल गाने को प्रेजेंट करने वाली हैं। इसकी रिहर्सल जोर शोर से चल रही है। मैक्सिको सिटी के सबसे बड़े मंच पर जब शकीरा उतरेंगी तो उनका अंदाज कुछ इस तरह का होगा। जून से दुनिया का दिल फुटबॉल की हर एक किक पर धड़केगा। रोमांच इसलिए भी खास होगा क्योंकि इस बार 32 की बजाय 48 टीमें खेलेंगी। तीन देश मिलकर मेजबानी करेंगे और खिताब के लिए 7 की बजाय 8 मैच जीतने होंगे। यही नहीं, पहली दफा मैच के बीच खिलाड़ी इंटरव्यू देंगे। कॉर्नर किक में VAR का दखल होगा और फाइनल में भव्य हाफ टाइम शो होगा। इस बार के वर्ल्ड कप में केवल खेल का रोमांच ही नहीं बढ़ेगा बल्कि कुछ नियमों से खेल का अंदाज भी बदलेगा। आम तौर पर फुटबॉल में 45-45 मिनट के दो हाफ होते हैं जिन्हें 15 मिनट का हाफ टाइम ब्रेक अलग करता है, लेकिन इस बार मैच 4 क्वार्टर में बटा हुआ नजर आएगा। मौसम की वजह से हर मैच में दोनों हाफ के बीच जरूरी हाइड्रेशन ब्रेक दिया जाएगा। ये ब्रेक पहले हाफ में लगभग 22वें मिनट और दूसरे हाफ में 67वें मिनट के आसपास होगा। यानी 2026 का फीफा विश्व कप केवल गोल, जीत और ट्रॉफी की कहानी नहीं होगा बल्कि एक नए तरह के स्टार्टअप, सिक्योरिटी और रणनीति के साथ एंटरटेनमेंट का अद्भुत संगम होगा। यही वजह है कि इस बार फीफा वर्ल्ड कप के टिकट्स के लिए मारामारी मची है। कहा तो ये भी जा रहा है कि एक मैच के टिकट्स की कीमत लाखों से करोड़ों तक जा पहुंची है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: कौन सा रंग अगर आपको नुकसान करे तो दुर्घटनाएं करवा सकता है? कौन सा रंग बीमारी से लड़ने और निकलने में सहायता करता है? कौन सा रंग जीवन में शुभ कार्य करवा देता है? अलग अलग रंगों के प्रयोग से कैसे चमकाएं किस्मत, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
3: गुजरात और दमन के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया विकास का तोहफा। हजीरा में लार्सन एंड ट्यूब्रो की इंडस्ट्रियल फैसिलिटी का जायजा लिया। सूरत को 200 बेड वाले अस्पताल की सौगात दी। चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह। अब तक 30 लाख से ज्यादा भक्तों ने दर्शन किए। केदारनाथ पहुंचने वालों का आंकड़ा 11 लाख के पार। पर्यावरण दिवस के मौके पर दुनिया भर में पर्यावरण संरक्षण का संदेश। सूरत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगाया एक पेड़ मां के नाम। लोगों से वृक्षारोपण की अपील की। भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर शानदार खबर। वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% रही GDP ग्रोथ। जनवरी से मार्च की तिमाही में 7.8% की दर से हुई वृद्धि। नहीं बदलेगी आपके लोन की EMI। RBI ने रेपो रेट 5.25% रखी बरकरार। विदेशी निवेशकों को लुभाने के लिए भी उठाए कदम।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। जीएनटी स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। तो जीएनटी स्पेशल में आज बात ऋतिक रोशन के उस रूप की जिसकी अब फैंस ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ये रूप आपके सामने है। ऋतिक रोशन के लुक्स की वजह से फैंस उन्हें ग्रीक गॉड कहते हैं, ये तो आप जानते हैं। और अब रियल लाइफ के ये ग्रीक गॉड रियल लाइफ यानी फिल्मी पर्दे पर भगवान की भूमिका निभाते हुए नजर आ सकते हैं। चर्चा तो ये है कि महावतार नरसिम्हा बनाने वाले डायरेक्टर अश्विन कुमार महादेव पर आधारित एक फिल्म पर काम कर रहे हैं और भगवान शिव का किरदार निभाने के लिए उनकी पहली पसंद है ऋतिक रोशन। यानी कभी बड़े पर्दे पर सुपर हीरो कृष का रोल निभाने वाले ऋतिक अब जल्द ही महादेव के सुपर अवतार में सिल्वर स्क्रीन पर हम सबको नजर आ सकते हैं। ये बात जब से छिड़ी है ऋतिक के फैंस में खासी एक्साइटमेंट है, क्योंकि वाकई ऋतिक को महादेव के रोल में देखना एक अलग एक्सपीरियंस हम सबके लिए हो सकता है।

0: Tengo randaj aisa ki dil jeet gaya. सुपर हीरो के अवतार से लेकर ऐतिहासिक किरदार तक,
1: आप अपने मायके वापस तशरीफ ले।
2: खामोश मत रहना।
0: इंटरनेशनल कॉन आर्टिस्ट से लेकर देसी हीरो विजय दीनानाथ चौहान तक, बरसों से अलग अलग रोल्स में फैंस का दिल जीतते आए हैं ऋतिक रोशन। मस्कुलर फिजिक, परफेक्ट जॉ लाइन, किलर लुक्स, शानदार स्क्रीन प्रेजेंस और जोरदार डांस ने करोड़ों चाहने वालों को उनका दीवाना बना रखा है।

0: उनके लुक्स के लिए दुनिया उन्हें बॉलीवुड का ग्रीक गॉड कहा करती है। और अब बॉलीवुड का ये ग्रीक गॉड पर्दे पर असल में गॉड यानी भगवान का किरदार निभाता नजर आ सकता है। खबर है कि महाअवतार नरसिम्हा फिल्म बनाने वाले डायरेक्टर अश्विन कुमार ऋतिक को लेकर एक माइथोलॉजिकल स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं। चर्चाएं गर्म है कि अश्विन कुमार एक ऐसी भव्य पौराणिक फिल्म पर काम कर रहे हैं जो भगवान शिव पर केंद्रित होगी। इस फिल्म के केंद्र में वो रूप होंगे जो पुरुष और प्रकृति यानी सृजन और विध्वंस दोनों का संतुलन है। बताया जा रहा है कि अश्विनी कुमार की इस फिल्म में भगवान शिव के नटराज और अर्ध नारीश्वर रूप पर फोकस होगा। पर इन दोनों महाकिरदारों के लिए अश्विन की नजर ऋतिक रोशन पर लंबे अरसे से टिकी हुई है। पिछले साल महावतार नरसिम्हा की रिलीज के समय डायरेक्टर अश्विन कुमार ने इंडिया टुडे को दिए इंटरव्यू में इस बात का जिक्र भी किया था।
1: Demigod personified, and look if you look at his structure and you, and he's a very good mover and is a dancer. So I think him playing some sort of a fantastical character, apart from the film that he does, is a part of his career. I think he should. I think I would want to see him in that kind of a fantastical role.
2: What would be that fantastic?
1: Probably as the Nataraj, a dancer.
2: A
1: dancer who would create or destroy cosmically.
2: Wow, yeah. That's amazing. Hope people are listening to this and something comes up. Or you make one where we.
1: Yeah, perhaps yes. If by the mercy of Lord Shiva and grace of his, yes.
0: ऋतिक का शानदार बॉडी स्ट्रक्चर और उनके ग्रेसफुल मूव्स इन दोनों किरदारों के लिए उन्हें बिल्कुल परफेक्ट बनाते हैं। हालांकि अभी फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम हो रहा है और ये बेहद शुरुआती दौर में है, लेकिन चर्चाओं का बाजार गर्म है। खबर है कि अपने इस प्रोजेक्ट को लेकर अश्विन कुमार ने कुछ दिन पहले ही ऋतिक रोशन से मुलाकात की है और ऋतिक रोशन को उन्होंने इस फिल्म का नरेशन भी दिया है। सूत्रों की माने तो ऋतिक को फिल्म का अनोखा कॉन्सेप्ट बेहद पसंद आया है।
3: आज की जो वायरल न्यूज है उससे ये पता चल रहा है कि ऋतिक रोशन हमको बहुत ही जल्द एक नए अवतार में नजर आएंगे। ये अवतार में जिसकी बात कर रही हूँ वो है अर्ध नारेश्वर का, जो वो बहुत ही जल्द प्ले करते हुए नजर आ सकते हैं, बिकॉज जो डायरेक्टर है महाअवतार नरसिम्हा के अश्विन कुमार ने ये स्क्रिप्ट ऋतिक के पास ले गए और ऐसा कहा जा रहा है कि ऋतिक को ये स्क्रिप्ट बहुत पसंद भी आई है और चांसेस है कि ऋतिक ये किरदार प्ले कर सकते हैं। और यही नहीं, ये एक्चुअली न्यूज हमसे ही अश्विन कुमार ने बहुत एक साल पहले न्यूज ब्रेक की थी कि ही इज इंटरेस्टेड टू वर्क विथ ऋतिक रोशन और वो उनको अर्ध नारेश्वर के रूप में दिखते हैं। तो ये बहुत एक्साइटिंग खबर है ऋतिक के फैंस के लिए और हमने महा अवतार नरसिम्हा देखा ही है, वो एक विजुअल स्पेक्टेकल था और लोगों को बहुत पसंद भी आया था। एंड दिस इज अगेन, हम ऋतिक को बहुत ही अलग अवतार में देखेंगे। उनको हमने बहुत सुपर हीरो रोल्स प्ले करते हुए देखा है, बट दिस विल बी समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग फॉर द फैंस जो उनको बहुत समय से बड़े पर्दे पे देखना चाहते हैं। एंड दिस विल बी अ विजुअल ट्रीट फॉर ऑल ऑफ देम।
0: अभी ये चर्चा चल ही रही थी कि इसी बीच ऋतिक रोशन की ओर से की गई एक सोशल मीडिया पोस्ट ने चर्चा को जरा और हवा दे दी। इस पोस्ट में ऋतिक ने अपना एक पिक्चर शेयर किया है जिसमें वे पेरिस में घूमते नजर आ रहे हैं। फोटो के साथ ऋतिक ने लिखा है, मुझसे अभी पूछा गया कि मैं किस तरह का रोल ढूंढ रहा हूँ। मैंने इसका जवाब सोचा तो मैं खुद हैरान रह गया। आपको फिल्म लक बाय चांस का जफर याद है? बस वैसा ही कुछ अगर मिल जाए तो मैं तुरंत काम करने के लिए तैयार हो जाऊंगा, लेकिन डायरेक्टर्स मुझे सिर्फ गुड गाय के रोल ही देना चाहते हैं। ऋतिक की इस पोस्ट के बाद ये चर्चा और तेज हो गई है कि कहीं गुड गाय रोल से उनका इशारा डायरेक्टर अश्विन कुमार के ऑफर की तरफ तो नहीं है, क्योंकि महादेव से बड़ा गुड गाय भला कौन ही हुआ है और होगा। अगर ऐसा होता है तो ऋतिक जल्द ही पर्दे पर महादेव के रोल में नजर आ सकते हैं। ऋतिक के फैंस उन्हें शिवजी के अवतार में तांडव करते देखने के लिए खासे एक्साइटेड होंगे। वैसे आपको बता दें कि इस समय बॉलीवुड और साउथ फिल्मों के कई ए-लिस्ट स्टार्स अलग अलग मैथोलॉजिकल फिल्मों में काम कर रहे हैं। इनमें सबसे बड़ा और चर्चित नाम है रणवीर कपूर का। संजू और एनिमल जैसी फिल्मों में अपनी वर्सेटैलिटी साबित करने के बाद रणवीर अब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का बेहद शांत और शक्तिशाली किरदार निभाने जा रहे हैं। नितेश तिवारी की भव्य फिल्म रामायणम में रणवीर का ये रूप देखने के लिए फैंस का उत्साह सातवें आसमान पर है।

इसके अलावा धुरंधर के रहमान डकैत यानी अक्षय खन्ना का अगला बड़ा प्रोजेक्ट भी एक ऐसे ही कैरेक्टर से जुड़ा है। अक्षय खन्ना फिल्म महाकाली के जरिए तेलुगु सिनेमा में डेब्यू कर रहे हैं। अक्षय इस फिल्म में असुर गुरु शुक्राचार्य के एक बेहद जटिल और शक्तिशाली अवतार में नजर आने वाले हैं। इस किरदार में स्क्रीन पर एक रहस्यमयी किरदार के कई ग्रे शेड्स नजर आएंगे। तो वहीं डायरेक्टर राजा मौली की अगली फिल्म वाराणसी भी अपने आप में कई पौराणिक किरदारों और संदर्भों को समेटे है। ये एक टाइम ट्रेवल कॉन्सेप्ट पर बनी एक्शन एडवेंचर फिल्म बताई जा रही है, जिसके ट्रेलर में त्रेता युग में घटी घटनाओं और रामायण के संदर्भों को साफ तौर पर देखा जा सकता है। राजा मौली की इस फिल्म में महेश बाबू और प्रियंका चोपड़ा मुख्य किरदार निभा रहे हैं।

0: मैथोलॉजिकल कैरेक्टर निभाने के मामले में न्यूकमर्स भी पीछे नहीं हैं। चर्चा है कि सैयारा फिल्म से रातों रात छा जाने वाली एक्ट्रेस अनीत फड्डा भी मैडॉक फिल्म्स के लिए मैथोलॉजिकल कैरेक्टर प्ले करती दिख सकती हैं। इस फिल्म का नाम है शक्तिशालिनी, जिसमें अनीता फड्डा दोहरी भूमिका में नजर आएंगी। फिल्म अच्छाई और बुराई के संग्राम से जुड़ी बंगाली लोक कथाओं पर आधारित होगी, जिसमें अनीता देवी माँ से प्रेरित रक्षक यानी शक्ति के किरदार में दिख सकती हैं, तो वहीं दूसरा किरदार शालिनी एक बुरी और दुष्ट ताकत पर आधारित होगा। अब चाहे वो ऋतिक रोशन का नटराज रूप धारण करने की चर्चा हो, रणवीर का राम बनना हो या अक्षय खन्ना का शुक्राचार्य के रूप में आना, साफ है कि मेकर्स अब बड़े सितारों के स्टारडम को इतिहास और पुराणों की अमर गाथाओं के साथ जोड़कर बॉक्स ऑफिस पर नया इतिहास रचने की तैयारी में है। मुंबई से अनीता ब्रिटो के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: अब तक तो रणबीर कपूर की रामायण और राजामौली की वाराणसी का ही इंतजार लोगों का था, लेकिन अब ऋतिक की इस मूवी को लेकर भी बज नजर आ रहा है। एक के बाद एक कई मैथोलॉजिकल फिल्में सिल्वर स्क्रीन पर आने वाली हैं। वैसे देखिए, आस्था से जुड़े हुए विषयों पर बॉलीवुड में ना पहले भी कई बार शानदार फिल्में बनाई गई हैं, जहां सबकी भावनाओं का ख्याल रखते हुए पौराणिक किरदारों को बेहद भव्यता और सम्मान के साथ पर्दे पर दिखाया जाता है, और इन फिल्मों को लोगों का खूब प्यार भी मिला है।
2: भगवान भगवान।

0: यात्री यहाँ आते हैं तीर्थ पे अपने भगवान से मिलने, और उनकी सुविधा हमारा धर्म है।
1: ईश्वर में आस्था, भगवान में विश्वास वो नेमत है जो सदियों की सोच समझ संवेदनाओं की छलनी से छनकर हम तक पहुंची है। कभी वेद पुराण शास्त्र जैसे तमाम ग्रंथों और रचनाओं के जरिए, तो कभी दादी नानी की कहानियों के जरिए, पीढ़ी दर पीढ़ी इंसानों को आस्था की ये डोर इतने विश्वास के साथ थमाई जाती है कि ये हमारे व्यक्तित्व में रच बस जाती है। और यही विश्वास जब सिनेमा के पर्दे पर लार्जर देन लाइफ अंदाज में बेहद भव्यता के साथ साकार होता है, लोग उसे हाथों हाथ लेते हैं। बीते सालों में बॉलीवुड की कई फिल्मों ने इस विश्वास को बढ़ाया भी है, संवारा भी है और एक नए रूप में पर्दे पर उतारा भी है।
2: जब तक लोग ऐसे खिलौनों में मानते रहेंगे ना, तब तक हमारा धंधा चलता रहेगा।
3: ये भगवान की मूर्ति है, इसको खिलौना मत बोलिए।
2: अब ये भगवान भगवान है ना, वो तुम इंसानों का भ्रम है।
4: तेरे सक्षम पाप के लिए दंड मिलेगा तुझे, वो स्वयं दंड।
1: 2012 में आई ओ माय गॉड एक ऐसी फिल्म थी। ओ माय गॉड एक ऐसे इंसान की कहानी थी जिसे भगवान में विश्वास नहीं था। इस अविश्वास को विश्वास में बदलने के लिए खुद भगवान ने धरती पर उतरकर घटनाओं का ताना बाना बुना था। बाद में इसका पार्ट 2 भी रिलीज किया गया। अक्षय कुमार ने इस फिल्म के पहले भाग में भगवान कृष्ण तो दूसरे भाग में भगवान शिव का किरदार निभाया था।
5: महाराज तुम तो उल्टी गंगा बहा रहे हो।
6: गंगा कहाँ से बहती है इसके बारे में मुझे मत बताना।
1: कमाल की बात ये थी कि इस फिल्म में भगवान ने एक इंसान का भरोसा जीतने के लिए खुद इंसानियत का रास्ता चुना था। इसी कॉन्सेप्ट पर बनी ओ माय गॉड फिल्म को लोगों ने बेहद पसंद किया था। ये पहली बार था जब किसी फिल्म ने नई पीढ़ी के सामने अध्यात्म के धागों के साथ इंसानियत के धर्म और विज्ञान के लॉजिक को बड़े असरदार तरीके से पिरोने और बुनने की कोशिश की थी।
7: आशीर्वाद नहीं चाहिए, पैसे चाहिए।

0: भगवान अमरेंद्र बाहुबली का रक्त हो तो।
1: लेकिन नहीं, असल दुनिया से परे एक कहानी पर आधारित बाहुबली फिल्म में डायरेक्टर राजा मौली ने सर्वशक्तिमान की सत्ता को बेहद दमदार तरीके से दिखाया था। बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए ईश्वर का आशीर्वाद और साथ कितना जरूरी है, ये फिल्म की कहानी में एक नहीं बल्कि कई मौकों पर दिखाया गया। फिल्म के मुख्य किरदार का नाम ही शिवा रखा गया। बाहुबली में शिवलिंग उठाने और लड़ाई से पहले रक्त से महादेव का अभिषेक करने वाला सीन आज भी लोगों के मन में बसा है।

2016 में रिलीज हुई अजय देवगन की फिल्म शिवाय में भी फिल्म के मुख्य किरदार को महादेव से प्रेरित दिखाया गया था। इस फिल्म में अजय देवगन ने एक शेरदिल पर्वतारोही का किरदार निभाया था। शिवाय की जिंदगी में भगवान शिव के प्रभाव को फिल्म की कहानी में दिखाया गया था। इसी तरह सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म केदारनाथ भी भगवान शिव की महिमा पर आधारित है। इस फिल्म में 2013 की केदारनाथ त्रासदी का जिक्र किया गया है। फिल्म की ज्यादातर शूटिंग केदारनाथ में हुई थी। फिल्म का गाना नमो नमो हे शंकरा आज भी लोगों की जुबान पर है।

0: एक कौन सा सैटेलाइट है जिससे दुनिया भर की जुबानें तू कैच कर लेता है?
1: सर मैं जुबान कैच नहीं करता सर।
2: इसी क्रम में आदित्य पंचोली की फिल्म सैटेलाइट शंकर में भी भगवान शिव के प्रति विश्वास और भक्ति दिखाई गई।
3: कहाँ है?
1: बोला जी,
3: मुझे तुम्हारा सैनिक शपथ चाहिए सोल्जर।
4: सर मैं सोमवार सुबह बेस पर हाजिरी के लिए मौजूद रहूंगा सर।
2: तो वहीं आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की फिल्म ब्रह्मास्त्र को भी इस लिस्ट में शामिल किया जा सकता है। फिल्म के कई किरदार सनातन धर्म के पौराणिक किरदारों से प्रभावित नजर आते हैं। फिल्म के मुख्य किरदार का नाम ही शिवा रखा गया था, जो दुनिया को बुरी शक्तियों से बचाने के लिए ब्रह्मास्त्र की रक्षा का वचन लेता है। सिर्फ बड़े पर्दे पर ही नहीं बल्कि छोटे पर्दे पर भी धर्म और आस्था से जुड़े धारावाहिकों ने खूब कमाल दिखाया है। रामानंद सागर की रामायण इस लिस्ट में आज कई दशकों बाद भी टॉप पर है। बताया जाता है कि रिलीज होने के समय इस सीरियल की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई थी कि जब ये टीवी पर आता था तो हर जगह सन्नाटा छा जाता था। इस सीरियल ने लोगों के दिलों में अरुण गोविल को राम और दीपिका चिखलिया को सीता के रूप में ऐसा बसाया कि आज भी ये छवि धूमिल नहीं हुई है। इससे इतना तो साफ हो जाता है कि अगर लोगों की भावनाओं और आस्था को उचित सम्मान देकर फिल्में बनाई जाएं, तो न केवल वे सुपरहिट होती हैं, बल्कि लोगों की यादों में हमेशा के लिए रह जाती हैं। यही वजह है कि फैंस ने रामायणम और वाराणसी जैसी फिल्मों से खासी उम्मीद लगा रखी है। और उसी बीच अगर ऋतिक रोशन भी महादेव के रूप में पर्दे पर आ जाते हैं तो फैंस के लिए ये एक शानदार तोहफा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: अब बात फिल्मी फ्राइडे की करते हैं। फिल्मी फ्राइडे पर इस बार एंटरटेनमेंट का ट्रिपल डोज हम सबको देखने को मिला है। एक तरफ नई रिलीज जवानी है तो इश्क होना है और बंदर धमाल मचा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ रामचरण की फिल्म पैडी पहले ही बॉक्स ऑफिस पर अपना दमखम दिखा रही है। फिल्म के ताबड़तोड़ और रिकॉर्ड तोड़ शुरुआत ने इंडस्ट्री में एक नई चर्चा को छेड़ दिया है। रामचरण की फिल्म ने ओपनिंग कलेक्शन के साथ बॉलीवुड की कई ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस लिस्ट में रणवीर सिंह की 30 करोड़ ओपनिंग करने वाली धुरंधर, 40 करोड़ फर्स्ट डे कलेक्शन करने वाली सनी देओल की गदर 2 और 57 करोड़ ओपनिंग अपने नाम करने वाले शाहरुख खान की पठान शामिल हैं। पहले दिन पैडी नेट कलेक्शन प्रीव्यूज शोज के साथ लगभग 70 करोड़ इसका पहुंचा कलेक्शन और वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन 112 करोड़ के नजदीक पहुंच गया है। इन तीनों फिल्मों में सबसे ज्यादा कमाल दिखा रही है फिल्म पैडी। पैडी इस समय बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है। दमदार एक्शन और जोरदार एक्टिंग से भरपूर रामचरण की इस फिल्म ने पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया है। फिल्म की रिकॉर्ड तोड़ शुरुआत ने इंडस्ट्री में एक नई चर्चा को छेड़ दिया है। रामचरण की फिल्म ने ओपनिंग कलेक्शन के साथ बॉलीवुड की कई ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्मों के रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया है।

0: मेगास्टार रामचरण ने बॉक्स ऑफिस पर तूफान ला दिया है। उनकी फिल्म पेडी ने रिलीज के पहले दिन ही धमाल मचा दिया। फिल्म को लेकर फैंस में भारी उत्साह है। आलम ये बना हुआ है कि फैंस थिएटर के अंदर हो या बाहर, जश्न मनाते नजर आ रहे हैं। कहीं ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया गया तो कहीं दर्शक सीटियां और ताली बजाते दिखे। ये ही उत्साह फिल्म के फर्स्ट डे कलेक्शन में भी नजर आया। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म को शानदार रिस्पांस मिल रहा है। तभी तो पेडी ने रिलीज के पहले दिन ही 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। शुरुआती रिपोर्ट्स बता रही हैं कि फिल्म ने पहले दिन भारत में नेट कलेक्शन के तौर पर 69 करोड़ 50 लाख रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 112 करोड़ 49 लाख रुपए से ऊपर पहुंच गया, जो किसी भी बड़ी फिल्म के लिए शानदार शुरुआत मानी जा रही है। इतना ही नहीं, रामचरण की फिल्म ने ओपनिंग कलेक्शन के साथ बॉलीवुड की कई ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्मों के रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। इस लिस्ट में रणवीर सिंह की 30 करोड़ ओपनिंग करने वाली धुरंधर, 40 करोड़ फर्स्ट डे कलेक्शन करने वाली सनी देओल की गदर 2 और 57 करोड़ की ओपनिंग अपने नाम करने वाली शाहरुख खान की पठान भी शामिल है। इन आंकड़ों से साफ है कि फिल्म का क्रेज न सिर्फ दक्षिण भारत में है बल्कि हिंदी बेल्ट में भी देखने को मिल रहा है। रामचरण और जानवी कपूर की पेडी 5 भाषाओं में सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। सबसे ज्यादा कलेक्शन तेलुगु भाषा में हासिल हुआ, जो 47 करोड़ 20 लाख रुपए रहा। इसके बाद हिंदी में 3 करोड़ की कमाई हुई, जबकि तीसरे नंबर पर तमिल भाषा से 45 लाख की कमाई इस फिल्म ने कर ली है। वहीं चौथे पायदान पर कन्नड़ में 25 लाख का कलेक्शन फिल्म ने किया है। आखिर में मलयाली भाषा में 10 लाख का कलेक्शन फिल्म ने हासिल किया है। पेडी फिल्म ने जानवी कपूर के करियर को भी नई उड़ान दी है। फिल्म में उनके काम को लेकर सोशल मीडिया पर खूब चर्चा है। जानवी फिल्म की सक्सेस के लिए दुआ मांगने तिरुपति मंदिर भी पहुंची थी। 2024 में आई फिल्म देवरा के बाद पेडी जानवी की दूसरी साउथ फिल्म है। फिल्म के रिलीज के बीच वो ईश्वर का आशीर्वाद और फिल्म की हिट होने की मन्नत मांगने तिरुमला पहुंची थी। तब उनका कैजुअल लुक में बालाजी मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने का वीडियो खूब सुर्खियों में रहा। फिल्म में रामचरण और जानवी की केमिस्ट्री भी फैंस को बेहद पसंद आ रही है। असल में ये फिल्म 1980 के दशक के आंध्र प्रदेश की वो कहानी है, जहां एक गांव का नौजवान अपने लोगों को एकजुट करने के लिए क्रिकेट, कुश्ती और दौड़ के मैदान में उतरता है, सम्मान और पहचान की लड़ाई लड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: आप भी अपने वीकेंड को अच्छा बनाइए, क्योंकि इस एंटरटेनमेंट के डोज में आप भी तड़का लगा सकते हैं, क्योंकि आपके पास है ढेरों ऑप्शंस। फिलहाल इजाजत दीजिए, अच्छी खबरें जारी हैं, देखते रहिए जीएनटी।

0: Turn your TV into a portal to serenity with Zen Life by Stingray. Enjoy wellness videos for yoga, sleep, meditation, and more, tailored to every moment of your day. Zen Life by Stingray, now available for free on Pluto TV. Stream now. Pay never.
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: इस बार का फीफा वर्ल्ड कप शुरू होने जा रहा है 12 जून से, जिसने संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको की सह मेजबानी में ये टूर्नामेंट खेला जाना है। इस बार के विश्व कप में 48 टीमें खेलेंगी। ये वर्ल्ड कप के इतिहास में पहली बार हो रहा है जब 48 टीमों को शामिल किया गया, लेकिन इस बार टूर्नामेंट में खेले जाने वाले कुल 104 मुकाबले कुछ हद तक हॉकी की तरह होंगे, क्योंकि इसमें कुछ हॉकी वाले ही नियम लगाए गए हैं। तो क्या है बदले हुए नियम, आपको बताते हैं।

0: थाम कर जुनून को एंथम में बदल देने वाली शकीरा का इंतजार कर रही है। कोलंबियाई पॉप स्टार शकीरा फीफा विश्व कप के उद्घाटन समारोह में टूर्नामेंट के ऑफिशियल गाने को प्रेजेंट करने वाली हैं। इसकी रिहर्सल जोर शोर से चल रही है। मैक्सिको सिटी के सबसे बड़े मंच पर जब शकीरा उतरेंगी तो उनका अंदाज कुछ इस तरह का होगा। जून से दुनिया का दिल फुटबॉल की हर एक किक पर धड़केगा। रोमांच इसलिए भी खास होगा क्योंकि इस बार 32 की बजाय 48 टीमें खेलेंगी। तीन देश मिलकर मेजबानी करेंगे और खिताब के लिए 7 की बजाय 8 मैच जीतने होंगे। यही नहीं, पहली दफा मैच के बीच खिलाड़ी इंटरव्यू देंगे। कॉर्नर किक में VAR का दखल होगा और फाइनल में भव्य हाफ टाइम शो होगा। इस बार के वर्ल्ड कप में केवल खेल का रोमांच ही नहीं बढ़ेगा बल्कि कुछ नियमों से खेल का अंदाज भी बदलेगा। आम तौर पर फुटबॉल में 45-45 मिनट के दो हाफ होते हैं जिन्हें 15 मिनट का हाफ टाइम ब्रेक अलग करता है, लेकिन इस बार मैच 4 क्वार्टर में बटा हुआ नजर आएगा। मौसम की वजह से हर मैच में दोनों हाफ के बीच जरूरी हाइड्रेशन ब्रेक दिया जाएगा। ये ब्रेक पहले हाफ में लगभग 22वें मिनट और दूसरे हाफ में 67वें मिनट के आसपास होगा। यानी 2026 का फीफा विश्व कप केवल गोल, जीत और ट्रॉफी की कहानी नहीं होगा बल्कि एक नए तरह के स्टार्टअप, सिक्योरिटी और रणनीति के साथ एंटरटेनमेंट का अद्भुत संगम होगा। यही वजह है कि इस बार फीफा वर्ल्ड कप के टिकट्स के लिए मारामारी मची है। कहा तो ये भी जा रहा है कि एक मैच के टिकट्स की कीमत लाखों से करोड़ों तक जा पहुंची है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: म्यूजिक फॉर एवरी मूड लिव्स ऑन ट्यून इन। Whether you want to relax, focus, or turn things up, you'll find the right station. Hear from the top stations, like today's hits, classic rock, coffee house, and more. Stream non-stop music from stations you know and new favorites waiting to be discovered. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
3: Good news today.
4: उसके प्रहार से ड्रैगन हो जाएगा अंधा, एक अटैक से बिखर जाएगा आतंकिस्तान का कुनबा। दो दुश्मन, दो हथियार, दोनों ही दमदार। देखिए रण क्षेत्र आज शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
5: गुजरात और दमन के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया विकास का तोहफा। हजीरा में लार्सन एंड ट्यूब्रो की इंडस्ट्रियल फैसिलिटी का जायजा लिया। सूरत को 200 बेड वाले अस्पताल की सौगात दी। चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह। अब तक 30 लाख से ज्यादा भक्तों ने दर्शन किए। केदारनाथ पहुंचने वालों का आंकड़ा 11 लाख के पार। पर्यावरण दिवस के मौके पर दुनिया भर में पर्यावरण संरक्षण का संदेश। सूरत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगाया एक पेड़ मां के नाम। लोगों से वृक्षारोपण की अपील की। भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर शानदार खबर। वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% रही GDP ग्रोथ। जनवरी से मार्च की तिमाही में 7.8% की दर से हुई वृद्धि। नहीं बदलेगी आपके लोन की EMI। RBI ने रेपो रेट 5.25% रखी बरकरार। विदेशी निवेशकों को लुभाने के लिए भी उठाए कदम।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
5: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां और झूठे दावे बिजली की रफ्तार से फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है, कभी पुरानी तस्वीर को नई साजिश का रंग देकर पेश किया जाता है और लोग बिना जांचे परखे इन्हें सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टीवी की स्क्रीन तक सीमित नहीं है। यहाँ हर किसी के हाथ में कैमरा है और हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नहीं बताकर परोसी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कोसों दूर लगे। नतीजा ये होता है कि लोग बिना सोचे समझे, बिना जांचे परखे ने सच मानकर शेयर कर देते हैं और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं। जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी। तो आज फैक्ट चेक में सबसे पहले बात करेंगे सोशल मीडिया पर छाए उस वीडियो की जिसके जरिए यह दावा किया जा रहा है कि बंगाल बांग्लादेश बॉर्डर पर तार लगाने का विरोध किया गया। बांग्लादेश के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं लोग, लेकिन बीएसएफ फुल एक्शन मोड में है। क्या है वायरल वीडियो की सच्चाई आगे बताएंगे। अगली खबर होगी उस वायरल तस्वीर से जुड़ी हुई जिसके जरिए दावा यह किया जा रहा है कि वीडियो यूपी का है जहां पर एक व्यक्ति को पहले पीटा गया फिर उससे जबरन जय श्री राम बुलवाया गया। इसकी सच्चाई क्या है आगे बताएंगे। शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
5: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें सुरक्षा कर्मी बॉर्डर जैसी जगह पर प्रदर्शन कर रहे लोगों को काबू में करते नजर आ रहे हैं। वीडियो पर लिखा हुआ है कि बंगाल बांग्लादेश बॉर्डर पर तार लगाने का विरोध किया जा रहा है, बांग्लादेश के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन बीएसएफ फुल एक्शन मोड में नजर आ रही है। यूजर्स इसे भारत बांग्लादेश सीमा पर उपजे हालिया तनाव से जोड़कर शेयर कर रहे हैं। क्या है इसकी सच्चाई, देखिए हमारी।

0: सोशल मीडिया पर ये वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। वीडियो में सुरक्षा कर्मी प्रदर्शन कर रहे लोगों को काबू करते दिख रहे हैं। कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए ये दावा कर रहे हैं कि बंगाल बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग के कार्य को लेकर कुछ बांग्लादेशी नागरिकों ने प्रदर्शन किया, जिसके बाद वहाँ बीएसएफ एक्शन मोड में नजर आ रही है। एक इंस्टाग्राम यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, बंगाल बांग्लादेश सीमा पर एक बार फिर तनाव की स्थिति देखने को मिली है। रिपोर्ट्स के अनुसार सीमा क्षेत्र में तारबंदी के कार्य को लेकर कुछ बांग्लादेशी नागरिकों ने विरोध दर्ज करवाया। सीमा सुरक्षा और अवैध घुसपैठ रोकने के उद्देश्य से की जा रही इस प्रक्रिया पर दोनों देशों की एजेंसियां नजर बनाए हुए हैं। हालांकि इस मामले को लेकर विभिन्न पक्षों की ओर से अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। सीमा से जुड़ी हर गतिविधि पर प्रशासन और सुरक्षा बलों की कड़ी निगरानी जारी है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है।
1: दरअसल सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। कुछ लोग वीडियो को शेयर करते हुए दावा ये कर रहे हैं कि बंगाल बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग के कार्य को लेकर कुछ बांग्लादेशी नागरिकों ने प्रदर्शन किया, जिसके बाद वहां बीएसएफ एक्शन मोड में नजर आ रही है, लगातार कार्रवाई की जा रही है। वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने इसकी पड़ताल शुरू की। दावे की सच्चाई जानने के लिए सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान हमारा ध्यान बैकग्राउंड से आ रही आवाजों पर गया। जब हमने इसे ध्यान से सुना तो वो बांग्ला नहीं लग रही थी। अगर पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश बॉर्डर पर हुए प्रदर्शन का ये वीडियो होता तो फिर जाहिर सी बात है कि इसमें बांग्ला में आवाजें सुनाई देती, लेकिन ऐसा था नहीं। इसके अलावा वीडियो में हमें एक और चीज देखने को मिली, अगर ये फेंसिंग का कार्य यहां पर चल रहा था तो फिर यहां कोई तार क्यों नहीं नजर आई, ये समझ से बिल्कुल परे था। इसके अलावा हाल फिलहाल में सर्च के दौरान ऐसी कोई प्रमाणिक रिपोर्ट हमें नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके, लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा, जिसमें हमारा पहला सवाल यही कि वायरल हो रहा वीडियो कब का है और कहां का है। हमारा दूसरा सवाल, कहीं जानबूझकर किसी और घटना से संबंधित वीडियो को नया एंगल देकर वायरल तो नहीं किया जा रहा, सच और झूठ जानिए इस रिपोर्ट में।
0: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उन्हें सर्च किया। इस दौरान हमें एक फेसबुक अकाउंट पर मिला। ये वीडियो 11 फरवरी 2026 को साझा किया गया है। इसके साथ ही यहाँ बताया गया था कि चुनाव की तैयारियाँ तेज हो गयी, सेना के जवान अभ्यास जारी रखे हुए हैं। चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न करवाने के लिए सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। यहां पर हमें नेपाल हैशटैग देखने को मिला। इसके बाद हमें एक नेपाली फेसबुक अकाउंट पर वायरल वीडियो देखने को मिला। ये पोस्ट 12 फरवरी 2026 को साझा की गई थी। यहां जानकारी मिली कि सेना चुनाव की तैयारी के लिए मॉक अभ्यास कर रही है। आगे की पड़ताल में हमें नेपाल के तनहू जिला पुलिस कार्यालय के फेसबुक अकाउंट पर वायरल वीडियो से संबंधित एक फोटो देखने को मिली। ये पोस्ट 9 फरवरी 2026 को साझा की गई थी। इसमें ये जानकारी दी गई थी कि 21 फरवरी को होने वाले आगामी प्रतिनिधि सभा सदस्य चुनाव के स्वतंत्र, निष्पक्ष और भयमुक्त वातावरण में संपन्न करवाने के उद्देश्य से तनहू जिला प्रशासन कार्यालय, तनहू जिला निर्वाचन कार्यालय और तनहू जिला पुलिस कार्यालय ने नेपाली सेना, सशस्त्र पुलिस बल और राष्ट्रीय अनुसंधान कार्यालय के कार्यालय प्रमुखों की उपस्थिति में मॉडल मतदान और मतदान स्थल पर उत्पन्न होने वाली विभिन्न सुरक्षा चुनौतियों के प्रबंधन से संबंधित समन्वय और संयुक्त परियोजनाओं, संयुक्त अभ्यासों का आयोजन किया गया। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल हो रहा दावा झूठा साबित हुआ। वायरल वीडियो नेपाल में हुई मॉक ड्रिल का है, जिसे भारत का बताकर शेयर किया जा रहा है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो को धार्मिक एंगल देते हुए यूजर्स ये दावा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भगवा गमछा पहने एक व्यक्ति ने एक धर्म विशेष समुदाय से ताल्लुक रखने वाले व्यक्ति को पहले थप्पड़ मारा और फिर बाद में उसे जय श्री राम बोलने के लिए मजबूर किया। वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है, पड़ताल करती हमारी रिपोर्ट।
2: जय श्री राम बोल।
3: जय श्री राम।
0: सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि भगवा गमछा पहने एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को थप्पड़ मारता है और बाद में उसे जय श्री राम बोलने के लिए मजबूर करता है।
3: जय श्री राम।

0: वीडियो को शेयर करते हुए एक यूजर ने लिखा, मैं एक भारतीय हिंदू लड़की हूं और इस वीडियो को देखकर मुझे खुद पर शर्म आ रही है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है। वीडियो का सच झूठ जाने बगैर इसे धड़ल्ले से वायरल किया जा रहा है। वहीं कुछ यूजर्स इस वीडियो के जरिए कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं।
1: दरअसल सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और इस वीडियो को उत्तर प्रदेश का बताते हुए कुछ यूजर्स ये कह रहे हैं कि ये हिंदू व्यक्ति ने दूसरे समुदाय के ताल्लुक रखने वाले शख्स को पहले थप्पड़ मारा और फिर जय श्री राम बोलने पर मजबूर किया। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर इसी मिलते जुलते दावे के साथ ये वीडियो लगातार शेयर हो रहा है। ऐसे में इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। फैक्ट चेक टीम ने दावे की जांच के लिए सर्च किया, लेकिन हाल फिलहाल में ऐसी कोई भी रिपोर्ट हमें नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके, क्योंकि अगर वाकई में उत्तर प्रदेश में इस तरह की कोई भी घटना हुई होती तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर होती और इसके बारे में सर्च के दौरान भी कोई जानकारी हमें नहीं मिली, कोई भी प्रमाणिक रिपोर्ट हमें नहीं मिली। लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा। हमारा पहला सवाल यही कि यह घटना कब की है और कहां की है। हमारा दूसरा सवाल, कहीं किसी पुराने वीडियो को धार्मिक एंगल देकर जानबूझकर इसे वायरल तो नहीं किया जा रहा है। अब देखिए सच और झूठ क्या है।
0: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वीडियो की पड़ताल में जुटी। सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे इंटरनेट पर सर्च किया। इस दौरान हमें 8 नवम्बर 2025 को छपी एक न्यूज रिपोर्ट मिली। इसमें दी गई जानकारी के मुताबिक ये घटना हरियाणा के हिसार के कैंप चौक इलाके में घटी थी। रिपोर्ट में ये भी बताया गया था कि रणवीर नाम का एक व्यक्ति नॉनवेज की दुकान पर पहुंचा और दुकानदार पर हमला करने लगा। पीड़ित की पहचान उत्तराखंड निवासी मनु के रूप में हुई थी। सर्च के दौरान हमें एक और रिपोर्ट मिली। 25 नवम्बर 2025 को ये रिपोर्ट पब्लिश हुई थी। रिपोर्ट के अनुसार दुकानदार को थप्पड़ मारने के बाद रणबीर ने खुद को बजरंग दल का सदस्य बताया और मनु पर हमला जारी रखा। रिपोर्ट में आगे बताया गया था कि दुकानदार ने बार बार उससे कहा कि वो हिंदू है, इसके बावजूद खुद को बचाने के प्रयास में उसे जय श्री राम के नारे लगाने पड़े। इसके बाद हमने नॉनवेज दुकान के मालिक का पता लगाने की कोशिश की। हमने हिसार के कैंप चौक इलाके में मांसाहारी दुकानों की खोज की और मनु चिकन पकौड़ी नाम की एक दुकान मिली। दुकान की भौगोलिक स्थिति का पता लगाने के बाद हमें दुकान के साइन बोर्ड पर एक फोन नंबर मिला। हालांकि जब हमने कॉल किया तो वो नंबर बंद था। मनु ने अपनी पहचान की पुष्टि करते हुए फैक्ट चेक को बताया कि वो हिंदू है। बातचीत के दौरान उसने कहा कि उस मंगलवार को उन्होंने दुकान सिर्फ सफाई के लिए खोली थी, हालांकि शाम को कुछ ग्राहक आ गए इसलिए उन्होंने जो भी खाना उपलब्ध था वही परोस दिया। मनु के मुताबिक रणवीर अचानक दुकान पर आया और उस पर हमला करने लगा और इसका वीडियो कैमरा में रिकॉर्ड कर लिया। मनु ने उसे बताया कि वो हिंदू है, लेकिन रणबीर ने उसकी बात नहीं मानी और उससे धार्मिक नारा लगाने को कहा। बाद में जब वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस ने कार्रवाई की और रणबीर को गिरफ्तार कर लिया। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल दावा झूठा साबित हुआ। वायरल हो रहा वीडियो नवंबर 2025 का है और हरियाणा के हिसार का है और वीडियो में दिख रहे दोनों व्यक्ति हिंदू है। पीड़ित ने इसकी पुष्टि की है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: फैक्ट चेक में फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के उस पर आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में, दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
3: No ticket, no line, just Showtime. Qello Concerts is the destination for music lovers. With thousands of electrifying concerts and music documentaries. Try Qello Concerts, that's Q-E-L-L-O, for free on Amazon Prime Video today.
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो
4: तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
1: अक्षय के आखिरी सफर का, जहां आपको दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हैं, जिन्हें खूब पसंद किया जा रहा है।
5: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो ने लोगों के दिल को छू लिया है। ये वीडियो न केवल मानवीय संवेदनाओं की मिसाल पेश करता है, बल्कि ये भी दिखाता है कि मुश्किल घड़ी में मदद के लिए आने जाने वाले लोग आज भी समाज में मौजूद हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक सब्जी विक्रेता का ठेला अचानक सड़क पर पलट जाता है। ठेले में रखे आलू और प्याज बड़ी मात्रा में सड़क पर बिखर जाते हैं। कुछ ही पलों में पूरा रास्ता सब्जियों से भर जाता है और ठेला चालक असहाय नजर आने लगता है। उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती अपनी मेहनत से जुटाई गई सब्जियों को दोबारा समेटने की होती है। लेकिन इसके बाद जो सीन सामने आता है वो हर किसी का दिल जीत लेता है। आसपास से गुजर रहे लोग बिना किसी झिझक के मदद के लिए आने लगते हैं। कोई सड़क पर गिरे आलू उठाने लगता है तो कोई प्याज इकट्ठा करने में जुट जाता है। कुछ लोग ठेले को संभालने और उसे सीधा करने में मदद करते हैं, जबकि कुछ लोग बिखरी हुई सब्जियों को वापस ठेले में रखने का काम शुरू कर देते हैं। सबसे खास बात ये रही कि वहाँ मौजूद किसी भी व्यक्ति ने मदद करने से पहले कोई सवाल नहीं पूछा। लोगों के लिए उस समय केवल एक बात मायने रख रही थी कि एक मेहनतकश व्यक्ति परेशानी में है और उसे सहायता की आवश्यकता है। यही सोच इस वीडियो को और अधिक खास बना देती है। ये वीडियो लोगों को खूब पसंद आ रहा है। उसकी मासूमियत और अलग अंदाज ने इंटरनेट का ध्यान खींच लिया है। वीडियो की शुरुआत में एक छोटा बच्चा स्कूल यूनिफॉर्म पहने हुए नजर आता है। उसकी पीठ पर स्कूल बैग टंगा हुआ है, जिससे साफ पता चलता है कि वो पढ़ाई के लिए स्कूल जा रहा है। पहली नजर में यह सीन बिल्कुल नॉर्मल लगता है, क्योंकि रोजाना लाखों बच्चे स्कूल जाते हैं। लेकिन जैसे ही कैमरा थोड़ा आगे बढ़ता है, लोगों की नजर उस खास बात पर पड़ती है जिसने इस वीडियो को वायरल बना दिया है। दरअसल ये बच्चा किसी साइकिल, मोटरसाइकिल या किसी दूसरे सामान्य वाहन पर नहीं, बल्कि एक बकरे की सवारी करते हुए स्कूल जा रहा है। यही अनोखा नजारा लोगों को बेहद पसंद आ रहा है। वीडियो में बच्चा पूरे आत्मविश्वास के साथ बकरे की पीठ पर बैठा दिखाई देता है। उसके हाथ में एक छोटी सी छड़ी भी नजर आती है, जिससे ऐसा लगता है मानो वो अपने इस अनोखे वाहन को कंट्रोल कर रहा हो। सबसे दिलचस्प बात यह है कि बच्चा पूरी तरह सहज दिखाई देता है और आराम से अपने रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। हमारी संस्कृति में बेटियों को लक्ष्मी और साक्षात देवी का रूप माना जाता है, और जब बेटी अपने घर पहुंचती है तो उसका स्वागत कुछ ऐसा होता है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। लोग जमकर इस वीडियो पर कमेंट्स कर रहे हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि पारंपरिक लिबास में एक छोटी बच्ची बेहद क्यूट लग रही है। घर में दाखिल होने से पहले एक थाली में उसके पैर पखारे जाते हैं, माथे पर तिलक लगाया जाता है और आरती उतार कर उसका गृह प्रवेश कराया जाता है। सोशल मीडिया पर यह दिल छू लेने वाला वीडियो खूब वायरल हो रहा है। इसमें एक युवक अपनी पहली सैलरी अपने माता पिता के हाथों में सौंपता नजर आ रहा है। बेटे की पहली कमाई देखकर माँ बाप जिस तरह इमोशनल हुए, उसने इंटरनेट पर हर किसी का दिल जीत लिया। ये वीडियो IIM से ग्रेजुएट हुए एक लड़के का है। MBA करने के बाद जब लड़के की पहली जॉब लगी और पहली सैलरी आई, तो उसने इसे बेहद खास अंदाज में अपने मम्मी पापा को गिफ्ट किया। यूजर्स इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं। वैसे तो इन दिनों सोशल मीडिया पर मेलोडी का खुमार हर किसी के सिर चढ़कर बोल रहा है, लेकिन इस वायरल वीडियो की तो बात ही अलग है। देखिए कैसे 1 रुपए वाली मेलोडी टॉफी ने बुजुर्ग महिला के चेहरे पर मुस्कान ला दी। कहते हैं कि प्यार की कोई उम्र नहीं होती, और ये वीडियो इसी बात को सच साबित कर रहा है। इस खूबसूरत वीडियो में बुजुर्गों के दिलों में फिर से प्यार के रंग भर दिए। वाटर पार्क से जुड़े मजेदार और अनोखे वीडियो इंटरनेट यूजर्स को काफी पसंद आते हैं। कभी कोई व्यक्ति स्लाइड से फिसलते समय अजीब हरकत कर बैठता है, तो कभी किसी के साथ ऐसा मजेदार हादसा हो जाता है कि देखने वाले अपनी हंसी नहीं रोक पाते। इन दिनों भी एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर चर्चा बटोर रहा है। वायरल हो रहे इस वीडियो में एक वाटर पार्क का दिलचस्प नजारा देखने को मिलता है। वीडियो की शुरुआत में एक लड़की बड़ी आरामदायक तरीके से पानी की स्लाइड पर फिसलते हुए नीचे की तरफ आती दिखाई देती है। वो पूरी तरह से राइड के मजे ले रही होती है और उसके चेहरे पर भी उत्साह साफ नजर आता है। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि अगले कुछ सेकंड में उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जो न केवल उसे चौंका देगा बल्कि सोशल मीडिया पर लाखों लोगों का मनोरंजन भी करेगा। जैसे ही लड़की स्लाइड के लास्ट हिस्से की ओर पहुंचती है, तभी पीछे से एक दूसरी लड़की उसी स्लाइड पर बेहद तेज गति से नीचे आती हुई दिखाई देती है। उसकी स्पीड इतनी अधिक होती है कि वो अपने आगे मौजूद लड़की को समय रहते देख नहीं पाती। कुछ ही पलों में दोनों के बीच जोरदार टक्कर हो जाती है। टक्कर इतनी अचानक होती है कि दोनों लड़कियां अपना बैलेंस खो बैठती हैं और सीधे पानी में जा गिरती हैं। ये पूरा दृश्य इतना अचानक होता है कि वहां मौजूद लोग भी कुछ क्षणों के लिए हैरान हो जाते हैं। हालांकि किसी को गंभीर चोट नहीं लगती। आप किसी जंगल सफारी पर गए हों और आपकी गाड़ी के ठीक बगल में एक खूंखार बब्बर शेर बैठा हो, तभी अचानक कुछ लोग आराम से उसके बगल से पैदल और बाइक पर गुजरने लगे, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? यकीनन ये नजारा किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी है। लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि सफारी गाड़ी में बैठा एक पर्यटक वीडियो बना रहा है, तभी सड़क पर एक के बाद एक बाइक सवार गुजरते हैं। हैरान करने वाला मोड़ तब आता है जब कैमरा थोड़ा घूमता है और सड़क के बीच एक विशालकाय शेर बैठा दिखाई देता है। हद तो तब हो गई जब बाइकर्स के साथ साथ एक शख्स बड़े आराम से पैदल ही शेर के पास से गुजर जाता है, मानो वहाँ कोई शेर नहीं बल्कि कोई बिल्ली बैठी हो। इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात यह है कि शेर भी उन्हें देखकर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता और शांति से बैठा रहता है। सोशल मीडिया पर वायरल ये वीडियो लोगों का ध्यान खींच रहा है, जिसने फुटबॉल मैच को ही यादगार बना दिया। इस वीडियो को देखकर लोग सिर्फ मुस्कुरा ही नहीं रहे बल्कि इसे इंटरनेट का सबसे क्यूट फुटबॉल वीडियो भी बता रहे हैं। दरअसल एक फुटबॉल मैच के दौरान ऐसा मजेदार नजारा देखने को मिला जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। खिलाड़ी मैदान में पूरी गंभीरता से मैच खेल रहे थे, तभी अचानक एक छोटा सा बछड़ा मैदान में आ गया। शुरुआत में खिलाड़ियों को लगा कि शायद वह थोड़ी देर बाद बाहर चला जाएगा, लेकिन अगले ही पल उसने जो किया उसे देखकर मैदान में मौजूद हर व्यक्ति हंसने लगा। वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसे ही खिलाड़ी फुटबॉल को एक दूसरे की तरफ पास कर रहे थे, वैसे ही वो नन्हा बछड़ा भी पूरी उत्सुकता के साथ गेंद के पीछे दौड़ने लगा। गेंद मैदान के जिस कोने में जाती, बछड़ा भी उसी दिशा में तेजी से भागता दिखाई देता। उसकी मासूम हरकतें और उत्साह देखकर खिलाड़ी भी अपनी हंसी रोक नहीं पाए।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
6: From the moment you wake up, your day is already pretty full. That's why University of Phoenix's online master's programs help you balance work, family, and school. Explore flexible master's degrees made for busy adults at University of Phoenix.
2: Good news today इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को
1: खबर हुई थी से जहां पर 1000 साल पुराने आचार्य मंदिर में 400 साल पुरानी पांडुलिपि मिली है। करीब 5000 की संख्या में ये पांडुलिपियां फारसी, अरबी, उर्दू और कुछ रोमन लिपि में लिखी गई हैं, जिनका अध्ययन किया जाएगा और इसके बाद इन दुर्लभ पांडुलिपियों को अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय में रखा जा सकता है। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या के गौरवशाली इतिहास को समेटे हुए ये वो दुर्लभ दस्तावेज है जो आने वाले वक्त में लोगों को अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय में देखने को मिल सकता है। ये पांडुलिपियां 12वीं से लेकर 19वीं शताब्दी तक की बताई जा रही हैं, जो अयोध्या के 1000 साल पुराने आचार्य मंदिर से मिली है। इनकी संख्या 5000 के करीब है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि सनातन धर्म के इस बेहद प्राचीन मंदिर में मिली ये पांडुलिपियां फारसी, अरबी, उर्दू और कुछ रोमन लिपियों में लिखी गई हैं।
7: ये दंतधावन कुंड आचार्य मंदिर तकरीबन 1000 साल प्राचीन विष्णु प्रकाशाचार्य द्वारा स्थापित यह स्थान है और यहाँ पे जो भी पांडुलिपियां मिली है वो फारसी में है और अरबी में है, उर्दू में है, कुछ रोमन में है, बाकी उसमें कुछ 12वीं शताब्दी की हैं, 13वीं की भी हैं, कुछ 14वीं 15वीं की हैं और 17वीं शताब्दी की हैं, 19वीं शताब्दी की हैं। तो ऐसी बहुत सारी पांडुलिपियां आपके स्थान पे दंतधावन कुंड पे मिली हैं। तकरीबन ये 5000 के आसपास ये जो इनकी संख्या है।
1: आचार्य मंदिर के पुजारी का कहना है कि ज्यादातर पांडुलिपियां भोजपत्र की हैं, जिनका जल्दी ही हिंदी में अनुवाद कराया जाएगा, जिसके बाद ही इन दुर्लभ पांडुलिपियों पर लिखे इतिहास से पर्दा उठ सकेगा। हालांकि उन्होंने बताया कि इन पांडुलिपियों पर अयोध्या के मंदिरों, पुराने कुंडों और मंदिरों के लिए दी गई जमीनों का लेखा जोखा हो सकता है।
7: देखिए ज्यादातर ये जो लिपियां हैं ये कुछ हुक्मनामे हैं और शहंशाह हिंद की तरफ से जो जमीन दी गई स्थान को उसमें है। अयोध्या में जो मंदिर बसाए गए हैं दंत धावन कुंड की तरफ से उनकी है, कुछ अयोध्या को लेकर के जो और चीजें हैं उसकी है। तो तथा कथित कहा जाए तो ये अयोध्या का एक पूरा इतिहास है, प्राचीन इतिहास है।
8: बहुत
7: लमसम सारी जो है वो भोजपत्र पे हैं, कुछ है ताम्रपत्र पे थी, तो जब अंग्रेज यहाँ से जाने लगे तो उन्होंने भोजपत्र पे करके और उसको ताम्रपत्र खुद लिख दिया।
0: दरअसल अयोध्या में भगवान श्री राम से जुड़ी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करने के लिए दुर्लभ पांडुलिपियों का देश भर से संग्रह किया जा रहा है और फिर इन्हें जांच के बाद अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय में रखा जाएगा। लेकिन इस संग्रहालय में सिर्फ उन्हीं पांडुलिपियों को रखा जाएगा जो सिर्फ हाथ से लिखी हैं और दुर्लभ है।
9: विभिन्न स्थानों पे इस प्रकार की पांडुलिपियां हमें मिली हैं, जैसे लक्ष्मण किला में, रामकथा संग्रहालय में, अंतर्राष्ट्रीय रामायण शोध संस्थान में, गोकुल भवन में और हनुमानगढ़ी में और अन्य स्थानों का भी सर्वेक्षण किया जा रहा है। ये विभिन्न भाषाओं में, कुछ हिंदी में मिली है, कुछ संस्कृत में मिली है, अलग अलग जगहों पे उर्दू में भी मिल रही है, तो हम उन सभी को असेस करके डिजिटाइज करा रहे हैं।
0: बताया जा रहा है कि पांडुलिपियों को इकट्ठा करने की मुहिम के तहत देश के अलग अलग हिस्सों से कई लोग ऐसी दुर्लभ पांडुलिपियों की जानकारी अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय और डायरेक्टर संजीव सिंह को दे चुके हैं। इस पूरे अभियान का मकसद सिर्फ पांडुलिपियों को इकट्ठा करना ही नहीं बल्कि इन्हें वैज्ञानिक तरीके से सुरक्षित रखना भी है। इसीलिए इन्हें डिजिटल रूप में सेव करने की तैयारी है ताकि आने वाले समय में लोग इन्हें आसानी से देख भी सकें और पढ़ भी सकें।
10: इस प्रकल्प में हम लोग दो तरह की बात करेंगे, एक तो पांडुलिपियों का संग्रहण कर रहे हैं, दूसरा उन पांडुलिपियों को जो हमको नहीं मिल पा रही हैं, तो उनका जो है फेसेमाइल या टेक्निकल, आजकल बहुत से टेक्निकल डिवाइस के रूप में जैसे कि हम माइक्रोफिल्म बना लेंगे, तो क्या होगा कि आपको एक ही जगह सब चीज मिल जाएगी। तो रेफरेंस के लिए जो संदर्भ है, तो इसलिए युवाओं को ही नहीं शोधार्थियों के लिए जो राम राम साहित्य राम कथा पर शोध कर रहे हैं उनके लिए अद्भुत केंद्र होने वाला है।
0: इस पूरी पहल के जरिए रामायण की कालातीत विरासत को सुरक्षित कर आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना है। अयोध्या से मयंक शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: इस बार का फीफा वर्ल्ड कप शुरू होने जा रहा है 12 जून से, जिसने संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको की सह मेजबानी में यह टूर्नामेंट खेला जाना है। इस बार के विश्व कप में 48 टीमें खेलेंगी। ये वर्ल्ड कप के इतिहास में पहली बार हो रहा है जब 48 टीमों को शामिल किया गया, लेकिन इस बार टूर्नामेंट में खेले जाने वाले कुल 104 मुकाबले कुछ हद तक हॉकी की तरह होंगे क्योंकि इसमें कुछ हॉकी वाले ही नियम लगाए गए हैं। तो क्या है बदले हुए नियम, आपको बताते हैं।

0: दिल थाम कर जुनून को एंथम में बदल देने वाली शकीरा का इंतजार कर रही है। कोलंबियाई पॉप स्टार शकीरा फीफा विश्व कप के उद्घाटन समारोह में टूर्नामेंट के ऑफिशियल गाने को प्रेजेंट करने वाली हैं। इसकी रिहर्सल जोर शोर से चल रही है। मैक्सिको सिटी के सबसे बड़े मंच पर जब शकीरा उतरेंगी तो उनका अंदाज कुछ इस तरह का होगा। जून से दुनिया का दिल फुटबॉल की हर एक किक पर धड़केगा। रोमांच इसलिए भी खास होगा क्योंकि इस बार 32 की बजाय 48 टीमें खेलेंगी। तीन देश मिलकर मेजबानी करेंगे और खिताब के लिए 7 की बजाय 8 मैच जीतने होंगे। यही नहीं, पहली दफा मैच के बीच खिलाड़ी इंटरव्यू देंगे। कॉर्नर किक में VAR का दखल होगा और फाइनल में भव्य हाफ टाइम शो होगा। इस बार के वर्ल्ड कप में केवल खेल का रोमांच ही नहीं बढ़ेगा बल्कि कुछ नियमों से खेल का अंदाज भी बदलेगा। आम तौर पर फुटबॉल में 45-45 मिनट के दो हाफ होते हैं जिन्हें 15 मिनट का हाफ टाइम ब्रेक अलग करता है, लेकिन इस बार मैच जिन्हें 15 मिनट का हाफ टाइम ब्रेक अलग करता है लेकिन इस बार मैच चार क्वार्टर में दोनों हाफ के बीच जरूर 67वें मिनट के आसपास होगा। यानी 2026 का फीफा विश्व कप केवल गोल, जीत और ट्रॉफी की कहानी नहीं होगा बल्कि एक नए तरह के स्टार्टअप, सिक्योरिटी और रणनीति के साथ एंटरटेनमेंट का अद्भुत संगम होगा। यही वजह है कि इस बार फीफा वर्ल्ड कप के टिकट्स के लिए मारामारी मची है। कहा तो ये भी जा रहा है कि एक मैच के टिकट्स की कीमत लाखों से करोड़ों तक जा पहुंची है।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: Tune in how to. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
3: Looking for your favorite local radio stations? Look no further. Tune in has got you covered. Not only can you stream all the best music, news, sports from all around the world, but you can also listen to all your local radio stations. Just head to the radio page on TuneIn to listen, and you can explore our interactive map to find all the local stations you know and love. Are you ready to dive in? Start listening today.
4: उसके प्रहार से ड्रैगन हो जाएगा अंधा, एक अटैक से बिखर जाएगा आतंकिस्तान का कुनबा, दो दुश्मन दो हथियार दोनों ही दमदार। देखिए रण क्षेत्र आज शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
5: गुजरात और दमन के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया विकास का तोहफा। हजीरा में लार्सन एंड ट्यूब्रो की इंडस्ट्रियल फैसिलिटी का जायजा लिया। सूरत को 200 बेड वाले अस्पताल की सौगात दी। चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह। अब तक 30 लाख से ज्यादा भक्तों ने दर्शन किए। केदारनाथ पहुंचने वालों का आंकड़ा 11 लाख के पार। पर्यावरण दिवस के मौके पर दुनिया भर में पर्यावरण संरक्षण का संदेश। सूरत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगाया एक पेड़ मां के नाम। लोगों से वृक्षारोपण की अपील की। भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर शानदार खबर। वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% रही GDP ग्रोथ। जनवरी से मार्च की तिमाही में 7.8% की दर से हुई वृद्धि। नहीं बदलेगी आपकी लोन की EMI। RBI ने रेपो रेट 5.25% रखी बरकरार। विदेशी निवेशकों को लुभाने के लिए भी उठाए कदम।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गुप्ता साहिल देव। जीएनटी स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। तो जीएनटी स्पेशल में आज बात ऋतिक रोशन के उस रूप की जिसकी अब फैंस ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ये रूप आपके सामने है। ऋतिक रोशन के लुक्स की वजह से फैंस उन्हें ग्रीक गॉड कहते हैं, ये तो आप जानते हैं। और अब रियल लाइफ के ये ग्रीक गॉड रियल लाइफ यानी फिल्मी पर्दे पर भगवान की भूमिका निभाते हुए नजर आ सकते हैं। चर्चा तो ये है कि महावतार नरसिम्हा बनाने वाले डायरेक्टर अश्विन कुमार महादेव पर आधारित एक फिल्म पर काम कर रहे हैं और भगवान शिव का किरदार निभाने के लिए उनकी पहली पसंद है ऋतिक रोशन। यानी कभी बड़े पर्दे पर सुपर हीरो क्रिश का रोल निभाने वाले ऋतिक अब जल्द ही महादेव के सुपर अवतार में सिल्वर स्क्रीन पर हम सबको नजर आ सकते हैं। ये बात जब से छिड़ी है ऋतिक के फैंस में खासी एक्साइटमेंट है, क्योंकि वाकई ऋतिक को महादेव के रोल में देखना एक अलग एक्सपीरियंस हम सबके लिए हो सकता है।

0: tengo रंदा जैसा कि दिल जी सुपर हीरो के अवतार से लेकर ऐतिहासिक किरदार तक
1: आप अपने मायके वापस तशरीफ ले
2: खामोश मत रहना।
0: इंटरनेशनल कॉन आर्टिस्ट से लेकर देसी हीरो विजय दीनानाथ चौहान तक बरसों से अलग अलग रोल्स में फैंस का दिल जीतते आए हैं ऋतिक रोशन। मस्कुलर फिजिक, परफेक्ट जॉ लाइन, किलर लुक्स, शानदार स्क्रीन प्रेजेंस और जोरदार डांस ने करोड़ों चाहने वालों को उनका दीवाना बना रखा है।

0: उनके लुक्स के लिए दुनिया उन्हें बॉलीवुड का ग्रीक गॉड कहा करती है। और अब बॉलीवुड का ये ग्रीक गॉड पर्दे पर असल में गॉड यानी भगवान का किरदार निभाता नजर आ सकता है। खबर है कि महाअवतार नरसिम्हा फिल्म बनाने वाले डायरेक्टर अश्विन कुमार ऋतिक को लेकर एक माइथोलॉजिकल स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं। चर्चाएं गर्म है कि अश्विन कुमार एक ऐसी भव्य पौराणिक फिल्म पर काम कर रहे हैं जो भगवान शिव पर केंद्रित होगी। इस फिल्म के केंद्र में वो रूप होंगे जो पुरुष और प्रकृति यानी सृजन और विध्वंस दोनों का संतुलन है। बताया जा रहा है कि अश्विनी कुमार की इस फिल्म में भगवान शिव के नटराज और अर्ध नारीश्वर रूप पर फोकस होगा। पर इन दोनों महाकिरदारों के लिए अश्विन की नजर ऋतिक रोशन पर लंबे अरसे से टिकी हुई है। पिछले साल महावतार नरसिम्हा की रिलीज के समय डायरेक्टर अश्विन कुमार ने इंडिया टुडे को दिए इंटरव्यू में इस बात का जिक्र भी किया था।
1: Demigod personified. When look, if you look at his structure and he's a very good mover and is a dancer. So I think playing some sort of a fantastical character, apart from the film that he does, is a part of his career. I think he should. I think I would want to see him in that kind of a fantastical role.
2: What would be that fantastic?
1: Probably as the Nataraj, a dancer.
2: A
1: dancer who would create or destroy cosmically.
2: Wow, yeah. That's amazing. Hope people are listening to this and something comes up. Will you make one? Where we
1: yeah, perhaps, yes, if by the mercy of Lord Shiva and grace of his, yes.
0: ऋतिक का शानदार बॉडी स्ट्रक्चर और उनके ग्रेसफुल मूव्स इन दोनों किरदारों के लिए उन्हें बिल्कुल परफेक्ट बनाते हैं। हालांकि अभी फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम हो रहा है और ये बेहद शुरुआती दौर में है, लेकिन चर्चाओं का बाजार गर्म है। खबर है कि अपने इस प्रोजेक्ट को लेकर अश्विन कुमार ने कुछ दिन पहले ही ऋतिक रोशन से मुलाकात की है और ऋतिक रोशन को उन्होंने इस फिल्म का नरेशन भी दिया है। सूत्रों की माने तो ऋतिक को फिल्म का अनोखा कॉन्सेप्ट बेहद पसंद आया है।
3: आज की जो वायरल न्यूज है उससे ये पता चल रहा है कि ऋतिक रोशन हमको बहुत ही जल्द एक नए अवतार में नजर आएंगे। ये अवतार में जिसकी बात कर रही हूँ वो है अर्ध नारेश्वर का, जो वो बहुत ही जल्द प्ले करते हुए नजर आ सकते हैं, बिकॉज जो डायरेक्टर है महाअवतार नरसिम्हा के अश्विन कुमार ने ये स्क्रिप्ट ऋतिक के पास ले गए और ऐसा कहा जा रहा है कि ऋतिक को ये स्क्रिप्ट बहुत पसंद भी आई है और चांसेस है कि ऋतिक ये किरदार प्ले कर सकते हैं। और यही नहीं, ये एक्चुअली न्यूज हमसे ही अश्विन कुमार ने बहुत एक साल पहले न्यूज ब्रेक की थी कि ही इज इंटरेस्टेड टू वर्क विथ ऋतिक रोशन और वो उनको अर्ध नारेश्वर के रूप में दिखते हैं। तो ये बहुत एक्साइटिंग खबर है ऋतिक के फैंस के लिए। और हमने महा अवतार नरसिम्हा देखा ही है, वो एक विजुअल स्पेक्टाकल था और लोगों को बहुत पसंद भी आया था। एंड दिस इज अगेन, हम ऋतिक को बहुत ही अलग अवतार में देखेंगे। उनको हमने बहुत सुपर हीरो रोल्स प्ले करते हुए देखा है, बट दिस विल बी समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग फॉर द फैंस जो उनको बहुत समय से बड़े पर्दे पे देखना चाहते हैं। एंड दिस विल बी अ विजुअल ट्रीट फॉर ऑल ऑफ देम।
0: अभी ये चर्चा चल ही रही थी कि इसी बीच ऋतिक रोशन की ओर से की गई एक सोशल मीडिया पोस्ट ने चर्चा को जरा और हवा दे दी। इस पोस्ट में ऋतिक ने अपना एक पिक्चर शेयर किया है जिसमें वे पेरिस में घूमते नजर आ रहे हैं। फोटो के साथ ऋतिक ने लिखा है, मुझसे अभी पूछा गया कि मैं किस तरह का रोल ढूंढ रहा हूँ। मैंने इसका जवाब सोचा तो मैं खुद हैरान रह गया। आपको फिल्म लक बाय चांस का जफर याद है? बस वैसा ही कुछ अगर मिल जाए तो मैं तुरंत काम करने के लिए तैयार हो जाऊंगा, लेकिन डायरेक्टर्स मुझे सिर्फ गुड गाय के रोल ही देना चाहते हैं। ऋतिक के इस पोस्ट के बाद ये चर्चा और तेज हो गई है कि कहीं गुड गाय रोल से उनका इशारा डायरेक्टर अश्विन कुमार के ऑफर की तरफ तो नहीं है, क्योंकि महादेव से बड़ा गुड गाय भला कौन ही हुआ है और होगा। अगर ऐसा होता है तो ऋतिक जल्द ही पर्दे पर महादेव के रोल में नजर आ सकते हैं। ऋतिक के फैंस उन्हें शिवजी के अवतार में तांडव करते देखने के लिए खासे एक्साइटेड होंगे। वैसे आपको बता दें कि इस समय बॉलीवुड और साउथ फिल्मों के कई ए-लिस्ट स्टार्स अलग अलग माइथोलॉजिकल फिल्मों में काम कर रहे हैं। इनमें सबसे बड़ा और चर्चित नाम है रणवीर कपूर का। संजू और एनिमल जैसी फिल्मों में अपनी वर्सेटैलिटी साबित करने के बाद रणवीर अब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का बेहद शांत और शक्तिशाली किरदार निभाने जा रहे हैं। नितेश तिवारी की भव्य फिल्म रामायणम में रणवीर का ये रूप देखने के लिए फैंस का उत्साह सातवें आसमान पर है।

इसके अलावा धुरंधर के रहमान डकैत यानी अक्षय खन्ना का अगला बड़ा प्रोजेक्ट भी एक ऐसे ही कैरेक्टर से जुड़ा है। अक्षय खन्ना फिल्म महाकाली के जरिए तेलुगु सिनेमा में डेब्यू कर रहे हैं। अक्षय इस फिल्म में असुर गुरु शुक्राचार्य के एक बेहद जटिल और शक्तिशाली अवतार में नजर आने वाले हैं। इस किरदार में स्क्रीन पर एक रहस्यमयी किरदार के कई ग्रे शेड्स नजर आएंगे। तो वहीं डायरेक्टर राजा मौली की अगली फिल्म वाराणसी भी अपने आप में कई पौराणिक किरदारों और संदर्भों को समेटे है। ये एक टाइम ट्रेवल कॉन्सेप्ट पर बनी एक्शन एडवेंचर फिल्म बताई जा रही है, जिसके ट्रेलर में त्रेता युग में घटी घटनाओं और रामायण के संदर्भों को साफ तौर पर देखा जा सकता है। राजा मौली की इस फिल्म में महेश बाबू और प्रियंका चोपड़ा मुख्य किरदार निभा रहे हैं।

0: वैसे मैथोलॉजिकल कैरेक्टर निभाने के मामले में न्यू कमर्स भी पीछे नहीं है। चर्चा है कि सैयारा फिल्म से रातों रात छा जाने वाली एक्ट्रेस अनीत फड्डा भी मैडॉक फिल्म्स के लिए मैथोलॉजिकल कैरेक्टर प्ले करती दिख सकती हैं। इस फिल्म का नाम है शक्तिशालिनी, जिसमें अनीता फड्डा दोहरी भूमिका में नजर आएंगी। फिल्म अच्छाई और बुराई के संग्राम से जुड़ी बंगाली लोक कथाओं पर आधारित होगी, जिसमें अनीता देवी माँ से प्रेरित रक्षक यानी शक्ति के किरदार में दिख सकती हैं, तो वहीं दूसरा किरदार शालिनी एक बुरी और दुष्ट ताकत पर आधारित होगा। अब चाहे वो ऋतिक रोशन का नटराज रूप धारण करने की चर्चा हो, रणवीर का राम बनना हो या अक्षय खन्ना का शुक्राचार्य के रूप में आना, साफ है कि मेकर्स अब बड़े सितारों के स्टारडम को इतिहास और पुराणों की अमर गाथाओं के साथ जोड़कर बॉक्स ऑफिस पर नया इतिहास रचने की तैयारी में है। मुंबई से अनीता बिटो के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: अब तक तो रणबीर कपूर की रामायण और राजामौली की वाराणसी का ही इंतजार लोगों का था, लेकिन अब ऋतिक की इस मूवी को लेकर भी बज नजर आ रहा है। एक के बाद एक कई मैथोलॉजिकल फिल्में सिल्वर स्क्रीन पर आने वाली हैं। वैसे देखिए, आस्था से जुड़े हुए विषयों पर बॉलीवुड में ना पहले भी कई बार शानदार फिल्में बनाई गई हैं, जहां सबकी भावनाओं का ख्याल रखते हुए पौराणिक किरदारों को बेहद भव्यता और सम्मान के साथ पर्दे पर दिखाया जाता है, और इन फिल्मों को लोगों का खूब प्यार भी मिला है।
2: भगवान भगवान

0: यात्री यहाँ आते हैं तीर्थ पे अपने भगवान से मिलने, और उनकी सुविधा हमारा धर्म है।
1: ईश्वर में आस्था, भगवान में विश्वास वो नेमत है जो सदियों की सोच समझ संवेदनाओं की छलनी से छनकर हम तक पहुंची है। कभी वेद पुराण शास्त्र जैसे तमाम ग्रंथों और रचनाओं के जरिए, तो कभी दादी नानी की कहानियों के जरिए पीढ़ी दर पीढ़ी इंसानों को आस्था की ये डोर इतने विश्वास के साथ थमाई जाती है कि ये हमारे व्यक्तित्व में रच बस जाती है। और यही विश्वास जब सिनेमा के पर्दे पर लार्जर देन लाइफ अंदाज में बेहद भव्यता के साथ साकार होता है, लोग उसे हाथों हाथ लेते हैं। बीते सालों में बॉलीवुड की कई फिल्मों ने इस विश्वास को बढ़ाया भी है, संवारा भी है और एक नए रूप में पर्दे पर उतारा भी है।
2: जब तक लोग ऐसे खिलौनों में मानते रहेंगे ना, तब तक हमारा धंधा चलता रहेगा।
3: ये भगवान की मूर्ति है, इसको खिलौना मत बोलिए।
2: अरे भगवान भगवान है ना, वो तुम इंसानों का भ्रम है।
4: तेरे सक्षम पाप के लिए दंड मिलेगा तुझे, वो स्वयं दंड।
1: 2012 में आई ओ माय गॉड एक ऐसी फिल्म थी। ओ माय गॉड एक ऐसे इंसान की कहानी थी जिसे भगवान में विश्वास नहीं था। इस अविश्वास को विश्वास में बदलने के लिए खुद भगवान ने धरती पर उतरकर घटनाओं का ताना बाना बुना था। बाद में इसका पार्ट 2 भी रिलीज किया गया। अक्षय कुमार ने इस फिल्म के पहले भाग में भगवान कृष्ण तो दूसरे भाग में भगवान शिव का किरदार निभाया था।
5: महाराज तुम तो उल्टी गंगा बहा रहे हो। गंगा कहाँ से बहती है इसके बारे में मुझे मत बताना।
1: कमाल की बात ये थी कि इस फिल्म में भगवान ने एक इंसान का भरोसा जीतने के लिए खुद इंसानियत का रास्ता चुना था। इसी कॉन्सेप्ट पर बनी ओ माय गॉड फिल्म को लोगों ने बेहद पसंद किया था। ये पहली बार था जब किसी फिल्म ने नई पीढ़ी के सामने अध्यात्म के धागों के साथ इंसानियत के धर्म और विज्ञान के लॉजिक को बड़े असरदार तरीके से पिरोने और बुनने की कोशिश की थी।
6: आशीर्वाद नहीं चाहिए, पैसे चाहिए।

0: तुम्हारे भगवान अमरेंद्र बाहुबली का रक्त हो तुम।
1: लेकिन नहीं, असल दुनिया से परे एक कहानी पर आधारित बाहुबली फिल्म में डायरेक्टर राजा मौली ने सर्वशक्तिमान की सत्ता को बेहद दमदार तरीके से दिखाया था। बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए ईश्वर का आशीर्वाद और साथ कितना जरूरी है, ये फिल्म की कहानी में एक नहीं बल्कि कई मौकों पर दिखाया गया। फिल्म के मुख्य किरदार का नाम ही शिवा रखा गया। बाहुबली में शिवलिंग उठाने और लड़ाई से पहले रक्त से महादेव का अभिषेक करने वाला सीन आज भी लोगों के मन में बसा है।

2016 में रिलीज हुई अजय देवगन की फिल्म शिवाय में भी फिल्म के मुख्य किरदार को महादेव से प्रेरित दिखाया गया था। इस फिल्म में अजय देवगन ने एक शेरदिल पर्वतारोही का किरदार निभाया था। शिवाय की जिंदगी में भगवान शिव के प्रभाव को फिल्म की कहानी में दिखाया गया था। इसी तरह सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म केदारनाथ भी भगवान शिव की महिमा पर आधारित है। इस फिल्म में 2013 की केदारनाथ त्रासदी का जिक्र किया गया है। फिल्म की ज्यादातर शूटिंग केदारनाथ में हुई थी। फिल्म का गाना नमो नमो हे शंकरा आज भी लोगों की जुबान पर है।

0: एक कौन सा सैटेलाइट है जिससे दुनिया भर की जुबानें तू कैच कर लेता है?
1: सर मैं जुबान कैच नहीं करता सर।
2: इसी क्रम में आदित्य पंचोली की फिल्म सैटेलाइट शंकर में भी भगवान शिव के प्रति विश्वास और भक्ति दिखाई गई।
3: कहाँ है?
1: बोला जी।
4: मुझे तुम्हारा सैनिक शपथ चाहिए सोल्जर।
5: सर मैं सोमवार सुबह बेस पर हाजिरी के लिए मौजूद रहूंगा सर।
2: तो वहीं आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की फिल्म ब्रह्मास्त्र को भी इस लिस्ट में शामिल किया जा सकता है। फिल्म के कई किरदार सनातन धर्म के पौराणिक किरदारों से प्रभावित नजर आते हैं। फिल्म के मुख्य किरदार का नाम ही शिवा रखा गया था, जो दुनिया को बुरी शक्तियों से बचाने के लिए ब्रह्मास्त्र की रक्षा का वचन लेता है। सिर्फ बड़े पर्दे पर ही नहीं बल्कि छोटे पर्दे पर भी धर्म और आस्था से जुड़े धारावाहिकों ने खूब कमाल दिखाया है। रामानंद सागर की रामायण इस लिस्ट में आज कई दशकों बाद भी टॉप पर है। बताया जाता है कि रिलीज होने के समय इस सीरियल की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई थी कि जब ये टीवी पर आता था तो हर जगह सन्नाटा छा जाता था। इस सीरियल ने लोगों के दिलों में अरुण गोविल को राम और दीपिका चिखलिया को सीता के रूप में ऐसा बसाया कि आज भी ये छवि धूमिल नहीं हुई है। इससे इतना तो साफ हो जाता है कि अगर लोगों की भावनाओं और आस्था को उचित सम्मान देकर फिल्में बनाई जाएं, तो न केवल वे सुपरहिट होती हैं, बल्कि लोगों की यादों में हमेशा के लिए रह जाती हैं। यही वजह है कि फैंस ने रामायणम और वाराणसी जैसी फिल्मों से खासी उम्मीद लगा रखी है। और उसी बीच अगर ऋतिक रोशन भी महादेव के रूप में पर्दे पर आ जाते हैं तो फैंस के लिए ये एक शानदार तोहफा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: अब बात फिल्मी फ्राइडे की करते हैं। फिल्मी फ्राइडे पर इस बार एंटरटेनमेंट का ट्रिपल डोज हम सबको देखने को मिला है। एक तरफ नई रिलीज जवानी है तो इश्क होना है और बंदर धमाल मचा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ रामचरण की फिल्म पैडी पहले ही बॉक्स ऑफिस पर अपना दमखम दिखा रही है। फिल्म के ताबड़तोड़ और रिकॉर्ड तोड़ शुरुआत ने इंडस्ट्री में एक नई चर्चा को छेड़ दिया है। रामचरण की फिल्म ने ओपनिंग कलेक्शन के साथ बॉलीवुड की कई ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस लिस्ट में रणवीर सिंह की 30 करोड़ ओपनिंग करने वाली धुरंधर, 40 करोड़ फर्स्ट डे कलेक्शन करने वाली सनी देओल की गदर 2 और 57 करोड़ ओपनिंग अपने नाम करने वाले शाहरुख खान की पठान शामिल हैं। पहले दिन पैडी नेट कलेक्शन प्रीव्यू शोज के साथ लगभग 70 करोड़ इसका पहुंचा कलेक्शन और वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन 112 करोड़ के नजदीक पहुंच गया है। इन तीनों फिल्मों में सबसे ज्यादा कमाल दिखा रही है फिल्म पैडी। पैडी इस समय बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है। दमदार एक्शन और जोरदार एक्टिंग से भरपूर रामचरण की इस फिल्म ने पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया है। फिल्म की रिकॉर्ड तोड़ शुरुआत ने इंडस्ट्री में एक नई चर्चा को छेड़ दिया है। रामचरण की फिल्म ने ओपनिंग कलेक्शन के साथ बॉलीवुड की कई ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्मों के रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया है।

0: मेगास्टार राम चरण ने बॉक्स ऑफिस पर तूफान ला दिया है। उनकी फिल्म पेडी ने रिलीज के पहले दिन ही धमाल मचा दिया। फिल्म को लेकर फैंस में भारी उत्साह है। आलम ये बना हुआ है कि फैंस थिएटर के अंदर हो या बाहर जश्न मनाते नजर आ रहे हैं। कहीं ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया गया तो कहीं दर्शक सीटियां और ताली बजाते दिखे। ये ही उत्साह फिल्म के फर्स्ट डे कलेक्शन में भी नजर आया। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म को शानदार रिस्पांस मिल रहा है। तभी तो पेडी ने रिलीज के पहले दिन ही 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। शुरुआती रिपोर्ट्स बता रही हैं कि फिल्म ने पहले दिन भारत में नेट कलेक्शन के तौर पर 69 करोड़ 50 लाख रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 112 करोड़ 49 लाख रुपए से ऊपर पहुंच गया, जो किसी भी बड़ी फिल्म के लिए शानदार शुरुआत मानी जा रही है। इतना ही नहीं, रामचरण की फिल्म ने ओपनिंग कलेक्शन के साथ बॉलीवुड की कई ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्मों के रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। इस लिस्ट में रणवीर सिंह की 30 करोड़ ओपनिंग करने वाली धुरंधर, 40 करोड़ फर्स्ट डे कलेक्शन करने वाली सनी देओल की गदर 2 और 57 करोड़ की ओपनिंग अपने नाम करने वाली शाहरुख खान की पठान भी शामिल है। इन आंकड़ों से साफ है कि फिल्म का क्रेज न सिर्फ दक्षिण भारत में है बल्कि हिंदी बेल्ट में भी देखने को मिल रहा है। रामचरण और जानवी कपूर की पेडी 5 भाषाओं में सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। सबसे ज्यादा कलेक्शन तेलुगु भाषा में हासिल हुआ, जो 47 करोड़ 20 लाख रुपए रहा। इसके बाद हिंदी में 3 करोड़ की कमाई हुई, जबकि तीसरे नंबर पर तमिल भाषा से 45 लाख की कमाई इस फिल्म ने कर ली है। वहीं चौथे पायदान पर कन्नड़ में 25 लाख का कलेक्शन फिल्म ने किया है। आखिर में मलयाली भाषा में 10 लाख का कलेक्शन फिल्म ने हासिल किया है। पेडी फिल्म ने जानवी कपूर के करियर को भी नई उड़ान दी है। फिल्म में उनके काम को लेकर सोशल मीडिया पर खूब चर्चा है। जानवी फिल्म की सक्सेस के लिए दुआ मांगने तिरुपति मंदिर भी पहुंची थी। 2024 में आई फिल्म देवरा के बाद पेडी जानवी की दूसरी साउथ फिल्म है। फिल्म के रिलीज के बीच वो ईश्वर का आशीर्वाद और फिल्म की हिट होने की मन्नत मांगने तिरुमला पहुंची थी। तब उनका कैजुअल लुक में बालाजी मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने का वीडियो खूब सुर्खियों में रहा। फिल्म में रामचरण और जानवी की केमिस्ट्री भी फैंस को बेहद पसंद आ रही है। असल में ये फिल्म 1980 के दशक के आंध्र प्रदेश की वो कहानी है, जहां एक गांव का नौजवान अपने लोगों को एकजुट करने के लिए क्रिकेट, कुश्ती और दौड़ के मैदान में उतरता है, सम्मान और पहचान की लड़ाई लड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: आप भी अपने वीकेंड को अच्छा बनाइए, क्योंकि इस एंटरटेनमेंट के डोज में आप भी तड़का लगा सकते हैं, क्योंकि आपके पास है ढेरों ऑप्शंस। फिलहाल इजाजत दीजिए, अच्छी खबरें जारी हैं, देखते रहिए जीएनटी।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: इस बार का फीफा वर्ल्ड कप शुरू होने जा रहा है 12 जून से, जिसने संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको की सह मेजबानी में यह टूर्नामेंट खेला जाना है। इस बार के विश्व कप में 48 टीमें खेलेंगी। ये वर्ल्ड कप के इतिहास में पहली बार हो रहा है जब 48 टीमों को शामिल किया गया, लेकिन इस बार टूर्नामेंट में खेले जाने वाले कुल 104 मुकाबले कुछ हद तक हॉकी की तरह होंगे, क्योंकि इसमें कुछ हॉकी वाले ही नियम लगाए गए हैं। तो क्या है बदले हुए नियम, आपको बताते हैं।

0: थाम कर जुनून को एंथम में बदल देने वाली शकीरा का इंतजार कर रही है। कोलंबियाई पॉप स्टार शकीरा फीफा विश्व कप के उद्घाटन समारोह में टूर्नामेंट के ऑफिशियल गाने को प्रेजेंट करने वाली हैं। इसकी रिहर्सल जोर शोर से चल रही है। मैक्सिको सिटी के सबसे बड़े मंच पर जब शकीरा उतरेंगी तो उनका अंदाज कुछ इस तरह का होगा। जून से दुनिया का दिल फुटबॉल की हर एक किक पर धड़केगा। रोमांच इसलिए भी खास होगा क्योंकि इस बार 32 की बजाय 48 टीमें खेलेंगी। तीन देश मिलकर मेजबानी करेंगे और खिताब के लिए 7 की बजाय 8 मैच जीतने होंगे। यही नहीं, पहली दफा मैच के बीच खिलाड़ी इंटरव्यू देंगे। कॉर्नर किक में VAR का दखल होगा और फाइनल में भव्य हाफ टाइम शो होगा। इस बार के वर्ल्ड कप में केवल खेल का रोमांच ही नहीं बढ़ेगा बल्कि कुछ नियमों से खेल का अंदाज भी बदलेगा। आम तौर पर फुटबॉल में 45-45 मिनट के दो हाफ होते हैं जिन्हें 15 मिनट का हाफ टाइम ब्रेक अलग करता है, लेकिन इस बार मैच 4 क्वार्टर में बटा हुआ नजर आएगा। मौसम की वजह से हर मैच में दोनों हाफ के बीच जरूरी हाइड्रेशन ब्रेक दिया जाएगा। ये ब्रेक पहले हाफ में लगभग 22वें मिनट और दूसरे हाफ में 67वें मिनट के आसपास होगा। यानी 2026 का फीफा विश्व कप केवल गोल, जीत और ट्रॉफी की कहानी नहीं होगा बल्कि एक नए तरह के स्टार्टअप, सिक्योरिटी और रणनीति के साथ एंटरटेनमेंट का अद्भुत संगम होगा। यही वजह है कि इस बार फीफा वर्ल्ड कप के टिकट्स के लिए मारामारी मची है। कहा तो ये भी जा रहा है कि एक मैच के टिकट्स की कीमत लाखों से करोड़ों तक जा पहुंची है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: No ticket, no line, just Showtime. Qualo Concerts is the destination for music lovers. With thousands of electrifying concerts and music documentaries. Try Qualo Concerts, that's Q-E-L-L-O, for free on Amazon Prime Video today.
1: खबरें गुड न्यूज़ टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: गुजरात और दमन के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया विकास का तोहफा। हजीरा में लार्सन एंड ट्यूब्रो की इंडस्ट्रियल फैसिलिटी का जायजा लिया। सूरत को 200 बेड वाले अस्पताल की सौगात दी। चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह। अब तक 30 लाख से ज्यादा भक्तों ने दर्शन किए। केदारनाथ पहुंचने वालों का आंकड़ा 11 लाख के पार। पर्यावरण दिवस के मौके पर दुनिया भर में पर्यावरण संरक्षण का संदेश। सूरत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगाया एक पेड़ मां के नाम। लोगों से वृक्षारोपण की अपील की। भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर शानदार खबर। वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% रही GDP ग्रोथ। जनवरी से मार्च की तिमाही में 7.8% की दर से हुई वृद्धि। नहीं बदलेगी आपके लोन की EMI। RBI ने रेपो रेट 5.25% रखी बरकरार। विदेशी निवेशकों को लुभाने के लिए भी उठाए कदम।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
4: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां और झूठे दावे बिजली की रफ्तार से फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है, कभी पुरानी तस्वीर को नई साजिश का रंग देकर पेश किया जाता है और लोग बिना जांचे परखे इन्हें सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टीवी की स्क्रीन तक सीमित नहीं है। यहाँ हर किसी के हाथ में कैमरा है और हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नहीं बताकर परोसी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कोसों दूर लगे। नतीजा ये होता है कि लोग बिना सोचे समझे, बिना जांचे परखे इन्हें सच मानकर शेयर कर देते हैं और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं। जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी। तो आज फैक्ट चेक में सबसे पहले बात करेंगे सोशल मीडिया पर छाए उस वीडियो की जिसके जरिए ये दावा किया जा रहा है कि बंगाल बांग्लादेश बॉर्डर पर तार लगाने का विरोध किया गया। बांग्लादेश के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं लोग, लेकिन बीएसएफ फुल एक्शन मोड में है। क्या है वायरल वीडियो की सच्चाई आगे बताएंगे। अगली खबर होगी उस वायरल तस्वीर से जुड़ी हुई जिसके जरिए दावा यह किया जा रहा है कि वीडियो यूपी का है, जहां पर एक व्यक्ति को पहले पीटा गया, फिर उससे जबरन जय श्री राम बुलवाया गया। इसकी सच्चाई क्या है आगे बताएंगे। शुरुआत करते फैक्ट चेक की।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
4: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें सुरक्षा कर्मी बॉर्डर जैसी जगह पर प्रदर्शन कर रहे लोगों को काबू में करते नजर आ रहे हैं। वीडियो पर लिखा हुआ है कि बंगाल बांग्लादेश बॉर्डर पर तार लगाने का विरोध किया जा रहा है, बांग्लादेश के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन बीएसएफ फुल एक्शन मोड में नजर आ रही है। यूजर्स इसे भारत बांग्लादेश सीमा पर उपजे हालिया तनाव से जोड़कर शेयर कर रहे हैं। क्या है इसकी सच्चाई, देखिए हमारी रिपोर्ट।
5: सोशल मीडिया पर यह वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। वीडियो में सुरक्षा कर्मी प्रदर्शन कर रहे लोगों को काबू करते दिख रहे हैं। कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए ये दावा कर रहे हैं कि बंगाल बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग के कार्य को लेकर कुछ बांग्लादेशी नागरिकों ने प्रदर्शन किया, जिसके बाद वहां बीएसएफ एक्शन मोड में नजर आ रही है। लेकिन

0: विभिन्न पक्षों की ओर से अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। सीमा से जुड़ी हर गतिविधि पर प्रशासन और सुरक्षा बलों की कड़ी निगरानी जारी है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है।
1: दरअसल सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। कुछ लोग वीडियो को शेयर करते हुए दावा यह कर रहे हैं कि बंगाल बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग के कार्य को लेकर कुछ बांग्लादेशी नागरिकों ने प्रदर्शन किया, जिसके बाद वहां बीएसएफ एक्शन मोड में नजर आ रही है। लगातार कार्रवाई की जा रही है। वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने इसकी पड़ताल शुरू की। दावे की सच्चाई जानने के लिए सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान हमारा ध्यान बैकग्राउंड से आ रही आवाजों पर गया। जब हमने इसे ध्यान से सुना तो वो बांग्ला नहीं लग रही थी। अगर पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश बॉर्डर पर हुए प्रदर्शन का ये वीडियो होता तो फिर जाहिर सी बात है कि इसमें बांग्ला में आवाजें सुनाई देती, लेकिन ऐसा था नहीं। इसके अलावा वीडियो में हमें एक और चीज देखने को मिली। अगर ये फेंसिंग का कार्य यहां पर चल रहा था तो फिर यहां कोई तार क्यों नहीं नजर आई, ये समझ से बिल्कुल परे था। इसके अलावा हाल फिलहाल में सर्च के दौरान ऐसी कोई प्रमाणिक रिपोर्ट हमें नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके, लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा, जिसमें हमारा पहला सवाल यही कि वायरल हो रहा वीडियो कब का है और कहां का है। हमारा दूसरा सवाल, कहीं जानबूझकर किसी और घटना से संबंधित वीडियो को नया एंगल देकर वायरल तो नहीं किया जा रहा, सच और झूठ जानिए इस रिपोर्ट में।
0: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उन्हें सर्च किया। इस दौरान हमें एक फेसबुक अकाउंट पर मिला। ये वीडियो 11 फरवरी 2026 को साझा किया गया है। इसके साथ ही यहां बताया गया था कि चुनाव की तैयारियां तेज हो गई, सेना के जवान अभ्यास जारी रखे हुए हैं। चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न करवाने के लिए सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। यहां पर हमें नेपाल हैशटैग देखने को मिला। इसके बाद हमें एक नेपाली फेसबुक अकाउंट पर वायरल वीडियो देखने को मिला। ये पोस्ट 12 फरवरी 2026 को साझा की गई थी। यहाँ जानकारी मिली कि सेना चुनाव की तैयारी के लिए मॉक अभ्यास कर रही है। आगे की पड़ताल में हमें नेपाल के तन्हु जिला पुलिस कार्यालय के फेसबुक अकाउंट पर वायरल वीडियो से संबंधित एक फोटो देखने को मिली। ये पोस्ट 9 फरवरी 2026 को साझा की गई थी। इसमें ये जानकारी दी गई थी कि 21 फरवरी को होने वाले आगामी प्रतिनिधि सभा सदस्य चुनाव के स्वतंत्र, निष्पक्ष और भयमुक्त वातावरण में संपन्न करवाने के उद्देश्य से तन्हु जिला प्रशासन कार्यालय, तन्हु जिला निर्वाचन कार्यालय और तन्हु जिला पुलिस कार्यालय ने नेपाली सेना, सशस्त्र पुलिस बल और राष्ट्रीय अनुसंधान कार्यालय के कार्यालय प्रमुखों की उपस्थिति में मॉडल मतदान और मतदान स्थल पर उत्पन्न होने वाली विभिन्न सुरक्षा चुनौतियों के प्रबंधन से संबंधित समन्वय और संयुक्त परियोजनाओं, संयुक्त अभ्यासों का आयोजन किया गया। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल हो रहा दावा झूठा साबित हुआ। वायरल वीडियो नेपाल में हुई मॉक ड्रिल का है, जिसे भारत का बताकर शेयर किया जा रहा है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो को धार्मिक एंगल देते हुए यूजर्स ये दावा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भगवा गमछा पहने एक व्यक्ति ने एक धर्म विशेष समुदाय से ताल्लुक रखने वाले व्यक्ति को पहले थप्पड़ मारा और फिर बाद में उसे जय श्री राम बोलने के लिए मजबूर किया। वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है, पड़ताल करती हमारी रिपोर्ट।
2: जय श्री राम बोल, जय श्री राम।
0: सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि भगवा गमछा पहने एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को थप्पड़ मारता है और बाद में उसे जय श्री राम बोलने के लिए मजबूर करता है।
3: जय श्री राम।
0: वीडियो को शेयर करते हुए एक यूजर ने लिखा, मैं एक भारतीय हिंदू लड़की हूँ और इस वीडियो को देखकर मुझे खुद पर शर्म आ रही है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है। वीडियो का सच झूठ जाने बगैर इसे धड़ल्ले से वायरल किया जा रहा है। वहीं कुछ यूजर्स इस वीडियो के जरिए कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं।
1: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और इस वीडियो को उत्तर प्रदेश का बताते हुए कुछ यूजर्स ये कह रहे हैं कि ये हिंदू व्यक्ति ने दूसरे समुदाय के

0: ताल्लुक रखने वाले शख्स को पहले थप्पड़ मारा और फिर जय श्री राम बोलने पर मजबूर किया। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर इसी मिलते जुलते दावे के साथ ये वीडियो लगातार शेयर हो रहा है। ऐसे में इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। फैक्ट चेक टीम ने दावे की जांच के लिए सर्च किया, लेकिन हाल फिलहाल में ऐसी कोई भी रिपोर्ट हमें नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके, क्योंकि अगर वाकई में उत्तर प्रदेश में इस तरह की कोई भी घटना हुई होती तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर होती और इसके बारे में सर्च के दौरान भी कोई जानकारी हमें नहीं मिली, कोई भी प्रमाणिक रिपोर्ट हमें नहीं मिली। लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा। हमारा पहला सवाल यही कि यह घटना कब की है और कहां की है। हमारा दूसरा सवाल, कहीं किसी पुराने वीडियो को धार्मिक एंगल देकर जानबूझकर इसे वायरल तो नहीं किया जा रहा है। अब देखिए सच और झूठ क्या है।
1: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वीडियो की पड़ताल में जुटी। सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे इंटरनेट पर सर्च किया। इस दौरान हमें 8 नवंबर 2025 को छपी एक न्यूज रिपोर्ट मिली। इसमें दी गई जानकारी के मुताबिक ये घटना हरियाणा के हिसार के कैंप चौक इलाके में घटी थी। रिपोर्ट में ये भी बताया गया था कि रणबीर नाम का एक व्यक्ति नॉनवेज की दुकान पर पहुंचा और दुकानदार पर हमला करने लगा। पीड़ित की पहचान उत्तराखंड निवासी मनु के रूप में हुई थी। सर्च के दौरान हमें एक और रिपोर्ट मिली। 25 नवंबर 2025 को ये रिपोर्ट पब्लिश हुई थी। रिपोर्ट के अनुसार दुकानदार को थप्पड़ मारने के बाद रणबीर ने खुद को बजरंग दल का सदस्य बताया और मनु पर हमला जारी रखा। रिपोर्ट में आगे बताया गया था कि दुकानदार ने बार बार उससे कहा कि वो हिंदू है, इसके बावजूद खुद को बचाने के प्रयास में उसे जय श्री राम के नारे लगाने पड़े। इसके बाद हमने नॉनवेज दुकान के मालिक का पता लगाने की कोशिश की। हमने हिसार के कैंप चौक इलाके में मांसाहारी दुकानों की खोज की और मनु चिकन पकौड़ी नाम की एक दुकान मिली। दुकान की भौगोलिक स्थिति का पता लगाने के बाद हमें दुकान के साइन बोर्ड पर एक फोन नंबर मिला। हालांकि जब हमने कॉल किया तो वो नंबर बंद था। मनु ने अपनी पहचान की पुष्टि करते हुए फैक्ट चेक को बताया कि वो हिंदू है। बातचीत के दौरान उसने कहा कि उस मंगलवार को उन्होंने दुकान सिर्फ सफाई के लिए खोली थी, हालांकि शाम को कुछ ग्राहक आ गए इसलिए उन्होंने जो भी खाना उपलब्ध था वही परोस दिया। मनु के मुताबिक रणवीर अचानक दुकान पर आया और उस पर हमला करने लगा और इसका वीडियो कैमरा में रिकॉर्ड कर लिया। मनु ने उसे बताया कि वो हिंदू है, लेकिन रणबीर ने उसकी बात नहीं मानी और उससे धार्मिक नारा लगाने को कहा। बाद में जब वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस ने कार्रवाई की और रणबीर को गिरफ्तार कर लिया। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल दावा झूठा साबित हुआ। वायरल हो रहा वीडियो नवंबर 2025 का है और हरियाणा के हिसार का है और वीडियो में दिख रहे दोनों व्यक्ति हिंदू है। पीड़ित ने इसकी पुष्टि की है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
0: फैक्ट चेक में फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के उस पर आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में, दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
3: Are you wondering how you can fit a teaching degree into a busy lifestyle? WGU's Bachelor of Arts in Elementary Education degree program is designed for working adults. With our competency-based curriculum model, you can progress through courses as soon as you prove mastery of the material. No rigid seat or class times. No endless waiting for your teaching dream to begin. Just a degree that fits your schedule. Get classroom ready on your time. Learn more at wgu.edu.
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला
0: फैक्ट चेक के आखिरी सफर का, जहां आपको दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हैं, जिन्हें खूब पसंद किया जा रहा है।
4: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो ने लोगों के दिल को छू लिया है। ये वीडियो न केवल मानवीय संवेदनाओं की मिसाल पेश करता है, बल्कि ये भी दिखाता है कि मुश्किल घड़ी में मदद के लिए आने जाने वाले लोग आज भी समाज में मौजूद हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक सब्जी विक्रेता का ठेला अचानक सड़क पर पलट जाता है। ठेले में रखे आलू और प्याज बड़ी मात्रा में सड़क पर बिखर जाते हैं। कुछ ही पलों में पूरा रास्ता सब्जियों से भर जाता है और ठेला चालक असहाय नजर आने लगता है। उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती अपनी मेहनत से जुटाई गई सब्जियों को दोबारा समेटने की होती है। लेकिन इसके बाद जो सीन सामने आता है वो हर किसी का दिल जीत लेता है। आसपास से गुजर रहे लोग बिना किसी झिझक के मदद के लिए आने लगते हैं। कोई सड़क पर गिरे आलू उठाने लगता है तो कोई प्याज इकट्ठा करने में जुट जाता है। कुछ लोग ठेले को संभालने और उसे सीधा करने में मदद करते हैं, जबकि कुछ लोग बिखरी हुई सब्जियों को वापस ठेले में रखने का काम शुरू कर देते हैं। सबसे खास बात ये रही कि वहाँ मौजूद किसी भी व्यक्ति ने मदद करने से पहले कोई सवाल नहीं पूछा। लोगों के लिए उस समय केवल एक बात मायने रख रही थी कि एक मेहनतकश व्यक्ति परेशानी में है और उसे सहायता की आवश्यकता है। यही सोच इस वीडियो को और अधिक खास बना देती है। ये वीडियो लोगों को खूब पसंद आ रहा है। उसकी मासूमियत और अलग अंदाज ने इंटरनेट का ध्यान खींच लिया है। वीडियो की शुरुआत में एक छोटा बच्चा स्कूल यूनिफॉर्म पहने हुए नजर आता है। उसकी पीठ पर स्कूल बैग टंगा हुआ है, जिससे साफ पता चलता है कि वो पढ़ाई के लिए स्कूल जा रहा है। पहली नजर में यह सीन बिल्कुल नॉर्मल लगता है, क्योंकि रोजाना लाखों बच्चे स्कूल जाते हैं। लेकिन जैसे ही कैमरा थोड़ा आगे बढ़ता है, लोगों की नजर उस खास बात पर पड़ती है जिसने इस वीडियो को वायरल बना दिया है। दरअसल ये बच्चा किसी साइकिल, मोटरसाइकिल या किसी दूसरे सामान्य वाहन पर नहीं, बल्कि एक बकरे की सवारी करते हुए स्कूल जा रहा है। यही अनोखा नजारा लोगों को बेहद पसंद आ रहा है। वीडियो में बच्चा पूरे आत्मविश्वास के साथ बकरे की पीठ पर बैठा दिखाई देता है। उसके हाथ में एक छोटी सी छड़ी भी नजर आती है, जिससे ऐसा लगता है मानो वो अपने इस अनोखे वाहन को कंट्रोल कर रहा हो। सबसे दिलचस्प बात यह है कि बच्चा पूरी तरह सहज दिखाई देता है और आराम से अपने रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। हमारी संस्कृति में बेटियों को लक्ष्मी और साक्षात देवी का रूप माना जाता है, और जब बेटी अपने घर पहुंचती है तो उसका स्वागत कुछ ऐसा होता है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। लोग जमकर इस वीडियो पर कमेंट्स कर रहे हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि पारंपरिक लिबास में एक छोटी बच्ची बेहद क्यूट लग रही है। घर में दाखिल होने से पहले एक थाली में उसके पैर पखारे जाते हैं, माथे पर तिलक लगाया जाता है और आरती उतार कर उसका गृह प्रवेश कराया जाता है। सोशल मीडिया पर यह दिल छू लेने वाला वीडियो खूब वायरल हो रहा है। इसमें एक युवक अपनी पहली सैलरी अपने माता पिता के हाथों में सौंपता नजर आ रहा है। बेटे की पहली कमाई देखकर माँ बाप जिस तरह इमोशनल हुए, उसने इंटरनेट पर हर किसी का दिल जीत लिया। ये वीडियो IIM से ग्रेजुएट हुए एक लड़के का है। MBA करने के बाद जब लड़के की पहली जॉब लगी और पहली सैलरी आई, तो उसने इसे बेहद खास अंदाज में अपने मम्मी पापा को गिफ्ट किया। यूजर्स इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं। वैसे तो इन दिनों सोशल मीडिया पर मेलोडी का खुमार हर किसी के सिर चढ़कर बोल रहा है, लेकिन इस वायरल वीडियो की तो बात ही अलग है। देखिए कैसे 1 रुपए वाली मेलोडी टॉफी ने बुजुर्ग महिला के चेहरे पर मुस्कान ला दी। कहते हैं कि प्यार की कोई उम्र नहीं होती, और ये वीडियो इसी बात को सच साबित कर रहा है। इस खूबसूरत वीडियो में बुजुर्गों के दिलों में फिर से प्यार के रंग भर दिए। वाटर पार्क से जुड़े मजेदार और अनोखे वीडियो इंटरनेट यूजर्स को काफी पसंद आते हैं। कभी कोई व्यक्ति स्लाइड से फिसलते समय अजीब हरकत कर बैठता है, तो कभी किसी के साथ ऐसा मजेदार हादसा हो जाता है कि देखने वाले अपनी हंसी नहीं रोक पाते। इन दिनों भी एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर चर्चा बटोर रहा है। वायरल हो रहे इस वीडियो में एक वाटर पार्क का दिलचस्प नजारा देखने को मिलता है। वीडियो की शुरुआत में एक लड़की बड़ी आरामदायक तरीके से पानी की स्लाइड पर फिसलते हुए नीचे की तरफ आती दिखाई देती है। वो पूरी तरह से राइड के मजे ले रही होती है और उसके चेहरे पर भी उत्साह साफ नजर आता है। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि अगले कुछ सेकंड में उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जो न केवल उसे चौंका देगा, बल्कि सोशल मीडिया पर लाखों लोगों का मनोरंजन भी करेगा। जैसे ही लड़की स्लाइड के लास्ट हिस्से की ओर पहुंचती है, तभी पीछे से एक दूसरी लड़की उसी स्लाइड पर बेहद तेज गति से नीचे आती हुई दिखाई देती है। उसकी स्पीड इतनी अधिक होती है कि वो अपने आगे मौजूद लड़की को समय रहते देख नहीं पाती। कुछ ही पलों में दोनों के बीच जोरदार टक्कर हो जाती है। टक्कर इतनी अचानक होती है कि दोनों लड़कियां अपना बैलेंस खो बैठती हैं और सीधे पानी में जा गिरती हैं। ये पूरा दृश्य इतना अचानक होता है कि वहां मौजूद लोग भी कुछ क्षणों के लिए हैरान हो जाते हैं। हालांकि किसी को गंभीर चोट नहीं लगती। आप किसी जंगल सफारी पर गए हों और आपकी गाड़ी के ठीक बगल में एक खूंखार बब्बर शेर बैठा हो, तभी अचानक कुछ लोग आराम से उसके बगल से पैदल और बाइक पर गुजरने लगे, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? यकीनन ये नजारा किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी है। लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि सफारी गाड़ी में बैठा एक पर्यटक वीडियो बना रहा है, तभी सड़क पर एक के बाद एक बाइक सवार गुजरते हैं। हैरान करने वाला मोड़ तब आता है जब कैमरा थोड़ा घूमता है और सड़क के बीच एक विशालकाय शेर बैठा दिखाई देता है। हद तो तब हो गई जब बाइकर्स के साथ साथ एक शख्स बड़े आराम से पैदल ही शेर के पास से गुजर जाता है, मानो वहाँ कोई शेर नहीं बल्कि कोई बिल्ली बैठी हो। इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात ये है कि शेर भी उन्हें देखकर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता और शांति से बैठा रहता है। सोशल मीडिया पर वायरल ये वीडियो लोगों का ध्यान खींच रहा है, जिसने फुटबॉल मैच को ही यादगार बना दिया। इस वीडियो को देखकर लोग सिर्फ मुस्कुरा ही नहीं रहे, बल्कि इसे इंटरनेट का सबसे क्यूट फुटबॉल वीडियो भी बता रहे हैं। दरअसल एक फुटबॉल मैच के दौरान ऐसा मजेदार नजारा देखने को मिला जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। खिलाड़ी मैदान में पूरी गंभीरता से मैच खेल रहे थे, तभी अचानक एक छोटा सा बछड़ा मैदान में आ गया। शुरुआत में खिलाड़ियों को लगा कि शायद वह थोड़ी देर बाद बाहर चला जाएगा, लेकिन अगले ही पल उसने जो किया उसे देखकर मैदान में मौजूद हर व्यक्ति हंसने लगा। वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसे ही खिलाड़ी फुटबॉल को एक दूसरे की तरफ पास कर रहे थे, वैसे ही वो नन्हा बछड़ा भी पूरी उत्सुकता के साथ गेंद के पीछे दौड़ने लगा। गेंद मैदान के जिस कोने में जाती, बछड़ा भी उसी दिशा में तेजी से भागता दिखाई देता। उसकी मासूम हरकतें और उत्साह देखकर खिलाड़ी भी अपनी हंसी रोक नहीं पाए।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
5: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop star

0: Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग।
2: खबर अयोध्या से, जहां पर 1000 साल पुराने आचार्य मंदिर में 400 साल पुरानी पांडुलिपि मिली है। करीब 5000 की संख्या में ये पांडुलिपियां फारसी, अरबी, उर्दू और कुछ रोमन लिपि में लिखी गई हैं, जिनका अध्ययन किया जाएगा और इसके बाद इन दुर्लभ पांडुलिपियों को अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय में रखा जा सकता है। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या के गौरवशाली इतिहास को समेटे हुए ये वो दुर्लभ दस्तावेज है जो आने वाले वक्त में लोगों को अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय में देखने को मिल सकता है। ये पांडुलिपियां 12वीं से लेकर 19वीं शताब्दी तक की बताई जा रही हैं, जो अयोध्या के 1000 साल पुराने आचार्य मंदिर से मिली है। इनकी संख्या 5000 के करीब है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि सनातन धर्म के इस बेहद प्राचीन मंदिर में मिली ये पांडुलिपियां फारसी, अरबी, उर्दू और कुछ रोमन लिपियों में लिखी गई हैं।
3: ये दंतधावन कुंड आचार्य मंदिर तकरीबन 1000 साल प्राचीन विष्णु प्रकाशाचार्य द्वारा स्थापित यह स्थान है और यहाँ पे जो भी पांडुलिपियां मिली है वो फारसी में है और आपके अरबी में है, उर्दू में है, कुछ रोमन में है, बाकी उसमें कुछ 12वीं शताब्दी की हैं, 13वीं की भी हैं, कुछ 14वीं 15वीं की हैं और 17वीं शताब्दी की हैं, 19वीं शताब्दी की हैं। तो ऐसी बहुत सारी पांडुलिपियां आपके स्थान पे दंतधावन कुंड पे मिली हैं। तकरीबन ये 5000 के आसपास ये जो इनकी संख्या है।
2: आचार्य मंदिर के पुजारी का कहना है कि ज्यादातर पांडुलिपियां भोजपत्र की हैं, जिनका जल्दी ही हिंदी में अनुवाद कराया जाएगा, जिसके बाद ही इन दुर्लभ पांडुलिपियों पर लिखे इतिहास से पर्दा उठ सकेगा। हालांकि उन्होंने बताया कि इन पांडुलिपियों पर अयोध्या के मंदिरों, पुराने कुंडों और मंदिरों के लिए दी गई जमीनों का लेखा जोखा हो सकता है।
3: देखिए, ज्यादातर ये जो लिपियां हैं ये कुछ हुक्मनामे हैं और शहंशाह हिंद की तरफ से जो जमीन दी गई स्थान को उसमें है। अयोध्या में जो मंदिर बसाए गए हैं दंत धावन कुंड की तरफ से उनकी है, कुछ अयोध्या को लेकर के जो और चीजें हैं उसकी है। तो तथा कथित कहा जाए तो ये अयोध्या का एक पूरा इतिहास है, प्राचीन इतिहास है। लमसम सारी जो है वो भोजपत्र पे हैं, कुछ तामपत्र पे थी, तो जब अंग्रेज यहाँ से जाने लगे तो उन्होंने भोजपत्र पे करके और उसको तामपत्र खुद लिखा।
2: दरअसल अयोध्या में भगवान श्री राम से जुड़ी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करने के लिए दुर्लभ पांडुलिपियों का देश भर से संग्रह किया जा रहा है और फिर इन्हें जांच के बाद अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय में रखा जाएगा। लेकिन इस संग्रहालय में सिर्फ उन्हीं पांडुलिपियों को रखा जाएगा जो सिर्फ हाथ से लिखी है और दुर्लभ है।
4: विभिन्न स्थानों पे इस प्रकार की पांडुलिपियां हमें मिली है, जैसे लक्ष्मण किला में, रामकथा संग्रहालय में, अंतर्राष्ट्रीय रामायण शोध संस्थान में, गोकुल भवन में और हनुमानगढ़ी में और अन्य स्थानों का भी सर्वेक्षण किया जा रहा है। ये विभिन्न भाषाओं में, कुछ हिंदी में मिली है, कुछ संस्कृत में मिली है, अलग अलग जगहों पे उर्दू में भी मिल रही है, तो हम उन सभी को असेस करके डिजिटाइज करा रहे हैं।
2: बताया जा रहा है कि पांडुलिपियों को इकट्ठा करने की मुहिम के तहत देश के अलग अलग हिस्सों से कई लोग ऐसी दुर्लभ पांडुलिपियों की जानकारी अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय और डायरेक्टर संजीव सिंह को दे चुके हैं। इस पूरे अभियान का मकसद सिर्फ पांडुलिपियों को इकट्ठा करना ही नहीं बल्कि इन्हें वैज्ञानिक तरीके से सुरक्षित रखना भी है, इसीलिए इन्हें डिजिटल रूप में सेव करने की तैयारी है ताकि आने वाले समय में लोग इन्हें आसानी से देख भी सकें और पढ़ भी सकें।
5: इस प्रकल्प में हम लोग दो तरह की बात करेंगे, एक तो पांडुलिपियों का संग्रहण कर रहे हैं, दूसरा उन पांडुलिपियों को जो हमको नहीं मिल पा रही हैं, तो उनका जो है फेसेमाइल या टेक्निकल, आजकल बहुत से टेक्निकल डिवाइस के रूप में जैसे कि हम माइक्रोफिल्म बना लेंगे, तो क्या होगा कि आपको एक ही जगह सब चीज मिल जाएगी। तो रेफरेंस के लिए जो संदर्भ है, तो इसलिए युवाओं को ही नहीं, शोधार्थियों के लिए जो राम राम साहित्य राम कथा पर शोध कर रहे हैं, उनके लिए अद्भुत केंद्र होने वाला है।
2: इस पूरी पहल के जरिए रामायण की कालातीत विरासत को सुरक्षित कर आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना है अयोध्या से मयंक शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इस बार का फीफा वर्ल्ड कप शुरू होने जा रहा है 12 जून से, जिसने संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको की सह मेजबानी में यह टूर्नामेंट खेला जाना है। इस बार के विश्व कप में 48 टीमें खेलेंगी। ये वर्ल्ड कप के इतिहास में पहली बार हो रहा है जब 48 टीमों को शामिल किया गया, लेकिन इस बार टूर्नामेंट में खेले जाने वाले कुल 104 मुकाबले कुछ हद तक हॉकी की तरह होंगे, क्योंकि इसमें कुछ हॉकी वाले ही नियम लगाए गए हैं। तो क्या है बदले हुए नियम, आपको बताते हैं।

0: गजल थाम कर जुनून को एंथम में बदल देने वाली शकीरा का इंतजार कर रही है। कोलंबियाई पॉप स्टार शकीरा फीफा विश्व कप के उद्घाटन समारोह में टूर्नामेंट के ऑफिशियल गाने को प्रेजेंट करने वाली हैं। इसकी रिहर्सल जोर शोर से चल रही है। मैक्सिको सिटी के सबसे बड़े मंच पर जब शकीरा उतरेंगी तो उनका अंदाज कुछ इस तरह का होगा। जून से दुनिया का दिल फुटबॉल की हर एक किक पर धड़केगा। रोमांच इसलिए भी खास होगा क्योंकि इस बार 32 की बजाय 48 टीमें खेलेंगी। तीन देश मिलकर मेजबानी करेंगे और खिताब के लिए 7 की बजाय 8 मैच जीतने होंगे। यही नहीं, पहली दफा मैच के बीच खिलाड़ी इंटरव्यू देंगे। कॉर्नर किक में VAR का दखल होगा और फाइनल में भव्य हाफ टाइम शो होगा। इस बार के वर्ल्ड कप में केवल खेल का रोमांच ही नहीं बढ़ेगा बल्कि कुछ नियमों से खेल का अंदाज भी बदलेगा। आम तौर पर फुटबॉल में 45-45 मिनट के दो हाफ होते हैं जिन्हें 15 मिनट का हाफ टाइम ब्रेक अलग करता है, लेकिन इस बार मैच 4 क्वार्टर में बटा हुआ नजर आएगा। मौसम की वजह से हर मैच में दोनों हाफ के बीच जरूरी हाइड्रेशन ब्रेक दिया जाएगा। ये ब्रेक पहले हाफ में लगभग 22वें मिनट और दूसरे हाफ में 67वें मिनट के आसपास होगा। यानी 2026 का फीफा विश्व कप केवल गोल, जीत और ट्रॉफी की कहानी नहीं होगा बल्कि एक नए तरह के स्टार्टअप, सिक्योरिटी और रणनीति के साथ एंटरटेनमेंट का अद्भुत संगम होगा। यही वजह है कि इस बार फीफा वर्ल्ड कप के टिकट्स के लिए मारामारी मची है। कहा तो ये भी जा रहा है कि एक मैच के टिकट्स की कीमत लाखों से करोड़ों तक जा पहुंची है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
2: उसके प्रहार से ड्रैगन हो जाएगा अंधा, एक अटैक से बिखर जाएगा आतंकिस्तान का कुनबा। दो दुश्मन, दो हथियार, दोनों ही दमदार। देखिए रणक्षेत्र आज शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
3: गुजरात और दमन के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया विकास का तोहफा। हजीरा में लार्सन एंड ट्यूब्रो की इंडस्ट्रियल फैसिलिटी का जायजा लिया। सूरत को 200 बेड वाले अस्पताल की सौगात दी। चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह। अब तक 30 लाख से ज्यादा भक्तों ने दर्शन किए। केदारनाथ पहुंचने वालों का आंकड़ा 11 लाख के पार। पर्यावरण दिवस के मौके पर दुनिया भर में पर्यावरण संरक्षण का संदेश। सूरत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगाया एक पेड़ मां के नाम। लोगों से वृक्षारोपण की अपील की। भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर शानदार खबर। वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% रही GDP ग्रोथ। जनवरी से मार्च की तिमाही में 7.8% की दर से हुई वृद्धि। नहीं बदलेगी आपके लोन की EMI। RBI ने रेपो रेट 5.25% रखी बरकरार। विदेशी निवेशकों को लुभाने के लिए भी उठाए कदम।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा गुप्ता। साहिल देव जीएनटी स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। तो जीएनटी स्पेशल में आज बात ऋतिक रोशन के उस रूप की जिसकी अब फैंस ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ये रूप आपके सामने है। ऋतिक रोशन के लुक्स की वजह से फैंस उन्हें ग्रीक गॉड कहते हैं, ये तो आप जानते हैं। और अब रियल लाइफ के ये ग्रीक गॉड रियल लाइफ यानी फिल्मी पर्दे पर भगवान की भूमिका निभाते हुए नजर आ सकते हैं। चर्चा तो ये है कि महावतार नरसिम्हा बनाने वाले डायरेक्टर अश्विन कुमार महादेव पर आधारित एक फिल्म पर काम कर रहे हैं और भगवान शिव का किरदार निभाने के लिए उनकी पहली पसंद है ऋतिक रोशन। यानी कभी बड़े पर्दे पर सुपर हीरो क्रिश का रोल निभाने वाले ऋतिक अब जल्द ही महादेव के सुपर अवतार में सिल्वर स्क्रीन पर हम सबको नजर आ सकते हैं। ये बात जब से छिड़ी है ऋतिक के फैंस में खासी एक्साइटमेंट है, क्योंकि वाकई ऋतिक को महादेव के रोल में देखना एक अलग एक्सपीरियंस हम सबके लिए हो सकता है।

0: टेंग और अंदाज ऐसा कि दिल जीत गया। सुपर हीरो के अवतार से लेकर ऐतिहासिक किरदार तक,
1: आप अपने मायके वापस तशरीफ ले।
0: इंटरनेशनल कॉन आर्टिस्ट से लेकर देसी हीरो विजय दीनानाथ चौहान तक, बरसों से अलग अलग रोल्स में फैंस का दिल जीतते आए हैं ऋतिक रोशन। मस्कुलर फिजिक, परफेक्ट जॉ लाइन, किलर लुक्स, शानदार स्क्रीन प्रेजेंस और जोरदार डांस ने करोड़ों चाहने वालों को उनका दीवाना बना रखा है।

0: उनके लुक्स के लिए दुनिया उन्हें बॉलीवुड का ग्रीक गॉड कहा करती है। और अब बॉलीवुड का ये ग्रीक गॉड पर्दे पर असल में गॉड यानी भगवान का किरदार निभाता नजर आ सकता है। खबर है कि महाअवतार नरसिम्हा फिल्म बनाने वाले डायरेक्टर अश्विन कुमार ऋतिक को लेकर एक माइथोलॉजिकल स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं। चर्चाएं गर्म है कि अश्विन कुमार एक ऐसी भव्य पौराणिक फिल्म पर काम कर रहे हैं जो भगवान शिव पर केंद्रित होगी। इस फिल्म के केंद्र में वो रूप होंगे जो पुरुष और प्रकृति यानी सृजन और विध्वंस दोनों का संतुलन है। बताया जा रहा है कि अश्विनी कुमार की इस फिल्म में भगवान शिव के नटराज और अर्ध नारीश्वर रूप पर फोकस होगा। पर इन दोनों महाकिरदारों के लिए अश्विन की नजर ऋतिक रोशन पर लंबे अरसे से टिकी हुई है। पिछले साल महावतार नरसिम्हा की रिलीज के समय डायरेक्टर अश्विन कुमार ने इंडिया टुडे को दिए इंटरव्यू में इस बात का जिक्र भी किया था।
1: वन को वन एक्टर वन ऑफ मेनी दैट यू वुड लव टू कोलैबोरेट इन द कमिंग इयर्स एज सून एज पॉसिबल मेबी हु यू हैव एडमायर्ड अ लॉट
2: आई थिंक ऋतिक रोशन ऋतिक इज आई थिंक demigod personified. When if you look at his structure and he's a very good mover and he's a dancer. So I think him playing some sort of a fantastical character, apart from the film that he does, is a part of his career. I think he should. I think I would want to see him in that kind of a fantastical role.
1: What would be that fantastic?
2: Probably as the Nataraj, a dancer.
1: A dancer
2: who would create or destroy cosmically.
1: Wow, yeah. That's amazing. Hope people are listening to this and something comes up. Or you make one where we
2: perhaps yes, if by the mercy of Lord Shiva and grace of his yes.
0: ऋतिक का शानदार बॉडी स्ट्रक्चर और उनके ग्रेसफुल मूव्स इन दोनों किरदारों के लिए उन्हें बिल्कुल परफेक्ट बनाते हैं। हालांकि अभी फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम हो रहा है और ये बेहद शुरुआती दौर में है, लेकिन चर्चाओं का बाजार गर्म है। खबर है कि अपने इस प्रोजेक्ट को लेकर अश्विन कुमार ने कुछ दिन पहले ही ऋतिक रोशन से मुलाकात की है और ऋतिक रोशन को उन्होंने इस फिल्म का नरेशन भी दिया है। सूत्रों की माने तो ऋतिक को फिल्म का अनोखा कॉन्सेप्ट बेहद पसंद आया है।
3: आज की जो वायरल न्यूज है उससे ये पता चल रहा है कि ऋतिक रोशन हमको बहुत ही जल्द एक नए अवतार में नजर आएंगे। ये अवतार में जिसकी बात कर रही हूँ वो है अर्ध नारेश्वर का, जो वो बहुत ही जल्द प्ले करते हुए नजर आ सकते हैं, बिकॉज जो डायरेक्टर है महाअवतार नरसिम्हा के अश्विन कुमार ने ये स्क्रिप्ट ऋतिक के पास ले गए और ऐसा कहा जा रहा है कि ऋतिक को ये स्क्रिप्ट बहुत पसंद भी आई है और चांसेस है कि ऋतिक ये किरदार प्ले कर सकते हैं। और यही नहीं, ये एक्चुअली न्यूज हमसे ही अश्विन कुमार ने बहुत एक साल पहले न्यूज ब्रेक की थी कि ही इज इंटरेस्टेड टू वर्क विथ ऋतिक रोशन और वो उनको अर्ध नारेश्वर के रूप में दिखते हैं। तो ये बहुत एक्साइटिंग खबर है ऋतिक के फैंस के लिए। और हमने महा अवतार नरसिम्हा देखा ही है, वो एक विजुअल स्पेक्टेकल था और लोगों को बहुत पसंद भी आया था। एंड दिस इज अगेन, हम ऋतिक को बहुत ही अलग अवतार में देखेंगे। उनको हमने बहुत सुपर हीरो रोल्स प्ले करते हुए देखा है, बट दिस विल बी समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग फॉर द फैंस जो उनको बहुत समय से बड़े पर्दे पे देखना चाहते हैं। एंड दिस विल बी अ विजुअल ट्रीट फॉर ऑल ऑफ देम।
0: अभी ये चर्चा चल ही रही थी कि इसी बीच ऋतिक रोशन की ओर से की गई एक सोशल मीडिया पोस्ट ने चर्चा को जरा और हवा दे दी। इस पोस्ट में ऋतिक ने अपना एक पिक्चर शेयर किया है जिसमें वे पेरिस में घूमते नजर आ रहे हैं। फोटो के साथ ऋतिक ने लिखा है, मुझसे अभी पूछा गया कि मैं किस तरह का रोल ढूंढ रहा हूँ। मैंने इसका जवाब सोचा तो मैं खुद हैरान रह गया। आपको फिल्म लक बाय चांस का जफर याद है? बस वैसा ही कुछ अगर मिल जाए तो मैं तुरंत काम करने के लिए तैयार हो जाऊंगा, लेकिन डायरेक्टर्स मुझे सिर्फ गुड गाय के रोल ही देना चाहते हैं। ऋतिक की इस पोस्ट के बाद ये चर्चा और तेज हो गई है कि कहीं गुड गाय रोल से उनका इशारा डायरेक्टर अश्विन कुमार के ऑफर की तरफ तो नहीं है, क्योंकि महादेव से बड़ा गुड गाय भला कौन ही हुआ है और होगा। अगर ऐसा होता है तो ऋतिक जल्द ही पर्दे पर महादेव के रोल में नजर आ सकते हैं। ऋतिक के फैंस उन्हें शिवजी के अवतार में तांडव करते देखने के लिए खासे एक्साइटेड होंगे। वैसे आपको बता दें कि इस समय बॉलीवुड और साउथ फिल्मों के कई ए-लिस्ट स्टार्स अलग अलग मैथोलॉजिकल फिल्मों में काम कर रहे हैं। इनमें सबसे बड़ा और चर्चित नाम है रणवीर कपूर का। संजू और एनिमल जैसी फिल्मों में अपनी वर्सेटिलिटी साबित करने के बाद रणवीर अब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का बेहद शांत और शक्तिशाली किरदार निभाने जा रहे हैं। नितेश तिवारी की भव्य फिल्म रामायणम में रणवीर का ये रूप देखने के लिए फैंस का उत्साह सातवें आसमान पर है।

इसके अलावा धुरंधर के रहमान डकैत यानी अक्षय खन्ना का अगला बड़ा प्रोजेक्ट भी एक ऐसे ही कैरेक्टर से जुड़ा है। अक्षय खन्ना फिल्म महाकाली के जरिए तेलुगु सिनेमा में डेब्यू कर रहे हैं। अक्षय इस फिल्म में असुर गुरु शुक्राचार्य के एक बेहद जटिल और शक्तिशाली अवतार में नजर आने वाले हैं। इस किरदार में स्क्रीन पर एक रहस्यमयी किरदार के कई ग्रे शेड्स नजर आएंगे। तो वहीं डायरेक्टर राजा मौली की अगली फिल्म वाराणसी भी अपने आप में कई पौराणिक किरदारों और संदर्भों को समेटे है। ये एक टाइम ट्रेवल कॉन्सेप्ट पर बनी एक्शन एडवेंचर फिल्म बताई जा रही है, जिसके ट्रेलर में त्रेता युग में घटी घटनाओं और रामायण के संदर्भों को साफ तौर पर देखा जा सकता है। राजा मौली की इस फिल्म में महेश बाबू और प्रियंका चोपड़ा मुख्य किरदार निभा रहे हैं।

0: वैसे मैथोलॉजिकल कैरेक्टर निभाने के मामले में न्यू कमर्स भी पीछे नहीं है। चर्चा है कि सैयारा फिल्म से रातों रात छा जाने वाली एक्ट्रेस अनीत पड्डा भी मैडॉक फिल्म्स के लिए मैथोलॉजिकल कैरेक्टर प्ले करती दिख सकती हैं। इस फिल्म का नाम है शक्तिशालिनी, जिसमें अनीता पड्डा दोहरी भूमिका में नजर आएंगी। फिल्म अच्छाई और बुराई के संग्राम से जुड़ी बंगाली लोक कथाओं पर आधारित होगी, जिसमें अनीता देवी माँ से प्रेरित रक्षक यानी शक्ति के किरदार में दिख सकती हैं, तो वहीं दूसरा किरदार शालिनी एक बुरी और दुष्ट ताकत पर आधारित होगा। अब चाहे वो ऋतिक रोशन का नटराज रूप धारण करने की चर्चा हो, रणवीर का राम बनना हो या अक्षय खन्ना का शुक्राचार्य के रूप में आना, साफ है कि मेकर्स अब बड़े सितारों के स्टारडम को इतिहास और पुराणों की अमर गाथाओं के साथ जोड़कर बॉक्स ऑफिस पर नया इतिहास रचने की तैयारी में है। मुंबई से अनीता ब्रिटो के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: अब तक तो रणबीर कपूर की रामायण और राजामौली की वाराणसी का ही इंतजार लोगों का था, लेकिन अब ऋतिक की इस मूवी को लेकर भी बज नजर आ रहा है। एक के बाद एक कई मैथोलॉजिकल फिल्में सिल्वर स्क्रीन पर आने वाली हैं। वैसे देखिए, आस्था से जुड़े हुए विषयों पर बॉलीवुड में ना पहले भी कई बार शानदार फिल्में बनाई गई हैं, जहां सबकी भावनाओं का ख्याल रखते हुए पौराणिक किरदारों को बेहद भव्यता और सम्मान के साथ पर्दे पर दिखाया जाता है, और इन फिल्मों को लोगों का खूब प्यार भी मिला है।
2: भगवान भगवान।

0: यात्री यहाँ आते हैं तीर्थ पे अपने भगवान से मिलने, और उनकी सुविधा हमारा धर्म है।
1: ईश्वर में आस्था, भगवान में विश्वास वो नेमत है जो सदियों की सोच समझ संवेदनाओं की छलनी से छनकर हम तक पहुंची है। कभी वेद पुराण शास्त्र जैसे तमाम ग्रंथों और रचनाओं के जरिए, तो कभी दादी नानी की कहानियों के जरिए पीढ़ी दर पीढ़ी इंसानों को आस्था की ये डोर इतने विश्वास के साथ थमाई जाती है कि ये हमारे व्यक्तित्व में रच बस जाती है। और यही विश्वास जब सिनेमा के पर्दे पर लार्जर देन लाइफ अंदाज में बेहद भव्यता के साथ साकार होता है, लोग उसे हाथों हाथ लेते हैं। बीते सालों में बॉलीवुड की कई फिल्मों ने इस विश्वास को बढ़ाया भी है, संवारा भी है और एक नए रूप में पर्दे पर उतारा भी है।
2: जब तक लोग ऐसे खिलौनों में मानते रहेंगे ना, तब तक हमारा धंधा चलता रहेगा।
3: ये भगवान की मूर्ति है, इसको खिलौना मत बोलिए।
2: अरे भगवान भगवान है ना, वो तुम इंसानों का भ्रम है।
4: तेरे सक्षम में पाप के लिए दंड मिलेगा तुझे, वो स्वयं दंड।
1: 2012 में आई ओ माय गॉड एक ऐसी फिल्म थी। ओ माय गॉड एक ऐसे इंसान की कहानी थी जिसे भगवान में विश्वास नहीं था। इस अविश्वास को विश्वास में बदलने के लिए खुद भगवान ने धरती पर उतरकर घटनाओं का ताना बाना बुना था। बाद में इसका पार्ट 2 भी रिलीज किया गया। अक्षय कुमार ने इस फिल्म के पहले भाग में भगवान कृष्ण तो दूसरे भाग में भगवान शिव का किरदार निभाया था।
5: महाराज तुम तो उल्टी गंगा बहा रहे हो। गंगा कहाँ से बहती है इसके बारे में मुझे मत बता।
1: कमाल की बात ये थी कि इस फिल्म में भगवान ने एक इंसान का भरोसा जीतने के लिए खुद इंसानियत का रास्ता चुना था। इसी कॉन्सेप्ट पर बनी ओ माई गॉड फिल्म को लोगों ने बेहद पसंद किया था। ये पहली बार था जब किसी फिल्म ने नई पीढ़ी के सामने अध्यात्म के धागों के साथ इंसानियत के धर्म और विज्ञान के लॉजिक को बड़े असरदार तरीके से पिरोने और बुनने की कोशिश की थी।
6: आशीर्वाद नहीं चाहिए, पैसे चाहिए।

0: भगवान अमरेंद्र बाहुबली का रक्त हो तुम।
1: लेकिन नहीं, असल दुनिया से परे एक कहानी पर आधारित बाहुबली फिल्म में डायरेक्टर राजा मौली ने सर्वशक्तिमान की सत्ता को बेहद दमदार तरीके से दिखाया था। बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए ईश्वर का आशीर्वाद और साथ कितना जरूरी है, ये फिल्म की कहानी में एक नहीं बल्कि कई मौकों पर दिखाया गया। फिल्म के मुख्य किरदार का नाम ही शिवा रखा गया। बाहुबली में शिवलिंग उठाने और लड़ाई से पहले रक्त से महादेव का अभिषेक करने वाला सीन आज भी लोगों के मन में बसा है।

2016 में रिलीज हुई अजय देवगन की फिल्म शिवाय में भी फिल्म के मुख्य किरदार को महादेव से प्रेरित दिखाया गया था। इस फिल्म में अजय देवगन ने एक शेरदिल पर्वतारोही का किरदार निभाया था। शिवाय की जिंदगी में भगवान शिव के प्रभाव को फिल्म की कहानी में दिखाया गया था। इसी तरह सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म केदारनाथ भी भगवान शिव की महिमा पर आधारित है। इस फिल्म में 2013 की केदारनाथ त्रासदी का जिक्र किया गया है। फिल्म की ज्यादातर शूटिंग केदारनाथ में हुई थी। फिल्म का गाना नमो नमो हे शंकरा आज भी लोगों की जुबान पर है।

0: एक कौन सा सैटेलाइट है जिससे दुनिया भर की जुबानें तू कैच कर लेता है?
1: सर मैं जुबान कैच नहीं करता सर।
2: इसी क्रम में आदित्य पंचोली की फिल्म सैटेलाइट शंकर में भी भगवान शिव के प्रति विश्वास और भक्ति दिखाई गई है।
3: कहाँ है?
1: बोला जी,
0: मुझे तुम्हारा सैनिक शपथ चाहिए सोल्जर।
4: सर मैं सोमवार सुबह बेस पर हाजिरी के लिए मौजूद रहूंगा सर।
2: तो वहीं आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की फिल्म ब्रह्मास्त्र को भी इस लिस्ट में शामिल किया जा सकता है। फिल्म के कई किरदार सनातन धर्म के पौराणिक किरदारों से प्रभावित नजर आते हैं। फिल्म के मुख्य किरदार का नाम ही शिवा रखा गया था, जो दुनिया को बुरी शक्तियों से बचाने के लिए ब्रह्मास्त्र की रक्षा का वचन लेता है। सिर्फ बड़े पर्दे पर ही नहीं बल्कि छोटे पर्दे पर भी धर्म और आस्था से जुड़े धारावाहिकों ने खूब कमाल दिखाया है। रामानंद सागर की रामायण इस लिस्ट में आज कई दशकों बाद भी टॉप पर है। बताया जाता है कि रिलीज होने के समय इस सीरियल की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई थी कि जब ये टीवी पर आता था तो हर जगह सन्नाटा छा जाता था। इस सीरियल ने लोगों के दिलों में अरुण गोविल को राम और दीपिका चिखलिया को सीता के रूप में ऐसा बसाया कि आज भी ये छवि धूमिल नहीं हुई है। इससे इतना तो साफ हो जाता है कि अगर लोगों की भावनाओं और आस्था को उचित सम्मान देकर फिल्में बनाई जाएं, तो न केवल वे सुपरहिट होती हैं, बल्कि लोगों की यादों में हमेशा के लिए रह जाती हैं। यही वजह है कि फैंस ने रामायणम और वाराणसी जैसी फिल्मों से खासी उम्मीद लगा रखी है। और उसी बीच अगर ऋतिक रोशन भी महादेव के रूप में पर्दे पर आ जाते हैं तो फैंस के लिए ये एक शानदार तोहफा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: अब बात फिल्मी फ्राइडे की करते हैं। फिल्मी फ्राइडे पर इस बार एंटरटेनमेंट का ट्रिपल डोज हम सबको देखने को मिला है। एक तरफ नई रिलीज जवानी है तो इश्क होना है और बंदर धमाल मचा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ रामचरण की फिल्म पैडी पहले ही बॉक्स ऑफिस पर अपना दमखम दिखा रही है। फिल्म के ताबड़तोड़ और रिकॉर्ड तोड़ शुरुआत ने इंडस्ट्री में एक नई चर्चा को छेड़ दिया है। रामचरण की फिल्म ने ओपनिंग कलेक्शन के साथ बॉलीवुड की कई ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस लिस्ट में रणवीर सिंह की 30 करोड़ ओपनिंग करने वाली धुरंधर, 40 करोड़ फर्स्ट डे कलेक्शन करने वाली सनी देओल की गदर 2 और 57 करोड़ ओपनिंग अपने नाम करने वाले शाहरुख खान की पठान शामिल हैं। पहले दिन पैडी नेट कलेक्शन प्रीव्यूज शोज के साथ लगभग 70 करोड़ इसका पहुंचा कलेक्शन और वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन 112 करोड़ के नजदीक पहुंच गया है। इन तीनों फिल्मों में सबसे ज्यादा कमाल दिखा रही है फिल्म पैडी। पैडी इस समय बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है। दमदार एक्शन और जोरदार एक्टिंग से भरपूर रामचरण की इस फिल्म ने पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया है। फिल्म के रिकॉर्ड तोड़ शुरुआत ने इंडस्ट्री में एक नई चर्चा को छेड़ दिया है। रामचरण की फिल्म ने ओपनिंग कलेक्शन के साथ बॉलीवुड की कई ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्मों के रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया है।

0: मेगास्टार राम चरण ने बॉक्स ऑफिस पर तूफान ला दिया है। उनकी फिल्म पेडी ने रिलीज के पहले दिन ही धमाल मचा दिया। फिल्म को लेकर फैंस में भारी उत्साह है। आलम ये बना हुआ है कि फैंस थिएटर के अंदर हो या बाहर जश्न मनाते नजर आ रहे हैं। कहीं ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया गया तो कहीं दर्शक सीटियां और ताली बजाते दिखे। ये ही उत्साह फिल्म के फर्स्ट डे कलेक्शन में भी नजर आया। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म को शानदार रिस्पांस मिल रहा है। तभी तो पेडी ने रिलीज के पहले दिन ही 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। शुरुआती रिपोर्ट्स बता रही हैं कि फिल्म ने पहले दिन भारत में नेट कलेक्शन के तौर पर 69 करोड़ 50 लाख रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 112 करोड़ 49 लाख रुपए से ऊपर पहुंच गया, जो किसी भी बड़ी फिल्म के लिए शानदार शुरुआत मानी जा रही है। इतना ही नहीं, रामचरण की फिल्म ने ओपनिंग कलेक्शन के साथ बॉलीवुड की कई ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्मों के रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। इस लिस्ट में रणवीर सिंह की 30 करोड़ ओपनिंग करने वाली धुरंधर, 40 करोड़ फर्स्ट डे कलेक्शन करने वाली सनी देओल की गदर 2 और 57 करोड़ की ओपनिंग अपने नाम करने वाली शाहरुख खान की पठान भी शामिल है। इन आंकड़ों से साफ है कि फिल्म का क्रेज न सिर्फ दक्षिण भारत में है बल्कि हिंदी बेल्ट में भी देखने को मिल रहा है। रामचरण और जानवी कपूर की पेडी 5 भाषाओं में सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। सबसे ज्यादा कलेक्शन तेलुगु भाषा में हासिल हुआ, जो 47 करोड़ 20 लाख रुपए रहा। इसके बाद हिंदी में 3 करोड़ की कमाई हुई, जबकि तीसरे नंबर पर तमिल भाषा से 45 लाख की कमाई इस फिल्म ने कर ली है। वहीं चौथे पायदान पर कन्नड़ में 25 लाख का कलेक्शन फिल्म ने किया है। आखिर में मलयाली भाषा में 10 लाख का कलेक्शन फिल्म ने हासिल किया है। पेडी फिल्म ने जानवी कपूर के करियर को भी नई उड़ान दी है। फिल्म में उनके काम को लेकर सोशल मीडिया पर खूब चर्चा है। जानवी फिल्म की सक्सेस के लिए दुआ मांगने तिरुपति मंदिर भी पहुंची थी। 2024 में आई फिल्म देवरा के बाद पेडी जानवी की दूसरी साउथ फिल्म है। फिल्म के रिलीज के बीच वो ईश्वर का आशीर्वाद और फिल्म की हिट होने की मन्नत मांगने तिरुमला पहुंची थी। तब उनका कैजुअल लुक में बालाजी मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने का वीडियो खूब सुर्खियों में रहा। फिल्म में रामचरण और जानवी की केमिस्ट्री भी फैंस को बेहद पसंद आ रही है। असल में ये फिल्म 1980 के दशक के आंध्र प्रदेश की वो कहानी है, जहां एक गांव का नौजवान अपने लोगों को एकजुट करने के लिए क्रिकेट, कुश्ती और दौड़ के मैदान में उतरता है, सम्मान और पहचान की लड़ाई लड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: आप भी अपने वीकेंड को अच्छा बनाइए, क्योंकि इस एंटरटेनमेंट के डोज में आप भी तड़का लगा सकते हैं, क्योंकि आपके पास है ढेरों ऑप्शंस। फिलहाल इजाजत दीजिए, अच्छी खबरें जारी हैं, देखते रहिए जीएनटी।

0: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
1: Get into the game with your favorite teams and never miss a game. Follow your teams on TuneIn and get live updates. Just select teams you want to follow on TuneIn and you'll get notifications like when the games start. Enjoy all the recommended stations, sports talk, and podcasts. Just favorite your teams and start listening.
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
3: इस बार का फीफा वर्ल्ड कप शुरू होने जा रहा है 12 जून से, जिसने संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको की सह मेजबानी में ये टूर्नामेंट खेला जाना है। इस बार के विश्व कप में 48 टीमें खेलेंगी। ये वर्ल्ड कप के इतिहास में पहली बार हो रहा है जब 48 टीमों को शामिल किया गया, लेकिन इस बार टूर्नामेंट में खेले जाने वाले कुल 104 मुकाबले कुछ हद तक हॉकी की तरह होंगे, क्योंकि इसमें कुछ हॉकी वाले ही नियम लगाए गए हैं। तो क्या है बदले हुए नियम, आपको बताते हैं।

0: काम कर जुनून को एंथम में बदल देने वाली शकीरा का इंतजार कर रही है। कोलंबियाई पॉप स्टार शकीरा फीफा विश्व कप के उद्घाटन समारोह में टूर्नामेंट के ऑफिशियल गाने को प्रेजेंट करने वाली हैं। इसकी रिहर्सल जोर शोर से चल रही है। मैक्सिको सिटी के सबसे बड़े मंच पर जब शकीरा उतरेंगी तो उनका अंदाज कुछ इस तरह का होगा। जून से दुनिया का दिल फुटबॉल की हर एक किक पर धड़केगा। रोमांच इसलिए भी खास होगा क्योंकि इस बार 32 की बजाय 48 टीमें खेलेंगी। तीन देश मिलकर मेजबानी करेंगे और खिताब के लिए 7 की बजाय 8 मैच जीतने होंगे। यही नहीं, पहली दफा मैच के बीच खिलाड़ी इंटरव्यू देंगे। कॉर्नर किक में VAR का दखल होगा और फाइनल में भव्य हाफ टाइम शो होगा। इस बार के वर्ल्ड कप में केवल खेल का रोमांच ही नहीं बढ़ेगा बल्कि कुछ नियमों से खेल का अंदाज भी बदलेगा। आमतौर पर फुटबॉल में 45-45 मिनट के दो हाफ होते हैं जिन्हें 15 मिनट का हाफ टाइम ब्रेक अलग करता है, लेकिन इस बार मैच 4 क्वार्टर में बटा हुआ नजर आएगा। मौसम की वजह से हर मैच में दोनों हाफ के बीच जरूरी हाइड्रेशन ब्रेक दिया जाएगा। ये ब्रेक पहले हाफ में लगभग 22वें मिनट और दूसरे हाफ में 67वें मिनट के आसपास होगा। यानी 2026 का फीफा विश्व कप केवल गोल, जीत और ट्रॉफी की कहानी नहीं होगा बल्कि एक नए तरह के स्टार्टअप, सिक्योरिटी और रणनीति के साथ एंटरटेनमेंट का अद्भुत संगम होगा। यही वजह है कि इस बार फीफा वर्ल्ड कप के टिकट्स के लिए मारामारी मची है। कहा तो ये भी जा रहा है कि एक मैच के टिकट्स की कीमत लाखों से करोड़ों तक जा पहुंची है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: Step into timeless classical music. Works from the masters, brought to life by world-class orchestras, conductors, and soloists. From past to present, every performance played with depth, precision, and care. Music that has lasted for generations and still feels just as powerful today. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Classical Hits and start listening now.
3: उसके प्रहार से ड्रैगन हो जाएगा अंधा, एक अटैक से बिखर जाएगा आतंकिस्तान का कुनबा। दो दुश्मन, दो हथियार, दोनों ही दमदार। देखिए रण क्षेत्र आज शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
4: गुजरात और दमन के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया विकास का तोहफा। हजीरा में लार्सन एंड ट्यूब्रो की इंडस्ट्रियल फैसिलिटी का जायजा लिया। सूरत को 200 बेड वाले अस्पताल की सौगात दी। चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह। अब तक 30 लाख से ज्यादा भक्तों ने दर्शन किए। केदारनाथ पहुंचने वालों का आंकड़ा 11 लाख के पार। पर्यावरण दिवस के मौके पर दुनिया भर में पर्यावरण संरक्षण का संदेश। सूरत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगाया एक पेड़ मां के नाम। लोगों से वृक्षारोपण की अपील की। भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर शानदार खबर। वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% रही GDP ग्रोथ। जनवरी से मार्च की तिमाही में 7.8% की दर से हुई वृद्धि। नहीं बदलेगी आपके लोन की EMI। RBI ने रेपो रेट 5.25% रखी बरकरार। विदेशी निवेशकों को लुभाने के लिए भी उठाए कदम।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
4: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां और झूठे दावे बिजली की रफ्तार से फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है, कभी पुरानी तस्वीर को नई साजिश का रंग देकर पेश किया जाता है और लोग बिना जांचे परखे इन्हें सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टीवी की स्क्रीन तक सीमित नहीं है। यहाँ हर किसी के हाथ में कैमरा है और हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नहीं बताकर परोसी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कोसों दूर लगे। नतीजा ये होता है कि लोग बिना सोचे समझे, बिना जांचे परखे ने सच मानकर शेयर कर देते हैं और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं। जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी। तो आज फैक्ट चेक में सबसे पहले बात करेंगे सोशल मीडिया पर छाए उस वीडियो की जिसके जरिए यह दावा किया जा रहा है कि बंगाल बांग्लादेश बॉर्डर पर तार लगाने का विरोध किया गया। बांग्लादेश के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं लोग, लेकिन बीएसएफ फुल एक्शन मोड में है। क्या है वायरल वीडियो की सच्चाई आगे बताएंगे। अगली खबर होगी उस वायरल तस्वीर से जुड़ी हुई जिसके जरिए दावा यह किया जा रहा है कि वीडियो यूपी का है जहां पर एक व्यक्ति को पहले पीटा गया फिर उससे जबरन जय श्री राम बुलवाया गया। इसकी सच्चाई क्या है आगे बताएंगे। शुरुआत करते फैक्ट चेक की।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और
4: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें सुरक्षा कर्मी बॉर्डर जैसी जगह पर प्रदर्शन कर रहे लोगों को काबू में करते नजर आ रहे हैं। वीडियो पर लिखा हुआ है कि बंगाल बांग्लादेश बॉर्डर पर तार लगाने का विरोध किया जा रहा है, बांग्लादेश के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन बीएसएफ फुल एक्शन मोड में नजर आ रही है। यूजर्स इसे भारत बांग्लादेश सीमा पर उपजे हालिया तनाव से जोड़कर शेयर कर रहे हैं। क्या है इसकी सच्चाई, देखिए हमारी रिपोर्ट।
5: सोशल मीडिया पर यह वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। वीडियो में सुरक्षा कर्मी प्रदर्शन कर रहे लोगों को काबू करते दिख रहे हैं। कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए ये दावा कर रहे हैं कि बंगाल बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग के कार्य को लेकर कुछ बांग्लादेशी नागरिकों ने प्रदर्शन किया, जिसके बाद वहां बीएसएफ एक्शन मोड में नजर आ रही है। एक इंस्टाग्राम यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, बंगाल बांग्लादेश सीमा पर एक बार फिर तनाव की स्थिति देखने को मिली है। रिपोर्ट्स के अनुसार सीमा क्षेत्र में तारबंदी के कार्य को लेकर कुछ बांग्लादेशी नागरिकों ने विरोध दर्ज करवाया। सीमा सुरक्षा और अवैध घुसपैठ रोकने के उद्देश्य से की जा रही इस प्रक्रिया पर दोनों देशों की एजेंसियां नजर बनाए हुए हैं। हालांकि इस मामले को लेकर विभिन्न पक्षों की ओर से अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। सीमा से जुड़ी हर गतिविधि पर प्रशासन और सुरक्षा बलों की कड़ी निगरानी जारी है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है।
4: दरअसल सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। कुछ लोग वीडियो को शेयर करते हुए दावा यह कर रहे हैं कि बंगाल बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग के कार्य को लेकर कुछ बांग्लादेशी नागरिकों ने प्रदर्शन किया, जिसके बाद वहां बीएसएफ एक्शन मोड में नजर आ रही है, लगातार कार्रवाई की जा रही है। वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानने के

0: जा रही है, वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने इसकी पड़ताल शुरू की। दावे की सच्चाई जानने के लिए सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान हमारा ध्यान बैकग्राउंड से आ रही आवाजों पर गया। जब हमने इसे ध्यान से सुना तो वो बांग्ला नहीं लग रही थी। अगर पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश बॉर्डर पर हुए प्रदर्शन का ये वीडियो होता तो फिर जाहिर सी बात है कि इसमें बंगला में आवाजें सुनाई देती, लेकिन ऐसा था नहीं। इसके अलावा वीडियो में हमें एक और चीज देखने को मिली। अगर ये फेंसिंग का कार्य यहाँ पर चल रहा था तो फिर यहाँ कोई तार क्यों नहीं नजर आई, ये समझ से बिल्कुल परे था। इसके अलावा हाल फिलहाल में सर्च के दौरान ऐसी कोई प्रमाणिक रिपोर्ट हमें नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके, लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा, जिसमें हमारा पहला सवाल यही कि वायरल हो रहा वीडियो कब का है और कहां का है। हमारा दूसरा सवाल, कहीं जानबूझकर किसी और घटना से संबंधित वीडियो को नया एंगल देकर वायरल तो नहीं किया जा रहा, सच और झूठ जानिए इस रिपोर्ट में।
1: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उन्हें सर्च किया। इस दौरान हमें एक फेसबुक अकाउंट पर मिला। ये वीडियो 11 फरवरी 2026 को साझा किया गया है। इसके साथ ही यहां बताया गया था कि चुनाव की तैयारियां तेज हो गईं, सेना के जवान अभ्यास जारी रखे हुए हैं। चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न करवाने के लिए सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। यहां पर हमें नेपाल हैशटैग देखने को मिला। इसके बाद हमें एक नेपाली फेसबुक अकाउंट पर वायरल वीडियो देखने को मिला। ये पोस्ट 12 फरवरी 2026 को साझा की गई थी। यहाँ जानकारी मिली कि सेना चुनाव की तैयारी के लिए मॉक अभ्यास कर रही है। आगे की पड़ताल में हमें नेपाल के तनहू जिला पुलिस कार्यालय के फेसबुक अकाउंट पर वायरल वीडियो से संबंधित एक फोटो देखने को मिली। ये पोस्ट 9 फरवरी 2026 को साझा की गई थी। इसमें ये जानकारी दी गई थी कि 21 फरवरी को होने वाले आगामी प्रतिनिधि सभा सदस्य चुनाव के स्वतंत्र, निष्पक्ष और भयमुक्त वातावरण में संपन्न करवाने के उद्देश्य से तनहू जिला प्रशासन कार्यालय, तनहू जिला निर्वाचन कार्यालय और तनहू जिला पुलिस कार्यालय ने नेपाली सेना, सशस्त्र पुलिस बल और राष्ट्रीय अनुसंधान कार्यालय के कार्यालय प्रमुखों की उपस्थिति में मॉडल मतदान और मतदान स्थल पर उत्पन्न होने वाली विभिन्न सुरक्षा चुनौतियों के प्रबंधन से संबंधित समन्वय और संयुक्त परियोजनाओं, संयुक्त अभ्यासों का आयोजन किया गया। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल हो रहा दावा झूठा साबित हुआ। वायरल वीडियो नेपाल में हुई मॉक ड्रिल का है जिसे भारत का बताकर शेयर किया जा रहा है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
0: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो को धार्मिक एंगल देते हुए यूजर्स ये दावा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भगवा गमछा पहने एक व्यक्ति ने एक धर्म विशेष समुदाय से ताल्लुक रखने वाले व्यक्ति को पहले थप्पड़ मारा और फिर बाद में उसे जय श्री राम बोलने के लिए मजबूर किया। वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है, पड़ताल करती हमारी रिपोर्ट।
1: सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि भगवा गमछा पहने एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को थप्पड़ मारता है और बाद में उसे जय श्री राम बोलने के लिए मजबूर करता है।
2: जय श्री राम।
1: वीडियो को शेयर करते हुए एक यूजर ने लिखा, मैं एक भारतीय हिंदू लड़की हूँ और इस वीडियो को देखकर मुझे खुद पर शर्म आ रही है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है। वीडियो का सच झूठ जाने बगैर इसे धड़ल्ले से वायरल किया जा रहा है। वहीं कुछ यूजर्स इस वीडियो के जरिए कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं।
0: दरअसल सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और इस वीडियो को उत्तर प्रदेश का बताते हुए कुछ यूजर्स ये कह रहे हैं कि ये हिंदू व्यक्ति ने दूसरे समुदाय के ताल्लुक रखने वाले शख्स को पहले थप्पड़ मारा और फिर जय श्री राम बोलने पर मजबूर किया। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर इसी मिलते जुलते दावे के साथ ये वीडियो लगातार शेयर हो रहा है। ऐसे में इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। फैक्ट चेक टीम ने दावे की जांच के लिए सर्च किया, लेकिन हाल फिलहाल में ऐसी कोई भी रिपोर्ट हमें नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके, क्योंकि अगर वाकई में उत्तर प्रदेश में इस तरह की कोई भी घटना हुई होती तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर होती और इसके बारे में सर्च के दौरान भी कोई जानकारी हमें नहीं मिली, कोई भी प्रमाणिक

0: रिपोर्ट हमें नहीं मिली, लिहाजा हमने से सवालों की कसौटी पर कसा। हमारा पहला सवाल यही कि यह घटना कब की है और कहां की है। हमारा दूसरा सवाल, कहीं किसी पुराने वीडियो को धार्मिक एंगल देकर जानबूझकर इसे वायरल तो नहीं किया जा रहा है। अब देखिए सच और झूठ क्या है।
1: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वीडियो की पड़ताल में जुटी। सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे इंटरनेट पर सर्च किया। इस दौरान हमें 8 नवंबर 2025 को छपी एक न्यूज रिपोर्ट मिली। इसमें दी गई जानकारी के मुताबिक ये घटना हरियाणा के हिसार के कैंप चौक इलाके में घटी थी। रिपोर्ट में ये भी बताया गया था कि रणबीर नाम का एक व्यक्ति नॉनवेज की दुकान पर पहुंचा और दुकानदार पर हमला करने लगा। पीड़ित की पहचान उत्तराखंड निवासी मनु के रूप में हुई थी। सर्च के दौरान हमें एक और रिपोर्ट मिली। 25 नवंबर 2025 को ये रिपोर्ट पब्लिश हुई थी। रिपोर्ट के अनुसार दुकानदार को थप्पड़ मारने के बाद रणबीर ने खुद को बजरंग दल का सदस्य बताया और मनु पर हमला जारी रखा। रिपोर्ट में आगे बताया गया था कि दुकानदार ने बार बार उससे कहा कि वो हिंदू है, इसके बावजूद खुद को बचाने के प्रयास में उसे जय श्री राम के नारे लगाने पड़े। इसके बाद हमने नॉनवेज दुकान के मालिक का पता लगाने की कोशिश की। हमने हिसार के कैंप चौक इलाके में मांसाहारी दुकानों की खोज की और मनु चिकन पकौड़ी नाम की एक दुकान मिली। दुकान की भौगोलिक स्थिति का पता लगाने के बाद हमें दुकान के साइन बोर्ड पर एक फोन नंबर मिला। हालांकि जब हमने कॉल किया तो वो नंबर बंद था। मनु ने अपनी पहचान की पुष्टि करते हुए फैक्ट चेक को बताया कि वो हिंदू है। बातचीत के दौरान उसने कहा कि उस मंगलवार को उन्होंने दुकान सिर्फ सफाई के लिए खोली थी। हालांकि शाम को कुछ ग्राहक आ गए, इसलिए उन्होंने जो भी खाना उपलब्ध था वही परोस दिया। मनु के मुताबिक रणवीर अचानक दुकान पर आया और उस पर हमला करने लगा और इसका वीडियो कैमरा में रिकॉर्ड कर लिया। मनु ने उसे बताया कि वो हिंदू है, लेकिन रणबीर ने उसकी बात नहीं मानी और उससे धार्मिक नारा लगाने को कहा। बाद में जब वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस ने कार्रवाई की और रणबीर को गिरफ्तार कर लिया। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल दावा झूठा साबित हुआ। वायरल हो रहा वीडियो नवंबर 2025 का है और हरियाणा के हिसार का है और वीडियो में दिख रहे दोनों व्यक्ति हिंदू है। पीड़ित ने इसकी पुष्टि की है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
0: फैक्ट चेक में फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के उस पर आप खुली चलेंगे वायरल दुनिया में, दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला।
3: दिस इज रेडियो रीइमेजिनड विद ट्यून इन, यू गेट म्यूजिक, न्यूज, sports, podcasts, and live radio from around the world, all in one place. Hear from stations like today's hits. Talk sport.
4: Oh, I think we still can win the World Cup with this squad.
3: The Daily and more. Available on over 200 devices, so you can enjoy TuneIn Radio anytime, anywhere. Just sit back and start listening now.
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला।
0: वक्त है फैक्ट चेक के आखिरी सफर का, जहां आपको दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हैं, जिन्हें खूब पसंद किया जा रहा है।
5: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो ने लोगों के दिल को छू लिया है। ये वीडियो न केवल मानवीय संवेदनाओं की मिसाल पेश करता है, बल्कि ये भी दिखाता है कि मुश्किल घड़ी में मदद के लिए आने जाने वाले लोग आज भी समाज में मौजूद हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक सब्जी विक्रेता का ठेला अचानक सड़क पर पलट जाता है। ठेले में रखे आलू और प्याज बड़ी मात्रा में सड़क पर बिखर जाते हैं। कुछ ही पलों में पूरा रास्ता सब्जियों से भर जाता है और ठेला चालक असहाय नजर आने लगता है। उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती अपनी मेहनत से जुटाई गई सब्जियों को दोबारा समेटने की होती है। लेकिन इसके बाद जो सीन सामने आता है वो हर किसी का दिल जीत लेता है। आसपास से गुजर रहे लोग बिना किसी झिझक के मदद के लिए आने लगते हैं। कोई सड़क पर गिरे आलू उठाने लगता है तो कोई प्याज इकट्ठा करने में जुट जाता है। कुछ लोग ठेले को संभालने और उसे सीधा करने में मदद करते हैं, जबकि कुछ लोग बिखरी हुई सब्जियों को वापस ठेले में रखने का काम शुरू कर देते हैं। सबसे खास बात ये रही कि वहाँ मौजूद किसी भी व्यक्ति ने मदद करने से पहले कोई सवाल नहीं पूछा। लोगों के लिए उस समय केवल एक बात मायने रख रही थी कि एक मेहनतकश व्यक्ति परेशानी में है और उसे सहायता की आवश्यकता है। यही सोच इस वीडियो को और अधिक खास बना देती है। ये वीडियो लोगों को खूब पसंद आ रहा है। उसकी मासूमियत और अलग अंदाज ने इंटरनेट का ध्यान खींच लिया है। वीडियो की शुरुआत में एक छोटा बच्चा स्कूल यूनिफॉर्म पहने हुए नजर आता है। उसकी पीठ पर स्कूल बैग टंगा हुआ है, जिससे साफ पता चलता है कि वो पढ़ाई के लिए स्कूल जा रहा है। पहली नजर में यह सीन बिल्कुल नॉर्मल लगता है, क्योंकि रोजाना लाखों बच्चे स्कूल जाते हैं। लेकिन जैसे ही कैमरा थोड़ा आगे बढ़ता है, लोगों की नजर उस खास बात पर पड़ती है जिसने इस वीडियो को वायरल बना दिया है। दरअसल ये बच्चा किसी साइकिल, मोटरसाइकिल या किसी दूसरे सामान्य वाहन पर नहीं, बल्कि एक बकरे की सवारी करते हुए स्कूल जा रहा है। यही अनोखा नजारा लोगों को बेहद पसंद आ रहा है। वीडियो में बच्चा पूरे आत्मविश्वास के साथ बकरे की पीठ पर बैठा दिखाई देता है। उसके हाथ में एक छोटी सी छड़ी भी नजर आती है, जिससे ऐसा लगता है मानो वो अपने इस अनोखे वाहन को कंट्रोल कर रहा हो। सबसे दिलचस्प बात यह है कि बच्चा पूरी तरह सहज दिखाई देता है और आराम से अपने रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। हमारी संस्कृति में बेटियों को लक्ष्मी और साक्षात देवी का रूप माना जाता है, और जब बेटी अपने घर पहुंचती है तो उसका स्वागत कुछ ऐसा होता है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। लोग जमकर इस वीडियो पर कमेंट्स कर रहे हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि पारंपरिक लिबास में एक छोटी बच्ची बेहद क्यूट लग रही है। घर में दाखिल होने से पहले एक थाली में उसके पैर पखारे जाते हैं, माथे पर तिलक लगाया जाता है और आरती उतार कर उसका गृह प्रवेश कराया जाता है। सोशल मीडिया पर ये दिल छू लेने वाला वीडियो खूब वायरल हो रहा है। इसमें एक युवक अपनी पहली सैलरी अपने माता पिता के हाथों में सौंपता नजर आ रहा है। बेटे की पहली कमाई देखकर माँ बाप जिस तरह इमोशनल हुए, उसने इंटरनेट पर हर किसी का दिल जीत लिया। ये वीडियो IIM से ग्रेजुएट हुए एक लड़के का है। MBA करने के बाद जब लड़के की पहली जॉब लगी और पहली सैलरी आई, तो उसने इसे बेहद खास अंदाज में अपने मम्मी पापा को गिफ्ट किया। यूजर्स इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं। वैसे तो इन दिनों सोशल मीडिया पर मेलोडी का खुमार हर किसी के सिर चढ़कर बोल रहा है, लेकिन इस वायरल वीडियो की तो बात ही अलग है। देखिए कैसे 1 रुपए वाली मेलोडी टॉफी ने बुजुर्ग महिला के चेहरे पर मुस्कान ला दी। कहते हैं कि प्यार की कोई उम्र नहीं होती, और ये वीडियो इसी बात को सच साबित कर रहा है। इस खूबसूरत वीडियो में बुजुर्गों के दिलों में फिर से प्यार के रंग भर दिए। वाटर पार्क से जुड़े मजेदार और अनोखे वीडियो इंटरनेट यूजर्स को काफी पसंद आते हैं। कभी कोई व्यक्ति स्लाइड से फिसलते समय अजीब हरकत कर बैठता है, तो कभी किसी के साथ ऐसा मजेदार हादसा हो जाता है कि देखने वाले अपनी हंसी नहीं रोक पाते। इन दिनों भी एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर चर्चा बटोर रहा है। वायरल हो रहे इस वीडियो में एक वाटर पार्क का दिलचस्प नजारा देखने को मिलता है। वीडियो की शुरुआत में एक लड़की बड़ी आरामदायक तरीके से पानी की स्लाइड पर फिसलते हुए नीचे की तरफ आती दिखाई देती है। वो पूरी तरह से राइड के मजे ले रही होती है और उसके चेहरे पर भी उत्साह साफ नजर आता है। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि अगले कुछ सेकंड में उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जो न केवल उसे चौंका देगा, बल्कि सोशल मीडिया पर लाखों लोगों का मनोरंजन भी करेगा। जैसे ही लड़की स्लाइड के लास्ट हिस्से की ओर पहुंचती है, तभी पीछे से एक दूसरी लड़की उसी स्लाइड पर बेहद तेज गति से नीचे आती हुई दिखाई देती है। उसकी स्पीड इतनी अधिक होती है कि वो अपने आगे मौजूद लड़की को समय रहते देख नहीं पाती। कुछ ही पलों में दोनों के बीच जोरदार टक्कर हो जाती है। टक्कर इतनी अचानक होती है कि दोनों लड़कियां अपना बैलेंस खो बैठती हैं और सीधे पानी में जा गिरती हैं। ये पूरा दृश्य इतना अचानक होता है कि वहां मौजूद लोग भी कुछ क्षणों के लिए हैरान हो जाते हैं। हालांकि किसी को गंभीर चोट नहीं लगती। आप किसी जंगल सफारी पर गए हों और आपकी गाड़ी के ठीक बगल में एक खूंखार बब्बर शेर बैठा हो, तभी अचानक कुछ लोग आराम से उसके बगल से पैदल और बाइक पर गुजरने लगें, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? यकीनन ये नजारा किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी है। लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि सफारी गाड़ी में बैठा एक पर्यटक वीडियो बना रहा है, तभी सड़क पर एक के बाद एक बाइक सवार गुजरते हैं। हैरान करने वाला मोड़ तब आता है जब कैमरा थोड़ा घूमता है और सड़क के बीच एक विशाल काय शेर बैठा दिखाई देता है। हद तो तब हो गई जब बाइकर्स के साथ साथ एक शख्स बड़े आराम से पैदल ही शेर के पास से गुजर जाता है, मानो वहाँ कोई शेर नहीं बल्कि कोई बिल्ली बैठी हो। इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात यह है कि शेर भी उन्हें देखकर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता और शांति से बैठा रहता है। सोशल मीडिया पर वायरल ये वीडियो लोगों का ध्यान खींच रहा है, जिसने फुटबॉल मैच को ही यादगार बना दिया। इस वीडियो को देखकर लोग सिर्फ मुस्कुरा ही नहीं रहे, बल्कि इसे इंटरनेट का सबसे क्यूट फुटबॉल वीडियो भी बता रहे हैं। दरअसल एक फुटबॉल मैच के दौरान ऐसा मजेदार नजारा देखने को मिला, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। खिलाड़ी मैदान में पूरी गंभीरता से मैच खेल रहे थे, तभी अचानक एक छोटा सा बछड़ा मैदान में आ गया। शुरुआत में खिलाड़ियों को लगा कि शायद वह थोड़ी देर बाद बाहर चला जाएगा, लेकिन अगले ही पल उसने जो किया उसे देखकर मैदान में मौजूद हर व्यक्ति हंसने लगा। वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसे ही खिलाड़ी फुटबॉल को एक दूसरे की तरफ पास कर रहे थे, वैसे ही वो नन्हा बछड़ा भी पूरी उत्सुकता के साथ गेंद के पीछे दौड़ने लगा। गेंद मैदान के जिस कोने में जाती, बछड़ा भी उसी दिशा में तेजी से भागता दिखाई देता। उसकी मासूम हरकतें और उत्साह देखकर खिलाड़ी भी अपनी हंसी रोक नहीं पाए।
2: गुन्नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
3: Want to hear something funny? Check out Just for Laughs Radio, your destination for all things comedy. Enjoy non-stop stand-up from your favorite comics, plus the ones you haven't discovered yet. Get your daily dose of laughter on Just for Laughs Radio, now on TuneIn.
2: गुन्नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
0: खबर अयोध्या से, जहां पर 1000 साल पुराने आचार्य मंदिर में 400 साल पुरानी पांडुलिपि मिली है। करीब 5000 की संख्या में ये पांडुलिपियां फारसी, अरबी, उर्दू और कुछ रोमन लिपि में लिखी गई हैं, जिनका अध्ययन किया जाएगा और इसके बाद इन दुर्लभ पांडुलिपियों को अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय में रखा जा सकता है। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या के गौरवशाली इतिहास को समेटे हुए ये वो दुर्लभ दस्तावेज है जो आने वाले वक्त में लोगों को अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय में देखने को मिल सकता है। ये पांडुलिपियां 12वीं से लेकर 19वीं शताब्दी तक की बताई जा रही हैं, जो अयोध्या के 1000 साल पुराने आचार्य मंदिर से मिली है। इनकी संख्या 5000 के करीब है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि सनातन धर्म के इस बेहद प्राचीन मंदिर में मिली ये पांडुलिपियां फारसी, अरबी, उर्दू और कुछ रोमन लिपियों में लिखी गई हैं।
6: ये दंतधावन कुंड आचार्य मंदिर तकरीबन 1000 साल प्राचीन विष्णु प्रकाशाचार्य द्वारा स्थापित यह स्थान है और यहाँ पे जो भी पांडुलिपियां मिली है वो फारसी में है और आपके अरबी में है, उर्दू में है, कुछ रोमन में है, बाकी उसमें कुछ 12वीं शताब्दी की हैं, 13वीं की भी हैं, कुछ 14वीं 15वीं की हैं और 17वीं शताब्दी की हैं, 19वीं शताब्दी की हैं। तो ऐसी बहुत सारी पांडुलिपियां आपके स्थान पे दंतधावन कुंड पे मिली हैं। तकरीबन ये 5000 के आसपास ये जो इनकी संख्या है।
0: आचार्य मंदिर के पुजारी का कहना है कि ज्यादातर पांडुलिपियां भोजपत्र की हैं, जिनका जल्दी ही हिंदी में अनुवाद कराया जाएगा, जिसके बाद ही इन दुर्लभ पांडुलिपियों पर लिखे इतिहास से पर्दा उठ सकेगा। हालांकि उन्होंने बताया कि इन पांडुलिपियों पर अयोध्या के मंदिरों, पुराने कुंडों और मंदिरों के लिए दी गई जमीनों का लेखा जोखा हो सकता है।
6: देखिए, ज्यादातर ये जो लिपियां हैं ये कुछ हुक्मनामे हैं और शहंशाह हिंद की तरफ से जो जमीन दी गई स्थान को उसमें है। अयोध्या में जो मंदिर बसाए गए हैं दंतधावन कुंड की तरफ से उनकी है, कुछ अयोध्या को लेकर के जो और चीजें हैं उसकी है। तो तथा कथित कहा जाए तो ये अयोध्या का एक पूरा इतिहास है, प्राचीन इतिहास है। लमसम सारी जो है वो भोजपत्र पे हैं, कुछ है तामपत्र पे थी, तो जब अंग्रेज यहाँ से जाने लगे तो उन्होंने भोजपत्र पे करके और उसको तामपत्र खुद लिखा।
0: दरअसल अयोध्या में भगवान श्री राम से जुड़ी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करने के लिए दुर्लभ पांडुलिपियों का देश भर से संग्रह किया जा रहा है और फिर इन्हें जांच के बाद अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय में रखा जाएगा। लेकिन इस संग्रहालय में सिर्फ उन्हीं पांडुलिपियों को रखा जाएगा जो सिर्फ हाथ से लिखी है और दुर्लभ है।
7: विभिन्न स्थानों पे इस प्रकार की पांडुलिपियां हमें मिली है, जैसे लक्ष्मण किला में, रामकथा संग्रहालय में, अंतर्राष्ट्रीय रामायण शोध संस्थान में, गोकुल भवन में और हनुमानगढ़ी में और अन्य स्थानों का भी सर्वेक्षण किया जा रहा है। ये विभिन्न भाषाओं में, कुछ हिंदी में मिली है, कुछ संस्कृत में मिली है, अलग अलग जगहों पे उर्दू में भी मिल रही है, तो हम उन सभी को असेस करके डिजिटाइज करा रहे हैं।
0: बताया जा रहा है कि पांडुलिपियों को इकट्ठा करने की मुहिम के तहत देश के अलग अलग हिस्सों से कई लोग ऐसी दुर्लभ पांडुलिपियों की जानकारी अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय और डायरेक्टर संजीव सिंह को दे चुके हैं। इस पूरे अभियान का मकसद सिर्फ पांडुलिपियों को इकट्ठा करना ही नहीं बल्कि इन्हें वैज्ञानिक तरीके से सुरक्षित रखना भी है, इसीलिए इन्हें
1: डिजिटल रूप में सेव करने की तैयारी है ताकि आने वाले समय में लोग इन्हें आसानी से देख भी सकें और पढ़ भी सकें।
8: इस प्रकल्प में हम लोग दो तरह की बात करेंगे, एक तो पांडुलिपियों का संग्रहण कर रहे हैं, दूसरा उन पांडुलिपियों को जो हमको नहीं मिल पा रही हैं, तो उनका जो है फेसेमाइल या टेक्निकल, आजकल बहुत से टेक्निकल डिवाइस के रूप में जैसे कि हम माइक्रोफिल्म बना लेंगे, तो क्या होगा कि आपको एक ही जगह सब चीज मिल जाएगी। तो रेफरेंस के लिए जो संदर्भ है, तो इसलिए युवाओं को ही नहीं, शोधार्थियों के लिए जो राम राम साहित्य राम कथा पर शोध कर रहे हैं, उनके लिए अद्भुत केंद्र होने वाला है।
1: इस पूरी पहल के जरिए रामायण की कालातीत विरासत को सुरक्षित कर आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना है। अयोध्या से मयंक शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: इस बार का फीफा वर्ल्ड कप शुरू होने जा रहा है 12 जून से, जिसने संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको की सह मेजबानी में यह टूर्नामेंट खेला जाना है। इस बार के विश्व कप में 48 टीमें खेलेंगी। ये वर्ल्ड कप के इतिहास में पहली बार हो रहा है जब 48 टीमों को शामिल किया गया, लेकिन इस बार टूर्नामेंट में खेले जाने वाले कुल 104 मुकाबले कुछ हद तक हॉकी की तरह होंगे, क्योंकि इसमें कुछ हॉकी वाले ही नियम लगाए गए हैं। तो क्या है बदले हुए नियम, आपको बताते हैं।